0: रही बात अमित शाह के बोलने की, तो कौन सा मंत्री कब बोलेगा, किस विषय पर बोलेगा, ये विपक्ष नहीं तय करेगा।
1: कौन सा मंत्री कब बोलेंगे, किस विषय पे बोलेंगे, ये सदन तय करता है चेयरमैन के अप्रूवल से, और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी में कौन सा मिनिस्टर किस विषय पे बोलना है ये सरकार तय करता है। वो ओपोजिशन तय नहीं कर सकते कि कौन सा मंत्री कब बोलना चाहिए।
0: संसद का एक एक मिनट कीमती है। कानून बन सकता है, नीति पर बहस हो सकती है, किसी नागरिक की समस्या सदन तक पहुंच सकती है, किसी फैसले की कमियां सामने आ सकती हैं, और किसी बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा तय हो सकती है, लेकिन ये कीमती समय नारेबाजी और प्रदर्शन में बीता जा रहा है।
1: ये ओपोजिशन वाला ही खुद हाउस नहीं चलाते हैं, वो बाहर में नारा लगा रहे हैं, तो गलत बात है ना। ऐसा कोई नहीं, देखो हाउस बिजनेस पास कर रहे, बिल पास कर रहे, राज्यसभा में तो अच्छा से चर्चा करके बिल पास कर रहे हैं। कांग्रेस और एक दो साथी लोग वॉकआउट कर रहे हैं या हंगामा कर रहे हैं, लेकिन बिल तो पास हो रहे हैं और चर्चा में लोग हिस्सा भी ले रहे हैं, और कई एमपीज ने अपना मत रखा है। अच्छा बात है, कांग्रेस का नुकसान है।
0: बात सिर्फ इतनी नहीं है कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू राहुल गांधी से करीब 3 बार बात कर चुके हैं, उनसे आग्रह कर चुके हैं कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलनी चाहिए, सरकार हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है।
1: राहुल गांधी जी से मेरा अच्छा बात हुआ, और एक विषय हमने रिक्वेस्ट किया है और बाकी विषय में भी बात किया है। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टी से हम लगातार बातचीत करते रहें और तालमेल करके काम करें। हम एक दूसरे के विरोधी हैं, दुश्मन तो नहीं है ना, तो देश हित में हम सब मिलकर काम करें। लेकिन ऐसा चित्र दिखाते हैं बाहर में कि हम बिल्कुल पार्लियामेंट चलने ही नहीं देंगे, तो इसका नुकसान किसका होगा।
0: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 से शुरू होकर 13 अगस्त 2026 तक चलेगा। अब सत्र अपने अंतिम दौर में है, अब सिर्फ 4 दिन की संसद की कार्यवाही और चलेगी। अब सवाल यही है कि क्या इन 4 दिनों में संसद बगैर हंगामे के चल पाएगी। आज तक ब्यूरो।
2: राहुल गांधी और पूरा विपक्ष सिर्फ गृहमंत्री अमित शाह का जवाब नहीं मांग रहा, बल्कि वो परिसीमन बिल, महिला आरक्षण बिल, चढ़ावा चोरी, FCRA को लेकर भी हमलावर है। सवाल यह है कि क्या इन मुद्दों पर सरकार के साथ विपक्ष की चर्चा होगी या एक बार फिर सदन हंगामे की भेंट चढ़ेगा।
3: परंपरा का अनुकूल नहीं है, यह ठीक नहीं है आपका व्यवहार। आप अगर बैठ जाएंगे तो हम सदन चलाने के लिए कोशिश करेंगे।
0: संसद के दरवाजे तो खुलते हैं, मगर उसके बाद शुरू हो जाता है हंगामा, और हंगामा सिर्फ इस बात का नहीं कि अमित शाह जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर आप ये तस्वीरें देखिए, पेपर लीक के बाद अगर सबसे ज्यादा अगर किसी मुद्दे पर हंगामा बरपा है तो वो है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा। विपक्ष ऐसे ही रोज प्रदर्शन कर रहा है, विपक्षी सांसद तख्तियों पर चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ के स्लोगन लिख कर आते हैं, साथ में दान पात्र लाते हैं, और फिर विपक्षी सांसद इस दान पात्र में दान डालकर सरकार का विरोध करते हैं।
4: दान पात्र में चोरी महापाप, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनके स्थान पर किस तरीके से उंगली उठ जाए लोग। और SIT के बाद SIT गठन, हमारा मानना तो इतना ही है कि लखनऊ वाली SIT ने छोटे खुलासा किए, अब जो बड़ी SIT बन रही है बड़े खुलासा करेंगे।
0: चढ़ावा चोरी के अलावा भी कई मुद्दे हैं जिन पर हंगामा बरपा है, इनमें परसीमन, महिला आरक्षण बिल और FCRA है। पहले बात परसीमन की, परसीमन के लिए सबसे बड़ा अड़ंगा दक्षिण से है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना परसीमन बिल का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन आबादी के आधार पर सीटें बांटेगा। दक्षिणी राज्य जनसंख्या कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं, इसका मतलब है कि उत्तर के राज्यों को ज्यादा सीटें मिलेगी, दक्षिण को कम। दक्षिण राज्यों का कहना है कि हमने जनसंख्या नियंत्रण किया तो हमें सजा क्यों मिले। उधर कांग्रेस कह रही है कि 543 सांसद तो संभाले नहीं जाते, 850 सांसद कैसे संभालेंगे।
5: आप महिला आरक्षण करना चाहते हैं, 543 में से आप महिला आरक्षण कर दीजिए, एक तिहाई दे दीजिए। भाई 543 पे तो लोकसभा चलती नहीं, 850 करके क्या आप इसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना बनाना चाहते हैं।
0: कांग्रेस सशंकित है कि परसीमन के नाम पर सरकार छल कर रही है।
6: डेमोक्रेसी में हम किसी के हाथ बंद नहीं सकते और उनके विचार को भी हम रोक नहीं सकते हैं। वो उनके विचार दौड़ते रहता उनके माइंड में, वो किसी को पता नहीं चलता। बाकी के चीजें जो फिजिकली हम करते हैं, हमको पता चलता है कौन कैसा है, क्या है, कौन लंगड़ा है, कौन ऊंचा है, कौन अंधा है, कौन काना है, बहरा है, मालूम होता है।

0: स्पष्ट है कि सभी दल के लोग मिलकर जो निर्णय लेंगे उसी के तहत हम चलेंगे।
1: डिलिमिटेशन को लेकर सरकार अपनी मंशा साफ कर रही है कि डिलिमिटेशन होगा तो सीटें बढ़ेंगी और जो सीटें बढ़ेंगी उन पर महिला उम्मीदवार चुनकर आएंगी। इस तरह से ये महिलाओं के लिए बेहतर है, लेकिन विपक्ष को इसमें सरकार का खोट नजर आता है।
2: डिलिमिटेशन पर हमारे विचार बड़े स्पष्ट, डिलिमिटेशन देश हित में नहीं, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। फिर से अगर दो हमारा तो सवाल ये है, 2023 में जो पारित हुआ था महिला आरक्षण विधेयक, वो रुका क्यों है, अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ? उसे लागू करें कम से कम 2029 में, आज की तारीख से लागू कर दें, कोई आपत्ति नहीं होगी। 542 की जो स्ट्रेंथ है लोकसभा में, उसमें एक तिहाई महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करें, हम साथ देंगे। लेकिन महिला आरक्षण इनकी नीत है ना नियत है, ये उसकी आड़ में डिलिमिटेशन चाहिए।
1: विपक्ष पूछ रहा है कि महिला आरक्षण बिल आज से ही लागू क्यों नहीं किया जा सकता, सरकार को समस्या क्या है?
3: वुमेन रिजर्वेशन बिल आप लोग कम से कम थोड़ा कहा करिए सरकारी पक्ष को भी, कितनी बार पास होगा? जब हम नई इमारत में आए संसद के तो ये बिल पास हुआ, फिर जब पिछली बार डिलिमिटेशन के बहाने इस पर चर्चा हुई तो गजट हुआ विद इफेक्ट फ्रॉम, तो वुमेन रिजर्वेशन बिल मसला ही नहीं है। अब कल से लागू करो ना, कह दो विद इफेक्ट फ्रॉम एवरी इलेक्शन नाउ ऑनवर्ड्स, तो ये हकीकत है। इस हकीकत को जितना आप ढकोगे आपकी पॉलिटिक्स उतनी एक्सपोज होती है।
1: लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें लगता है कि डिलिमिटेशन बिल पास होना चाहिए।
4: 50% लेडीज को उनके सीटी मिलेंगी, पंजाब बड़ा सूबा है, एमएलए ज्यादा होंगे, हल्के गांव ज्यादा है, वो छोटे होंगे, कम से कम लोगों के दुख तकलीफ में जो 117 हल्के उससे बढ़कर और आदमी आ जाएंगे, एमपी और बनेंगे, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, थोड़ा सा बोझ कट जाएगा। बहुत आबादी अब हो गई है पंजाब की, सभी स्टेटों के ऐसे हालात बने पड़े हुए।
1: महिला आरक्षण बिल को लेकर भी संसद में गतिरोध चरम पर है, इसके साथ ही एफसीआरए को लेकर भी गहमा गहमी है। हालांकि सरकार की ओर से डिलिमिटेशन और एफसीआरए की कार्यसूची में अभी जिक्र नहीं है, लेकिन विपक्ष सरकार के किसी भी दावों के लिए मुस्तैद है। शरद पवार की पार्टी तो कह रही है कि वो एफसीआरए का विरोध करेंगे।
5: एफसीआरए चा जे बिल है ते आताच्या ज्या फॉर्म मध्ये आहे त्याचा त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद चंद्र पवारांचा विरोध आहे। म्हणून माझी विनम्रपणे विनंती आहे भारत सरकारला की घाई घाई करू नका, हे बिल जर त्यांची इच्छा असेल तर आम्ही विरोध करू, पण त्याच्यातून शेवटी बिल आली की त्याच्यावर चर्चा झाली पाहिजे, ही मागणी आहे आमची।
1: अब सवाल ये है कि क्या इन मुद्दों पर संसद चलेगी? बता दें कि संसद के मानसून सत्र के अंतिम चरण में कांग्रेस ने 10 से 12 अगस्त के लिए अपने सांसदों को व्हिप जारी कर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को कहा है। एनडीए के सभी सांसदों को सोमवार से दिल्ली में ही रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। सवाल वही है कि क्या संसद की कार्यवाही के बचे 4 दिन टकराव वाले होंगे या सदन शांति से चलेगा। आज तक ब्यूरो।
6: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। रविवार को छात्रों और सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत हुई। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगों पर सहमति बन गई है। अब छात्रों के अनुसार सरकार ने जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने पर सहमति जताई है, लेकिन जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर अभी गतिरोध बना है। सरकार का कहना है कि सीजीएल परीक्षा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत कराई गई थी, इसलिए उसे रद्द करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। उधर छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है और सोमवार को शांतिपूर्ण विधानसभा घेराव की तैयारियां हैं। इसे देखते हुए राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं छात्रों के प्रदर्शन चल रहे हैं और इस बीच में जेपीएससी में भी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, बड़ा बदलाव हुआ है। आयोग के 3 सदस्य अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनिमा हसंदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तीनों का इस्तीफा राज्यपाल ने मंजूर भी कर लिया है।
7: हम सभी डेलीगेशन जो जा रहे हैं सरकार से अपना व्यक्तिगत मांग थोड़े मांग रहे हैं, झारखंड के संपूर्ण छात्रों का मांग मांग रहे हैं। तो सुझाव और मांग हम लोग का दोनों उनके पास है। ये सुझाव ईमेल आईडी जारी करना, वेबसाइट जारी करना, ये खेला सरकार का हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी सरकार का ये काम करने का तरीका है। हम सभी छात्र हैं, अभी भी यही हम मांग करते हैं कि हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। अब जब सरकार को पता है

0: कि पेपर लीक हुआ है, साक्ष उसके पास है, तो सरकार सबसे पहले एग्जाम को रद्द करे, बाद में जब सेलेक्टेड कैंडिडेट कोर्ट जाएंगे तो सरकार वहाँ डिफीट करे कि जी बिल्कुल एग्जाम रद्द हुई थी, उस टाइम हम लोगों से मिस्टेक हुई, साक्ष जो सो भरपूर मात्रा में नहीं दे सके, अभी हमारे पास साक्ष है, एग्जाम को रद्द होनी चाहिए।
1: पुनः अपील करता हूँ कि जब सरकार आपकी सारी बातों को मानने को तत्पर है तो आपका आंदोलन में जाना कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं है, अभी भी समय है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि छात्र हठधर्मिता छोड़ें, इस बात की जिद को छोड़ें कि आंदोलन के जरिए ही हासिल होगा। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में संवाद के रास्ते ही समाधान निकलता है। आंदोलन उस परिस्थिति में होता है जब आपकी बातें सुनी न जा रही हों, जब सरकार आपकी बातें सुन रही है, सरकार के नुमाइंदे आपसे लगातार बातों को कर रहे हैं, तो फिर वैसी स्थिति में आंदोलन की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से छात्रों से अपील करते हुए यह जरूर कहना चाहूँगा कि कल के आंदोलन को स्थगित करते हुए वो वार्ता और समाधान के रास्ते पर वापस लौटें। सरकार उनकी लगभग सारी मांगों को मानने को तैयार है और उनकी जायज मांगों के साथ सरकार खड़ी है। हम भी यह मानते हैं कि 14वीं जेपीएससी में TDPL के द्वारा जो गलतियां की गई हैं, उन गलतियों का खामियाजा दोषियों को भुगतना होगा। हेमंत सोरेन की सरकार कठोरतम कार्रवाइयों से पीछे नहीं रहेगी और आने वाले दिनों में ये राज्य नज़ीर प्रस्तुत करेगा कि हमने अपनी परीक्षा व्यवस्था, परीक्षा की प्रणाली को किस तरीके से सुदृढ़ किया है कि ऐसे सवाल न उठ सकें।
2: रांची में एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, दूसरी ओर छात्रों को मनाने की कोशिश हो रही है। छात्रों को मनाने के लिए आज तीसरे दौर की बातचीत भी हुई। अब तक चार ग्रुप सामने आए हैं, देवेंद्र महतो गुट और अभ्यर्थी न्याय मंच, ये दोनों गुटों ने धरना की शुरुआत की थी। इसके बाद इसमें JKLM नाम से एक छात्र गुट जुड़ा और जो सबसे नया संगठन इसमें शामिल हुआ है वो है AISA, आइसा यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन। इसके अलावा पॉलिटिकल संगठनों के स्टूडेंट विंग्स हैं जो आंदोलन को खुलकर या फिर बैकडोर से सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है ये भी समझिए। इतने ग्रुप हैं तो हर ग्रुप से अलग अलग बातचीत की जा रही है। चार मंत्री सरकार की ओर से बातचीत में शामिल हैं। ये बातचीत का तीसरा राउंड था। आंदोलनकारियों की मांग है कि आश्वासन नहीं समाधान चाहिए। इसी समाधान के लिए आज छात्र नए पोस्टर के साथ नजर आए।
3: SPC, JS, SC, CGL परीक्षाओं में अनियमितताओं की कहानियां कितनी हैं, उसको भी छात्रों ने अपने तरीके से कहा है। बहुत लोग इन बारे में नहीं जानते, मसलन CID जो जांच कर रही है उसको लेकर के छात्रों ने कुछ सवाल पूछे हैं। सवाल ये कि कार्यवाही अगर हुई तो CGL में चुप्पी क्यों है, क्यों अभय तिवारी, उसकी पत्नी, उसके भाई तीनों चयनित हुए तो JSSC कार्यालय में CGL आयोजित करने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी पर कोई छापेमारी क्यों नहीं, ये CID जांच है, उसे छात्र सवाल पूछ रहे हैं। अभय तिवारी की पत्नी एवं भाई से अब तक कोई पूछताछ कार्यवाही क्यों नहीं हुई है, अभय तिवारी पत्नी उसके भाई के CGL में चयन के संबंध में CID ने अब तक क्या जांच की, इसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई और JSSC के अध्यक्ष सचिव परीक्षा नियंत्रक से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की गई। कॉमन सवाल यह है कि एक ही व्यक्ति दो अलग अलग जांच क्यों, JSSP में गिरफ्तारी छापेमारी लेकिन CGL में न छापेमारी न पूछताछ न कार्यवाही, ये क्यों नहीं हो रही है। ये कई सारे इस जांच को लेकर के दरअसल इसीलिए वो भरोसे की कमी है कि छात्र कहते हैं कि अब CBI की जांच हो। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर पहले SSC CGL की परीक्षा रद्द, फिर दोषों पर कार्यवाही। उन्होंने लिखा है कई छात्र सामूहिक, उन्होंने तस्वीरें भी लगाई कि नेपाल ले जाकर प्रश्न उत्तर हटाने के पुख्ता सबूत मिले, मास्टरमाइंड अभय तिवारी परीक्षा में दूसरा रैंक आता है, CGL चयनित कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में गिरफ्तारी हुई, नेपाल कांड में CID की टीम ने 120 उत्तर मैच होने की पुष्टि की।
2: छात्रों का उत्साहवर्धन करने के लिए अभिनेता पीयूष मिश्रा भी आज आंदोलन में पहुंचे। 16 दिन से छात्र आंदोलन कर रहे हैं लेकिन अब तक समाधान नहीं निकला है। अलबत्ता CM हेमंत सोरेन छात्रों से अपील कर रहे हैं कि वो किसी के बहकावे में ना आएं।
4: राजनीतिक दलों के लिए एक रास्ता बनता है जहां युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने का। मैं विशेष रूप से नौजवानों से कहूंगा, न हमारी राजनीतिक छत्र छाया की आपको आवश्यकता है, न किसी और राजनीतिक दल की छत्र छाया की आपको आवश्यकता है। आप छात्र हैं, आपका अधिकार है और आपका अधिकार आपको मिले, आपको न्याय मिले, ये काम करने की जिम्मेवारी सरकार की है जो पूरा होगा।
2: इंतजार है उस पल का जब छात्र आंदोलन का सरकार समाधान निकालेगी। रांची से सत्यजीत और आशुतोष के साथ आज तक ब्यूरो।
5: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर नॉर्थ 24 परगना में हमला किया गया। ममता बनर्जी पर पत्थर और चप्पल फेंकी गई। इस हमले के बाद ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के गुंडों ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की है, जबकि बीजेपी ने दो टूका कि ऐसे हमलों से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है।
3: पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी नॉर्थ 24 परगना के बिजपुर में थी। अचानक भीड़ का एक जत्था उनके काफिले पर टूट पड़ा। किसी ने पत्थर फेंके, किसी ने कीचड़ फेंका और किसी ने चप्पल फेंकी। थोड़ी दूर के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है।
6: मेरे को गाड़ी में बड़े बड़े पत्थर मारा गया, बाहर से एंटी सोशल पुलिस का सामने में इतना गाड़ी को अटक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस के सामने में हुआ, हम कभी ऐसा हमला नहीं
7: देखा।
6: पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है।
3: टीएमसी बीजेपी पर हमलावर है। टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के लोगों ने ममता बनर्जी को निशाना बनाया, उन्होंने ममता बनर्जी पर जानलेवा हमला किया।
8: बीजेपी पीपल्स वर थ्रोइंग बिग स्टोन्स बिग स्टोन्स टू द इनटू द कार इटसेल्फ एंड कंटीन्यूअसली दी स्टोन्स वर थ्रोन।
3: टीएमसी के सांसद कह रही हैं कि वो प्रत्यक्ष गवाह हैं जिस समय हमला हुआ। वो बताती हैं कि हमला करने वाले सिर्फ बीजेपी के लोग नहीं थे बल्कि पुलिस वालों ने भी हमला किया।
9: पुलिस और बीजेपी की गूंज वो इकट्ठा होके इतने सारे ईंट फेंका, ब्रिक्स फेंका, पत्थर फेंका, सोचा नहीं जाता। हम चार थे, एक छोटी सी लड़की और दीदी कोल्लंद और हम। ये 163 BNS भी तोड़े नहीं हम। अगर उधर नहीं है 163, उधर 144 जो हम बोलते थे वो नहीं है, फिर भी हम बोल रहे हैं हम तोड़े नहीं। एक गाड़ी जा रहा था, दूसरा कोई गाड़ी भी नहीं था, फिर भी ये हालत।
3: लेकिन बीजेपी इस हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बता रही है। बंगाल सरकार के मंत्री कह रही हैं कि इस तरह का हमला करना बीजेपी की संस्कृति नहीं है।
10: मारना, पकड़ना, कादा फेंकना, काली फेंकना, जूता का चप्पल फेंकना, ये हमारा संस्कृति नहीं हो सकता है। ये भाजपा का संस्कृति नहीं है। हो सकता है ममता बनर्जी बहुत कुछ किए है, बहुत दोष किए है, लेकिन हम तो ये समर्थन कभी नहीं कर सकते। वो भी एक महिला और वो भी इतना उम्र के महिला।
3: बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि टीएमसी बेवजह बीजेपी पर आरोप लगा रही है क्योंकि इस हमले में दूर दूर तक बीजेपी का कोई रोल नहीं है।
11: ममता बनर्जी के गाड़ी के ऊपर कीचड़ फेंकना, पत्थर फेंकना, चप्पल फेंकने का साथ दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी का कोई संपर्क नहीं है। और तृणमूल हम लोगों को सिखाने माता है ये क्या हो रहा है। ये तृणमूल और तृणमूल का लड़ाई है, जनता और तृणमूल का लड़ाई है।
3: जब से पश्चिम बंगाल में सरकार बदली है तब से टीएमसी के नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं और अब ममता बनर्जी भी इससे अछूती नहीं रही। सवाल यह है कि सरकार इन हमलावरों को रोकने में असमर्थ क्यों है। आज तक ब्यूरो।
5: सावन के पावन महीने में भगवान भोलेनाथ के भक्तों की आस्था के अद्भुत रंग दिख रहे हैं। हरिद्वार में इन दिनों एक से बढ़कर एक अनोखे कांवड़ देखने को मिल रहे हैं। पूरे कांवड़ मार्ग पर आस्था की रौनक बिखरी है और बड़ों के साथ साथ इस बार कम उम्र के कांवड़िए भी जोश दिखा रहे हैं।
2: भक्ति का उत्साह, आस्था का समंदर, भोलेनाथ के जयकारे और कांधे पर कांवड़। सावन के पावन महीने में पूरे कांवड़ मार्ग पर शिव भक्तों की आस्था का अद्भुत नजारा दिख रहा है। कांवड़ में गंगा जल भरकर भोले के भक्त शिवालयों की तरफ बढ़ चुके हैं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा मार्ग पर इन दिनों एक से बढ़कर एक कांवड़ झांकियां दिख रही हैं। सावन के महीने की शुरुआत में तो इस मार्ग पर पैदल चलने वाले कांवड़ियों की भरमार दिख रही थी, लेकिन अब पैदल कांवड़ियों के साथ साथ कांवड़ की विशाल झांकियां सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं। हर झांकी अपने आप में अनूठी है और भगवान शिव में गहरी आस्था की एक नई कहानी कह रही है। कहीं भगवान शिव को काल भैरव के रूप में दिखाया गया है तो कहीं बजरंग बली को शिव भक्ति में लीन दिखाया गया है। एक कांवड़ झांकी में अयोध्या के श्री राम मंदिर का स्वरूप झलक रहा है तो एक झांकी में भगवान शिव के आदि योगी स्वरूप की आभा दिख रही है। एक झांकी में भगवान के नरसिंह के अवतार की झलक मिल रही है तो एक झांकी में भगवान शिव और माँ काली का रूप सुशोभित है। इस कांवड़ में दशानन ने महादेव को अपने सिर पर उठा रखा है।
7: भोले बाबा की इच्छा पे आए थे, मन किया था आ गए कांवड़ लेने।
12: पहले भी आ चुके
7: हो? हाँ, तीसरा साल है मेरे, 18वीं कांवड़ है हमारी।
12: मांगा था जो पूरा हुआ है?
7: सब दे रखा भोले बाबा ने, मांगेंगे क्या।
12: यही है, घर वाले सही रहे और अपने जो भाई थे वो खुश रहे। पहले भी कभी ले गए? हाँ पहले भी, पूरी हुई।
2: फरीदाबाद के इन दो भाइयों ने भी ऐसी ही आस्था की मिसाल पेश की है। एक ने कांवड़ में 110 लीटर जल लिया है तो दूसरे ने 81 लीटर। दोनों ने 16 जून को अपनी कांवड़ यात्रा शुरू की थी और पिछले करीब 50 दिनों से ये दोनों निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। भोलेनाथ के इन भक्तों में उम्र का कोई दायरा नहीं है, बड़ों के साथ साथ इस कांवड़ यात्रा में छोटे बच्चे भी शामिल हैं। 5 बच्चों की इस टोली में सबसे छोटी बच्ची 9 साल की है। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना अत्यंत फलदायी मानी गई है और शिव भक्तों ने अपनी इस कांवड़ साधना से जता दिया है कि इस पावन महीने में उनके लिए भोलेनाथ की आस्था से बड़ा कुछ भी नहीं। आज तक ब्यूरो।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय पदक विजेताओं से मुलाकात की। उन्होंने खिलाड़ियों के साथ चाय पर चर्चा की।

0: कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक वीरों से मिले मोदी, चैंपियन से सुनी संघर्ष की कहानी, बढ़ाया हौसला। ये मुलाकात खास थी, ये मुलाकात थी उन चेहरों के साथ जिन्होंने सालों की मेहनत के बाद देश का मान बढ़ाया था। कॉमनवेल्थ गेम्स में तिरंगे की शान बढ़ाने वाले पदक वीरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और चैंपियंस के साथ चाय पर खूब चर्चा हुई।
1: चीयर फॉर भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की
0: जय। इस दौरान हौसला बढ़ाने वाली गंभीर बातें भी हुई तो हल्के फुल्के लम्हे भी दिखाई दिए। खिलाड़ी पहले से ही पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए काफी उत्साहित थे। इस बार ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ियों ने 39 मेडल अपने नाम किए, जिनमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे। इस प्रदर्शन के साथ भारत मेडल टैली में चौथे पायदान पर रहा। अगले कॉमनवेल्थ गेम्स उस शहर में होने हैं जो अरसे तक पीएम नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि रहा है। अब 2030 में भारत का दोहरा इम्तिहान अहमदाबाद में होगा, शानदार मेजबानी करने का और ढेरों मेडल जीत कर तिरंगे की शान एक बार फिर बढ़ाने का। आज तक ब्यूरो
2: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: सो सॉरी।

रांची में छात्रों के प्रदर्शन का आज सत्रहवां दिन, सरकार से नहीं कामयाब हुई वार्ता। अब आज सुबह 10 बजे विधानसभा मार्च की तैयारी, छात्रों ने रखी सभी मांगे माने जाने की शर्त। मॉनसून सत्र के आखिरी चार दिन अहम, आज लोकसभा में पेश हो सकते हैं चार बिल, परिसीमन और एफसीआरए पर तनातनी जारी, कांग्रेस एसपी ने जारी किया व्हिप। उत्तरी 24 परगना में ममता के काफिले पर हमला, पूर्व सीएम का बीजेपी पर गंभीर आरोप, केजरीवाल ने भी उठाए सवाल, मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले कि ये जनता का आक्रोश। अयोध्या के राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ पद की कवायद तेज, आज और 12 अगस्त को इंटरव्यू, 2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक में नाम पर फाइनल फैसला। पवित्र महीने सावन का आज दूसरा सोमवार, सुबह से शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, जलाभिषेक और विशेष पूजा अर्चना के लिए चल पड़े हैं कांवड़िए।

0: सुबह के 6 बज चुके हैं और इस वक्त की पहली अहम खबर झारखंड के रांची से सामने आ रही है, जहां पर जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। दरअसल रविवार को छात्रों और सरकार के बीच तीसरे दौर की वार्ता हुई है। सरकार का दावा है कि छात्रों की करीब 98% मांगों पर सहमति बन गई है। वहीं छात्रों के अनुसार सरकार ने जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने पर सहमति जताई है, लेकिन जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर अभी भी गतिरोध बना हुआ है। सरकार का कहना है कि सीजीएल परीक्षा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत कराई गई थी, इसलिए इसे रद्द करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। उधर छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का फैसला किया ऐलान किया है और आज शांतिपूर्ण विधानसभा घेराव की तैयारी भी की है। सुबह 10 बजे प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा मार्च करेंगे और इसे देखते हुए राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। इस बीच जेपीएससी में बड़ा प्रशासनिक बदलाव भी हुआ। आयोग के 3 सदस्य अजीत भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनिमा हंसदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और तीनों का इस्तीफा राज्यपाल ने मंजूर भी कर लिया है।
1: हम सभी डेलीगेशन जो जा रहे हैं सरकार से अपना व्यक्तिगत मांग थोड़े मांग रहे हैं, झारखंड के संपूर्ण छात्रों का मांग मांग रहे हैं। तो सुझाव और मांग हम लोग का दोनों उनके पास है। ये सुझाव ईमेल आईडी जारी करना, वेबसाइट जारी करना, ये खेला सरकार का हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी सरकार का ये काम करने का तरीका है। हम सभी छात्र है अभी भी यही हम मांग करते हैं कि हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। अब जब सरकार को पता है कि पेपर लीक हुआ है, साक्ष्य उसके पास है, तो सरकार सबसे पहले एग्जाम को रद्द करे। बाद में जब सिलेक्टेड कैंडिडेट कोर्ट जाएंगे तो सरकार वहाँ डिफीट करे कि जी बिल्कुल एग्जाम रद्द हुई थी, उस टाइम हम लोगों से मिस्टेक हुई, साक्ष्य जो सो भरपूर मात्रा में नहीं दे सके, अभी हमारे पास साक्ष्य, एग्जाम को रद्द होनी चाहिए।
2: मैं पुनः अपील करता हूं कि जब सरकार आपकी सारी बातों को मानने को तत्पर है तो आपका आंदोलन में जाना कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं है। अभी भी समय है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि छात्र हठधर्मिता छोड़ें, इस बात की जिद को छोड़ें कि आंदोलन के जरिए ही हासिल होगा। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में संवाद के रास्ते ही समाधान निकलता है। आंदोलन उस परिस्थिति में होता है जब आपकी बातें सुनी ना जा रही हों। जब सरकार आपकी बातें सुन रही है, सरकार के नुमाइंदे आपसे लगातार बातों को कर रहे हैं, तो फिर वैसी स्थिति में आंदोलन की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से छात्रों से अपील करते हुए यह जरूर कहना चाहूंगा कि कल के आंदोलन को स्थगित करते हुए वो वार्ता और समाधान के रास्ते पर वापस लौटें। सरकार उनकी लगभग सारी मांगों को मानने को तैयार है और उनकी जायज मांगों के साथ सरकार खड़ी है। हम भी यह मानते हैं कि 14वीं जेपीएससी में TDPL के द्वारा जो गलतियां की गई हैं, उन गलतियों का खामियाजा दोषियों को भुगतना होगा। हेमंत सोरेन की सरकार कठोरतम कार्रवाइयों से पीछे नहीं रहेगी और आने वाले दिनों में ये राज्य नज़ीर प्रस्तुत करेगा कि हमने अपनी परीक्षा व्यवस्था, परीक्षा की प्रणाली को किस तरीके से सुदृढ़ किया है कि ऐसे सवाल न उठ सकें।
3: रांची में एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, दूसरी ओर छात्रों को मनाने की कोशिश हो रही है। छात्रों को मनाने के लिए आज तीसरे दौर की बातचीत भी हुई। अब तक 4 ग्रुप सामने आए हैं, देवेंद्र महतो गुट और अभ्यर्थी न्याय मंच, ये दोनों गुटों ने धरना की शुरुआत की थी। इसके बाद इसमें JKLM नाम से एक छात्र गुट जुड़ा और जो सबसे नया संगठन इसमें शामिल हुआ है वो है AISA, आईसा यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन। इसके अलावा पॉलिटिकल संगठनों के स्टूडेंट विंग्स हैं जो आंदोलन को खुलकर या फिर बैकडोर से सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है ये भी समझिए। इतने ग्रुप हैं तो हर ग्रुप से अलग अलग बातचीत की जा रही है। 4 मंत्री सरकार की ओर से बातचीत में शामिल हैं। ये बातचीत का तीसरा राउंड था। आंदोलनकारियों की मांग है कि आश्वासन नहीं समाधान चाहिए। इसी समाधान के लिए आज छात्र नए पोस्टर के साथ नजर आए।
4: SPC, JSSC, CGL परीक्षाओं में अनियमितताओं की कहानियां कितनी हैं, उसको भी छात्रों ने अपने तरीके से कहा है। बहुत लोग इन बारे में नहीं जानते, मसलन CID जो जांच कर रही है उसको लेकर के छात्रों ने कुछ सवाल पूछे हैं। सवाल ये कि कार्रवाई अगर हुई तो सीजीएल में चुप्पी क्यों है? क्यों अभय तिवारी, उसकी पत्नी, उसके भाई तीनों चयनित हुए तो जेएसएससी कार्यालय में सीजीएल आयोजित करने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी पर कोई छापेमारी क्यों नहीं? ये सीआईडी जांच है, उसे छात्र सवाल पूछ रहे हैं। अभय तिवारी की पत्नी एवं भाई से अब तक कोई पूछताछ कार्यवाही क्यों नहीं हुई है? अभय तिवारी, पत्नी, उसके भाई के सीजीएल में चयन के संबंध में सीआईडी ने अब तक क्या जांच की, इसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? और जेएसएससी के अध्यक्ष सचिव परीक्षा नियंत्रक से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की गई? कॉमन सवाल यह है कि एक ही व्यक्ति दो अलग अलग जांच क्यों? जेएसएसपी में गिरफ्तारी, छापेमारी, लेकिन सीजीएल में न छापेमारी, न पूछताछ, न कार्यवाही, ये क्यों नहीं हो रही है? ये कई सारे इस जांच को लेकर के दरअसल इसीलिए वो भरोसे की कमी है कि छात्र कहते हैं कि अब सीबीआई की जांच हो। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर पहले एसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द, फिर दोषों पर कार्यवाही। उन्होंने दिखाया कई छात्र सामूहिक, उन्होंने तस्वीरें भी लगाई कि नेपाल ले जाकर प्रश्न उत्तर हटाने के पुख्ता सबूत मिले। मास्टरमाइंड अभय तिवारी परीक्षा में दूसरा रैंक आता है। सीजीएल चयनित कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में गिरफ्तारी हुई। नेपाल कांड में सीआईडी की टीम ने 120 उत्तर मैच होने की पुष्टि की।
3: छात्रों का उत्साह वर्धन करने के लिए अभिनेता पीयूष मिश्रा भी आज आंदोलन में पहुंचे। 16 दिन से छात्र आंदोलन कर रहे हैं लेकिन अब तक समाधान नहीं निकला है। अलबत्ता सीएम हेमंत सोरेन छात्रों से अपील कर रहे हैं कि वो किसी के बहकावे में ना आएं।
5: राजनीतिक दलों के लिए एक रास्ता बनता है जहां युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने का। मैं विशेष रूप से नौजवानों से कहूंगा, न हमारी राजनीतिक छत्र छाया की आपको आवश्यकता है, न किसी और राजनीतिक दल की छत्र छाया की आपको आवश्यकता है। आप छात्र हैं, आपका अधिकार है, और आपका अधिकार आपको मिले, आपको न्याय मिले, ये काम करने की जिम्मेवारी सरकार की है जो पूरा होगा।
3: इंतजार है उस पल का जब छात्र आंदोलन का सरकार समाधान निकालेगी। रांची से सत्यजीत और आशुतोष के साथ आज तक ब्यूरो।
0: तो ये मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही संसद के दोनों सदनों में हंगामा और सिर्फ हंगामा देखने को मिल रहा है। सदन में चर्चा कम और हंगामा ज्यादा हुआ। मॉनसून सत्र में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। सवाल यही है कि आज जब संसद के दरवाजे खुलेंगे तो चर्चा होगी या एक बार फिर से सिर्फ हंगामा देखने को मिलेगा। सवाल यह भी है कि सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध आखिर खत्म कैसे होगा।
6: सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है।
3: पीएम ने कहा जरूर था कि सरकार बहुमत से चलती है और देश सर्वसम्मति से, मगर देश चलाने वाली संसद खुद नहीं चल पा रही है। नारेबाजी, पोस्टरबाजी, विरोध प्रदर्शन और हंगामा, तारीखें बदलती गईं लेकिन हालात नहीं बदले। दिन गुजरे मगर विवाद नहीं, जस का तस वो अपनी जगह यथावत रहा। संसद के मानसून सत्र के 3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी सरकार और विपक्ष के बीच सहमति का पुल नहीं बन रहा, और जब संसद में संवाद रुकता है तो सिर्फ सदन की कार्यवाही नहीं रुकती, देश की रफ्तार में भी जैसे एक रोड़ा खड़ा होता है। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का दरवाजा मानसून सत्र में कल फिर खुलेगा, लेकिन संसद चलेगी या नहीं इस पर सस्पेंस है। यह सस्पेंस इसलिए है क्योंकि विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जिन मांगों को लेकर है, उनमें पहली मांग तो यही है कि जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन में छात्रों पर जिस तरह से लाठियां चलाई गई, छात्रों के साथ जिस तरह से बर्बरता की गई, उस पर अमित शाह जवाब दें।
7: द सो कॉल्ड होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री डज नॉट हैव द करेज टू कम एंड सिट हियर।
3: विपक्ष कहता है कि अमित शाह सदन में आए और जवाब दें कि छात्रों पर लाठी चार्ज करने का आदेश किसने दिया।
8: क्या आपको लगता है सदन में आएंगे गृहमंत्री? आप लोग बात कर रहे हैं, 4 दिन बचे हैं सदन में।
9: लगता तो नहीं है, मुझे लगता है कि वो आने से डर रहे हैं, किसी वजह से नहीं आ रहे हैं। आना चाहिए, जवाब देना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए, इसमें क्या बात है? कुछ हुआ है, गलत हुआ है तो जिम्मेदारी लीजिए।
3: विपक्ष सवाल करता है और जवाब में सरकार कहती है कि विपक्ष सिर्फ हंगामा कर रहा है, अमित शाह लगातार अपना काम कर रहे हैं।
10: ये लोग हंगामा करके गायब हो जाते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह जी सुबह सुबह पार्लियामेंट में आते हैं और देर रात को ही वापस आते हैं, दिन भर वो पार्लियामेंट में ही रहते हैं। ये नारा लगाने का जो तरीका है वो गलत है। और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर अमित शाह वो इंसान है जिसका नाम सुन करके सारे आतंकवादी उग्रवादी कांप उठते हैं। जिस दिन यहाँ चर्चा शुरू होगी, गृह मंत्री अमित शाह का जब यहाँ जवाब होगा, आप लोग सुन नहीं पाएगा। आप लोग क्या होम मिनिस्टर का नाम लेते हो?
3: विपक्ष कहता है कि अगर पीएम और अमित शाह संसद में नहीं आएंगे तो चर्चा कैसे होगी।
11: मांग यही है, प्रधानमंत्री सदन में आए, होम मिनिस्टर सदन में आए, अपना बयान दे, डिस्कशन हो जाए। वी आर रेडी टू टेक डिस्कशन। अगर डिस्कशन हुआ तो इस हल निकलेगा ना। अगर डिस्कशन नहीं है तो वो घर में बैठ के बात करेंगे, घर में सो जाएंगे। ये कैसा हो जाता है? ये पार्लियामेंट्री है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये अंदर आना नहीं चाहते। इतने दिन हो गए पार्लियामेंट शुरू होके, अंदर आके बयान देने को इनको क्या हो गया? ये क्या मुखे है, बहरे है, क्या है?
3: सरकार कह रही है कि सरकार अपना काम कर रही है। अगर काम नहीं कर रही होती तो संसद में वंदे मातरम से जुड़े कानून, एंटी पेपर लीक संशोधन, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 नहीं पास होता। रही बात अमित शाह के बोलने की, तो कौन सा मंत्री कब बोलेगा, किस विषय पर बोलेगा, ये विपक्ष नहीं तय करेगा।
12: कौन सा मंत्री कब बोलेंगे, किस विषय पे बोलेंगे, ये सदन तय करता है चेयरमैन के अप्रूवल से। और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी में कौन सा मिनिस्टर किस विषय पे बोलना है ये सरकार तय करता है। वो ऑपोजिशन तय नहीं कर सकते कि कौन सा मंत्री कब बोलना चाहिए।
3: संसद का एक एक मिनट कीमती है। कानून बन सकता है, नीति पर बहस हो सकती है, किसी नागरिक की समस्या सदन तक पहुंच सकती है, किसी फैसले की कमियां सामने आ सकती हैं और किसी बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा तय हो सकती है। लेकिन ये कीमती समय नारेबाजी और प्रदर्शन में बीता जा रहा है।
12: ये ऑपोजिशन वाला ही खुद हाउस नहीं चलाते हैं, वो बाहर पर नारा लगा रहे हैं, तो गलत बात है ना। ऐसा कोई नहीं देखा, हाउस बिजनेस पास कर रहे, बिल पास कर रहे, राज्यसभा में तो अच्छा से चर्चा करके बिल पास कर रहे हैं। कांग्रेस और एक दो साथी लोग वॉकआउट कर रहे हैं या हंगामा कर रहे हैं, लेकिन बिल तो पास हो रहे हैं और चर्चा में लोग हिस्सा भी ले रहे हैं और कई एमपीस ने अपना मत रखा है। अच्छा बात है, कांग्रेस का ही नुकसान है।
3: बात सिर्फ इतनी नहीं है कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू राहुल गांधी से करीब 3 बार बात कर चुके हैं, उनसे आग्रह कर चुके हैं कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलनी चाहिए, सरकार हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है।
12: राहुल गांधी जी से मेरा अच्छा बात हुआ और एक विषय हमने रिक्वेस्ट किया है और बाकी विषय में भी बात किया है। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टी से हम लगातार बातचीत करते रहे और तालमेल करके काम करें। हम एक दूसरे के विरोधी हैं, दुश्मन तो नहीं है ना, तो देश हित में हम सब मिलकर काम करें। लेकिन ऐसा चित्र दिखाते हैं बाहर में कि हम बिल्कुल पार्लियामेंट चलने ही नहीं देंगे, तो इसका नुकसान किसका होगा?
3: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 से शुरू होकर 13 अगस्त 2026 तक चलेगा। अब सत्र अपने अंतिम दौर में है, अब सिर्फ 4 दिन की संसद की कार्यवाही और चलेगी। अब सवाल यही है कि क्या इन 4 दिनों में संसद बगैर हंगामे के चल पाएगी? आज तक ब्यूरो।
0: राहुल गांधी और पूरा विपक्ष सिर्फ अमित शाह का जवाब नहीं मांग रहा, बल्कि वो परिसीमन बिल, महिला आरक्षण, चढ़ावा चोरी और FCRA को लेकर भी हमलावर है। सवाल यह है कि क्या इन मुद्दों पर सरकार के साथ विपक्ष की चर्चा होगी या एक बार फिर से सदन हंगामे की भेंट चढ़ेगा?
13: यह परंपरा का अनुकूल नहीं है, यह ठीक नहीं है आपका व्यवहार।
3: संसद के दरवाजे तो खुलते हैं मगर उसके बाद शुरू हो जाता है हंगामा, और हंगामा सिर्फ इस बात का नहीं कि अमित शाह जवाब नहीं दे रहे हैं।
14: अगर आप
3: ये तस्वीरें देखिए, पेपर लीक के बाद अगर सबसे ज्यादा अगर किसी मुद्दे पर हंगामा बरपा है तो वो है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा। विपक्ष ऐसे ही रोज प्रदर्शन कर रहा है। विपक्षी सांसद तख्तियों पर चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ के स्लोगन लिख कर आते हैं, साथ में दान पात्र लाते हैं और फिर विपक्षी सांसद इस दान पात्र में दान डालकर सरकार का विरोध करते हैं।
15: दान पात्र में चोरी महापाप। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके स्थान पर किस तरीके से उंगली उठ जाए लोग। और एसआईटी के बाद एसआईटी गठन, हमारा मानना तो इतना ही है कि लखनऊ वाली एसआईटी ने छोटे खुलासा किए, अब जो बड़ी एसआईटी बन रही है बड़े खुलासा करेगी।
3: चढ़ावा चोरी के अलावा भी कई मुद्दे हैं जिन पर हंगामा बरपा है। इनमें परसीमन, महिला आरक्षण बिल और एफसीआरए हैं। पहले बात परसीमन की। परसीमन के लिए सबसे बड़ा अड़ंगा दक्षिण से है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना परसीमन बिल का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन आबादी के आधार पर सीटें बांटेगा। दक्षिणी राज्य जनसंख्या कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं, इसका मतलब है कि उत्तर के राज्यों को ज्यादा सीटें मिलेगी, दक्षिण को कम। दक्षिण राज्यों का कहना है कि हमने जनसंख्या नियंत्रण किया तो हमें सजा क्यों मिले। उधर कांग्रेस कह रही है कि 543 सांसद तो संभाले नहीं जाते, 850 सांसद कैसे संभालेंगे।
16: आप महिला आरक्षण करना चाहते हैं, 543 में से आप महिला आरक्षण कर दीजिए, एक तिहाई दे दीजिए। भाई 543 पे तो लोकसभा चलती नहीं, 850 करके क्या आप इसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना बनाना चाहते हैं?
3: कांग्रेस शंकित है कि परसीमन के नाम पर सरकार छल कर रही है।
11: डेमोक्रेसी में हम किसी के हाथ बंद नहीं सकते हैं और उनके विचार को भी हम रोक नहीं सकते हैं। वो उनके विचार दौड़ते रहता उनके माइंड में, वो किसी को पता नहीं चलता। बाकी के चीजें जो फिजिकली हम करते हैं हमको पता चलता है कौन कैसा है, क्या है, कौन लंगड़ा है, कौन ऊंचा है, कौन अंधा है, कौन काना है, बहरा है, मालूम होता है। लेकिन जो विचार है, जो क्या भागते हैं उनके मन में है, ये मालूम नहीं होता। जब वो एक्ट करेंगे तभी मालूम होगा। लेकिन हमारी स्थिति स्पष्ट है कि सभी दल के लोग मिलकर जो निर्णय लेंगे उसी के तहत हम चलेंगे।
3: डिलिमिटेशन को लेकर सरकार अपनी मंशा साफ कर रही है कि डिलिमिटेशन होगा तो सीटें बढ़ेंगी और जो सीटें बढ़ेंगी उन पर महिला उम्मीदवार चुनकर आएंगी। इस तरह से ये महिलाओं के लिए बेहतर है, लेकिन विपक्ष को इसमें सरकार का खोट नजर आता है।
17: डिलिमिटेशन पर हमारे विचार बड़े स्पष्ट। डिलिमिटेशन देश हित में नहीं, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। फिर से अगर हमारा तो सवाल ये है, 2023 में जो पारित हुआ था महिला आरक्षण विधेयक, वो रुका क्यों है? अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ? उसे लागू करें कम से कम 2029 में, आज की तारीख से लागू कर दें, कोई आपत्ति नहीं होगी। 542 की जो स्ट्रेंथ है लोकसभा में, उसमें एक तिहाई महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करें, हम साथ देंगे। लेकिन महिला आरक्षण इनकी नीत है ना नियत है, ये उसकी आड़ में डिलिमिटेशन चाहे।
3: विपक्ष पूछ रहा है कि महिला आरक्षण बिल आज से ही लागू क्यों नहीं किया जा सकता, सरकार को समस्या क्या है?
18: वुमेन रिजर्वेशन बिल आप लोग कम से कम थोड़ा कहा करिए सरकारी पक्ष को भी, कितनी बार पास होगा? जब हम नई इमारत में आए संसद के तो ये बिल पास हुआ, फिर जब पिछली बार डिलिमिटेशन के बहाने इस पर चर्चा हुई तो गजट हुआ विथ इफेक्ट फ्रॉम। तो वुमेन रिजर्वेशन बिल मसला ही नहीं है, अब कल से लागू करो ना, कह दो विथ इफेक्ट फ्रॉम एवरी इलेक्शन नाउ ऑनवर्ड्स। तो ये हकीकत है, इस हकीकत को जितना आप ढकोगे आपकी पॉलिटिक्स उतनी एक्सपोज होती है।
3: लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें लगता है कि डिलिमिटेशन बिल पास होना चाहिए।
19: 50% लेडीज को उनके सीटें मिलेंगी, पंजाब बड़ा सूबा है, एमएलए ज्यादा होंगे, हल्के गांव ज्यादा है, वो छोटे होंगे, कम से कम लोगों के दुख तकलीफ में जो 117 हल्के उससे बढ़कर और आदमी आ जाएंगे, एमपी और बनेंगे, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, थोड़ा सा बोझ कट जाएगा। बहुत आबादी अब हो गई है पंजाब की, सभी स्टेटों के ऐसे हालात बने पड़े हुए।
3: महिला आरक्षण बिल को लेकर भी संसद में गतिरोध चरम पर है, इसके साथ ही एफसीआरए को लेकर भी गहमा गहमी है। हालांकि सरकार की ओर से डिलिमिटेशन और एफसीआरए की कार्यसूची में अभी जिक्र नहीं है, लेकिन विपक्ष सरकार के किसी भी दावों के लिए मुस्तैद है। शरद पवार की पार्टी तो कह रही है कि वो एफसीआरए का विरोध करेंगे।
20: एफसीआरए का जो बिल है
14: ते आत्ताच्या ज्या फॉर्ममध्ये आहे त्याचा त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवारांचा विरोध आहे. म्हणून माझी विनम्रपणे विनंती आहे भारत सरकारला की घाई घाई करू नका. हे बिल जर त्यांची इच्छा असेल तर आम्ही विरोध करू, पण त्याच्यातून शेवटी बिल आली की त्याच्यावर चर्चा झाली पाहिजे, ही मागणी आहे आमची.
3: अब सवाल ये है कि क्या इन मुद्दों पर संसद चलेगी. बता दें कि संसद के मानसून सत्र के अंतिम चरण में कांग्रेस ने 10 से 12 अगस्त के लिए अपने सांसदों को व्हिप जारी कर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को कहा है. एनडीए के सभी सांसदों को सोमवार से दिल्ली में ही रहने के निर्देश भी दिए गए हैं. सवाल वही है कि क्या संसद की कार्यवाही के बचे 4 दिन टकराव वाले होंगे या सदन शांति से चलेगा. आज तक ब्यूरो.
0: चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं. दरअसल पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर नॉर्थ 24 परगना में हमला किया गया. ममता बनर्जी पर पत्थर और चप्पल फेंकी गई है. इस हमले के बाद ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के गुंडे उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बीजेपी ने दो टूक कहा है कि ऐसे हमलों से बीजेपी का कोई भी लेना देना नहीं है.
20: पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी नॉर्थ 24 परगना के बिजपुर में थी. अचानक भीड़ का एक जत्था उनके काफिले पर टूट पड़ा. किसी ने पत्थर फेंके, किसी ने कीचड़ फेंका और किसी ने चप्पल फेंकी. थोड़ी दूर के लिए वहां अफरा तफरी मच गई. अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है.
21: मेरे को गाड़ी में बड़े बड़े पत्थर मारा गया, बाहर से एंट्री सोशल पुलिस का सामने हमको इतना गाड़ी को अटक किया. अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता. ऐसा पुलिस के सामने में हुआ, हम कभी ऐसा हमला नहीं
22: देखा.
21: पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है.
20: टीएमसी बीजेपी पर हमलावर है. टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के लोगों ने ममता बनर्जी को निशाना बनाया, उन्होंने ममता बनर्जी पर जानलेवा हमला किया.
23: बीजेपी पीपल्स वर थ्रोइंग बिग स्टोन्स, बिग स्टोन्स टू द इनटू द कार इटसेल्फ एंड कंटीन्यूअसली द स्टोन्स वर थ्रोन.
20: टीएमसी के सांसद कह रही हैं कि वो प्रत्यक्ष गवाह हैं जिस समय हमला हुआ. वो बताती हैं कि हमला करने वाले सिर्फ बीजेपी के लोग नहीं थे बल्कि पुलिस वालों ने भी हमला किया.
24: पुलिस और बीजेपी की गूंज वो इकट्ठा होके इतने सारे ईंट फेंका, ब्रिक्स फेंका, पत्थर फेंका, सोचा नहीं जाता. हम 4 थे, एक छोटी सी लड़की और दीदी कोलंद और हम. ये 163 BNS भी तोड़े नहीं हम. अगर उधर नहीं है 163, उधर 144 जो हम बोलते थे वो नहीं है, फिर भी हम बोल रहे हैं हम तोड़े नहीं. एक गाड़ी जा रहा था, दूसरा कोई गाड़ी भी नहीं था, फिर भी ये हालत.
20: लेकिन बीजेपी इस हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बता रही है. बंगाल सरकार के मंत्री कह रही हैं कि इस तरह का हमला करना बीजेपी की संस्कृति नहीं है.
25: मारना, पकड़ना, कादर फेंकना, काली फेंकना, जूता का चप्पल फेंकना, ये हमारा संस्कृति नहीं हो सकता है. ये भाजपा का संस्कृति नहीं है. हो सकता है ममता बनर्जी बहुत कुछ किया है, बहुत दोष किया है, लेकिन हम तो ये समर्थन कभी नहीं कर सकते. वो भी एक महिला और वो भी इतना उम्र के महिला.
20: बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि टीएमसी बेवजह बीजेपी पर आरोप लगा रही है क्योंकि इस हमले में दूर दूर तक बीजेपी का कोई रोल नहीं है.
26: ममता बनर्जी के गाड़ी के ऊपर कीचड़ फेंकना, पत्थर फेंकना, चप्पल फेंकने का साथ दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी का कोई संपर्क नहीं है. और तृणमूल हम लोग को सिखाने मत आए ये क्या हो रहा है. ये तृणमूल और तृणमूल का लड़ाई है, जनता और तृणमूल का लड़ाई है.
20: जब से पश्चिम बंगाल में सरकार बदली है तब से टीएमसी के नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं और अब ममता बनर्जी भी इससे अछूती नहीं रही. सवाल यह है कि सरकार इन हमलावरों को रोकने में असमर्थ क्यों है. आज तक ब्यूरो.
0: चलिए यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा. देखते रहिए आज तक.
27: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा.
28: सावन के दूसरे सोमवार पर कैसे मिलेगा भगवान शिव से वरदान, सावन के दूसरे सोमवार पर फूल और पत्तियों से कैसे होगा समस्याओं का समाधान, सावन के दूसरे सोमवार का क्या है पूजा विधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
27: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

0: आज सुबह 10 बजे विधानसभा मार्च की तैयारी, छात्रों ने रखी सभी मांगे माने जाने की शर्त। मॉनसून सत्र के आखिरी चार दिन अहम, आज लोकसभा में पेश हो सकते हैं चार बिल, परिसीमन और एफसीआरए पर तनातनी जारी, कांग्रेस एसपी ने जारी किया व्हिप। उत्तरी 24 परगना में ममता के काफिले पर हमला, पूर्व सीएम का बीजेपी पर गंभीर आरोप, केजरीवाल ने भी उठाए सवाल, मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले कि ये जनता का आक्रोश। अयोध्या के राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ पद की कवायद तेज, आज और 12 अगस्त को इंटरव्यू, 2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक में नाम पर फाइनल फैसला। पवित्र महीने सावन का आज दूसरा सोमवार, सुबह से शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, जलाभिषेक और विशेष पूजा अर्चना के लिए चल पड़े हैं कांवड़ी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ पूजा। अब बात कर लेते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर हो रही सियासत की। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी को घेरा। खड़गे ने कहा है कि राम मंदिर का उद्घाटन ट्रस्ट के मेंबर चुनने तक सब कुछ मोदी ने किया है, तो उन्हें जवाब देना चाहिए कि चोरी आखिर क्यों हुई है।
1: वो देख रेख करने वालों का ट्रस्ट कौन बनाए हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ही बनाया। उद्घाटन कौन किया, उन्होंने किया। पूजा किसने शुरू की, उन्होंने किया। झंडा किसने चढ़ाया राम मंदिर पे, उसने किया। ट्रस्ट के मेंबर्स को सेलेक्ट किसने किया, उसने किया। इसीलिए हमने चाहते हैं कि जब सारी चीजें आप किए हैं तो आप आके सदन में रिप्लाई दो क्यों ऐसा हुआ।
0: तो मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही संसद के दोनों सदनों में हंगामा और सिर्फ हंगामा देखने को मिल रहा है। सदन में चर्चा कम, हंगामा ज्यादा हुआ। मॉनसून सत्र में अब सिर्फ चार दिन बचे हैं। सवाल यही है कि आज जब संसद के दरवाजे खुलेंगे तो चर्चा होगी या एक बार फिर से हंगामा देखने को मिलेगा। सवाल यह भी है कि सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध आखिर खत्म कैसे होगा।
2: सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है।
3: पीएम ने कहा जरूर था कि सरकार बहुमत से चलती है और देश सर्वसम्मति से, मगर देश चलाने वाली संसद खुद नहीं चल पा रही है। नारेबाजी, पोस्टरबाजी, विरोध प्रदर्शन और हंगामा, तारीखें बदलती गई लेकिन हालात नहीं बदले। दिन गुजरे मगर विवाद नहीं, जस का तस, वो अपनी जगह यथावत रहा। संसद के मानसून सत्र के 3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी सरकार और विपक्ष के बीच सहमति का पुल नहीं बन रहा, और जब संसद में संवाद रुकता है तो सिर्फ सदन की कार्यवाही नहीं रुकती, देश की रफ्तार में भी जैसे एक रोड़ा खड़ा होता है। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का दरवाजा मानसून सत्र में कल फिर खुलेगा, लेकिन संसद चलेगी या नहीं, इस पर सस्पेंस है। यह सस्पेंस इसलिए है क्योंकि विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जिन मांगों को लेकर है, उनमें पहली मांग तो यही है कि जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन में छात्रों पर जिस तरह से लाठियां चलाई गई, छात्रों के साथ जिस तरह से बर्बरता की गई, उस पर अमित शाह जवाब दें।
4: द सो कॉल्ड होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री डज नॉट हैव द करेज टू कम एंड सिट हियर।
3: विपक्ष कहता है कि अमित शाह सदन में आए और जवाब दें कि छात्रों पर लाठी चार्ज करने का आदेश किसने दिया।
5: क्या आपको लगता है सदन में आएंगे गृहमंत्री, आप लोग बात कर रहे हैं, 4 दिन बचे हैं सदन में।
6: लगता तो नहीं है, मुझे लगता है कि वो आने से डर रहे हैं, किसी वजह से नहीं आ रहे हैं। आना चाहिए, जवाब देना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए, इसमें क्या बात है। कुछ हुआ है, गलत हुआ है, तो जिम्मेदारी लीजिए।
3: विपक्ष सवाल करता है और जवाब में सरकार कहती है कि विपक्ष सिर्फ हंगामा कर रहा है, अमित शाह लगातार अपना काम कर रहे हैं।
7: ये लोग हंगामा करके गायब हो जाते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह जी सुबह सुबह पार्लियामेंट में आते हैं, रात को ही वापस आते हैं, दिन भर वो पार्लियामेंट में ही रहते हैं। ये नारा लगाने का जो तरीका है वो गलत है। और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर अमित शाह वो इंसान है जिसका नाम सुन करके सारे आतंकवादी उग्रवादी कांप उठते हैं। जिस दिन यहाँ चर्चा शुरू होगी, गृह मंत्री अमित शाह का जब यहाँ जवाब होगा, आप लोग सुन नहीं पाएगा। आप लोग क्या होम मिनिस्टर का नाम लेते हो?
3: विपक्ष कहता है कि अगर पीएम और अमित शाह संसद में नहीं आएंगे तो चर्चा कैसे होगी।
1: मांग यही है, प्रधानमंत्री सदन में आए, होम मिनिस्टर सदन में आए, अपना बयान दे, डिस्कशन हो जाए। वी आर रेडी टू टेक डिस्कशन। अगर डिस्कशन हुआ तो इस हल निकलेगा ना। अगर डिस्कशन नहीं है तो वो घर में बैठ के बात करेंगे, घर में सो जाएंगे। ये कैसा हो जाता है? ये पार्लियामेंट्री है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये अंदर आना नहीं चाहते। इतने दिन हो गए पार्लियामेंट शुरू होके, अंदर आके बयान देने को इनको क्या हो गया? ये क्या मुक्के है, बहरे है क्या?
3: सरकार कह रही है कि सरकार अपना काम कर रही है, अगर काम नहीं कर रही होती तो संसद में वंदे मातरम से जुड़े कानून, एंटी पेपर लीक संशोधन, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 नहीं पास होता। रही बात अमित शाह के बोलने की, तो कौन सा मंत्री कब बोलेगा, किस विषय पर बोलेगा, ये विपक्ष नहीं तय करेगा।
8: कौन सा मंत्री कब बोलेंगे, किस विषय पे बोलेंगे, ये सदन तय करता है चेयरमैन के अप्रूवल से। और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी में कौन सा मिनिस्टर किस विषय पे बोलना है ये सरकार तय करता है। वो ऑपोजिशन तय नहीं कर सकते कि कौन सा मंत्री कब बोलना चाहिए।
3: संसद का एक एक मिनट कीमती है। कानून बन सकता है, नीति पर बहस हो सकती है, किसी नागरिक की समस्या सदन तक पहुंच सकती है, किसी फैसले की कमियां सामने आ सकती हैं और किसी बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा तय हो सकती है। लेकिन ये कीमती समय नारेबाजी और प्रदर्शन में बीता जा रहा है।
9: ये ऑपोजिशन वाला ही खुद हाउस नहीं चलाते हैं, वो बाहर पर नारा लगा रहे हैं, तो गलत बात है ना। ऐसा कोई नहीं देखा, हाउस बिजनेस पास कर रहे, बिल पास कर रहे, राज्यसभा में तो अच्छा से चर्चा करके बिल पास कर रहे हैं। कांग्रेस और एक दो साथी लोग वॉकआउट कर रहे हैं या हंगामा कर रहे हैं, लेकिन बिल तो पास हो रहे हैं और चर्चा में लोग हिस्सा भी ले रहे हैं और कई एमपीस ने अपना मत रखा है। अच्छा बात है, कांग्रेस का ही नुकसान है।
3: बात सिर्फ इतनी नहीं है कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू राहुल गांधी से करीब 3 बार बात कर चुके हैं, उनसे आग्रह कर चुके हैं कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलनी चाहिए, सरकार हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है।
9: राहुल गांधी जी से मेरा अच्छा बात हुआ और एक विषय हमने रिक्वेस्ट किया है और बाकी विषय में भी बात किया है। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस और बाकी ऑपोजिशन पार्टी से हम लगातार बातचीत करते रहे और तालमेल करके काम करें। हम एक दूसरे के विरोधी हैं, दुश्मन तो नहीं है ना, तो देश हित में हम सब मिलकर काम करें। लेकिन ऐसा चित्र दिखाते हैं बाहर में कि हम बिल्कुल पार्लियामेंट चलने ही नहीं देंगे, तो इसका नुकसान किसका होगा?
3: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 से शुरू होकर 13 अगस्त 2026 तक चलेगा। अब सत्र अपने अंतिम दौर में है, अब सिर्फ 4 दिन की संसद की कार्यवाही और चलेगी। अब सवाल यही है कि क्या इन 4 दिनों में संसद बगैर हंगामे के चल पाएगी? आज तक ब्यूरो।
0: देखिए, राहुल गांधी और पूरा विपक्ष सिर्फ अमित शाह का जवाब नहीं मांग रहा, बल्कि वो परिसीमन बिल, महिला आरक्षण, चढ़ावा चोरी और एफसीआरए को लेकर भी हमलावर है। सवाल यह है कि क्या इन मुद्दों पर सरकार के साथ विपक्ष की चर्चा होगी या एक बार फिर से सदन हंगामे की भेंट चढ़ेगा?
10: अनुकूल नहीं है, यह ठीक नहीं है आपका व्यवहार। आप अगर भेंट जाएंगे तो हम सदन चलाने के लिए कोशिश करेंगे।
3: संसद के दरवाजे तो खुलते हैं मगर उसके बाद शुरू हो जाता है हंगामा, और हंगामा सिर्फ इस बात का नहीं कि अमित शाह जवाब नहीं दे रहे।
10: अगर आप
3: ये तस्वीरें देखिए, पेपर लीक के बाद अगर सबसे ज्यादा अगर किसी मुद्दे पर हंगामा बरपा है तो वो है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा। विपक्ष ऐसे ही रोज प्रदर्शन कर रहा है। विपक्षी सांसद तख्तियों पर चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ के स्लोगन लिख कर आते हैं, साथ में दान पात्र लाते हैं और फिर विपक्षी सांसद इस दान पात्र में दान डालकर सरकार का विरोध करते हैं।
11: दान पात्र में चोरी महापाप। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके स्थान पर किस तरीके से उंगली उठ जाए लोग। और एसआईटी के बाद एसआईटी गठन, हमारा मानना तो इतना ही है कि लखनऊ वाली एसआईटी ने छोटे खुलासा किए हैं, अब जो बड़ी एसआईटी बन रही है बड़े खुलासा करेगी।
3: चढ़ावा चोरी के अलावा भी कई मुद्दे हैं जिन पर हंगामा बरपा है। इनमें परसीमन, महिला आरक्षण बिल और एफसीआरए है। पहले बात परसीमन की। परसीमन के लिए सबसे बड़ा अड़ंगा दक्षिण से है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना परसीमन बिल का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन आबादी के आधार पर सीटें बांटेगा। दक्षिणी राज्य जनसंख्या कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं, इसका मतलब है कि उत्तर के राज्यों को ज्यादा सीटें मिलेगी, दक्षिण को कम। दक्षिण राज्यों का कहना है कि हमने जनसंख्या नियंत्रण किया तो हमें सजा क्यों मिले। उधर कांग्रेस कह रही है कि 543 सांसद तो संभाले नहीं जाते, 850 सांसद कैसे संभालेंगे।
12: आप महिला आरक्षण करना चाहते हैं, 543 में से आप महिला आरक्षण कर दीजिए, एक तिहाई दे दीजिए। भाई 543 पे तो लोकसभा चलती नहीं, 850 करके क्या आप इसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना बनाना चाहते हैं?
3: कांग्रेस सशंकित है कि परसीमन के नाम पर सरकार छल कर रही है।
1: डेमोक्रेसी में हम किसी के हाथ बंद नहीं सकते हैं और उनके विचार को भी हम रोक नहीं सकते हैं। वो उनके विचार दौड़ते रहता उनके माइंड में, वो किसी को पता नहीं चलता। बाकी के चीजें जो फिजिकली हम करते हैं हमको पता चलता है कौन कैसा है, क्या है, कौन लंगड़ा है, कौन ऊंचा है, कौन अंधा है, कौन काना है, बहरा है, मालूम होता है। लेकिन जो विचार है, जो क्या भागते हैं उनके मन में है, ये मालूम नहीं होता। जब वो एक्ट करेंगे तभी मालूम होगा। लेकिन हमारी स्थिति स्पष्ट है कि सभी दल के लोग मिलकर जो निर्णय लेंगे

0: डिलिमिटेशन पर हमारे विचार बड़े स्पष्ट, डिलिमिटेशन देश हित में नहीं, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। फिर से अगर दो हमारा तो सवाल यह है, 2023 में जो पारित हुआ था महिला आरक्षण विधेयक, वो रुका क्यों है, अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ? उसे लागू करें कम से कम 2029 में, आज की तारीख से लागू कर दें, कोई आपत्ति नहीं होगी। 542 की जो स्ट्रेंथ है लोकसभा में, उसमें एक तिहाई महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करें, हम साथ देंगे। लेकिन महिला आरक्षण इनकी नीत है ना नियत है, ये उसकी आड़ में डिलिमिटेशन चाहिए।
1: विपक्ष पूछ रहा है कि महिला आरक्षण बिल आज से ही लागू क्यों नहीं किया जा सकता, सरकार को समस्या क्या है?
2: विमेन रिजर्वेशन बिल आप लोग कम से कम थोड़ा कहा करिए सरकारी पक्ष को भी, कितनी बार पास होगा? जब हम नई इमारत में आए संसद के तो ये बिल पास हुआ, फिर जब पिछली बार डिलिमिटेशन के बहाने इस पर चर्चा हुई तो गजट हुआ विथ इफेक्ट फ्रॉम, तो वुमेन रिजर्वेशन बिल मसला ही नहीं है। अब कल से लागू करो ना, कह दो विथ इफेक्ट फ्रॉम एवरी इलेक्शन नाउ ऑनवर्ड्स, तो ये हकीकत है। इस हकीकत को जितना आप ढकोगे आपकी पॉलिटिक्स उतनी एक्सपोज होती है।
1: लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें लगता है कि डिलिमिटेशन बिल पास होना चाहिए।
3: 50% लेडीज को उनके सीटें मिलेंगी, पंजाब बड़ा सूबा है, एमएलए ज्यादा होंगे, हल्के गांव ज्यादा है, वो छोटे होंगे, कम से कम लोगों के दुख तकलीफ में जो 117 हल्के उससे बढ़कर और आदमी आ जाएंगे, एमपी और बनेंगे, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, थोड़ा सा बोझ घट जाएगा। बहुत आबादी अब हो गई है पंजाब की, सभी स्टेटों के ऐसे हालात बने पड़े हुए।
1: महिला आरक्षण बिल को लेकर भी संसद में गतिरोध चरम पर है, इसके साथ ही एफसीआरए को लेकर भी गहमा गहमी है। हालांकि सरकार की ओर से डिलिमिटेशन और एफसीआरए की कार्यसूची में अभी जिक्र नहीं है, लेकिन विपक्ष सरकार के किसी भी दावों के लिए मुस्तैद है। शरद पवार की पार्टी तो कह रही है कि वो एफसीआरए का विरोध करेंगे।
4: एफसीआरए चा जे बिल है ते आताच्या ज्या फॉर्म मध्ये आहे त्याचा त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद चंद्र पवारांचा विरोध आहे। म्हणून माझी विनम्रपणे विनंती आहे भारत सरकारला की घाई घाई करू नका, हे बिल जर त्यांची इच्छा असेल तर आम्ही विरोध करू, पण त्याच्यातून शेवटी बिल आली की त्याच्यावर चर्चा झाली पाहिजे, ही मागणी आहे आमची।
1: अब सवाल ये है कि क्या इन मुद्दों पर संसद चलेगी? बता दें कि संसद के मानसून सत्र के अंतिम चरण में कांग्रेस ने 10 से 12 अगस्त के लिए अपने सांसदों को व्हिप जारी कर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को कहा है। एनडीए के सभी सांसदों को सोमवार से दिल्ली में ही रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। सवाल वही है कि क्या संसद की कार्यवाही के बचे 4 दिन टकराव वाले होंगे या सदन शांति से चलेगा। आज तक ब्यूरो।
5: अब खबर धनबाद की, जहां पर एक इलाके में देखते ही देखते कई मकान धस गए। इन मकानों के धसने की वजह से कई लोग मलबे में दब गए हैं और जिन्हें काफी मशक्कत करके वहां से बाहर निकाला गया। प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि 3 दिन से भूदसान हो रहा है मगर प्रशासन का कहीं भी अता पता नहीं है।
6: इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि पैरों तले से जमीन खिसक जाना सिर्फ एक मुहावरा नहीं है। धनबाद के बागमारा इलाके में छाताबाद में अचानक जमीन धसी और ये सारे घर जमींदोज हो गए। इसी मलबे में एक महिला दब गई। इसे कुदरत का करिश्मा कहिए, ये स्थानीय लोगों के मुस्तैदी। तुरंत लोग भागे, मलबा हटाने का काम शुरू हुआ और इस महिला को बचा लिया गया।
7: दो औरत देखिए निकाला गया, ले जा हॉस्पिटल, डायरेक्ट हॉस्पिटल ले जा। देखिए एक लड़की को बिहार निकाला जा रहा, देखिए फंसा हुआ कि कैसे निकाला जा रहा।
6: इसी तरह से कई लोगों को यहां से निकाला गया। 3 दिन से इस इलाके में भूधसान हो रहा है मगर प्रशासन चैन की नींद सो रहा है। इसलिए जब भूधसान के बाद इलाके के सांसद ढुलू महतो हालात का जायजा लेने पहुंचे तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने सांसद के खिलाफ नारेबाजी की।
8: जिम्मेवार कौन? जिम्मेवार जिला प्रशासन को लेना चाहिए, कौन नहीं जानता पीछे से बना रहे हैं, कौन क्या फोन करवाया, इसका तो जवाबदेही बीसीसीएल और जिला प्रशासन को बना रहे नहीं होगा। और अगले 7 तारीख को भूधसान हुआ, फिर 7 तारीख को भूधसान, एक महीना का तो जो स्थिति आज बना हुआ पूरे कोयलांचल में, इसका सीबीआई जांच होके दोषियों पर हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए।
6: ढुलू महतो

0: बीजेपी के सांसद हैं और ये ठीकरा प्रशासन और सरकार पर फोड़ रहे हैं। मगर इस सियासत के बीच सवाल ये है कि इस तरह से भूधसान लोगों की जिंदगी पर बड़ा खतरा है। प्रशासन यहाँ से लोगों को सुरक्षित क्यों नहीं निकाल रहा? और सवाल ये भी है कि इस तरह से लगातार भूधसान हो क्यों रहा है? धनबाद से सिथुन के साथ आज तक ब्यूरो।
1: तो वहीं केंद्र शासित प्रदेश दीव के झोलावाड़ी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल थार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर में बाइक सवार युवक की गंभीर रूप से वो घायल हो गया है। हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घायल को दीव के सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद ऊना रेफर किया गया। वहीं हादसे का पूरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं जिसमें टक्कर का खौफनाक मंजर कैद हुआ है। तो वहीं लखनऊ के मड़ियाओ में मामूली विवाद के बाद 22 साल के युवक की हत्या का मामला सामने आया। जी हां, दरअसल फैजुल्लागंज में पड़ोसी पिता पुत्र ने शुभम सोनी के पेट में लोहे की रॉड से हमला कर दिया। गंभीर हालत में शुभम को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या के बाद आरोपी दोबारा पीड़ित परिवार पर हमला करने पहुंचे थे। पुलिस ने सुमित वर्मा और उसके पिता मथुरा प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से खून से सनी लोहे की रॉड, चाकू भी बरामद हुआ। तो वहीं मध्य प्रदेश के सागर में रेलवे ट्रैक पर माल से लदा ट्रक फंसने की वजह से अचानक से हड़कंप मच गया। मकरोनिया गुड़ा रेलवे फाटक के पास ट्रक अचानक से बंद हो गया और इसी दौरान ट्रक पर ट्रेन आने वाली थी। खतरा देखते ही मौके पर मौजूद QRF जवानों ने मोर्चा संभाला। जवानों ने मिलकर ट्रक को धक्का दिया। कुछ ही मिनट में उसे ट्रैक से बाहर कर दिया गया। जवानों की सूझबूझ और तेजी से ये बड़ा हादसा होते होते टल गया है। गनीमत रही कि इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा की गॉड सिटी 2 में पति को लेकर पत्नी और दूसरी युवती के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। तस्वीर देखिए, पत्नी ने पति को दूसरी युवती के साथ फ्लैट में देखा तो दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना के बाद दोनों पक्ष पुलिस चौकी पहुंचे लेकिन किसी ने भी एक दूसरे के खिलाफ शिकायत नहीं दी है। पुलिस के मुताबिक फ्लैट में मौजूद युवती युवक की दोस्त है और वो फ्लैट खाली करने में मदद के लिए युवक को बुला रही है। वहीं झांसी के इबीजा नाइट क्लब में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। पार्टी के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि शराब की बोतलें कुर्सियों से एक दूसरे पर हमला किया गया। मारपीट की पूरी घटना क्लब में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मारपीट में 3 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। पीड़ित पक्ष ने नवाबाद थाने में शिकायत भी दर्ज की। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं प्रयागराज के नवाबगंज टोल प्लाजा पर मोहम्मद उमर के काफिले से जुड़ी कई गाड़ियों पर टोल टैक्स नहीं देने का आरोप लगा है। आरोप है कि काफिले के पीछे चल रही 25 से 30 निजी गाड़ियां बिन टोल दिए बैरियर तोड़कर निकल गई। टोल कर्मचारियों ने रोकने की कोशिश की तो अभद्रता धमकी देने का भी आरोप लगा। मामले में टोल प्लाजा प्रबंधन की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस अब FIR में दर्ज गाड़ियों के नंबर के आधार पर वाहन मालिकों की पहचान कर रही है। तो वहीं आज पवित्र सावन महीने का दूसरा सोमवार है और इस मौके पर सुबह से ही देश के अलग अलग इलाकों में स्थित मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ है। जलाभिषेक के लिए तांता लगा हुआ है। हर कोई शिवालय पहुंच रहा है ताकि वो शिवलिंग पर जल अर्पित कर सके। भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। विशेष पूजा अर्चना भी सुबह से ही शुरू हो चुकी है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, कहीं पर कावड़ के रंग नजर आ रहे हैं तो आज क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार है तो सुबह सवेरे भक्त शिवालयों में पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और भगवान शिव को जल भी अर्पण किया जा रहा है। ये मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इतनी भक्ति में लीन भक्त नजर आ रहे हैं। जलाभिषेक सुबह सवेरे किया गया। ये 3 अलग अलग तस्वीरें अयोध्या, हरिद्वार और वाराणसी। तो सावन के पावन महीने में भगवान भोलेनाथ के भक्तों की आस्था के अद्भुत रंग दिख रहे हैं। हरिद्वार में इन दिनों एक से बढ़कर एक अनोखे कावड़ देखने को मिल रहे हैं। पूरे कावड़ मार्ग पर आस्था की रौनक बिखरी हुई है। बड़ों के साथ साथ इस बार कम उम्र के कावड़ियों का जोश भी भरपूर दिख रहा है। देखिए,
2: भक्ति का उत्साह, आस्था का समंदर, भोलेनाथ के जयकारे और कांधे पर कांवड़। सावन के पावन महीने में पूरे कांवड़ मार्ग पर शिव भक्तों की आस्था का अद्भुत नजारा दिख रहा है। कांवड़ में गंगा जल भरकर भोले के भक्त शिवालयों की तरफ बढ़ चुके हैं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा मार्ग पर इन दिनों एक से बढ़कर एक कांवड़ झांकियां दिख रही हैं। सावन के महीने की शुरुआत में तो इस मार्ग पर पैदल चलने वाले कांवड़ियों की भरमार दिख रही थी, लेकिन अब पैदल कांवड़ियों के साथ साथ कांवड़ की विशाल झांकियां सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं। हर झांकी अपने आप में अनूठी है और भगवान शिव में गहरी आस्था की एक नई कहानी कह रही है। कहीं भगवान शिव को काल भैरव के रूप में दिखाया गया है, तो कहीं बजरंग बली को शिव भक्ति में लीन दिखाया गया है। एक कांवड़ झांकी में अयोध्या के श्री राम मंदिर का स्वरूप झलक रहा है, तो एक झांकी में भगवान शिव के आदि योगी स्वरूप की आभा दिख रही है। एक झांकी में भगवान के नृसिंह के अवतार की झलक मिल रही है, तो एक झांकी में भगवान शिव और माँ काली का रूप सुशोभित है। इस कांवड़ में दशानन ने महादेव को अपने सिर पर उठा रखा है।
3: भोले बाबा की इच्छा पे आए थे, मन किया था आ गए कांवड़ लेने।
4: पहले भी आ चुके हो?
3: हाँ, तीसरा साल है मेरे, 18वीं कांवड़ है हमारी।
4: मांगा था जो पूरा हुआ है?
3: सब दे रखा भोले बाबा ने, मांगेंगे क्या।
4: ये घर वाले सही रहे और अपने जो भाई थे वो खुश रहे। पहले भी कभी ले गए? हाँ, पहले भी
2: फरीदाबाद के इन दो भाइयों ने भी ऐसी ही आस्था की मिसाल पेश की है। एक ने कांवड़ में 110 लीटर जल लिया है तो दूसरे ने 81 लीटर। दोनों ने 16 जून को अपनी कांवड़ यात्रा शुरू की थी और पिछले करीब 50 दिनों से ये दोनों निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। भोलेनाथ के इन भक्तों में उम्र का कोई दायरा नहीं है। बड़ों के साथ साथ इस कांवड़ यात्रा में छोटे बच्चे भी शामिल हैं। 5 बच्चों की इस टोली में सबसे छोटी बच्ची 9 साल की है। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना अत्यंत फलदायी मानी गई है और शिव भक्तों ने अपनी इस कांवड़ साधना से जता दिया है कि इस पावन महीने में उनके लिए भोलेनाथ की आस्था से बड़ा कुछ भी नहीं। आज तक ब्यूरो।
1: चलिए अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: सावन के दूसरे सोमवार पर कैसे मिलेगा भगवान शिव से वरदान? सावन के दूसरे सोमवार पर फूल और पत्तियों से कैसे होगा समस्याओं का समाधान? सावन के दूसरे सोमवार का क्या है पूजा विधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

सुबह 10 बजे विधानसभा मार्च की तैयारी, छात्रों ने रखी सभी मांगे माने जाने की शर्त। मॉनसून सत्र के आखिरी चार दिन हैं, आज लोकसभा में पेश हो सकते हैं चार बिल, परिसीमन और एफसीआरए पर तनातनी जारी, कांग्रेस एसपी ने जारी किया वे। उत्तरी 24 परगना में ममता के काफिले पर हमला, पूर्व सीएम का बीजेपी पर गंभीर आरोप, केजरीवाल ने भी उठाए सवाल, मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले कि ये जनता का आक्रोश। अयोध्या के राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ पद की कवायद तेज, आज और 12 अगस्त को इंटरव्यू, 2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक में नाम पर फाइनल फैसला। पवित्र महीने सावन का आज दूसरा सोमवार, सुबह से शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, जलाभिषेक और विशेष पूजा अर्चना के लिए चल पड़े हैं कांवड़िए।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज सावन का दूसरा सोमवार है और बड़ा सुंदर संयोग आज बना हुआ है। तो हम आपको बताएंगे कि फूल और पत्तियों के प्रयोग से आप अपनी बहुत सारी मनोकामनाओं को आज कैसे पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको काम में सफलता मिले। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

26 दिन सोमवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, प्रातः 8 बजे तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, दोपहर के 12:26 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं सावन के दूसरे सोमवार की। वैसे तो सावन का हर सोमवार अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा मूल्यवान है, लेकिन इस बार सावन का दूसरा सोमवार बड़े अच्छे संयोगों के साथ आ गया है। तो सावन के दूसरे सोमवार का महत्व क्या है इस बार? सावन का दूसरा सोमवार प्रदोष को साथ में लेकर आ रहा है, यानी त्रयोदशी तिथि के साथ सावन का दूसरा सोमवार आज है। त्रयोदशी तिथि के स्वामी कामदेव हैं और ऐसा माना जाता है कि त्रयोदशी पर अगर कामदेव की पूजा की जाए तो शीघ्र और उत्तम विवाह होता है। हर महीने के दोनों पक्ष की त्रयोदशी का महत्व अलग अलग है। कृष्ण त्रयोदशी और शुक्ल त्रयोदशी के फल में भी अंतर है। त्रयोदशी यानी प्रदोष और सोमवार का साथ, ये अद्भुत संयोग जीवन की हर मनोकामना को पूरा कर सकता है। आज के दिन उपवास रख करके भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करनी चाहिए और आज के दिन त्रयोदशी के दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करना बहुत फलदायी होता है। महीना सावन का, दिन सोमवार का, तिथि प्रदोष की, और अगर समय भी प्रदोष का हो, सूर्यास्त के 24 पहले और 24 बाद का समय हो, इस समय में अगर आप आज भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करें तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो सावन के दूसरे सोमवार पर प्रातः काल 12 के पहले, प्रदोष काल में सूर्यास्त के आसपास और मध्य रात्रि में पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और सावन के इस पावन महीने में अपने भाग्य को कैसे बढ़ाएं, कैसे मनोकामना पूरी करें, ये भी बताएंगे सावन सूत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मान सम्मान मिलेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन की प्राप्ति होगी, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब ये जानते हैं कि आज के दिन यानी सावन के सोमवार पर सामान्य तरीके से हम पूजा कैसे कर सकते हैं। आज के दिन प्रातः काल स्नान करके 12 बजे के पहले नहा करके सफेद वस्त्र धारण करिए। अगर आप महिला हैं तो पीले वस्त्र पहनिए। इसके बाद शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करिए। कम से कम 3 या 9 बेलपत्र चढ़ाइएगा। उनको सफेद वस्तु का भोग लगाइए और इसके बाद जितना संभव हो सके नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करिएगा। रात के समय, अगर मध्य रात्रि का समय हो, 11 बजे से 1 बजे के बीच का, तो शिव जी के सामने घी का एक दीपक जलाइएगा और पुनः नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करिएगा। इस दिन यानी आज के दिन जलाहार और फलाहार ग्रहण करना उत्तम होगा। अगर आज के दिन जल और फल ग्रहण करके आप उपवास रखें तो बहुत बेहतर होगा। नमक और अनाज का सेवन ना करें। और अगर मजबूरी है, आप अस्वस्थ रहते हैं, तो आज सात्विक आहार ग्रहण करिएगा। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग मत करिएगा। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। सिंह
सिंह राशि, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, यात्राओं के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, नए काम का अवसर मिलेगा, संपत्ति की समस्याएं हल होंगी, नई जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न राकेश चंद्र ने हमें लिखा है और राकेश जी हमें मेल लिखते हैं जयपुर से। इनकी जन्म की तारीख है 16 अगस्त 1970, जन्म का समय रात में 9 बजे और जन्म का स्थान है नीमच, मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरी नौकरी चली गई है और अब मैं दूसरी नौकरी की तलाश कर रहा हूं, तो क्या मुझे नौकरी आगे मिलेगी या मुझे व्यापार में जाना चाहिए? राकेश जी, आपकी कुंडली में नौकरी मिलने का ही समय है। नवंबर के खत्म होने के पहले पहले आप नौकरी पा जाएंगे और आपका स्थान परिवर्तन भी होगा। व्यापार करने का अभी उचित समय नहीं है। 2030 से आप व्यापार के बारे में विचार करिएगा। अभी आपके लिए नौकरी करना बेहतर है और बेहतर नौकरी स्थान परिवर्तन के साथ आपको मिल जाएगी। बेहतर करियर और बेहतर जीवन के लिए एक मूंगा बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें। रोज सुबह और शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें, आपको लाभ होगा। देखिए, आप भगवान शिव को अलग अलग फूल और वृक्षों की पौधों की पत्तियां अर्पित कर सकते हैं और इससे आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। तो अलग अलग मनोकामनाओं के लिए किस तरह से फूल और पत्तियां शिव जी को अर्पित की जाएं, आइए जानते हैं। अगर आप धतूरे का पुष्प आज के दिन या सावन में कभी भी अर्पित करके प्रार्थना करें तो मनचाही संतान की प्राप्ति होगी। अगर आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते हैं, 3 या 9 बेलपत्र, तो आपकी इच्छा की पूर्ति होगी और आपके आयु की वृद्धि होगी। अगर आप जपा कुसुम अर्पित करते हैं, गुड़हल का फूल अर्पित करते हैं, तो आपके शत्रु और विरोधी शांत होंगे। अगर आप शिवलिंग पर बेले का फूल अर्पित करें, बेले का पुष्प अर्पित करें, तो आपको सौभाग्यवती और सुशील पत्नी की प्राप्ति होगी।
हर सिंगार के छोटे छोटे फूल बड़े चमत्कारी हैं। इन छोटे छोटे फूलों को, ढेर सारे फूलों को अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करें सावन में या वैसे भी या सोमवार पर नियमित रूप से, तो धन और संपत्ति की प्राप्ति होगी। शमी के पौधे के जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं, अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करके प्रार्थना करें तो आपके पापों का नाश होगा और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। शिवलिंग पर केतकी और केवड़ा ये अर्पित नहीं किया जाता। शिव जी की पूजा में सामान्यतः केतकी और केवड़ा अर्पित करना मना है। सावन के दूसरे सोमवार पर कौन कौन से विशेष मंत्र हैं जिनका आप आज रात में जप कर सकते हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन साथ में याद दिला दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

आपकी हो सकती है, करियर में आपके कुछ बदलाव होगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाब।

सावधानी रखें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, मान सम्मान बढ़ेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में कुछ बदलाव होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब आज सावन का दूसरा सोमवार है। आज अगर आप रात के समय में विशेष मंत्र का जप करें तो आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। कौन से मंत्र कैसे जपेंगे? अच्छे स्वास्थ्य के लिए और लंबी आयु के लिए आप लघु मृत्युंजय मंत्र जपिएगा। ओम हौं जूं सः, ओम हौं जूं सः, ये मंत्र आज मध्यरात्रि में जपिएगा। शीघ्र विवाह के लिए आज मंत्र जपिएगा ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। करियर में सफलता चाहते हैं, नौकरी है, व्यापार है, रोजगार है, तो उसके लिए मंत्र पढ़िएगा ओम विश्वनाथाय नमः, ओम विश्वनाथाय नमः। अगर आप अच्छा वैवाहिक जीवन चाहते हैं, वैवाहिक जीवन की मुश्किलों को दूर करना चाहते हैं तो आप मंत्र पढ़िएगा ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। अगर आप हर तरह का कल्याण चाहते हैं, स्वास्थ्य, जीवन, धन, सफलता, हर तरह की उन्नति चाहते हैं तो आज मध्यरात्रि में मंत्र पढ़िएगा नमः शिवाय, नमः शिवाय। इनमें से जो भी मंत्र आपके लिए जरूरी है आज रात में 11 बजे से 1 बजे के बीच में शिव जी के सामने घी का दीपक जलाकर रुद्राक्ष की माला से मंत्र का जप करिएगा और मंत्र का जप करने के बाद प्रार्थना करिएगा कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, मान सम्मान मिलेगा, करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, सर्दी जुखाम से बचाव करें, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला।

है, काम का बोझ भी बढ़ता जाएगा। परिवार में विवादों से बचाव करें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। भगवान शिव की पूजा में केतकी का फूल चढ़ाना मना है, ऐसा क्यों? देखिए, एक पौराणिक कथा है कि भगवान शिव सबसे पहले प्रकाश के लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उसकी गहराई नापने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसका ओर छोर नहीं पा सका। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी लौट कर आए तो ब्रह्मा जी अपने साथ केतकी का फूल ले आए और ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे प्रकाश के लिंग का एक छोर मिल गया था और केतकी ने ये झूठी बात ब्रह्मा जी के पक्ष में कही, गवाही दी। भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने केतकी को शाप दिया कि चूंकि तुमने झूठ बोला है, इसलिए मेरी पूजा में केतकी का प्रयोग निषिद्ध होगा। तो इस पौराणिक कथा की मान्यता के अनुसार केतकी चढ़ाना शिवलिंग पर वर्जित है। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 2, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 3, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 4, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 5, परिवार में व्यस्तता रहेगी। नंबर 6, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 7, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 8, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में जितना कर सकें नमः शिवाय का जप करिएगा, आपको स्वास्थ्य की समस्या से छुटकारा मिलेगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो भी मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो शिव जी को जल चढ़ा दीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए, इलाज के लिए,
तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो सफेद रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान।

लिए कार्य में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा। कन्या राशि वालों के लिए धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। और आज सावधान रहना होगा वृश्चिक राशि के लोगों को, सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज द्वादशी तिथि है। दिन की शुरुआत में द्वादशी रहेगी और सोमवार की द्वादशी अशुभ होती है, इसलिए आज कोई भी शुभ और मंगल कार्य ना करें। अब जान लेते हैं सावन के महीने में अपने भाग्य को बेहतर कैसे बनाएं, क्या उपाय करें, क्या है सावन सूत्र। सावन में आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए रोज सवेरे शिवलिंग पर 9 बेलपत्र अर्पित करिए और इसके बाद जल अर्पित करिए और शिवलिंग की परिक्रमा करिए। याद रखिए, शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा की जाती है। सावन में कम से कम 9 दिन या 7 दिन अगर आप ये उपाय करें तो आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों और सरकार के बीच गतिरोध बरकरार। सीबीआई जांच की मांग पर अड़े अभ्यर्थी, समझौते से इनकार। सीजीएल अभ्यर्थियों का आज झारखंड विधानसभा तक मार्च, सरकार से बातचीत बेनतीजा। सीबीआई जांच की मांग पर नहीं बनी सहमति। सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर सरकार अभ्यर्थी आमने सामने। सरकार ने परीक्षा रद्द करने से किया इनकार, कहा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई परीक्षा। जांच की निगरानी के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी का प्रस्ताव। अभ्यर्थियों ने सरकार की निगरानी कमेटी के प्रस्ताव को ठुकराया। जेपीएससी जेएसएससी विवाद में सरकार का बड़ा फैसला, 98% मांग मानने का दावा। 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द, गड़बड़ी की जांच के आदेश। जेपीएससी मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रस्ताव। जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की तैयारी। भर्ती सुधार के लिए विशेषज्ञों की कमेटी भी बनेगी। जेपीएससी के तीनों सदस्यों ने दिया इस्तीफा। राज्यपाल ने तीनों सदस्यों का इस्तीफा मंजूर किया। कथित परीक्षा गड़बड़ी मामले में सदस्यों से पूछताछ। जेपीएससी गड़बड़ी मामले में सीआईडी जांच तेज। मामले में अब तक 19 गिरफ्तारियां हुई। सीआईडी ने बड़ी मात्रा में डिजिटल सबूत जुटाने का दावा किया। जेपीएससी सदस्यों से पूछताछ का पूरा स्केड्यूल तय। 10 अगस्त को अजविता भट्टाचार्य, 12 को जमाल अहमद और 14 अगस्त को अनिमा से होगी पूछताछ। छात्रों के मार्च को लेकर रांची में सुरक्षा कड़ी की गई। पुलिस बोली शांतिपूर्ण प्रदर्शन में परेशानी नहीं होगी, हिंसा की कोशिश पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संसद के मॉनसून सत्र का आज 16वां दिन। आज संसद में अमित शाह पेश कर सकते हैं 2 बिल। महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर विपक्ष का विरोध जारी। एफसीआरए संशोधन बिल के विरोध में कांग्रेस का रुख साफ। एफसीआरए बिल पर संसद में विरोध की चेतावनी। केसी वेणुगोपाल बोले अल्पसंख्यकों और एनजीओ को निशाना बनाना है, बिल पास नहीं होने देंगे। एफसीआरए बिल में विदेशी फंड लेने वाले संगठनों पर निगरानी बढ़ेगी। लाइसेंस खोने वाले एनजीओ की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव। ईसाई संगठनों का भी विरोध। नीट मामले में अमित शाह के बयान की मांग पर अड़ा विपक्ष। पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष का विरोध जारी। पेपर लीक विरोधी बिल दोनों सदनों से पास। सरकार ने महिला आरक्षण और परिसीमन पर विपक्ष से समर्थन मांगा। किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से दी 2 बार मुलाकात की। महिला आरक्षण और परिसीमन पर राहुल गांधी ने सर्वदलीय बैठक की मांग की। महिला आरक्षण परिसीमन पर सरकार विपक्ष में सहमति नहीं। अखिलेश डीएमके के समर्थन की कोशिश। उदयनिधि बोले परिसीमन बिल का समर्थन नहीं करेंगे। राम मंदिर चंदा मामले में चोरी को लेकर सपा सांसदों का संसद परिसर में प्रदर्शन। चंदा चोर गद्दी छोड़ के लगाए गए नारे। कांग्रेस एसपी का सांसदों को 10, 11 और 12 अगस्त को सदन में मौजूद रहने का व्हिप। इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों से भी मौजूदगी सुनिश्चित करने को कहा गया। हलीसर में ममता बनर्जी की कार पर पथराव और कीचड़ फेंकने का आरोप। ममता बनर्जी ने हमले को साजिश बताया। पुलिस सुरक्षा पर उठाए सवाल। ममता बनर्जी का बंगाल सरकार पर बड़ा आरोप, कहा पुलिस की मौजूदगी में कार पर पत्थर और जूते फेंके गए। गुंडों के जरिए हमला कराने का लगाया आरोप। बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी ने घटना को बताया जनता का गुस्सा। शुभेंदु अधिकारी का दावा, घटना से बीजेपी का कोई भी लेना देना नहीं। प्रदेश अध्यक्ष ने भी घटना की निंदा की। ममता के काफिले पर हमले से गरमाई सियासत। कल्याण बनर्जी बोले पत्थर लगने से सिर फट सकता था, जान भी जा सकती थी। बीजेपी मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हमले और बदसलूकी का विरोध किया। अग्निमित्रा पॉल बोली महिला के खिलाफ इस तरह का व्यवहार बीजेपी की संस्कृति नहीं। महाराष्ट्र में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। 11 अगस्त से नई दरें होंगी लागू। राजस्थान सीआईडी स्पेशल ब्रांच की कार्रवाई में खुलासा। आतंकी कनेक्शन के आरोप में टोंक से 2 लोग गिरफ्तार। एयर इंडिया की फ्लाइट टर्बुलेंस में एक पायलट का डोप टेस्ट पॉजिटिव आया। हादसे में 17 यात्री हुए थे घायल। बारामती में निजी ट्रेनी विमान दुर्घटनाग्रस्त। लैंडिंग के दौरान विमान क्रैश हुआ, कोई हताहत नहीं। ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन का सेवा विस्तार। 1 साल और पद पर बने रहेंगे राहुल नवीन। लखनऊ में हर घर तिरंगा यात्रा की शुरुआत। सीएम योगी ने तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी, कहा राष्ट्र प्रतीकों का अपमान अब नहीं चलेगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहे मौजूद। भोपाल में निकाली गई तिरंगा यात्रा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी। युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का किया आह्वान। देहरादून में हर घर तिरंगा रैली का शुभारंभ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में की शिरकत। ओडिशा के संबलपुर में निकाली गई हर घर तिरंगा रैली। पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बढ़ाया हौसला। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में सीएम युमनाम सिंह ने हर घर तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। बड़ी संख्या में कार्यक्रम में लोग शामिल हुए। कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं से मिले पीएम मोदी। पदक वीरों के प्रधानमंत्री ने जमकर सराहना की। पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियंस से मुलाकात का एक वीडियो शेयर किया। खिलाड़ियों के चेहरों पर दिखी खुशी। प्रधानमंत्री ने वीडियो साझा कर खास संदेश दिया, कहा कि जो खेलेगा वो खिलेगा। भारत ने 39 मेडल जीते थे। पीएम से मुलाकात से पहले कॉमनवेल्थ गेम्स पदक वीरों में दिखा जबरदस्त उत्साह। पैरा एथलीट्स भी दिखे काफी उत्सुक। कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट मीराबाई चानू बोली पीएम से मिलने के लिए उत्साहित हूं, बहुत खुश हूं, सब अच्छा रहेगा।
वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से घाटों का संपर्क टूटा, कई घाट पर आने जाने में करने पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। गंगा में बढ़ते हुए जलस्तर को लेकर एनडीआरएफ और जल पुलिस अलर्ट, लगातार निगरानी जारी, लोगों को बैरिगेटिंग के अंदर स्नान की सलाह। लगातार बारिश के चलते एमपी के मंडला में उफान पर सभी नदी नाले, यहां का प्रसिद्ध महिष्मती घाट पानी में डूबा। शाहजहांपुर में गंगा नदी का तेजी से बढ़ रहा है जलस्तर, मिर्जापुर इलाके के कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। बिजनौर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने के बाद टापू में तब्दील हुआ गांव, करीब दो दर्जन गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। पवित्र सावन का आज दूसरा सोमवार, जलाभिषेक के लिए शिवालयों में भक्तों की भीड़। सावन के दूसरे सोमवार पर काशी विश्वनाथ में हुई भव्य मंगला आरती, बाबा का किया गया विशेष श्रृंगार। बाबा विश्वनाथ के दरबार में सुबह से उमड़ रहा है भक्तों का सैलाब, भक्तों पर बरसाए गए फूल। हापुड़ के प्राचीन सिद्धपीठ श्री सबली महादेव मंदिर में भक्तों का उमड़ा हुजूम, पवित्र शिवलिंग पर किया जलाभिषेक। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर जयकारों से गूंजा श्री सबली महादेव मंदिर का परिसर। सावन का आज दूसरा सोमवार, हरिद्वार में हर की पौड़ी पर उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। यूपी के हापुड़ में दिखी योगी मोदी कावड़, शिव भक्तों के हाथों में पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीर। यूपी के सहारनपुर में 121 फीट की तिरंगा कावड़, भोले की भक्ति के साथ देशभक्ति का संदेश, शहीदों को समर्पित विशाल कावड़। फतेहपुर शेखावटी में पहुंची झुंझुनू के लोहागल की कावड़, दरअसल पवित्र जल लेकर पहुंचा शिव भक्तों का एक जत्था। संभाजीनगर में संत रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर बीजेपी का सर्वरस्ता संकल्प अभियान, महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने कलश यात्रा का किया स्वागत। दिल्ली में सिंदूर आर्मी महाब्लड डोनेशन यात्रा के दूसरे चरण का आगाज, कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे मौजूद। यूपी चुनाव में नया सियासी गठजोड़, कांग्रेस के साथ आए अशोक सिंह, समाज विकास क्रांति पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, छात्रों ने नाट्य संगीत से लोगों को किया जागरूक। दिल्ली में फिल्म एक्सपो इंडिया 2026 की तैयारियां तेज, अभिनेता बिंदुदारा सिंह ने सीएम रेखा गुप्ता को दिया न्योता, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने करेंगे उद्घाटन। दिल्ली मेट्रो की ट्रेनें 99.95% समय पर चली और डीएमआरसी का दावा है कि 2026 में अब तक की पंचुअलिटी रिपोर्ट जारी 59 सेकंड से ज्यादा की देरी पर ही ट्रेन लेट मानी जाती है। सर्जरी के दौरान सोनू निगम ने गाया गाना, हॉस्पिटल बेड से वीडियो शेयर किया, श्रेया घोषाल ने जल्द रिकवरी की कामना की। रामायणम की रिलीज का मेगा ऐलान, विदेशों में 50,000 और भारत में 9,000 स्क्रीन पर रिलीज होगी फिल्म। मुंबई में आई लव यू म्यूजिक वीडियो का भव्य प्रीमियर, विशाल कपूर और डॉल्फिन दुबे लीड रोल में नजर आएंगे। पेपराजी पर भड़की नताशा, लगातार तस्वीरें लेने से असहज हुई, कैमरे से परेशान होकर जताई नाराजगी। सनी देओल संग मोहाली पहुंची, प्रीति बोली मोहाली मेरा घर, ये सबसे प्यारी घर वापसी, कॉलेज स्टूडेंट से की मुलाकात। महाराष्ट्र के अकोला में खेत के रास्ते में विवाद में खूनी खेल, आरोपी ने चलाई 6 गोलियां, एक की मौत। बिहार के सिवान में फैमिली रेस्टोरेंट में लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में एक्शन, होटल को किया गया सील। लखनऊ के गोमती नगर थाने की बैरक में सिपाही ने किया आत्महत्या, फांसी लगाकर दी जान। झांसी में नाइट क्लब में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। गाजियाबाद में ड्रग तस्करों से मुठभेड़, दो आरोपियों के पैर में लगी गोली, मुठभेड़ के बाद 3 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 21 किलो गांजा जब्त। गाजियाबाद के साहिबाबाद में नाबालिग की गोली मारकर हत्या, निर्माणाधीन साइट में घुसने पर गार्ड से हुआ विवाद। लखनऊ के मड़ियाओं गांव थाना में मामूली विवाद के लिए खूनी रूप देखने को मिला, दरअसल 22 साल के युवक की पिता पुत्र ने की हत्या। सोनभद्र में युवक पर महिला से छेड़खानी का आरोप, अर्धनग्न कर बाल मुंडवाकर पीटने और गांव में घुमाने का वीडियो वायरल, 10 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के रामगढ़ के श्री राम पावर प्लांट में बड़ा हादसा, फर्नेस फटने की वजह से 10 से ज्यादा मजदूर झुलसे। एमपी के गुना में जूतों की माला पहनाने और वीडियो वायरल होने से आहत कजोड़ बंजारा ने खाया जहर, एसपी ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। एमपी के रतलाम बाल सुधार गृह से 7 बच्चे फरार, होमगार्ड से मारपीट कर भागे, बाद में 6 पकड़े गए, एक की अब भी तलाश जारी। जोधपुर की लेडी रॉन सुमता विश्नोई 14 अगस्त तक रिमांड पर भेजी गई, चित्तौड़गढ़ के व्यापारी से करीब 2.5 करोड़ रुपए की ठगी में 2 बेटों समेत हुई गिरफ्तारी। राजस्थान के ब्यावर में पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार, ऑपरेशन अग्निपथ के तहत मिली कामयाबी। हापुड़ में कावड़ मार्ग पर मुर्गे का मीट ले जाते युवक की कावड़ी होने की पिटाई, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। अलीगढ़ के खैर थाना क्षेत्र में कावड़ियात

तबीयत। बिहार के खगड़िया में फर्जी आईएएस मनीष गुप्ता गिरफ्तार हुआ। आरोपी के घर से ड्राइवरलेस टेस्ला कार जब्त। यूपी के भदोही में सांड के हमले की वजह से मां बेटे की मौत हुई। घटना में पूरे गांव में पसरा मातम। आवारा पशुओं से लोग परेशान। रूस के यूक्रेन के शहरों पर भीषण बमबारी। खार्किव और ओडिशा में हमले, दो लोगों की हुई मौत। रूसी हमले के बाद यूक्रेन का पलटवार। बेलगोर्दो पर ड्रोन मिसाइल अटैक किया गया। हमले में 5 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा लोग हुए घायल। पोपलियो की रूस यूक्रेन से नागरिक ठिकानों पर हमले रोकने की अपील। कहा दोनों देश मानवीय कानूनों का सम्मान करें। हमलों में बच्चों समेत आम लोगों की जान जा रही। नेतन्याहू ने ट्रंप के 15 सूत्रीय गाजा प्लान को खारिज किया। कहा कि हमास के पूरी तरह से हथियार छोड़ने तक पीछे नहीं हटेंगे। ईरान के विदेश मंत्री का अमेरिका को दो टूक संदेश। अब्बास अराग्ची बोले समझौते का उल्लंघन बंद होने तक अमेरिका से बातचीत नहीं। ईरान की नाकेबंदी में अमेरिका ने 53 जहाजों के रास्ते बदले। 2 जहाज रोके गए, 2 पर कार्रवाई, 30 से ज्यादा जहाजों को आगे बढ़ने की इजाजत। लाल सागर में हूती का बड़ा हमला, कई लोगों की मौत। सऊदी अरामको की ऑयल फैसिलिटी पर निशाने। अमेरिका के मिसाइल डिफेंस हथियारों का भंडार घटा। सीएसआईएस रिपोर्ट का दावा है कि स्टॉक में बेहद ही कम हथियार बचे हैं। ट्रंप ने खारिज की रिपोर्ट। चीन से तनाव के बीच ताइवान की बड़ी मिलिट्री ड्रिल। न्यूक्लियर और केमिकल हमले से बचाव का अभ्यास सैन्य क्षमता पर की। इंडोनेशिया के माउंट ब्रोमो नेशनल पार्क में भीषण आग। 176 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हुआ।

0: महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर, एनसीपी शरद पवार गुट के सांसद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। शरद गुट के सभी 8 सांसद मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र से जुड़े मुद्दों पर पीएम से बातचीत हो सकती है, साथ ही सुप्रिया सुले ने आधिकारिक बैठक इसको बताया। पीयूष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। पीयूष, ये मुलाकात किस लिए होने वाली है, क्या अपडेट है बताइए।
1: आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों में संसद नहीं चल पा रही है और एनसीपी एसपी के कई ऐसे सांसद हैं जिनको अपनी बातें, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बातें जो हैं वो सदन के पटल पर रखनी है और वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का इसमें स्पेशल इंटरवेंशन हो, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। और इसीलिए आज एनसीपी शरद पवार के सांसद हैं, उन्होंने समय मांगा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और सुबह आज लगभग 11 बजे के आसपास ये मुलाकात होने वाली है। महाराष्ट्र के मुद्दों पर मुलाकात होगी, साथ साथ जितने भी एमपीज हैं वो लगभग 10:30 बजे के आसपास शरद पवार के घर यानी 6 जनपद से एक साथ निकलेंगे और संसद भवन पहुंचेंगे और 11 बजे के आसपास उनकी मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली है। ये मुलाकात इससे भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कैसे लगातार प्रधानमंत्री की मुलाकात कई सांसदों से हो रही है, सुबह सुबह ये मुलाकात होती है।
0: चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी के। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।

0: बिजली का बिल, पेड़
1: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
2: कैसे?
1: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
2: इतना माही वे।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: बहुत टायर्ड हो गई. Take a, take a date,
2: not bites. No added sugar, preservative के बिना. Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया. Lion Dates Nut Bites. Take
3: a, Lion Date Nut Bites.
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील TMT से बना.
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड.
7: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
8: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
7: Vimal, bolo zuba kesri. Hint, bade

0: आराम से।
1: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
2: एयू
3: सोच बदलो और बैंक भी।

युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार सामने आया मुज्तबा का वीडियो। ईरानी मीडिया ने दिखाया सुप्रीम लीडर का वीडियो। किस मकसद से जारी किया गया यह वीडियो? क्या यह वीडियो 28 फरवरी से पहले का है? ऐसे ही तमाम सवालों के साथ 13 सेकंड के इस वीडियो ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। अमेरिका और इसराइल जैसे देशों के खुफिया और साइबर एजेंसियां तो अब तक इसके एक एक फ्रेम का पोस्टमार्टम कर चुकी होंगी। ये वीडियो मुज्तबा खामनेई का है, ईरान के नए सुप्रीम लीडर का, जिनके बारे में अभी तक कहा जा रहा था कि उनकी हालत बेहद गंभीर है और किसी खुफिया जगह पर उनका इलाज चल रहा है। इलाज इतने खुफिया तरीके से चल रहा है कि वहां तक ईरान के राष्ट्रपति और कुछ गिने चुने कमांडर ही जा सकते हैं। 28 फरवरी को अमेरिका की एयर स्ट्राइक में अली खामेनेई और उनके परिवार के कई लोगों की मौत हो गई थी, जबकि मुज्तबा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाद में ट्रंप ने भी माना था कि मुज्तबा जिंदा हैं। IRGC ने पिछले 5 महीनों में कई बार उनके ऑडियो और लिखित मैसेज जारी किए हैं, लेकिन मुज्तबा खामेनेई की 28 फरवरी के बाद से आज तक एक भी तस्वीर और फोटो जारी नहीं की गई थी। जुलाई के पहले हफ्ते में उनके पिता की अंतिम यात्रा जब ईरान के अलग अलग शहरों से निकल रही थी, तब भी उन्हें किसी ने नहीं देखा। कहा गया कि सुरक्षा के मद्देनजर वो सार्वजनिक स्थानों पर नहीं आ सकते। खैर, अब जब वीडियो सामने आया है तो कई सवाल भी साथ लाया है। इसे ईरानी सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया है, बल्कि मेहर न्यूज एजेंसी ने दिखाया है। क्या ये वीडियो ताजा है या फिर 28 फरवरी को हुए हमले से पहले का है? इस वीडियो को इस वक्त जारी करने का असली मकसद क्या है? अगर ये ताजा वीडियो है तो गंभीर रूप से घायल मुज्तबा इतने स्वस्थ कैसे दिख रहे हैं? इस वीडियो में मुज्तबा एक कमरे में करीब 10 लोगों से घिरे हुए हैं और किसी मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन उनके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं दिख रहा है। इस बीच होर्मुज ने ईरान और अमेरिका दोनों के जिद पर अड़ने की वजह से टकराव के हालात टले नहीं हैं। UAE ने आरोप लगाया है कि उसके एक तेल टैंक पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया है। बहरीन ने भी इस हमले का विरोध किया है। दूसरी तरफ ईरान का साफ कहना है कि अमेरिकी नाकेबंदी की मौजूदगी में उसके तय रूट को न मानने वाले हर जहाज के लिए मुश्किलें बढ़ती ही जाएंगी और हर हाल में होर्मुज में आवाजाही उसके ही निर्देशों के हिसाब से होगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि बातचीत करने वाले पक्ष फारस की खाड़ी में जहाजों की आवाजाही के लिए अस्थायी समुद्री मार्ग तैयार करने के बेहद करीब पहुंच गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि होर्मुज फौरन खोल दिया जाएगा। बातचीत तो जारी है, लेकिन होर्मुज खोलने के लिए ईरान ने जो 9 शर्तें अमेरिका के सामने रखी हैं, उन पर सहमति बनने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। यानी अगले कुछ दिनों में होर्मुज में हाहाकार खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं है। आज तक ब्यूरो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: हमारा एक तिरंगा हमारे सादगी का, हमारे विकास का, हमारी विरासत का और भारत के आन बान और शान का प्रतीक है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने भारत के प्रतीकों के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों को संज्ञेय अपराध की सूची में रखते हुए दंडित करने का निर्णय भी लिया है। अब ये नहीं चल सकता कि रहेंगे भारत में लेकिन भारत के प्रतीकों को, भारत के महापुरुषों को, भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपमानित करें। तिरंगा हमारे घर में लगे, हर घर तिरंगा के संकल्प के साथ, हर घर तिरंगा के इस मंत्र के साथ, तिरंगा के मंत्र को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको भी अधिकार दिया है तिरंगा के प्रति सम्मान का भाव हो, लेकिन उसके कोड में संशोधन करते अनिवार्य कर दिया है कि आप अपने घर में पहना सकते हैं। पहले कांग्रेस के समय में इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती थी, कोर्ट में जाना पड़ता था, माननीय न्यायालय की शरण लेनी पड़ती थी, तब हम लोग तिरंगा अपने घर में लगा पाते थे। लेकिन मोदी जी ने 140 करोड़ भारतीयों को आजादी दी कि नहीं, अपने आन बान शान के प्रतीक तिरंगा को आप भी अपने घर के ऊपर लगाएं। और ये भारत का स्वाधीनता दिवस के पूर्व ये तिरंगा यात्रा उसी का प्रतीक है।
2: ये बीजेपी और आरएसएस देश के लिए कुछ नहीं किया, आजादी के लिए कुछ नहीं किया। मेरे को बताओ, कोई आरएसएस का आदमी देश के आजादी के लिए जेल में गया है? आपके पास कोई बीजेपी के चेले गई हैं? अगर गई भी है तो वो लोग ऐसे होंगे जो कांग्रेस में रह के उधर भाग गए होंगे, लेकिन असल बीजेपी का आदमी कोई भी इस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया। अरे ये इतिहास है तुम्हारा, और हमको हमेशा सिखाते हैं देशभक्ति। अरे देशभक्त तो असल हम हैं, तुम सब भगोड़े हैं।

आज के समय में मोबाइल से स्कैन करके पेमेंट करना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन आने वाले दिनों में यूपीआई ट्रांजैक्शन के नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसके बाद 2,000 रुपए से ज्यादा के कुछ यूपीआई मर्चेंट पेमेंट्स पर एमडीआर लग सकता है। दरअसल संसद में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है, जिसके बाद यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर लागू करने का रास्ता खुल सकता है। आसान भाषा में समझे तो एमडीआर वो फीस होती है जो दुकानदार डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने के बदले बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को देते हैं। फिलहाल यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 0 MDR लागू है, लेकिन आगे चलकर इस पर एक तय सीमा के बाद चार्ज लगाया जा सकता है। हालांकि प्रस्तावित बदलाव के बाद कई तरह के विकल्पों पर चर्चा हो रही है, जिनमें बड़े कारोबारियों के लिए ट्रांजैक्शन वैल्यू या टर्नओवर के आधार पर एमडीआर लागू करने पर विचार हो सकता है। वहीं 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना टर्नओवर वाले बड़े कारोबारियों को दायरे में लाने का प्रस्ताव सामने आया है और 2,000 से ज्यादा की यूपीआई पेमेंट पर 0.3 से 0.5% तक एमडीआर लगाने का प्रस्ताव भी सामने आया है। ब्रोकरेज फर्म जेफ्रीज की रिपोर्ट के मुताबिक 2,000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन कुल यूपीआई

का महज 4% है, लेकिन कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू में इनकी हिस्सेदारी करीब 67% है। अनुमान है कि अगर इस तरह का मॉडल लागू होता है तो डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री को हर साल 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है। लेकिन इस संभावित बदलाव का असर ग्राहकों और कारोबारियों के व्यवहार पर भी पड़ सकता है। लोकल सर्कल्स के एक सर्वे के मुताबिक 53% लोग MDR लागू होने पर 3,000 से महंगे पेमेंट के लिए UPI का इस्तेमाल घटा सकते हैं। वहीं 27% लोग क्रेडिट कार्ड, 14% डेबिट कार्ड और 12% बैंक ट्रांसफर या नगद भुगतान का विकल्प चुन सकते हैं। जबकि 18% लोगों का कहना है कि अगर अतिरिक्त लागत दुकानदार खुद वहन करें तो वो UPI का इस्तेमाल जारी रखेंगे। सर्वे में शामिल 12% लोगों ने कहा कि वो चार्ज लगने के बाद भी UPI का इस्तेमाल करते रहेंगे और 14% लोगों ने कहा कि उनका फैसला लगने वाले शुल्क पर निर्भर करेगा। सरकार ने संशोधन प्रस्ताव में सेक्शन 10A हटाने का प्रावधान किया है, जो फिलहाल 0 MDR का प्रावधान देता है, लेकिन फिलहाल ग्राहकों पर किसी तरह का प्रत्यक्ष शुल्क लगाने का प्रस्ताव नहीं है। जानकारों का मानना है कि पेमेंट सिस्टम को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए राजस्व मॉडल की जरूरत हो सकती है। साफ है कि इसके बाद ये बहस तेज हो सकती है कि देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट व्यवस्था को आगे कैसे फंड किया जाएगा। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: केंद्र सरकार से बातचीत बेनतीजा रहने के बाद आज सुबह 10 बजे से छात्रों की विधानसभा कूच की तैयारी। झारखंड पीसीएससी के 3 सदस्यों का इस्तीफा, सभी मांगे मानने पर अड़े हैं आंदोलनकारी। मॉनसून सत्र के आखिरी 4 दिन अहम, आज पेश हो सकते हैं 4 बिल। कांग्रेस और एसपी ने अपने सभी सांसदों को दिए सदन में रहने के निर्देश, इंडिया ब्लॉक की बैठक में तय होगी रणनीति। परिसीमन और एफसीआरए पर तनातनी के बीच महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासत में नई हलचल, पीएम मोदी से आज मिलेंगे शरद पवार गुट के सभी 8 सांसद, सुप्रिया सुले ने बताया आधिकारिक बैठक। उत्तर 24 परगना में ममता के काफिले पर हमला, पूर्व सीएम का बीजेपी पर गंभीर आरोप, केजरीवाल ने भी उठाए सवाल, मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले ये जनता का आक्रोश। पवित्र महीना सावन का आज दूसरा सोमवार, सुबह से शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, जलाभिषेक और विशेष पूजा अर्चना के लिए चल पड़े हैं कांवड़िए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, सुबह के 8 बजे है, मैं हूं आपके साथ पूजा। वक्त हो गया है खास बुलेटिन सुपर 8 का। इस बुलेटिन में तमाम अहम खबरें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले खबर होगी रांची में छात्रों के विधानसभा मार्च की, ये भी बताएंगे आपको कि 5 घंटे की मैराथन मीटिंग में आखिर क्या कुछ हुआ है। सवाल ये भी है कि कल सरकार और छात्रों के बीच वार्ता क्यों नाकाम रही। खबर संसद में जारी एफसीआरए पर टकराव की भी होगी, साथ ही यूपी चुनाव से पहले जारी सियासत की एक एक खबर आपको देंगे और दिखाएंगे कि कांवड़ियों का भव्य स्वागत कैसे हो रहा है। खबर दाहोद में हुए लाठीचार्ज की भी डिटेल के साथ आपको देंगे और पप्पू यादव का दिलचस्प अंदाज भी आगे आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर बात कर लेते हैं रांची की, क्योंकि रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन से जुड़ी बात है। सरकार और छात्रों के बीच गतिरोध अभी भी बरकरार है। अब तक सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत नाकाम ही रही, छात्रों की सभी मांगों पर सहमति नहीं बन सकी है। ऐसे में आज छात्र विधानसभा मार्च करने जा रहे हैं और कल 5 घंटे तक चली वार्ता में सरकार ने 14वीं परीक्षा रद्द करने पर हामी भरी है, लेकिन सीजीएल और जेएसएससी से जुड़े मुद्दों पर छात्र अब भी आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। दरअसल छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका प्रदर्शन चलता रहेगा। वार्ता के नाकाम होने के बाद अब आज सुबह 10 बजे छात्र झारखंड विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं। इससे निपटने के लिए सरकार की तरफ से जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। आंदोलनकारी को विधानसभा से पहले ही रोकने के लिए कटीले तार बैरिकेडिंग के ऊपर लगाए गए हैं। विधानसभा के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। छात्रों के मार्च को देखते हुए रांची में भारी सुरक्षा तैनात की गई है। छात्र मार्च करने वाले हैं, सरकार से जो बातचीत भी इससे पहले छात्रों की हुई है वो बेनकाम रही, बेनतीजा रही। ऐसे में अब छात्र मार्च पर अड़े हुए हैं। तो ये अलग अलग 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 5 घंटे कल एक बैठक हुई, बातचीत हुई, जो कि बेनतीजा रही है। आज छात्र विधानसभा मार्च करने की बात कह रहे हैं। वहीं बॉलीवुड एक्टर पीयूष मिश्रा भी रांची पहुंचे और छात्रों के आंदोलन का वो हिस्सा बने हैं। दरअसल प्रदर्शन में पहुंचकर उनकी हौसला अफजाई उन्होंने की और अपने ही गीतों के जरिए उन्होंने छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन भी किया है।
2: और इस सब पर छात्रों का क्या कुछ कहना है सुनिए।
3: झारखंड के तमाम छात्र नौजवानों से यह अपील करना चाहूंगा कि अगर आपको टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितनी भी एग्जाम ली गई है उसको अगर रद्द करवाना है, उसमें अगर सीबीआई जांच करवाना है, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करवाना है उसमें सीबीआई जांच करवाना है, तो कल का जो है जो विधानसभा मार्च विधानसभा घेरावा है, आप झारखंड के किसी भी कोने में हो इस आंदोलन को कल के मार्च को सफल बनाने के लिए रांची जरूर आइए, रांची पुराना विधानसभा जरूर आइए। 9 से 10 बजे तक आप लोग वहां पहुंचिए और बिल्कुल शांति और संवैधानिक तरीके से हम लोग अपना आवाज उठाएंगे।
2: तो छात्रों की सभी मांगों पर अभी तक सहमति नहीं बनी है, जिसको लेकर आज छात्र विधानसभा मार्च करने वाले हैं। पूरी सुरक्षा बल वहां पर तैनात कर दी गई है। देखिए, रांची में 17वें दिन भी अभी प्रदर्शन जारी है। ऐसे में प्रदर्शनकारी छात्र की सभी मांगे अभी तक मानी नहीं गई है। झारखंड सरकार ज्यादातर मांगे जो है वो मान चुकी है। अभी तक जो बैठकें हुई उसमें झारखंड सरकार छात्र प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं, उनका एक कहना है। वहीं प्रदर्शनकारी जो छात्र है वो सिर्फ 14वीं परीक्षा रद्द की मांग कर रहे हैं, सीजीएल जेएसएससी के मुद्दे नहीं मान रही है सरकार, उनका ऐसा कहना है। तो 17वें दिन भी प्रदर्शन जारी है। सीजीएल परीक्षा रद्द करने का अधिकार नहीं है, यह झारखंड सरकार साफ कर चुकी है। आपराधिक पहलुओं की जांच सीबीआई ही करेगी, यह भी उनका कहना है। वहीं सीबीआई जांच पर सहमति छात्रों की नहीं बन पाई है। जितनी भी बातचीत हुई है उसमें आंदोलन जारी रहेगा, अभी तक प्रदर्शनकारी छात्रों का यही मानना है। आज विधानसभा मार्च भी छात्र करने वाले हैं। तो वहीं झारखंड के मंत्री सुदीप्त सोनू ने भी बैठक खत्म होने के बाद बताया है कि छात्रों से क्या क्या बात हुई, किन मुद्दों पर सहमति बनी है, देखिए।
4: बड़े दुर्भाग्य के साथ यह कहना पड़ता है कि इन तमाम प्रयासों के बाद भी छात्रों के तरफ से सीजीएल को रद्द करने को लेकर और सीबीआई की जांच को मांग को लेकर इस समझौता वार्ता टूट गई। मैं आपके माध्यम से तमाम छात्रों से यह विनम्रता पूर्वक अपील करना चाहता हूं कि आपकी अधिसंख्य मांगों को सरकार ने मांगा, जो मामले न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जिनका प्रकाशन हुआ था परीक्षा फल का, उसको रद्द करना सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर था। यदि संबंध में ऑनरेबल कोर्ट का कोई डायरेक्टिव आएगा तो वो सरकार निश्चित रूप से उसको मानेगी। तो मेरा आपके माध्यम से तमाम छात्रों से, तमाम छात्र के अभिभावकों से, चूँकि वो हमारे बच्चे ही हैं और बच्चे हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो बच्चे और उनके अभिभावक इस बात को बड़ी गंभीरता से लेंगे कि सरकार ने बच्चों की लगभग सारी मांगों को मानते हुए उनको आंदोलन के रास्ते से पर जाने से रोकने का प्रयास किया है। और मैं पुनः अपील करता हूं कि जब सरकार आपकी सारी बातों को मानने को तत्पर है तो आपका आंदोलन में जाना कहीं से भी श्रेष्ठ नहीं है।
2: सरकार के दावों के उलट छात्र कह रहे हैं कि उनकी कई मांगे नहीं मानी गई। छात्रों ने दो टूक कह दिया है कि एक भी मांग अधूरी रही तो आंदोलन जारी रहेगा।
5: लगाते हुए हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण मार्च करेंगे संवैधानिक तरीके से, और सरकार को ये आगाह करना चाहते हैं कि सरकार किसी भी तरीके से इस आंदोलन को बरगलाने की कोशिश ना करे, छात्रों को फुसलाने की कोशिश ना करे। हमारी जो बहुत महत्वपूर्ण मांग है कि सीजीएल को रद्द करना होगा और सीजीएल की सीबीआई इंक्वायरी करानी होगी, और जो रिफॉर्म का हमारा मॉडल जो हम लोगों ने दिया है एडवाइस, उसको सरकार को मानना होगा, और जो कैलेंडर की बात की है हम लोगों ने, उस कैलेंडर पर भी सरकार को फॉलो करना होगा। अगर एक भी मांग सरकार नहीं मानती है तो ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक मांग पूरी नहीं होगी।
2: हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा सीधे हमारे साथ रांची से जुड़ गए। आशुतोष, आज विधानसभा मार्च है छात्रों का, कई घंटे की कल बातचीत हुई वो भी बेनतीजा रही, अभी वहां की तस्वीरें दिखाइएगा।
6: और चूंकि बेनतीजा रही, छात्रों ने कहा कि जेएसएससी और सीजीएल पर चूंकि सहमति नहीं बनी और वही अब डेडलॉक का केंद्र है, इसीलिए छात्रों का ये जो रेला है वो निकल चुका है। जितने ऑटो हैं ना, ये सब भर भर के छात्र जो है वो पुरानी विधानसभा की ओर जा रहे हैं, और पुरानी विधानसभा से जो मार्च है 3 किलोमीटर का नई विधानसभा तक वो होगा। दरअसल धरना स्थल से लेकर के जो पुरानी विधानसभा है और पूरे इलाके में, वहां पर धारा 163 लगाई गई है, स्कूलों को बंद कर दिया गया है, 5 बड़े लेवल के बैरिकेड हैं, 2000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, आईआरबी लगाई गई है, झारखंड पुलिस तैनात है, रिस्पॉन्स टीम तैनात है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो छात्र हैं गुमला, हजारीबाग, खूंटी, शायद ही झारखंड का कोई इलाका है जहां से नहीं आए हैं, तो तिरंगा लेकर के, और इतना ही नहीं, 16 दिनों तक जिस अनुशासन में ये छात्र रहे हैं आज भी उन्होंने ये अनुशासन तय किया है, किसी तरह की हिंसा नहीं होगी, आपत्तिजनक नारे नहीं होंगे, भड़काऊ कुछ नहीं होगा, और वो एक सांकेतिक प्रदर्शन करके विधानसभा घेराव के लिए विधानसभा तक जाना चाहते। देखिए नीचे जितनी गाड़ियां हैं ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का। सरकार ने कहा कि जेएसएससी और सीजीएल की जो परीक्षा, तो ये 15 साल पुराना नोटिफिकेशन, 2000 से ज्यादा भर्तियां, लेकिन दो दो बार अनियमितताएं, कभी पेपर लीक, और उसमें भर्ती किसकी होती है, अभय तिवारी की। तो इसी अनियमितताओं के बाद ये जो 10 साल का गुस्सा है ये फूटा है, और इसीलिए छात्र चाहते हैं कि जिसमें 150 भर्तियां होती है वो तो आपने रद्द कर दी, लेकिन जहां 2,200 भर्तियां निकलती हैं, अगर उसमें इंसाफ नहीं मिला और इसी वजह से देखिए कि ये तमाम जो लोग हैं, जो छात्र हैं, कि हमारी मांगे पूरी करो नारे लगाते हुए हाथों में झंडा लेकर के छात्रों का ये रेला अब विधानसभा की ओर जा रहा है। 9:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया था जहां पर ये छात्र इकट्ठा होंगे और उसके बाद विधानसभा ठीक 10 बजे ये मार्च शुरू होगा। पूजा,
2: आशुतोष, आंदोलनकारी छात्रों को वहां पर उससे पहले ही रोकने की, उससे निपटने के लिए क्या तैयारी वहां पर की गई है, बताइएगा।
6: लगभग 1 किलोमीटर पहले इन्हें रोक दिया जाएगा, चूंकि यहां पर धारा 163 लगाई गई है। और आमतौर पर जब हम कहते हैं कि संसद मार्च या विधानसभा मार्च, इसका यह मतलब नहीं कि छात्र विधानसभा में ही घुस जाएंगे, एक सांकेतिक मार्च है। लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को यह भी चिंता होती है कि छात्रों की संख्या जब हजारों में हो तो कहीं पर कोई उपद्रवी तत्व इसमें ना हो, तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती होती है। तो 1 किलोमीटर पहले ही बार फेंसिंग वायर लगा दिए गए हैं, 5 बड़े लेवल के ऊंचे बैरिकेड लगाए गए हैं और सुरक्षा कर्मियों का जमावड़ा, जिसमें जो IRB है, आम पुलिस है, रिस्पॉन्स टीम, इन सबको तैनात किया गया है। तो हम लगभग अब उस इलाके में पहुंचने ही वाले हैं और उसके बाद लगभग 3 किलोमीटर पहले इन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी। हालांकि कई बार क्या होता है, प्रदर्शनकारी कुछ बैरिकेड पार कर जाते हैं, तो ये पूरा मुमकिन है कि विधानसभा से लगभग 750 मीटर के पहले जहां पर बाब वायर लगाए गए हैं वहीं पर इन छात्रों को रोक लिया जाए और उसके बाद ये धरना खत्म हो।
2: ठीक है आशुतोष, नजर बनाए रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं रांची में JPSC JSSC परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच कल एक बड़ी खबर सामने आई। JPSC के 3 सदस्य अजीता भट्टाचार्य, अनिमा हासंदा और साथ ही जमाल अहमद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब आज झारखंड लोक सेवा आयोग की सदस्य अजीता भट्टाचार्य से पूछताछ की तैयारी है, CID सवाल जवाब उनसे कर सकती है। तो वही मॉनसून सत्र के महज 4 दिन बचे हैं और आज एक बार फिर से दिल्ली में हलचल बढ़ने वाली है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को टारगेट करने में जुटे हुए हैं। तो वही आज लोकसभा में 4 बिलों पर चर्चा होने वाली है। इसमें एक केरल अल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026 है, तो वहीं दूसरा नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक्ट 1962 संशोधन बिल है। ये दोनों बिल अमित शाह पेश करेंगे। FCRA बिल को लेकर कांग्रेस ने पहले से ही मोर्चा खोला हुआ है। वहीं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2026 पेश करेंगे। तो कौन कौन से बिल है, केरल ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम बिल 2026 जो कि पेश किया जाएगा आज लोकसभा में, 4 बिल पेश होंगे, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन संशोधन बिल 2026 पेश किया जाएगा, वहीं ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2026 भी आज पेश किया जाएगा और माइंस एंड मिनरल्स एक्ट संशोधन बिल 2026 पर भी बात की जाएगी। तो 4 लोकसभा में सामने आने वाले हैं।
7: महिला आरक्षण से जुड़े बिल पर क्या होगा नहीं पता, परिसीमन का क्या होगा नहीं पता, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट का क्या होगा इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। इन अहम मुद्दों पर अनिश्चितता के बीच एक बात की लकीर खिंच चुकी है कि संसद के दोनों सदनों में आज फिर हंगामा होने वाला है। दरअसल विपक्ष छात्रों पर हुए पुलिस एक्शन को लेकर लगातार हल्ला बोल कर रहा है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां लगातार अमित शाह को निशाना बना रही हैं, वहीं सरकार विपक्ष के हमलों पर पलटवार कर रही है।
8: कौन सा मंत्री कब बोलेंगे, किस विषय पे बोलेंगे, ये सदन तय करता है चेयरमैन के अप्रूवल से, और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी में कौन सा मिनिस्टर किस विषय पे बोलना है ये सरकार तय करता है, वो ओपोजिशन तय नहीं कर सकते कि कौन सा मंत्री कब बोलना चाहिए।
7: सवाल है कि मॉनसून सत्र के बचे हुए 4 दिनों में क्या होने वाला है। आज पहले दिन लोकसभा में 4 बिल पेश किए जाने हैं, लेकिन सियासत के केंद्र में मौजूद महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े बिल को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। न ही FCRA बिल को लेकर कोई समय सीमा तय की गई है, फिर भी कांग्रेस ने FCRA बिल के खिलाफ ऐलान ए जंग कर दिया है।
9: एजेंडे में तो आया नहीं,
10: एजेंडे में नहीं आया है, और इसी हफ्ते में सोच रहे हैं कि
9: लेकिन अगर ये लेकर आएंगे तो उसका विरोध होगा। देखिए, ये हर चीज के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। राम मंदिर चंदा चोरी सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी तरीके से ये ट्रस्ट के अंदर जो बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, उन सब ट्रस्ट को अपने अधीन करना चाहते हैं।
7: FCRA बिल का मकसद विदेशी फंडिंग पाने वाले संगठनों पर निगरानी को और कड़ा करना है। इसमें उन गैर लाभकारी संगठनों की संपत्ति को जब्त करने और उसका प्रबंधन करने के लिए एक शक्तिशाली नए प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव है, जिनका लाइसेंस रद्द हो जाता है। इस बिल के खिलाफ कई विपक्षी दलों के साथ साथ ईसाई संगठनों ने भी सवाल उठाए। आज तक ब्यूरो।
2: एक और बड़ी खबर, आज एनसीपी शरद गुट के सभी 8 सांसद पीएम मोदी से मिलने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक संसद भवन में प्रधानमंत्री से उनकी ये मुलाकात होगी, जिसमें वो महाराष्ट्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एनसीपी शरद गुट के सांसद की मुलाकात होने वाली है। 8 सांसद वहां पर मौजूद रहेंगे। इस मुलाकात में कई मुद्दों पर बातचीत होगी, जिसमें वो महाराष्ट्र से जुड़े मुद्दे। और अब कुछ और अहम खबरें यूपी चुनाव से जुड़ी राजनीति की, आपको दिखाते हैं कि कैसे 2027 के चुनाव से पहले सियासी घमासान छिड़ा हुआ है।
11: योगी बाबा जिंदाबाद।
7: यूपी में चुनावी माहौल बनता जा रहा है, सियासत तेज होती जा रही है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच एक दूसरे पर जोरदार वार तेज हो गए हैं। अभी एक दिन पहले ही सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला।
11: कांग्रेस ने देश के
7: अंबेडकर नगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने आरोप लगाया कि पहले दंगाइयों के आगे सरकार घुटने टेक देती थी, लेकिन आज दंगाइयों से नाक रगड़वाई जा रही है।
12: और आज जब कोई धमकी देता है कि दंगा करवा देंगे, तो मैं कहता हूँ आओ बच्चों थोड़ा दंगा करवा लो, मैं तुम्हें दंगा कराना सिखा देता हूँ कैसा दंगा होता है।
7: जेएनजी विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है, अगस्त क्रांति निरंतर रहे, देश का प्रगतिशील युवा कह रहा है भाजपाइयों रास्ता छोड़ो, बदलाव की आग लाती है इनकलाब। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि पर संभावित कार सेवा को लेकर अयोध्या तक सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए कार सेवा जैसे मुद्दे उछाल रही है।
13: वो पहचानना कमजोर हो जाए
7: तो देश और प्रदेश की असली समस्याओं से सरकार का कोई नाता नहीं है। अवधेश प्रसाद ने यह भी कहा कि बीजेपी को विकास से कोई मतलब नहीं है और वह पीढ़ियों की बढ़ती ताकत से चिंतित है।
2: तो वहीं पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कल उत्तरी 24 परगना में भीड़ ने हमला कर दिया। उन पर पत्थर चले, चप्पल फेंकी गई, उनके विरोध में चोर चोर के नारे भी लगे हैं। ममता बनर्जी का आरोप है कि बीजेपी के गुंडों ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की है। हालांकि बीजेपी ऐसे आरोप से इनकार कर रही है।
7: पूर्व सीएम ममता बनर्जी उत्तरी 24 परगना के हली शहर पहुंची थी, तभी उनके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गया। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध में नारेबाजी करने लगे। ममता बनर्जी टीएमसी के एक कार्यकर्ता के घर जा रही थी। आरोप है कि स्थानीय पुलिस की हिरासत में उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। उसी कार्यकर्ता के परिजनों से मिलने ममता बनर्जी पहुंची थी, तभी वहां बवाल शुरू हो गया। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने काफिला रोककर हमला किया। किसी ने उनकी कार को निशाना बनाया, जिससे कार का शीशा टूट गया।
14: मेरे को गाड़ी में बड़े बड़े पत्थर मारा गया, बाहर से एंटीसोशल पुलिस का सामने में इतना गाड़ी को अटक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस के सामने में हुआ, हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा।
15: पुलिस क्या कर रहे हैं?
14: पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है।
7: वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि उग्र भीड़ काफिले की गाड़ियों का पीछा कर रही है।
16: लोकेशन तो देखते हैं,
7: गाड़ियों पर कीचड़ फेंका जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं और जमकर नारेबाजी हो रही है।
17: इस तरीके की हरकत मैं समर्थन नहीं करता हूं। हमारी जो लड़ाई सियासी लड़ाई होना चाहिए और उसमें बंगाल की जो तहजीब है, तहजीब के मुताबिक सारा कुछ होना चाहिए। हर चीज में गुंडागर्दी, गली गलौज, नीच हरकतें, ये नहीं होना चाहिए बंगाल में।
7: तनाव के बीच पुलिस कर्मियों ने सुरक्षा घेरा बनाकर ममता बनर्जी को वहां से बाहर निकाला। ममता बनर्जी के आरोपों पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पलटवार किया और सवाल उठाए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वहां न तो बीजेपी के झंडे थे और न ही बीजेपी के कार्यकर्ता। वहीं मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि इस तरह की घटना बीजेपी की संस्कृति नहीं है।
18: लेकिन ये बंगाल की संस्कृति नहीं है।
15: आप एक एक्स मुख्यमंत्री, अरे एक्स मुख्यमंत्री भी छोड़िए, एक महिला के ऊपर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं।
7: ममता बनर्जी पर हुए हमले को लेकर अब कोलकाता से दिल्ली तक सियासत तेज हो गई है। कई विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल उठाए। हावड़ा से वैद्यनाथ झा और आसनसोल से अनिल गिरी के साथ तापस सेन गुप्ता, कोलकाता आज तक।
2: तो वहीं आज पवित्र सावन महीने का दूसरा सोमवार है और इस मौके पर सुबह से ही देश के अलग अलग इलाकों में स्थित मंदिरों में श्रद्धालु की भीड़ है। जलाभिषेक के लिए तांता लगा हुआ है। तस्वीर आप देखिए, हर कोई शिवालय पहुंच रहा है ताकि वो शिवलिंग पर जल अर्पित कर सके। भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तमाम शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, कावड़ यात्री जलाभिषेक कर रहे हैं। तो वहीं यूपी और बिहार में कावड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं, उनका जबरदस्त स्वागत भी किया जा रहा है।
7: सावन का दूसरा सोमवार, कावड़ियों का आगाज श्रद्धा का पावन रंग यूपी के शहरों में भी दिखा और उन्हीं में से ये खास तस्वीर आई है सहारनपुर से। सहारनपुर के गागलहेड़ी कांवर मार्ग पर कांवड़ियों पर फूल बरसे, हर हर महादेव के जयकारे लगे। वहां यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री कुंवर ब्रिजेश सिंह, जसवंत सिंह सैनी, जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान और एसएसपी अभिनंदन ने कांवड़ियों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। पुष्प वर्षा होते ही पूरा कांवड़ मार्ग हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। सहारनपुर में ही एक और दिलचस्प तस्वीर नजर आई। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी कांवड़ियों के बीच पहुंचे। कांवड़ कैंप जाकर उन्होंने भी तीर्थ यात्रियों की सेवा की, उनके बीच फल और जूस बांटे।
9: 25-30 साल से मैं तो लगातार कर रहा हूँ, हर साल हमारे साथी कांवड़ शिविर लगाते हैं, हमारा कांवड़ शिविर लगते हैं। उन कांवड़ शिविरों के अंदर जा करके जितनी अपने से हो सकती है उतनी उनकी सेवा करने की कोशिश की जाती है कि जो लोग जल लेकर के आ रहे हैं, जो भक्त लोग आ रहे हैं, वो हमारे यहाँ मेहमान हैं और उन मेहमानों का जितना स्वागत सत्कार किया जा सके उतना कोशिश करते हैं।
7: उधर बिहार के बांका में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी कांवड़ियों का स्वागत करते दिखे। रविवार को देवघर से अवरखा जाने के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का काफिला कुछ देर के लिए कटोरिया बाजार रुका। इस दौरान शिविर में समिति के सदस्यों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का स्वागत किया। नित्यानंद राय ने भी कांवड़ियों की सेवा की। कुछ देर रुकने के बाद उनका काफिला अवरखा की ओर रवाना हो गया। बांका से दीपक कुमार के साथ राहुल कुमार, सहारनपुर आज तक।
2: तो बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव झूमते नजर आए और साथ ही तीर धनुष चलाते भी दिखे हैं। मौका था विश्व आदिवासी दिवस का। पूर्णिया में विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी समुदाय ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक नृत्य, तीरंदाजी प्रदर्शन और भव्य जुलूस निकाला। इस पूरे मौके पर सांसद पप्पू यादव समेत कई जनप्रतिनिधि इन उत्सव में पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। पप्पू यादव खुद भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए और सबके साथ मिलकर वो भी परंपरागत आदिवासी नृत्य करने लगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय पदक विजेताओं से मुलाकात की और उन्होंने खिलाड़ियों के साथ चाय पर चर्चा भी की है।

0: हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी चौधरी।
1: कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक वीरों से मिले मोदी, चैंपियंस से सुनी संघर्ष की कहानी, पढ़ाया हौसला। ये मुलाकात खास थी, ये मुलाकात थी उन चेहरों के साथ जिन्होंने सालों की मेहनत के बाद देश का मान बढ़ाया था। कॉमनवेल्थ गेम्स में तिरंगे की शान बढ़ाने वाले पदक वीरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और चैंपियंस के साथ चाय पर खूब चर्चा हुई।
2: भारत माता की।
1: जूडो से वेटलिफ्टिंग और बॉक्सिंग से लेकर एथलेटिक्स तक हर विजेता ने सुनाई पोडियम तक पहुंचने की कहानी। इस दौरान हौसला बढ़ाने वाली गंभीर बातें भी हुई तो हल्के फुल्के लम्हे भी दिखाई दिए। खिलाड़ी पहले से ही पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए काफी उत्साहित थे। इस बार ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 39 मेडल अपने नाम किए, जिनमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे। इस प्रदर्शन के साथ भारत मेडल टैली में चौथे पायदान पर रहा। अगले कॉमनवेल्थ गेम्स उस शहर में होने हैं जो अरसे तक पीएम नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि रहा है। अब 2030 में भारत का दोहरा इम्तिहान अहमदाबाद में होगा, शानदार मेजबानी करने का और ढेरों मेडल जीतकर तिरंगे की शान एक बार फिर बढ़ाने का। आज तक ब्यूरो।
3: और इसी के साथ सुपर 8 में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस,
5: इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: मिल गया।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
6: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
7: तो सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
5: मतलब
7: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
8: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
7: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।
9: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
10: नो एडेड शुगर, प्रिजर्वेटिव के बिना। डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
11: लायन डेट नट बाइट्स।
12: बिजली का बिल पेड,
13: तो है मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
14: कैसे?
13: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
14: इतना माही वे।
15: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
16: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
17: सोच बदलो और बैंक भी।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
3: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
6: In association with
7: Sarah Sanitaryware, it's your moment of Sarah. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल भरवाते वक्त हर वाहन मालिक की यही कोशिश होती है कि माइलेज अच्छा मिले और इंजन लंबे समय तक बेहतर चलता रहे। ऐसे में पेट्रोल में इथेनॉल की बढ़ती मिलावट को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठते रहे हैं। अब सरकार ने इस मुद्दे पर अपना रुख साफ कर दिया है। दरअसल भारी उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल E20 यानी 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से आगे बढ़ने को लेकर कोई नया फैसला नहीं लिया गया है। आसान भाषा में समझें तो E20 पेट्रोल पर सरकार का भरोसा बना हुआ है। अलग अलग टेस्टिंग और फील्ड ट्रायल्स में इंजन पर किसी बड़े नकारात्मक असर का कोई सबूत नहीं मिला है और सरकार ने E20 कार्यक्रम को ऊर्जा सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने के लिहाज से अहम बताया है। सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से वाहनों को नुकसान पहुंचने की आशंकाओं को भी खारिज किया है। मंत्रालय के अनुसार फील्ड ट्रायल्स में इंजन में जंग, असामान्य घिसाव या वाहन की उम्र घटने के ठोस सबूत नहीं मिले हैं, जबकि इथेनॉल ब्लेंडिंग से आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने में मदद मिली है। सरकार ने इस कार्यक्रम को खाद्य सुरक्षा, जल उपयोग और किसानों के हितों को ध्यान में रखकर लागू करने की बात कही है। इथेनॉल प्रोडक्शन को लेकर भी सरकार ने जानकारी दी है। देश में ईंधन मिश्रण के लिए अलग अलग कृषि स्रोतों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके तहत गन्ने के रस, मक्का, खराब हो चुके अनाज और टूटे चावल से इथेनॉल बनाया जा रहा है। वहीं इथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली फसलों की सिंचाई से जुड़ी जरूरतों पर एक्सपर्ट्स की सिफारिशों का अध्ययन चल रहा है और सरकार E20 कार्यक्रम को आगे बढ़ाने पर ही फोकस बनाए हुए है। फिलहाल सरकार की प्राथमिकता E20 पेट्रोल के इस्तेमाल को बढ़ाने की है। वहीं E20 से ज्यादा इथेनॉल मिश्रण या उससे जुड़े किसी नए नीति ढांचे पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। साफ है कि सरकार E20 पेट्रोल को देश की ऊर्जा रणनीति का अहम हिस्सा मान रही है। ऐसे में आने वाले समय में पेट्रोल पंप्स पर E20 की मौजूदगी बढ़ सकती है, जबकि इससे आगे के कदमों पर फैसला भविष्य की स्टडी और जरूरतों के आधार पर किया जाएगा। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

जिससे छात्रों ने की विधानसभा कूच की तैयारी। झारखंड पीएससी के 3 सदस्यों का इस्तीफा, सभी मांगे मानने पर अड़े हैं आंदोलनकारी छात्र। मॉनसून सत्र के आखिरी 4 दिन हैं, आज पेश हो सकते हैं 4 बिल। कांग्रेस और एसपी ने अपने सभी सांसदों को दिए सदन में रहने के निर्देश, इंडिया ब्लॉक की बैठक में तय होगी रणनीति। परिसीमन और एफसीआरए पर तनातनी के बीच महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासत में नई हलचल, पीएम मोदी से आज मिलेंगे शरद पवार, गुट के सभी 8 सांसद, सुप्रिया सुले ने बताया आधिकारिक बैठक। उत्तर 24 परगना में ममता के काफिले पर हमला, पूर्व सीएम का बीजेपी पर गंभीर आरोप, केजरीवाल ने भी उठाए सवाल, मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले ये जनता का आक्रोश। पवित्र महीना सावन का आज दूसरा सोमवार, सुबह से शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, जलाभिषेक और विशेष पूजा अर्चना के लिए चढ़ पड़े कांवड़ी।

में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों और सरकार के बीच गतिरोध बरकरार। सीबीआई जांच की मांग पर अड़े अभ्यर्थी, समझौते से इनकार। सीजीएल अभ्यर्थियों का आज झारखंड विधानसभा तक मार्च, सरकार से बातचीत बेनतीजा। सीबीआई जांच की मांग पर नहीं बनी सहमति। सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर सरकार अभ्यर्थी आमने सामने। सरकार ने परीक्षा रद्द करने से किया इनकार, कहा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई परीक्षा। जांच की निगरानी के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी का प्रस्ताव, अभ्यर्थियों ने सरकार की निगरानी कमेटी के प्रस्ताव को ठुकराया। जेपीएससी जेएसएससी विवाद में सरकार का बड़ा फैसला, 98% मांगे मानने का दावा। 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द, गड़बड़ी की जांच के आदेश। जेपीएससी मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रस्ताव, जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की तैयारी। भर्ती सुधार के लिए विशेषज्ञों की कमेटी भी बनेगी। जेपीएससी के तीनों सदस्यों ने दिया इस्तीफा, राज्यपाल ने तीनों सदस्यों का इस्तीफा मंजूर किया। कथित परीक्षा गड़बड़ी मामले में सदस्यों से पूछताछ होगी। जेपीएससी गड़बड़ी मामले में सीआईडी जांच तेज, मामले में अब तक 19 गिरफ्तारियां हुई। सीआईडी ने बड़ी मात्रा में डिजिटल सबूत जुटाने का दावा किया। जेपीएससी सदस्यों से पूछताछ का पूरा स्केड्यूल तय है। 10 अगस्त को अजीता भट्टाचार्य, 12 को जमाल अहमद और 14 अगस्त को अनीमा से होगी पूछताछ। छात्रों के मार्च को लेकर रांची में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। पुलिस बोली शांतिपूर्ण प्रदर्शन में परेशानी नहीं होगी, हिंसा की कोशिश पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संसद के मानसून सत्र का आज 16वां दिन, आज संसद में अमित शाह पेश कर सकते हैं 2 बिल। महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर विपक्ष का विरोध जारी, एफसीआरए संशोधन बिल के विरोध में कांग्रेस का रुख साफ। एफसीआरए बिल पर संसद में विरोध की चेतावनी, केसी वेणुगोपाल बोले अल्पसंख्यकों और एनजीओ को निशाना बनाना है, बिल पास नहीं होने देंगे। एफसीआरए बिल में विदेशी फंड लेने वाले संगठनों पर निगरानी बढ़ेगी, लाइसेंस खोने वाले एनजीओ की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव, ईसाई संगठनों का भी विरोध। वहीं नीट मामले में अमित शाह के बयान की मांग पर अड़ा विपक्ष, पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष का विरोध। पेपर लीक विरोधी बिल दोनों सदनों से पास, सरकार ने महिला आरक्षण और परिसमन पर विपक्ष से समर्थन मांगा। किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से 2 बार मुलाकात की, महिला आरक्षण और परिसमन पर राहुल गांधी ने सर्वदलीय बैठक की मांग की। महिला आरक्षण परिसमन पर सरकार विपक्ष में सहमति नहीं, अखिलेश और डीएमके से समर्थन की कोशिश। उदयनिधि बोले परिसमन बिल का समर्थन नहीं करेंगे। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सपा सांसदों का संसद परिसर में प्रदर्शन, चंदा चोर गद्दी छोड़ के लगाए गए नारे। कांग्रेस एसपी का सांसदों को 10, 11 और 12 अगस्त को सदन में मौजूद रहने का व्हिप, इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों से भी मौजूदगी सुनिश्चित करने को कहा। हलिसर में ममता बनर्जी की कार पर पथराव और कीचड़ फेंकने का आरोप, ममता बनर्जी ने हमले को साजिश बताया, पुलिस सुरक्षा पर उठाए गए सवाल। ममता बनर्जी का बंगाल सरकार पर बड़ा आरोप, कहा पुलिस की मौजूदगी में कार पर पत्थर और जूते फेंके गए, गुंडों के जरिए हमला कराने का लगाया आरोप। बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी ने घटना को बताया जनता का गुस्सा, शुभेंदु अधिकारी का दावा घटना से बीजेपी का कोई भी लेना देना नहीं। प्रदेश अध्यक्ष ने भी घटना की निंदा की। ममता के काफिले पर हमले से गरमाई सियासत, कल्याण बनर्जी बोले पत्थर लगने से सिर फट सकता था, जान भी जा सकती थी। बीजेपी मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हमले और बदसलूकी का विरोध किया, अग्निमित्रा पॉल बोली महिला के खिलाफ इस तरह का व्यवहार बीजेपी की संस्कृति नहीं। महाराष्ट्र में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी, 11 अगस्त से नई दरें होंगी लागू। राजस्थान सीआईडी स्पेशल ब्रांच की कार्रवाई में खुलासा, आतंकी कनेक्शन के आरोप में टोंक से 2 गिरफ्तार। एयर इंडिया की फ्लाइट टर्बुलेंस मामले में एक फ्लाइट का डोप टेस्ट पॉजिटिव आया, हादसे में 17 यात्री हुए थे घायल। बारामती में निजी ट्रेनी विमान दुर्घटनाग्रस्त, लैंडिंग के दौरान विमान क्रैश, कोई हताहत नहीं। ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन का सेवा विस्तार, 1 साल और पद पर बने रहेंगे राहुल नवीन। लखनऊ में हर घर तिरंगा यात्रा की शुरुआत, सीएम योगी ने तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी, कहा राष्ट्र प्रतीकों का अपमान अब नहीं चलेगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहे मौजूद। भोपाल में निकाली गई तिरंगा यात्रा, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी, युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का किया आह्वान। देहरादून में हर घर तिरंगा रैली का शुभारंभ, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में की शिरकत। ओडिशा के संबलपुर में निकाली गई हर घर तिरंगा रैली, पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बढ़ाया हौसला। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में सीएम युमनाम खेमचंद सिंह ने हर घर तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी, बड़ी संख्या में कार्यक्रम में लोग हुए शामिल। कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं से मिले पीएम मोदी, पदक वीरों की प्रधानमंत्री ने जमकर की सराहना। पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन से मुलाकात का वीडियो शेयर किया, खिलाड़ियों के चेहरों पर दिखी खुशी। प्रधानमंत्री ने वीडियो साझा कर दिया खास संदेश, कहा जो खेलेगा वो खेलेगा, भारत ने 39 मेडल जीते। पीएम से मुलाकात से पहले कॉमनवेल्थ गेम्स पदक वीरों में दिखा जबरदस्त उत्साह। कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट मीराबाई चानू बोली पीएम से मिलने के लिए उत्साहित हूं, बहुत खुश हूं, सब अच्छा रहेगा। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से घाटों का संपर्क टूटा, कई घाट पर आने जाने में करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। गंगा में बढ़ते जलस्तर को लेकर एनडीआरएफ और जल पुलिस अलर्ट, लगातार निगरानी जारी। लगातार बारिश के चलते एमपी के मंडला में उफान पर सभी नदी नाले, यहां का प्रसिद्ध महिष्मती घाट भी पानी में डूबा। शाहजहांपुर में गंगा नदी का तेजी से बढ़ रहा है जलस्तर, मिर्जापुर इलाके में कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। बिजनौर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने के बाद टापू में तब्दील हुआ गांव, करीब 2 दर्जन गांव का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। पवित्र सावन का आज दूसरा सोमवार, जलाभिषेक के लिए शिवालयों में श्रद्धालुओं की लगी कतार। सावन के दूसरे सोमवार पर काशी विश्वनाथ में हुई भव्य मंगला आरती, बाबा का किया गया विशेष श्रृंगार। बाबा विश्वनाथ के दरबार में सुबह से उमड़ रहा भक्तों का सैलाब, भक्तों पर बरसाए गए फूल। हापुड़ के
प्राचीन सिद्धपीठ श्री सबली महादेव मंदिर में भक्तों का उमड़ा हुजूम, पवित्र शिवलिंग पर किया गया जलाभिषेक। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर जयकारों से गूंजा श्री सबली महादेव मंदिर का परिसर, विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। महाराष्ट्र के अकोला में खेत के रास्ते के विवाद में खूनी खेल, आरोपी ने चलाई 6 गोलियां, 1 की मौत। बिहार के सीवान में फैमिली रेस्टोरेंट में लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला, उसका एक्शन लिया गया, होटल को किया गया सील। लखनऊ के गोमती नगर थाने की बैरक में सिपाही ने किया आत्महत्या, फांसी लगा कर दी जा। झांसी में नाइट क्लब में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। गाजियाबाद में ड्रग तस्करों से मुठभेड़, 2 आरोपी के पैर में लगी गोली, मुठभेड़ के बाद 3 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 21 किलो गांजा जब्त। गाजियाबाद के साहिबाबाद में नाबालिग की गोली मारकर हत्या, निर्माणाधीन साइट में घुसने की वजह से एक गार्ड से हुआ विवाद। लखनऊ के मडियाव थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में खूनी रूप लिया 22 साल के युवक की पिता पुत्र ने की हत्या। सोनभद्र में युवक पर महिला से छेड़खानी का आरोप, अर्धनग्न कर बाल मुंडवा कर पीटने और गांव में घुमाने का वीडियो वायरल, 10 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के रामगढ़ के श्रीराम पावर प्लांट में बड़ा हादसा हुआ, फर्नेस फटने की वजह से 10 से ज्यादा मजदूर घायल। एमपी के गुना में जूतों की माला पहनाने और उसका वीडियो वायरल होने से आहत कजोड़ बंजारा ने खाया जहर, एसपी ने केस दर्ज, जांच शुरू। एमपी के रतलाम बाल सुधार गृह से 7 बच्चे फरार, होमगार्ड से मारपीट कर भागे, बाद में 6 पकड़े गए, 1 की अभी भी तलाश जारी। जोधपुर की लेडी डॉन सुमता बिश्नोई 14 अगस्त तक रिमांड पर भेजी गई, चित्तौड़गढ़ के व्यापारी से करीब 2.5 करोड़ रुपए की ठगी में 2 बेटों समेत हुई थी गिरफ्तारी। राजस्थान के बयावर में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया, ऑपरेशन अग्निपथ के तहत मिली कामयाबी। हापुड़ में कावड़ मार्ग पर मुर्गे का मीट ले जाते वक्त युवक की कावड़ियों ने पिटाई की, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। अलीगढ़ के खैर थाना क्षेत्र में कावड़ यात्रा के दौरान हंगामा, टैंकर के चालक को कावड़ियों ने पीटा।

0: अब खबर रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन से जुड़ी। दरअसल सरकार और छात्रों के बीच गतिरोध अभी भी बरकरार है। अब तक सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच बातचीत नाकाम रही है। वार्ता के नाकाम होने के बाद आज सुबह 10 बजे छात्र विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं। आशुतोष हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। आशुतोष, अब बस कुछ समय बचा है और थोड़ी देर बाद विधानसभा मार्च की तैयारी वहां पर कैसी दिख रही है छात्रों?
1: विधानसभा कटीले तारों के साथ पूरे विधानसभा इलाके को किले में तब्दील कर दिया गया है। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, आईआरबी, झारखंड आर्म पुलिस, झारखंड पुलिस और इस पूरे इलाके को जहां मैं खड़ा हूं, मेरे पीछे झारखंड विधानसभा है, एक किले में तब्दील है। भारी भरकम तैनाती है, ये आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में, 2000 से ज्यादा की पूरी संख्या है। 4 से 5 स्तर की बैरिकेडिंग, हर बैरिकेडिंग के साथ हाथों में डंडा लेकर पुलिस यही पर यहां पर समझा रही है कि कैसे इस आंदोलन से निपटना अगर छात्र इस तरफ आते हैं। छात्रों को रोकने की कोशिश की जाएगी, इस तरह के बैरिकेड हालांकि इनको स्टैंड बाय पे रखा गया, अभी तक रास्तों को बंद नहीं किया गया है, लेकिन आएंगे तो इन कटीलों के तारों के साथ। दरअसल इसलिए कि छात्र जो है इसको पार ना कर पाए। इसी के साथ साथ ये देखिए, पूरा एक इलाका नहीं है, जितने भी हैं, सबसे ज्यादा दरअसल इसकी आलोचना विपक्ष भी कर रहा है कि क्या आप अपने छात्रों का स्वागत इन कटीले तारों के साथ करेंगे। उधर लाठी डंडा लिए और उसी के साथ साथ प्रोटेक्टिव राइट गेयर शीट जो है उसके साथ छात्रों की तैनाती है। देखिए वाटर कैनन भी आने लगे मेरे पीछे, यहां पर वाटर कैनन तैनात कर दी गई है, ये मेरे पीछे ठीक वाटर कैनन एक। इधर दूसरी तरफ ये जो दंगा नियंत्रण गाड़ी है जहां से आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा सकते हैं, पीछे जो है सैकड़ों की संख्या में और भी पुलिसकर्मी तैनात। अब आपको दूसरी तरफ लिए चलता हूं, दूसरी तरफ भी यहां पर मैं देख रहा हूं कि जो एंटी रॉयड गियर है वो तैनात किया गया है, जिसमें आंसू गैस के गोले यहां से दागे जा सकते हैं अगर छात्रों को रोकने की जरूरत पड़ी, और उसी के साथ पीछे वाटर कैनन। और ठीक 100 मीटर के पीछे जब मैं जाऊंगा तो वहां पर 3 से 4 और वाटर कैनन तैनात किए गए हैं। पूरा इलाका जो है ये किले में तब्दील कर दिया गया है। जितनी बैरिकेडिंग है उतना ही उससे ज्यादा बार फेंसिंग वायर है और इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहां पर वो कन्वेंशनल बड़े बैरिकेड नहीं है, तो इन्हीं को कांटों से लगा करके ऐसी सुरक्षा की गई है ताकि छात्र इसको पार ना कर सके। देखिए यहां पर एक और एंटी रॉयड व्हीकल तैनात है, ठीक मेरे पीछे आप अगर देखें तो यहां पर एक और जो है वाटर कैनन तैनात किया गया है। तो छात्रों को रोकने के लिए प्रशासन और पुलिस की तैयारी बहुत ज्यादा है क्योंकि बातचीत बेनतीजा रही। देखिए यहां पर भी आपको दिखा, ये दूसरा हिस्सा है, इस पर भी जो है बैरिकेडिंग के साथ साथ जो कटीले तार हैं उनको लगा दिया गया है, और इसके साथ बड़ी संख्या में जो झारखंड आर्म पुलिस है वो दूसरा इलाका है ठीक इससे 50 मीटर, यानी 100 से 50 मीटर पे 4 से 5 बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग, जैसे छात्र आएंगे इनको खींच करके आगे लगा दिया जाएगा और इस रास्तों को बंद कर दिया जाएगा ताकि छात्रों को विधानसभा के कम से कम 750 मीटर की दूरी पर रोका जा सके ताकि ये छात्र आगे न बढ़ने पाए। और इस पूरे इलाके में जहां से मार्च शुरू होना है 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी है, 5 से 7 ऐसे बड़े चेक पॉइंट बनाए गए हैं।
0: आशुतोष, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 10 अगस्त 2026 दिन सोमवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, प्रातः 8 बजे तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, दोपहर के 12:26 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, मान सम्मान मिलेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

सहायता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं।

को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी।

करें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। सिंह राशि, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, यात्राओं के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके

व्यक्ति की समस्याएं हल होंगी, नई जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।

आपकी हो सकती है, करियर में आपके कुछ बदलाव होगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाब।

सावधानी से चलाएं, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

बढ़ेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में कुछ बदलाव होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मकर राशि, मान सम्मान मिलेगा, करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आस।

रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, सर्दी जुखाम से बचाव करें, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, काम का बोझ भी बढ़ता जाएगा, परिवार में विवादों से बचाव करें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Goldie chole masale, jahan jaaye, rishte banaye.
2: Goldie laaye hain fresh lock technology, jo rakhe masalon ko har samay fresh.
3: दिल्ली के जंतर मंतर की सड़कों से लेकर झारखंड के स्टेडियम तक देश ने इस बार उस जनरेशन की बुलंद आवाज की ताकत देख ली है जिसे दुनिया जेन जी कहती है।
4: हम लोग भी देश की सेवा करने चाहते हैं।
3: एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनसे संवाद साध रहे हैं तो दूसरी तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इनके बीच चौपाल लगा रहे हैं।
5: थैंक यू फ्रेंड्स, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा।
6: वी आर गोइंग थ्रू ए स्ट्रेंज टाइम इन आवर कंट्री। Students are on the street in severe pain. They don't have work.
3: और तो और संघ प्रमुख मोहन भागवत भी अब जेन जी के साथ वैचारिक संवाद की टेबल पर हैं।
7: जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है।
8: जी सर,
7: इस अपनेपन से डायलॉग का 7 महीने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है। तो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
8: अरे वाह, बढ़िया है।
7: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील।
3: सवाल है आखिर अचानक सबका ध्यान जेन जी से बात करने, मनाने, समझाने या अपने साथ लाने पर क्यों है? क्योंकि ये वो पीढ़ी है जिसने बीते दौर की पुरानी राजनीतिक लड़ाइयों को नहीं जिया है। ये अतीत के बस्ते ढोने वाली पीढ़ी नहीं है, ये वो दौर है जो वर्तमान की हर एक चाल को खुली आंखों से देख रहा है और भविष्य का बारीक आकलन कर रहा है। साफ है, देश का ये युवा इतिहास के पन्नों को पलटकर नहीं बल्कि आज के हालात को देखकर अपना फैसला करेगा। जेन जी के वोट का रिमोट अब पुराने नारों से नहीं बल्कि नेताओं और राजनीतिक दलों के आज के एक्शन से कंट्रोल होगा।
9: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

के 3 सदस्यों का इस्तीफा। मॉनसून सत्र के आखिरी 4 दिन हैं, आज पेश हो सकते हैं 4 बिल। कांग्रेस और एसपी ने अपने सांसदों को दिए सदन में रहने के निर्देश, इंडिया ब्लॉक की बैठक में तय होगी रणनीति।

प्रिया सुले ने बताया आधिकारिक बैठक। उत्तरी 24 परगना में ममता के काफिले पर हमला, पूर्व सीएम का बीजेपी पर गंभीर आरोप। केजरीवाल ने भी उठाए सवाल, मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले ये जनता का आक्रोश।

0: रचना के लिए चल पड़े कांवड़िए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की।

0: विस्तार से और विस्तार से, लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। झारखंड में सरकार और छात्रों के बीच कहां अटक गई है बात, छात्रों ने क्यों कहा कि बरगला रही है सरकार। रांची में छात्रों के आंदोलन की पूरी डिटेल अब से कुछ ही देर बाद। कांवड़ सेवा में नेताजी, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद तक दिखाएंगे कांवड़ यात्रा की कुछ दिलचस्प तस्वीरें। सर्जरी के बीच गीत संगीत सोनू निगम के वायरल वीडियो से भी बुलेटिन में रूबरू होंगे। कैसे सर्जरी के दौरान सोनू निगम ने गाया रफी का गाना। ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत करें झारखंड में छात्रों के आंदोलन की खबर के साथ, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद लगभग सुबह 10 बजे से झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का विधानसभा मार्च है। कल सरकार और छात्रों के बीच तीसरे दौर की बैठक बेनतीजा खत्म हो गई है। हालांकि झारखंड के शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने दावा किया है कि छात्रों की 98% मांगे मान ली गई हैं। उन्होंने छात्रों से अपील की है कि वो अपने विधानसभा मार्च वापस ले लें, लेकिन छात्र नेताओं का कहना है कि सरकार बरगला रही है, जब तक 100% मांगे नहीं मानी जाती तब तक आंदोलन जारी रहने वाला है। कल 5 घंटे तक चली वार्ता में सरकार ने 14वीं परीक्षा रद्द करने की हामी भरी, लेकिन सीजीएल परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग खारिज कर दी गई। सरकार का कहना है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच जारी है, इसलिए इसे रद्द करना और सीबीआई जांच बिठाने की मांग वाजिब नहीं है।
1: कटीले तारों से बैरिकेडिंग, भारी सुरक्षा बंदोबस्त, झारखंड की राजधानी रांची में ये इंतजाम है छात्रों के विधानसभा मार्च को देखते हुए। भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्र आज विधानसभा तक मार्च करने वाले हैं। कल सरकार के साथ छात्रों की एक और दौर की वार्ता विफल हो गई। हालांकि सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगे मान ली गई हैं।
2: बड़े दुर्भाग्य के साथ यह कहना पड़ता है कि इन तमाम प्रयासों के बाद भी छात्रों के तरफ से सीजीएल को रद्द करने को लेकर और सीबीआई की जांच को मांग को लेकर इस समझौता वार्ता टूट गई। मैं आपके माध्यम से तमाम छात्रों से यह विनम्रता पूर्वक अपील करना चाहता हूँ कि आपकी अधिसंघ मांगों को सरकार ने मांगा, जो मामले न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जिनका प्रकाशन हुआ था परीक्षा फल का, उसको रद्द करना सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर था।
1: लेकिन छात्र नेताओं का कहना है कि सरकार गलत नैरेटिव फैला रही है कि ज्यादातर मांगे मान ली गई।
3: हमारा जो मांग था, सबसे प्रमुख मांग तो हमारा जो एसएससी सीजीएल को लेकर के था, साथ साथ हमने जो कॉलम बनाया था कि अभय कुमार तिवारी के द्वारा जिन जिन परीक्षाओं में उसकी संलिप्तता है उसकी जांच की जाए, रद्द की जाए। सरकार अभय कुमार तिवारी की संलिप्तता वाले एग्जाम में सिर्फ जेएसएससी सीजीएल की जांच की बात कर रही है। टीजीटी, माध्यमिक आचार्य, उत्पाद सिपाही, इन परीक्षाओं पे जांच को भी तैयार नहीं थी। तो यह जो नैरेशन फैलाया जा रहा है कि हमारी सारी मांगे मान ली जा रही है, ये बहुत ही गलत है।
1: छात्र नेताओं के मुताबिक सरकार को सीजीएल परीक्षा को रद्द करना ही होगा और सीबीआई जांच करानी होगी।
4: महत्वपूर्ण मांग है कि सीजीएल को रद्द करना होगा और सीजीएल की सीबीआई इंक्वायरी करानी होगी और जो रिफॉर्म का हमारा मॉडल जो हम लोगों ने दिया है एडवाइस, उसको सरकार को मानना होगा और जो कैलेंडर की बात की है हम लोगों ने, उस कैलेंडर पर भी सरकार को फॉलो करना होगा। अगर एक भी मांग सरकार नहीं मानती है तो ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक मांग पूरी नहीं होगी।
1: सरकार के साथ वार्ता रद्द होने के बाद छात्रों ने कल रांची की सड़कों पर तिरंगा मार्च निकाला।
5: विधानसभा मार्च के पहले आंदोलनकारी छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाल ली है और मैदान स्थल पर धरना स्थल पर जब सरकार के साथ बात बेनतीजा रही तो छात्रों ने हाथों में तिरंगा लेकर के मोबाइल फ्लैशलाइट निकाल करके उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया है और ये अब आंदोलन भारत माता के नारे लगाते हुए छात्र जो है मार्च करने निकल पड़े हैं। 10 अगस्त को सुबह 10 बजे विधानसभा का घेराव करने की तैयारी, मार्च करने की तैयारी रांची जिला प्रशासन ने बीएनएस की धारा 163 लगा दी है। छात्रों से कहा है कि वो किसी भी तरह की हिंसा में शामिल ना हो। लेकिन अब यहाँ एक शांतिपूर्ण मार्च छात्रों का शुरू हो गया है, हाथों में तिरंगा लेकर के, मोबाइल टॉर्च लेकर के तिरंगा मार्च करने के लिए उस प्रदर्शन स्थल से निकल पड़े हैं। अब वो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द करने की मांग लेकर के ये जो छात्र हैं अब मार्च लेकर के निकल पड़े।
1: इस बीच झारखंड के अलग अलग इलाकों से छात्रों का रांची आना जारी है। साफ दिख रहा है छात्र सारी मांगे मनवाए बिना मानने को तैयार नहीं है। सत्यजीत कुमार के साथ आशुतोष मिश्रा, रांची आज तक।
0: शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, आधी अधूरी मांग मानना कितना वाजिब है, क्योंकि छात्रों को बरगलाया नहीं जा सकता है। 100% मांगे क्या मानेगी सरकार या फिर नहीं?
6: देखिए, सरकार को अगर मानना होता तो कल 6 घंटे तक वार्ता हुई थी नेहा, और उस 6 घंटे की वार्ता में बहुत कुछ नतीजा निकला और बहुत कुछ नहीं निकला। तो ये भी माना जा सकता है कि छात्र जो है वो अपने मांग पे अडिग हैं। सरकार के सामने ये परेशानी है कि जो सेवा, जिस सेवा को रद्द करने या जिस बहाली को रद्द करने की मांग छात्र कर रहे हैं, उसमें नियुक्तियाँ जो हो चुकी हैं उन नियुक्तियों को कैसे वापस लिया जाए। लेकिन आज सवाल बड़ा ये है, इन तस्वीरों को देखिए, उन तस्वीरों से समझने की कोशिश करिए कि दरअसल कितनी बड़ी तैयारी है झारखंड सरकार, झारखंड पुलिस और प्रशासन की तरफ से कि इस तरह के बैरिकेड्स जो हम अमूमन बॉर्डर वाले इलाके में देखते हैं, कटीले वायर का इस्तेमाल जिस तरह से किया जाता है, उसी तरह से यहाँ पर बैरिकेड्स के ऊपर ये कटीले वायर लगाए गए हैं और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती दिखती है। आरएफ के जवान हैं, झारखंड पुलिस के जवान हैं, रांची जिला पुलिस बल के जवान हैं, और तमाम जगह पे इस पूरी सड़क पे जो आज मार्च का रूट रहने वाला है, अपने सहयोगी नदीम से कहेंगे थोड़ा आगे तक हम चल करके दिखाएं। ये पीछे विधानसभा, पुराना विधानसभा है झारखंड विधानसभा, देखिए अभी भी पुलिस बल आ रही है, जो अतिरिक्त पुलिस बल, जिला पुलिस बल, तमाम जो फोर्सेज हैं उनको अभी लाया जा रहा है, अलग अलग पोस्ट पे डिप्लॉय किया जा रहा है। लेकिन आप इस पूरे रास्ते को देखिए नेहा, इस पूरे रास्ते पे जहां भी नजर जाती है, हर 100-200 कदम के बाद आपको इसी तरह के बैरिकेड्स नजर आएंगे। और इस बैरिकेड्स का मकसद यही है कि जो छात्रों का प्रोटेस्ट मार्च निकले वो आगे ना जाए। जहां भी डाइवर्जन है, जहां भी दो रास्ते हो सकते हैं विधानसभा पहुंचने की, वहां भी देखिए किस तरह से, चूंकि अभी ट्रैफिक चालू है इस रास्ते पे, स्कूलों को बंद रखा गया है रांची के अंदर, लेकिन हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये एक चेक पोस्ट यहां पे बनाया गया है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं।
0: बीच सत्यजीत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ हैं। आशुतोष, आप तो लगातार छात्रों के बीच हैं। देखिए, छात्र अपनी मांग को लेकर अडिग हैं, उनको टस से मस करना इस वक्त मुश्किल लग रहा है। विधानसभा मार्च की तैयारी है, इस बीच वहां पर प्रशासन की क्या तैयारी है, क्योंकि दिल्ली जैसा आलम वहां झारखंड में ना हो, इसको लेकर प्रशासन कितना सतर्क है?
5: खुले हुए रहे हाँ, और इसीलिए कल रांची जिला प्रशासन ने छात्रों से कहा कि प्रदर्शन मार्च में ऐसे ना आए, अगर कोई गैर कानूनी काम होता है तो धाराएं लगेंगी, आपको सरकारी नौकरियों में जाना है, पुलिस का क्लियरेंस जरूरी होता है। कहते ना कि सॉफ्ट धमकी जिससे होती है, तो छात्रों को यह चेतावनी जरूर दी गई है। लेकिन वो तैयारियां क्यों दिखाई पड़ती है? 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी थे, पूरा जितना इलाका आपको दिखाई देगा, चाहे झारखंड पुलिस हो, झारखंड आर्म पुलिस हो, आईआरबी हो, हर किसी को लगाएगा। बड़े बड़े अफसर जो हैं, खासकर जो आईपीएस हैं या फिर पीसीएस ऑफिसर, वो सब यहीं पर खड़े मौजूद। इतनी इलाके की बाड़ेबंदी कर दी गई है कि पूरा इलाका आपको एक किले नुमा नजर आएगा। ये देखिए, यहाँ पर वाटर कैनन भी लगाए रखे हैं, इसी के साथ आंसू गैस के गोलों की भी तैयारी की गई है, जो दंगा कंट्रोल व्हीकल्स हैं वो भी यहाँ तैनात की गई हैं। पुरानी विधानसभा से लेकर के नई विधानसभा के बीच का जो 2.5 किलोमीटर का इलाका है वो एक किले में तब्दील हो चुका है। कटीले तारों की तस्वीरें आपने देखी हैं, एक नहीं, 1, 2, 3 ऐसे 3 पूरे इलाके हैं जहां पर ये बाड़ेबंदी की गई। और पीछे जब मैं जाऊंगा तो आपको फिर वहां पर रैपिड एक्शन की जो गाड़ियां होती है ना, क्विक QRT होती है, वहां पर वाटर कैनन इतने सारे रखे गए कि किसी तरह छात्रों को रोका जा सके। छात्र इस बार पर अड़े हैं कि चूंकि सरकार ने हमारी नहीं सुनी है, हम विधानसभा मार्च करेंगे, जाएंगे, और अगर पहुंच गए तो वहीं पर अनशन शुरू कर देंगे। छात्रों की तैयारी यहां तक है, सब मामला फंस गया जेएसएससी सीजीएल को लेकर के, कि 2000 सबसे ज्यादा नौकरियां जेएसएससी सीजीएल के जरिए मिलती हैं, और अगर उसमें धांधली, अगर सरकार उसको रोल बैक नहीं कर सकती तो वो अपने आंदोलन पर है। यही वो पॉइंट था डेडलॉक का। जैसे मैं विधानसभा के एक गेट से बाहर के इलाके निकला, देखिए ये रास्ता है जो कि रेसिडेंशियल प्रीमिसेस है, लेकिन कहीं छात्र से होते हुए ना गुजर पाए, इसको भी सील कर दिया गया।
0: तैयारियां कर ली गई हैं। सत्यजीत के पास मैं लौटूंगी। इस बीच आपको ये बता दें कि छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो छात्रों की मांग को लेकर पिछले 9 दिन से अनशन पर हैं। उन्होंने छात्रों से विधानसभा मार्च में शांति बनाए रखने की अपील की है, सुनिए।
7: आप किसी भी परिस्थिति में पहुंचे और ध्यान रखें, अनुशासन और कानून का पालन करेंगे, संविधान तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से घेराव करेंगे। सरकार से हमारे छात्र प्रतिनिधि मंडल का दो राउंड बात हुई है, बहुत हद तक हम लोग का आंदोलन सकारात्मक है, लेकिन अभी पर्याप्त नहीं है, पूरा सुधार करना, इसलिए कल आप सबके सहयोग की अपेक्षा है। हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, इस खपे अवस्था में जरूर से जरूर पहुंचे।
0: सरकार और छात्रों के बीच भरोसे की कमी दिख रही है। झारखंड के शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का कल का बयान आपको दिखाते हैं। तीसरे दौर की वार्ता खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि 98% मांगे मान ली गई हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि सीजीएल परीक्षा रद्द करने या सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं मानी जा रही।
8: सीपीएफ परीक्षा ऑनरेबल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर हुई है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द करने में सरकार सक्षम नहीं है। यह परीक्षा ऑनरेबल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रही है। सरकार यही कर सकती है कि एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाकर इस जांच की मॉनिटरिंग कर दे, जिस पर छात्रों का मानने से इनकार हुआ। और हम ये समझते हैं कि 98% बिंदुओं पर सरकार ने सहमति प्रदान की, 2% बिंदु पूरे में मसले में जो बचे, जो सिर्फ और सिर्फ सीजीएल की परीक्षा के रद्द करने के थे। और सरकार का स्पष्ट कहना है कि जो माननीय न्यायालय के आदेश पर परीक्षा कंडक्ट की गई है, जिसका परीक्षा का प्रकाशन है, जिसके अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं, उनको सरकार अपने तरफ से रद्द नहीं कर सकती है।
0: तो आज विधानसभा मार्च की छात्रों की तैयारी, इस बीच प्रशासन भी मुस्तैद है, वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। लेकिन मेरे सहयोगी सत्यजीत इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सत्यजीत, ये सरकार का पक्ष है कि उन्होंने 98% मांगे मान ली है, लेकिन अब आगे की क्या रणनीति है, उस पर सरकार क्या विचार कर रही है, क्योंकि ये लगातार आंदोलन बड़ा हो रहा है, ये चिंता का विषय है।
9: बिल्कुल, देखिए अब गतिरोध बरकरार हो गया है। जो मुख्य मांगे थी छात्र की कि जीएसएससी सीजीएल को जो है वो रद्द किया जाए। जीएसएससी जो है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, तो थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियां और नियुक्तियां वहीं से निकलती है, और उसमें भारी पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप जो है स्टूडेंट्स ने लगाए थे और वो कैंसिलेशन नहीं हुआ। सरकार कहती है कि वो ऑथराइज नहीं है, क्योंकि वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे एग्जामिनेशन हुए थे और उसी के आधार पे नियुक्ति दी गई, तो वहाँ वो इंटरवीन नहीं कर सकती है। लेकिन वहाँ पे अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी है तो रिटायर्ड जज के निगरानी में जांच जरूर करवाया जा सकता है। बाकी सभी मांगे जो है सरकार का दावा है कि मान ली गई है। अगर वहाँ पे कोई मनी ट्रेल है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ है, सीटें बेची गई है, तो उसके लिए ईडी प्रोब के लिए भी सरकार तैयार है। दो मांगे हैं जिस पे सरकार नहीं मान रही है, वो है एक सीबीआई जांच पूरे प्रक्रिया की, और दूसरा जो सीपीएल का परीक्षा रद्द करना है। बाकी 14 जेपीएससी वाला जो मामला था वो सरकार ने मान ली है। रिफॉर्म्स के लिए एक हाई एक्सपर्ट कमिटी जो बनाया जाना है, उसमें एक्सएलआरआई आईएम आईटी आईएसएम के लोगों को रखना, उसके अलावा जो है ईमेल एक चैनल खोला है, किसी को ग्रीवेंसेस है, किसी को शिकायत है तो jpsc.jssc.feedback@gmail.com पे आप करें। तो ये तमाम चीजें हुई है, लेकिन फिर बात आकर वहीं अटक गई है कि गतिरोध बरकरार है, छात्र नहीं माने।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। उधर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने छात्रों को यकीन दिलाया कि वो छात्रों को इंसाफ दिलाएंगे। वहीं झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने छात्रों से अपील की कि उन्हें मुख्यमंत्री की बातों पर भरोसा करना चाहिए।
10: राजनीतिक दलों के लिए एक रास्ता बनता है जहां युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने का। मैं विशेष रूप से नौजवानों से कहूंगा, न हमारी राजनीतिक छत्रछाया की आपको आवश्यकता है, न किसी और राजनीतिक दल की छत्रछाया की आपको आवश्यकता है। आप छात्र हैं, आपका अधिकार है, और आपका अधिकार आपको मिले, आपको न्याय मिले, ये काम करने की जिम्मेवारी सरकार की है जो पूरा होगा।
11: हमारे बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं, अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसके बारे में कुछ विस्तार से बताया, मेरा आग्रह है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा है उस पर भरोसा करें और हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। आप बात करके इसका समाधान करें और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित हैं इसके लिए और वो लगातार हमसे बात कर रहे हैं कि बच्चों की समस्याओं को कैसे समाधान किया जाए। तो मेरा आप सभी बच्चों से आग्रह है कि बजाय लड़ाई इसके स्थान पर हमसे जब भी मिलेंगे आपको एक पॉजिटिव सकारात्मक रिस्पांस मिलेगा।
0: तो रांची में बवाल मचा हुआ है, इधर संसद में आज फिर संग्राम छिड़ने के आसार हैं। खबर यह है कि सरकार FCRA बिल लाने वाली है, हालांकि आज ये सूचीबद्ध नहीं है, लेकिन कांग्रेस सरकार आधा साफ कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे ने साफ किया कि कांग्रेस विदेशी अंशन विनियमन संशोधन विधेयक FCRA बिल का विरोध करेगी और आज विपक्षी दलों के फ्लोर नेताओं की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हम किसी के हाथ नहीं बांध सकते और ना ही उनके विचारों को दबा सकते।
12: तो FCRA के बारे में हम तो अपोज करने वाले हैं, एक दूसरी चीज ऑल पार्टी मीटिंग हम बुला के, जो हमेशा फ्लोर लीडर की मीटिंग होती है, बुला के निर्णय लेंगे। देखो, डेमोक्रेसी में हम किसी के हाथ बंद नहीं सकते और उनके विचार को भी हम रोक नहीं सकते हैं। वो उनके विचार दौड़ते रहता उनके माइंड में, वो किसी को पता नहीं चलता।
0: तो कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है FCRA बिल का। इधर आज उन सभी विपक्षी नेताओं की बैठक है जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। बात अब पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां पर
13: देखिए ये हर चीज के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। राम मंदिर चंदा चोरी सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी तरीके से ये ट्रस्ट के अंदर जो बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, उन सब ट्रस्ट को अपने अधीन करना चाहते हैं कि वो ट्रस्ट इनके अधीन रहे और सरकार जिस पे जाए जब चाहे शिकंजा कस सके।
14: FCRA में पारदर्शिता और जवाबदेही की व्यवस्था का वो विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या वो चाहते हैं, उनको ये देश को बताना चाहिए कि विदेशी धन भारत में आएगा तो उसका स्रोत क्या है, पैसा कहाँ खर्च होगा, इसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा, इसकी जानकारी और निगरानी रखना क्या ये राष्ट्रहित में नहीं है? खड़गे साहब को ये भी संज्ञान में लेना चाहिए कि FCRA किसी संस्था का के खिलाफ कानून थोड़े है।
0: जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है, सरकार का सवाल भी तो वाजिब है, आखिरकार बिल का विरोध क्यों हो रहा है? किसी संस्था के खिलाफ तो ये बिल है नहीं, तो आखिरकार जो विपक्षी दल एकजुट हुए हैं किस बात पर हुए?
15: देखिए, लगातार सरकार इसी बात को लेकर के विपक्षी सांसदों को और नेताओं को समझा रही है कि जो भी बिल हैं, क्योंकि कई महत्वपूर्ण बिल जो है सरकार को लाना है, जिसमें FCRA बिल को भी 12 या 13 तारीख को ला सकती सरकार के द्वारा, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। ऐसे में सरकार ये चाहती है कि ये वो बिल हैं जिनको कि देश के लिए, देश हित के लिए जरूरी है, क्योंकि जो विदेशों से पैसा आता है उन पैसों की निगरानी करना और उन पैसों का कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, उन तमाम चीजों को जो है इस बिल के जरिए देखा जा सकता है और इससे जो है सही तरीके से निगरानी हो सकती है। तो वहीं सरकार अगर बात करें तो आज जो है 4 महत्वपूर्ण बिल जो है लोकसभा में लिस्टेड किए गए हैं, जिसमें से 2 ऐसे बिल हैं जिसको कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन के अंदर पेश करेंगे, जिसमें केरल का नाम बदल करके केरलम रखने का बिल है और उसके साथ ही सहकारिता मंत्रालय से जुड़ा हुआ एक बिल है। 2 और बिल हैं जिनको कि कानून मंत्री और खनन विभाग से जुड़ा हुआ जो मंत्री है वो इसको पेश करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार इस जो मानसून सत्र का आखिरी सप्ताह है इसमें तमाम बिलों को पास कराना चाहती है, लेकिन विपक्ष की अगर बात करें तो आज भी 10 बजे उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसमें ये कहा जा सकता है कि उनकी रणनीति तैयार होगी कि वो किस तरीके से आज सदन को चलने देंगे या नहीं चलने देंगे।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं संसद के मानसून सत्र में खास तौर पर लोकसभा में लगातार हंगामा हो रहा है, हमने देखी है वहां से तस्वीरें। लेकिन इस बीच विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह से 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन पर पैलेट गन के इस्तेमाल पर बयान की मांग कर रहा है। उधर बीजेपी ये कह रही है कि विपक्षी सांसद संसद को चलने ही नहीं देना चाहते।
16: की मांग क्या थी, चर्चा की थी, हमने चर्चा भी करवाई, उन्होंने इस्तीफे की मांग की, इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन विपक्ष के मंसूबे बहुत स्पष्ट हैं, सदन नहीं चलने देना है, चर्चा नहीं होने देनी, देश की जनता को गुमराह करना है। आखिरकार क्या मुद्दे हैं? अब राहुल गांधी जी कहते हैं कि E20 पे चर्चा करनी, मेरा सवाल ये खड़ा होता है क्या इथेनॉल पर, जब कांग्रेस की सरकार थी इनके मंत्री सदन में खड़े होकर बयान देते थे कि हम आएंगे एथेनॉल मिक्स करने का काम नीचे करेंगे, इनसे नहीं हो पाया।
0: बात पश्चिम बंगाल की, जहां की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी पर उत्तरी 24 परगना में भीड़ ने हमला किया, उन पर पत्थर चले, चप्पल फेंकी गई, उनके विरोध में चोर चोर के नारे लगाए गए। ममता बैनर्जी का आरोप है कि बीजेपी के गुंडों ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की, धमकी दी, हालांकि बीजेपी ऐसे आरोपों से इनकार कर रही।
1: पूर्व सीएम ममता बनर्जी उत्तरी 24 परगना के हली शहर पहुंची थी, तभी उनके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गया। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध में नारेबाजी करने लगे। ममता बनर्जी टीएमसी के एक कार्यकर्ता के घर जा रही थी। आरोप है कि स्थानीय पुलिस की हिरासत में उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। उसी कार्यकर्ता के परिजनों से मिलने ममता बनर्जी पहुंची थी, तभी वहां बवाल शुरू हो गया। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने काफिला रोककर हमला किया, किसी ने उनकी कार को निशाना बनाया जिससे कार का शीशा टूट गया।
17: मेरे को गाड़ी में बड़े बड़े पत्थर मारा गया, बाहर से एंट्री पोस्ट पुलिस का सामने इतना गाड़ी को अटक किया, अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता, ऐसा पुलिस के सामने में हुआ। हम कभी ऐसा हमला नहीं
18: देखा,
17: पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा।
1: वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि उग्र भीड़ काफिले की गाड़ियों का पीछा कर रही है,
17: लोकेशन तो देखते हैं।
1: गाड़ियों पर कीचड़ फेंका जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं और जमकर नारेबाजी हो रही है।
19: इस तरह की हरकत मैं समर्थन नहीं करता हूँ। हमारी जो लड़ाई सियासी लड़ाई होना चाहिए और उसमें बंगाल की जो तहजीब है, तहजीब के मुताबिक सारा कुछ होना चाहिए। हर चीज में गुंडागर्दी, गली गलौज, नीच हरकतें, ये नहीं होना चाहिए बंगाल में।
1: तनाव के बीच पुलिस कर्मियों ने सुरक्षा घेरा बनाकर ममता बनर्जी को वहां से बाहर निकाला। ममता बनर्जी के आरोपों पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पलटवार किया और सवाल उठाए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वहां न तो बीजेपी के झंडे थे और न ही बीजेपी के कार्यकर्ता। वहीं मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि इस तरह की घटना बीजेपी की संस्कृति नहीं है।
20: लेकिन ये बंगाल की संस्कृति नहीं है। आप एक एक्स मुख्यमंत्री, अरे एक्स मुख्यमंत्री भी छोड़िए, एक महिला के ऊपर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं।
1: ममता बनर्जी पर हुए हमले को लेकर अब कोलकाता से दिल्ली तक सियासत तेज हो गई है। कई विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल उठाए। हावड़ा से वैद्यनाथ झा और आसनसोल से अनिल गिरी के साथ तापस सेन गुप्ता, कोलकाता आज तक।
0: और अब बात बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा के बेटे के बयान की। रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा एथेनॉल वाले पेट्रोल के विरोध से वो भड़क गए, कहने लगे कि शुद्ध पेट्रोल कहां से लाएं, 18,000 किलोमीटर लंबा रूट लेकर पेट्रोल आ रहा है, उसमें एथेनॉल मिलाकर देश को आत्मनिर्भर कर रहे हैं। सांसद जी यहां तक कह गए कि जो लोग एथेनॉल वाले पेट्रोल का विरोध कर रहे हैं वो देश विरोधी हैं, चीन, अमेरिका, यूरोप से मिले हुए।
21: 20% हमारे यहां तेल होता है, 80% विदेश से ले ही थे। ओहुमा इस समय लड़ाई छिड़ गया है, हॉर्मुज बंद है, पंचे हूती वाले और बंद कह दी नहीं थे। 18,000 किलोमीटर के चक्कर लगा के तेल मिलन लाग, और जब मोदी जी कहा था कि एथेनॉल मिला 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो उन्हें बाप कहीं से आई, शुद्ध पेट्रोल है ही नहीं देश में, तो कहां से आई।
0: बात कांवड़ यात्रा की, क्योंकि कांग्रेस सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कांवड़ सेवा करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने अम्बाला रोड पर कांवड़ शिविर में हिस्सा लिया, जहां शिविर संचालकों ने उन्हें भगवा पटका पहनाया। जहां इमरान मसूद ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की और उन्हें प्रसाद वितरित किया।
2: ये हमारे सहारनपुर का कल्चर है। सहारनपुर के अंदर सब लोग सब त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं और ये कांवर शिविर हमारे लगातार चलते हैं। हमारे साथी लगातार कांवर शिविर लगाते हैं, कांवर शिविर चलते हैं। इतना सबसे सहयोग हो सकता है, सब लोग सहयोग करने का काम करते हैं।
0: वहीं कांवड़ यात्रा की कई दिलचस्प तस्वीरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को आपने कांवड़ियों की सेवा करते देखा। बिहार से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की कांवड़ सेवा की तस्वीरें आई हैं। सभी कांवड़ सेवा में शामिल होना चाहते हैं, अपना नाम चमकाना चाहते हैं, अपनी इमेज चमकाना चाहते हैं। तो देखिए कैसे यहां पर तेल मालिश भी हो रही है कांवड़ियों की। हर नेता हर विधायक अलग अलग तरीके से कांवड़ सेवा करना चाह रहा है और यही तस्वीरें अब सावन माह में आपको दिखाई देंगी।
18: सावन का दूसरा सोमवार, कांवड़ियों का आगाज श्रद्धा का पावन रंग यूपी के शहरों में भी दिखा और उन्हीं में से ये खास तस्वीर आई है सहारनपुर से। सहारनपुर के दागलहेड़ी कांवर मार्ग पर कांवड़ियों पर फूल बरसे, हर हर महादेव के जयकारे लगे। वहां यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री कुंवर ब्रिजेश सिंह, जसवंत सिंह सैनी, जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान और एसएसपी अभिनंदन ने कांवड़ियों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। पुष्प वर्षा होते ही पूरा कांवड़ मार्ग हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। सहारनपुर में ही एक और दिलचस्प तस्वीर नजर आई। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी कांवड़ियों के बीच पहुंचे। कांवड़ कैंप जाकर उन्होंने भी तीर्थ यात्रियों की सेवा की, उनके बीच फल और जूस बांटे।
22: 25-30 साल से मैं तो लगातार कर रहा हूँ। हर साल हमारे साथी कांवड़ शिविर लगाते हैं, हमारा कांवड़ शिविर लगते हैं। उन कांवड़ शिविरों के अंदर जा करके जितनी अपने से हो सकती है उतनी उनकी सेवा करने की कोशिश की जाती है कि जो लोग जल लेकर के आ रहे हैं, जो भक्त लोग आ रहे हैं, वो हमारे यहाँ मेहमान हैं और उन मेहमानों का जितना स्वागत सत्कार किया जा सके उतना कोशिश करते हैं।
18: उधर बिहार के बांका में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी कांवड़ियों का स्वागत करते दिखे। रविवार को देवघर से अवरखा जाने के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का काफिला कुछ देर के लिए कटोरिया बाजार रुका। इस दौरान शिविर में समिति के सदस्यों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का स्वागत किया। नित्यानंद राय ने भी कांवड़ियों की सेवा की। कुछ देर रुकने के बाद उनका काफिला अवरखा की ओर रवाना हो गया। बांका से दीपक कुमार के साथ राहुल कुमार, सहारनपुर आज तक।
0: और वहीं आज सावन का दूसरा सोमवार है। देश के तमाम शिव मंदिरों में सुबह से ही बम बम भोले का जयकारा गूंज रहा है, भक्त पहुंच रहे हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं, उज्जैन, अयोध्या, हरिद्वार, देवघर, वाराणसी और देहरादून की, जहां पर शिवालयों में इस वक्त जबरदस्त भीड़ है। तो बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बजे में जारी रहेगा। वक्त हो गया हेडलाइंस का।
23: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
24: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

सदस्यों का इस्तीफा, ईडी ने दर्ज किया केस। मानसून सत्र के आखिरी दिन चार अहम बिल पेश होंगे। चार बिल कांग्रेस और एसपी ने अपने सांसदों को दिए सदन में रहने के निर्देश। इंडिया ब्लॉक की बैठक में तय होगी रणनीति। परिसीमन एससीआरए पर तनातनी के बीच महाराष्ट्र दिल्ली तक सियासत में हलचल। पीएम मोदी से आज मिलेंगे शरद पवार, गुट के सभी 8 सांसद। उत्तर 24 परगना में ममता की कार पर हमले के खिलाफ विपक्ष एकजुट, काफले पर पत्थर फेंकने का दावा। पूर्व सीएम का आरोप, कहा गुंडों को बीजेपी का संरक्षण। सीएम शुभेंदु बोले, ये जनता का आक्रोश। पवित्र महीना सावन का दूसरा सोमवार सुबह से शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। जलाभिषेक और विशेष पूजा अर्चना के लिए चल पड़े कांवड़िए। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जेपीएससी परीक्षा धांधली मामले में ईडी ने परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में केस दर्ज कर लिया है। दर्ज करने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच शुरू हो गई है। छात्र आंदोलन के बीच ईडी ने जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में यह केस दर्ज किया है। लगातार छात्रों का आंदोलन, इसके चलते ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई, सरकार का एक्शन और ये दिखाने की कोशिश कि लगातार इस पर अब एक्शन लिया जा रहा है। और अब रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर का। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों और सरकार के बीच गतिरोध बरकरार। सीबीआई जांच की मांग पर अड़े अभ्यर्थी। सीजीएल अभ्यर्थियों का आज झारखंड विधानसभा तक कूच। सरकार ने से बातचीत बेनतीजा। सीबीआई जांच की मांग पर नहीं बनी सहमति। झारखंड में पुराने विधानसभा परिसर में छात्रों का जुटना शुरू हुआ। मार्च की तैयारी तेज, पोस्टर में दिखे छात्र। सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर सरकार अभ्यर्थी आमने सामने। सरकार ने परीक्षा रद्द करने से किया इनकार, कहा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई है परीक्षा। जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में ईडी ने दर्ज किया पीएमएलए केस। ये केस एक हफ्ते पहले प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किया गया। जेपीएससी जेएसएससी विवाद में सरकार का बड़ा फैसला, 98% मांग मानने का दावा। चौधरी जेपीएससी परीक्षा रद्द, गड़बड़ी की जांच के आदेश। जेपीएससी मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रस्ताव। जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की तैयारी। भर्ती सुधार के लिए विशेषज्ञों की कमेटी बनेगी। जेपीएससी के 3 सदस्यों ने दिया इस्तीफा। राज्यपाल ने 3 सदस्यों का इस्तीफा मंजूर किया। कथित परीक्षा गड़बड़ी मामले में सदस्यों से पूछताछ होगी। जेपीएससी गड़बड़ी मामले में सीआईडी जांच तेज। मामले में अब तक 19 गिरफ्तारियां। सीआईडी ने बड़ी मात्रा में डिजिटल सबूत जुटाने का दावा किया। जेपीएससी सदस्यों से पूछताछ का पूरा शेड्यूल तय। 10 अगस्त को अजीता भट्टाचार्य, 12 को जमाल अहमद और 14 अगस्त को अनिमा हंसदा से पूछताछ होगी। संसद के मॉनसून सत्र का आज 16वां दिन। आज संसद में अमित शाह पेश कर सकते हैं 2 बिल। महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर विपक्ष का विरोध जारी। एफसीआरए संशोधन बिल के विरोध में कांग्रेस का रुख साफ। एफसीआरए बिल पर संसद में विरोध की चेतावनी। केसी वेणुगोपाल बोले, अब सखियों को और एनजीओ को निशाना बनाता है बिल, पास नहीं होने देंगे। एफसीआरए बिल में विदेशी फंड लाने वाले संगठनों पर निगरानी बढ़ेगी। लाइसेंस खोने वाले एनजीओ की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव। ईसाई संगठनों का भी विरोध। नीट मामले में अमित शाह के बयान की मांग पर अड़ा है विपक्ष। पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष का विरोध। पेपर लीक विरोधी बिल दोनों सदनों से पास। सरकार ने महिला आरक्षण और परिसीमन पर विपक्ष से समर्थन मांगा। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से 2 बार मुलाकात की। महिला आरक्षण और परिसीमन पर राहुल गांधी ने सर्वदलीय बैठक की मांग की। राम मंदिर चंदा चोरी मुद्दे को लेकर लोकसभा में उठाएंगे केसी वेणुगोपाल स्वतंत्र जांच की मांग। राम मंदिर चंदा मामले में चोरी को लेकर सपा सांसदों का संसद परिसर में प्रदर्शन। चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। कांग्रेस एसपी का सांसदों को 10, 11 और 12 अगस्त को सदन में मौजूद रहने का व्हिप। इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों से भी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए कहा। हली शहर में ममता बनर्जी की कार पर पथराव और कीचड़ फेंकने का आरोप। ममता बनर्जी ने हमले को साजिश बताया। ममता बनर्जी का बंगाल सरकार पर बड़ा आरोप, कहा पुलिस की मौजूदगी में कार पर पत्थर और जूते फेंके गए, गुंडों के जरिए हमला कराने का आरोप। बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी ने घटना को बताया जनता का गुस्सा। शुभेंदु अधिकारी का दावा, घटना से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। प्रदेश अध्यक्ष ने भी घटना की निंदा की। बीजेपी मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हमले और बदसलूकी का विरोध किया। अग्निमित्रा पॉल बोली, महिला के खिलाफ इस तरह का व्यवहार बीजेपी की संस्कृति नहीं है। टीएमसी सांसद नादिमुल हक ने नियम 267 के तहत दिया नोटिस। छात्रों पर कथित अत्याचार और बंगाल में राजनीतिक हिंसा पर चर्चा की मांग। लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन की 101वीं वर्षगांठ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शताब्दी समारोह में लिया हिस्सा। अम्बेडकर नगर में सीएम योगी ने दिया दंगाइयों को खुला संदेश, का आओ थोड़ा दंगा कर लो, मैं तुम्हें दंगा करना सिखा देता हूं।
ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में बचाव पक्ष ने किया दावा, कोर्ट ने आरोपों को बताया झूठा और मनगढ़ंत। डॉक्टर सोनिया नित्यानंद केजीएमयू की फिर कुलपति बनाई गई, सोनिया नित्यानंद को 3 साल के लिए कुलपति बनाया गया। प्रयागराज में उमर अहमद के काफिले पर टोल टैक्स अंधेरे का आरोप, नवाबगंज टोल प्लाजा पर FIR दर्ज, गाड़ियों की जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर में कांवड़ियों पर इमरान मसूद ने बरसाए फूल, बांटा प्रसाद, शिविर में पटका, माला पहनाकर हुआ सांसदों का स्वागत। इमरान मसूद बोले यही है सहारनपुर का कल्चर, शिविर के पीछे नालों में भरा पानी देख बोले CM को लिखूंगा पत्र। इमरान मसूद का परिसीमन पर हमला, कहा बोले उत्तर भारत की सीटें बढ़ी तो दक्षिण में असंतुलन की भावना पैदा होगी। मायावती का BJP पर हमला, कहा संत रविदास जी के गुरुघर को ढहाने वाली BJP अब चुनाव के समय कलश यात्रा कर रही है। बलरामपुर में भारत नेपाल रिश्तों पर मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा हजारों लोग दोनों देशों में आवाजाही करते हैं, आवाजाही में बाधा ना हो इसलिए हवाई और बस सेवाएं विकसित कर रहे हैं। पवित्र सावन का दूसरा सोमवार, जलाभिषेक के लिए शिवालयों में श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार। सावन के दूसरे सोमवार पर काशी विश्वनाथ में हुई भव्य मंगला आरती, बाबा का किया गया विशेष श्रृंगार। बाबा विश्वनाथ के दरबार में सुबह से उमड़ रहा है भक्तों का सैलाब, भक्तों पर बरसाए गए फूल। हापुड़ में प्राचीन सिद्धपीठ श्री सबली महादेव मंदिर में भक्तों का उमड़ा हुजूम, पवित्र शिवलिंग पर किया जलाभिषेक। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर जयकारों से गूंजा श्री सबली महादेव मंदिर परिसर। सावन के दूसरे सोमवार पर हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का रेला, बेलपत्र अर्पित कर शिवलिंग पर किया जलाभिषेक। हरण महादेव के जयकारों से गूंजा दक्षेश्वर महादेव का मंदिर परिसर, सुबह सुबह लगी लंबी कतार। कानपुर में सावन के दूसरे सोमवार पर मंदिर में उमड़ा भीड़ का श्रद्धालुओं ने आनंदेश्वर मंदिर में विधि विधान से की पूजा। कुंभ नगरी प्रयागराज भगवान आशुतोष के दर्शन के लिए पहुंच रहे भक्त, शहर के ज्यादातर मंदिरों में एक जैसा नजारा। प्रयागराज के श्री वनगामेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता, बड़ी संख्या में दूधाभिषेक। दिल्ली के शिवालयों पर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए बाबा भोलेनाथ के दर्शन। देवघर में बाबा वैद्यनाथ दरबार हाजिरी लगाने सुबह से लगी भक्तों की कतार, बाबा की हुई विशेष पूजा अर्चना। बाबा वैद्यनाथ के दर्शन की लगी भक्तों की लंबी कतार, लाखों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। गुवाहाटी में सावन के दूसरे सोमवार पर सुकरेश्वर महाराज के मंदिर में लगा भक्तों का तांता, भक्तों ने विधि विधान से की पूजा अर्चना। मुंबई में सावन के दूसरे सोमवार पर बाबूलनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया बाबा भोलेनाथ का दूधाभिषेक। लखनऊ में हर घर तिरंगा यात्रा की शुरुआत, CM योगी ने तिरंगा यात्रा को दिखाई झंडी, कहा राष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेंगे। भोपाल में निकाली गई तिरंगा यात्रा, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी, युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का किया आह्वान। देहरादून में हर घर तिरंगा रैली का शुभारंभ, CM पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में की शिरकत। PM मोदी से आज मिलेंगे शरद पवार। गुट के सभी 8 सांसद, संसद परिसर में PM दफ्तर में होगी मुलाकात। महाराष्ट्र के कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा, सुप्रिया सुले ने आधिकारिक बैठक बताया। कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं से मिले PM मोदी, पदक वीरों और प्रधानमंत्री ने जमकर सराहना की उन पदक वीरों की। PM मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन से मुलाकात का वीडियो जारी किया, खिलाड़ियों के चेहरों पर दिखी खुशी। प्रधानमंत्री ने वीडियो साझा कर दिया खास संदेश, जो खेलेगा वो खिलेगा, भारत ने 39 मेडल जीते थे। PM से मुलाकात से पहले कॉमनवेल्थ गेम्स पदक वीरों में दिखा उत्साह, पैराथलीट्स की दिखे काफी उत्सुक। कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट मीरा भाई चानू बोली, PM से मिलने के लिए उत्साहित हूँ, बहुत खुश हूँ, सब अच्छा रहेगा। जम्मू कश्मीर के रजौरी में फ्लैश फ्लड का कहर, खेती की जमीन और संपर्क मार्ग तबाह, ग्रामीण ने बहाली की मांग की। मनाली में छाया घना कोहरा, धुंध की चादर में लिपटा मनाली घाट, ड्रोन से दिखा खूबसूरत नजारा। देहरादून में भारी बारिश से चंद्रबणी एनक्लेव में घरों में घुसा पानी, लोग परेशान। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाटों का संपर्क टूटा, कई घाटों पर आने जाने में करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। बारिश के चलते MP के मंडला में उफान में सभी नदी नाले, प्रसिद्ध महिषामती घाट पानी में डूबा। सहारनपुर में गंगा नदी का तेजी से बढ़ रहा है जलस्तर, मिर्जापुर इलाके में कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। बिजनौर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने के बाद टापू में तब्दील हुए गांव, करीब 2 दर्जन गांव का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। गाजियाबाद के साहिबाबाद में नाबालिग की गोली मारकर हत्या, निर्माणाधीन साइट से घुसने पर गार्ड से हुआ विवाद। लखनऊ के मरियाओं थाना क्षेत्र में मामूली विवाद ने लिया खूनी संघर्ष का रूप, 22 साल के युवक की पिता पुत्र ने की हत्या। सोनभद्र में युवक पर महिला से छेड़खानी का आरोप, अर्धनग्न पर और बाल मुंडवाकर पीटने और गांव में घुमाने का वीडियो वायरल। जयपुर में भीषण हिट एंड रन का मामला, बेकाबू कार ने 6 से 7 वाहनों वाली टक्कर, पिता बेटी समेत 2 की मौत। बरेली में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, अपने पति को पिलाया तेजाब, जांच है जारी। लखनऊ के गोमती नगर थाने की बैरक में सिपाही ने की आत्महत्या, फांसी लगाकर दी जान। झांसी नाइट क्लब के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट, CCTV में कैद हुई वारदात।
गाजियाबाद में ड्रग तस्करों से मुठभेड़, दो आरोपियों के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ के बाद 3 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। एमपी के रतलाम बाल सुधार गृह से 7 बच्चे फरार, होमगार्ड से मारपीट कर भागे। जोधपुर की लेडी डॉन सुमता बिश्नोई 14 अगस्त तक रिमांड पर भेजी गई। चित्तौड़गढ़ के व्यापारी से करीब 2.5 करोड़ रुपए की ठगी में 2 बेटों समेत गिरफ्तार। राजस्थान के ब्यावर में पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार, ऑपरेशन अग्निपथ के तहत कामयाबी। हापुड़ में कांवड़ मार्ग पर मुर्गे का मीट ले जाते युवक की कांवड़ियों से एक पिटाई, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। अलीगढ़ के खैर थाना क्षेत्र में कांवड़ यात्रा के दौरान हंगामा, टैंकर्स के चालक को कांवड़ियों ने पीटा। फतेहगढ़ साहिब सरहिंद हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने 4 कांवड़ियों को रौंदा, 3 की मौके पर मौत, 1 जख्मी। भरूच में 2 अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर गिरफ्तार, मोबाइल स्नैच के दौरान ट्रेन से गिरकर हुई यात्री की मौत। दानापुर स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे में मिला यात्री का शव, दुर्गंध से यात्रियों की बिगड़ी तबियत। बिहार के खगड़िया में फर्जी आईएएस मनीष गुप्ता गिरफ्तार। यूपी के भदोही में सांड के हमले में मां बेटी की मौत, घटना से पूरे गांव में मातम, आवारा पशुओं से लोग परेशान। फिल्म मेकर शकील लोनानी गिरफ्तार, एक्ट्रेस लगाए रेप और ब्लैकमेल के आरोप। सर्जरी के दौरान सोनू निगम ने गाया गाना, हॉस्पिटल बेड से वीडियो शेयर किया, श्रेया घोषाल ने जल्द रिकवरी की कामना की। रामायणियम की रिलीज का मेगा प्लान, विदेशों में 50,000 और भारत में 9,000 स्क्रीन पर रिलीज होगी। पापराजी पर बढ़ी नताशा स्टैनकोविक, लगातार तस्वीर लेने से हुई असहज। सनी देओल संग मोहाली पहुंची, प्रीति जिंटा बोली मोहाली मेरा घर, ये सबसे प्यारा घर वापसी है। रूस की यूक्रेन के शहर पर भीषण बमबारी, खारकीव और ओडिशा में हमला, 2 लोगों की मौत और 35 से ज्यादा घायल। रूसी हमले के बाद यूक्रेन का पलटवार, बेलगोरोद पर ड्रोन मिसाइल से अटैक, हमले में 5 की मौत, 25 ज्यादा घायल। राष्ट्रीय मार्गों में लगी भीषण आग। पोपलियो की रूस यूक्रेन के नागरिक ठिकानों पर हमले रोकने की अपील, कहा दोनों देश मानवीय कानूनों का करें सम्मान। नेतन्याहू ने ट्रंप के 15 सूत्रीय गाजा प्लान को खारिज किया, कहा हमास पूरी तरह हथियार छोड़ने तक पीछे नहीं हटेंगे। ईरान के विदेश मंत्री का अमेरिका को 2 टूक संदेश, अब्बास अराक्ची बोले समझौते का उल्लंघन बंद होने तक अमेरिका से बातचीत नहीं होगी। ईरान की नाकेबंदी में अमेरिका ने 53 जहाजों के रास्ते बदले, 2 जहाज रोके, 2 पर कार्रवाई, 30 से ज्यादा जहाजों के आगे बढ़ने की इजाजत। लाल सागर में हूती का बड़ा हमला, कई लोगों की मौत, सऊदी अरामको की ऑयल फैसिलिटी निशाने पर। अमेरिका के मिसाइल डिफेंस हथियारों का भंडार घटा, सीएसआईएस रिपोर्ट।

0: में आग, 176 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक। इस बीच बड़ी खबर, झारखंड छात्र आंदोलन को लेकर थोड़ी देर बाद रांची में छात्रों का विधानसभा मार्च होने के बाद आसपास भारी सुरक्षा कर दी गई है। कल सरकार और छात्रों के बीच तीसरे दौर की बैठक बेनतीजा रही है। हालांकि झारखंड के शिक्षा मंत्री सुरेंद्र कुमार का दावा है कि छात्रों के 98% मांगे मान ली गई है। उन्होंने छात्रों की अपील को लेकर ये कहा है कि वो अपने विधानसभा मार्च को वापस ले लें, लेकिन छात्र नेताओं का कहना है कि सरकार उन्हें बरगला रही है। लगभग 10 बजे का समय तय किया गया है विधानसभा मार्च को लेकर, जबरदस्त सुरक्षा इस परिसर के आसपास कर दी गई।
1: रांची में छात्रों का जो आंदोलन और धरना लगातार पिछले 17 दिनों से चल रहा है, उसमें आज सबसे निर्णायक मोड़ आएगा जब छात्र विधानसभा मार्च करेंगे। लगभग 10 बजे का समय कॉल किया है छात्रों ने और यहीं पर उनको पहुंचना है। ये विधानसभा मार्ग है, रांची विधानसभा, नई विधानसभा की सड़क, और इसी जगह पर पहुंचना चुनौती है छात्रों के लिए, क्योंकि तमाम जो रास्ते हैं उस पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई है। और जब आप इस जगह पर पहुंचते हैं जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, तो इसके बाद लगभग 1 किलोमीटर की दूरी विधानसभा भवन की है, और वहां तक जाने के लिए जो पास निर्गत किया गया है विधानसभा की तरफ से, उन्हीं पास के जरिए ही आप अंदर जा सकते हैं। चूंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो जाहिर तौर पे जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो अंदर भी सदन में हंगामा देखने को मिलेगा, लेकिन बाहर
0: बात मशहूर सिंगर सोनू निगम के एक वायरल वीडियो की करेंगे। सोनू निगम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें वो हॉस्पिटल में सर्जरी के दौरान मोहम्मद रफी का मशहूर गाना सुहानी रात ढल चुकी गीत नजर गीत गाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
2: Na jaan tum sabab

0: Papa.
1: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
1: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया
1: है। हां ओ ला भाई मेरा बैट,
3: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
4: बिलोंडे चार्ज हुआ यार।
5: बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: बिजली का बिल पेड
3: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
4: कैसे?
3: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
4: इतना माही वे।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Oh no, बहुत बोर लग रहा है.
2: Take a date, not bites.
3: No added sugar, preservative के बिना. Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया. Lion Dates Nut Bites.
2: Lion Date Nut Bites.
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने.
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ.
6: सोच बदलो और बैंक भी.

0: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with
1: Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you?
2: Punjab National Bank. Bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबा केसरी हिंट बड़े आराम से
3: हमारा एक तिरंगा हमारे सादगी का हमारे विकास का हमारी विरासत का और भारत के आन बान और शान का प्रतीक है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने भारत के प्रतीकों के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों को संज्ञेय अपराध की सूची में रखते हुए दंडित करने का निर्णय भी लिया है। अब ये नहीं चल सकता कि रहेंगे भारत में लेकिन भारत के प्रतीकों को, भारत के महापुरुषों को, भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपमानित करें। तिरंगा हमारे घर में लगे, हर घर तिरंगा के संकल्प के साथ, हर घर तिरंगा के इस मंत्र के साथ, तिरंगा के मंत्र को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको भी अधिकार दिया है तिरंगा के प्रति सम्मान का भाव हो, लेकिन उसके कोड में संशोधन करते अनिवार्य कर दिया है कि आप अपने घर में पहना सकते हैं। पहले कांग्रेस के समय में इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती थी, कोर्ट में जाना पड़ता था, माननीय न्यायालय की शरण लेनी पड़ती थी, तब हम लोग तिरंगा अपने घर में लगा पाते थे। लेकिन मोदी जी ने 140 करोड़ भारतीयों को आजादी दी कि नहीं, अपने आन बान शान के प्रतीक तिरंगा को आप भी अपने घर के ऊपर लगाएं। और ये भारत का स्वाधीनता दिवस के पूर्व ये तिरंगा यात्रा उसी का प्रतीक है।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
3: ये बीजेपी और आरएसएस देश के लिए कुछ नहीं किया, आजादी के लिए कुछ नहीं किया। मेरे को बताओ, कोई आरएसएस का आदमी देश के आजादी के लिए जेल में गया है? आपके पास कोई बीजेपी के चेले गई हैं? अगर गई भी है तो वो लोग ऐसे होंगे जो कांग्रेस में रह के उधर भाग गए होंगे, लेकिन असल बीजेपी का आदमी कोई भी इस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया। अरे ये इतिहास है तुम्हारा, और हमको हमेशा सिखाते हैं देशभक्ति। अरे देशभक्त तो असल हम हैं, तुम सब भगोड़े हैं।

आज के समय में मोबाइल से स्कैन करके पेमेंट करना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन आने वाले दिनों में यूपीआई ट्रांजैक्शन के नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसके बाद 2,000 रुपए से ज्यादा के कुछ यूपीआई मर्चेंट पेमेंट्स पर एमडीआर लग सकता है। दरअसल संसद में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है, जिसके बाद यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर लागू करने का रास्ता खुल सकता है। आसान भाषा में समझे तो एमडीआर वो फीस होती है जो दुकानदार डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने के बदले बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को देते हैं। फिलहाल यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 0 MDR लागू है, लेकिन आगे चलकर इस पर एक तय सीमा के बाद चार्ज लगाया जा सकता है। हालांकि प्रस्तावित बदलाव के बाद कई तरह के विकल्पों पर चर्चा हो रही है, जिनमें बड़े कारोबारियों के लिए ट्रांजैक्शन वैल्यू या टर्नओवर के आधार पर एमडीआर लागू करने पर विचार हो सकता है। वहीं 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना टर्नओवर वाले बड़े कारोबारियों को दायरे में लाने का प्रस्ताव सामने आया है और 2,000 से ज्यादा की यूपीआई पेमेंट पर 0.3 से 0.5% तक एमडीआर लगाने का प्रस्ताव भी सामने आया है। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक 2,000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन कुल यूपीआई वॉल्यूम का महज 4% है, लेकिन कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू में इनकी हिस्सेदारी करीब 67% है। अनुमान है कि अगर इस तरह का मॉडल लागू होता है तो डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री को हर साल 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है, लेकिन इस संभावित बदलाव का असर ग्राहकों और कारोबारियों के व्यवहार पर भी पड़ सकता है। लोकल सर्कल्स के एक सर्वे के मुताबिक 53% लोग एमडीआर लागू होने पर 3,000 से महंगे पेमेंट के लिए यूपीआई का इस्तेमाल घटा सकते हैं। वहीं 27% लोग क्रेडिट कार्ड, 14% डेबिट कार्ड और 12% बैंक ट्रांसफर या नगद भुगतान का विकल्प चुन सकते हैं, जबकि 18% लोगों का कहना है कि अगर अतिरिक्त लागत दुकानदार खुद वहन करें तो वो यूपीआई का इस्तेमाल जारी रखेंगे। सर्वे में शामिल 12% लोगों ने कहा कि वो चार्ज लगने के बाद भी यूपीआई का इस्तेमाल करते रहेंगे और 14% लोगों ने कहा कि उनका फैसला लगने वाले शुल्क पर निर्भर करेगा। सरकार ने संशोधन प्रस्ताव में सेक्शन 10A हटाने का प्रावधान किया है, जो फिलहाल 0 MDR का प्रावधान देता है, लेकिन फिलहाल ग्राहकों पर किसी तरह का प्रत्यक्ष शुल्क लगाने का प्रस्ताव नहीं है। जानकारों का मानना है कि पेमेंट सिस्टम को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए राजस्व मॉडल की जरूरत हो सकती है। साफ है कि इसके बाद ये बहस तेज हो सकती है कि देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट व्यवस्था को आगे कैसे फंड किया जाएगा। आज तक ब्यूरो।

सोरेन सरकार से बातचीत बेनतीजा रहने के बाद आज सुबह 10 बजे से छात्रों ने की विधानसभा कूच की तैयारी। असेंबली के बाहर कटीले तारों का घेरा, किले में तब्दील हुई असेंबली। आंदोलनकारियों की 98% मांगे मानी गई, सोरेन सरकार का दावा, छात्रों का आरोप बरगलाया जा रहा है। झारखंड पीएससी के 3 सदस्यों का इस्तीफा, ईडी ने पहला केस दर्ज कर शुरू की जांच। मॉनसून सत्र के आखिरी 4 दिन अहम, आज पेश हो सकते हैं 4 बिल। कांग्रेस और एसपी ने अपने सांसदों को दिए सदन में रहने के निर्देश, इंडिया ब्लॉक की बैठक में तय होगी रणनीति। परिसीमन और एफसीआरए पर तनातनी के बीच महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासत में नई हलचल, पीएम मोदी से आज मिलेंगे शरद पवार गुट के सभी 8 सांसद, सुप्रिया सूले ने बताया आधिकारिक बैठक। उत्तरी 24 परगना में ममता बनर्जी की कार पर हमले के खिलाफ विपक्ष एकजुट, काफिले पर पत्थर फेंकने का दावा, पूर्व सीएम का आरोप, कहा गुंडों को बीजेपी का संरक्षण, सीएम शुभेंदु बोले ये जनता का आक्रोश।

0: स्वागत है, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। सीधा लिए चलते हैं आपको उस मुलाकात में जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने की है कॉमनवेल्थ खेल्स के पदक विजेताओं से।
1: लंबे समय तक लोगों को याद।
2: 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी। वो फाइट तो मैं जीत गया और फिर वो मेरे को बोला कि मतलब भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है।
1: मेरे यहाँ मुझे यहाँ लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में। अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है, किसी को मैं मिला हूं, तो खिलाड़ी है। पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण, भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण और उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण, जो काम शायद हम स्कूलों में जाके कहें कि नहीं नहीं वे खेलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो काम स्कूलों में जाकर के हम कर सकते थे, उससे ज्यादा आपका मेडल उनको इंस्पायर करता है। तुमने मुझे वादा किया था पिछली बार कि तुम्हारी दोनों बेटियां खिलाड़ी बन जाएगी।
3: हाँ जी, अभी वे उम्र की छोटी है, अगले कॉमनवेल्थ में एक घर में 3 मेडल ला के दिखाई।
1: पक्का?
4: जब मैं दौड़ रहा था, जब मेरा इवेंट था 29 को, तो उस दिन गुरु पूर्णिमा थी, तो उस दिन मेरे गुरु को मैंने गिफ्ट दे दिया।
1: बड़ी शान बढ़ाई आपने, इतने आंसू टपक रहे थे, मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है।
5: मैं बहुत ज्यादा खुशी थी, इमोशनल भी थे उसी दिन, खुशी ज्यादा था। और मैं इसलिए रोई थी कि मेरा पेरिस ओलंपिक में मेरे 1 kg में मेडल रह गई थी। और एक प्लेयर्स की लाइफ में क्या क्या हमको फेस करना पड़ता है, तो ये 4 साल के अंदर मैं कितना क्या क्या कुछ मैंने फेस किया था। हर टाइम इंजरी ही चल रहे थे और फैमिली प्रॉब्लम वो सब हो रहा था, तो बहुत मुश्किल से मैं ये 4 साल फेस किया था। तो वो सब जब पोडियम में जब मैं खड़ी थी सर, और हमारी जो फ्लैग ऊपर जाते हैं और हमारे नेशनल एंथम जब बजते हैं, तो सर हम रुक नहीं सकते सर, अपना आप आंसू निकलते हैं। वो
1: बहुत बहुत बढ़िया। आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है।
6: सब डर रहे थे हमसे कि इंडिया के साथ फाइट आ गई, अब तो हम पहली फाइट ही हार जाएंगे, हमारा मेडल भी नहीं आएगा।
1: यानी मान के चलते हैं।
6: हाँ सर।
1: क्या हुआ, वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी?
7: हम लोगों का तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, लास्ट डे था और सब जीत के गए थे और पूरा इंडिया के लोग थे, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा था। तो मैंने उनको अच्छे से बोला, रिक्वेस्ट किया था सर, फिर उन्होंने मान भी लिया, अभी चेंज भी हो गया सर।
1: इस विजय की परिस्थिति, खुशी, आनंद अपने साथियों के साथ और गेम पूरे हो चुके हैं, तो हंसी मजाक मस्ती का मूड, ऐसे समय उस मैप पर नजर जाना और उसको रजिस्टर करना और तुरंत सिर्फ मेडल लेते समय देश खड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं, भीतर से देश का भाव। मैं सच बताता हूं, ये वीडियो सामान्य नहीं है, आपका लंबे समय तक लोगों को याद रहेगा। ये बॉक्सिंग वालों से भी दुनिया के खिलाड़ी अब डरने लगे हैं।
7: जरूर सर, पूरे सभी डरे हुए थे, एक के बाद एक गोल्ड मेडल आ रहे थे और मतलब पूरा लास्ट में ऐसे धमाका जैसा हो गया बिल्कुल। जिस तरीके से हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, हमें बैक टू बैक कंपटीशन मिल रहा है, वो एक बहुत बड़ी बात है। और हमारे जितने भी यंग एथलीट है, वो लोग सभी जैसे खेलो इंडिया स्कीम से आए हुए हैं और ये एक बहुत बड़ा चेंजेस ला रहा है पूरे स्पोर्ट्स में ही।
1: अगर आप लोग खेलो इंडिया को की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा विद्यार्थी, एक छोटा नौजवान, छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा। क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है, बहुत मेडल लाने हैं। कारगिल विजय दिवस पर किसकी विजय हुई थी?
8: उस दिन कारगिल डे था वैसे, और जिस दिन मैंने पाकिस्तान के साथ फाइट किया था सर वो उसी दिन का था। तो मैं एक इंडियन आर्मी से हूँ, तो मैंने उस दिन मैं पहले से बहुत वो था कि सर पाकिस्तान को हराना है। तो मैंने वो काम पाकिस्तान को एक तरफा मैंने 5-0 से हराया। तो मैंने हमारा इंडियन आर्मी का कारगिल हीरोज को मैंने डेडिकेट किया था सर।
1: आपको यह याद रहना, और आप स्वयं फौज से हैं तो मैं जरूर मानता हूं कि देश के वीर जवानों को आपने जो भाव प्रकट किया ना कि मैं करगिल के विजेताओं को मेरा मेडल समर्पित करता हूं, उसने उस विजय पर 4 चांद लगा दिए और जिसको पराजित करना था उसी को किया आपने।
2: वो पाकिस्तान की बात चल रही, मुझे किस्सा याद आ गया सर। 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी, और वर्ल्ड मिलिट्री गेम था तो मिलिट्री वाले को फोन आया कि भाई पाकिस्तान से नहीं आना है। तो फिर मैं फर्स्ट राउंड 4-1 से जीत गया, सेकंड राउंड 3-2 से जीत गया, पर दोनों के सर लग गए आपस में, तो दोनों के लग गए कट। वो फाइट तो मैं जीत गया। उसके बाद फिर दोनों चले गए हॉस्पिटल में टाके लगवाने के लिए। फिर 2014 में आप फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी बने थे, और जो हमारे साथ आर्मी का कोच गया हुआ था उसका नाम नरेंद्र राणा था, और फिर वो कई देर तक सोच के मेरे को बोला कि भाईजान एक बात बोलूँ। वहाँ बोलो, बोला भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है।
1: सिर्फ आपने मेडल की संख्या बढ़ाई ऐसा नहीं है, आपने एक पीढ़ी को तैयार किया।
9: मेरे मन में भी धक धक धक धक हो रहा है।
1: आप चिंता मत कीजिए।
9: पर
1: आप जाकर आपको बोलने में भी मेडल मिलने वाला है।
9: मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी ने बोला था कि मैं उनको कुछ बोलती थी भाई ये तुम्हारे अच्छे के लिए तुम करो, तो अक्सर मुझे वो बोलते थे कि तू के मोदी ते मिल रही है। हरियाणवी में बोल देते हैं सर कि क्या तुम मोदी से मिली हुई है कि तेरी बात माने। तो आज मैं आपसे मिली हूँ सर, मैं उनको बोल पाऊंगी कि हाँ मैं मोदी जी से मिली हूँ।
10: कॉमन गेम्स में मेडल, सिल्वर मेडल जीता, फिर मैंने क्रेडिट साहब को दिया। सपना तो था एक बार मेडल जीत के लेके आने के लिए, बट ट्रेनिंग का सेंटर नहीं था। मैंने साई आने के बाद मैं बहुत ट्रेनिंग करके मेडल जीत पा रहा, इसलिए बहुत खुश है जी। मैंने सर को क्रेडिट दिया था क्योंकि बहुत इम्प्रूव हुआ।
1: मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान का विषय है, मेहनत आपने की और मुझे याद किया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ दोस्त। वाराणसी में खेल तुम प्रैक्टिस कर रही थी ना?
11: जी सर। बहुत
1: कैसा बना है स्टेडियम?
11: सर अच्छा बना है। वहाँ पे मैं 10-12 दिन के लिए ट्रेनिंग करने गई थी क्योंकि मैं मंदिर गई थी, तो वहाँ पे ही ट्रेनिंग करके आई थी। और मैं वहाँ पे मतलब सेटल भी होना चाहती हूँ क्योंकि मुझे काशी विश्वनाथ बहुत अच्छा लगता है सर।
1: भोपाल में ट्रेनिंग कर रही थी?
11: जी सर। 2000
1: उज्जैन जाते थे कि नहीं?
11: जी सर उज्जैन भी गई थी सर।
1: अच्छा महाकाल के बाद भी गई?
11: जी सर।
1: काशी विश्वनाथ के पास हुआ ही एक बार?
11: जी सर।
1: सावन महीना तो भी है,
11: वहाँ घर जाके फिर उसके बाद जाऊंगी सर।
1: ठीक है।
11: साई ने भी सर बहुत सपोर्ट किया है मुझे, इसके कारण ही मैं यहाँ तक पहुंची। मैं खेलो इंडिया स्कीम में भी थी। 2018 में जो फर्स्ट खेलो इंडिया हुआ था उसमें मेरा सिल्वर मेडल था, वहाँ पे भी मैंने आपको देखा था ओपनिंग सेरेमनी में, तो उसमें मेरा मेडल था, तो मेरे को स्कीम भी मिल गया और मैं यहाँ तक पहुंची हूँ सर।
1: स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात है, लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूं, और आप विश्वास कीजिए आगे भी आप विजयी होंगे और फिर से एक बार यहीं पर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये लगातार तीसरी बार देश को मेडल दिलवाया है, बहुत आशीर्वाद बेटा।
12: और थैंक यू सो मच, मैं सर के हाथ से बर्थडे था तो आज सर की
1: बहुत बधाई। वाह।
12: एक ही
1: मेडल।

0: खिलेगा वो खिलेगा।
1: तो आप देख रहे थे मुलाकात प्रधानमंत्री की पदक विजेताओं के साथ, लेकिन अब बढ़ते हैं आगे क्योंकि अब बात करने वाले हैं हम झारखंड की, जहां लगातार सरकार और छात्रों के बीच गतिरोध चल रहा है। और आपको बता दें कि आज का दिन तय है विधानसभा मार्च के लिए, तो छात्र विधानसभा के लिए कूच करना जा रहे हैं और उसकी तैयारी उनकी पूरी है और सरकार प्रशासन की भी पूरी तैयारी है। उन्होंने राजधानी रांची में विधानसभा के चारों तरफ किलेबंदी कर दी है, जिसकी वजह से कोशिश ये की जा रही कि आज न बढ़े छात्र वहां। उधर दूसरी तरफ संसद में भी संग्राम होने वाला है, इसकी भी चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि चार बिल हैं जो हो सकता है आ सकते हैं, आज पेश किए जा सकते हैं, उन पर चर्चा हो सकती है। तो ये अहम खबरें हैं जिन पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की, जहां पर छात्रों का आंदोलन चल रहा है और सरकार और छात्रों के बीच कई दौर की वार्ता विफल रही है। तो अब बात विधानसभा के घेराव तक पहुंच गई है। कल देर शाम तक सरकार की ओर से बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रयास हुआ, लेकिन कुछ मुद्दों पर दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन सकी, जिसके बाद छात्रों ने विधानसभा मार्च की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल सबसे बड़ा पेच जो अटका है वो सीबीआई जांच को लेकर है और सीजीएल को रद्द करने के मुद्दे पर है। और छात्रों का कहना है कि अब तक उनकी सभी मांगे नहीं मानी जाए गई हैं और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उधर छात्रों के विधानसभा मार्च को देखते हुए सरकार ने सुरक्षा बेहद पुख्ता कर दी है। आंदोलनकारी छात्रों को विधानसभा से पहले ही रोकने के लिए कटीले तारों की एक बैरिकेडिंग लगा दी गई है। इसके साथ ही विधानसभा के 750 मीटर के दायरे में कानूनी आदेश लागू कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि ये जो पूरा मार्च है उसकी तैयारी पुरानी विधानसभा से शुरू हो रही है और झारखंड की असेंबली को घेरने का पूरा प्लान है। लेकिन अलग अलग नेताओं की तरफ से, खासतौर पर छात्र नेता जो अनशन पर बैठे हैं, उनकी तरफ से अपील भी की गई है कि किसी तरह की हिंसा ना हो, शांतिपूर्ण हो ये मार्च। तो छात्र जो है वो सब मार्च करके विधानसभा की तरफ जाएंगे। रास्ते में उनका कहना है कि अगर बैरिकेडिंग में रोका गया तो वो वहीं पर धरने पर बैठ जाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी शशि भूषण रांची से। शशि, किस तरह की तैयारी वहां पर दिख रही है और कब तक मार्च शुरू होगा?
2: देखिए अंजलि, 10 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन ये मान करके चल रहे हैं कि 11 बजे से मार्च लगभग शुरू हो जाएगा। लेकिन हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहां से मार्च की शुरुआत होनी है और यहां पर उसी शांतिपूर्ण अंदाज में छात्रों की मौजूदगी है जो लगातार 16 दिनों से झारखंड ने और पूरे देश ने उस आंदोलन को देखा है जो जेपीएससी से जुड़ा आंदोलन चलता रहा। और आज भी छात्रों का लगभग वही मिजाज है। हमने बहुत सारे छात्रों से बात की है, उन्होंने कहा कि हमारा जो अंदाज है, हम जिस अंदाज में प्रोटेस्ट करते रहे हैं वो उसी अंदाज में हम आज मार्च भी करेंगे और यहाँ से थोड़ी देर में ये मार्च शुरू होगा। थोड़ी देर पहले यहाँ से जो तमाम मंत्री हैं उनका काफिला गुजरा था और अब ये मार्च में देखिए नारेबाजी हो रही है यहाँ पे और जो छात्र देखिए बोल रहे हैं यहाँ पे और छात्र बोल रहे हैं यहाँ पे और उनके तरफ से ब्रीफिंग की जा रही है। लगातार अलग अलग जगह पर छात्रों की मौजूदगी है। ये पुराना विधानसभा भवन है और जो छात्र पहुंचे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आज जो मार्च होगा वो उसी तरह से शांतिपूर्ण होगा जैसा अब तक आंदोलन चला है?
3: जी, शांतिपूर्वक होगा मार्च जो होगा। पुराना विधानसभा से लेकर नया विधानसभा तक 11 बजे यहाँ से मतलब हम लोग निकलेंगे।
2: देखिए सभी के हाथों में लगभग एक ही तरह के पोस्टर बैनर हैं, अभय तिवारी सीजीएल में धांधली कैसे, ये तमाम जो मांगे छात्र करते रहे। आप कहाँ से आए हैं जरा बताइए अपने बारे में?
4: कहाँ से आए हैं? कोडरमा जिला।
2: कब आ गए थे यहाँ पे आप?
4: हम कल ही आए हैं,
2: आज के मार्च में शामिल होने के लिए आए थे। लगता है कि सरकार, जो कल वार्ता इतनी लंबी चली उसके बाद भी सरकार ने आपकी तमाम छात्रों की बातें नहीं मानी, तो अब लगता है कि अब आज के इस मार्च से फर्क पड़ेगा?
4: फर्क पड़ेगा, जरूर फर्क पड़ेगा। देखिए झारखंड में जो है 100% जो है वो विद्यार्थी है, वो 100% में से जो है 80% जो विद्यार्थी है सीजीएल की तैयारी करते हैं और 20% जो विद्यार्थी जेपीएससी की तैयारी करते हैं। तो जेपीएससी का खुलासा तो हो चुका है, जेपीएससी रद्द हो चुका है और सीजीएल भी होना चाहिए रद्द, क्योंकि सीजीएल बहुत
2: वहीं पर बात आके अटकी पड़ी है। सीजीएल पे बात आके आप कहां से आए, जरा नाम बताइए और कहां से आए?
5: कोडरमा से आए हुए हैं।
2: कोडरमा से ही आए?
5: हाँ।
2: तो आज लगता है कि जो प्रोटेस्ट मार्च है, विधानसभा घेराव है, उसका नतीजा निकलेगा कुछ?
5: आप देख, आप निकलेगा तो जरूर। आप जिस तरह यहाँ पे स्टूडेंट का भीड़ उमड़ चुका है और जिस तरह वो अपने मांगों को सरकार के,
2: अंजलि एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाते हैं, देखिए जहाँ तक नजर जाती है वहाँ पर छात्रों की मौजूदगी नजर आती है और ये पुराना विधानसभा का वो गेट है, पोर्टिको है, जहां से छात्रों का जमावड़ा अब 11 बजे यहां से कूच करेगा। और सबसे अच्छी बात जो देखिए, छात्रों की नारेबाजी है लगातार और प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये, और ये देखिए ये नारेबाजी
1: जी,
2: बताइए मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार सीजीएल रद्द करेगी?
6: क्यों रद्द करना पड़ेगा? हम लोग आंदोलनरत इसी कारण से है कि ये परीक्षा रद्द होगा, आगे से आने वाली सभी परीक्षाएं पारदर्शी रूप से ले जाएंगी, सीटें नहीं बिकेंगी, पेपर लीक नहीं होगा और जो झारखंड के युवा जो इतना मेहनती है, इनका युग जो है स्वर्णिम युग होगा आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो परीक्षाएं की व्यवस्था है। जो
2: ये पोस्टर लेके आए हैं, ये कुछ कनेक्शन बना के आप लेके आए हैं क्या?
7: सुनिए ना सर, पहले मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट
2: बोलिए बोलिए बोलिए।
7: देखिए मेरा कहना है कि भारत 80 साल में स्वतंत्र दिवस मनाएगा, 80 साल में भी हम लोग को पेपर लीक के लिए आंदोलन करना पड़े, पेपर लीक के लिए बैठना पड़े, स्वास्थ्य के लिए बैठना पड़े।
2: बनाया है आपने, ये क्या बनाया है?
7: ये बनाया है भ्रष्टाचार के खाका।
2: अंजलि बहुत बहुत दिलचस्प है, अभय तिवारी जो चर्चा में रहा लगातार इस पूरे प्रकरण में, उसके परिवार के कौन कौन लोग किस परीक्षा में क्वालिफाई किए, ये अभय तिवारी बताइए, जरा बताइए।
8: अभय तिवारी जो भैया इसमें जो टीडीपीएल कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर थे, मैं वहीं से आता हूँ, पोड़िया हाट में ये फूड सप्लाई ऑफिसर में पदरत थे।
2: कौन कौन है जो इनके परिवार से सरकारी नौकरी,
8: सबका नाम लिखा हुआ है, आप इनको पढ़ लीजिए, बहुत है।
2: ये अभय तिवारी के साले है, जो उपेंद्र मिश्रा है उनके है।
8: सरकार से हमारी मांग है जैसे सीजीएल को रद्द करना होगा
1: जी, बिल्कुल
8: जांच करनी होगी।
1: शशि आप हमारे साथ बने रहे, हम आपके पास लौट के आएंगे बस चंद ही मिनटों में, क्योंकि छात्रों के विधानसभा मार्च को लेकर झारखंड पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने निर्देश दिए हैं और पुलिस अधिकारी ने संयम बरतने की अपील की है।
2: जहां भी आपकी नजर जाएगी देखिए इसी तरह के जो कटीले तार हैं उनका इस्तेमाल किया गया है, तमाम जो प्रोटेक्शन के साथ पुलिस के जवान हैं वो तैनात हैं और सब उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब यहां पर मार्च अगर पहुंचेगा इस पॉइंट तक तो कैसे उसको आगे जाने से रोका जा सके। थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं हर सड़क जो पुराने असेंबली से नए असेंबली भवन तक जाता है, उस पूरी सड़क पे जहां तक नजर जाती है इसी तरह की कमोबेश स्थिति है और इंतजार है कि कब छात्रों का मार्च निकलता है और जो शांतिपूर्ण आंदोलन इतने दिनों तक चल रहा है वो क्या शांतिपूर्वक ही मार्च आगे बढ़ता है। सहयोगी कैमरा पर्सन नदी मालम के साथ शशिभूषण आज तक।
1: तो आपको बता दें कि इस वक्त एक अहम खबर आ रही है, बीजेपी के विधायक सब एकजुट हुए हैं, बाबूलाल मरांडी के घर पर एक बैठक चल रही है जिसमें बीजेपी के विधायक पहुंचे हैं, चर्चा हो रही है कि आखिर इस मुद्दे को कहां तक और कैसे आगे तक लेकर जाया जाए। आपको बता दें लगातार बीजेपी के विधायक इस मुद्दे को विधानसभा परिसर के अंदर उठाते रहे हैं, उन्होंने विरोध प्रदर्शन लगातार किए हुए हैं, तो अभी भी सियासत गरमाई हुई है और बाबूलाल मरांडी के घर पर इस वक्त एक बैठक लगातार जारी है। तो एक तरफ छात्रों का विरोध मार्च और दूसरी तरफ सियासी तैयारी भी पूरी है बीजेपी की तरफ से, इस मौके को वो छोड़ना नहीं चाहती है, जब मौका है हेमंत सोरेन सरकार को घेरने का, क्योंकि छात्रों का आक्रोश आज सड़कों पर नजर आएगा। हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। आशुतोष तैयारी कैसी दिख रही है वहां पर, कुछ मांगों पे अड़े हैं वहां पर जो छात्र हैं, आज अपील भी की गई है कि जितने ज्यादा छात्र हो सके वो आए और ऐसा दिख भी रहा है।
9: प्रोटेस्ट मार्च शुरू हो गया अंजलि, 10 बजे का समय था, 10:30 बजते ही छात्रों ने मार्च करना शुरू कर दिया है। और अगर आप देखेंगे इन पोस्टरों में तो सिर्फ एक चीज है कि ये जो सीजीएल है, सारा कंटेंशन सीजीएल पर था, अब सीजीएल से समझौता नहीं है। तो छात्रों ने मार्च करना शुरू कर दिया है। हालांकि उनके जो अलग वॉलंटियर ग्रुप है वो उनसे कह रहे हैं कि हमें आक्रामक नहीं होना है। अब इसके बाद जैसे छात्रों ने पुरानी विधानसभा से मार्च शुरू की है, ये पहले बैरिकेडिंग पे सुरक्षा बलों ने इनको रोक दिया है, यहां से आगे जाने की अनुमति उनको नहीं दी जाएगी। तो सबसे पहले देखे पुलिस यहां रोकने की कोशिश कर रही है, बातचीत कर रही है, समझाने की कोशिश कर रही है। और पुलिस ने ये देखिए यहां पर पहला घेरा है, जो झारखंड पुलिस है वो यहां पर है। और ऐसे में बहुत मुमकिन हमें जरा दूसरा रास्ता लेना होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जितनी कम संख्या में यहां पुलिस बल है उनको यहां पर रोकना बहुत मुश्किल होगा। तो हम आपको उस पार लिए चलते हैं। ये देखिए छात्र अब दूसरे रास्तों से भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरा रास्ता जैसे इन्होंने 10 बजे का कॉल दिया था, आह्वान किया था, मैं लोकेंद्र को कहूंगा जरा 360 डिग्री में तस्वीरें भी दिखाते रहे, उधर से छात्रों ने कोशिश की निकलने की, लेकिन यहां पर ये पहला घेरा है। देखिए यहां पर इन्हें रोका गया है कि वो इससे आगे ना जाएं, लेकिन बहुत मुश्किल है कि ऐसी जगहों पर उन्हें रोका जा सके। छात्रों की संख्या काफी ज्यादा है और इसीलिए अब यहां पर पहला घेरा है। ये पहली बार देखिए छात्र वहां से बैरिकेड पर चढ़ रहे हैं, बैरिकेड पर चढ़कर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और हम दरअसल आपको उसी इलाकों में लिए चलते हैं, वो बैरिकेड पर जाते हुए कोशिश कर रहे हैं यहां से वो निकलने की। देखिए और पहला जो सुरक्षा घेरा है उसको होल्ड करना बहुत मुश्किल होगा पुलिस के लिए। हालांकि पुलिस की ओर से भी जो तैयारी है वो इस पॉइंट पर उतनी मजबूत नहीं है, कोई वाटर कैनन या यहां पर नहीं है। तो और दूसरा पुलिस भी ये कह रही है कि लाठी डंडों का इस्तेमाल यहां पर नहीं हो रहा है। ये देखिए यहां पर जो छात्र हैं वो यहीं बैठ गए, इसी जगह पर बैठ गए हैं, यहां पर समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए पूरी लंबी श्रृंखला है जो झारखंड आम पुलिस से लगाई गई है, डंडों के साथ तैनात है, लेकिन पुलिस भी अभी सख्ती यहां पर फिलहाल नहीं कर रही है, उन्हें समझाया बुझाया जा रहा है कि यहीं पर रुक जाएं। तो छात्रों को उनके जो वॉलंटियर ग्रुप है वो भी यहीं पर बैठ रहे हैं। हालांकि ये कितनी देर यहां रुकेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। तो मार्च शुरू हो गया, पहले बैरिकेड पर छात्रों को रोका जा रहा है यहां पर, और पुलिस संभवतः प्रशासन की ओर से कुछ संदेश देने की कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत मुश्किल है कि वो शायद अभी यहां पर समझे। देखिए ये जो पुलिसकर्मी के अधिकारी वो बैरिकेड पर चढ़ गए हैं, वो भी कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिसकर्मी बैरिकेड पर चढ़ गए हैं, छात्रों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहां पर वो रोका जा रहा छात्रों को। और पहला बैरिकेड सब मुश्किल से 50 मीटर की दूरी इन्होंने कवर की और उसके बाद उनको रोक लिया गया है। और ये जो छात्र हैं अब वो आगे चले हैं, इनको रोकने की कोशिश की गई है। तो पहला पड़ाव है जहां पर छात्रों को रोका गया है, और जरा दूसरी ओर मैं आपको लिए चलता हूं यहां से, क्योंकि वो आने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। हालांकि एक ही रो एक सड़क है, दूसरा हिस्सा अभी भी खुला हुआ है। और छात्र यहां से देखे अब यहां से एक एक करके बैरिकेड कूदने की भी कोशिश कर रहे हैं, वो बैरिकेड से भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अब ये मुश्किल होगा कि कितने लोगों को यहां पर रोका जा सकता है, तो वो भी बैरिकेड से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यहां जो सबसे ज्यादा संख्या है, सैकड़ों की संख्या में जो छात्र थे, और अभी तक ये जो है छात्र आपस में भी अपीलें कर रहे हैं कि बेहद शांतिपूर्वक रहेंगे, हम बेहद शांति का पालन करेंगे, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि किसी तरह की नारेबाजी नहीं होगी। ये देखिए पुलिसकर्मी एक बार और बैरिकेड पर वो भी उतरने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां से किसी तरह इसको जो है जो एस्केलेशन है उसे टाला जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि बहुत ज्यादा देर पुलिस उनको यहां पर रोक पाएगी।
1: जी हमारे साथ शशि भूषण भी लगातार जुड़े हुए हैं, आइए सीधा रुक करते हैं उनका। शशि तस्वीरें जो दिख रही है उसमें साफ नजर आ रहा है कि अब तक तो मामला कंट्रोल में है, लेकिन कितना अहम हो जाएगा प्रदर्शनकारी छात्रों के लिए यहां से आगे बढ़ना और प्रशासन के लिए उन्हें यहीं रोके रखना, क्योंकि महज 50 मीटर ही चल पाए वो।
2: बिल्कुल अभी तो शुरुआत हुई थी अंजलि, जब मैं आपसे बात कर रहा था, और मार्च शुरू होने के 50 मीटर ही चलने पर ये पहला बैरिकेड जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, दूसरी तरफ छात्र हैं और इस तरफ प्रशासन है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार चढ़े हुए हैं बैरिकेड्स के ऊपर। क्या इस प्रोटेस्ट को यही रोक दिया जाएगा, आपको लगता है आप लोग आगे बढ़ेंगे?
10: हम लोग आगे भी बढ़ेंगे, हमारी मांग सफल, हमारी मांग मतलब पीड़ा ये थी है, उसे प्रोटेस्ट में उसे पाया गया कि उसमें दोषी लोग बहुत है, सरकार का अगर दोषी नहीं रहता तो कल जेपीएससी का जो किंग अधिकारी लोग उसको सस्पेंड नहीं किया जाता है।
2: देखिए पुलिस के लोग भी खड़े हैं यहाँ पे, और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहाँ पे, किसी तरह हालात पर नियंत्रण पाया जाए और यहीं पर न्यूट्रलाइज किया जाए छात्रों के एजुकेशन को, उनके विधानसभा मार्च को, ये मकसद है पुलिस का। और देखिए थोड़ा आगे तक दिखाते हैं आपको किस तरह की तैयारी है यहाँ पे, ये विधानसभा मार्ग है और ये आगे का पूरा इलाका खाली नजर आता है। लेकिन चूंकि कॉल किया था छात्रों ने कि वो निकलेंगे ओल्ड असेंबली से, तो यहीं से मार्च की शुरुआत हुई और 50 मीटर आगे बढ़ने के बाद मार्च को रोक दिया गया है। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती है।
1: शशि, कितना दूर है विधानसभा, पुरानी विधानसभा से
2: नाकेबंदी की है? देखिए, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां से मार्च की शुरुआत हुई, यहां से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी है पीछे की तरफ। मतलब अच्छी खासे रास्ते को तय करना होगा छात्रों को, तब वो जा करके। और इस 4 किलोमीटर में हमने देखा जो 1 किलोमीटर का एरिया है विधानसभा मार्ग, जहां से मुख्य सड़क से विधानसभा के लिए एक सड़क निकलती है, वो तो पूरी तरीके से बंद है और कई जगह कांटे वाले वायर लगाए गए हैं प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए। आगे बहुत बड़ी नाकेबंदी है, आप लोग आगे बढ़ पाएंगे लग रहा है, क्योंकि अभी तो 50 मीटर चले और रोक।
11: हिम्मत तो नहीं हारने वाले हैं, सच के साथ है तो हिम्मत तो हारने नहीं वाले हैं। और सरकार जो नाकामी अपना छिपाना चाह रही है, उसको हम सब स्टूडेंट एकजुट होकर के उस नाकामी को उजागर करेंगे।
2: आप कहाँ से आए हैं? कहाँ?
12: जी मैं हजारीबाग से आया हूँ, हजारीबाग से।
2: आगे बढ़ पाइएगा?
12: आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो यहीं बैठे रहेंगे, चाहे जब तक हो, रात हो दिन हो।
2: क्या बोल रहे हैं?
11: यहीं बैठ जाएंगे अगर आगे नहीं बढ़ने के लिए मिलेगा तो।
2: देखिए, ये अंजलि कमिटमेंट है झारखंड के स्टूडेंट्स का, जो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अगर सरकार आगे नहीं बढ़ने देगी, पुलिस आगे नहीं बढ़ने देगी, तो यहीं पर बैठ जाएंगे। मतलब जो जयपाल मुंडा स्टेडियम है, वहां पर एक धरना पहले से चल रहा है, हो सकता है कि अगर आगे न बढ़े मार्च तो आप लोग यहीं बैठ जाएंगे।
11: जी हम ये कहना चाहते हैं, जो आप हम लोग को रोकने के लिए इतना कर रहे, हम लोग आपका दुश्मन तो है नहीं। आप अगर यही इंतजाम पेपर लीक रोकने के लिए कर देते, या जो परीक्षा में धांधली हो रहा उसको रोकने के लिए कर देते, हम लोग को रोड पर उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम लोग चुपचाप अपना एग्जाम देते, बस सिलेक्शन होता तो ठीक, नहीं तो कम से कम जो डिजर्व करते हैं उनका तो सिलेक्शन हो कम से कम।
2: देखिए पूरी सड़क की क्या स्थिति आपको दिखाते हैं। ये विधानसभा का सत्र चल रहा है और सभी विधायकों को ये कहा भी गया था कि वो समय से पहले पहुंच जाएं। और विधानसभा मार्ग को जिस तरह से क्लोज किया गया है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, उससे आम लोगों को भी परेशानी है। स्कूलों में पहले से ही छुट्टियां कर दी गई हैं और जो तस्वीरें नदीम दिखा रहे हैं आपको, देखिए इसमें दूर तक जहां तक नजर जाती है हाथों में तिरंगा लिए, प्लेकार्ड्स लिए प्रोटेस्टर्स हैं, छात्र हैं, और बहुत शांतिपूर्ण अंदाज है। ठीक है नारेबाजी है, लेकिन कहीं कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं है। एक स्वरूप जो शांति का है वो यहां दिखता है। और जो 16 दिनों में एक मिसाल बनाई है झारखंड के छात्रों ने, वो आज 17वें दिन जब मार्च की शुरुआत हुई है तब भी, जिस वक्त हम ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उस वक्त बरकरार है और बनी हुई है। अंजलि
1: जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि एक और तस्वीर हमारे पास आने लग गई है। अब एक तरफ शशि भूषण आप जो दिखा रहे हैं वो है छात्रों का प्रदर्शन, दूसरी तरफ सियासी प्रदर्शन। बीजेपी ने भी मोर्चाबंदी कर ली है। इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं उसके मुताबिक सीएम आवास का घेराव किया गया है बीजेपी के विधायकों के साथ। आपको बता दें, इससे पहले बाबूलाल मरांडी के घर पर बैठक हुई और उसके बाद अब बीजेपी के विधायक अपनी सियासी तैयारी के साथ पहुंच गए हैं सीएम आवास पर। तो आपको दिखा रहे हैं हम इस वक्त दो तस्वीरें, एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन और दूसरी तरफ बीजेपी की मोर्चाबंदी, सियासी प्रदर्शन जो उन्होंने सीएम के घर के बाहर किया है। तो आज का दिन बेहद दबाव का दिन हेमंत सोरेन सरकार के लिए। सीधा रुख करते हैं उस छात्र प्रदर्शन का जो विधानसभा, पुरानी विधानसभा से बस निकला ही था, 50 मीटर की दूरी तय ही की थी कि पहली बैरिकेडिंग पर अभी उन्हें रोक दिया गया। हमारे सहयोगी वहां पर लगातार तैनात है, वहां की पल पल की खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। शशि, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि छात्रों और जो सुरक्षा कर्मी है वो आमने सामने खड़े हैं, लेकिन एक अच्छी बात जो सामने आ रही है कि किसी की तरफ से वहां पर गुस्सा या किसी तरह का की हिंसा वो देखने को नहीं मिल रही है। गर्मी होगी, धूप होगी, लेकिन उसके बावजूद छात्रों का संयम अभी वहां बरकरार है। नहीं चलता, नहीं चलता। नहीं चलता। नहीं चलता। नहीं चलता।
2: उमस वाली गर्मी है और इस गर्मी के बीच भी जो देखिए किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का झंडा नहीं है, यहाँ तिरंगा है और इस तिरंगे के सहारे अपने आवाज को बुलंद करते युवा हैं। मकसद क्या है, चूंकि हम देख रहे हैं लगातार तिरंगा ही है हाथ में या फिर जो प्ले कार्ड्स हैं, पोस्टर हैं, एग्जाम रद्द करने, बहाली रद्द करने को लेकर के वो हैं। अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं, थोड़ा बताइए।
13: मेरा नाम चंदन कुमार है, हम देवघर से आए हुए हैं,
2: बाबा की नगरी से।
13: जी बाबा की नगरी से आए हुए।
2: मतलब एक आप लोगों ने नीति बना ली कि तिरंगा ही रहेगा हाथ में, किसी पॉलिटिकल किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का कोई झंडा
13: नहीं, नहीं किसी का, ना बीजेपी ना जीएम, किसी भी पॉलिटिकल का हम लोग यहाँ नहीं चाहते। हम लोग ये छात्र का मूत्र है, ये छात्र ही यहाँ पे सब कोई है आपका, और सबके हाथ में दिखाइए, मेरे भाई बहनों के पास सबके हाथ में।
2: हम लगातार दिखा रहे हैं आज तक के कैमरे पर कि जो तिरंगा है वही है, और देखिए जहां भी स्टूडेंट्स, देखिए यहां भी हैं हाथों में तिरंगा है। थोड़ी देर पहले मैं इनसे बात कर रहा था, ये हाथ में अम्ब्रेला लेकर आए हैं, छाता लेकर के आए हैं, और पीछे की तरफ कुछ छात्र जो निकले हैं ना अंजलि, उनसे भी हम बात करते हैं। देखिए एक स्टूडेंट है यहाँ पे जो एजिटेशन में है, और देखिए थोड़ा आगे तक आ गए हैं, कौन है ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए वो दूर बैठे हैं ये, ठीक है, और दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखाता हूं। चूंकि एक सड़क पूरी तरीके से बंद है तो दूसरी सड़क पर इस वक्त दबाव है, कई स्कूलों को बंद किया गया था, इसके बावजूद कुछ स्कूल खुले हैं। तो इस तरफ से जो कैमरे में हम देख पा रहे हैं, कुछ स्कूलों के बच्चे जिनके साथ छुट्टियों का वक्त हो गया है वो अपनी बसेस में हैं यहाँ पे, ये उनके लिए भी एक सफर करने वाली स्थिति है। हालांकि पहले ही बंद कॉल किया गया था, स्कूलों को क्लोज कॉल किया गया था, लेकिन उसके बावजूद अगर ये बच्चे स्कूल से जा रहे हैं तो आप, अब एजुकेशन चूंकि शुरू हो चुका है, मार्च शुरू हो चुका है, तो कब तक ये बच्चे यहाँ रहेंगे ये हमें भी नहीं मालूम है। कोशिश प्रशासन की ये है कि एक लेन, जिस लेन पे ये मार्च निकल रहा है, विधानसभा मार्ग जाने वाला, उस लेन को क्लियर रखा जाए और दूसरे लेन से टू वे ट्रैफिक जो है वो निकाला जाए। तो ये भी उम्मीद है कि वहां से वो चीजें क्लियर करा दी जाएंगी। लेकिन हाँ, कहानी वही है, 50 मीटर का मार्च और पहले बैरिकेड्स पे ही। आगे तो बहुत बड़ी बड़ी किलेबंदी और जो वायर है कटीले वो लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ तो सिंपल बैरिकेड से ही पुलिस ने रोका है, छात्र कोई प्रतिवाद नहीं कर रहे हैं। ये अपने आप में वही मिजाज है झारखंड के स्टूडेंट्स का जो हमने पिछले 16 दिनों में देखा है रांची के अंदर। जी
1: और कुछ तस्वीरें इस वक्त, अब आपको बता दें कि सीएम आवास से आनी शुरू हो गई है, जहां पे बीजेपी के विधायकों को अब पुलिस ने उठाना शुरू कर दिया है। बीजेपी के जो विधायक हैं वो लगातार सीएम आवास के बाहर बैठे हुए हैं, वहां घेराव कर रहे हैं, प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं हेमंत सोरेन के ऊपर, हेमंत सोरेन की सरकार के ऊपर, और इस वक्त वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें उठाकर बस में डालना शुरू कर दिया है, उन्हें डिटेन कर रहे हैं, वहां से शायद उन्हें हटाने की कोशिश है, उन्हें शायद वहां से किसी पुलिस स्टेशन तक ले जाया जाए। लिए तस्वीरें इस वक्त सीधी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं सीएम आवास से, जहां पर इस वक्त बीजेपी के विधायक जुटे हुए हैं पूरी रणनीति के साथ। आज सुबह बाबूलाल मरांडी के घर पर एक बैठक हुई थी,
14: सिपाही की नियुक्ति हो, पीडीसी के फ्यूचर की नियुक्ति हो, चाहे सीजीएल की नियुक्ति हो, सब सीबीआई से जांच करानी चाहिए, चाहे 11, 12, 13 की जेपीएससी और 14 की जेपीएससी के भी मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए।
1: बाबूलाल मरांडी को जो कह रहे हैं कि जो मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाना चाहिए, जांच हो, रद्द हो, जो भी करना है वो कीजिए, छात्रों की मांगों को मानिए। ये बीजेपी के जो विधायक जुटे हैं आज सीएम आवास के बाहर, उनकी आवाज है, और इस वक्त उनको बस में डाल दिया गया है और उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरफ छात्रों का दबाव, दूसरी तरफ सियासी दबाव जो विपक्षी पार्टियां हेमंत सोरेन सरकार पर बना रही हैं। तो आज अहम दिन झारखंड के लिए, क्योंकि रांची में आज सड़कों पर सिर्फ प्रदर्शन और घेराबंदी ही नजर आ रही है। तो एक तरफ छात्र जुटे हुए हैं जो 50 मीटर आगे जाके ही रोक दिए गए, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसी जगह से जहां पर प्रदर्शनकारियों को रोका गया है पहली बैरिकेडिंग से। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण जुड़े हुए हैं, आइए सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। शशि, हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें बीजेपी का समर्थन मिला है, लेकिन वो अपने आप को किसी भी सियासी पार्टी से बिल्कुल अलग थलग करना चाहते हैं, वो साफ करना चाहते हैं कि ये सिर्फ छात्र हैं, लेकिन ऐसा मौका बीजेपी भी जाहिर तौर पर नहीं छोड़ना चाहती है, तो वो भी अपनी समानांतर तरीके से रणनीति कर रही है आगे।
2: देखिए राजनेता राजनीति करेंगे, पॉलिटिकल पार्टियां अपने मिजाज से सारी चीजें करती हैं, लेकिन इन छात्रों को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने बहुत दो टूक तरीके से कहा है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ न हैं, न किसी के विरोध में हैं, हमारी मांग सरकार से है, हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने, जो CBI जांच है वो हो, जो परीक्षा हो चुकी है, वैकेंसी हो चुकी है, उस वैकेंसी को रद्द किया जाए, उस बहाली को रद्द किया जाए। तो छात्रों का जो डिमांड है वो वही है जो बना हुआ है। कई छात्र जो 11 छात्रों ने अनशन शुरू किया था उनका अभी भी जो स्टेडियम है वहां पर धरना प्रदर्शन जारी है। यहां पुलिस ये बात करने की कोशिश कर रही है कि शायद एक बार फिर कोई वार्ता हो जाए, शायद एक बार फिर से कोई ऐसा मदद जो बातचीत है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए, जैसे कल बातचीत हुई थी 6 घंटे तक सरकार के साथ, शायद वो चीजें फिर एक बार एग्जीक्यूट हो पाए। लेकिन हाँ, यहाँ सरकार, कल हमने देखा था 3 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, और देखिए एक हलचल बढ़ी है। यहाँ पे छात्र जो हैं वो प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से जो दूसरे वॉलंटियर्स हैं जो छात्रों के ग्रुप में, वो शांत कराते हैं जब कभी धैर्य टूटता है, जब ये लगता है सरकार उनकी बात को अनसुना कर रही है, तो उसी में से उसी छात्रों के जत्थे से 10-12 छात्र बाहर आते हैं और वो शांत कराते हैं कि कोई प्रदर्शन ना हो, किसी तरह का कोई इस तरह का एग्रेशन ना हो यहाँ पे। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा कंट्रोल भी है। छात्रों को कंट्रोल करना आसान नहीं होता, ये हम सभी जानते हैं, हमने कई आंदोलनों को देखा है। लेकिन हाँ, ये देखिए दूसरी तरफ से छात्र बढ़े हैं, छात्रों ने एक जंप किया है। पहले जो पहला बैरिकेड्स है उसको आगे बढ़ते हुए छात्र आगे बढ़ गए हैं, और अब दूसरे किनारे से छात्रों ने पहले बैरिकेड से आगे बढ़ते हुए अब आगे की तरफ कूच कर दिया है। तो ये अपने आप में सबसे बड़ा अपडेट है इस वक्त का कि छात्र जो है वो पहले बैरिकेड से आगे निकल गए हैं। आगे और भी बहुत सारे हर्डल होंगे, लेकिन कैसे ये छात्र उससे निकल पाते हैं ये देखना होगा। अंजलि
1: जी बिल्कुल, तो पहले बैरिकेड को लांग कर उसे फतेह करते हुए कुछ छात्र आगे आ गए हैं, आपको बता दें कि। लेकिन एक बार फिर से शशि, लगता है कि वहां पर सुरक्षा कर्मी पहुंच गए, उन्होंने जो भी ब्रीच था उसे रोकने की कार्रवाई शुरू कर दी है कि छात्र जो आगे आ गए उससे ज्यादा आगे ना आ पाए।
2: देखिए बैरिकेड्स नहीं टूटा है, बगल का एक रास्ता था जो बैरिकेड्स के बगल से छात्र निकल सकते थे, वहां से निकल के छात्र आगे की तरफ थोड़े छात्र आए हैं। लेकिन मैं कंट्रोल की जो बात कर रहा था अंजलि, छात्रों का ही जो ग्रुप है उसमें से जो वॉलंटियर्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें आगे नहीं जाना है, अभी यहाँ वेट करना है, चूंकि हमारे दूसरे साथी पीछे की तरफ है। और आप देखिए पहला बैरिकेड हटा दिया गया है, अब हम आगे की तरफ देख सकते हैं छात्रों का मार्च। और यही बातचीत हो रही थी, इसी पर बात हो रही थी कि आप मार्च को तो शुरुआत के साथ ही रोक नहीं सकते हैं, और इसीलिए पहले बैरिकेड्स पे तकरीबन 15-20 मिनट का एक स्टे हुआ, और वहां से अब आगे की तरफ छात्रों का मार्च बढ़ता हुआ अंजलि आगे बढ़ रहा है। विधानसभा मार्च अब आगे की तरफ निकल पड़ा है। जी
1: जी, तो तस्वीरें इस वक्त सीधी आ रही हैं, शशि भूषण भी हमें जानकारी दे रहे हैं। तो पहला जो बैरिकेड था वो हटा दिया गया है और अब मार्च आगे बढ़ने लगा है, तो 50 मीटर से आगे बढ़ा ये मार्च। शशि, क्या ये बैरिकेडिंग स्वतः हटाई है सुरक्षा कर्मियों ने? लंबी वार्ता चली, हमने देखा लगभग 15 मिनट 20 मिनट से ज्यादा चर्चा चली है, तो क्या खुद बैरिकेडिंग खींची गई वहां पर सुरक्षा
2: नहीं हुआ?
1: जी शशि,
2: अंजलि कोई संघर्ष नहीं हुआ, बिल्कुल आराम तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से छात्रों ने वहां बातचीत की, डायलॉग किया, छात्रों का मार्च आगे।
1: बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी हमें ये ताजा जानकारी दे रहे हैं इस वक्त, बड़ी खबर ये है कि मार्च आगे बढ़ने लगा है। लंबी चर्चा हुई वहां पर प्रदर्शनकारियों की, जो वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी थे बैरिकेडिंग पे, और उसके बाद बैरिकेडिंग को हटा करके उन्हें आगे जाने दिया गया है और मार्च की शुरुआत हो गई है। तो महज 50 मीटर पर पहली बैरिकेडिंग लगी थी, पुरानी विधानसभा से ये मार्च शुरू हुआ था और 50 मीटर के अंदर उसे रोक दिया गया था, लेकिन अब उस बैरिकेडिंग को हटा करके मार्च को आगे जाने दिया जा रहा है। लंबी चर्चा के बाद तो अब छात्र बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ चुके हैं। तो ये अहम हो जाता है, जैसे हमारे सहयोगी शशि भूषण भी लगातार हमें बता रहे थे कि छात्रों ने किसी तरह का की हिंसा नहीं दिखाई, उग्र नहीं हुए, गुस्सा नहीं फूटा और जिस तरीके से शांति से उन्होंने बात की उसके बाद वो आगे बढ़ गए। शशि भूषण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शशि, ये मार्च अब कहाँ जाएगा और किन किन पड़ावों पे उनको इस तरीके से बैरिकेडिंग मिल सकती है?
2: क्या बताऊं? देखिए, कुल हमने जो देखा है पूरा 4 किलोमीटर का स्ट्रेच है अंजलि, इसमें 5 जगह बड़े बैरिकेड्स हैं और आगे अभी और बहुत ज्यादा पुलिस बल हैं। यहाँ तो पुलिस बल था ही नहीं और ये देखिए, ये पुलिस के लोग क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए।
15: ऐसे मत कीजिए, आप इंग्रेस है, आराम से रहिए, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
2: पीसीआर की वैन आई है, पीसीआर वैन कह रही है कि कंट्रोल तरीके से स्टूडेंट चले, स्टूडेंट अभी धैर्य रखे, क्योंकि प्रशासन का मकसद ये है अंजलि कि जो छात्रों
9: का बेसिकली अभी ना चल रही है,
16: हम नहीं कर रहे हैं, खुद के देखिए, एकदम ये वॉलंटियर है।
9: तो क्या संदेश दे रहे हैं उनको
16: वॉलंटियर? ये है कि पहले इन लोग का पार्टी जो है पूरा एकत्रित नहीं हुआ है, उसी एकत्रित करने के लिए
9: डिसिप्लिन दैट दीज वॉलंटियर्स आर मेंटेनिंग।
1: सुन रहे थे, वॉलंटियर खुद बैठे हैं पीसीआर के अंदर और वहां पर ये अनाउंसमेंट की जा रही है कि आप धैर्य रखिए।
2: बिल्कुल, देखिए वॉलंटियर है, वॉलंटियर है, देखिए ये क्या बोल।
17: हेलो, देखिए आप सभी छात्रों से निरोध करते हैं कि अभी हमारे कोर कमेटी के मेंबर बहुत से लोग नहीं आए हैं, तो किसका आप लोग साथ में प्रोटेस्ट में चलेंगे, तो कृपया उन्हें आने का वेट करो।
2: देखिए ये अंजलि, अंजलि मैं सुनने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वॉलंटियर क्या कर रहे हैं। वॉलंटियर्स ये कह रहे हैं कि हमारे छात्रों के प्रोटेस्ट में, मतलब जो विधानसभा घेराव हमको करना है उसमें बहुत सारे हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो की मेंबर्स हैं, वो अभी नहीं आए हैं, तो आप थोड़ा धीरे चलिए, ऐसा ना हो कि छात्र, चूंकि सबसे खास बात यह है अंजलि

0: वोटिंग छात्र केवल वही हैं। झारखंड के कोने कोने से, हर जिले से, सिमडेगा से, खूंटी से, जामताड़ा से, गुमला से, लोहरदगा से, कोडरमा से, हजारीबाग से, तमाम जगहों से हमने देखा है जो छात्र हैं वो आगे आए हैं यहाँ पर। और उन छात्रों को नियंत्रित रखना जो वॉलंटियर कमेटी का एक नीति है, पॉलिसी है उसके तौर पे, इसी लिहाज से उसमें वो ब्रीफिंग कर रहे हैं, पुलिस की पीसीआर वैन से कर रहे हैं, ताकि कहीं कोई ऐसी स्थिति अफरा तफरी की ना मचे जो इस आंदोलन से जुड़े लोग नहीं चाहते हैं। अंजलि,
1: बिल्कुल, और कोशिश यही की जा रही है, हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि छात्र सब एकजुट होकर आगे बढ़े। दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरीके से सीएम आवास पर भी घेराव किया गया, पर वो सियासी तैयारी थी बीजेपी और उनकी कार्रवाई थी। लेकिन शशि, कुछ अहम मांगे हैं जिन्हें बार बार छात्र सामने रखना चाह रहे हैं सरकार के। तो जब कल 6 घंटे से भी ज्यादा की बैठक हुई, बातचीत हुई, तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर अभी भी छात्र चाह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कार्रवाई हो, और जिसकी वजह से आज ये मार्च हो रहा है?
0: देखिए, दो प्रमुख मांगे अभी हैं। एक जो जेपीएससी कमेटी है, आयोग है, वो तो भंग हो चुका है और उसके 3 सदस्यों ने कल इस्तीफा दिया था। ईडी को जांच सौंप दी गई है, सरकार के कल 3 मंत्रियों ने ब्रीफिंग की थी लंबे चौड़े तरीके से उसके बारे में कि सरकार क्या चाहती है। सीबीआई जांच को लेकर सवाल किया गया था उन मंत्रियों से, उन्होंने कहा सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड झारखंड के मामले में बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए हम नहीं चाहते कि सीबीआई जांच करे, हमने ईडी के लिए जांच के लिए अनुशंसा की है। कुछ ऐसे लोग जो इस पूरी बहाली में मास्टरमाइंड रहे, उनके परिवार के कई लोगों की नौकरियां लगी जेपीएससी के थ्रू, उस पूरी बहाली प्रक्रिया को ही निरस्त करने, चूंकि ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो सरकार के लिए असल पेच वही है कि जेएससी जो है उसमें कैसे उस वैकेंसी को, उस नियुक्ति को निरस्त किया जाए। क्योंकि अगर ऐसा सरकार करती है तो शायद सरकार ये सोचती है कि वैसी परिस्थिति में जो सेवा में आ चुके हैं वो कोर्ट का यानी न्यायालय का रुख कर सकते हैं, तो सरकार की और फजीहत हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी फजीहत तो वो हो रही है ना अंजलि, जो 17 दिनों के इस आंदोलन में हमने देखा है, 16 दिनों का जो धरना प्रदर्शन और आज जो 17वां दिन है विधानसभा मार्च, छात्र शांत हैं, बहुत अहिंसात्मक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात दर्ज करा रहे हैं, इसलिए उनको समर्थन भी उसी तरीके से मिल रहा है। और आप देखिए, हमने थोड़ी देर पहले जब बात की तो छात्रों ने कहा हमने किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, किसी पॉलिटिकल विंग को झंडा लाने से मना किया है उनके लोगों से, हो सकता है वो लोग इसमें हो, लेकिन हमारा मकसद ये है कि जो तिरंगा है उसके बैनर तले ही, उसके तले ही, तिरंगे के तले ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, जो हम शांतिपूर्ण तरीके से डिमांड कर रहे हैं, आज विधानसभा मार्च करने निकले हैं, उन तमाम बातों को सरकार सुने, उस पर फैसला ले। जी
1: बिल्कुल, और अहम हो जाता है कि इस सबके बीच जो छात्र हैं वो बेहद संयम के साथ काम कर रहे हैं, किसी तरह का आक्रोश, किसी तरह का गुस्सा नहीं देखने को मिला है, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त लेकर आ रहे हैं, और ये उस वक्त की तस्वीर है जिस वक्त वो बैरिकेड, जो पहला बैरिकेड 50 मीटर पर लगा था, उसे तोड़ते हुए छात्र आगे बढ़े हैं।
0: बिल्कुल, और देखिए, जो तमाम वरीय पुलिस अधिकारी हैं वो खुद लीड कर रहे हैं, हमने बताया कई डीएसपी, कई रांची जिला प्रशासन के लोग जो हैं वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं, बड़े पदाधिकारी मॉनिटर कर रहे हैं। और अब देखिए, धीरे धीरे मार्च एक बार फिर आगे की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि उस मार्च को पहुंचना है विधानसभा तक, छात्रों का ये संकल्प है। लेकिन तमाम छात्र हैं वो एक बार फिर आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं, और अब आगे की तरफ ये छात्र बढ़ रहे हैं। यहाँ से एक बार फिर जो मार्च है वो आगे की तरफ बढ़ गया है, अभी बमुश्किल हम कह सकते हैं कि 100 से 150-200 मीटर से ज्यादा ये मार्च आगे नहीं बढ़ा है, यानी अभी लंबा सफर, चूंकि 4 किलोमीटर का सफर है अंजलि, तो 4 किलोमीटर का सफर तय करना है इस मार्च को, आगे और बड़े हर्डल्स हैं। यहाँ देखिए एक बार फिर से यहाँ पर जो सुरक्षा बल हैं, यहाँ बैरिकेड्स नहीं है, लेकिन कोशिश ये हो रही है कि इन स्टूडेंट्स को यहाँ फिर से रोका जाए, फिर से पुलिस बल यहाँ पर तैनात हैं, यहाँ कोई बैरिकेडिंग्स नहीं है, लेकिन एक बार फिर छात्रों को यहाँ रोका जाएगा। जो नीति है प्रशासन की वो ये है कि छात्रों को

0: बार फिर से कोशिश करके डायलॉग टेबल पे ले आया जाए, बातचीत के फोरम पे ले आया जाए, क्योंकि सरकार अपने तौर पे कल 6 घंटे वार्ता कर चुकी है। अब ये वार्ता कल विफल हुई तो आज ये मार्च है और अब आगे क्या होगा इसका सबको इंतजार है।
1: बिल्कुल, और ये एक ह्यूमन चेन वहां पर हमें सुरक्षा कर्मी बनाते हुए दिख रहे हैं ताकि वो छात्रों को आगे बढ़ने से रोक सके। लेकिन शशि, मार्च आपने भी बहुत कवर किए, विरोध प्रदर्शन
0: यहाँ पे। जी
1: जी जी जी बोलिए।
0: ये देखिए, इनके हाथ में गुलाब का फूल है और मैं इसलिए आपके पास आया। आप भी स्टूडेंट हैं?
2: जी मैं भी स्टूडेंट हूँ।
0: गुलाब का फूल लेके क्यों आए?
2: ये गुलाब का फूल मैं हमारे प्रिय, हमारे सबसे फेवरेट सीएम हेमंत सोरेन के लिए लाया हूँ, क्योंकि पिछले 16 दिनों से उनके कान में जू नहीं रेंग रहा, तो मुझे लगता है कि इस गुलाब फूल से उनका दिल पिघल जाए, पूरी कोर कमेटी का दिल पिघल जाए और हमारी मांगे पूरी की जाए।
0: जो गांधीवादी तरीका है उसी को।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये तरीका सबसे बेहतर तरीका है, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का एक प्रतीक भी है कि हम इतने शांतिपूर्ण हैं कि हम कांटों का जवाब फूल से दे सकते हैं।
0: कांटों का जवाब फूल से देंगे। ये स्टूडेंट हैं, छात्र, कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है आपका?
2: जी मैं दुमका झारखंड से आया हूँ, सल्थान परगरा क्षेत्र, जो कि जेएमएम का गढ़ है।
0: जेएमएम का गढ़ है।
2: जी बिल्कुल।
0: ये देखिए, ये बड़ी बात है, स्टूडेंट्स ये खुद कह रहे हैं कि हम उस जगह से आते हैं ना, फूल लेकर के आए हैं, आप कांटे बिछाइएगा हम फूल देंगे, और यही कमिटमेंट, मैं इसी कमिटमेंट की बार बार चर्चा कर रहा हूं, यही कमिटमेंट अपने आप में इस आंदोलन को थोड़ा अलग बनाता है, एक अलग पहचान देता है और देश भर में इसी वजह से इसकी चर्चा भी हो रही है। लेकिन एक बार फिर से यहां पर चुकी एजिटेशन, अभी पार्स थोड़ा दूर है, छात्र वहीं पे बैठ गए हैं, जो दूसरे छात्र हैं वो यहाँ पे हैं, मीडिया का जमावड़ा है और छात्रों का, देखिए ये भी एक छात्र है जो कुछ लेकर के आए हैं, और ये देखिए ये प्लेकार्ड हमने बहुत बार देखे। आप कहाँ से आए हैं?
3: जी मैं डुमरी विधानसभा से आया हूँ।
0: आप लोगों को क्या लगता है, सरकार बात मानेगी? आप लोग
3: एकदम मानेगा सर, कहा नहीं, मतलब केंद्र मान सकता है तो ये तो सरकार है, झारखंड सरकार है, इनको मानना चाहिए। आप बोलते हैं कि हम नौजवानों के साथ हैं, आप बोलते हैं कि झारखंड सरकार हमेशा नौजवानों के साथ चलेगा, तो भैया क्षेत्रीय यही मुद्दा लेकर आप बीजेपी को हटाए थे और फिर वही काम आप भी कर रहे हैं सर, बताइए। हेमंत सोरेन खुद बाप, उनका बाप जो है शिबू सोरेन जी मर गए हैं, लेकिन वो झारखंड आंदोलन, झारखंड को अलग करने में बहुत
0: आंदोलन से झारखंड उन्होंने
3: लड़ाई किया था और उनका बेटा बेचने का काम।
0: ये भी एक मैसेज है हेमंत सोरेन के लिए। और थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं, अपने सहयोगी नदीम से कहेंगे, दिखाएंगे कि अमूमन हम जब कोई इस तरह का प्रदर्शन देखते हैं, मार्च देखते हैं, तो उसमें ऐसा दिखता है कि पुलिस और छात्र या जो आंदोलनकारी हैं वो आमने सामने हैं और वो, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ दूरी है, बीच में पूरा स्पेस है, छात्र यहाँ बैठे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, इनको मालूम है बड़ा फैसला लेना होगा सरकार को और इसके लिए ये जरूरी है कि ये वक्त लें। और देखिए छात्र यहाँ सड़क पे बैठ गए हैं, छात्रों की तरफ से नारेबाजी हो रही है और छात्र लगातार अपने पुराने डिमांड को लेकर के यहाँ पे कैसे से, और सुबह हमारी बात हो रही थी इनसे,
4: छात्र बोला है
0: यहाँ आप लोग बैठ गए हैं, आगे भी जाना है, मतलब
4: आगे जाना, विधानसभा तक जाएंगे हम लोग, कितनों ब्रेक कटी, कितनों काटा लगा ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम लोग ऊर्जावान है, नौजवान है, हम लोग छात्र है, 26 वर्ष से हमारा हक मारा जा रहा है, इस बार हम लोग नहीं छोड़ेंगे सरकार।
0: मैंने आपको देखा, आप सुबह नजर आए थे, मुझसे बातचीत हुई थी, आप तो पूरा बैरिकेड्स देख के आए हैं कि सरकार क्या तैयारी करके,
4: चेकिंग करने गए थे, पेट्रोलिंग करने, क्या तैयारी है प्रशासन का, लेकिन हम देख लिए कोई तैयारी नहीं है, छात्रों ये लाखों के छात्र वैसा वैसा बर कटिंग हजारों भी रहेगा,
0: तो हजारीबाग से आए
4: जी, हजारीबाग से आए।
0: ये देखिए ये संजय महतो हैं, और सुबह जब मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था अंजलि, ये उस बैरिकेड्स वाली जगह पे थे, इन्होंने बताया हम जाएंगे विधानसभा तक, हमने शांतिपूर्ण आंदोलन किया है, हम आज भी शांतिपूर्ण आंदोलन में आगे बढ़ेंगे। और देखिए अभी ये बता रहे हैं संजय कि ये खुद पेट्रोलिंग करने गए थे, मुआयना करने गए थे कि आखिर किस तरह की तैयारी है।
4: हमारी मांग सबसे पहला है कि सीजीएल रद्द हो, पीजीटी रद्द हो और जेपीएससी जितना है सब में सीबीआई और सीआईडी जांच हो और ये 14वीं जेपीएससी और बैकलॉग तत्काल रद्द हो, यही हमारी मांग।
0: यहाँ देखिए एक स्टूडेंट है यहाँ पे और ये कुछ नारेबाजी कर रहे हैं और बड़ा सा बोर्ड इन्होंने लेकर के रखा हुआ है और एग्जाम जब तक रद्द नहीं होगा सीजीएल तब तक आप लोगों का जारी,
5: सरकार जब तक हम लोग को लिखित नहीं देती है और जब तक सीबीआई सीआईडी जांच नहीं करवाती है तब तक हम लोग रोड पे रहेंगे, सड़क पे रहेंगे और हम लोग को लिखित के साथ ही हम लोग तोड़ेंगे।
0: आज मार्च है लेकिन आप लोग तो सड़क पे बैठे।
6: हाँ क्या करें, हम लोग ऐसे ही गांधीवादी तरीके से हम लोग संविधानिक।
1: जी जी शशि, आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि इस वक्त हमारे साथ सत्यजीत भी जुड़ गए हैं। आइए सीधा उन्हीं का रुख करते हैं, वो भी रांची में ही मौजूद है। सत्यजीत, छात्र जो है वो साफ कह रहे हैं कि बैरिकेडिंग कितनी भी हो आज हम विधानसभा तक पहुंच के रहेंगे, तो क्या आज सरकार के ऊपर आपको लगता है इसका असर ज्यादा पड़ेगा क्योंकि सियासी प्रदर्शन भी हुआ है हेमंत सोरेन के घर के बाहर और छात्रों का ये प्रदर्शन तो आज लग रहा है लंबा चलेगा?
7: देखिए बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन हुआ था उसी को बीजेपी ने यहाँ झारखंड में उतारा है। सीएम आवास का घेरा हुआ, स्टूडेंट्स के मुद्दे पे वहाँ दिल्ली में भी हुआ था और यहाँ पे भी उसी तरह से जो है सीएम हाउस घेरा गया। और ये देखिए नारेबाजी लगातार हो रही है और यहाँ के लोकल लैंग्वेज में ये नारे लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, नहीं चलते? क्या
8: नहीं चलते मतलब अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी, मतलब नहीं चलेगी
9: मनमानी नहीं चलने देंगे।
7: पूरा बोलिए क्या बोल रहे थे।
9: देखिए आप जानते हैं हमारे संविधान में वेलफेयर के लिए सोशलिज्म को अपनाया गया, समाजवादी को अपनाया गया। अगर ये वेलफेयर नहीं कर रहे, पेपर लीक पे लीक कर रहे तो क्यों समाजवादी? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखे हुए आप।
7: अलग अलग तरह के जो है कटआउट भी लगे हुए हैं, इनको किंग पी नहीं है। अब है तिवारी 12 साल में 13 एग्जाम इन्होंने पास किया है। ये देखिए ये पूरा यहाँ पूरा ट्री बना हुआ है। अभय तिवारी के साला, अभय तिवारी के साल पहले, अभय तिवारी के साला जितना का बीएसओ में हुआ, इसके अलावा उपेंद्र मिश्रा
10: जितना
7: जो रैंक इसी का था, इन्हीं का ये तमाम लोग।
11: आप सोचिए एक फैमिली से 10 लोग का सिलेक्शन कैसे हो सकता है? इन्होंने धांधली की है सर। आज बोला है 2 करोड़ जेपीएससी अध्यक्ष को दिया गया है, जब अध्यक्ष ही बिका हुआ है तो
7: पीएल।
11: अभय तिवारी ने कहा है कि 2 करोड़ जेपीएससी अध्यक्ष को दिया गया है। एग्जाम रद्द होना चाहिए सर, जेपीएससी जेएससी दोनों।
7: इस तरह की तस्वीरें हैं और जोश इनका हाई है। देखिए किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं, वी वांट जस्टिस के नारे लगाए जा रहे हैं। और यहाँ देखिए हाथों में तिरंगे हैं, अभय तिवारी का पोस्टर भी है। सीजीएल रद्द करो, सीबीआई जांच कराओ। सीबीआई जांच को लेकर जो है लगातार स्टूडेंट्स जो है डटे हुए हैं, यही वजह है कि वार्ता जो है वो विफल हो गई। तो वहां पे ही आके एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे रुक गया मामला। इनका ये भी कहना है कि अभय तिवारी जिस जिस इम्तिहान में शामिल हुए थे और जो जो इम्तिहान TDPL जो एजेंसी ब्लैकलिस्टेड एजेंसी थी उसने करवाया है उसको रद्द करना होगा। और प्रोटेस्ट जो है पुराना विधानसभा से निकल चुका है, यहाँ से ठीक आगे जो है जैसे ही दाहिने मुड़ेंगे उसके बाद जो है नए विधानसभा का जो है वहाँ से वहाँ विसिनिटी शुरू हो जाएगा, वहीं से वही सीधा रास्ता जो है विधानसभा चला जाता है। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे विधानसभा और उस बीच में कई बैरिकेडिंग किए गए हैं। जी
1: जाहिर तौर पर वहां पर छात्र जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से लगातार ये मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि बैरिकेडिंग अब इनको कहां कहां आगे मिल सकती है क्योंकि कहा यह जा रहा था कि शायद 5 जगह ये रुकावट इनके सामने आएगी और ये विधानसभा का मार्च रोका जाएगा।
7: बिल्कुल, देखिए 5 जगह पे बैरिकेडिंग कटीले तारों वाला लगाया गया है। ऐसे बैरिकेडिंग जो 12 किलोमीटर के स्ट्रेच में बहुत जगह लगाए गए हैं लेकिन अब जब यहां से राइट हैंड की तरफ मुड़ेंगे उसके बाद जगन्नाथपुर मंदिर जो है वहां पे बड़ा बैरिकेडिंग है, उसके बाद हाईकोर्ट के पास है, हाईकोर्ट से एक और रास्ता JSCA झारखंड स्टेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की तरफ से जो आ रहा है वहां पे बैरिकेडिंग है। तो हर जगह कटीले तारों वाला बैरिकेडिंग लगाया गया है ताकि विधानसभा तक नहीं पहुंच सके। कल रांची जिला प्रशासन की तरफ से अपील भी की गई थी जिसको कहा जा सकता है कि सॉफ्ट तरीके से एक तरह से चेतावनी दी गई थी कि अगर आप वहां जाते हैं तो 750 विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, 750 मीटर के दायरे में प्रोहिबिटरी ऑर्डर है, BNS की 163 और CRPC का 144 धारा लागू है, तो वहां जाएंगे तो कानूनन अपराध होगा, वहां विरोध प्रदर्शन आप नहीं कर सकते हैं। और किसी तरह से अगर आप बुक किए जाते हैं तो बाद में सरकारी नौकरी करें गैर सरकारी नौकरी करें उसमें आपको पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। ये कहा गया था प्रशासन के तरफ से, तो जाहिर तौर पे कई जगह इनको रोकने की कोशिशें होंगी, चेतावनी भी दी है। अभी विधानसभा के अंदर सुदीव सोनू जो पैनल ऑफ मिनिस्टर्स में थे, चार मंत्रियों में से एक थे, उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स को भी बातें माननी चाहिए थी, लगभग 98% मांगे उनकी मानी गई थी, और अब गुमराह करने की कोशिश की जा रही है स्टूडेंट्स को बीजेपी के द्वारा, उनका आरोप बीजेपी के ऊपर था। जी
10: तो छात्रों का महासंग्राम जारी है। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज एक और 11, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम।
12: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडिया। लेकिन इस समय जो तस्वीरें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। एक प्रदर्शन जंतर मंतर पर हुआ तो एक प्रदर्शन झारखंड में चल रहा है। मांगे बहुत अलग नहीं है, स्टूडेंट्स की ही मांगे हैं, उनका अपना आक्रोश है, उनका अपना गुस्सा है। सरकार ने कई राउंड की बातचीत भी की है लेकिन बातचीत बेनतीजा है, क्योंकि स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच के जो है सीबीआई जांच हो, वो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, जैसी मांगे जंतर मंतर पर हो रही थी। और यहां पर पहले भी उन्होंने कहा था कि मांगे मान ली जाएंगी तो हम प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन वो मार्च कर रहे हैं, यानी कि सरकार के साथ बातचीत नहीं हुई, मांग सरकार ने अब तक नहीं मानी। हालांकि सरकार कह रही है कि हमने 98% उनकी मांगे मान ली है, लेकिन कुछ मामलों में पेच फंसा हुआ। और इस समय की ये तस्वीरें जहां वो विधानसभा मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और संख्या आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में वो दिखाई दे रहे हैं।
10: और आगे बढ़े उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर,
13: छात्रों से बातचीत करने की।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: मिस एयर क्रू पुलिसकर्मी कटीले तार और वाटर कैनन।
1: खेलें भी तब्दील, रांची में सियासी पारा गर्म। सीएम सोरेन के घर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जबरदस्त प्रदर्शन, बसों में भर कर ले गई पुलिस। परीक्षा धांधली में ईडी ने शुरू की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच।
0: संसद में आज भी घनघोर संग्राम के आसार, सदन में मौजूद रह सकते हैं अमित शाह, आज पेश हो सकते हैं चार बिल। विपक्ष ने कसी कमर, कांग्रेस और एसपी ने जारी की 3 दिन की व्हिप।
1: परिसीमन और एफसीआरए पर तनातनी के बीच महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासत में हलचल। पीएम मोदी से आज मिल रहे हैं शरद पवार गुट के सभी 8 सांसद, सुप्रिया सुले ने बताया आधिकारिक बैठक।
0: कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक वीरों से मिले पीएम मोदी, खिलाड़ियों से सुनी उनके संघर्ष और सफलता की कहानियां। कहा जो खेलेगा वही खिलेगा।

0: झारखंड के रांची में पीएससी एसएससी में धांधली के खिलाफ छात्रों के विधानसभा घेराव शुरू हो चुका है। छात्र बैरिकेडिंग हटाकर आगे शांतिपूर्ण तरीके से बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन सख्त है, कड़े इंतजाम किए गए हैं। शहर में जगह जगह कटीले तार भी लगाए गए हैं और बिनेस की धारा 163 लागू कर दी गई है। इस बीच भाजपा विधायक भी छात्रों के समर्थन में सीएम हाउस के सामने धरने पर बैठे, जिन्हें बाद में पुलिस ने वहां से हटा दिया।
1: तो इस समय की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये झारखंड की तस्वीरें। झारखंड की सड़कों पर इस समय छात्र हैं, उनके हाथों में तिरंगा है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे पिछले 17 दिनों से इनका प्रोटेस्ट चल रहा है। किसी तरह की कोई अराजकता नहीं, किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई, किसी तरह की कोई अपशब्द नहीं, किसी तरह की कोई नकारात्मक टिप्पणियां नहीं। अगर मांगे थी तो वही मांगे थी जो वो पहले दिन से उठा रहे हैं, और वो विषय पर केंद्रित हैं, अपने एजुकेशन सिस्टम से, अपने परीक्षाओं के संबंध में उनके प्रश्न हैं जो लगातार वो पूछ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। और अब ये सियासत इस पर गरमाई दिख रही है, क्योंकि बीजेपी भी इस मौके को देख रही है और इस मौके पर वो प्रदेश की झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं कि जंतर मंतर पर आप छात्र हितैषी हो गए, और यहां पर नहीं, आप देवेंद्र महतो, जो कि छात्रों के गुट में से प्रमुख गुटों में से एक है जो लीड कर रहे हैं, देवेंद्र महतो जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, ये आप तस्वीरें देखेंगे कि वो खुद भी जा रहे हैं, उनको एक वाहन में ले जाया जा रहा है क्योंकि वो लगातार अनशन कर रहे हैं। हालांकि पानी बाद में उन्होंने सोनम वांगचुक से बातचीत करने के बाद शुरू कर दिया नमक पानी, लेकिन ये उनके प्रदर्शन की तस्वीरें कि छात्रों के साथ वो भी वाहन में आगे जा रहे हैं।
0: शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, छात्रों को आगे मार्च करने से रोका जा रहा है, लेकिन क्या डिटेंशन की भी तैयारी है, क्योंकि विधानसभा के इर्द-गिर्द तो धारा 163 लागू है, अगर वहां तक पहुंचते हैं तो फिर क्या एक्शन लिया जाएगा?
2: नेहा, देखिए एक बात तो तय है ना कि छात्रों का प्रदर्शन जो निकला है विधानसभा घेराव करने मार्च, उसको विधानसभा तक प्रशासन या सरकार खुद नहीं चाहेगी कि वो वहां तक पहुंचे, इसीलिए बड़े स्तर पर तैयारी की गई है उसको रोकने के लिए। जगह जगह नाकेबंदी है, किलेबंदी है, जो भी आप शब्द इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन आपको दिखाता हूं यहां ऐसा नहीं है कि यहां पर पुलिस ने रोका है छात्रों को, छात्र खुद रुके हैं और एक कतार पुलिस वालों की है बीच में, उसके दूसरी तरफ छात्रों का पूरा जत्था है जो मार्च करने निकला है, घेराव करने निकला है। और यहां देखिए जो हमारे कैमरे में नजर आ रहे हैं ना, ये वॉलंटियर्स हैं जेपीएससी जेएसएससी के वॉलंटियर्स हैं, और ये खड़े हैं यहां पर कतार बना करके, और इनका मकसद क्या है थोड़ा इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने बड़ी अच्छी एक कतार यहां पे बनाकर रखी है, क्या मकसद है इसका?
3: हमारे यहां 500 वॉलंटियर हमने गठित किया है, बकायदा सबके टी शर्ट मिले हैं, उन्हें पहचानना है कोई सामाजिक तत्व हमारे यहां पर ना पहुंचे, और अगर वो पहुंचे तो उन्हें पकड़कर पुलिस को सौंपना है ताकि हमारे आंदोलन को खराब ना किया जा सके।
2: आशंका है कि ऐसा हो सकता है?
3: बकायदा आ चुके हैं सर।
2: अच्छा, आ चुके हैं?
3: आ चुके हैं सर।
2: आप लोगों के पास जानकारी है?
3: इसलिए सभी टीम को मैं अलर्ट कर दिया हूं।
2: अच्छा,
3: सभी अपने अपने काम पे लग गए हैं सर पहचानने का,
2: इसलिए आप लोगों ने एक कतार यहां बना ली जो मार्च आगे की तरफ बढ़ेगा उसके लिए, और एक कतार फिर बीच में आपके वॉलंटियर्स की है,
3: बकायदा अंदर में वॉलंटियर हमारे घुसे हुए सर।
2: ये बहुत महत्वपूर्ण है नेहा, जो हम बता रहे हैं, ये देखिए वॉलंटियर्स हैं, इनके ये टी शर्ट इन्होंने जो पहना है ना, उसके पीछे बजाता एक मार्क है, एक आइडेंटिटी है कि ये इस आंदोलन से जुड़े हुए वॉलंटियर हैं, जो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच है उसका, और इनको आशंका है कि आंदोलन को बदनाम किया जा सकता है। 16 दिनों तक जो शांतिपूर्ण आंदोलन चला, 17वें दिन में कहीं कोई उसमें ग्लीच न हो, कहीं कोई ऐसी अप्रिय स्थिति न हो, उससे निपटने के लिए। और देखिए ये दूसरी कतार, एक वॉलंटियर्स के कतार से मैं निकल करके आया, उनसे बात की, यहाँ देखिए दूसरे वॉलंटियर्स की कतार है, और बहुत कंट्रोल्ड वे में आप लोग चाहते हैं कि मार्च आगे
4: पीसफुली चाहते हैं कि जो भी चीजें हम लोग जो भी मार्च करें वो पीसफुल तरीके से हो, कोई भी थोड़ा सा भी अगर कुछ गलत करने की कोशिश है हम लोग सावधान करेंगे उसको कि नहीं कुछ भी गलत।
2: मॉनिटरिंग आप लोग खुद?
4: बिल्कुल बिल्कुल,
2: प्रशासन से ज्यादा मॉनिटरिंग जो है ना वो वॉलंटियर्स कर रहे हैं आप लोग?
5: हम लोग चाहते हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट हो, अभी लोग बहुत जोश है तो एग्रेसिव मोड पे, तो हम लोग चाहते पीसफुल प्रोटेस्ट हो, बस इसी के लिए लगे।
2: अभी कुछ बोलना?
6: देखिए हम लोग जेएनजी है, हमारे में एनर्जी जाता है, तो हम चाहते हैं जो हम पीसफुल तरीके से रहे, ये एग्रेसिव ना होने दे, नॉन वायलेंस के तरीके से। गांधी
2: जो एक पहचान मिली है झारखंड को इस पूरे आंदोलन में, शांतिपूर्ण पहचान, वो बना रहे। और देखिए ये तीसरी कतार, ये बहुत दिलचस्प है, मैंने किसी आंदोलन में बहुत सारे छात्रों का प्रदर्शन हमने बिहार में कवर किया है, बाहर भी देखा है, हर जगह देखिए ये वॉलंटियर्स खड़े हो जाते हैं बजाबता कंट्रोल्ड वे में, कहीं कोई असामाजिक तत्व ना आए, कहीं कोई आंदोलन
1: प्रशंसनीय कार्य, बहुत ही सुलझे हुए समझदार पढ़े लिखे जिनको एक्चुअल में कहा जाता है वो दिखाई दे रहा है कि उनको भी ये आशंका है कि खराब कर सकते हैं, तो इसलिए इन्होंने अपनी तैयारियां पहले ही कर ली। ये बड़ी कमाल की बात है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यजीत बेले। सत्यजीत, हमने देखा कि स्टूडेंट के अलग अलग विंग्स आ गए और 7 तारीख को ही डपली बजाकर आयसा भी पहुंच गया था, तो आज जो ये मार्च निकल रहा है क्योंकि हमने देखा कि 4 अलग अलग विंग बन गए, सभी एक साथ हैं या देवेंद्र महतो गुट ही है जो इस समय मार्च कर रहा है? सत्यजीत, आवाज मिल रही है आपको? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है क्योंकि इस समय मार्च चल रहा है और उनके पास हम दोबारा चलेंगे, लेकिन हम साथ साथ में आपको लाइव इस समय तस्वीरें देंगे। सत्यजीत दिख रहे हैं हमें। सत्यजीत, छात्रों का कौन सा विंग है, कौन जो, क्योंकि 4 अलग अलग गुट है वहां पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कौन सा गुट कर रहा मार्च?
7: देखिए, अब ये आंदोलन जो है, मार्च जो है वो आगे बढ़ने लगा है नए विधानसभा के तरफ। यहाँ से ही अब जो है लगभग आधा किलोमीटर पहले से ये मार्च शुरू हो गया हुआ था, यहाँ वो रुके थे लेकिन अब आगे बढ़ रहे हैं। इनकी मांग जो है वो एकदम बिल्कुल क्लियर है कि अभय तिवारी जिन जिन परीक्षाओं में शामिल थे और जहाँ जहाँ उन्होंने सफलता पाई है वो एग्जाम रद्द होने चाहिए। TTPL जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी थी उनके द्वारा जो इम्तिहान आयोजित किए गए थे वो कैंसिल होना चाहिए। और ये देखिए हाथों में तिरंगा लेके कटआउट लेके ये लोग चल दिए हैं, देख रहे हैं। ये देखिए अब है तिवारी का पूरा ट्री इन्होंने लगाया हुआ है। यहाँ JSSC CGL को रद्द करने की मांग, इसी तरह से CGL रद्द करो या CBI जांच करो जिस मुद्दे पे जो है स्टूडेंट डटे हुए थे और बात नहीं बन पाई थी सरकार से बातचीत में। तो ये देखिए मार्च अब आगे बढ़ चुका है, पीछे देखिए लंबा जो है हुजूम है विद्यार्थियों का, विधानसभा तक पहुंचना है, कई जगह बैरिकेडिंग किया गया है लेकिन इसकी परवाह इनको नहीं है, आगे बढ़े जा रहे हैं विधानसभा के तरफ। इसके पहले बीजेपी के नेताओं ने भी CM हाउस का घेराव किया, जिस तरह से दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के सामने राहुल गांधी बैठे थे ठीक उसी तर्ज पे रांची में मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो है बीजेपी विधायकों ने धरना प्रदर्शन किया, घेराव करने की कोशिश की, बाद में उन्हें डिटेन किया गया है, बसों में जो है लेकर जाया जा रहा है। बीजेपी का लगातार समर्थन जो है स्टूडेंट आंदोलन के साथ था, ये नारेबाजी लगातार जो है हो रहा है, तिरंगे हाथ में इनके और अलग अलग नारे लिखे हुए पोस्टर जो है वो इनके हाथ में है। नए विधानसभा के तरफ जो है ये बढ़ चले हैं, हालांकि इसमें कई जो है ब्लॉकेड है, कई बैरियर्स बनाए गए हुए हैं, कटीले तारों के बैरियर भी जो है बनाए गए हैं और दूर तक आप देख सकते हैं दिखाया जा रहा है दूर तक जो है स्टूडेंट्स हैं। पुराना यहाँ विधानसभा था, वहाँ पे एक मैदान था, वहीं पे ये असेंबल हुए हैं, उसके बाद इनका मार्च जो है अब नए विधानसभा जो इनका प्रपोज्ड कार्यक्रम था उसके तहत शुरू हो चुका है। अब ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं जहां तक इन्हें जाने दिया जाए, हालांकि आसपास के क्षेत्र में 750 मीटर के दायरे में BNS की धारा 163, CRPC की 144 लगी हुई है। सॉफ्ट चेतावनी भी जिला प्रशासन के तरफ से दिया गया है कि स्टूडेंट जो हैं वहां पे जहां पे ये धाराएं लागू है, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लागू हैं, वहां पे कानून का पालन करें, विरोध प्रदर्शन करना वहां वर्जित है, लेकिन स्टूडेंट्स अपना मार्च कर रहे हैं। ये कहा गया है कि अगर बाद में किसी तरह का इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होता है और इन्हें नौकरियां मिलती है प्राइवेट सरकारी या गैर सरकारी, तो वहां पुलिस वेरिफिकेशन में इनके कैरेक्टर पे कोई उंगली ना उठे, इसलिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन ठीक है लेकिन वो उस दायरे में उन्हें प्रवेश नहीं करना चाहिए। प्रशासन ने चेतावनी दी थी और ये देखिए यहाँ लगातार जो है यहाँ पे तस्वीरें लेकर ये JSSC के सचिव हैं जिनका पोस्टर्स लेकर ये पहुंचे हैं।
8: सबसे बड़ा चोर है
9: ये, सबसे बड़ा चोर है सर, अभी JSSC का
8: सबसे बड़ा चोर है,
9: सबसे सारा CT भेज दिया, ये बोला CGL का जांच जो हुआ है वो माइक्रोस्कोपिक विधि से हुआ है, उसके बाद एक घर में 6 लोग CGL एग्जाम निकालता है,
10: कोई 100 लोग
9: के घर में, अब वही
8: अभय तिवारी के घर पे।
9: और इसका यहाँ का हेल्थ मिनिस्टर बोल रहा है सर कि एग्जाम फेयर हुआ है, बताइए
11: क्या बोल रहे हैं? बोले इतना फेमस हो गया यही लगवा के, बताइए ये खुद लगा, इसके साथ इसका पूरा फैमिली,
3: इसमें इसका फैमिली में से कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि नहीं लगा हुआ है, पूरा का पूरा करप्टेड वाला हिसाब से।
9: सबसे पहले सर, सबसे पहले सीबीआई जांच होना चाहिए और मनी लॉन्ड्रिंग।
0: शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां से मार्च की तस्वीरें दिखाई, क्योंकि लगातार छात्र बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि बेहद शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है।
2: बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से है, लेकिन पहली दफे एक जो बैरिकेड है ना उसको तोड़ करके अब छात्र आगे बढ़ गए हैं। और देखिए, ये प्रशासन को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, लेकिन प्रशासन पीछे छूट गया और अब जगन्नाथ टेम्पल वाली सड़क पे अब छात्र आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और बड़े संख्या में बड़ा हुजूम है छात्रों का जो अब आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। अब विधानसभा जाके रुकेंगे?
10: हाँ भाई, हाँ सर, आज विधानसभा ही जाके रुकेंगे, आज कहीं नहीं, सीधा विधानसभा में ही रुकेंगे और अपनी मांगी को पूरा करेंगे, अपना मांग को पूरा करेंगे। आज
8: तब तक हम लोग वहीं रहेंगे।
2: बताइए,
10: हमारा मांग को पूरा कर दे सरकार।
8: जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल का जो रद्द करना,
10: हम लोग का जो मांग है वो पूरी कर दे सरकार।
2: आपको दूर तक दिखाते हैं राजीव, नेहा, ये कहीं भी बीच में कोई बैरिकेड्स नहीं है। अब जगन्नाथ टेम्पल के पास जब पहुंचेंगे आप, तो वहां दो बड़े बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लेकिन लगभग 1 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वहां कोई प्रशासन अब नहीं है, छात्र ही छात्र हैं। क्योंकि सुबह इस क्षेत्र का मैंने मुआयना किया, इस सड़क का, तो मैं इस आधार पर बता रहा हूँ कि बीच में ये नहीं रुकने वाले हैं। छात्रों का जो पूरा मार्च है विधानसभा घेराव करने के लिए वो आगे बढ़ चुका है।
1: जी बिल्कुल, ये प्रदर्शन इस समय चल रहा है, आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं युवा। लेकिन शशि भूषण, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से इससे पहले हमने देखा कि बातचीत तो हुई, लेकिन आज कोई क्या बातचीत करने के लिए कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं आया, समझाने के लिए कोई नहीं आया कि भाई मार्च खत्म कर दो, हम फिर से बातचीत कर लेते हैं। क्या दिक्कत आ रही सरकार को उनकी 100% मांगों को पूरा मानने में?
2: देखिए, एक एक एक वॉलंटियर है हमारे साथ जो रांची से हैं और मांझी से ही, और ये वॉलंटियर हैं, और क्या नाम है आपका?
11: मेरा संतोष प्रजापति।
2: सरकार ने कल वार्ता की, आप लोगों की पूरी डिमांड हुई नहीं, अब आप लोग मार्च कर रहे हैं, तो अब लगता है केवल विधानसभा पहुंचने से सब कुछ मांगे पूरी हो जाएंगी या कोई फिर से बातचीत के फोरम पे आना होगा?
11: विधानसभा घेराव जो हम लोग आज किए हैं, इसके माध्यम से सरकार को संदेश देने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये सरकार जो है प्रदेश के युवाओं को के सपनों को बेची है, जो जो जेएसएससी और जेपीएससी के माध्यम से बाहरी प्रदेश के राजस्थान यूपी के लड़कों को नौकरी देने का काम करती है और यहाँ के युवाओं को ठगने का काम करती है। इसीलिए हम लोग आज विधानसभा घेराव करके और सरकार को यह संदेश,
2: ये थोड़ी स्ट्रेटजी हमको समझाइए। थोड़े दूर आप लोग चलते हैं, फिर रुक जाते हैं, सड़क पे बैठते हैं, सुस्त आते हैं, आज फिर आगे बढ़ते हैं।
11: ये पूरे देश में ऐसा मार्च हो रहा है, पूरा शांतिपूर्ण तरीके से होगा, कहीं भी आपको उपद्रवी नहीं दिखेगा। ये पूरा विधानसभा घेराव का जो आज कार्यक्रम रखा हुआ है, ये पूरा पूरी तरीके से एकदम शांतिपूर्ण, एकदम छात्रों का
2: लोग इसके लिए मुस्तैद हैं, ये मैंने
11: एकदम हमारे वॉलंटियर भी रेडी हैं और सारा कुछ एकदम न्याय जो होगा शांतिपूर्ण तरीके से आज न्याय मार्च होगा।
2: ये देखिए, हम सब साथ हैं, हम सब एक हैं, भगवान जी के साथ हैं और भगवान जीत भी, भगवान की क्या बोल रहे हैं आप?
12: भगवान भी साथ है और जीत भी निश्चित है, ये जीत भी आत्मविश्वास है।
2: चलिए, ये आत्मविश्वास है आज के युवा का, उस युवा का जो जिसके लिए रोजगार सबसे बड़ी चीज है, जो बार बार परीक्षाओं में शामिल होता है लेकिन कभी पेपर लीक की वजह से, कभी धांधली की वजह से, कभी दूसरे गड़बड़ियों की वजह से वो परीक्षाएं संदेह के घेरे में रहती हैं। और अब एक बार फिर से ये छात्र यहाँ बैठ गए हैं और यहाँ से थोड़ी देर बाद शायद निकलेंगे। नदीम से कहूंगा पीछे आए थोड़ा सा, देखिए यहाँ बजाता माइकिंग हो रही है,
13: शांति बना रखेंगे, प्लीज पीसफुल प्रोटेस्ट हम लोग को करना है, प्लीज भाई लोग वॉलंटियर्स लोग आगे आएंगे,
14: बैठाने बोलो अभी 15 मिनट
13: और कृपया करके आप लोग एक बार बैठ जाएंगे शांति बना के।
2: ये देखिए माइकिंग की जा रही है बजापता कि वॉलंटियर्स अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, जो छात्र हैं उनको मैसेज दे रहे हैं कि आप शांतिपूर्ण तरीके से ही मार्च करिए, जो हमारी पहचान है उसको बना करके रखिए। मैसेज केवल एक है, जेएससी सीजीएल वैकेंसी जो हुई,
1: थोड़ा कंपैरिजन भी करिए। हमने दिल्ली के जंतर मंतर पर देखा कि वो एक नेत्र, मतलब पहले तो लीडरशिप दिख रही थी लेकिन प्रोटेस्ट वाले दिन लीडरशिप गायब थी, लेकिन यहां क्या नेतृत्व दिख रहा है शुरुआत से ही?
2: देखिए देवेंद्र महतो जो है ना वो आमरण अनशन पे है, मतलब उन्होंने सिर्फ जल ग्रहण किया है, 17वां दिन है। तो वहां पर एक जो फोरम है उस फोरम पे अपना प्रोटेस्ट अपने तरीके से जो लीडर्स हैं वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो यहाँ आ पाए। आप समझ सकते हैं राजीव, जो व्यक्ति 16-17 दिनों से इस तरह से भूखा प्यासा हो उसकी स्थिति क्या हो सकती है। लेकिन हाँ, जो दूसरे छात्र हैं राज्य के कोने कोने से आए हैं, अलग अलग परीक्षाओं में गड़बड़ियों के सवाल को लेकर के आए हैं, अपनी आशंकाओं को लेकर के आए हैं।
0: बड़ी खबर आपको बता दे, झारखंड के मंत्री ने बीजेपी को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि छात्रों का ये प्रोटेस्ट, इसके साथ हम खड़े हुए हैं, छात्रों का हम साथ दे रहे हैं, इस तरह की बात सामने आ रही है। आज भी छात्रों का आंदोलन जारी है। झारखंड के मंत्री ने बीजेपी को धमकी दी है, उन्होंने कहा कि हम छात्रों के साथ।
1: तो ये बड़ी खबर आपको देते हैं। इरफान अंसारी, उन्होंने बयान दिया है कि हम छात्रों के साथ हैं, लेकिन छात्र कह रहे हैं कि हमारी मांगे तो आपने मानी ही नहीं है। अभी उनका ये भी बयान है कि बीजेपी पीछे से वार कर रही है।
2: और यहाँ देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस बल
14: की भाजपा जो है ये नाटक कर रही है। युवा हमारे हैं, बच्चे हमारे हैं, वार्ता हम लोग कर रहे हैं। कई ग्रुप सामने आ गए, आपने देखा, कल मैंने एक्शन लिया, सभी हॉस्टल में निर्देश दिया, सरकारी हो या निजी, कोई बच्चे अगर कोर्ट में आकर हमारे पास आते हैं उनको मुफ्त में इलाज कराए। सरकार गंभीर है, सरकार की मांग मानने को तैयार है, भाजपा कहाँ से आती है? जो यूथ है वो हमारे हैं। मुख्यमंत्री ने कल कहा कि हम आप ही के बीच के हैं, तो भाजपा को यही ठल रहा है कि युवा जो भाजपा से दूर है।
15: घेरने पहुँच गए आज,
14: घेरने गए, भाजपा का औकात है क्या घेरने का? ये बात आप लोग करते हैं, हिम्मत है क्या? झारखंड आदिवासियों का है, मूल वासियों का, भाजपा का नहीं है, किसी भाप की जागीर नहीं है। तमाशा मत करो, युवाओं का मत भड़काओ हमारे बच्चों को। मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ, आपने मेरा अच्छा ही देखा है, हमारा खड़ा रुख नहीं देखा है भाजपा, बहुत हो गया। मैं बता रहा हूँ सीएम साहब से, मैं कहूँ एक्शन लीजिए आप, मरवल कुछ है नहीं, दम है नहीं, और खाली टीवी मीडिया सोशल मीडिया आईटी सेल देखिए, आए दिन लताई फाड़नसारी को बेल बना दिया है।
15: कड़ा रुख कैसा होगा?
16: भाजपा बोल रही है कि डर गई है सरकार,
14: अगर है मत घर दिखाए घर।
15: छात्र भी
14: छात्र को आगे करके पीछे से बैकअप करके वार कर रहे हो।
0: छात्रों को क्या कहेंगे जो विधानसभा चुनाव में?
14: एक मिनट, छात्र है हमारे बच्चे, किसी के बहकाव में नहीं आइए, वार्ता हो रही है, हम लोग कई मांग।
0: शशि भूषण में सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, देखिए इरफान अंसारी झारखंड में मंत्री हैं, कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स की आड़ में पीछे से वार बीजेपी कर रही है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
2: देखिए राजनीति है, अपने अपने तौर पे बयान हो रहे हैं, चूंकि विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, लेकिन इन छात्रों ने तो साफ कहा है नेहा कि हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हम अपना आंदोलन बढ़ा रहे हैं, अपने तौर पे बढ़ा रहे हैं। और अब देखिए ये एक और बैरिकेड सामने, और अब उसको वहां रोका जाएगा, छात्रों के प्रदर्शन को। हम भी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, लगभग 1.5 किलोमीटर का सफर तय किया है इस मार्च ने, और प्रशासन की अपनी स्ट्रैटेजी है, शांतिपूर्ण तरीके से जहां तक जा सकता है मार्च उसको जाने दिया जाए, उसके बाद कहां कंट्रोल करने की नीति उन्होंने बनाई है ये देखना होगा। तो ये बहुत अलग तरह की तस्वीरें हैं रांची से, और चूंकि विधानसभा तो प्रतिबंधित क्षेत्र है, पुलिस अधिकारी भी देखिए खुद मुस्तैदी से मार्च के साथ चल रहे हैं। सर संयमित तरीके से अभी तक मार्च जा रहे हैं आगे।
17: अच्छा ठीक है,
2: लगता है कि छात्र जो हैं वो समझ रहे हैं कि शांतिपूर्ण ही होना चाहिए प्रोटेस्ट।
17: अच्छा विधिपूर्ण रहेगा।
2: आप लोग रोकेंगे कहाँ, कुछ तय किया आप लोगों ने? चलिए आगे देखते हैं कहाँ रोकेंगे। अब देखिए छात्रों ने, वॉलंटियर्स ने खुद रोका है, ये एक मैं बार बार कह रहा हूँ, जहाँ लगता है स्पीड गाड़ी में थोड़ी सी कम करनी चाहिए, जैसे ड्राइवर ब्रेक लगाता है उसी तरीके से छात्रों का वॉलंटियर्स ग्रुप जो है ना वो कंट्रोल करता है इस मार्च को। एक बार फिर स्पीड कम किया गया, लेकिन एक बात जो देख रहा हूँ नेहा, जो जैसे जैसे दूरी ज्यादा तय की है इस मार्च ने, जो उत्साह है वो भी ज्यादा है और ऐसा लग रहा है कि अब मार्च चार्जअप हो चुका है। जी
1: डिस्टेंस थोड़ा सा बताएं कितना दूर है, कितने लेयर के आगे और बैरिकेडिंग है, क्योंकि 100 ओवर की विधानसभा तक तो नहीं ही पहुंचने देंगे वो स्टूडेंट्स को। स्पीक टू द प्रोटेस्टर्स।
2: बिल्कुल देखिए लगभग 3 किलोमीटर से ज्यादा, 3 किलोमीटर मान लीजिए, 3 किलोमीटर का पूरा अभी स्टेज बचा है जिसमें 1 किलोमीटर तो वो जगह है और जहां से विधानसभा के लिए कट होता है। तो अब देखिए ये बड़ा बड़ा यहाँ पे बैरिकेड्स है, ये जगन्नाथ मंदिर जो रांची का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है वहां हम पहुंचे हैं और ये देखिए ये आगे से आगे से आगे से आगे से जगह आगे से जगह चलिए ना आगे से उस साइड चलते हैं। तो ये चूंकि इस बैरिकेड्स पे रोक दिया गया है तो हम भी आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे जाया जाए और आगे अब यहां से जो हडल्स हैं जो बैरिकेड्स हैं उसमें कटीले वायर लगाए गए हैं, थोड़ा हम अंदर का रूट ले रहे हैं चूंकि मुख्य सड़क को बंद किया गया है और
18: तीसरा बैरिकेड भी गिरा दिया है।
13: ये वाला प्रोटेस्ट कैसा लग रहा है?
18: थर्ड बैरिकेड इज ऑल्सो गॉन एंड आई सी द पुलिस ऑफिशियल आर लिटरली स्ट्रगलिंग, फ्यू ऑफ देम इवन ओवर पावर दैट नंबर देयर आई सी इन फैक्ट।
0: तो छात्रों का मार्च लगातार जारी है, लगभग 3 किलोमीटर का डिस्टेंस बताया जा रहा है जो अभी बाकी है विधानसभा तक का, लेकिन छात्र के ये अलग अलग गुट हैं जो इसमें प्रदर्शन में शामिल हुए, उनका कहना है कि किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट उन्हें हासिल नहीं है, वो अपने ही दम पर अपने बल पर ये मार्च कर रहे हैं।
1: और शशि भूषण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शशि भूषण, आंदोलन कैसा हो, अब तक जैसा दिख रहा है बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि शांतिपूर्ण तरीके से आपको अपनी बात रखनी चाहिए, आपको सरकार पर दबाव बनाने का पूरा अधिकार है, आप दबाव बनाइए, लेकिन सवाल यह कि क्या सरकार दबाव में आती दिख रही है? जैसा कि इरफान अंसारी का हमने बयान सुना उसमें तेवर काफी तल्ख है उनके।
2: देखिए तेवर तल्ख तेवर नरम दोनों सरकार का हिस्सा हो सकते हैं राजीव, क्योंकि सरकार को मालूम है कि बहुत दबाव में दिखेंगे तो भी काम नहीं चलने वाला है, तो एक स्थिति तो ये है, लेकिन जमीनी स्थिति जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है ना वो भी समझ रहे होंगे कि किसी भी तरह से ये प्रदर्शन ये आंदोलन खत्म हो और जो बैरिकेड्स जो है उसको रोका यहाँ गया है छात्रों को, उसके ठीक आगे हम निकले हैं इस वक्त और यहाँ से हम पीछे दिखाएंगे। देखिए छात्रों का भी मार्च ये देखिए तीसरा बैरिकेड्स भी टूट गया और अब छात्र आगे बढ़ गए हैं, मतलब ये कि बैरिकेड्स पे बैरिकेड्स टूटते जा रहे हैं और छात्र आगे बढ़ते जा रहे हैं। राजीव
1: बिल्कुल, तो छात्र लगातार आगे बढ़ रहे हैं और ये हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप संख्या देखिए, सड़क पर पैर रखने की जगह नहीं दिख रही है और जहां तक जो कैमरा आप एंगल देखिए जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अंतिम तक जहां तक आखिर तक नजर जा रहे हैं वहां तक सिर्फ छात्र ही छात्र दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शशि भूषण आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं कि क्या सभी गुटों में एकता दिख रही है? 1-7 तारीख को ही मार्च निकाल लेते जबकि ऐलान था 10 तारीख का, आज क्या वो सब इनके साथ दिख रहे हैं छात्रों के या फिर वो आज अलग ही है, उनका प्रोटेस्ट अलग ही चल रहा है अभी भी? मतलब आयशा के संबंध में मेरा सवाल है।
2: नहीं ये देखिए यहाँ आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है आशुतोष, माफ कीजिएगा राजीव, अब है क्या कि यहाँ झंडा किसी पॉलिटिकल पार्टी का है नहीं, किसी छात्र संगठन का नहीं है, छात्रों ने खुद कहा है कि तिरंगे के तले हम प्रोटेस्ट करेंगे और सिर्फ तिरंगा ही दिखता है। एक प्रोटेस्टर हैं जो अभी नारेबाजी कर रहे थे, तिरंगा ही क्यों?
19: तिरंगा हमारे देश की शान है, ये हम छात्रों को एक सूत्र में पिरो की रखती है, हम लोग इस तिरंगा के लिए जीते हैं, इस तिरंगा के लिए मरते हैं, हमेशा तिरंगा का अभिमान हम लोग सदा ऊपर रखेंगे।
2: इसलिए पॉलिटिकल पार्टी और अलग अलग स्टूडेंट यूनियन का झंडा आप लोगों ने दूर कर दिया।
19: बिल्कुल, देखिए हम लोग सबको एक मंच पे एक आवाज में सबको एक राह में लेकर के आए हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं, जो छात्र हैं उनके भविष्य के साथ जो ये हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है उसको लेकर के सभी छात्र संगठन एक मंच पे आज आपको दिख रहे हैं।
2: चलिए एक मंच पे आना है, एक सूत्र में पिरोना है, इसीलिए तिरंगा है और बाकी कोई झंडा नहीं है, ये हम इसीलिए सुना रहे थे आपको राजीव कि दरअसल एक ताकत जब बनती है तो यूथ फोर्स तो उसमें आप उसको दलीय आधार पर अगर बांटेंगे ना तो बहुत सारी परेशानियां आएंगी, तो उससे दूर रखा है इन्होंने, और यही खूबसूरती है इस आंदोलन की। और गजब का स्पीड है, मैं तो उतनी तेजी से दौड़ भी नहीं सकता जितनी तेजी में ये छात्र ये जेंजी दौड़ रहे हैं अपने नौकरी के लिए, हक के लिए। और आप समझ सकते हैं कि 2.5 किलोमीटर का सफर हमने लगभग तय किया है, और दौड़ते हुए ये छात्र लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, और हम कैमरे के साथ चल रहे हैं। राजीव,
0: शशि भूषण, जिस तरीके से झंडे हटाए जा रहे हैं, जाहिर तौर पर वो गलतियां जो दिल्ली में हुई थी यहां पर रिपीट ना हो, उसका पूरा ख्याल छात्र संगठनों द्वारा रखा जा रहा है।
2: बिल्कुल कर सकती हैं आप, और ठीक है, एक बात ये हो सकती है कि जंतर मंतर से जो आंदोलन हुआ नीट को लेकर के, जो प्रोटेस्ट हुआ सीजेपी का, उसके बाद दूसरी जगह भी छात्रों के अंदर आवाज उठाने की बात आई, लेकिन आप उससे इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल अलग तरह का आंदोलन है। यहाँ कोई विवादित टिप्पणी नहीं है, कोई आपत्तिजनक भाषा नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ विष नहीं है। यहाँ सरकार से मांग है, डिमांड है, और वो किस लिए? रोजगार के लिए। जेपीएससी में जो गड़बड़ियां हुई उन गड़बड़ियों के सवाल पे, जेएससी में जो बहाली हुई उस बहाली को रद्द करने के लिए सरकार यहां भी झुकी है। हम ये नहीं कहेंगे कि सरकार नहीं झुकी है, ईडी की जांच का आदेश हुआ है, लेकिन सीबीआई जांच पर अड़े हैं छात्र। जो दूसरी बहाली है उसको रद्द करने के मांग बढ़े हैं, तो ये चीजें अपने आप में अलग बनाती है इस पूरे आंदोलन को। और झारखंड के युवाओं की चर्चा मेरी समझ से इसी वजह से हो रही है कि वो बिल्कुल अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से। नेहा,
1: और एक प्रश्न हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियों के चरित्र पर भी उठता है कि वो जो कांग्रेस हमने देश की राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन करती दिखी, वहां पर जितनी आक्रामक थी, यहां पर जहां वो सत्ता में साथ में है, तो अगर आप छात्रों के हितों का वाकई ध्यान रखते हैं तो यहां तो आपको 100% मांगे मान लेनी चाहिए थी। 17 दिन तक तो पहुंचना ही नहीं चाहिए था ये आंदोलन, पहले दूसरे तीसरे दिन में मान लेते, लेकिन 17 दिन तक खींचा है, यानी कि जहां पर आप सत्ता में होते हैं और जहां आप विपक्ष में होते हैं चरित्र अलग होता है।
2: इससे इनकार नहीं किया सकता राजीव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप जहाँ जिस भूमिका में होते हैं उस मुताबिक ही अपना चरित्र दिखाते हैं। अब देखिए, दिल्ली में जो आंदोलन चला और जो स्थितियां परिस्थितियां रही वो नहीं होता अगर केंद्र सरकार पहले फैसला ले लेती, लेकिन पहले वो हुआ नहीं, और जब हुआ तो बहुत देर हो गई, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, तो अब यहाँ क्या होगा? सरकार यहाँ भी झुकी है, जेपीएससी भंग हुआ, तीनों सदस्यों ने कल इस्तीफा दिया, ईडी जांच का फैसला हुआ, लेकिन कुछ मांगे अटकी पड़ी हैं, उन मांगों पर छात्र अड़े हैं। अब सरकार मानती है उसको, विधानसभा तक पहुंच पाते हैं छात्र, ये देखना होगा। और छात्रों की ताकत के आगे जो जेंजी की ताकत हमने देखी दिल्ली में, उसका एक नेगेटिव एक्सपेक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ जो हमने एक गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट देखा है उसको आप खारिज नहीं कर सकते हैं। ये आज की जमीनी सच्चाई है, कम से कम रांची से जो दिख रही है वो तो यही है जी।
0: और इस बीच लगातार जो नेतृत्व है इन छात्रों का वो छात्रों द्वारा ही है, सब एकजुट हैं, सब एक साथ चल रहे हैं, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है शशि कि ये अब बैकफुट पर आएंगे, क्योंकि अगर 98% इनकी मांगे मान ली गई होती तो आज ये नौबत नहीं आती, क्योंकि इतना ज्यादा अब आंदोलन का समय गुजर चुका है, जाहिर तौर पर छात्र इनका संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच ये तस्वीरें देखिए देवेंद्र महतो की, हम आपको दिखा रहे हैं, जो कई दिनों से लगातार आमरण अनशन पर हैं, भूख हड़ताल पर हैं, सिर्फ पानी पर ही जिंदा हैं। कुछ स्ट्रेचर पर उन्हें एम्बुलेंस ले जाया जा रहा है क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। हालांकि सोनम वांगशु के समझाने के बाद उन्होंने पानी तो ग्रहण कर दिया था, लेकिन खाने को अभी तक हाथ नहीं लगाया, ऐसे में अब एम्बुलेंस की जरूरत पड़ गई है और उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है।
1: तो एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, क्योंकि देवेंद्र महतो लीड कर रहे हैं इस पूरे प्रोटेस्ट को, और वो आप देखेंगे कि तस्वीर लिए हुए हाथ में उनके हैं, तो हेमंत सोरेन के जो मुख्यमंत्री के पिता हैं उनकी तस्वीर उनके हाथ में है शुभ सोरेन, और वो इस समय स्ट्रेचर पर ही आगे बढ़ रहे हैं। अब कुछ कह रहे हैं, एक बार सुना भी देते हैं। तो हजारों आंदोलनकारी हैं और हजारों आंदोलनकारी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, सबका एक विचार और वो है बिल्कुल हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसात्मक गांधीवादी तरीके से ये प्रोटेस्ट होना चाहिए और अब तक बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहा है। सीजीएल रद्द करने की मांग की जा रही है, वो मांग अभी तक सरकार ने मानी नहीं है और वहां सरकार कोर्ट का हवाला दे रही है कि अब कोर्ट की तरफ से निर्देश है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हमें कोर्ट के निर्देश का पालन करना होगा। प्रीलिम्स रद्द करने की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, रिफॉर्म्स की मांग कर रहे हैं। अब ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं लगती है क्योंकि ये सरकार सिस्टम के हाथ में सारी चीजें करवाना, फिर से परीक्षाएं करवा देना, सीबीआई जांच की संतुति करवाना, लेकिन अब तक नहीं हुआ है। शशि भूषण भी हमारे साथ जुड़े हैं। शशि भूषण, हमें आप भी स्ट्रेचर पर देवेंद्र महतो दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ में एम्बुलेंस की व्यवस्था क्या, इसीलिए कि अगर तबीयत ज्यादा बिगड़ती है तो हॉस्पिटल जल्द ले जाया जाए उन्हें?
2: देखिए, कल रात ही मेरी देवेंद्र महतो के जो करीबी हैं उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि देवेंद्र महतो अब बातचीत कर पाने की स्थिति में नहीं है और उसकी वजह लगातार जो लंबे अरसे से भोजन नहीं लेना और बाकी चीज़ें हैं, जो कि पानी तो उन्होंने लिया था सोनम वांगचुक से बातचीत के बाद, लेकिन वो खा पी नहीं रहे थे, तो अब ये भी था। लेकिन हाँ, ये संकेत मुझे कल ही मिले थे, जो एसोसिएशन है जेपीएससी प्रोटेस्ट एसोसिएशन, रिफॉर्म एसोसिएशन, उसकी तरफ से कि जो विधानसभा मार्च शुरू होगा उसके पहले तक तो देवेंद्र महतो वहां से हटने वाले नहीं है, अगर सरकार चाहेगी तो भी नहीं। तो
1: शशि भूषण संभव है, बताएं, मैंने अभी देखा कि स्ट्रेचर में उनके हाथ में शिबू सोरेन की तस्वीर है, ये क्या दर्शाना है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वो?
2: देखिए, मैसेज तो बिल्कुल क्लियर है, मैं यहाँ भी जो बात कर रहा हूँ राजीव, तो आपने भी देखा होगा थोड़ी देर पहले भी हम बता रहे थे जब मार्च शुरू हुआ, छात्र यहाँ कह रहे हैं कि मैं तो जेएमएम के गढ़ से आया हूँ, जो बरहेट का इलाका है, जो हेमंत सोरेन का गढ़ है, जहाँ शिबू सोरेन जहाँ से राजनीति करते रहे, उनका कहना है शिबू सोरेन हमारे आदर्श हैं, शिबू सोरेन ने ही झारखंड बनाने के लिए बड़ी पहल की, झारखंड बना और झारखंड की लड़ाई उन्होंने आंदोलन करके लड़ी, तो ये अपने आप में ये उनसे इंस्पायर्ड हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और यही वजह है कि हेमंत सोरेन की तस्वीर देवेंद्र महतो के भी हाथ में है। वो बता रहे हैं कि जो लड़ाई उन्होंने झारखंड बनने के लिए शिबू सोरेन की तस्वीर उनके हाथ में है और शिबू सोरेन ने झारखंड निर्माण को लेकर के जो आंदोलन बड़ा लड़ा उसमें सफलता जो मिली उस सफलता के बाद अब उसी तौर पे ये सफलता।
1: शशि भूषण, अब आपके पास लौटते हैं इस बीच में एक तस्वीर आ रही है जहां पर एक मल्टी लेयर, एक अलग तरीके से स्टूडेंट्स को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की हुई है, आपको हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं और अब छात्र वहां पर चढ़ने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये झारखंड के जहां पर स्टूडेंट्स को अब यहां से ऐसा लग रहा है कि आगे नहीं बढ़ने दिया जाने का पूरा प्रयास होगा, एक अलग तरह से यहां पर बैरिकेडिंग की गई है और काफी इसकी लंबाई भी।
0: शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़े हुए तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, क्या पुलिस वैन्स वहां पर बड़ी संख्या में है, क्योंकि हो सकता है छात्रों का डिटेंशन हो, इन्हें हिरासत में लिया जाए, क्योंकि अब तो ये बैरिकेड पर चढ़ने लगे हैं और इन्हें रोकने के लिए संभवतः वहां पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े जाए?
2: देखिए, वज्र वाहन का तो तैनाती की गई है, हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये जगन्नाथ टेम्पल है हमारे ठीक आगे, दाएं तरफ जो तस्वीरें दिखा रहे हैं नदीम, और सामने की सड़क जो है ना वो विधानसभा के लिए जाती है, और यही मैं चर्चा कर रहा था नेहा कि इस जगह के बाद जो पांच बड़े बैरिकेड्स लगाए गए हैं जिसमें जो बॉर्डर एरिया में हम टीले ऊपर देखते हैं ना तार, उसको इंस्टॉल किया गया है और अब
1: जगह। शशि भूषण, आप एक्चुअली दौड़ रहे हैं तो इस वजह से आपका माइक जो है हिल रहा है और आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही,
0: आवाज साफ नहीं आ रही है। इस बीच दो तस्वीरें आपको दिखा दें। आशुतोष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां से तस्वीरें पहुंचाइए।
20: ये चौथा बैरिकेड है नेहा, तमाम प्रदर्शनकारी पहुंचे और लग रहा है कि पुलिस बिल्कुल इनके आगे, और बड़ा अजीब सा कह सकता हूं
18: कि पुलिस बीएनएस 163 लगाई हुई है, छात्रों को रोक रही है और एक तरह से रोक भी नहीं रही है। वो जरा सा धक्का मुक्की होती है, बैरिकेड से पुलिस हट जाती है। जहां जहां पुलिस अधिकारी कह रहे कि यहां रुक जाइए, वो रुक भी जा रहे हैं। अब यहां से घोषणा की जा रही है कि यहां रुक जाइए, यहां बैठ जाइए। और मैं जहां पर हूं इसके आगे दरअसल आगे वाटर कैनन भी रखे हुए हैं, दो दो वाटर कैनन भी रखे हुए हैं, क्विक रिस्पॉन्स टीम भी है। और इस पॉइंट पर दरअसल झारखंड जो आईआरबी है, झारखंड पुलिस है, और इन सबका यहां पर जमावड़ा थोड़ा ज्यादा है। और इसी के साथ साथ जो पुलिस है वो वॉलंटियर्स से अनुरोध कर रही है, वॉलंटियर्स भी कह रहे हैं कि एक दूसरे को बिठाइए। मतलब बहुत सारे प्रोटेस्ट आंदोलन हमने देखे हैं, लेकिन जिस तरह से कोऑर्डिनेटेड है, वॉलंटियर्स हैं अनुशासन के साथ 16 दिन, और आज 17वें दिन भी जो छात्र आए हैं, कोई हो हंगामा नहीं है। 113 पुलिस के सामने तो विधायक ने रोके कैसे, उनके हाथ में डंडे, ये छात्रों के हाथ में कुछ नहीं है। वो नारे लगाते हुए चल रहे हैं, जोश में पुलिस वालों से बात कर रहे हैं, उन्हीं को वो कह रहे हैं। और जिस तरह का आप लगता है कहता ना कि पुलिस एक तरह से सरेंडर ही कर रही है कि इन बच्चों पर कैसे हाथ उठाएं। हालांकि विधानसभा धारा 163 है और वो ऐसी जगह होती है जहां पर जाने, एक बार फिर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ड्रोन कैमरों से नजर भी रखी जा रही है, आसमान में तीसरी आंख भी है प्रशासन की, वो नजर रख रही है और कहीं पर कोई असामाजिक तत्व इसका फायदा ना उठा ले। लेकिन ज्यादातर और क्या लगभग सारे छात्र ही हैं, और इसीलिए छात्र हाथों में तिरंगा लेकर के आगे जाना चाहते हैं। जो मामला अटका था वो सीजीएल को लेकर के था, इसके आगे पुलिस दरअसल ये चाहती है कि वो ना जाएं। हालांकि इसके आगे दो बैरिकेड और है जहां पर जो है वो हमने बार्ब वायर जो कांटेदार जालियां वो देखी हैं। आप पुलिस अधिकारी को बैरिकेड पर देख पा रहे हैं, वो दरअसल वही है सबको, लोगों को छात्रों से अपील करें कि रुक जाइए, जहां वो कहते रुक जाइए रुक जाइए। लेकिन उसके बाद आगे अभी अब क्या है कि ये एक धरना स्थल बन गया है, और ये वही रास्ता है जहां से मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायकों को भी आना जाना है, तो मान के चलिए कि सत्र शुरू वो भी नहीं आ सकते, कोई भी अब आना चाहे तो अब तो कम से कम नहीं आ सकते। यहां से अपील की जा रही है कि शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएं। और अब यहां पर देखिए धरने का जो आंदोलन है ये अब उस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से हटकर आ चुका है इस सड़क पर, विधानसभा के बाहर में ठीक 450 मीटर की दूरी पर हूं। इस 450 मीटर की दूरी पर एक नया मंच बन चुका है और इसी मंच पर अब छात्र हैं। हालांकि जब तक लगातार जिस तरह आगे जा रहे थे छात्र भी हैं, तो जब तक उनकी यूनिट और जो उनका कोर ग्रुप है, अगर वो फैसला लेता है कि और आगे जाना है, तब हो सकता है कि यहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाए छात्रों को रोकने के लिए। लेकिन अब तक न तो पुलिस की ओर से बहुत ज्यादा सख्ती की गई है, न छात्रों की ओर से बहुत ज्यादा आक्रामकता दिखाई गई है। ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है, वाटर कैनन सब कुछ स्टैंड बाय पर है, पुलिस यहां पर स्टैंड बाय पर है, प्रोटेक्टिव गियर में एंटी रॉयड टीम जो है, स्क्वाड जो है, क्यूआरटी है, वो सब कुछ तैनात की गई है। लेकिन अभी तक किसी भी इस तरह का इस्तेमाल नहीं किया गया, पुलिस द्वारा कोई बल प्रयोग नहीं किया गया है, और दोनों तरफ के लोग जो लगातार रिस्ट्रेन बनाए हुए हैं, छात्र जो हैं वो यहां पर आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे हैं, लड़के लड़के। और देखिए सबसे ज्यादा जो मांग थी ना वो ये जेएसएससी सीजीएल को लेकर के, इसलिए सबके हाथ में सीजीएल है कि जितनी परीक्षाएं हुई आपने सब रद्द कर दिया हो, जो मामला जो कंटेंशन फंसा है वो इस सीजीएल को लेकर के फंसा है। क्यों? क्योंकि इतने सालों में यही एक सीजीएल और जेएसएससी है जो कई सैकड़ों की संख्या में नौकरी देती है, लेकिन 10 साल बीतने के बाद भी न तो परीक्षा ठीक से हो पाई, न फिर उसमें बहाली हो पाई, और जो बहाली हुई है उसमें आरोप है कि पर्चे आसनसोल नेपाल में रटाए गए। और इसीलिए वो गुस्सा जो है, जब सरकार से इस पर बात नहीं बनी तो ये छात्र जो है वो यहाँ पहुंचाए, और अब आंदोलन जो है वो सड़कों पर आ चुका है, वो जो जगहों पर जहाँ खड़े थे अब मैदान छोड़ करके इस सड़क पर आ चुके हैं। इधर देखिए रेला लगातार बढ़ता जा रहा है, उमस भरी गर्मी है, छात्र है तो पानी का टैंकर भी आ गया छात्रों को पानी देने के लिए। ये संख्या शुरू में लग रही थी कि 150 होंगे, फिर उसके बाद ये सैकड़ों में होती गई, और अब संख्या लगातार बढ़ रही है। अब अगर वो यहाँ घेराव करके बैठ गए तो समझिए कि सरकार, प्रशासन दोनों के लिए यहाँ बहुत बड़ी मुश्किल होगी कि इनको यहाँ से कैसे हटाएंगे, बातचीत कैसे करेंगे। वहाँ मैदान में तो फिर भी 3 दिन 2 दौर की बातचीत चली।
1: बिल्कुल आशुतोष, आप नजर बनाए रखें, हम आपके पास लौटते हैं। छात्र आंदोलन करना उनका हक है, अधिकार है, लेकिन आंदोलन कैसे किया जाए, कैसे किया जाना चाहिए, ये तो झारखंड के इन स्टूडेंट से सीखना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता शशिभूषण भी जुड़े हैं। शशिभूषण, अभी आशुतोष दिखा रहे थे तस्वीरें, अब 550 की लगभग मीटर की दूरी पर ही ये प्रोटेस्ट है। अब सवाल ये है कि यहां से आगे क्या स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वहां पर बैरिकेडिंग है, आगे नहीं जाने देंगे, तो क्या गुत्थम गुत्था होगा, आगे की प्लानिंग क्या है स्टूडेंट्स की, क्या रहेगी यहां से?
2: देखिए छात्रों ने अगर तय किया कि विधानसभा घेरना है, और सुबह से जो छात्र आ रहे थे बारी बारी से घूम करके जा भी रहे थे इस पूरे सड़क पे, विधानसभा मार्ग जो है उस पे, कि कैसी तैयारी प्रशासन ने की है, सुबह कोई रोक टोक थी नहीं, अकेले अकेले छात्र आए, उन्होंने बजाबता रेकी की है, तो उनके अंदर भी कोई स्ट्रेटजी होगी कि कैसे वो मैसेज दें यहाँ से, क्या यहाँ प्रशासन ने जो बड़े इंतजाम किए हैं रोकने के लिए छात्रों को, क्या यहीं पर वो रुक जाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे? क्योंकि इसके आगे और भी दो तीन बड़े बैरिकेड्स हैं। एक बार अपने सहयोगी नदीम से कहूंगा दिखाएं, थोड़ा हम टॉप एंगल पे हैं और यहाँ से थोड़ी तस्वीरें ज्यादा स्पष्ट हैं। किस तरह से छात्रों को रोका गया है, छात्र आराम से वहां पे हैं, वॉलंटियर्स भी अपने तरफ से कॉल दे रहे हैं कि शांतिपूर्ण आंदोलन करना है। और आपको दिखाता हूँ, देखिए ये छात्र यहाँ पे बैठ गए हैं। ये हमने पूरे मार्च में अब तक 2.5-3 किलोमीटर का जो हमने देखा, छात्र जहां भी गए रुके हैं वहां छात्र जमीन पे बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं कि आगे वॉलंटियर्स क्या कॉल देने वाले हैं और उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग जो सबसे बड़ा हडल तो अभी यही दिख रहा है, तो यहाँ मतलब लगता है कि आप लोग इससे आगे बढ़ पाएंगे?
11: एकदम बढ़ेंगे। हम लोग अपना शांतिपूर्वक तरीका से, जिस तरह से हम लोग नियोजित किए हैं आंदोलन का शांतिपूर्वक तरीका से, उस तरह हम लोग अपने नियोजन पर ध्यान देते हुए और डटे रहेंगे। जब तक सरकार हम लोग मांगों की पूर्ण नहीं करती है, तब तक हम लोग अपने आंदोलन में डटे रहेंगे।
2: वॉलंटियर्स कॉल दे रहे हैं, उसका आप लोग पालन?
11: एकदम पूर्ण तरीके से हम लोग पूरा स्टूडेंट पालन कर रहे हैं।
2: प्रशासन ने अपनी तैयारी किया है राजीव, और देखिए यहाँ छात्राएं भी हैं जो अलग अलग जगहों से आई हैं, यहाँ पर प्रोटेस्ट पे बैठी हैं। कहाँ से आई हैं आप?
5: धनबाद से
2: आई हैं। किस परीक्षा में आपको लगता है कि गड़बड़ी हुई? आप
5: सारे ही परीक्षाओं में गड़बड़ी की गई है,
2: तो आप उसको चाहती हैं रद्द?
5: जी बिल्कुल, रद्द हो।
2: लगता है कुछ इस प्रोटेस्ट से नतीजा आज निकलेगा, क्योंकि 17 दिनों से आंदोलन तो चल रहा है, 16 दिनों से आपके साथी भूख हड़ताल पे बैठे हैं वहाँ पे,
5: बहुत कोई हॉस्पिटल भी पहुँच गए हैं भूख हड़ताल की वजह से, सब मर रहे हैं भूख से।
2: पोस्टर सीधा ये देखिए, इनका पोस्टर है और इसमें इन्होंने लिख करके रखा है जो जेपीएससी जेएससीसी स्कैम है उसको लेकर के, और अकाउंटेबल कौन है मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं ये। सरकार कह रही है कि हमने ईडी से जांच कराने का फैसला किया, क्या वो काफी नहीं है?
5: नहीं, हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं।
2: सीबीआई जांच?
5: बिल्कुल।
2: और भी स्टूडेंट्स हैं, काफी छात्राएं आई हैं अलग अलग कोने से। आप कहाँ से आई हैं?
20: जमशेदपुर से
2: आई हैं। क्या उम्मीद है इस पूरे आंदोलन से?
20: आंदोलन से उम्मीद यही है कि सरकार पारदर्शिता दिखाए, रिजल्ट जो भी आता है उसमें पारदर्शिता दिलाए, ऐसा नहीं कि किसी को भी वो दिला दे, सीट दिला दे, ये नहीं चाहते हैं।
2: हमने देखा आज जो देवेंद्र महतो है ना, वो जब आज वहाँ पर प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे तो उनके हाथ में शिबू सोरेन जी की तस्वीर थी, स्वर्गीय शिबू सोरेन की। तो कई छात्रों ने कहा कि हम तो सीख लेते हैं निसम गुरु से कि वो आंदोलन करके झारखंड उन्होंने बनाया, तो क्या हेमंत सोरेन को आप लोग मैसेज देना चाह रहे हैं शिबू सोरेन जी के जरिए?
21: हाँ जी जरूर, कि जैसे उनके पापा ने हमारे पूरे झारखंड को हमें पूरा लड़ाई किया है उन्होंने, तो इस वजह से जो उनके पापा जिस राह से चले हैं उसी राह से झारखंड की और तरक्की की जाए। हेमंत सोरेन को उनके सुन से सीख मिलना चाहिए। जैसे अभी हमारे पास शीट की बिक्रिया हो रही है, उनकी बहुत ज्यादा ही मतलब लोग जो परेशान हो चुके हैं, जैसे यहाँ पर
2: आप कहाँ से आती हैं?
21: जमशेदपुर
2: शहर की। आपका?
21: सुष्मित।

0: अब तक नहीं आई है, तो अब तक वैकेंसी आकर के हम 4 महीना सिर्फ फॉर्म फिलअप में लगा दिए हैं। तब अक्टूबर में जो एग्जाम होने वाली है, तो क्या उस एग्जाम में भी हम लोगों को ऐसे पेपर लीक की संभावनाएं हो सकती है या फिर नहीं? तो इसलिए हम लोग आए हैं कि जो इसका जो रिजल्ट है वो क्लियर हो जाए, इसके बाद में जितने भी सारे एग्जाम्स होंगे झारखंड के वो सारे पारदर्शिता पूर्वक होने चाहिए।
1: एक तैयारी करने वाली छात्रा जिसको
2: आशुतोष मेरे सहयोगी जुटे हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, जिस तरीके से छात्र लगातार ये कह रहे हैं कि हम डटे रहेंगे, मांगे कायम रहेंगी, कुछ मांगे मान ली गई हैं, कुछ बाकी हैं, सरकार का पक्ष भी साफ है, लेकिन जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है अपने आप में एक बड़ा संदेश है, सरकार के लिए भी चिंता का विषय है क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा तक का मार्च एक सांकेतिक प्रोटेस्ट के तौर पर एक बहुत गंभीर मामला, और ये खीज शायद कुछ सरकारी व्यवस्थाओं में दिखाई देगी कि आखिरकार आप प्रोटेस्ट को अब तक रोक क्यों नहीं पाए? क्या 98% आपका कहना सही है, वाजिब है?
3: अगर छात्र सरकार ये कहती है कि 70% मांगे, छात्रों ने तो उसका विरोध किया ही नहीं, वो कह रहे सब ठीक है, लेकिन कोर मामला क्या था? वो JSSC CGL का था। एक कहते ना कि आपने 2-4 लोगों की नौकरी वाले पर एक्शन ले लिया, ठीक है, लेकिन उस विभाग का क्या जो झारखंड में हर 5-6 साल में सैकड़ों की संख्या में नौकरी देती है, और वहां अनियमितता होगी तो कोडरमा गुमला से लेकर के रांची हजारीबाग पूरे झारखंड से जो गरीब बच्चे आदिवासी इलाकों से तैयारी कर रहे हैं उनके मौके आप छीन लेते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता, साल भर पेपर रटिए 4-5 साल तैयारी कीजिए, आप तो पेपर सेट कर रहे हैं और जब नौकरी आती है तो पता चलता आसनसोल और नेपाल में सेटिंग कर ली जाती है। उस सेटिंग के खिलाफ यहाँ लोगों ने सरकार के खिलाफ नारे नहीं लगाए कि सरकार हटानी है, वो कह रहे हैं ये व्यवस्था बदलनी है क्योंकि ये व्यवस्था के पीड़ित हैं, और जब लड़ाई व्यवस्था के खिलाफ होती है और लड़ाई लड़ने वाले ये युवा पीढ़ी, देखे हमने मिलेनियम के तौर पर हमने कई सारे आंदोलन देखे हैं, हमने 2010-2012 के कई सारे आंदोलन देखे, दिल्ली देखा, लेकिन जब ये युवा जेन जी जिन्हें कहते हैं ना जो 20 साल से लेकर के 16 से 24 के वाले हैं कुछ अपने भविष्य के लिए, इनके आंदोलन में वो आक्रामकता नहीं है, ये बहुत इफेक्टिव तरीके से अपना आंदोलन करते हैं। देखे किसी की आग जल रही है तो कुल लोगों के लिए, ये कोई अपना ही पैकेट है नमकीन का ले आए कि बाकी छात्र खाएंगे, पानी लेकर के आ गए, कोई चलिए देखे एक और रेला है, महतो जो है जो प्रदर्शनकारी थे उनको यहाँ ले आया गया है, उनके अनशन है वो कुछ खा पी नहीं रहे हैं, और 17 दिनों के अनशन के बाद अब महतो को भी यहाँ ले आया गया है, तो वो शिबू सोरेन की तस्वीर के साथ झंडा लेकर के अब वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं, और इस आंदोलन में ये था कि पूरी शांति के साथ अनुशासन के साथ ये प्रदर्शनकारी छात्र यहाँ पर डटे रहेंगे। अब यहाँ पर आप कैसे बात करेंगे? आपने 3 दिनों में बातचीत, सरकार अगर ये कह रही है उसके पास ये दलील है कि CGL की परीक्षा हम इसलिए रद्द नहीं कर सकते क्योंकि एक संवैधानिक ऑटोनॉमस बॉडी की परीक्षा है, नियुक्तियां हो गई हैं, वहाँ सरकार के हाथ तंग हैं, तो फिर क्या हमने नहीं देखा है कि कैसे PIL चली जाती है, कैसे याचिकाएं चली जाती हैं, क्यों सरकार अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकती? रास्ते निकाल तो रास्ते निकलती हैं।
1: लेकिन आशुतोष, जो CGL का विषय आप बता रहे हैं, इस पर जो सरकार की तरफ से दलील जारी है वो कितने उचित है कि भाई कोर्ट ने निर्देश दिया, नियुक्ति का आदेश कोर्ट ने दिया, CBI जांच की मांग जो है कोर्ट की तरफ से खारिज किए गए, पहले हाई कोर्ट फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसी फैसले को बरकरार रखा, तो फिर ऐसे में सरकार क्या करे?
3: ऐसा कभी हो सकता है कि सरकार के पास ऑप्शन ना हो? सरकार कानून बदल देती है, कोई अगर ऐसी चीज होती है ना कि कोई अदालत का फैसला उसके हितों के खिलाफ हो, सरकार कानून ले आती है, ऑर्डिनेंस ले आती है, अध्यादेश ले आती है, एक बार इच्छा शक्ति तो दिखाते, केंद्र से लेकर के राज्यों तक हमने देखा है अदालतों के फैसले पलटने के लिए अध्यादेश लाए गए हैं, और इसीलिए वो छात्र जानते हैं सरकार एक व्यवस्था है, उसके पास हर तरह के ऑप्शन है, उसके पास सबसे बड़ी बॉडी विधानसभा है, वहां से कानून पास होते हैं, और इसीलिए तो विधानसभा तक आए, देख लीजिए बैरिकेडिंग पर, मैं तो भी यहां पहुंच गए हैं, पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं, और इन छात्रों के आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत उनकी शांति, उनका सत्याग्रह और उनका आंदोलन बेहद अनुशासन में रहा। मैं तो वहां से शिबू सोरेन की तस्वीर के साथ झंडा लगा के दिखा रहे हैं कि यहां पर कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं हो रहा है, ठीक है, ये विपक्ष का दायित्व है कि जहां पर आंदोलन हो रहा है वहां वो हर आंदोलन के साथ खड़े रहे, सरकार पर दबाव बनाए, लेकिन ये भी बात होती है कि ये भी कई बार राज्यों में केंद्रों में अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग सरकार के हिसाब से वो तस्वीरें बदलती हैं, लेकिन यहां BJP भी समर्थन में आई, युवा मोर्चा कल मैदान में समर्थन देने गया, लेकिन इन सब के बावजूद छात्रों ने अपने मंच मंच को राजनीतिक नहीं बनने दिया। वो आए यहाँ पर, उन्होंने कहा गैर राजनीतिक आंदोलन है, शांतिपूर्ण है, अनुशासन के साथ है। उन्होंने अपने नियम तय किए, उन्होंने गरिमा तय की, उन्होंने भाषा तय की और उन्होंने संतुलन तय रखा, और इसीलिए इसके साथ छात्रों का एक बड़ा धड़ा जुड़ा, पूरा झारखंड इनके साथ आया। हो सकता है जंतर मंतर जैसी चमक यहाँ ना दिखाई दी, लेकिन छात्रों के मुद्दे के साथ एक युवा पीढ़ी साथ है। वहां से अनाउंसमेंट किया जा रहा है।

0: संभवतः मैं तो कुछ कहना चाह रहे हैं, पुलिसकर्मी भी कह रहे हैं कि आप लोग हमारे भाई बहन है, शांति बनाए रखें, यहीं पर रहें, ड्रोन से नजर रखी जा रही है। लेकिन अब तक एक घंटा डेढ़ घंटा बीतने के बाद
1: आशुतोष हम आपके पास लौट रहे हैं। इस समय जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं बिल्कुल देवेंद्र महतो को ही लाइव दिखा रहे हैं, वो देवेंद्र महतो जो पहले दिन से इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं और अब जब छात्र मार्च कर रहे हैं तो वो लीड करते हुए इस अवस्था में छात्रों के बीच मौजूद हैं, छात्रों के बीच मौजूद हैं और यही बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई दे रहा है दिल्ली के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट और झारखंड के प्रोटेस्ट का, कि आंदोलन को लीड करने वाले इस अवस्था में भी पिछले 17 दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया है, वो अनशन कर रहे हैं, पानी जरूर पी रहे हैं, लेकिन वो आज भी खड़े हैं शिबू सोरेन के हाथ में तस्वीर लिए कि हमारे तो आदर्श वही हैं, हमने तो उन्हीं से सीखा है जिन्होंने लड़कर अलग से झारखंड लिया, हम तो उन्हीं से सीखे कि आंदोलन कैसा करते हैं और आज वो इस अवस्था में इस समय खड़े हैं, 17वें दिन भी बिना कुछ खाए खड़े हैं और सरकार से पूछ रहे हैं कि कब हमारी मांगों को आप मानेंगे।
2: दरअसल ये एक संकेत देने की कोशिश है कि जो छात्र हैं वो अपना संयम ना खोएं, जो छात्र हैं वो एकजुट रहें, जो छात्र यहाँ पर किसी अलग मंशा से आए दरअसल वो दूर हो जाएं, क्योंकि सबका मकसद सिर्फ एक होना चाहिए। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि, ये महतो ने जो इतने दिन के अनशन के बावजूद यहाँ पर छात्रों के बीच रहने का फैसला किया है, ये वाकई काबिले तारीफ है। और अगर इस तरीके से वो खड़े होकर ये जता रहे हैं कि अगर मुझमें इतनी हिम्मत है तो आपको संयम और हिम्मत नहीं खोनी चाहिए, ये सांकेतिक और पूरे तौर पर छात्रों का साथ।
3: देखिए, मैं वही बता रहा था थोड़ी देर पहले नेहा कि देवेंद्र महतो के करीबियों से मेरी बात हो रही थी कल रात देर रात, तो ये कह रहे थे कि देवेंद्र महतो की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अब वहां बने रहे, मतलब आप समझिए उनकी शारीरिक अवस्था क्या है, वो जीवन मरण का प्रश्न है उनके लिए, लेकिन इसके बावजूद वो इस प्रोटेस्ट के लिए बने रहना चाहते थे, इस विधानसभा मार्च में शामिल होना चाहते थे। और देखिए, आपको तस्वीरें दिखाते हैं, देवेंद्र महतो जब से यहां पहुंचे हैं तब से सब एकदम शांत हैं, ये सुनना चाहते हैं कि देवेंद्र महतो क्या बोल रहे हैं, चूंकि नेता वही हैं, लीडर वही हैं और हम चूंकि नजदीक में दूसरे हमारे यूनिट्स हैं, कैमराज हैं, तो वो क्लोज फ्रेम दिखा रहे हैं, हम दूर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से फूलों से अभिवादन हो रहा है देवेंद्र महतो का। और देवेंद्र महतो लगातार ये कहते रहे कि छात्रों के हक की आवाज वो उठाते रहेंगे, जो आंदोलन का संकल्प है कि जेपीएससी रिफॉर्म हो और जो गड़बड़ियां हैं उन गड़बड़ियों को दूर किया जाए, लगातार हम लोग जो रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें हम यही देख रहे हैं कि सरकार
1: से लौटने शशि भूषण बने रहे हैं, आशुतोष के पास एक बार फिर से चलते हैं। आशुतोष, आप तो जंतर मंतर पर भी कवर कर रहे थे, पत्रकारों के लिए बड़ी मुसीबतें थी कि बहुत मार पत्रकारों ने खाई, लेकिन विद्यां ददाति विनयम्, विद्या आपको विनम्र बनाती है, वो झारखंड के जो ये जो स्टूडेंट्स ये दिखा रहे हैं कि ये सही मायनों में शिक्षित हैं, कैसे प्रदर्शन किया जाता है। और इस तस्वीर को, ये अपने आप में ऐतिहासिक तस्वीर है जो हमें दिख रही है देवेंद्र महतो की। आशुतोष,
0: नहीं, मैं ये भी धन्यवाद दूंगा उन छात्रों का कि कई जगहों पर उन्होंने घेरे करने की कोशिश की, इन्हीं छात्रों ने हमारे साथ भी खड़े की हमारी आवाज उठाने आए हैं, लेकिन वही कहते हैं ना कि ये तो हमारी ड्यूटी, कई बार जाते हैं, कई बार कई तरह की चीजें झेलते हैं, लेकिन मैं आपको वो दिखाऊं क्यों ये आंदोलन अपने आप में अलग है, ये जेन जी क्यों बहुत मारक प्रचार करती है। आपको ये तस्वीर याद है, बहुत मशहूर फिल्म का है, अब उसमें हेमंत सोरेन की तस्वीर लगाई, लिखा है बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अब आप इस तरह के व्यंग अगर लेकर के आएंगे, इस व्यंग का कोई मार है क्या? मुन्ना भाई एमबीबीएस याद है आपको, एक कैरेक्टर गोविंदा की फिल्म राजा बाबू याद है कि गोविंदा डॉक्टर वकील सब कुछ बने हुए हैं, ये जो आदमी है एक, ये वो एक नाम अभय तिवारी, अब भी बने हैं, इन्होंने SSCGL क्लियर कर ली, JPSC क्लियर कर ली, वो उनको एस्ट्रोनॉट में भी दिखा दिया है, अभय तिवारी को IPS भी बना दिया है, अभय तिवारी को SDM भी बना दिया गया है, इसरो में साइंटिस्ट भी बना दिया गया है, डॉक्टर भी बना दिया गया, नेता भी बना दिया, मुख्यमंत्री, झारखंड का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये जेन जी का आंदोलन है, इसके आप कैसे इसको देखें और इस पर कैसे डंडा चलाएंगे? ये इतना तगड़ा व्यंग है कि इस पर तो आप जो आप देखिए AI का इस्तेमाल, कहते हैं ना कि भारत AI में आगे बढ़ रहा है, अब आंदोलनों में AI आएगा, कोई सोचा था? ले आए AI, मुख्यमंत्री सीट बेचो योजना कर दी है, हमारी गारंटी कोई लिखित परीक्षा नहीं, 100% सिटिंग, जीरो टेंशन, पेमेंट करो, अप्रूवल लो, ट्रांसफर पोस्टिंग फ्री, शर्तें लागू, रेट लिस्ट है, PGT के लिए 40 लाख, JS के लिए 40 लाख, BSO के लिए 30 लाख, अदर्स के लिए 25 लाख, डिप्टी कलेक्टर का 60 लाख रेट, यूपी हरियाणा रेसिडेंट है तो 80 लाख का रेट, डिप्टी SP के लिए 1 करोड़ 1.25 करोड़, पेमेंट करो आराम से, नौकरी पाओ सम्मान। अब आप इस तरह का प्रदर्शन अगर देखते हैं तो ये एक चेहरा, हर आंदोलन में एक चेहरा एक विलेन होता है, झारखंड के लोगों का विलेन ये है। और सवाल ये कि अब तक ये सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? अगर ये भी सलाखों के पीछे होता तो कम से कम छात्रों को उम्मीद होती वो सड़क पर होते और उसे एक विलेन के लिए आप ये देख करके तमाम सर
4: वो विलेन नहीं है सर, वो जस्ट एक मोहरा है, असली विलेन अभी भी पर्दे के पीछे है सर।
5: पीछे सर असली विलेन
0: कहते ना कि एक मुखड़ा हमेशा होता, इसीलिए चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो। ये जो पोस्टर लेकर के आए ना
6: सरकार अराजकता को नेता दिया है। मैं हॉस्पिटल में होने की स्थिति में 9 दिनों से भूख हड़ताल के बावजूद मैं खुद को नहीं रोक पाया।
7: देवेंद्र जी यहाँ पे आप लोगों को कह रहे हैं कि आप यहाँ भागल भगवान हैं, आप पर फूल बरसा रहे हैं, आप झारखंड के नए भगवान हैं।
6: देखिए ये तो लोगों का प्यार है, उस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं और मैं सब नहीं चाहता हूँ। मैं भगवान नहीं हूँ, नहीं कोई मसीहा हूँ, मैं एक साधारण लड़का हूँ, माड़ भात खाता हूँ, सूखा रोटी खाता हूँ और ये प्रोटेस्ट के बाद भी मैं वही खाऊंगा। मेरा निजी जिंदगी में कुछ बदलाव होने वाला नहीं है, लेकिन मेरे दिल में सबसे ज्यादा अगर दर्द हुआ, तकलीफ हुआ तो मेरा भूख हड़ताल से ज्यादा दर्द हुआ उस कांटेदार तार का जाली से। इसलिए तो मैं आया हूँ, एक आते आते टूट गया। ये 3 लेयर का ब्रेकेटिंग था, ये 3 लेयर का ब्रेकेटिंग आते आते ये छात्र लोग इससे हम लोग निकल जा रहे हैं। लेकिन बात है कि सरकार क्यों अराजकता चाहती है, सरकार क्यों अराजकता को नेता दे रही है, सरकार छात्र के मांगों पर क्यों सहमति नहीं बना रही है, ये सबसे जरूरी मैं सभी छात्र को धन्यवाद देता हूँ, चाहे झारखंड से हो या देश भर के हो। तमाम मीडिया बंधु को भी धन्यवाद देता हूँ, जो प्रिय छात्र हैं, जो मेहनती छात्र हैं, उसके आवाज को आप लोग बुलंद कर रहे हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन संयम बना के रखे, अनुशासन बना के रखे, सबको धैर्यता के साथ बना के रखे, ये मेरा अंतर जारी रहेगा। आज हेमंत सोरेन जी का जन्मदिन है, मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है और मैं नहीं चाहता हूं कि जन्मदिन के मौके पर छात्र को कुछ ऐसा करे कि दिल्ली का जंतर मंतर की तरह कुछ अनहोनी हो, ऐसा कि छात्र को ना दे जिसके बदन पे खून निकले, जिसके माथा पे चोट आए और ये भीड़ और उग्र हो जाए।
8: कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है,
6: गिरफ्तारी ठीक है, वो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन आज हेमंत जी का जन्मदिन है, जन्मदिन के मौके पर ऐसा तोहफा न दे जो जिससे खून बहे, जिससे अराजकता फैले, जिससे आक्रोश, ये शांति है तो इनको शांतिपूर्ण रहने दिया जाए।
9: सरकार आपकी नहीं सुन रही है, छात्रों की नहीं सुन रही है, तो आगे की
6: ये शक्ति, ये ताकत क्या छोटा मोटा लग रहा है? ये आवाज उन लाखों युवाओं का है जो अपने सपनों की तलाश किताबों में करते हैं, ये उनकी आवाज है जिनका भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर है। ये आवाज में कई माओं का उम्मीद है, कई बहनों का त्याग है, कई पिताओं का पसीना है, कैसे नहीं मानेंगे ये सरकार? अगर ये सरकार ये आवाज को नहीं मानती है तो ये सरकार को पूरे विश्व स्तर पे
10: खानाधारी
6: निरंकुश लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार के रूप में याद रखा जाएगा। नहीं नहीं अनशन नहीं तोड़ेगा। आज देखिए मैं अपना जान को जोखिम में डाल के आया हूँ क्योंकि ये धूप है, चक्कर आ सकता है, भीड़ है, भगदड़ हो सकता है, लाठीचार्ज हो सकती है, कभी भी छात्र हमको अपना पैर पहले दबा सकते हैं, उसके बावजूद मैं इस सबको स्वीकार करते हुए आया हूँ। तुरंत निरंकुश सरकार नहीं सकती है।
5: वॉलंटियर से अनुरोध है, वॉलंटियर से अनुरोध है, वॉलंटियर से शांति बनाए।
6: न्याय मिलेगा क्योंकि कोई एक आदमी का आवाज नहीं है, ये लाखों युवाओं का आवाज है जिनका भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर है, जो अपने सपनों की तलाश किताबों में करते हैं। मैं यहाँ सिर्फ आवाज बन करके आया हूँ, पीड़ित लोगों की आवाज बन करके आया हूँ। मेरा जो दर्द है फिलहाल 9 दिनों से खाया नहीं हूँ, उससे ज्यादा दर्दनाक यहाँ के छात्रों का भविष्य जो बेचा जा रहा है वो ज्यादा दर्दनाक है। गुरु जी शिबू सोरेन जीवन भर संघर्ष किया है, जीवन भर आंदोलन किया है। अगर गुरु जी जिंदा होते तो ये हम लोग आंदोलन में आते। गुरु जी जिंदा नहीं है, उनका तस्वीर हमारे साथ इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। अगर गुरु जी को आदर्श मानती है हेमंत सोरेन जी, ये छात्रों का दर्द, छात्रों का पीड़ा, मैं बहुत जान को जोखिम में डाल के आया हूँ, एक तो मैं चल नहीं सकता हूँ। ये भीड़ कभी भी पुलिस के साथ भिड़ंत हो सकती है, कभी भी ये भीड़ में भगदड़ हो सकता है। मैं जान रहा हूँ मैं भाग भी नहीं पाऊंगा, मैं जान रहा हूँ ये आंसू गैस छोड़े जाएंगे, जारी रहेगा, जब तक नहीं सुनेगी तब तक जारी रहेगा। छात्र धैर्य बना के रखें, शांति बना के रखें, एक सब एकजुट बना के रखें, अनुशासित तरीके से रहे सभी छात्र।
10: आप शिबू सोरेन की तस्वीर लेकर आए, क्या कहेंगे?
6: शिबू सोरेन जी जिंदा रहते तो ये हम लोग के साथ साथ शरीर रहते। जीवन भर आंदोलन किया है, जीवन भर संघर्ष किया है, तो वो हमारे बीच से शरीर जिंदा नहीं है, वो तस्वीर के रूप में हमारे साथ संघर्ष में खड़ा है। छात्र को कोई गुमराह नहीं कर रहा है, छात्र से आ रहे सिस्टम की तरफ से।
10: आज क्या करेंगे?
6: आप लोग को बता दिया जाएगा। आगे जाएंगे, देखिए मेरा जो न खाने का दर्द है, न खाने का तकलीफ है, उससे बहुत बड़ा दर्दनाक यहाँ के छात्रों का भविष्य को बेचा जा रहा है। यहाँ के पेपर लीक हो रहे हैं, भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, वो ज्यादा दर्दनाक है। जी बिल्कुल जारी रहेगा, बिल्कुल अनशन जारी रहेगा, जब तक हमारे अनिश्चितकालीन जारी रहेगा।
11: अंतिम में हमको
12: भैया प्लीज कोई ऐसी स्थिति नहीं करनी है कि लोग अगर किसी की खराब हो, प्लीज किसी को ना उकसाएं, मेरा रिक्वेस्ट है। हम लोगों को प्रशासन को कोऑपरेट करना है, कोई स्थिति नहीं करनी है प्लीज।
6: अभी हम सच बता रहे हैं, मेरे जगह दूसरा कोई भी रहता अभी आईसीयू में एडमिट होता। मेरा अगर रिपोर्ट देखिएगा तो 10.5 kg घटा है, शुगर लेवल 53 है।
13: ऐसा कौन सा मोटिवेशन है जो
6: उसके लिए लंबा कहानी है, उसके लिए बहुत लंबा कहानी है। वो अंदर का चीज है, इंटरनल चीज है, बाहर का मोटिवेशनल से मैं भरोसा नहीं कर सकता हूँ। मैं अंदर का इंस्पिरेशन से भरोसा करता हूँ, जिसका कोई लिमिट नहीं होता उस पावर का। मेरा पावर इनफिनाइट है, मेरा पावर का ये लोग प्रतीक्षा ना करें, मेरा पावर का ये लोग धैर्य का पावर का ये लोग परीक्षा ना ले। मैं बाहर का लोगों के आह्वान से या लोगों के बाहर का मोटिवेशनल से मोटिवेशनल नहीं होता हूँ, उससे हमको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। मैं इंस्पिरेशन जो इंटरनली आता है जिसका कोई लिमिट नहीं है, जिसका कोई दर्द नहीं है, जिसका कोई तकलीफ नहीं है, मैं उससे आया हूँ, उस साहस से आया हूँ।
7: छात्रों के बीच आप पहुँचे हैं, आठ डिबो चौदह के बाद
1: देवेंद्र महतो को आप लगातार सुन रहे हैं और वो हेमंत सोरेन उनका जन्मदिन भी है। जन्मदिन पर आप मुझे ऐसे या हमें ऐसा उपहार न दे कि यहाँ पे खून बहे, यहाँ अराजकता हो। आप छात्रों की मांगे मान लीजिए, ये देवेंद्र महतो कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि मैं तो अपना जीवन दांव पर लगाकर यहाँ पर पहुंचा हूँ, मतलब मैं चल नहीं सकता, मैं दौड़ नहीं सकता, मेरी हालत बहुत खराब है, पिछले 10 दिन से खाना नहीं खाया है। और छात्रों की मांगे मानने में आपको आपत्ति क्या है, दिक्कत क्या है? हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यजीत भी हैं, साथ साथ शशि भी हैं। लेकिन सत्यजीत, आप जिस जगह पर इस समय हैं वहां से तस्वीरें दिखाएं, क्या प्लानिंग जब आगे की?
14: तस्वीरें हम आपको सीधी दिखवा रहे हैं, जो विधानसभा मार्च था उसमें ये जगन्नाथपुर का जो पॉइंट था, जगन्नाथपुर मंदिर है इधर, वहां पे फाइनल बैरिकेटिंग किया गया था। लेकिन अब स्टूडेंट्स जो है बैरिकेटिंग को फांद कर इस साइड आ रहे हैं। देखिए आप यहां पे अब नारेबाजी करते हुए यहां पहुंच गए हैं, वाटर कैनन वगैरह की तैयारी है, लेकिन ये यहां पहुंच चुके हैं। ये देखिए स्टूडेंट जो है प्रोटेस्टर यहां पहुंच चुके हैं। ये देखिए आप लोग बैरिकेटिंग फांद के आ गए।
15: जी जी जी, देखिए हम लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं कि प्रशासन हम लोग को सहयोग करे और अंतर मन से प्रशासन भी हम लोग को सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में प्रशासन जो है छात्रों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये छात्रों को रोकना आज मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हम चाहते हैं
14: फूल भी बरसा रहे थे, किसके ऊपर फूल बरसा रहे थे?
15: हमारे देवेंद्रनाथ महतो भैया जी के ऊपर, जिन्होंने वो पिता भीष्म के तौर पर झारखंड के लिए काम कर रहे हैं। आज उन्होंने लगातार आज 9वां दिन का भूख हड़ताल पर वो बैठे हैं, उसके बावजूद देखिए झारखंड सरकार के जो मंत्रिमंडल है उनसे कल वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात करते हैं। उनसे जहाँ पर वो धरना स्थल वहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं, तुम लोग का इतना भी नैतिकता नहीं है कि एक छात्र नेता के तौर पर जो है 8 दिन से अनशन पर बैठे हैं, उनसे आकर उनका हालचाल जाने। यह झारखंड जबकि
14: डीजीएल कैंसिलेशन नहीं होगा तो ये जारी रहेगा।
15: जी जारी रहेगा,
14: है ना? और ये आप लोग बैरिकेड
15: हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री आज झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का जन्मदिन भी है, तो इस जन्मदिन पर उनसे हम लोग एक रिटर्न गिफ्ट चाहते हैं कि छात्रों की आवाज को सुनिए और छात्रों की मांग को पूरा करिए।
14: ये देखिए ये दृश्य है और कुछ लोग जो है अब फांद कर आने लगे हैं। ये गाड़ियां जो आगे वाले बैरिकेडिंग पे लगाई गई थी राजीव, वो पीछे जो है बैक करके लाया जा रहा है, क्योंकि अब यहां से जो है ये देखिए अंदर ये सारे लोग जो है पहुंच रहे हैं बैरिकेटिंग फांद कर। इसके पहले वाला जो बैरिकेटिंग था उसको इन लोगों ने स्केल डाउन कर दिया है। अब आगे जो है यहाँ पे अब एक कड़ा बैरिकेटिंग है, यहाँ पे बार्ब्ड जो है वायर से यानी कटीले तारों से घेरा गया है। तो अब आपको हम इस साइड दिखाते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है झंडे लेके दिखे गाड़ी है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आके ये अब बैठ चुके हैं और अब यहाँ से इस बैरिकेटिंग को फांदने की ये कोशिश करेंगे। ये इसको जो है यहाँ पे कटीले तार लगाए गए हैं, तो यहाँ से अब आगे जो है सरकार की तरफ से देखिए आप डिप्लॉयमेंट भी जबरदस्त किया गया है। यहाँ पे ये लोग बैठ चुके हैं, यानी पहले वाला जो था वो यहाँ से पहुँच चुका है इस तरफ, और बीजेपी के जो है लोग हैं यहाँ पे, बीजेपी के भी जो युवा नेता है वो लोग भी पहुंच चुके हैं और ये बाकी लोग भी जो है यहाँ पहुंच रहे हैं। यानी वो वाला जो बैरिकेटिंग है उसको उन लोगों ने जो है स्केल डाउन कर दिया है। तो अब हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ अब तैयारियां जो है चल रही है। देखिए वाटर कैनन वगैरह जो है, हाँ ये देखिए बैरिकेटिंग टूट चुका है, वो सामने का बैरिकेटिंग और हुजूम आ रहा है। आप देख सकते हैं आंदोलन जो कर रहे थे, छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका हुजूम यहाँ पहुंच चुका है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट जो है वो पहुंच रहे हैं। अब हम लोग इधर यहाँ देख सकते हैं,
16: हाँ पीछे से
14: नहीं चलो ना, हम लोग चलेंगे चले। एक बार हम लोग मीडिया को तो जाने दीजिए, अरे नहीं हम लोग
17: मीडिया का पार हो जाने
14: दीजिए,
17: मीडिया का पार हो
14: जाने दीजिए, प्लीज जाने दीजिए, थोड़ा जाने दीजिए, हम लोग को जाने दीजिए, जाने दीजिए जल्दी जल्दी,
18: खोलिए ना,
14: थोड़ा हम लोग को पार हो जाने दीजिए।
17: पहले खोलने दिया, खोलिए ना,
18: पूरा
14: बंद है। हम लोग फंड फंड दीजिए,
17: अरे मीडिया को तो बताइए।
1: ठीक है सत्यजीत, आपके पास हम आते हैं क्योंकि पत्रकारों को भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है एक तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए, और आज तक वही कार्य कर रहा है, निष्पक्षता से हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाई जा रही है। आप ये तस्वीर देखिए, बैरिकेडिंग जो एक मल्टी लेयर दिखाई दे रही थी, लेकिन वो अब उसकी जो है वो खुल गया है पूरी तरह से, उसको हटा दिया गया है। जंतर मंतर पर एक पुलिसिया कार्रवाई हुई, उस पुलिसिया कार्रवाई पर अभी भी प्रश्न उठ रहे हैं, लेकिन अब झारखंड में वो प्रश्न ना उठे ऐसा लगता है, बहुत ज्यादा सख्ती नहीं दिख रही है।
19: तो रद्द किया जाए और सीबीआई से जांच कराया जाए, दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाए।
1: शशि भूषण भी हमारे साथ संवाददाता हैं। शशि भूषण, आप इस समय कहां तक पहुंचे हैं मार्च के साथ? क्या शशि भूषण आवाज मिल रही है आपको?
3: टूटा है और यहीं पर देवेंद्र महतो जुड़े इस बिल्कुल यहीं पर देवेंद्र महतो जुड़े इस विधानसभा मार्च के बीच, और यहां उन्होंने संबोधन किया और उसके बाद थोड़ी देर बाद प्रसारण तो कह सकते हैं कि एक और कदम बढ़ चुका है विधानसभा तरफ है, किस तरह का इंतजाम। और देखिए नीचे सहयोगी ये बैरिकेड्स
20: प्रशासन की उम्मीद थी कि ये बैरिकेड्स नहीं टूटेंगे, और अब ये बैरिकेड्स ध्वस्त होकर के जमीन पर गिर चुके हैं राजीव, और छात्र इसी पर चढ़ते हुए रास्ता बनाते हुए आगे विधानसभा की तरफ कूच कर रहे हैं। ये तस्वीर है रांची में।
1: शशि भूषण ने बताया कितनी दूर रह गया है विधानसभा, और विधानसभा तक पहुंचने में अब और कितने लेयर की बैरिकेडिंग बची हुई है?
19: लगभग 2 किलोमीटर
21: क्या वक्त जा रही है। आपकी सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाहती है, कुछ कहना नहीं चाहती है। जी हाँ जरूर जाएंगे।
1: अब ये जो तस्वीर है वो ये देखने को मिल रहा है,
3: ये जो सड़क है आगे सीधे जाती है, फिर दाहिनी तरफ जाती है तो विधानसभा की तरफ चली जाती है। जी
1: बिल्कुल शशि भूषण, साथ में डंडे लिए हुए दिखाई देने लगे हैं, बहुत ज्यादा हलचल है क्योंकि कटीले तारे लगे हुए हैं, और अब जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको भी फांदते हुए दिखाई दे रहे हैं। शशि भूषण
3: बिल्कुल, और देखिए स्टूडेंट्स का अंदाज वही है, बहुत कूल तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अपने नेता जिन्होंने देवेंद्र महतो जिन्होंने इस पूरे रिफॉर्म आंदोलन को खड़ा किया उनकी बात को सुना, और उसके बाद अब आगे दूसरे बैरिकेड्स मतलब जो अगला बैरिकेड्स है ना जो आरएनआर कॉलोनी के पास है साईं मंदिर के पास, वहां पर अब फिर से एक बार छात्रों के मार्च को रोका गया है। लेकिन जो तस्वीरें अब तक राजीव हमने देखी हैं वो देख के ऐसा लगता नहीं है कि प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं, लेकिन हाँ एक बात बताना बेहद खास होगा कि जो अब नया बैरिकेड सामने आया है ये वो बैरिकेड है जिसकी रिपोर्ट हमने सुबह दिखाई थी, ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें कटीले तार लगे हुए थे। तो क्या यहाँ उसको निकाल पाना उससे आगे बढ़ पाना आसान होगा, ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा राजीव।
1: लेकिन शशि भूषण ये भी नजर आ रहा है कि पुलिसिया कार्रवाई ना हो वो दिखाई दे रहा है कि बहुत अभी पुलिस भी बिल्कुल खामोश है, और हर बैरिकेडिंग से अब तक तो थोड़ा सा तकरार होती है फिर उसके लिए गुजरने दिया जाता है, तो लेकिन ये कहां तक पुलिस जो है रोकेगी स्टूडेंट्स को? हाँ।
3: आप लोग बैरिकेड्स पे बैरिकेड्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ जो है वो कटीले तार लगाए हैं प्रशासन ने, लगता है कि इसको भी पार कर पाएंगे आप लोग
22: बच्चों लोगों के? आप इस बार सरकार ने हद पार कर दी है, तार लगाइए चाहे कुछ लगाइए, बच्चों से कैसा डरना, हम लोग कोई गलत चीज तो मांग नहीं कर रहे हैं, करप्शन के खिलाफ हम लोग मांग कर रहे हैं, तो करप्शन के खिलाफ मांग करना गलत चीज है, उसके लिए बैरिकेड का क्या जरूरत है?
3: हम देवेंद्र महतो कह रहे थे कि आज हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी है तो उनको चाहिए कि छात्रों को कोई गिफ्ट दे दें, कोई तोहफा दें।
22: गिफ्ट सर हम लोग के साथ जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है, गिफ्ट तो नहीं देंगे, बस हमारी मांगों को पूरा कर दे, जो हमारी मांग है वो मद्देनजर रखते हुए वो अपने हमारी मांगों को रखे, बस हम लोग यही चाहते हैं गिफ्ट विफ्ट बाद में मिलते रहे।
3: ये देखिए आगे की तस्वीर आपको दिखाते हैं राजीव दर्शकों को, ये वाटर कैनन जो खड़े किए प्रशासन ने वो वाटर कैनन धरे रह गए, और जो वाटर कैनन वैन को वज्र वैन को ऑपरेट करने वाले हैं वो भी मुस्कुरा रहे हैं, छात्रों की ताकत क्या होती है वो देखिए वो भी मुस्कुरा रहे हैं, और ये देखिए ये मुस्कुरा रहे हैं मोहम्मद अफसर खान मुस्कुरा रहे हैं, अफसर साहब
0: मुस्कुरा नहीं रहे हैं, आदेश का पालन कर रहे हैं हम लोग, आदेश का पालन कर रहे हैं।
3: लगता है कि छात्रों के लिए ये तैनात किया गया था लेकिन इस्तेमाल नहीं किया आप
0: लोग? जी नहीं, जी नहीं, आदेश नहीं है, आदेश नहीं है, इसलिए नहीं चाहिए।
3: आपके घर में भी बच्चे हैं?
0: जी सर मेरे घर में बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं।
3: अफसर साहब हैं ये वाटर कैनन के ड्राइवर जो बता रहे हैं कि हमारे घर में भी बच्चे हैं, मुस्कुरा रहे हैं छात्रों के इस मार्च को देख करके, और ये भी संकेत ये भी मैसेज कि इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अब ये प्रशासन ने जरूर ये स्ट्रेटजी बनाई है कि कहीं कोई कंफ्लिक्ट ना हो, विवाद ना हो, छात्र
20: देखिए ये वो बैरिकेड है जिसकी सुबह हमने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी जहां कटीले वायर लगाए गए थे, लेकिन इसको भी बंद नहीं किया गया और प्रशासन ने एक तरीके से छोड़ दिया है। ये वो तस्वीरें सहयोगी नदीम टिकाऊगा दिखाए,
1: शशि भूषण अभी हम लाइव तस्वीरें दिखाने लगे, इस समय लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं वो जो बैरिकेडिंग जिस पर कटीली तारें लगी हुई हैं और कई मीटर का बीच में गैप दिया गया ताकि उसको तोड़ा ना जा सके, लेकिन अब उनको तोड़ने का प्रयास देखने को मिल रहा है, स्टूडेंट्स उनको एक एक करके किनारे हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये बैरिकेडिंग भी धीरे धीरे टूटती दिख रही है। झारखंड के राज्य की ये तस्वीरें इसकी हमने ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाई थी, और ये बड़ा सवाल था कि क्या इन कटीली तारों को छू पाएंगे, इन कटीली तारों के आगे स्टूडेंट्स ना जा पाए, ये पूरा प्रयास था, लेकिन अब वो कटीली तारे भी अब उनको भी हटाया जाता दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट से के करके उनको हटाते दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एक फोर्स भी पूरी तरह से तैनात है, तैयार है, क्या यहां से स्टूडेंट्स आगे बढ़ पाएंगे यह बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। इससे पहले की बैरिकेडिंग्स तो पार कर ली गई लेकिन ये अलग बैरिकेडिंग है, इस पर किए गए इंतजाम अलग है, इस पर कटीली तारे हैं, एक एक तार से उस पर जो कटीली नुकीली जो कीले हैं वो नुकसान दे सकते हैं हर एक स्टूडेंट्स को, लेकिन उसके बावजूद भी उनको खींचा जा रहा है, आप देखेंगे उनको हटाया जा रहा है, लेकिन अब फिर से फोर्स पहुंच गई है ताकि इनको हटाया ना जा सके, इन बैरिकेडिंग को हटाया ना जा सके, फोर्स आपको देखेंगे कि हेलमेट पहने हुए और कुछ पुलिसकर्मी भी दिखाई देने लगे हैं ताकि इसको हटाया ना जा सके, ये प्रयास जरूर दिख रहा है, लेकिन ये तस्वीरें इस समय लाइव विधानसभा कुछ का प्लान, आपने देवेंद्र महतो को भी थोड़ी देर पहले सुना कि किसी भी तरह की अराजकता का प्रयास, शशि भूषण भी हमारे साथ, शशि भूषण अब छात्र इस बैरिकेडिंग को हटाते दिख रहे हैं लेकिन काफी मशक्कत करनी पड़ेगी इसको हटाने में, लेकिन क्या प्रशासन रोक रहा है अभी?
3: देखिए पिछला बैरिकेड्स भी कमोबेश वैसा ही था जो हम दिखा रहे थे, थोड़ा आप आशुतोष से बात कर रहे थे राजीव, मैं पीछे दिखा रहा था जो कटीले तारों से बना बैरिकेड्स है वो प्रशासन ने कई जगह इंस्टॉल किया, यहाँ भी पहला वो बैरिकेड्स था कटीलो तारों वाला जो यहाँ लगाया गया था, लेकिन हुआ क्या उसका, दरअसल ये पूरी कहानी देखिए, आगे भी इसी तरह के बैरिकेड्स हैं, लेकिन देखिए प्रशासन यहाँ खड़ा है, पुलिस बल खड़े हैं, जो कटीले तारों वाला बैरिकेड्स है वो टूट चुका है, वो ध्वस्त हो चुका है, और छात्र जो हैं वो आगे बढ़ते हुए बढ़े हैं, इसी तरह के बैरिकेड्स और आगे हैं, वो बैरिकेड्स क्या टूटेंगे, क्या इसी खर्च पे वो भी धराशायी हो जाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। पुलिस के जवान पुलिस के लोग खड़े हैं, ये सुबह हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे बता रहे थे कि इस तरह के बैरिकेड्स को
1: शशि भूषण एक दिलचस्प तस्वीर आ रही है, क्या ये कटीले तारे हैं, क्या ये बैरिकेडिंग टूटेगी, बड़ा सवाल था, लेकिन इस बीच में आप एक स्टूडेंट को देखेंगे चप्पल पहनी हुई स्टूडेंट ने, और वो बैरिकेडिंग के ठीक ऊपर कटीली तारों के बीच में चढ़कर अब स्टूडेंट्स की तरफ देखता हुआ दिख रहा है, और वहां से नारेबाजी भी हो रही है, दूसरी तरफ छात्र हैं, अब ये बैरिकेडिंग इस पर भी एक तरीके से एक स्टूडेंट के चढ़ जाने के बाद ऐसा लगता है कि आधा कब्जा तो हो गया, और ये बैरिकेडिंग भी अब टूटती दिखाई दे रही है, इस बैरिकेडिंग के स्टूडेंट्स ने हम निकाल दिया है, पीछे की तरफ, लेकिन ये बैरिकेडिंग भी तोड़ दी गई है। इन छात्रों को रोक नहीं पाए हैं। बाधाएं आती हैं, आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, अभी तो कुछ भी इन छात्रों को रोक नहीं पाता दिख रहा है, कुछ भी नहीं रोक पा रहे, कटीली तारे भी नहीं रोक पा रहे हैं। इन छात्र इन कटीली तारों को एक किनारे करते हुए कि हमारा जीवन कटीली तारों पर चलने के जैसा ही है, हमारे सामने मुश्किलें इतनी बड़ी हैं कि ये कटीले तारें हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी, या इनसे हो रहा कष्ट, इनसे जो हमारे भविष्य का कष्ट है उससे तो बहुत ही कम कष्ट होगा। आज इन कटीली तारों को हटाएंगे तो भविष्य का कष्ट थोड़ा सा शायद कम हो। हम तस्वीरें इस समय लगातार आपको दिखा रहे हैं शशिभूषण, कटीली तारे जो रिपोर्ट हमने दिखाई थी ये स्टूडेंट्स को अभी तक रोकते हुए तो नहीं दिख पा रहे हैं, और ये जो बैरिकेडिंग थी वो भी आधे से ज्यादा तो तोड़ चुके हैं स्टूडेंट्स।
20: आगे भी जिस तरह पे उसी तर्ज पे संकेत लगाए गए हैं कटीली तारों के साथ, छात्रों के बारे में कोई संदेह नहीं है कि वो जिस प्लानिंग के साथ जिस स्ट्रेटेजी के साथ धीरे धीरे विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं, एक एक बैरिकेड भस्त होता जाएगा। देखिए लाठीचार्ज, वाटर कैनन, टीयर गैस, इनका इस्तेमाल कब होता है? तब होता है जब कोई एजिटेशन कोई प्रदर्शन उग्र रूप ले ले। लेकिन जहाँ बहुत कंट्रोल तरीके से छात्र प्रदर्शन करते हुए मार्च करते हुए विधानसभा घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ लगता है कि उत्साह थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ी स्थिति नियंत्रण से बाहर।
1: लेकिन एक सुशील एक बात ये भी है ना कि कांग्रेस ऑपोजिशन पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल पूछ रहा है जंतर मंतर के, अगर यहाँ पर पुलिसिया कार्रवाई हो जाएगी तो उनका ही जो आंदोलन एक तरीके से उनके सवाल वो कमजोर हो जाएंगे अगर यहाँ पर पुलिसिया कार्रवाई हो जाती है तो।
20: देखिए सवाल तो सरकार के ऊपर है, सरकार से सवाल है कि छात्र जो मांग उठा रहे हैं उन मांगों पर पूरी तरह से फैसला क्यों नहीं लिया गया, जो नियुक्ति हुई उस नियुक्ति को रद्द करने की मांग वहीं अटकी पड़ी है, सीबीआई जांच की मांग वहीं अटकी पड़ी है, और उसके बीच अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से कोई मार्च आगे बढ़ा, हमने अभी तक लगभग 3 किलोमीटर का सफर तय किया, 3 किलोमीटर का हमने कहीं नहीं देखा कि किसी छात्र ने कोई ऐसा एक्ट किया हो जिसमें कोई एग्रेशन बहुत ज्यादा हो या कोई कंफ्लिक्ट हुआ हो प्रशासन के लोगों के साथ, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो आप कैसे उन चीजों को जस्टिफाई करेंगे, ये भी तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपके लिए जरूरी है, प्रशासन भी देख रहा है, सरकार के पास भी सारी रिपोर्टिंग जा रही होगी, तमाम ड्रोन कैमरे ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अलग तरह के सर्विलांस कैमरे लगाए गए हैं, प्रशासन के लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो आपके पास इतने कैमरा पर्सन, इतने मीडिया के लोग, मेरे स्ट्रीम यूट्यूब सभी लोग यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो आप जो चीजें लीगल तौर पे हो रही है यहाँ पे, उन चीजों के बीच अगर छात्रों ने कुछ गलत नहीं किया और आप उन पर बल प्रयोग करते हैं तो वो बहुत गलत हो जाएगा, या फिर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, छात्रों में इस बात को समझना है कि 16 दिनों तक जो आंदोलन उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चलाया, जिससे लोग जुड़ते चले गए, जिससे जंतर मंतर के बाद एक अलग तर्ज पे
2: चलाया, जिससे लोग जुड़ते चले गए, जिसने जंतर मंतर के बाद एक अलग तर्ज पे अपनी तरफ सबका ध्यान खींचा, उस आंदोलन की एक अलग पहचान बनी है और वो उसका शांतिपूर्ण स्वरूप ही सबसे ज्यादा लोकप्रियता बना है आम लोगों में, आम जनमानस।
1: हम उम्मीद यही करते हैं कि शांतिपूर्ण ही ये प्रदर्शन हो, ताकि ये प्रदर्शन एक मिसाल बने और देश की जेंजी सीखे प्रदर्शन किया कैसे जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में जो हिंसा हुई वो सही तरीका बिल्कुल भी नहीं था, और एक तस्वीर यह है अब तक शांतिपूर्ण दिख रहा है, और जैसे ही बैरिकेडिंग क्रॉस होती है चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और एक अलग उनको सुख इसमें प्राप्त होता है, वो धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। और इस समय आप एक बैरिकेडिंग पर इन छात्रों को रुका हुआ देखेंगे जहां संवाद चल रहा है, जहां बातचीत चल रही है, चूंकि कई मीटर चौड़ाई से किया गया था तो उसमें से कुछ तो कटीली तारें किनारे कर दिए हैं, बैम्बू से बनाया हुआ ये बैरिकेडिंग दिख रही है और ऊपर कटीली तारे लगाए गए हैं, और उसके बाद अब एक जगह पर खड़े होकर वो संवाद कर रहे हैं प्रशासन से कि हमें आगे जाने दीजिए, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ तक आए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आगे भी चले जाएंगे, हमें तो अपनी बात रखनी है, आप हमारी मांगे नहीं मानेंगे तब तक हमें आगे तो जाना ही है और हमें ये प्रदर्शन करना ही है। और छात्र लगातार निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और ये आप देखेंगे कि प्रशासन तैयार है, प्रशासन वहां पर मौजूद है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई एक्शन नहीं दिख रहा है क्योंकि छात्र भी शांतिपूर्ण है। सत्यजीत भी हमारे साथ है, सत्यजीत एग्जैक्टली समय प्रदर्शन किस पॉइंट पर किस जगह पर पहुंचा है?
4: हाँ
14: बिल्कुल विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है। कई बैरिकेडिंग बनाए गए थे, कटीले तारों वाली बैरिकेडिंग भी बनाई गई थी, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। हर बैरिकेडिंग को इन्होंने स्केल डाउन कर दिया, उसको तोड़ के तमाम बाधाओं को तोड़ते हुए ये आगे बढ़ गए हैं। और देखिए हाथों में तिरंगा लेकर बिल्कुल विधानसभा के पास, हाईकोर्ट के प्रमाइसेस के पास
1: दूर है, विधानसभा से कितने दूर है?
14: अब शायद यहाँ से आगे बढ़ना इनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि लगभग 500 मीटर की दूरी तक ये पहुंच चुके हैं। और अब जो है यहाँ इन्हें रोका जाएगा प्रशासन की तरफ से, हर हाल में रोका जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ जो है बैठने के लिए इन्हें इशारा किया जा रहा है, और आप यहाँ बैठने के लिए इशारा इन्हें किया जा रहा है, ये देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ अब इन्हें हर हाल में रोका जाएगा, क्योंकि अब बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं ये विधानसभा के। नागेंद्र जी, ये बिल्कुल जो है नजदीक पहुंच चुके हैं विधानसभा के, और साइड वाला जो रास्ता सब है उससे भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपना अपने मंजिल की तरफ बढ़े। ये तो काफी मशक्कत प्रशासन को करने पड़ी, तमाम बैरिकेड्स टूट गए हैं, अब एक आध बैरिकेड ही बचा हुआ है। यहाँ इन्हें इशारा किया जा रहा है कि आप आगे मत जाएं, आप बैठ जाएं, ये इनको बोला जा रहा है। लेकिन आंदोलनरत छात्र जो हैं वो रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहे हैं, और हर बाधा को तोड़ के ये आगे बढ़ गए हैं। और जहाँ इन्हें रोका जाता है वहाँ ये बैठ जाते हैं। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, और लेकिन कुछ लोग जो हैं वो आगे भी बढ़ते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं बाधाओं को इन्होंने तोड़ा है, और अभी शायद ये पहला अवसर होगा जब इस तरह का कोई प्रदर्शन हुआ हो। जो जगन्नाथपुर वाला जो पॉइंट था जहां कटीले तार लगाए गए थे, उससे आगे कोई प्रदर्शन बढ़ा हो, उससे आगे कोई जुलूस बढ़ा हो, जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो, ऐसा नॉर्मली हुआ नहीं है। ये पहली बार है। छात्रों का जो एनर्जी है, जो उनका जो शक्ति है, और सरकार भी कोई विशेष बल प्रयोग नहीं कर रही है, विद्यार्थियों के साथ नरमी से ही पेश आ रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल जो है विधानसभा के करीब ये पहुँचते जा रहे हैं। इसके आगे जैसे ही आप दाहिना मुड़ेंगे उसके बाद नया विधानसभा का प्रमाइसेस शुरू हो जाता है। तो जैसे कि झंडे लेके
4: पुलिस पकड़ के बैरिकेडिंग तोड़ के आगे गई,
14: जो अब जो है यहाँ भले इन्हें डिटेन किया जाए लेकिन ये बहुत आगे तक आए हैं। अमूमन जब विधानसभा का सत्र चल रहा होता है तो किसी को भी अलाउड नहीं होता है किसी धरना प्रदर्शन को। एक जगह है डेजिग्नेटेड, वहीं जगन्नाथपुर में राइट हैंड साइड में मैदान है, वहां भेज दिया जाता है, या तो या फिर वहीं पे जो बैरिकेडिंग होता है वहीं प्रदर्शन होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि विद्यार्थी जो हैं वो बिल्कुल एकदम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये अब देखिए हमारे साथ हैं ये लोग, सारे बैरिकेडिंग आप लोगों ने तोड़ दिए।
8: हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग 15 दिन से शांति पे धरना पे बैठे हुए थे, सरकार हम लोग की बात नहीं सुन रही है, इसीलिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा की मार्च कर रहे हैं। हम लोग एकदम शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक तरीके से जा रहे हैं।
14: तो देखिए पीछे जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच लिखा हुआ है, वॉलंटियर लिखा हुआ है। ये कहना है इनका कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इनका इनकी जो मंजिल है वहाँ तक ये जाकर दम लेंगे, ये इनका जो है कहीं ना कहीं
1: वाटर कैनन की शुरुआत, और वाटर कैनन छोड़ दिया गया। बिल्कुल सत्यजी,
9: प्रदर्शनकारियों को पीछे करने के लिए झारखंड पुलिस ने जब वो बैरिकेड तोड़ करके आए हैं उसके बाद इन पर वाटर कैनन शुरू कर दिया है, पानी चलाना शुरू कर दिया प्रदर्शनकारियों पर। तो प्रदर्शनकारी जो है अब इन पर पानी चलाना शुरू कर दिया है, वाटर कैनन, क्योंकि किसी भी हाल में पुलिस, हालांकि मैं अगर आपको ये देखूं कि वाटर कैनन में उस तरह की धारा नहीं है कि जो रोका जा सके, तो छात्रों ने बिल्कुल यहाँ मजा लेना शुरू कर दिया इस आंदोलन में। वाटर कैनन चलाया जा रहा है, इनको रोकने की कोशिश की जा रही है। इस बैरिकेड पर कुछ छात्र हालांकि जा रहे हैं, ये देखिए डांस करना शुरू कर दिया है इन छात्रों ने, यहाँ पर लिटरली जो है डांस करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर वाटर कैनन चलाए जा रहे हैं, लोग इनसे डरते हैं, अगर लग जाए वाटर कैनन की चोट तो गहरी होती है। ये यहाँ नाचने लगे हैं, दी स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड लिटरली डांसिंग, पानी खत्म हो गया लग रहा है प्रेशर, और पानी का प्रेशर खत्म हो गया है, उसके बाद जो है थोड़ा सा पानी इक्विपमेंट पर भी गिरा करना होगा।
1: पानी की बहुत एक बौछार की गई है, एक ही चरण ऐसा लगता है कि किया गया। हालांकि जो तीव्रता, जो तेजी, जो धार होती है वो वैसी नहीं दिख रही है, लेकिन अब आगे मुस्तैद दिखाई दे रहा प्रशासन, शायद यहां से आगे इनको ना जाने दिया जाए। लेकिन यहां तक पहुंचना भी बताया जा रहा है कि बड़ा मुश्किल है। आमतौर पर यहां तक प्रदर्शन नहीं पहुंचते हैं विधानसभा के इतने निकट, इतने करीब, लेकिन इस समय पानी की बौछार छोड़ी जब गई तो उस पर छात्र नृत्य करते हुए दिखाई दिए हैं, उस पर डांस करते हुए, टुमकते हुए दिखाई दिए हैं। झारखंड में बिल्कुल अलग तस्वीर इस बार देखने को मिले, जबरदस्त तनातनी है और पुलिस उतनी सख्ती अब तक नहीं देखने को मिल रही थी, नहीं दिखा रही थी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि कितने लेयर पर जवानों की तैनाती है। तो इस ये अपने आप में इशारा करता है कि शायद यहाँ से आगे अब इन छात्रों के लिए जाना मुश्किल होगा। लेकिन आगे क्या होगा, क्या छात्र जबरदस्ती आगे जाने का प्रयास करेंगे या रुकेंगे? अब तक वो निर्देशों का पालन कर रहे हैं, वॉलंटियर्स वहाँ पर लगातार हैं, अनाउंसमेंट हो रही है। और ये तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर को आप देखिए, यूं तो जब पानी की बौछार पड़ती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, तो जिस जगह पर वो गिरता है तो वहां से अपने आप लोग दूर,
9: और जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया है, सभी छात्र लुक अब जाकर के छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये स्टूडेंट्स यहाँ हटने को तैयार नहीं है। छाता लेकर के आ गए, इसने छाता लेके आ गए हैं। हालांकि वाटर कैनन का फोर्स मैंने इस्तेमाल देखा है, इस तरह तो नहीं होता, इससे ज्यादा फोर्स होती है। दरअसल रिस्ट्रेन किया जा रहा प्रशासन की ओर से भी कि बहुत ज्यादा बल प्रयोग ना किया जाए, इसीलिए लाठी डंडे नहीं, और वाटर कैनन ऐसा लग रहा है कि इनके लिए वो कोई वाटर पार्क का मौका है। दिस इज लिटरली लुकिंग लाइक अ वाटर पार्क एंड द स्टूडेंट्स आर लिटरली एंजॉयिंग। अब सिर्फ कमी ये है तो भी वो देख,
1: हमारे सहयोगी जो जानकारी दे रहे थे, वाटर कैनन ये भी प्रतीकात्मक ज्यादा दिखाई दे रहा है कि बस इसके आगे नहीं, ये भी प्रशासन की तरफ से एक संकेत है कि इसके आगे हमें बल प्रयोग करना होगा। और वाटर कैनन का एक इस्तेमाल किया गया, एक ही चरण इस्तेमाल किया गया और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन छात्र यहाँ नृत्य डांस कर रहे हैं इस वाटर कैनन में। तो ये भी छात्रों का अगर इधर से प्रतीकात्मक हो रहा है, तो दूसरी तरफ से छात्रों का भी प्रतीकात्मक कि हम भी इस वाटर कैनन का बिल्कुल इसी तरह से सह लेंगे, हम नृत्य कर लेंगे, डांस कर लेंगे, जीवन में हमारी कठिनाइयां परेशानियां वैसे ही कम नहीं है, वाटर कैनन सह लेंगे, छाती पर सह लेंगे।
5: गर्मी से बच्चा लोगों को बचाने के लिए सरकार पानी का बौछार कर रही है,
9: ये उपहास कर रहे हैं इसको, इसका भी मजा ले
5: लें। सरकार हम लोग का सहायता कर रही है गर्मी से,
9: कह रहे गर्मी से बचाने के लिए। हालांकि पुलिस जो बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं वो कह रहे हैं किस रास्ते, वो देखिए वहां से बार्ब वायर को हटा लिया है, बार वायर के पहले बैरिकेड को छात्र उखाड़ के लेके जा रहे हैं वहां से। तो एक तरफ बार वायर, द प्रोटेस्टर्स आर ट्राइंग टू रिमूव इट, ऑन द अदर साइड वी आर सीइंग द वाटर कैनन हैव बीन यूज्ड। हालांकि देखिए फिर से खड़े हो गए बैरिकेड पे, उन्हें इतनी उमस भरी गर्मी से, मतलब ये प्रोटेस्ट नहीं है, उमस भरी गर्मी में एक तरह की राहत मिल गई है छात्रों को, और वो भी कह रहे हैं कि एस्केलेशन नहीं करना है। और मैं कई सारे हाथ देख रहा हूँ, वो इशारा कर रहे हैं झंडा लेकर के, और चलाओ खत्म हो गया है। अब वो बच्चे जो है पूरा मजा ले रहे हैं इसका। यहाँ पर वाटर कैनन, मुझे याद आ गया कि जब जंतर मंतर प्रदर्शन था, देयर वर इमेजेस दैट सर्फेस फ्रॉम बिहार, कि वहाँ बच्चे कह रहे थे कि अब पानी खत्म हो गया, टाइम करने कुछ है नहीं। मुझे इस प्रदर्शन को देख के सिर्फ और सिर्फ हंसी आ रही है। अब ये लग रहा है जो टैंकर है इसका पहला स्टॉक खत्म हो गया है, अब अगर इसको ये हटाएं तो ठीक है, नहीं फिर से शुरू हो गया। अब इसका प्रेशर देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोशिश दरअसल रिस्ट्रेन करने की नहीं है। देखिए बहुत ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया जा रहा है और फिर एक बार वाटर कैनन शुरू हो गया है, छात्र फिर इसका पूरा मजा लेने लगे हैं, तो झंडा लेकर के नाच रहे हैं। ये जिन जी ने आंदोलनों में जिस तरह के प्रोटोकॉल होते हैं उसकी तो मानिए धज्जियां उड़ा रखी हैं, उनके व्यंग, उनके सटायर, दे हैव बीन वेरी इफेक्टिव दैट आई सी।
1: सत्यजीत भी हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। सत्यजीत, आप क्या देख पा रहे हैं?
10: है कहाँ, क्या कर रहा हो? हाँ राजीव, अब ये जो है बच्चे वो अब विधानसभा पहुंच रहे हैं। आप देखिए सामने, ठीक मेरे पीछे विधानसभा का भवन है, आप देख सकते हैं ये पीछे विधानसभा का भवन है। और यहाँ देखिए ठीक मेरे पीछे जो है, यहाँ ठीक पीछे देखिए आप, स्टूडेंट जो है वो उस साइड से पहुंच रहे हैं, तमाम बैरिकेडिंग धरे के धरे रह गए।
14: इन्होंने शॉर्टकट निकाल लिया है कि कैसे अपने मंजिल तक पहुंचना है। ये फर्म थे अपने उस बिलीफ में कि विधानसभा उनकी मंजिल है, वहां तक पहुंचना है, और अब उसका रास्ता ये ढूंढ निकाल ले रहे हैं। अगर इधर इस साइड बैरिकेटिंग है तो ये उस साइड से चले जा रहे हैं जहां ये ओपन एरिया है, वहां से चले जा रहे हैं। और वहां से आप ठीक मेरे सामने जो है विधानसभा, पीछे देख सकते हैं विधानसभा का जो भवन है उसका गुंबद आपको दिखाई दे रहा है, और यहां देखिए कितने स्टूडेंट जो है वो इस साइड से चले आ रहे हैं। तो ये पहली बार हुआ होगा कि विधानसभा के इतने करीब कोई पहुंच गया होगा या विधानसभा तक पहुंच गया होगा। धरना स्थली जो है वो डेजिग्नेटेड जगह है, जो जगन्नाथपुर मंदिर है उसके सामने जो है वो, जैसे ही वहां से अगर आप इस रास्ते से आ रहे तो दाहिने जो एक मैदान है वही डेजिग्नेटेड मैदान होता है, और वहां पे ही बड़ा बैरिकेटिंग लगाया जाता है जिसके आगे जाना जो है संभव नहीं होता है। हमेशा जुलूस हो या प्रदर्शन हो वहीं रोका जाता है, लेकिन आज ये पहली बार है कि देखिए किस तरह से स्टूडेंट जो हैं विधानसभा के प्रवाइसेस का जो सड़क है वहां तक पहुंच चुके हैं। ये अपने आप में वाकई जो है अदम्य साहस का काम है, कैसे इन लोगों ने, इनकी जो एकजुटता थी उसके वजह से ये यहां तक पहुंच चुके हैं। और इनकी मांग है, बार बार वही मांग है कि CGL को भी रद्द करें, पूरा प्रोसेस जो है उसको CBI से जांच करवाएं। और इस मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए सुबह सवेरे से ही ये जुटने लगे थे, अलग अलग इलाकों से जो है आंदोलनरत छात्र पहुंचे थे, कोई गढ़वा जो यहां का सबसे ऐसा बॉर्डरिंग इलाका है,
1: दूसरी तरफ
14: बिहार और झारखंड का जो बॉर्डर है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है वहां से आए हैं, और बाकी लोग जो है कोडरमा से कोई कहीं से, कल से ही तैयारियां शुरू थी और जोरदार तरीके से यहाँ पहुंचे। देखिए वहां तक पहुंच गए, बिल्कुल विधायक आवास है उधर, वहां तक ये लोग जा पहुंचे हैं। और यहाँ सामने, ठीक मेरे सामने, ये अगर हम दिखाएं आपको, मेरे अगर आप देखें ये सामने, अगर हम आके आपको दिखाएं तो विधानसभा भवन आपको साफ तौर से दिख रहा होगा, वहां तक जो है ये जा पहुंचे हैं। तो ये पहली बार हो रहा है इस तरह से कि कोई प्रोटेस्ट कर रहा हो और विधानसभा तक पहुंच जाए, वो भी जब कोई सत्र चालू हो, जब कोई सत्र चल रहा हो। तो वाकई अपने जो मांग है उसको लेकर लगातार इन्होंने आंदोलन किया है और उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। राजीव,
1: हमने जहां स्टूडेंट्स पहुंच गए हैं, जहां पर खड़े हैं, क्या वो विधानसभा की दीवार है वहां तक जाकर वहां पर पहुंच गए हैं ये स्टूडेंट्स सब?
14: ये देखिए इस साइड से दीवार नहीं है, हमारे ठीक पीछे हाईकोर्ट का भवन है और ये जो बैरिकेटिंग लगा हुआ है इससे आगे जाकर जब आप दाहिने जाएंगे तो मोटरेबल रोड है विधानसभा तक के लिए। लेकिन ये बच्चे जो है इधर से नहीं जाकर इन्होंने क्या किया है कि ठीक मेरे पीछे देखिए ये जो है पोरस इलाका है, ये खुला हुआ इलाका है, यहाँ से ये निकल गए हैं और वो सड़क जो विधानसभा तक जाती है वहां वो जा पहुंचे हैं। अब आगे जो है उन्हें रोका जाएगा, हम आपको वो भी दृश्य दिखाएंगे, हमारी टीम जो है वहाँ पहुँचेगी और आपको दिखाएगी कि वहाँ जो है उनको रोका जाएगा। बेशक देखिए वहाँ पे जो है वहाँ जाकर उनको लग रहा है कि रोक दिया गया है, अब उसके आगे अब वो नहीं जा पा रहे, लेकिन विधानसभा तक वो पहुँच गए हैं। जो उनका कहना था, जो उनका मार्ग था कि हम विधानसभा तक पहुँचेंगे, तो वो विधानसभा तक बिल्कुल जा पहुँचे हैं। ठीक यहाँ से देख सकते हैं तस्वीरें कि कैसे वो विधानसभा के भवन तक, विधानसभा के प्रमाइसेस तक जा पहुँचे हैं। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सत्र चल रहा हो और उस दौरान कोई प्रोटेस्ट हुआ हो और वो प्रोटेस्ट जो है विधानसभा तक पहुंच सके। राज्य का सबसे बड़ा जो है लोकतांत्रिक मंदिर है, वहां तक पहुंचना जो है मुश्किल होता है, लेकिन तमाम तैयारियां प्रशासन की धरी रह गई। लेकिन ये भी था कि शायद ऊपर से इन्हें आदेश होगा कि किसी तरह का कोई बल का प्रयोग नहीं करना है, वाटर कैनन बेशक जो है वो चार्ज किए गए हों, लेकिन किसी तरह का कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई फोर्स जो है बल की तरफ से जो है अप्लाई नहीं किया गया है।
1: बिल्कुल सत्यजीत, जिस समय हम दर्शकों, जिस समय हम जानकारियां दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, बाहर प्रदर्शन चल रहा है, उस समय विधानसभा चल रही है, विधानसभा के भीतर मिनिस्टर हैं, तमाम मंत्रीगण बैठे हुए हैं, तमाम विधायक बैठे हुए हैं और बाहर पहुंच गए हैं छात्र। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि इसमें से आप छात्र दो गुटों में बंटते दिख रहे हैं, दो अलग अलग, एक तरफ वो दूसरे मार्ग से चले गए हैं विधानसभा के विधानसभा तक पहुंचने के लिए, उन्होंने दूसरा मार्ग अपना लिया है, दूसरी रोड की तरफ चले गए खुला मार्ग, और एक आप भी उन बैरिकेटिंग के सामने खड़े होकर डांस कर रहे हैं जहां पानी की बौछार छोड़े जा रहे हैं, जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है और उस वाटर कैनन को लोग कह रहे हैं कि एक शावर, ये गर्मी से राहत देने के लिए इस पानी की बौछार को हमारी तरफ छोड़ा जा रहा है। विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा चल रही है और बाहर जिन लोगों के लिए, जिन स्टूडेंट्स के लिए विधानसभा चल रही है, विधानसभा में जिनके मुद्दे उठने चाहिए, जिनके लिए काम होना चाहिए, बाहर स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आप विधानसभा को चाहिए हम चलाइए, हमारी तो हमारे लिए तो विधानसभा है, हमारे लिए तो आपको काम करना है, आप हमारी मांग क्यों नहीं मान रहे और शत प्रतिशत क्यों नहीं मान रहे, आप हमारी मांग की मानिए सीजीएल की परीक्षा रद्द करने की आप सबसे बड़ी मांग है, जिसमें इतना भ्रष्टाचार गबन का उसमें आरोप है, बेहद गंभीर आरोप है, और सरकार उस मांग को नहीं मान रही है और सरकार के पास तमाम तरह के विकल्प मौजूद रहते हैं, उस मांग को नहीं माना जा रहा है। और ये जब आप देखिए जंतर मंतर से बिल्कुल अलग प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जब जंतर मंतर संसद मार्च का ऐलान हुआ था तो तब वहाँ हिंसा हो गई थी, लेकिन यहाँ हिंसा दूर दूर तक नहीं है और नित्य है। मतलब आप जब प्रदर्शन में आते हैं तो आपके अंदर एक गुस्सा होता है, आक्रोश होता है, वो गुस्सा है, लेकिन देखिए उस गुस्से को कैसे प्रदर्शित किया जा रहा है, उसका इजहार कैसे हो रहा है, नाचकर गाकर नारेबाजी करके। और आप देखिए सिर्फ और सिर्फ तिरंगा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं है, किसी स्टूडेंट यूनियन का झंडा नहीं है, किसी की कोई टी शर्ट नहीं है, यहां पर सिर्फ अगर है तो तिरंगा है, स्टूडेंट है, छात्र है, और बिल्कुल विनम्रता से जैसे प्रदर्शन किया जाता है वैसे प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन इस समय झारखंड की विधानसभा चल भी रही है और विधायकों को वैसे जानकारी तो होती है सभी की, बाहर पहुंच गए हैं स्टूडेंट्स, प्रशासन ने अभी तक उनको यहां तक रोका नहीं था, लेकिन एक पॉइंट पर अभी वो रुक गए हैं, उस पॉइंट से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, तो बीच में से कुछ छात्र शॉर्टकट लेते हुए एक दूसरे मार्ग की तरफ से जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कैमरे देखें, हम पहला तस्वीर जो देखिए उसमें दिखा भी रहे हैं कि एक जगह पर जाकर वो भी अब रुक गए हैं, वहां पर भी ऐसा लगता है कि उस तरफ भी व्यवस्थाएं प्रशासन ने की होंगी उनको रोकने के लिए, क्योंकि विधानसभा या संसद ये बहुत संवेदनशील जगह होती हैं, यहाँ तक प्रदर्शनों को पहुँचने नहीं दिया जाता है, मार्च को नहीं आने दिया जाता है, उससे पहले फिर प्रशासन को एक्शन लेना ही पड़ता है, दिल्ली में भी लिया गया और अब झारखंड में हमें प्रतीकात्मक रूप से तो दिखने लग गया कि अब हाँ थोड़ा बहुत एक्शन शुरू हो गया है, जब वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू हो गया, फोर्स हालांकि पानी की वो नहीं है कि जिस बौछार से किसी स्टूडेंट को जख्म आ जाए, कोई घायल हो जाए, वो फोर्स नहीं है, लेकिन हाँ प्रतीकात्मक रूप से शुरू हो गया है। शशिभूषण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शशिभूषण आप किस पॉइंट पर पहुंचे इस समय?
11: वाटर कैनन लगा करके बैरिकेड्स के सामने छात्रों को रोका गया है राजीव, उसी जगह पे हूँ, लेकिन ये एक दूसरी सड़क है और आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, बैरिकेड्स एक एक करके तोड़ रहे हैं छात्र और टुकड़ों में ला करके उसको कहाँ पहुंचा रहे हैं, थोड़ा दिखाते हैं आपको पीछे, उस समय आप लाइव में नहीं आ पाए, जुड़ नहीं पाए छात्र, देखिए ये कटीले वायर वाले बैरिकेड्स हैं जिसको ला करके छात्रों ने यहाँ फेंका है, उन्होंने कहा टुकड़ों टुकड़ों में हम तोड़ेंगे और यहाँ ला करके तमाम सरकारी बैरिकेड्स का यही हाल करेंगे। तो आप समझिए कि कितनी शक्ति होती है युवाओं में, छात्रों में, और जब रोजगार के सवाल पे क्या हो गया, ये आपको क्या हो गया?
12: लग गया है, साल भर का खून चूसा है, एक दिन खून जाने से कोई दिक्कत नहीं है।
11: ये क्या बैरिकेड से लगा?
12: बैरिकेड से लगा हुआ है, पाकिस्तान का बॉर्डर लगा हुआ है ना, ये छात्र है, झारखंड का छात्र है क्या? उस दिन नहीं,
11: आप लोगों ने तो किनारे ला करके
12: हाँ फिर लागेंगे।
11: ये देखिए ये छात्रों का कमिटमेंट है जो कह रहे हैं कि हम बैरिकेड्स टुकड़े टुकड़े में लाएंगे और किनारे ला करके फेंक देंगे, लेकिन जहां पूरे मार्च को रोक करके रखा गया है, भले ही कुछ छात्र निकल करके यहां सत्यजीत बता रहे हैं विधानसभा के मार्ग जहां से एक किलोमीटर लगभग है वहां जो इस इलाके में पहुंचे हैं, लेकिन जो बड़ा जत्था है, मुख्य जत्था है, वो यहां पे है और यहां वाटर कैनन का बार बार इस्तेमाल हो रहा है। देखिए फिर एक बार देखिए बैरिकेड से यहां तोड़ा जा रहा है, आपको दिखाता हूं मैं, देखिए छात्र कितने कितने प्लानिंग के साथ छात्रों ने बैरिकेड्स को तोड़ने का यहाँ काम किया है। देखिए ये छात्र देखिए तोड़ रहे हैं बैरिकेड्स को और अब बैरिकेड्स को लेकर के यहाँ से जाएंगे, देखिए ये खोल रहे हैं और लगातार हमने देखा पहले भी गए बैरिकेड्स उधर किनारे फेंके और इनका एक ही संकल्प है कि विधानसभा पहुंचना है, सरकार से जो मांगे हैं वो वहां रखनी है विधानसभा भवन में, और इसीलिए यहां से देखिए बैरिकेड्स खोले जा रहे हैं, जो प्रशासन ने बड़े इंतजाम किए, उस इंतजाम क्या हो गया आप लोग इसको खोल,
13: सरकार बहरा हो गया, हेमंत सोरेन सुन नहीं रहा स्टूडेंट को, इसको तानाशाही कर रहा है स्टूडेंट पर, ब्रेकिंग करके रोका जा रहा है सरकार, पूरा रोक रहा है स्टूडेंट।
11: ये देखिए ये बैरिकेड से बहुत डेंजरस, जिसको आप छू भी ले तो हाथ कट जाए, जैसा एक छात्र अभी हम दिखा रहे थे, लेकिन छात्रों का सीधा एक ही मकसद है, विधानसभा जाना है, वहाँ सरकार को अपनी आवाज सुनानी है, और यही वजह है कि यहाँ पर इसी तरह से प्रदर्शन हो रहा है। और यहाँ देखिए
2: जो झारखंड की स्थानीय भाषा है उसमें प्रदर्शन है, नारेबाजी है, सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए लगातार नारेबाजी छात्र जो हैं वो कर रहे हैं। राजीव
1: बिल्कुल शशिभूषण लौटते हैं आपके पास। छात्रों का प्रदर्शन इस समय चल रहा है और छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सरकार को कहा झुकना ही होगा, सरकार को मांगे माननी ही होगी। अभी तक मांगे नहीं मानी गई हैं, एक परसेंटेज दिया जा रहा है कि इतनी परसेंट मांगे मान लिए गए और छात्र इस परसेंटेज पर यकीन नहीं रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मांगे जो हमारी हैं गलत नहीं है, जायज मांगे हैं और हमारी मांगों को आपको मानना ही होगा। हम तो सड़क पर आ गए हैं क्योंकि आपने पहले काम नहीं किया, आपने परीक्षाओं में ध्यान ली रोकी नहीं, तो हम सड़क पर आए हैं और जब सड़क पर आए हैं तो हम 100% पर ही यकीन रखते हैं कि हम 100% जब काम करवाएंगे अपना हम तभी वापस लौटेंगे। और उसके लिए आप चाहे पानी की बौछार कर लें, आप लाठी डंडों का इस्तेमाल कर लें, आप हिंसा पर आ जाएं, हम तो हिंसा पर नहीं आएंगे। हम अहिंसात्मक रूप से, हम गांधीवादी तरीके से, हम शिबू सोरेन के तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। वही हमारे आदर्श, वही हमारे गुरु हैं। आज हेमंत सोरेन का जन्मदिन भी है और इस जन्मदिन के मौके पर वो अपेक्षा तो

0: ली जाएं, कोई और गिफ्ट नहीं, बस यही गिफ्ट है कि हमारी मांगे मान ली जाएं, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द कर दी जाए, प्रीलिम्स रद्द की जाए, सीबीआई जांच करवा दी जाए, रिफॉर्म्स हो जाए, ये सब हो जाए, लेकिन अब तक ये नहीं हुआ है। हमारे साथ शशि भूषण जुड़े हुए, सत्यजीत लगातार जुड़े हुए। शशि भूषण, अब एक प्रतीकात्मक रूप से जब आप पानी की बौछार छोड़ देते हैं तो एक संकेत है कि हम इसके आगे आपको नहीं जाने देंगे, तो छात्रों की क्या प्लानिंग है, क्या आगे जाने का आप भी प्रयास करेंगे और वो प्रयास कैसा प्रयास होगा?
1: देखिए, फिर एक बार से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, थोड़ा गैप दिया गया 4-5 मिनट का, फिर से वाटर कैनन जो है वो चार्ज किया गया है। छात्रों की प्लानिंग यही है यहाँ पे राजीव, कि जो बैरिकेड्स हैं, चूंकि है क्या, एक छोटा सा पैसेज सड़क के अंदर छोड़ा गया जहाँ वाटर कैनन की गाड़ी रख दी गई है और वहीं पर छात्रों को रोक करके रखा गया उसके सहारे। लेकिन छात्र क्या कर रहे हैं, छात्र जो बैरिकेड सड़क के किनारे, मतलब सड़क के बाद का जो पार्ट का हिस्सा होता है ना, वहां पर जो बैरिकेड्स हैं उनको तोड़ रहे हैं, बारी बारी से उनको हटा रहे हैं, एक रास्ता बना रहे हैं कि किनारे से एक रास्ता बन जाए, ताकि अगर वाटर कैनन की जो गाड़ी है वो सामने खड़ी भी रह जाए, जैसा कि सहयोगी नदी में एक बार दिखाएं जो चार्ज किया गया है वाटर कैनन, छात्र वहां झूम रहे हैं, पानी में भीग रहे हैं, कोई उत्साह में कमी नहीं है उनके, ना कोई फर्क उनको पड़ता है, सीधा कर रहे हैं, गर्मी बहुत है, आज बारिश नहीं हुई तो चलिए हेमंत सरकार ने हमको थोड़ी बारिश का आनंद दे दिया है, तो अपना मिजाज है उनका। लेकिन सबके बीच में सबसे अच्छी बात यह है कि कहीं उग्रता नहीं है, कहीं कोई एग्रेशन नहीं है, और छात्र कोशिश कर रहे हैं, 2-3 विंग में छात्र कोशिश कर रहे हैं कि इस अलग से एक बनाया जाए हिस्सा, जिसमें जो छात्र, देखिए निकलना भी शुरू हो गए छात्र, तो छात्र जैसे ही आगे बढ़ते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे और लगातार चप्पे चप्पे से आज तक के कैमरे के जरिए हम दिखा रहे हैं कि छात्रों का आंदोलन किस तरीके से, छात्रों का ये विधानसभा मार्च, विधानसभा झारखंड की तरफ आगे बढ़ रहा है। राजीव,
0: बिल्कुल, प्रदर्शन की तस्वीरें, छात्र आगे बढ़ रहे हैं शशि भूषण, और हमारा जो काम है वो हम अपने काम को भी अच्छे से कर पा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से पत्रकारों के साथ मारपीट हुई और बहुत सारे लोग उकसा भी रहे थे छात्रों को पत्रकारों के साथ मारपीट करने के लिए, और बहुत बहुत क्रूरता हुई, लेकिन यहाँ बिल्कुल उलट, बड़ी अच्छी तस्वीर। लेकिन इस समय एक वाटर कैनन की तस्वीर,
2: वाटर कैनन शुरू हो गया, फिर से पानी चलाना शुरू कर दिया, यहाँ पे फिर से वाटर कैनन चलाना शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों पर दरअसल टीयर गैस चलाने की तैयारी थी, लेकिन तुरंत ही उनको पुलिस ने रोक दिया, प्रदर्शनकारी आगे पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों को घेर लिया, और अब जो है फिर से वाटर कैनन चल रहे। देखिए जिस बैरिकेड पर डेडलॉक था, ये देखिए, ये डांस है, ये कैसा प्रोटेस्ट है, दे आर प्रोटेस्टिंग एंड दीज आर प्रोटेस्टर्स आर लिटरली डांसिंग ऑन द वाटर कैनन। नाउ वी सी द 4th-5th बैरिकेड officials were preparing to send tear shells. They immediately cornered those officers. They mobbed literally to those officials and they ran away. So they did not allow them to fire tear shells. Now we see the fire tenders are being used. I mean, these are fire tenders. Imagine they are fire tenders to stop the protesters. But this looks like a monsoon rain festival for these students. Can you ever? This is only Gen Z can do. ये Gen Z है, ये इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था का लाठी डंडे लेकर के कोई आया है, लेकिन चार्ज नहीं हुआ, आंसू गैस के गोले खोलने की कोशिश की, उन्होंने अधिकारियों को पुलिसकर्मियों को घेर लिया, ये अलाउड नहीं होगा। और अब देखिए, लेके जाना पड़ेगा थोड़ा सा दूर, फिर से पानी चला, उसके बाद इन्होंने वाटर कैनन चलाना शुरू कर दिया, और अब ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, इसका काम आग बुझाना है, अभी इस फोर्स से भला आप प्रोटेस्टर्स को कैसे रोकेंगे। तो उन्होंने जैसे चलाया है, ये छात्र यहाँ पर नाचने लगे हैं, वो लग रहा है कि वाटर पार्क में कोई रेन डांस हो रहा है, इनके लिए तो रेन डांस का मौका मिल गया, उमस भरी गर्मी से राहत मिल गई है, ये छात्र डर तो नहीं रहे कम से कम। अब सबसे बड़ी
0: पानी की बौछार छोड़ी जा रही है, हिस्से में वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। आज तक के संवाददाता ग्राउंड जीरो पर हम एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उस जगह की तस्वीर जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अब आप फोर्स देखेंगे वो थोड़ी तेज दिखाई दे रही है, फोर्स तेज हो गई है, स्टूडेंट्स अब एक अलग तरह से भी विधानसभा की तरफ चल पड़े हैं, लेकिन ये पानी की बौछार, इसकी तीव्रता बढ़ा दी गई है, इसका वेग अब बढ़ गया है, पहले जो वेग कम था जिसमें छात्र नृत्य कर रहे थे, लेकिन अब वेग ज्यादा दिखाई देने लगा है। ये तस्वीरें हैं आप देखेंगे रांची की, और लेकिन इस वेग के बावजूद भी, इस फोर्स के बावजूद भी अब भी छात्र वहां पर अड़े हुए हैं, टिके हुए हैं।

0: लेकिन आप देखेंगे इन बौछारों के आगे टिक पाना थोड़ा मुश्किल हो गया है, मुश्किल हो गया देखिए आप। लेकिन उसके बावजूद भी हाथ में गमछा लिए हुए नाचते हुए तिरंगा भी इस पानी की बौछार को सहता हुआ दिखाई दे रहा और लहरा रहा है। आप ये तस्वीरें झारखंड रांची से देख रहे हैं। इस समय रांची में ये प्रदर्शन जारी है। एक एक पॉइंट पर आकर अभी वो रुके हुए दिखाई दे रहे हैं। सामने बैरिकेडिंग है, पानी की बौछार दूसरी तरफ से छोड़ी जा रही है। छात्र लेकिन अब भी वहां से टस से मस नहीं हो रहे हैं और उन्होंने स्ट्रैटेजी नहीं बदली, लेकिन नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। हम दूसरी जगह की तस्वीर दिखाए थे, खेतों की तरफ से जो जा रहे थे, हम आपको दिखा रहे थे कि ओपन एरिया है, विधानसभा के लिए दूसरा जो रोड जा रही है वहां से आ रहे थे। वहां पर प्रशासन अब पहुंच गया है और प्रशासन वहां से उनको आगे नहीं जाने दे रहा है। तो वहां पर भी प्रशासन पहुंच गया है कि प्रशासन की भी यह जिम्मेदारी कि वो विधानसभा तक तो ऑब्वियस इनको नहीं पहुंचने देंगे। तो दो तस्वीरें हैं, दो मार्ग हैं, दो अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट चल रहा है। एक तरफ तो मुख्य मार्ग है जो विधानसभा तक जाता है, वहां पर पानी की बौछार छोड़ी जा रही है और बहुत सारे छात्र दूसरे मार्ग से खेतों के रास्ते खुले मार्ग की तरफ से विधानसभा की तरफ पहुंचे। लेकिन बीच में आपको दिखेगा प्रशासन पहले से ही वहां पर तैयार था। प्रशासन को भी शायद अनुमान था कि इस तरफ से भी आ सकते हैं। हालांकि यहां पर जो नॉर्मल बैरिकेडिंग जो ग्रिल लगी हुई है वो पहले से लगी हुई है, सड़क की है, इसके अतिरिक्त कोई अभी व्यवस्था नहीं है। लेकिन यहां प्रशासन पहुंच चुका है, यहां जवान पहुंच चुके हैं, छात्र भी यहां बड़ी संख्या में। तो इस समय रांची में ये दो तस्वीरें हैं क्योंकि एक तरफ तो छात्र डांस कर रहे हैं, पानी की बौछार पर नृत्य कर रहे हैं और वो झूम रहे हैं, लेकिन मांग वही है, गीत एक ही है और गीत अपनी मांग है, अपनी मांगों को ही वो एक तरीके से गा गुनगुना रहे हैं, उसी पर नाच रहे हैं कि झारखंड की विधानसभा चल रही है तो आप हमारे लिए काम कर दें, आप हमारे लिए कुछ निर्णय ले लें और जो भ्रष्टाचार हुआ वो भ्रष्टाचार को स्वीकार करते हुए इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए, बस यही उनकी मांग है। परीक्षाओं को रद्द किया जाए, दोषियों पर कार्रवाई हो जाए और एक पारदर्शी सिस्टम बनाया जाए, ऐसा सिस्टम जिसमें नकल के लिए कोई जो है जगह ना हो, जहां पर पेपर लीक के लिए कोई जगह ना हो, ऐसा सिस्टम बनाए जाने की मांग ये छात्र कर रहे हैं। और ये छात्र ही हैं, छात्र जंतर मंतर पर भी थे तो छात्र रांची में भी है और प्रदर्शन है। प्रदर्शनों में बहुत बहुत बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है दोनों के। यहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन अब तक देखने को मिला है, अब तक शांतिपूर्ण तरीके से छात्र अपनी मांगों को रख रहे हैं। हाँ, वो आगे बढ़ने का उनका जो तरीका है वो अलग हो सकता है कि वो मुख्य मार्ग से न होकर अलग अलग रास्तों से आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गांधीवादी तरीका अब तक इन छात्रों ने अपनाया है और गांधी को आदर्श मानकर, शिबू सोरेन को आदर्श मानकर वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन आप एक पॉइंट पर आकर प्रशासन उनको आगे नहीं जाने दे रहा है। तीन तस्वीरें हैं, अभी तीन तस्वीरें देखिए, बीच में जो तस्वीर देख रहे हैं विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधायक भीतर अपनी बातें रख रहे हैं, अपने प्रश्न और उन प्रश्नों का उत्तर उनको मिल रहा है, विधानसभा चल रही है। लेकिन विधानसभा के ठीक बाहर क्या हो रहा है, क्या मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रीगण इसी विधानसभा के गेट तक आकर थोड़ा सा दूरी पर ही, ये लगभग 500 मीटर की दूरी पर ये छात्र हैं, यहां तक नहीं जा सकते, क्या उनके साथ बात नहीं कर सकते हैं? आप डेलीगेशन बनाकर भेज सकते हैं तो 500 मीटर पैदल ही चले जाइए, गाड़ी से चले जाइए, इन छात्रों के साथ क्या बात नहीं कर सकते हैं, क्या उनकी मांगों को सुन नहीं सकते? सब हो सकता है, लेकिन अभी विधानसभा चलाई जा रही है। हमने देखा कि विधानसभा संसद नहीं चल पाती है, एक एक दो दो मिनट में वो स्थगित हो जाती है, लेकिन यहां विधानसभा आज चल रही है जब बाहर विरोध हो रहा है, जब बाहर हंगामा हो रहा है और एक बहुत बहुत बड़ी मांग है, देश के भविष्य की मांग है, झारखंड के भविष्य की मांग है, वो बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आज कोई डेलीगेशन नहीं जा रहा दिख रहा है, कोई डेलीगेशन, कोई मंत्रीगण अभी बाहर जाकर उनसे बात करते हुए अभी तक तो नहीं दिखाई दिया है। तीन दौर की बातचीत बेनतीजा रही है, कोई जो शत प्रतिशत मांगों उनकी है उन मांगों को माना नहीं गया है। तो क्या आज बड़ा दिन नहीं था क्या, मुख्यमंत्री खुद जिनको उनका जन्मदिन भी आज, क्या वो खुद बाहर आकर डेलीगेशन से बातचीत नहीं कर सकते? या दो हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को आप देखिए, बाहर हंगामा चल रहा है और भीतर सदन चल रहा है। तो क्या शाम होते होते मांगों पर कुछ और गंभीरता से विचार किया जाएगा, बड़ा सवाल बना हुआ है। शशि भूषण हमारे साथ संवाददाता है। शशि भूषण, छात्र तो प्रदर्शनरत ही हैं लेकिन कोई हलचल सरकार के खेमे में दिख नहीं रही है, वहां तो विधानसभा सामान्य तरीके से चलती दिख रही है।
1: देखिए सरकार ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है राजीव कि हमने कल 6 घंटे तक वार्ता की, हम जो कर सकते थे छात्रों के लिए वो हमने कर दिया है, हमने जेपीएससी को भंग कर दिया, हमने ईडी जांच की अनुशंसा कर दी, लेकिन जो दूसरी बड़ी मांग है उस मांग के ऊपर सरकार कुछ नहीं कर रही है। जो सीबीआई से जांच की मांग है उसको सरकार के कल 3 मंत्रियों ने आकर के जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो खारिज कर दिया। उन्होंने कहा सीबीआई का अनुभव हमारे लिए अच्छा नहीं रहा है, जो झारखंड के अंदर अलग अलग परीक्षाओं की जांच सीबीआई ने की है। तो सरकार अब अपने पुराने स्टैंड पे अभी भी बने रहना चाहती है। अब आज का जो पूरा ये मार्च है, विधानसभा मार्च, एक एक करके जब बैरिकेड्स टूट रहे हैं, छात्र आगे बढ़ रहे हैं, अब यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से भी छात्र आगे की तरफ कूच कर गए हैं, वाटर कैनन बंद हो गया है, हम भी थोड़ी देर में आगे की तरफ कूच कर जाएंगे। तो छात्रों का मकसद केवल ये है कि हम अगर विधानसभा तक पहुंच जाते हैं तो जो एक राष्ट्रीय स्तर पे या राज्य के स्तर पे एक मैसेज हमको देना चाहिए सरकार के बीच, वो देने में हम सफल हो जाएंगे। और इसीलिए देवेंद्र महतो की कह लीजिए, जो शिबू सोरेन की तस्वीर लेकर के आए, या फिर जो दूसरे वॉलंटियर्स हैं, वो बहुत पीसफुल तरीके से अपने मार्च को लेकर के कोऑर्डिनेट करके हुए आगे बढ़ रहे हैं। पहली दफे जो प्रशासन है उसने यहाँ वाटर कैनन का प्रयोग किया, लगभग 15 से 20 मिनट तक जद्दोजहद चली, वाटर कैनन का पानी कभी खत्म हो जाता था, कभी फिर पानी स्टार्ट होता था। तो उन तमाम चीजों के बीच छात्र नाचते गाचते आगे बढ़ गए हैं। कहाँ तक पहुंच पाते हैं क्या, चूंकि देखिए जो विधानसभा है रांची के अंदर, झारखंड विधानसभा, वो जो नया विधानसभा भवन है वो बिल्कुल अलग है, मतलब शहरी भीड़ भाड़ से दूर है, और उस इलाके में जाने के लिए आपको एक लंबी सड़क करीबन 1 किलोमीटर की तय करनी होती है, जिसमें आप साफ तौर पर नजर आते हैं, प्रशासन सुरक्षा एजेंसियां सबके निगाह में होते हैं। तो उन परिस्थितियों में क्या वहां उनके लिए जाना पहुंचना उस मेन गेट तक आसान होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अभी तक छात्रों की रणनीति जो है वो मुझे सफल होती हुई दिख रही है। राजीव,
0: छात्र अब भी खड़े हैं, अब भी अपनी जगह पर अड़े हैं, अपनी मांगों पर वो अडिग दिखाई दे रहे हैं। जिस पॉइंट पर प्रशासन ने उनको रोका है वहीं पर अभी ये खड़े दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर सभी रुक गए हैं, हाथों में उनके तिरंगा है, और आप देखेंगे कि नेतृत्व भी होता दिख रहा है और छात्रों तक अपील लगातार पहुंचाई जा रही है कि अब आप जहां पर हैं वहीं पर रुके बैठिए, अभी यहीं पर इंतजार करिए, सामने आपको प्रशासनिक आपको सामने जवान दिखाई देंगे। इस पॉइंट से आगे जाना बड़ा मुश्किल ऐसा लग रहा है कि इनके लिए होगा।
2: नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम शुरुआत कर रहे हैं रांची से आ रही तस्वीरों के साथ, क्योंकि सुबह 10 बजे से ही ये लगातार मार्च जारी है, छात्र आंदोलन अब गति पकड़ चुका है, विधानसभा के नजदीक पहुंचने की तैयारी है। लेकिन जिस तरीके से छात्रों पर पानी की बौछार की जा रही है उससे दरअसल ये असंभव सा लग रहा है। छात्रों का विधानसभा मार्च आपको बता दें शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है, कोई भी वहां पर अवांछित तत्व ना हो इसके लिए भी छात्र जिम्मेदारी ले रहे हैं। हालांकि बैरियर जो कटीले तारों वाला था उसे ध्वस्त कर दिया गया छात्रों द्वारा। इसके बाद जो छात्रों की मांग है वो कह रहे हैं कि हमारी जो दो सबसे प्रमुख मांगे हैं उन्हें नहीं माना जा रहा है, इसी वजह से ये आंदोलन लगातार जारी है। और इस बीच देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या वाकई सरकार का कोई डेलीगेशन आज बातचीत के लिए आगे आएगा, क्योंकि आज दरअसल ये प्रदर्शन काफी व्यापक रूप ले चुका है, 17वां दिन है ये आंदोलन जारी है लगातार। रांची से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भर्ती में धांधली की सीबीआई जांच की जाए ये छात्रों की मांग है, इसके अलावा विधानसभा का सत्र और कार्रवाई जारी है वहां पर हो सकता है ये मुद्दा उठाया जाए। वहीं विधानसभा मार्च में जब छात्र वहां पर पहुंचे तो उन्हें कटीले तारों से रोकने की कोशिश की गई। तमाम जानकारी के साथ शशि भूषण, कटीले तारों वाला जो बैरियर था उसे ध्वस्त किया गया, हालांकि छात्रों ने कहा था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करेंगे, तो क्या हम ये माने कि कहीं ना कहीं वाटर कैनन के इस्तेमाल से और बाकी जिस तरीके से इन छात्रों को रोका जा रहा है, हो सकता है कि अब से कुछ ही देर बाद ये छात्र पीछे की ओर कर दिए जाएं और किसी भी तरीके से किसी भी सूरत हाल में विधानसभा के नजदीक वो ना पहुंच पाए, इसके लिए बल प्रयोग?
3: कहा है बिना मुआवजे का, वो जमीन लूट के अडानी अंबानी की गोद में दे देती है। इसलिए गांव नहीं छोड़ेंगे, जंगल नहीं छोड़ेंगे और माय माटी को भी नहीं छोड़ेंगे और लड़ाई भी नहीं छोड़ेंगे। सरकार के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए ये हम लोग के झारखंडी भाषा में गाना है गांव।

0: पानी, हम कैसे अपनी प्यास बुझाएं पीकर कचड़ा पानी, तुम पियोगे कोको कोला बिस्लेरी का पानी, हम कैसे अपनी प्यास बुझाएं पीकर कचड़ा पानी, से ले गांव छोड़ब नहीं, हम जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, जय झारखंड।
1: यू कैन सी
2: शशि भूषण जुड़े हुए हैं। शशि, अपनी बात पूरी करिए।
3: यहाँ की एक एक करके बैरिकेड्स गिरते जा रहे हैं और छात्र आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो अब प्रशासन के ऊपर भी दबाव है कि आखिर कहाँ उनको रोका जाएगा अंतिम तौर पे। विधानसभा तो सरकार नहीं चाहेगी कि छात्रों का ये मार्च पहुंचे, क्योंकि उससे मैसेज बहुत गलत जाएगा, सरकार के खिलाफ जाएगा। सरकार को मालूम है कि 16 दिनों से अनशन पर बैठे हैं छात्र, एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया उन्होंने, आज राज्य के अलग अलग जिलों से अलग अलग कोने से छात्र पहुंचे हैं, तो जाहिर तौर पर छात्रों को रोका जाएगा। लेकिन आपको दिखाते हैं जिस पोस्ट से छात्र निकल जाते हैं ना, उस पोस्ट से देखिए पुलिस बल कैसे हटती है। मतलब छात्रों के रास्ते, मतलब छात्रों को रास्ता मिलने के बाद पुलिस बल भी निकल जाते हैं और जो रास्ता है वो भी खुल जाता है। तो ऐसी ही तस्वीर हम लगातार देखते आ रहे हैं जब से ये मार्च शुरू हुआ है। लेकिन हाँ, सवाल वही है कि अंतिम तौर पे छात्रों के इस मार्च को कहाँ रोकेगा प्रशासन, क्योंकि चुनौती प्रशासन के सामने है, सरकार के सामने है, और छात्रों का संकल्प एक है कि विधानसभा मार्च करना है, मतलब विधानसभा तक पहुँचना है, और जो मांगे उनकी हैं उन मांगों पर बने हुए हैं वो, क्योंकि सरकार से वार्ता कल विफल हो चुकी है। जी
2: ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच छात्रों के साथ आर पार की ये संघर्ष दिख रहा है पुलिस वालों और छात्रों के बीच, सर इसमें कई बार छात्र घायल हो जाते हैं, ऐसे में ये सुनिश्चित करना होता है पुलिस बलों को कि किसी ना किसी तरीके से इन्हें पीछे की ओर खदेड़ दिया जाए, किसी को हानि ना पहुंचे, नुकसान ना पहुंचे। हालांकि कई ऐसे बैरियर हैं जिसे छात्रों ने पार कर लिया, तो पुलिस वालों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि कैसे इन छात्रों को रोका जाए, पानी की बौछार द्वारा या फिर, अभी तक तो ऐसी तस्वीरें नहीं आई हैं जिसमें लाठी का इस्तेमाल किया गया हो। हालांकि हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे ये विधानसभा मार्च जारी है, असेंबली के करीब ये छात्र पहुंच गए, हालांकि वहां पर बैठकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। शशि भूषण, जानकारी दीजिए।
3: बिल्कुल नेहा, एक बार अपना सवाल दोहराए।
2: शशि, अब आप बता रहे थे कि किस तरीके से ये पुलिस वाले एक ऐसी चुनौती का सामना कर रहे हैं जिसमें आपको बल का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि शांतिपूर्ण ये प्रोटेस्ट बताया गया है, अगर आप किसी तरीके से भी बल का प्रयोग करते हैं तो केंद्र में आप पर कई सवाल या निशान उठते हैं कि आखिरकार पीसफुल प्रोटेस्ट पर इस तरह का एक्शन क्यों लिया गया, ऐसे में कैसे रोका जाए इन छात्रों को।
3: देखिए यही चुनौती है, और हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें। देखिए जो सुबह बैरिकेड्स लगाए गए थे, ये बार बार हमने तस्वीरें दिखाई हैं, इस वक्त हम जहां से दिखा रहे हैं नया, ये वो जगह है जहां सबसे अधिक देर तक वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, सबसे अधिक देर तक मार्च को रोका गया, लेकिन नतीजा क्या निकला, वाटर कैनन की गाड़ी पीछे कर ली गई, ये पूरा बैरिकेड्स ध्वस्त होकर के अब जमींदोज है, देखिए सड़क के ऊपर गिरा हुआ है, छात्र इसी पर से चलते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, और अब ये जो मार्च है वो आगे विधानसभा की तरफ यहां से और आगे कूच कर गया है। तो ये रणनीतिक सफलता भी कह सकते हैं छात्रों के लिए, जो इस तौर पे आगे बढ़ रहे हैं कि शांतिपूर्ण भी रहे, पूरा प्रोटेस्ट नारेबाजी भी हो रही है, प्लेकार्ड्स भी हैं, लेकिन संख्या कम नहीं है। दूर तक नजर डालिए, जहां तक कैमरे की निगाह जाती हो, आप कैमरे के जरिए आप समझिए और दर्शक देखें कि अभी भी, चूंकि पहला जो कॉन्वॉय है वो मार्च का वो बहुत आगे निकल चुका है, फिर भी जहां हम खड़े हैं वो लगभग बीच का हिस्सा है, और इसके अंतिम छोर तक बहुत बड़ी संख्या में अभी छात्र हैं, राज्य के कोने कोने से छात्र आए हैं, और उन छात्रों का सिर्फ एक मकसद है कि विधानसभा मार्च के जरिए जो है वो एक सरकार को मैसेज दिया जाए। जी
2: आखिरी बैरिकेड दरअसल कहां तक है और ये विधानसभा से कितनी दूरी पर है, इस तक पहुंच चुके हैं छात्र या फिर पहुंचने में वक्त लगेगा।
3: देखिए नहीं देखिए, विधानसभा से लगभग 1 किलोमीटर दूर, आप मानिए 800 मीटर से ज्यादा दूरी का वक्त दूर है, जो उसके पहले ही आपको बैरिकेड्स अंतिम तौर पे लगाए गए हैं, जहां से दाहिनी तरफ सड़क होती है। ये सड़क जो हमारे सामने दिख रही है, जिसपे हम चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, नया इसी सड़क पर दाहिने तरफ विधानसभा के लिए एक सड़क मुड़ती है, जो विधानसभा मार्ग है, वहां पर छात्र जो हैं वो रोका है छात्रों को। कुछ छात्र, ये खबर आ रही है, जहां सत्यजीत मौजूद हैं विधानसभा के पास, कुछ छात्र अलग अलग जगह बनाते हुए विधानसभा की तरफ बढ़े हैं। लेकिन मैं पहले भी बता रहा था,
2: दिखा देते हैं एक बार फिर से, रांची विधानसभा मार्च छात्रों का जारी है। लेकिन इस आंदोलन में दरअसल सबसे दिलचस्प बात यह है कि कल 6 घंटे की वार्ता के बावजूद बेनतीजा ये वार्ता निकली, जो डेलीगेशन गया था सरकार की ओर से और छात्रों के साथ जो उनका संवाद हुआ, उसके बावजूद आज का प्रदर्शन जारी रहा। एक लंबा चौड़ा मार्च हमने लगभग 4 किलोमीटर का सुबह से देखा है, जो अब जाकर विधानसभा के नजदीक पहुंच चुका है। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, क्या आज भी बातचीत की कोई संभावना है?
3: देखिए, नतीजा क्या निकलेगा नेहा, आप विधानसभा घेर भी लेंगे तो ऐसा नहीं है कि विधानसभा का घेराव आप कर लेंगे, छात्र हैं तो सरकार आपकी मांग मान लेगी। मैसेजिंग होती है जब इस तरह का आप कोई आंदोलन खड़ा करते हैं, प्रोटेस्ट खड़ा करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, मार्च करते हैं, तो सरकार के सामने आप मैसेज देते हैं कि आप वहां तक पहुंच गए जहां तक आपने संकल्प लिया, तो आप मैसेज देना चाहते हैं। और यही वजह है कि अब यहाँ से छात्र जो हैं, और देखिए देवेंद्र महतो हैं यहाँ पे, लगातार जो आंदोलन करते रहे, लगातार उनका ये प्रदर्शन होता रहा, और देवेंद्र महतो हैं, हालांकि वॉलंटियर्स ने घेरा बना के रखा है, और हम कोशिश करते हैं अगर देवेंद्र जी हमारे से 2 शब्द भी बात कर पाए, लाइव हैं हम। देवेंद्र जी, छात्रों ने बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन अभी तक किया है, आगे क्या मतलब?
4: देखिए, हम लोग शुरुआत से ही शांतिपूर्ण किए हैं, सरकार कंटेदार तार का जाली का ब्रैकेटिंग लगा करके अराजकता को न्योता दिया है, और आज का यह हुजूम, आज का यह जनसैलाब नाखुश को दर्शा दिया है। सरकार अब तय करे आगे क्या चाहती है, अगर तत्काल बड़ा निर्णय ले लेती है सरकार तो आज तो विधानसभा का 6 को ब्रेकेडिंग टूटा है, विधानसभा तक पहुंच गया है छात्र, आगे अब कुर्सी हिलेगी और विधानसभा के अंदर भी पहुंच जाएंगे।
3: एक बार लगता है कि सरकार के साथ फिर बैठना पड़ सकता है, क्योंकि आप बहुत दिनों से फास्टिंग पे हैं, 16-17वां दिन है, तो हम ज्यादा सवाल नहीं करना चाहते हैं, 16वां तो मतलब लगता है कि एक बार फिर वार्ता टेबल पे आ सकते हैं।
4: वार्ता की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मांग पूरा करिए,
3: मांग पूरा किया जाए,
4: वार्ता का क्या जरूरत है, यहाँ कोई पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है, कोई पक्ष विपक्ष का यहाँ मामला है नहीं, सीधे तौर पर यहाँ छात्र का मामला है, छात्र नाखुश है, छात्र असंतुष्ट है, छात्र को संतुष्ट करिए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है संतुष्ट करना छात्र को, ये छात्र सभी आपके छात्र हैं।
3: चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत जो शारीरिक परिस्थितियां होती हैं इतने दिनों के अनशन के बाद, उसको समझना पड़ता है, और जो उसको फेस करता है वही जानता है। देवेंद्र महतो हमसे बात कर रहे थे आज तक से इंडिया टुडे से, और उन्होंने सीधे कहा कि अब वार्ता की जरूरत नहीं है, अब तो मांग पूरी होनी चाहिए। हमारी मांग है जिस परीक्षा को रद्द करने की, जिस नियुक्ति बहाली को रद्द करने की, उसको रद्द किया जाए। अब सरकार पक्ष और पक्ष ये कोई मायने नहीं रखता है, छात्रों की इतनी बड़ी ताकत जो पहुंची है यहाँ पर विधानसभा तक पहुंच गए, जैसा देवेंद्र महतो खुद बता रहे थे नेहा, तो ये अपने आप में बड़ा मैसेज है सरकार को ले, सरकार के सामने, और सरकार को सीधे अब मांगों पर अमल करना चाहिए। यानी अब सीधी बात ये जो देवेंद्र महतो कह रहे थे हमसे बातचीत में, कि अब कोई वार्ता नहीं होगी सरकार के साथ, सीधे सीधे जो मांग है उसको पूरा करे सरकार, हेमंत सरकार जी।
2: आज क्या विधानसभा में इस पूरे प्रदर्शन को लेकर कोई चर्चा हुई शशि, इस बारे में कोई जानकारी?
3: देखिए, मैं तो खुद मार्च को कवर कर रहा हूँ सुबह से, तो मुझे बहुत इसकी जानकारी दी। सत्यजीत हमारे सहयोगी जो हैं वो विधानसभा में हैं, संभव है उनके पास ये जानकारी हो। लेकिन एक बयान आया था हेमंत सरकार के मंत्री का, जिन्होंने शायद अपने बयान से ये बताने की कोशिश की कि आप जो हमने कमिटमेंट किया है, जो घोषणा की है ईडी जांच की, वो होगी और इसके अलावा जेपीएससी को भंग कर दिया गया है। लेकिन सीजीएल को लेकर के जो सबसे बड़ी मांग है, वहां पर छात्र टिके हुए हैं, सीबीआई जांच की मांग पे छात्र टिके हुए हैं, जिसको कल सरकार ने वार्ता के दौरान भी खारिज कर दिया था। लेकिन आज अभी देवेंद्र महतो हमसे बातचीत में ये कह रहे थे, आज तक से बातचीत में, कि अब कोई वार्ता हम सरकार के साथ नहीं करेंगे, हम विधानसभा मार्च कर रहे हैं, ये मैसेज देने के लिए कर रहे हैं, ये बताने के लिए कर रहे हैं। युवा शक्ति शांतिपूर्ण तरीके से झारखंड की निकली है और हम अगर विधानसभा तक पहुंचते हैं तो सरकार को समझना चाहिए, वरना सरकार को कुर्सी से जाना होगा। और मैं ये बता दूं, अब तक कभी भी देवेंद्र महतो ने, और देखिए ये लाठीचार्ज, ये देखिए ये देखिए ये भगदड़ यहाँ पे हुई है, ये भगदड़ यहाँ पे हुई है, और ये देखिए ये यहाँ पे ये पहली दफे छात्रों को खदेड़ा गया है और पहली दफे बैकफुट पर छात्र आए हैं। और ये लाइव विजुअल्स जो हम दिखा रहे हैं, आप देखिए जो छात्र हैं वो पहली दफे बैकफुट पे आए हैं। संभव है पुलिस वालों ने उधर से कोई बल प्रयोग किया हो, कोई ऐसी स्थिति बनी हो जिसको लेकर के अब यहाँ से क्या ये पूरा एजिटेशन, क्या ये पूरा मार्च बना रहेगा शांतिपूर्ण, ये देखना दिलचस्प होगा। तो हम ये देखिए फिर छात्र आगे बढ़े हैं और अब यहाँ पे ये पहली दफे जो प्रतिवाद है, प्रतिरोध है, वो थोड़ा सा दिखता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी भी बहुत अनियंत्रित स्थिति नहीं है, छात्रों ने अपना वो संबल बना कर रखा है जो शांतिपूर्ण है वो, लेकिन पुलिस की तरफ से जरूर ऐसा एक्ट किया गया जिसकी वजह से जब हम बातचीत कर रहे थे आपसे, दर्शकों को बता रहे थे कि स्थिति क्या है, तो भागदड़ की स्थिति बनी है और छात्र पहले पीछे आए, अब फिर छात्र तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। जी,
2: यानी कि इस बात के पूरे आसार थे कि ये प्रदर्शन उग्र हो सकता है, ऐसी आशंका के मद्देनजर अब बल का प्रयोग जरूरी हो गया था। यही वजह है कि छात्रों को पीछे खदेड़ने के लिए अब लाठी चार्ज किया जा रहा है। ये अलग अलग जगहों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस वक्त भी कई पुलिस वाले आप देख सकते हैं जिनके हाथों में लाठियां हैं और वो छात्रों को पीछे की ओर ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये देखिए पहला दफा है, पहला मौका है जब हमने बल प्रयोग देखा है, क्योंकि इससे पहले कटीले जो तार थे उसका बैरिकेड भी छात्रों ने तोड़ दिया था, उसके बावजूद बल का प्रयोग नहीं किया गया। हालांकि वाटर कैनन का इस्तेमाल जरूर किया गया। लेकिन अब शशि भूषण हमें ये बताइए कि अब ये जो छात्रों का मार्च या फिर कूच आगे की ओर था, अब सब छात्र पीछे की ओर जाने लगे हैं और पुलिस वालों की यही कोशिश है कि और मार्च आगे ना बढ़े।
3: नहीं देखिए, छात्र थोड़ा पीछे आए थे, भगदड़ की स्थिति बनी थी, मैं भी उस भगदड़ में था, लेकिन फिर छात्रों ने संभाला अपने आप को और फिर वो आगे की तरफ चार्ज हुए। अब छात्र फिर आ गए हैं, वही शांतिपूर्ण अंदाज है, थोड़े से पानी के बोतल कुछ चप्पल उछले थे, वो इसलिए कि पुलिस वाले जो हैं वो उधर से बल प्रयोग कर रहे थे संभव हो, जिसकी वजह से छात्र पीछे आए। लेकिन फिर से छात्र जो है वो एक आए हैं और अब देखना होगा कि आगे की स्थिति क्या होती है। नया ये झारखंड के इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन है, हमने अलग पृथक झारखंड राज्य के आंदोलन को अपने स्टडी पीरियड में देखा है, उसको मतलब हमने उसको उस घटनाक्रम के हम विद्यार्थी के तौर पे, स्टूडेंट के तौर पे गवा रहे हैं, जब शिबू सोरेन, स्टीफन मरांडी, बाकी कई नेता होते थे, बाबूला जो सूरज मंडल, और वो दौर जब निकला, जब झारखंड बना, तो इतने दिनों का जो झारखंड का इतिहास है उसमें पहली दफे इस तरह का कोई छात्र आंदोलन हम देख रहे हैं जो आज रांची की सड़कें जिसकी गवाह बन रही हैं। नेहा,
2: एक बड़ा छात्र आंदोलन जो लगातार 17वें दिन भी जारी है, और कैसे अब ये प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई छात्र ऐसे हैं जो बैरिकेड पार करने की कोशिश में दिखाई दिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। ये आर पार की लड़ाई सुबह से ही जारी है, लगभग 10 बजे से ये मार्च शुरू हो गया था विधानसभा की ओर। 4 किलोमीटर लंबा ये मार्च था जो अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन यहाँ संघर्ष अब भी जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि कम से कम ये हिंसापूर्ण ना हो जाए ये प्रदर्शन। और यही एक बड़ी चुनौती भी पुलिस बल की सामने है कि आखिरकार कैसे इन छात्रों को रोका जाए कम से कम बल प्रयोग करके। हालांकि अब लाठीचार्ज किया गया है, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी, शशि भूषण जानकारी देंगे। लाठीचार्ज के बिना काम नहीं चलता क्या शशि?
3: देखिए, पुलिस प्रयोग करती है जब उसको लगता है कि अब शायद सामने वाला जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है, और उसके लिए अपने माइकिंग की व्यवस्था है, मजिस्ट्रेट अलार्म करते हैं, पूरी प्रक्रिया होती है। वाटर कैनन का इस्तेमाल एक जगह एक बैरिकेड्स पे पुलिस ने कर लिया, नया दूसरी जगह वाटर कैनन था नहीं, तो वहां पुलिस ने सोचा थोड़ा बल प्रयोग कर देते हैं, लाठीचार्ज लाठियां भाज देते हैं, यहां से छात्र पीछे आएंगे, लेकिन बेअसर है। मैं फिर कहूं आपको, सब कुछ बेअसर है इन छात्रों के आगे। जेनजी के आंदोलन को नए दौर में जिस तरह से हम देख रहे हैं, जो हमने जंतर मंतर में देखा उसमें कई निगेटिव पहलू थे, कई नकारात्मक तो उसके पक्ष थे, लेकिन यहाँ जिस तरह गांधीवादी तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं छात्र, मुझे ये लगता है कि शायद सरकार ने ये सोचा हो कि एक उग्र प्रदर्शन हो, कुछ इस तरह की स्थिति बने कि बल प्रयोग से नियंत्रित किया जा सके, लेकिन उसमें सफलता तो नहीं मिल रही है। नेहा,
2: सफलता इसलिए भी नहीं मिल रही है क्योंकि सुबह से ही ये शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा था। ऐसे में पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि अगर छात्र ही हिंसक नहीं हो रहे हैं और आराम से मार्च कर रहे हैं तो फिर बल प्रयोग क्यों किया जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि जब विधानसभा के नजदीक वो पहुंचेंगे, आखिरी बैरिकेड तक पहुंचेंगे, तो वहां पर उनकी वापसी का रास्ता कैसे पुलिस बल करेगी, ये सोचने वाला विषय था। ऐसे में ये बल प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज हुआ है वहां पर, थोड़ा सा छात्र इधर उधर हुए। एक बार फिर से आप बता रहे हैं कि मार्च शुरू हो चुका है, इस वक्त क्या ताजा तस्वीरें दिखाइए।
3: हम अपने सहयोगी नदीम से कहेंगे एक बार थोड़ा सा कैमरे को अप करें और दिखाने की कोशिश करें। वॉलेंटियर्स जो जेपीएससी रिफॉर्म्स आंदोलन से जुड़े वॉलेंटियर्स हैं, उन्होंने फिर एक बार कमान संभाली है, वो माइकिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कहीं जो बल प्रयोग हुआ पुलिस की तरफ से उसके बाद छात्र उग्र ना हो जाए और यह आंदोलन गलत दिशा में ना चला जाए, तो इसकी पूरी कोशिश हो रही है। और यही हमने इस आंदोलन में, इस विधानसभा मार्च में बार बार हमने ये देखा है। और जहां तक नजर जाती है, जो भी छात्र आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, एक छात्र है, कहां से आए हैं आप?
5: हम सिल्ली से आए, सिल्ली रांची जिला में पड़ता है।
3: अभी हमने देखा आप लोगों ने वाटर कैनन का सामना कर लिया, छात्र आगे बढ़ गए, थोड़ा बल प्रयोग पुलिस ने किया, आप लोग भी गुस्से में आए, फिर वॉलंटियर्स जो हैं वो समझा रहे हैं कि शांतिपूर्वक ही आगे बढ़ना है, यही एक रास्ता है जिससे आप अपनी बात लगता है मनवा सकते हैं।
5: हाँ, शांतिपूर्वक ही स्टूडेंट कर रहा, लेकिन यहाँ बहुत सारे मतलब 10 साल से परेशान, 10 साल से जेटेट का एग्जाम नहीं हुआ है, दरोगा का एग्जाम नहीं हुआ है, झारखंड पुलिस का एग्जाम नहीं है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम नहीं हुआ है, छात्र बहुत परेशान है। जो भी एग्जाम हो रही है उसमें धांधली हो रहा है, सीजीएल हो चाहे पीजीटी हो, जितने भी एजेंसी,
3: धैर्य नहीं टूटना चाहिए, मतलब जो पेशेंस है वो बना रहे, आंदोलन चलता रहे इसी तरीके से।
6: हाँ सर, इसी तरह का आंदोलन चलता रहे और हमारी बात सरकार तक पहुंचे और हमारा जो समाधान उनको चाहिए वो निकाल के हमें दे। जो 98% बोल रहे सरकार के हम कर लिए है, हमें सीजीएल का रिजल्ट चाहिए, सीजीएल में बहुत बड़ा धांधली हुआ है और ये सीबीआई जांच हो।
3: मूल मुद्दा सीजीएल है,
7: बिल्कुल सर, मेन मुद्दा सीजीएल है। सीजीएल में क्योंकि इन लोग का झारखंड का सेकंड लार्जेस्ट पोस्ट है सीजीएल का, ठीक है, इसमें क्या हुआ, इन लोग का करप्शन है, उस सीजीएल 2-3 बार ऑलरेडी क्वेश्चन लीक हो चुका था, फिर अबर एग्जाम हुआ, अबर में धांधली हुआ है। सोचिए, एक स्कूल से 12 बच्चा 13 बच्चा नंबर वाइज से उन लोग का सिलेक्शन होता है और यहाँ तक जो अच्छे नंबर लाते हैं, जिनके पास फुल एविडेंस है कि मैं अच्छा नंबर लाया, जो कार्बन कॉपी हम लोग को मिलता है ओएमआर सीट का, उसका सबूत है। लेकिन क्या हुआ, जब इवन जब मैं भी जो एग्जाम देने गया था सीजीएल का, मैं भी दिया एग्जाम दिया था देने गया था, तो जो क्वेश्चन पेपर का जो सील था वो ब्रोकन था, तो जब मैं बोला, जब मैं अपोज किया कि नहीं मैं एग्जाम नहीं दूंगा, मेरा वो मेरा एग्जाम सेंटर पड़ा था इधर, क्या नाम है, खूंटी जिला, खुट्टी डिस्ट्रिक्ट मिला था, तो हम गए तो हम जो एसडीएम को कंप्लेन की एग्जाम नहीं देंगे, तो एसडीएम बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ह्यूमन एरर है, तो दैट इज नॉट फॉर ह्यूमन एरर, इज अ बिग एरर।
3: बड़ी बात आप बता रहे हैं स्टूडेंट, देखिए
2: ये कह रहे हैं आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशुतोष, जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां पर इस वक्त प्रदर्शन का क्या आलम है, तस्वीरें दिखाइए।
8: जो बस की ऊंचाई यहाँ पर आया हूँ देखने के लिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले जैसे ही प्रदर्शनकारी यहाँ से जा रहे थे इनको यहाँ से डिस्पर्स करने की कोशिश, वाटर कैनन तो आप समझिए कि कितने चला के खत्म हो गए होंगे किसी को, लेकिन उसके बाद
2: ठीक है, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है, लौटेंगे आपके पास। बीच तीन तस्वीरें आपके सामने हैं, रांची में ये विधानसभा तक मार्च सुबह 10 बजे से जारी है, वहीं छात्रों की आर पार की लड़ाई और संघर्ष में दरअसल सीजीएल सबसे बड़ी मांग है जिसको लेकर धांधली की गई और छात्र कह रहे हैं कि जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होगी इससे कम में वो नहीं मानेंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या छात्रों से बात करने के लिए सरकार का कोई डेलीगेशन आज शाम तक या रात तक पहुंचता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन लगातार जारी है ये सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। आपको याद रखना होगा कि विधानसभा का सत्र जारी है, ऐसे में ये सत्र के लिए भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, ये जो मार्च हम सुबह से देख रहे हैं इसके अलग अलग पड़ाव थे और अलग अलग पड़ाव पे हमने देखा कि कैसे पुलिस का एक्शन भी अलग था, अब जब विधानसभा के नजदीक छात्र पहुंच जाएंगे तो जाहिर तौर पर उसी हिसाब से एक्शन लिया जाएगा ना।
3: बिल्कुल, और उसी परिस्थिति की मैं कल्पना कर रहा हूं कि वो क्षण क्या होगा, मतलब वो कहाँ होगा। सरकार या प्रशासन एक एक कदम पीछे हटते हटते पांचवें बैरिकेड्स तक तो आ गया, इसमें कोई शक नहीं है। छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, बेअसर हुआ। छात्रों पर हल्की लाठियां भाजी गई, वो भी बेअसर है। छात्र वहां पे खड़े हैं, विधानसभा का सत्र चल रहा है, छात्र चाहेंगे कि विधानसभा में आज की जो कार्यवाही है उस कार्यवाही के बीच वो वहां तक पहुंच जाएं, वही मैसेजिंग होगा। और अपने आप मैं बोलता हूं, मैं यही बता रहा हूं उन्हें यहाँ कि पूरा खेल मैसेजिंग का है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास आप प्रोटेस्ट करते हुए विधानसभा पहुंच जाए तो सरकार कोई आदेश पारित कर दे, लेकिन हाँ सरकार को यह मैसेज जरूर जाएगा कि आप समझिए कि किन परिस्थितियों में खड़े हैं, कि इतने लाखों छात्र आते हैं राज्य के अलग अलग कोने से और वो रात को भूखे हैं, थोड़ा खाना मिलता है, हमने देखा है वो 2-3 पूड़ियां और थोड़ी सी सब्जी खा रहे थे, हम भी सुबह से भूखे हैं, हम भी इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या सीजीएल पे जो जिच है वो सीजीएल की जिच खत्म होगी। सवाल ये है कि क्या जो सीबीआई की जांच की मांग हो रही है, सरकार एक कदम पीछे आई, ईडी पर तैयार हो गई, 3 मंत्री आए, कहा सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड इस इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा है राज्य में, लेकिन वो तर्क नहीं मानते हैं छात्र। मैं थोड़ी देर पहले जब देवेंद्र महतो से बात कर रहा था उन्होंने ये कहा कि अब वार्ता की कोई जगह नहीं बची है, अब आपको कुर्सी से हट जाना होगा अगर ये छात्र विधानसभा तक पहुंच जाते हैं। तो मैं यही बता रहा था कि पूरा जो मामला है वो कहीं ना कहीं मैसेजिंग का है। आप युवा शक्ति हैं, आप जेनजी हैं, जंतर मंतर में आपका कुछ भी संगतियों के साथ नैरेटिव्स के साथ आपको लोगों ने देखा होगा, लेकिन झारखंड के युवाओं ने जो प्राकृतिक वादियों के बीच रहते हैं, जहां संथाल की संस्कृति है, उसके बीच के युवा जो मैसेज दे गए हैं पूरे देश में, ये वाकई मैं सुबह से कवर कर रहा हूं। आप देखिए जो वॉलंटियर्स हैं वो अपने छात्रों को खुद कंट्रोल करते हैं, मैंने नहीं देखा कि रांची पुलिस, झारखंड पुलिस, आरएएफ पुलिस के जवान अधिकारी वो उतना एफर्ट कर रहे हो जितना वॉलंटियर्स एफर्ट कर रहे हैं कि स्थिति ना बिगड़े। मैंने कई लोगों से बात कर दी, आप कुछ बोल रहे हैं?
9: जी बोल रहे हैं, सखुआ का पत्ता अच्छा है, झारखंड का बच्चा सच्चा है, और हम देख रहे हैं मीडिया में बार बार बोल रहे हैं कि 2 बैरिकेडिंग तोड़ के विधानसभा की ओर बढ़ रहे हैं, हम लोग बैरिकेडिंग नहीं तोड़ रहे हैं,
3: पुलिस पीछे,
9: जनता को जनता के मंदिर में जोड़ने के लिए जा रहे हैं। जब प्रशासन के लोग और सिंहासन पर बैठे लोग देखिए वहां जैसे मीडिया उतना ऊंचा चढ़ा है उससे ऊपर चढ़ गए हैं, उनको सुनाई नहीं दे रहा है, शांति से क्रांति करने जा रहे हैं झारखंड के लोग।
3: चलिए दिनकर की लाइनें हमें याद आती हैं, और सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो अब लड़ाई वहां तक जाती हुई दिख रही है। जो लड़ाई हमने देखी भूख हड़ताल से, आमरण अनशन से, देवेंद्र महतो ने पहले जल ग्रहण नहीं किया, सोनम वांगचू से बात हुई फिर वो उसके लिए तैयार हुए। मैं जब बात कर रहा था उनसे, आप उनकी जब होंठों को देखिएगा, उनके चेहरों को देखिएगा, जिस व्यक्ति का 10-10.5 किलो वजन गिर गया हो इतने दिनों में, जो अभी खुद बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि उनका शुगर लेवल 53 पे आ गया है, आप समझिए, दर्शक समझें, लोग समझें कि किन तरह की परिस्थितियों में किस चीज के लिए लड़ाई हो रही है। और ये एक सीधा मैसेज है सरकार के लिए, शायद उनको ऐसा लगता है कि हमने जो कदम उठाया ईडी से जांच का, उससे सब कुछ हो जाएगा, सीबीआई का बैकग्राउंड उतना अच्छा रहा नहीं है। आपके अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन जैसे एक युवा मेरे साथ अभी बता रहे थे कि जब बहुत ऊंचाई पर आप बैठ जाते हैं तो कई बार कानों तक आपकी आवाज जनता की नहीं पहुंचती है, तो लेकिन छात्रों की आवाज सुनने की जो परिपाटी परंपरा हमने जंतर मंतर से देखी, वो आज यहां रांची में क्या सफल होती है, क्या उस पर सफलता मिलती है, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हम सुबह से आज सड़क पे हैं, जमीन पर हैं। नेहा,
2: तो कांटों का चक्रव्यूह टूट चुका है असेंबली के करीब। दरअसल ये छात्र पहुंच गए थे, लेकिन छात्रों का कहना है कि किसी भी तरीके से ये प्रदर्शन उग्र ना हो, इसके लिए वॉलंटियर्स वहां पर तैनात किए गए हैं, ताकि कोई भी ऐसी मैसेजिंग ना हो जिससे इन पर एक कोई लेबल लग जाए कि ये उग्र हैं, इसमें अवांछित तत्व हैं, इनका मकसद कुछ और है। सभी छात्र एकजुट होकर एक ही बात बोल रहे हैं, उनकी एक ही तरह की मांग है और सभी को ये मांग पता है। दिल्ली में जब हमने छात्र आंदोलन देखा, उसमें कई लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि ये दरअसल प्रदर्शन किस लिए किया जा रहा है, लेकिन यहां पर छात्र दरअसल एकाग्र हैं और एकजुट हैं इस बात को लेकर कि मैसेज दिया जाए कि उनकी जो मांगे हैं वो दरअसल एक ही है और सबको इन मांगों के बारे में जानकारी है। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, किसी भी तरीके से तुलना नहीं की जा सकती है, सबसे बड़ा आंदोलन अब तक का झारखंड जो देख रहा है छात्रों का, और जाहिर तौर पर किसी ना किसी वक्त हो सकता है कि छात्रों की जो संपूर्ण मांगे हैं वो मान ली जाए और सरकार भी बैकफुट पर दिखाई दे।
3: देखिए, चूंकि एक स्टेट पर फोकस है ये पूरा आंदोलन, तो इसका भी बहुत फर्क पड़ता है, इससे इंकार नहीं किया सकता है। और इसी यही वजह है कि जेपीएससी की कार्यशैली को लेकर जो बातें शुरू में हुई आंदोलन के शुरुआती दौर में, जेपीएससी को लेकर सरकार भी ये समझ गई कि यहाँ पर शायद वो समझा पाने में सफल ना हो छात्रों को, इसीलिए जो कार्रवाई हो रही है जांच एजेंसियों की तरफ से वो तो अलग से हो रही है। जो तीन अलग अलग सदस्य रहे उसके, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अंततः उसको भंग करना पड़ गया। लेकिन जो दूसरी नियुक्ति प्रक्रिया है, सबसे अधिक सवाल उसको लेकर के है, और वो सबसे बड़ी मास रिक्वायरमेंट पॉलिसी है। और देखिए, एक बार फिर से एक बार सहयोगी नदीम से कहेंगे दिखाएं, रह रह करके ये आवाज उठती है, ये हुंकार उठती है। तो ये जो लगातार छात्र हैं वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जो राज्य सरकार की तरफ से जो नियुक्ति प्रक्रिया होती है, चुनिंदा नियुक्ति प्रक्रिया है, तो यहाँ जो छात्र लड़ते हैं ना, उनके लिए ये मुद्दा उनका अपना मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि कोई बाहरी इसमें एंटर कर सकता है, और इसीलिए वो सचेत भी हैं, सचेष्ट भी हैं, वो इसके लिए फाइट करते हैं। और झारखंड में युवाओं के लिए रोजगार एक बड़ी समस्या रही। एक युवा है, यहाँ से कहाँ से आए आप, थोड़ा बताइए।
10: तो गिरिडीह कैसर रांची में ही रहते हैं, 8-10 से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी जेपीसी का जो मुद्दा है तो ये तो अभी खुला, लेकिन सीजीएल जो है, सीजीएल में भी नाम नहीं हुआ, ऐसा नहीं है उसमें भी, उसमें
3: सभी छात्र
10: सब हुआ है सर, वो तो खुद कोर्ट भी किया है, अभी अभी जो ज्वाइनिंग लेटर दिया सुप्रीम कोर्ट, उसमें कंडीशन डाला हुआ कि अगर कोर्ट होगा, अगर निष्पक्ष जांच होगी तो उसमें भी कैंसिल किया जा सकता।
3: सरकार के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, आपका नाम क्या हुआ?
10: मेरे सराफिन नाम हुआ।
3: सराफिन, सरकार के लिए कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसमें हम बहुत फैसला लेने की स्थिति में नहीं है, ऐसी भी बातें आ रही हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद वो
10: ये बताइए सर, यहाँ का जो भी है नियमावली से लेकर कोर्ट कर रही है, आप क्या कर रहे हैं? जितना भी है नियमावली हो चाहे वैकेंसी हो, जो भी आता है सब कोर्ट जाता है, चाहे हाईकोर्ट जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट।
3: आगे के लिए तो रिफॉर्म्स जरूरी है,
10: आगे के लिए चलिए हम लोग भी सेफ रहेंगे जो भी है कोर्ट से दे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? हर डिसीजन तो कोर्ट दे रहा, तो आपका क्या, आप सरकार क्यों आए?
3: कितने साल से आप प्रतियोगी परीक्षा
10: के? सर 2018 में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है हम, एमसीए किए हुए रांची में।
3: 2018 में ग्रेजुएशन किया आपने?
10: 2018 हुआ उसके साथ।
3: और अभी 2026 है, मतलब आप समझिए कि 8 साल में ये पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं, और नौकरी, रोजगार, घर में दबाव और कितनी समस्याएं होती हैं, कितनी चुनौतियां होती हैं, हर कोई इस दौर से गुजरता है। हर कोई इस दौर से गुजरता है और यही वजह है कि ये छात्र कह रहे हैं कि सीजीएल में जो गड़बड़ियां हुई हैं उन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, उन पे कोई हम बातचीत नहीं चाहते हैं, आपको उस परीक्षा को रद्द करना होगा, उस पर आप रिफॉर्म करिए। जो सरकार है वो अपने तर्क चाहे जो भी दे दे, लेकिन पेच यही फंसा हुआ है और सीबीआई जांच की मांग तो है ही। नेहा,
2: शशि भूषण, इसमें सवाल ये भी है कि क्या परीक्षा को रद्द करना अपने आप में एक सलूशन है या फिर इसे पूर्ण तरह रिफॉर्म करना ही सबसे बड़ा यहाँ पर सलूशन नजर आ रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में ऐसा ना हो ये भी सुनिश्चित करना होगा।
3: देखिए, सीजीएल जो है ना वो अभी सबसे बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ा पेंच वहाँ किस लिए है, क्योंकि कई छात्रों से मैंने बात की यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए, वो छात्र एक बात कहते हैं कि कोई छात्र खूंटी में एग्जाम दे रहा था सीजीएल परीक्षा के दौरान, कोई सिमडेगा में दे रहा था, किसी के साथ ऐसा हुआ कि पेपर का जो सील था वो पहले से खुला हुआ था, कई दूसरे तरह की जो ओएमआर अपडेट की जाती है उस ओएमआर की कार्बन कॉपी में उनको ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने की का कॉन्फिडेंस है उनके पास। कई छात्र हैं, एक और छात्र यहाँ पे जुड़े हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से, कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से
11: जो है हजारीबाग से आए हुए हैं और सीजीएल के बारे में सरकार कह रही है कि हम सीआईडी से फिर से जांच करवाएंगे। ये सीआईडी एक बार जांच का रिपोर्ट दे चुकी है कोर्ट में और उस समय जो है अपना जांच का रिपोर्ट जो है छुपा दिया गया, शुरुआत में जब उसका जज को सारा चेंज कर दिया गया, पूरा सिस्टम को चेंज कर दिया गया और ये फिर से कह रहा है कि उसी को देंगे जांच करने के लिए, तो हम लोग कैसे विश्वास करें कि वो फिर से सही रिपोर्ट देगा? इसमें गवर्नमेंट इसलिए फंस चुकी है कि वो जान चुका है कि सीआईडी एक बार गलत रिपोर्ट दे चुकी है,
3: इसलिए आप लोग सीबीआई जांच की,
11: इसलिए हम लोग सीबीआई की जांच की मांग करें, क्योंकि सीआईडी गलत रिपोर्ट पेश कर चुकी है और इस आधार पर कोर्ट ने फैसला दे दिया कि इसको ज्वाइनिंग करवा दीजिए। अब अगर फिर से अगर वो देगा तो फिर गलत ही रिपोर्ट देगा, क्योंकि उसमें सरकार फंस सकती है।
3: ये बहुत मार्के की बात है कि राज्य सरकार की एजेंसी को एक बार जांच का जिम्मा दिया गया जिस पर कुछ ऐसी विसंगतियां रही जिस पर छात्रों को भरोसा नहीं है। ये एक छात्र नहीं है, ऐसे असंख्य छात्र हैं जो इसी तरह की बात बोलते हैं, तो आप फिर उसी एजेंसी से जांच क्यों? कुछ इसीलिए सीबीआई से जांच की डिमांड हो रही है। जेपीएससी के मामले में
2: आप देख रहे हैं इसमें छात्रों को पीछे खदेड़ा जा रहा है, बल प्रयोग किया जा रहा है, वहीं एक दूरी भी बनाई जा रही है ताकि छात्र चोटिल ना हो। आप देख सकते हैं कि जो अंदर दाखिल हो गए थे छात्र इस बैरिकेड के, उनको दरअसल वहां से दूर किया जा रहा है। शशि भूषण, ये लाठीचार्ज का इस्तेमाल, बल प्रयोग, क्या कुछ छात्रों को चोटें भी आई हैं, क्या जानकारी मिल रही है?
3: देखिए, कुछ एक दो छात्रों को तो मैंने देखा कि वो दूर ले जाया गया, ऐसा चोटें भी आई हैं कुछ छात्रों को, अभी कुछ दो तीन छात्र मैं लाइव पे था तो जा रहे थे, ज्यादा चोट है या मतलब
12: नहीं नहीं, बहुत लोगों को सर पे मारा गया है, पूरा ब्लड आ रहा है सर से, उसको बांध के किसी तरह से गमछा से लेगा गया है।
3: मैंने देखा नहीं है इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ।
12: अभी भी आप देखोगे तो लगातार कुछ स्टूडेंट पे लाठीचार्ज करने की कोशिश,
3: वॉलंटियर्स आपके लगातार कह रहे हैं कि कूल रही है,
12: वॉलंटियर्स तो प्रयास कर रहे हैं, छात्र भी प्रयास कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से ये जो आंदोलन चल रहा है वो चलते रहे। अभी जैसा कि आप सोच के देखिए कि सीजीएल का मुद्दा से कैसे स्टूडेंट, मैं खुद सीजीएल का एग्जाम लिखा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा बोकारो में, मैं रांची रहता हूँ, चतरा जिला मेरा घर है, बोकारो में मेरा एक ऐसा गाँव में दे दिया एग्जाम, मैं खोजते खोजते 12 रात बज गया, 12 बजे रात से लेकर 4 बजे सुबह तक मैं बाहर दुकान के बाहर रहा हूँ, मैं रहने का वहाँ पे जगह नहीं मिला। सुबह जब एग्जाम लिख के आया वहां से, मैं बहुत खुश था, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था।
3: ये देखिए एक बार फिर से अपने सहयोगी नदीम सिंह के दिखाए, कुछ यहाँ से मैसेजिंग हो रही है जिसका उत्साह के साथ स्वागत भी कर रहे हैं छात्र, और एक लड़ाई संघर्ष जो यहाँ जमीन पे है, सड़क पे है, वो आगे कहाँ तक सफल होगा, ये एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। जी
2: दो तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, एक बल प्रयोग की जिसमें लाठी चार्ज किया गया है छात्रों को दूर करने के लिए, वहीं वाटर कैनन का इस्तेमाल जब से कुछ देर पहले किया गया, ये पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी वहां पर ताजा स्थिति क्या है इस पर जानकारी देंगे, लेकिन इस बीच ये देखना और समझना होगा कि आखिरकार क्या ये आंदोलन उग्र रूप लेता जा रहा है, क्योंकि सुबह से ये दावा किया जा रहा था छात्रों द्वारा कि हम शांतिपूर्ण मार्च करेंगे। ऐसे में पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है कि कैसे इन छात्रों को रोका जाए, और इसी वजह से वहां पर लाठीचार्ज किया गया, कुछ छात्रों को चोटें भी आई हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। शशिभूषण मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशिभूषण, क्या अब से कुछ ही देर बाद हम पुलिस का फुल थ्रॉटल यानी कि बल प्रयोग देख सकते हैं, क्योंकि अगर छात्र लगातार आगे की ओर मार्च करेंगे तो पुलिस के लिए भी तो एक चुनौती है कि इन्हें कैसे रोका जाए? ऐसे में बल प्रयोग एक ही रास्ता है।
3: देखिए, बल प्रयोग तो हुआ है और अब वो छात्र भी हमारे साथ जो घायल हुए हैं, थोड़ी इनको चोट आई है यहाँ पे, अब फर्स्ट एड के बाद ये आए हैं, इनको यहाँ पे चोट आई है। और आप लोग आगे थे, ऐसा क्या हुआ मतलब अचानक पुलिस ने लाठीबाजी?
13: देखिए, लाठीबाजी में नहीं हुई है, ये पहले हुई है, ये जो घटना जो चोट लगी है वो पहले हुई, जब भगदड़ हुई थी।
2: ठीक है, मैं रोकूंगी आपको। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रघुवर जी, क्या समाधान आपको इस समस्या का लगातार नजर आ रहा है, क्योंकि छात्र ये कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा, हम सब एकजुट हैं एक ही मिशन के साथ, एक ही मांग के साथ, और इस वक्त ये लग भी रहा है कि झारखंड का सबसे बड़ा आंदोलन के तौर पर सामने आ रहा है।
14: देखिए, झारखंड के छात्रों का बहुत दो तीन छोटी मांगे हैं, क्योंकि जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस आरजेडी गठबंधन की सरकार बनी है, तब से चाहे वो जेपीसी हो चाहे जेसीसी सीरियल का में अनियमितता भ्रष्टाचार विगत 6 वर्षों से चल रही है। तो ऐसी स्थिति में जब 17 दिनों से और हाल के आंदोलन में से झारखंड के आंदोलन को देखे तो बहुत शांतिप्रिय अनुशासित होकर हमारे झारखंड के छात्रों कर रहे हैं, कोई गाली गलौज नहीं, कोई फुहारपन नहीं। तो ऐसी स्थिति में झारखंड के छात्रों का दो ही डिमांड है, जो जेपीसी पीटी परीक्षा रद्द हो और जेपीसी के साथ साथ जेसीसी सीजीएल जो घोटाले हुए हैं, जो भ्रष्टाचार हुए हैं, पूरे मामले की सीबीआई की जांच हो।
2: रघुवर जी, आपके शासन के दौरान इस तरह की अनियमितताएं अगर हुई या फिर नहीं हुई तो उसकी बड़ी वजह क्या है? क्या सुनिश्चित किया आपने कि इस तरह की परीक्षाएं जो है उसमें धांधली ना हो और उसे रद्द ना किया जाए? कोई आंदोलन आपके प्रशासन के समय पर तो नहीं आया सामने?
14: जी, जब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनी तो हमने पारदर्शी ढंग से निष्पक्ष होकर एजेंसी अच्छी रखी और कैलेंडर बेस से एग्जाम हुआ और 1,33,000 सरकारी नौकरी हमने दी, जिसमें 52,000 टीचर, 2,600 दरोगा, 8,000 सिपाही, वन रक्षी, स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर, नर्सेज, अन्य विभाग में नियुक्ति, और कोई भी इसकी इंक्वायरी कर सकता। और उस 5 साल में कोई आंदोलन नहीं हुए और निष्पक्ष शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी अभी भी दरोगा थाने में है, स्कूल में टीचर है, कोई भी जाके जांच कर सकता है और कोई आरोप 5 साल नहीं लगा। तो एजेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है परीक्षा लेने वाला, लेकिन झारखंड सरकार ने जो एजेंसी रखी टीडीपीएल, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने बैन कर दिया था, और स्वयं झारखंड सरकार 2025 में जेसीसी सीजीएल परीक्षा उस टीडीएल को ब्लैकलिस्ट किया था, उसको फिर झारखंड सरकार ने जेपीसीसी ने उसको बहाल कर लिया। बहुत बड़ा स्कैंडल है ये, और इसीलिए छात्र 6 वर्ष से बहुत धैर्य रख करके अब राज्य सरकार सुधार करेगी, लेकिन दिन प्रतिदिन झारखंड के छात्रों के बच्चे बच्चियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहे, और इसीलिए आज छात्र जिन्होंने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए आज सड़क पर उतर कर जिस तरह आंदोलन कर रहे हैं। आज विधानसभा मार्च के दरमियान जो दमनकारी नीति झारखंड सरकार के द्वारा कटीले तार, पानी का फुहारा छोड़ना, लाठी चार्ज, तो मैं सरकार से मांग करता हूँ दमनकारी नीति ना अपनाकर और इसको प्रतिष्ठा का विषय ना मनाकर, क्योंकि वो ना कोई मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं ना मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, वो तो मात्र उनके साथ जो नियमावली में जो भर्ती निवाले घोटाले हुए उस पूरे मामले की सीबीआई की जांच हो।
2: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के। रघुवरदास जी, पूर्व सीएम झारखंड, जो बता रहे थे कि सरकार को जल्द से जल्द बातचीत की पहल करनी चाहिए। कल जो 6 घंटे की वार्ता हुई थी वो दरअसल बेनतीजा निकली। उसके बाद हमने आज ये लगभग आधा दिन बीत चुका है, ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन हम छात्रों का देख रहे हैं, जिसमें ये बल प्रयोग अब से कुछ ही देर पहले पुलिस बल द्वारा किया गया है, लाठीचार्ज किया गया है, जिसमें कुछ छात्रों को चोटें भी आई हैं। लेकिन इसके बावजूद छात्र अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। इसमें किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या फिर सीएम का इस्तीफे की मांग नहीं है। इसमें उनके जो परीक्षा पत्र हैं उनको लेकर रिफॉर्म्स किए जाएं और किस तरीके से आगे निष्पक्ष रूप से परीक्षा बिना धांधली के हो सके, ये तमाम मांगें शामिल हैं। और छात्रों का कहना है कि उनकी मांगों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है।
15: लीक हुआ है उस पर कुछ कदम उठाए जाएं, क्या कह रही है सरकार, क्यों नहीं सुन रही सरकार?
16: बात तो मैं ये कहूंगा कि 12-14-15 दिन से लड़के धरना पर उपवास पर बैठे हुए, अनशन पर बैठे हुए, सरकार बच्चों को सिर्फ इधर से उधर टहला रहे हैं। और यहाँ पेपर लीक का मामला नहीं है, यहाँ बच्चों की जॉब को बेचा गया है। JCC ने भी बेचा है, JPSC ने भी बेचा है। JCC ने आचार्यों की नियुक्ति को बेचा है। JCC ने CGL के परीक्षा में वहां गड़बड़ धांधली वहां किया है, वहां नौकरी को बेचा है। JCC ने एक्साइज विभाग के सिपाहियों की बहाली में गड़बड़ घोटाला किया है। JCC ने माध्यमिक PGT के शिक्षकों की नियुक्ति में घोटाला किया है। GPSC ने 11, 12, 13वां GPSC में भी गड़बड़ किया है, 14वां GPSC में भी गड़बड़ किया है। इसलिए छात्रों की यही मांग है कि उसको रद्द करे और पूरे मामले को CBI से जांच करावे। यही तो यहाँ के नौजवान मांग कर रहे, यहाँ के छात्र मांग कर रहे हैं और झारखंड की जनता यही मांग कर रही है। इसलिए यहाँ पेपर लीक का मामला नहीं है, यह मामला है नौकरी को सरकार ने बेचा है।
15: मरांडी साहब, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, आप और आपके साथी MLA भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए, लेकिन मुझे ये बताइए, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, आप एक पद पर हैं, ये जो सवाल बच्चे बाहर उठा रहे हैं, ये जो सवाल नौकरी बेचने का जो ये सवाल है, ये असेंबली में इस पर क्या डिस्कशन हो रहा है, सरकार से आप लोग क्या मांग कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप भी तो पोजिशन में है बच्चों की बात रखने की।
16: आंदोलन कर रहे हैं, आज तो हम लोग सीएम के आवास में गए थे मिलने के लिए कि भाई हमारी बात को सुने। सदन में वो कुछ भी नहीं सुनने को तैयार है और बच्चों को वर्षों से ठग रहे हैं। बार बार बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, कभी JCC का ऑफिस में डंडा खा रहे हैं बच्चे, कभी JPSC के दफ्तर में डंडा खा रहे हैं। तो आखिर बहस कब तक? इसलिए एक ही मांग है बच्चों की कि भाई आप इसको रद्द करें और CBI से जांच कराओ ताकि बच्चों को न्याय मिल सके।
15: जी, आप लोग आज हेमंत सोरेन के चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर गए थे, आपको भी डिटेन किया गया था कुछ देर के लिए, क्या लेकिन क्या चीफ मिनिस्टर ने आप लोगों से कुछ बातचीत की, क्या सरकार ने आप लोगों को कुछ कहा है कि क्या करने वाले हैं? वो
16: भी हम लोग डिटेन ही किए हुए, वहां से गिरफ्तार करके खेल गांव में ला करके बिठाए हुए हम लोगों को अंदर में।
15: जी,
16: हम लोग विधानसभा हम लोगों को नहीं जाने दिया, हम लोग तो विधानसभा जाने के पहले हम लोग समझ रहे थे कि 10 बजे चल करके हेमंत सोरेन से हम लोग मिल ले और उनको बतावे कि भाई हर धर्म ये छोड़िए, अब इसको जांच कराइए CBI से।
15: जी,
16: लेकिन हम लोगों को अंदर भी नहीं घुसने दिया, मिलने भी नहीं दिया, ना हेमंत सोरेन बाहर आए, बल्कि पुलिस फोर्स को भेजा और वहां से सबको उठा करके यहाँ ला करके रख दिया हम सभी विधायकों को।
15: तो आप ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन विधायकों को डिटेन करके डिटेन करके रखा हुआ है, बात भी नहीं कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर और सरकार का कोई भी आप लोगों से भी बात नहीं कर रहा है?
16: खेल गांव में रखे हुए हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो विधानसभा जाने दीजिए।
15: जी,
16: लेकिन कोई अधिकृत कोई अफसर है नहीं, जो यहाँ मजिस्ट्रेट डिपोर्ट है वो भी कह रहा है कि मेरा ऊपर बात ही नहीं हो पा रहा है।
15: जी, और मरांडी साहब एक बात बताइएगा, ये तो आज की बात है कि आप लोगों को डिटेन किया, बच्चे पिछले 14-15 दिनों से बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आप लोगों ने ये मुद्दा चीफ मिनिस्टर से कोई आपस में बातचीत करने की कोशिश की, किस कुछ उनका रिस्पांस रहा, क्या कहा उन्होंने?
16: सर्वदलीय मीटिंग में भी मैंने इस बात को रखा है, विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति में भी बैठक हुई, वहां भी मैंने कहा है कि भाई आप इसको रद्द करिए और CBI से जांच कराइए इस मामले को, हमने सब जगह रखा इस बात को।
15: जी, और मरांडी साहब एक बात बताइए, आप बीजेपी के नेता हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जब सीबीआई इंक्वायरी का सवाल उठता है, क्या आपने सेंटर में किस बात करने की कोशिश की कि भाई हमारे स्टेट में क्या हो रहा है, ये सीबीआई देखे, कोई एफआईआर जो है उसके बारे में कुछ बात की गई? कोई
16: नहीं जांच के लिए दे सकते जब तक राज्य सरकार अथवा हाईकोर्ट जब तक परमिशन नहीं देती है तब तक सीबीआई जांच नहीं कर सकती है, ये तो आप सब लोगों को पता ही है नियम। तो इसलिए केंद्र से इसमें कोई, केंद्र के हमारे सारे नेता को पता है झारखंड की क्या परेशानी है, क्या परिस्थिति है, लेकिन झारखंड की तो झारखंड की जनता और यहाँ के नौजवान ही उसको हल करेंगे, यहाँ की सरकार हल करेगी। यहाँ की सरकार यही तो मांग हो रही है कि आप सीबीआई जांच के लिए आप इसको रेफर कर दीजिए, सीबीआई जांच करेगा, अदालत में निगरानी में जांच करेगी, तब फिर मामला सब ठीक हो जाएगा।
15: जी बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल मरांडी हमसे बात करने के लिए।
2: आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष देखिए, हमने यहाँ इंडिया टुडे ग्रुप ने बातचीत की दो ऐसे नेताओं से जिनका यही कहना है और यही मानना है कि छात्रों की मांग मानने में दिक्कत क्या है। वो किसी का इस्तीफा तो नहीं मांग रहे हैं, ये तो नहीं कह रहे हैं कि हम पूरे उसको बॉयकॉट कर देंगे सिस्टम को और हमारा प्रदर्शन उग्र हो जाएगा अगर मांगे नहीं। एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था कई मायनों में, आप भी बता रहे हैं सुबह से कि दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन से अलग है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतनी देरी क्यों हो रही है किसी डेलीगेशन

0: दिन है हम उन्हें जन्मदिन पर तोहफा देंगे, और उस तोहफे के लिए देखे भीड़ यहाँ पर पहुंच गई है। अब ये है कि बेहद शांतिपूर्ण तो है लेकिन शोर शराबा हंगामा जरूर है। हालांकि पुलिस की ओर से भी कोशिश की गई है कि वो सख्ती ना अपनाएं, और इसीलिए आप देखिए कि इन जगहों पर जाने के लिए हमें जहां से आना पड़ा है ये अपने आप में बहुत मुश्किलें हो गई हैं पुलिस और प्रशासन के लिए इसको ये नियंत्रित करना कि आखिर इन छात्रों को कैसे संभाला जाए। और उसी के बाद जब ये आगे निकले हैं आप देखिए कि मैं जब यहां खड़ा था तो पुलिस ये भी कोशिश कर दी कि जब वाटर कैनन चला तो क्या आंसू गैस के कोले छोड़ जाएं। प्रदर्शनकारी दौड़े, पुलिस वालों को पकड़ लिया उन्होंने, उन्हें रोक दिया। अब ये आखिरी बैरिकेड है, इसके बाद तो सीधा विधानसभा में पहुंच जाएंगे। अब छात्र नेता, आपको मैं बैरिकेड की तस्वीर दिखा रहा हूं, जो वहां पहुंचे हैं वो अपील कर रहे हैं कि आप यहां अनुशासन बनाए रखें, इससे आगे नहीं जाना है। पुलिस ने इसके पहले हल्का बल प्रयोग किया था लेकिन लाठीचार्ज नहीं थी, उन्होंने कुछ पीछे करने की कोशिश की, और अभी भी बातचीत चल रही है कि क्या यहां खत्म किया जाए। अब आपका जो सवाल है कि आखिर ये जो बातचीत है रास्ता कैसे निकलेगा, एक ही मांग है, JSSC CGL की जो परीक्षाएं जो 2000 भर्तियां निकली थी उनमें जो नियुक्ति हुई है वो रद्द हो, दोबारा परीक्षा हो। अब उसके लिए सरकार कह रही है कि ये हमारे कानूनी प्रावधान से बाहर है, इसके लिए चूंकि अदालत के आदेश और सरकार के प्रेरोगेटिव से बाहर है। लेकिन सरकार तो सरकार होती है, क्या ऐसा नहीं हुआ इतिहास में कि फैसलों को बदलने के लिए सरकार अध्यादेश या विधानसभा के जरिए कानून लेकर के आती है? बिल्कुल इसकी मिसाल है, और अगर ऐसी मिसालें हैं तो सरकार उसका इस्तेमाल कर सकती है। बातचीत का रास्ता तो अभी भी खुला है, ये जो आप द्वार देख रही है ना जो ब्लॉक किया हुआ है, ये वो रास्ता है जहां से तमाम मंत्री संतरी विधायक विपक्ष के नेता सबको यहीं से जाना है। जब तक ये नहीं हटेंगे ना तो कोई अंदर जा सकता है विधानसभा में, कोई बाहर आ सकता है। और अगर ऐसा हो गया कि ये प्रदर्शन का यही एक बड़ा एपी सेंटर बन जाता है तो आप समझिए सरकार को विवश होना पड़ेगा, और वह विवशता दिखाई दी लोकतंत्र में जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था। देखिए यहाँ से छात्रों का जमावड़ा, पहले तो लगा था कि ये 150-500 हजार होंगे, लेकिन आप देख लीजिए, गिन लीजिए इनकी संख्या, ये अपने आप बहुत मुश्किलें हो रही हैं। और ये छात्रों का प्रदर्शन देखिए, हमें दरअसल इन तस्वीरों के लिए ऊपर आना पड़ा, इस बस के हिस्से पर आना पड़ा था, और जैसे इस बस ने यहाँ मूव करना शुरू की छात्रों ने इसे भी रोक दिया। अब उन्होंने ये ठान लिया कि यहाँ से हटने वाले नहीं है जब तक कि बातचीत नहीं होता। मैं तो यहाँ पर पहुंचे, जो कोर कमेटी है छात्रों की, देखिए वो भी फिर बैरिकेड पर खड़े हैं, और पुलिस भी वहाँ, एक पुलिस के अधिकारी हैं वो भी लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन इतने शोर में कौन बातचीत सुन रहा है। यहाँ पर थोड़ी देर पहले राष्ट्रगान भी किया गया, राष्ट्रगान के बाद ये छात्र जो है अब वो टिके हुए हैं कि हम यहाँ से नहीं जाने वाले, पीछे पुलिस है उनके साथ, उनके जो रिजर्व बटालियन वो भी है, लेकिन अब कोई सख्ती जो है पुलिस अगर करना भी चाहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि छात्रों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है, उनका जमावड़ा काफी ज्यादा बढ़ गया है, और अब ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्था के सामने ये चुनौती है कि इससे आखिर पार पाए तो कैसे पाए। अब इसीलिए ये देखा जा रहा है कि क्या कोई रास्ता निकलेगा बातचीत का, उसकी संभावना कम है क्योंकि बातचीत है सरकार के पास है, उन्हें ये सुनिश्चित करना है कि जो छात्रों ने मांगी है क्या उस पर सरकार कोई घोषणा करने जा रही है। अगर वो घोषणा करने के लिए इच्छा शक्ति दिखाते हैं, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हैं कि हाँ हम विधानसभा में कानूनी रास्ता कोई लेंगे, अदालत का रुख अपनाएंगे, ऐसा अगर कोई आश्वासन मिलता है तो आप समझिए कि इन छात्रों तक संदेश जाएगा, और उसके बाद बहुत मुमकिन है कि वो आंदोलन जो है खत्म किया जा सके।
1: ठीक है, तस्वीरें एक बार फिर से दिखाते हैं। छात्र दरअसल शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं सुबह से ही, लेकिन इस बात को लेकर उनमें आक्रोश है कि क्यों सरकार उनकी मांगें नहीं मान रही है या फिर बातचीत नहीं कर रही है। कल की बातचीत विफल हो चुकी है, उसके बावजूद अभी तक सरकार की ओर से कोई पहल नहीं आई है कि वो बातचीत एक बार फिर करना चाहते हैं। तो ये छात्र अडिग हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम ये प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमारी मांगों को मान नहीं लिया जाता है पूर्णतः। तो ये आर पार की लड़ाई अब भी जारी है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आज ही लोकसभा में छात्र आंदोलन पर अमित शाह बयान देंगे, जिसकी मांग लंबे वक्त से विपक्ष द्वारा की जा रही थी, आज वो बात होगी क्योंकि अमित शाह बयान देंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में बोलेंगे छात्र आंदोलन पर। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, लेकिन सबसे स्पेसिफिक मांग जो विपक्ष की थी वो ये थी कि पैलेट गन पर बयान आए गृह मंत्री का, तो पैलेट गन भी इस बयान में शामिल होगा या फिर झारखंड आंदोलन और जंतर मंतर की ही बात होगी?
2: देखिए, पीएससी जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसने ये तय किया है कि छात्र आंदोलन पर जो है चर्चा की जा सकती है, लेकिन विपक्ष अब ये कह रहा है कि छात्र आंदोलन के साथ साथ जो है वो चंदा चोरी पर भी चर्चा और गृह मंत्री जो है वो जवाब दे। अब विपक्ष इस चीज को लेकर पूरी तरीके से अड़ा हुआ है। सरकार का कहना है कि जो दो मांगे थे उनमें से एक मांग जो है वो मांग ली गई है आपकी। अब विपक्ष का कहना है नहीं, दोनों ही चीजों पे चर्चा होनी चाहिए। सरकार का ये कहना है कि हमारे पास कई ऐसे विधायी कार्य है जिनको पास करना है, क्योंकि 13 तारीख को जो है संसद के मानसून सत्र का अंतिम दिन है, तो ऐसे में सरकार के सामने कई

0: महत्वपूर्ण बिल है, सरकारी कहिए एक विषय पे चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष नहीं मान रहा। विपक्ष इस चीज को लेकर अड़ा हुआ है कि न सिर्फ छात्र आंदोलन पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ उस पर, और साथ ही साथ जो है राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले पर भी चर्चा हो। अब देखना यह है कि क्या विपक्ष और सरकार के बीच में कोई सहमति बनती है, लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष में एक तरीके से जो फूट डालने का काम है वो सरकार के द्वारा कर दिया गया है।
1: ठीक है, आपको ये साफ कर दें कि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दिल्ली का जो छात्र आंदोलन है उस पर गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा में बयान देंगे, और इसके साथ ही राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर भी बयान दिया जा सकता है। वक्त ब्रेक का चला, टिकते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: आगे आगे
5: करेक्ट
6: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Honey, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील टीएमटी से बना.
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड.
4: पापा.
5: सॉरी यार, गलती हो गई है. ये चोट खर्चा वर्चा.
6: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा.
5: छक्का
6: सब कैशलेस हो गया
5: है. ओला ला भाई मेरा बैट.
7: वो अभी तो ठीक हुआ. तू
8: बिलोटे चार्ज हुआ यार.
9: ओला बैट किसका है?
10: टाटा AIG है तो भरोसा है.
11: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने.
12: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ.
13: सोच बदलो और बैंक भी.
14: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
15: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
14: Vimal, bolo zubaan kesri. Hint, bade aaram se.
16: Wait, lifestyle ke liye 10 alag pages kyun follow karna? Health, fitness, yoga, mental wellness, sab kuch ek hi jagah. Fit Tak. Simple tips, expert insights, real conversations. Life upgrade karo easy way. Watch only on Fit Tak YouTube.

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: AU savings account mein milte hai amazing benefits, paperless banking and higher interest. Wo bhi har mahine.
3: Money, money, money, money, every month.
4: Soch batlo aur bank bhi.
0: In association with
5: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
6: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबां केसरी हिंद बड़े आराम से.
7: राजनीतिक दलों के लिए एक रास्ता बनता है जहां युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने का. मैं विशेष रूप से नौजवानों से कहूंगा, न हमारी राजनीतिक छत्र छाया की आपको आवश्यकता है, न किसी और राजनीतिक दलों की छत्र छाया की आपको आवश्यकता है. आप छात्र हैं, आपका अधिकार है, और आपका अधिकार आपको मिले, आपको न्याय मिले, ये काम करने की जिम्मेवारी सरकार की है जो पूरा होगा.
8: हमारे बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं, अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसके बारे में कुछ विस्तार से बताया. मेरा आग्रह है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा है उस पर भरोसा करें, और हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते. आप बात करके इसका समाधान करें, और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित हैं इसके लिए, और वो लगातार हमसे बात कर रहे हैं कि बच्चों की समस्याओं को कैसे समाधान किया जाए. तो मेरा आप सभी बच्चों से आग्रह है कि बजाय लड़ाई इसके स्थान पर हमसे जब भी मिलेंगे आपको एक पॉजिटिव सकारात्मक रिस्पांस मिलेगा.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी चौधरी।
1: कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक वीरों से मिले मोदी, चैंपियंस से सुनी संघर्ष की कहानी, बढ़ाया हौसला। ये मुलाकात खास थी, ये मुलाकात थी उन चेहरों के साथ जिन्होंने सालों की मेहनत के बाद देश का मान बढ़ाया था। कॉमनवेल्थ गेम्स में तिरंगे की शान बढ़ाने वाले पदक वीरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और चैंपियंस के साथ चाय पर खूब चर्चा हुई।
2: भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
1: जूडो से वेटलिफ्टिंग और बॉक्सिंग से लेकर एथलेटिक्स तक हर विजेता ने सुनाई पोडियम तक पहुंचने की कहानी। इस दौरान हौसला बढ़ाने वाली गंभीर बातें भी हुई तो हल्के फुल्के लम्हे भी दिखाई दिए। खिलाड़ी पहले से ही पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए काफी उत्साहित थे। इस बार ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 39 मेडल अपने नाम किए, जिनमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे। इस प्रदर्शन के साथ भारत मेडल टैली में चौथे पायदान पर रहा। अगले कॉमनवेल्थ गेम्स उस शहर में होने हैं जो अरसे तक पीएम नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि रहा है। अब 2030 में भारत का दोहरा इम्तिहान अहमदाबाद में होगा, शानदार मेजबानी करने का और ढेरों मेडल जीतकर तिरंगे की शान एक बार फिर बढ़ाने का। आज तक ब्यूरो।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

झारखंड विधानसभा की ओर बड़े हजारों आंदोलनकारी छात्र रास्ते में, सैकड़ों पुलिसकर्मी, कटीले तार और वाटर कैनन भी, पुलिस का लाठी चार्ज। किले में तब्दील, रांची में सियासी पारा गर्म, सीएम सोरेन के घर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जबरदस्त प्रदर्शन, बसों में भरकर ले गई पुलिस, परीक्षा धांधली में ईडी ने शुरू की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच। छात्रों के मुद्दे पर संसद में बयान देंगे गृह मंत्री अमित शाह, लंबे गतिरोध के बाद शाह के बयान पर बनी सहमति, स्पीकर ओम बिरला से मिले थे अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी। परिसीमन और एफसीआरए पर तनातनी के बीच महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासत में नई हलचल, पीएम मोदी से मिले शरद पवार गुट के सभी 8 सांसद। कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक वीरों से मिले प्रधानमंत्री मोदी, खिलाड़ियों से सुनी उनके संघर्ष और सफलता की कहानियां, कहा जो खेलेगा वही खेलेगा।

0: चौधरी और आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा।
1: सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और स्टेपनी नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूँ कांग्रेस पार्टी और इनको के गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। मैंने पिछले एडवाइजरी में भी सर सार्वजनिक वहां सबके सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है।
2: माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने, आप लोग जो लगातार मांग कर रहे थे, आप लगातार मांग कर, अखिलेश यादव जी सुन लीजिए, अखिलेश जी सुन लीजिए, इधर सभी शांत पूर्वक बैठे हुए हैं, आप सुन लीजिए। अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि माननीय गृह मंत्री जी इस सदन में चर्चा का उत्तर देने के लिए तैयार हैं, तो कृपया मैं अनुरोध करूंगा, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया सदन को व्यवस्थित करें, सदन की कार्रवाई को चलाने दें। प्लीज काइंडली, मैं सभी, टैगोर मलक्कम साहब, यू आर ए चीफ विप ऑफ द पार्टी, अगर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ही हैज एक्सप्रेस हिज फीलिंग कि नाउ होम मिनिस्टर इज रेडी टू रिप्लाई ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, लेकिन अब कौन हाउस को व्यवस्थित करिए। अखिलेश जी इधर से व्यवस्थित है, चाहे संजय जायसवाल जी हों, निशिकांत जी हों, एक बार सभी पूरा सत्ता पक्ष बैठा है। अगर अगर गृह मंत्री जी के लिए संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है कि वो चर्चा का उत्तर देने के लिए तैयार हैं, देखिए आप अखिलेश जी, मैं समाजवादी पार्टी कांग्रेस डीएमके सभी मेंबर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आई थिंक सो दिस इज द लास्ट वीक ऑफ द मानसून सेशन, इन लास्ट थ्री वीक द इंटायर मानसून सेशन वॉज वॉश आउट, हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज अकाउंटेबल, यू हैव बीन इलेक्टेड, यू हैव बीन इलेक्टेड, यू आर फॉर्चुनेट लकी कि ओनली जस्ट टू बियर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर इलेक्टोरल कॉलेज, बट हियर यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट, इवन यू आर डिमांडिंग दैट होम मिनिस्टर शुड रिप्लाई। अब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कह दिया है, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने कह दिया, तो अगर आप जवाब चाहते हैं तो सदन को व्यवस्थित करें। आप सदन में चाहते हैं कि माननीय गृह मंत्री जी जवाब दें, तो सदन को व्यवस्थित करिए। माननीय गृह मंत्री जी का जो आप मांग रहे थे कि माननीय गृह मंत्री जी सदन में हमको जवाब दें, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया कि हम गृह मंत्री जी जवाब देने के लिए तैयार हैं और गृह मंत्री जी चाहते हैं कि चर्चा हो, तो आप सदन को व्यवस्थित करें। आइटम नंबर 20, ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल 2026, ऑनरेबल मिनिस्टर,
3: ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, विथ योर काइंड परमिशन आई वांट टू मूव दैट द बिल टू इंप्रूव द एफिशिएंसी,
2: मेरी रिक्वेस्ट है
3: योर इंडिपेंडेंट,
2: नीचे करिए
3: ट्रांसपेरेंसी,
2: ये डिस्प्ले इस तरह से प्ले कार्ड डिस्प्ले करना,
3: क्वालिफिकेशन
2: ये इस तरह से प्ले कार्ड डिस्प्ले, ये न नियम परमिट करता है न चेयर करता है। अगर आप इस तरह से प्ले कार्ड डिस्प्ले करेंगे
3: सर,
2: बिल्कुल नहीं ठीक
3: सर।
2: माननीय मंत्री जी
3: सर, विथ योर काइंड परमिशन आई वांट टू मूव दैट द बिल टू इंप्रूव द एफिशिएंसी, एंश्योर इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी।
0: देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोकसभा की तस्वीरें, जिसमें खासतौर पर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा कि गृह मंत्री छात्रों को लेकर अपना जवाब देंगे और सरकार इस पर चर्चा करने के लिए जवाब देने के लिए तैयार है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आज गृह मंत्री न सिर्फ छात्रों के मुद्दे पर, कई महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर भी अपना स्टेटमेंट, अपना बयान दे सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु का रुख करते हैं। हिमांशु, देखिए लगातार विपक्ष की यही मांग थी जिसको लेकर तकरार था कि गृह मंत्री सदन में आए, खासतौर पर वो जवाब दे, लेकिन आज साफ कर दिया गया है, किरण रिजिजू ने, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा है कि गृह मंत्री आएंगे भी और जवाब भी देंगे।
4: देखिए बिल्कुल किरण रिजिजू ने साफ कर दिया है कि गृह मंत्री जो है छात्र आंदोलन पर चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री की तरफ से जो है वो जवाब दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष जो है अब बटा बटा सा नजर आ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि विपक्ष ये भी चाहता है कि राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर जो है चर्चा हो, लेकिन विपक्ष के कई ऐसे दल है जो चाहते हैं कि छात्र आंदोलन पर जो है वो चर्चा हो जाए। बीएसई में यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर भी यही सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकार जो है वो चर्चा के लिए तैयार है, आप आइए चर्चा होगी और गृह मंत्री जो है वो इस पर जवाब देंगे। विपक्ष इस चीज को लेकर, कई विपक्षी दल इस चीज को लेकर अड़े। सरकार विपक्ष की दो मांगे थी, एक जो है छात्र आंदोलन पर चर्चा हो और उसका जवाब जो है गृह मंत्री दे, और दूसरा राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले पर जो है चर्चा हो और उससे कंसर्न मिनिस्टर जो है वो जवाब दे। अब देखना ये है कि विपक्ष क्या इस मामले पे तैयार होता है। जो अभी तक का रुख है विपक्ष का वो तैयार नहीं है, लेकिन कई विपक्षी दल जो है ये चाहते हैं कि छात्र आंदोलन पर जो है वो चर्चा हो जाए और गृह मंत्री का जो है वो जवाब इस चर्चा पर आए। लेकिन सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि दो जो चर्चाएं वो नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार के पास कई विधायी कार्य हैं और ऐसे में कम समय है और सरकार चर्चा भी चाहती है और अपने विधायी कार्यों को जो है वो पास भी करवाना चाहती है संसद के दोनों सदनों से।
0: बिल्कुल हिमांशु, कहा जा रहा था कि आज लोकसभा के अंदर खासतौर पर गृह मंत्री दो बिल पेश भी करने वाले हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण चीज है, और खासतौर पर आज प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की मुलाकात स्पीकर से भी हुई थी ओम बिरला से, क्या इसको लेकर भी कुछ निकला है कि आखिरकार बातचीत में क्या कुछ बातें रखी गई थी प्रियंका गांधी की तरफ से या अखिलेश यादव की तरफ से?
4: देखिए अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी दोनों ही ने मुलाकात की स्पीकर से और एक बैक चैनल बातचीत जो है सरकार शुरू करती है। जब प्रियंका गांधी मिलने भी पहुंची थी और अखिलेश यादव से मुलाकात चल रही थी तब भी किरण रिजिजू जो है वो वहां पहुंचे और वो चाहते थे कि विपक्ष इस चीज की मांग छोड़ दे कि चर्चा ना हो, और साथ ही साथ जो है इसके अंदर सरकार के जो बिल हैं उन पर विपक्ष चर्चा करे और उन बिलों को दोनों ही सदनों से पास कराने के लिए जो है वो समर्थन दे या उसको विरोध कर सकता है। लेकिन विपक्ष इस चीज को लेकर पूरी तरीके से अड़ा रहा कि हम चर्चा चाहते हैं और इसी चीज को लेकर विपक्ष की इस मांग को लेकर बीएसई यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया कि हम छात्र आंदोलन पर चर्चा के लिए तैयार है जिसपे गृह मंत्री जवाब देंगे, लेकिन राम मंदिर में चंदा चोरी जो है उस पर चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि सरकार के पास कई विधायी कार्य है। तो ऐसे में प्रियंका गांधी और जो अखिलेश यादव के साथ स्पीकर की मुलाकात हुई है उससे बहुत ज्यादा फायदा जो है वो सरकार को नहीं हुआ।
0: बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, आप बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि हम आपको एक बार फिर से अपने दर्शकों को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की वो स्टेटमेंट सुना देते हैं जो उन्होंने लोकसभा में अभी थोड़ी देर पहले दी है।
5: कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूं, सरकार छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको के गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, सुनना पड़ेगा। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सर सार्वजनिक वहां सबके सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है।
0: और किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे जो साफ तौर पर कह रहे थे कि गृह मंत्री तैयार है और जल्द ही हम आपको इस बड़ी खबर पर भी एक बार फिर से पार्लियामेंट लेके चलेंगे जहां पर गृह मंत्री थोड़ी देर में ही अपना स्टेटमेंट अपना वक्तव्य रखेंगे। लेकिन अब छात्रों से जुड़ी एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें जो रांची से आ रही है। रांची में इस वक्त जबरदस्त टेंशन है, छात्रों और झारखंड पुलिस के बीच तनातनी जोरों पर है। विधानसभा के बाहर सैकड़ों छात्र डटे हुए हैं, छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुआ है, पानी की बौछारें भी की गई, कुछ छात्रों के विधानसभा परिसर में खुसने की खबरें भी मिल रही है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये तीन तस्वीरें हम अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और छात्रों के प्रदर्शन कैसे लगातार वो छह बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा के बेहद करीब पहुंच गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा भी लगातार ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। आशुतोष, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कहा जा रहा है कि विधानसभा की छह लेयर ऑफ बैरिकेडिंग तोड़कर वहां पर छात्र पहुंच गए। इस समय वहां का क्या नजारा है, अगर आप हमारे दर्शकों को दिखाएं बताएं कि अभी छात्रों का रुख क्या है खासतौर पर इस प्रदर्शन को लेकर।
6: लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं, फिलहाल 2:10 हो रहे हैं, लगभग 2:15 का समय हो चला है।
7: कई दर्जन छात्र तो विधानसभा के पास भी पहुंच गए थे। एक आखिरी बैरिकेडिंग जहां मैं हूं, दरअसल इस बस पर बैठना पड़ा ताकि मैं ऊंचाई से आपको ये तस्वीरें दिखा सकूं। ये सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों छात्रों का जमावड़ा है जिस बैरिकेड पर डेडलॉक बना हुआ है। यहां पर सुरक्षा बल मतलब झारखंड पुलिस जो है उसकी आम पुलिस है और उसी के साथ छात्र डटे हुए हैं। छात्रों का जो गुट है उनके जो वॉलंटियर थे वो समझा रहे हैं कि अभी हमें उग्र नहीं होना है, आक्रामकता नहीं दिखानी है, लेकिन वो इस बात पर डटे हैं कि विधानसभा तो जाना है और तब तक जाना, ये मार्च तब तक होगा जब तक उनकी आखिरी मांग JSSC ACGL जो है वो रद्द नहीं हो जाती, सरकार उसका ऐलान नहीं कर देती। और ऐसे की उम्मीद अब दखती नहीं क्योंकि बातचीत का दौर तो खत्म हो गया और जब वो इनकंक्लूसिव रही, उनकी आखिरी मांग पर सरकार सहमत नहीं हुई, तब छात्रों ने मार्च शुरू किया। और ऐसा प्रदर्शन मार्च संभवतः किसी ने, ये सिर्फ जेन जी ही कर सकती है। वाटर कैनन चला रहे थे, उसमें डांस कर रहे थे, वाटर कैनन खत्म हो गए, फायर टेंडर खत्म हो गए, यहाँ तक कि कुछ पुलिसकर्मियों ने उसके बाद टियर शेल चलाने की कोशिश की। छात्रों ने उन्हें पकड़ लिया कि आप किस पर चला रहे हैं, उन्होंने टियर शेल हटा लिए। उसके बाद अब इस डेडलॉक पर है और ऐसा भी नहीं कि छात्र यहाँ पर बिल्कुल आक्रोशित है कि वो चले ही जाना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे तो तस्वीरों के पीछे भी आपको सैकड़ों छात्र खड़े हैं, वो पहुंच गए हैं लेकिन वहां से आगे वो नहीं जा रहे जब तक कि बाकी नहीं जाएंगे। कुल मिलाकर एक कि अभी भी सरकार के पास समय है कि वो एक आश्वासन ये घोषणा दे दे कि JSSC SGL की परीक्षा अगर रद्द हो जाती है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ राष्ट्रगान किया गया, ये हाथों में संविधान की किताबें और तिरंगा लेकर के छात्र यहीं पर खड़े हैं। कन्फ्रंटेशन नहीं है लेकिन डेडलॉक बना हुआ है और डेडलॉक तभी खत्म होगा जब इन छात्रों की मांग पूरी होगी। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि ये जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। उमस भरी गर्मी, अब तेज बरसात और इन सब के बीच छात्र यहाँ पर आज 17वें दिन विधानसभा मार्च करने के लिए इस पूरी सड़क पर डटे हुए हैं। सुमित,
0: बिल्कुल 17 दिन से लगातार आप भी वहां पर रिपोर्ट कर रहे हैं आशुतोष, और आपने जंतर मंतर से भी रिपोर्ट की थी, छात्रों का आंदोलन दिखाया था, प्रदर्शन दिखाया था और अभी आप रांची पे भी मौजूद है। क्या कुछ फर्क आपको नजर आता है जंतर मंतर में और रांची के इस प्रोटेस्ट में?
7: बहुत फर्क, मतलब मैंने इस तरह देखा कि ऐसा लगा जैसे प्रशासन एक अनसेट तरीके से सपोर्ट कर रहा है। मसलन आज मैं अगर कहूं तो मेरी नजर में वो जो पुलिस अधिकारी दिख रहे वो संभवतः आज के इस प्रोटेस्ट के हीरो हैं। यही छात्रों को रोक रहे हैं तो छात्र उन्हें कंधे पर भी उठा रहे हैं, वो आगे नहीं जाने देना चाहते, वो रुक जाते हैं। जहां विरोध क्लैश होता है एक धक्का मुक्की होती है लेकिन सब कुछ एक फ्रेंडली फाइट की तरह है। वाटर कैनन भी चलाया गया, मैं वाटर कैनन की ताकत को जानता हूं, जिस तरह से चलाया गया अगर फुल थ्रॉटल में होता तो स्टूडेंट्स को पीछे हटना पड़ता, तो ऐसा लग रहा था मानो रेन डांस हो रहा हो। और इस प्रदर्शन में देखिए जब जंतर मंतर पर आगे चली तो पुलिस ने जिस तरह से एक्शन लिया था, झारखंड में वो एक्शन बिल्कुल अलग है। यहाँ पुलिस ने शुरू से, उनके अधिकारी कह रहे थे कि बल प्रयोग नहीं होगा, यहाँ तक कि जो लाठी चार्ज भी थोड़ी देर पहले हुई थी वो लाठी चार्ज भी इस तरह सिंबॉलिक थी कि छात्र पीछे। देखिए अब एक और थोड़ी देर में बैरिकेड का एक एक हिस्सा छात्र दरअसल धीरे धीरे उठा के ला रहे, अगले कुछ सेकंड में आपको तस्वीरें दिखेंगी जो बैरिकेड का एक एक हिस्सा उठा के ला रहे हैं। मतलब छात्र, ये देखिए ये आ गया बैरिकेड का एक और हिस्सा, अब इसके बाद वो रास्ता खुल चुका है, वो अगर चाहे तो धक्का देकर के चले जाएंगे। पुलिस की संख्या 2000 है, छात्रों की संख्या 20,000, पुलिस और जो सुरक्षा बल है वो इनके आगे बिल्कुल बेबस लाचार हैं। लेकिन अभी भी वो आगे नहीं जा रहे, उनके वॉलंटियर्स लगातार नियंत्रण में हैं, पुलिस सुरक्षा बल वहां तैनात हैं, लेकिन बातचीत के रास्ते समाधान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस दरअसल ये चाहती है कि छात्र यहां से लौट जाएं और अगर नहीं आगे जाएं तो कम से कम, क्योंकि प्रोटोकॉल है, विधानसभा एक संवेदनशील इलाका है, वहां वो छात्रों को नहीं जाने देना चाहते, तो वॉलंटियर्स भी मदद कर रहे हैं कि आप यहीं बैठ जाइए, यहां पर कोई धक्का मुक्की नहीं होगी, कोई पत्थरबाजी नहीं होगी, पुलिस की सख्ती नहीं होगी। तो एक आंदोलन में जो शालीनता अनुशासन पिछले 16 दिनों से छात्रों ने बनाया था वो दिख रहा है। उन्होंने ये नियम तय किए थे कि कोई पुलिस से बहस नहीं करेगा, धक्का मुक्की नहीं करेगा, हाथ नहीं उठाएगा, और उसी अनुशासन की वजह से मैं ये देख रहा हूं कि आज ये प्रदर्शनकारी 17वें दिन जब यहां पहुंचे हैं वो विधानसभा के 100 मीटर के दरवाजे पर खड़े हैं, इंतजार में कि सरकार उनके सवालों का जवाब सकारात्मक तरीके से लाए ताकि वो फिर घर लौट जाएं। और अगर ऐसा नहीं होता तो ईश्वर ही जानता है कि आगे ये धरना कहीं ये एक बड़ा केंद्र ना बन जाए जबकि विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है।
0: बिल्कुल आशुतोष, एक बात बताइए क्योंकि लगातार आप वहां पे, क्योंकि जो छात्र नेता है उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि देखिए किसी तरीके का हिंसक प्रदर्शन नहीं होगा, और शायद लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आप प्रदर्शन करें, आंदोलन करें लेकिन हिंसक ना हो। लेकिन अभी क्या सरकार की तरफ से कोई जवाब आया, क्योंकि 3 राउंड की बातचीत तो हमने देखा निष्कर्ष निकली, कोई डेडलॉक एक क्रिएट हो गया, क्या सरकार की तरफ से कोई जवाब, कोई आधिकारिक मैसेज छात्रों के पास आया 3 राउंड की बैठक के बाद?
7: आया, हेमंत सोरेन ने भी बयान जारी करके कहा कि छात्रों को आंदोलन, सरकार उनकी मांगों को लेकर के मान रही है, मंत्रिमंडल का जो एक डेलीगेशन बनाया गया था मंत्रियों का 4 कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन सारी मुद्दे मानने के बाद यहाँ तक कि छात्र सीबीआई जांच को लेकर के भी सरकार के साथ एक बार कुछ कहते ना समझौते को तैयार थे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है सीजीएल। सीजीएल पर पेच फंसा है, सरकार कह रही है हमारे हक में नहीं है, हमारे बस में नहीं है। छात्र कह रहे हैं अगर आपके बस में नहीं है तो हमारे हक में नहीं है, और इसीलिए सांकेतिक रूप से इन्होंने विधानसभा घेराव करने का संदेश दिया था, इसलिए कि विधानसभा से बड़ी कोई ताकत राज्य में नहीं हो सकती। सरकार चाहे तो किसी भी आदेश को विधानसभा के जरिए कानून या अध्यादेश ला करके पलट सकती है, और अगर ऐसे में होता है उसे केंद्र का सहयोग चाहिए। तो आप जान रहे छात्रों का सहयोग है, बीजेपी, बीजेपी युवा मोर्चा, बीजेपी के जितने संगठन उन सब ने सहयोग दिया है, तो ऐसी भी मुश्किलें नहीं लगती कि केंद्र सरकार अगर झारखंड की सरकार कोई अध्यादेश लाती है पलटने के लिए तो वो उसमें आनाकानी करेंगे, मदद नहीं करेंगे, और अगर ऐसा करेंगे तो उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ राजनीतिक इच्छा शक्ति की परीक्षा है। छात्रों ने 16 दिन का समय दिया, बातचीत की, और आज देखिए हेमंत सोरेन के जन्मदिन के मौके पर ये छात्र ये उन्हें लोकतंत्र का गिफ्ट देने आए हैं कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप अगुवा हैं। हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई आपत्तिजनक नारेबाजी नहीं हुई, ये छात्रों ने अनुशासन का पालन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर सब्र की बांध टूटा तो हम मार्च करेंगे, मार्च करने आए हैं। वो कह रहे हैं हम दरवाजे पर आए हैं, अब यहाँ पुलिस उन्हें रोक रही है, छात्र भी रुके हुए हैं, तो एक बड़ा फ्रेंडली सा मैच हो रहा है, कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं, लेकिन अब वो विधानसभा के दरवाजे पर डट गए हैं। जवाब है सरकार, इंतजार है सरकार के जवाब का, क्या वो सीजीएल को लेकर के कोई फैसला लेती है, नहीं लेती है तो कोई नहीं जानता, ये डेडलॉक अब कब तक चलेगा।
0: बिल्कुल आशुतोष, एक बार फिर से अगर आप अपने कैमरा से उन तस्वीरों को दिखाएं, ये भी बताएं हमारे दर्शकों को कि आखिरकार विधानसभा का गेट कहां पर और छात्र कहां तक मौजूद हैं, कहां पर खड़े हुए हैं। और दूसरा मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्या सिर्फ रांची में ही ये प्रदर्शन हो रहा है या फिर झारखंड के अलग अलग दूसरे हिस्सों में भी इस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है।
7: हमें जानकारी मिली कि हजारीबाग में भी प्रदर्शन शुरू हुए थे, और इसके इतना ही नहीं, पूरे झारखंड के अलग अलग इलाके में पुलिस ने कोशिश की कि छात्रों को रोका जाए, लेकिन ये जेन जी है, ये युवा पीढ़ी है, ये सरकारी टैक्टिक्स को अपने तरीके से बाईपास करती है, और वो कोशिश करके यहाँ पहुंच गए थे। अब मैं आपको बताऊं, मैं जहां बैठा हूं ये दरअसल बस का ऊंचा इलाका है, आप तक ये तस्वीरें लाने के लिए मुझे, आप ये इलाका जिस रास्ते में हूं यहां से छात्रों ने मार्च किया है, ये पुरानी विधानसभा है। अब दरअसल देखिए कई सारे छात्र भी बस पर आ गए हैं, और ये पूरा इलाका अब छात्रों ने भर दिया है, जितने वाटर कैनन थे, टैंकर थे, सबका पानी खाली हो गया, बाकायदा छात्रों ने रेन डांस का मजा लिया। और अब इस सड़क से आगे ये जो बैरिकेडिंग, यही रास्ता नई विधानसभा है, सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर ही यहाँ पर विधानसभा का प्रमुख द्वार है, और उसी के पहले देखिए स्पाइडरमैन भी दिख गए यहाँ पे, जंतर मंतर से बहुत सारी सिमिलैरिटी दिखाई पड़ती है, स्पाइडरमैन भी है, बैटमैन भी है, कुच्चू पुच्चू वाले पोस्टर भी है। कुल मिला के दरअसल ये इतना मारक होती है ना, इतना सटायर, इस तरह के जो जेन जी का व्यंग है, तो अब ये बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर आपको बैरिकेड दिखाई दे रहे हैं, छात्र दिखाई दे रहे, तो स्पाइडरमैन भी वहां बैठ गए, हालांकि 2-3 छात्र, दरअसल गर्मी, उमस भरी गर्मी है, सफोकेशन हुआ, उनको वहां से निकाला गया है, लेकिन अब तक किसी तरह की बहस जो है आक्रामकता में नहीं बदली है, छात्र भी टिके हैं, पुलिस भी वहीं टिकी है, कोई धक्का मुक्की नहीं है, लेकिन वो जाना विधानसभा तक चाहते हैं। और अगर मैं कोशिश करूं यहां से, दरअसल पेड़ काफी ज्यादा है, लेकिन पुलिस के पीछे भी आपको छात्रों का जमावड़ा दिख रहा है, वो उस पार पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो आगे नहीं जा रहे हैं, ये प्रशासन भी जान रहा है कि ये छात्र यहां क्यों आए हैं, ये एक सांकेतिक प्रदर्शन है, ये हिंसक नहीं होंगे। और ये पूरा दिन ऐसा रहा कि 17 दिनों में हिंसा की एक घटना नहीं हुई है, पूरे मैदान में मैंने 20 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को नहीं देखा, क्योंकि उन्हें पता था कि ये छात्र हैं, अपने अधिकारियों के लिए बैठे हैं। जब मुख्यमंत्री राज्य का ये समर्थन दे कि आखिर क्या होगा, हालांकि कुछ ये देखिए, और अभी तक एक जानकारी ये भी आ रही है कि चूंकि जेएसपीसी के जो सदस्य थे उन्होंने इस्तीफा दिया था, आज उसमें जो उसकी चेयरमैन थी ख्याति, उनको बुलाया भी गया था, जरा सर उसकी भी कंफर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं कि संभवतः एसआईटी ने उन्हें गिरफ्तार, सीआईडी ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया, हम उस जानकारी का भी कंफर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहां देखें, फिर एक बार तस्वीरों पर आपको छोड़े जाते हैं कि कैसे एक आंदोलन का ये जो स्थल है ये अपने आप में बदल के 12 किलोमीटर दूर आया।
0: बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष, हमारे साथ आप बने रहिए, आपका दोबारा से मैं रुख करूंगा, क्योंकि ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। जैसा आशुतोष भी बता रहे थे, सांकेतिक है, बहुत आप कह सकते हैं कि बहुत आराम से ये प्रदर्शन किया जा रहा है छात्रों के द्वारा, कोई हिंसा नहीं हो रही, लेकिन एक छात्र पे हुई लाठीचार्ज के बाद उसने क्या बयान दिया, आइए आपको वो भी सुनाते हैं।
8: जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग शब्द भी नहीं बोले हैं, और अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है, ये अच्छा नहीं कर रहे,
9: लेकिन कोई रिश्ता नहीं,
8: ये अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहे, मेरा नाम विक्रम कुमार हुआ।
0: और हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी शशि भी हमारे साथ जुड़ गए। शशि, देखिए कुछ तस्वीरें हमने बिहार के छात्र प्रदर्शन के दौरान भी देखी थी कि बच्चे एंजॉय करते थे, लगातार वाटर कैनन होता था, वहां पे शावर लिया करते थे और वहां पे हंसना गाना बैरिकेटिंग हटा के तो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। कुछ ऐसी तस्वीरें हमें झारखंड में भी देखने को मिल रही है। शशि, आपको आवाज आ रही है?
9: बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सुमित। और बिहार बिहार से ही झारखंड निकला है तो झारखंड और बिहार में कमोबेश चीजें एक जैसी ही हैं। हालांकि हमने पटना में जो प्रोटेस्ट कवर किया था उसमें बिल्कुल आवाज आ रही है। क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है?
0: बिल्कुल शशि, आप कंटिन्यू कीजिए।
9: सुमित, मैं यही कह रहा था कि पटना में जो हमने एजिटेशन देखा था, प्रदर्शन देखा था, उसमें छात्रों का थोड़ा एग्रेशन ज्यादा था, वहाँ तोड़फोड़ थी, सब चीजें थी। लेकिन यहाँ झारखंड में, खासतौर पर रांची में जो आज हम प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं सुबह से, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं दिखती है। यहाँ अलग अलग रंग है प्रोटेस्ट के। देखिये, एक प्रोटेस्ट में जुड़े एक व्यक्ति आए हैं और कुछ अपना लेकर के आए हैं। क्या मतलब, आप तो जेनजी तो लग नहीं रहे हैं, तो कब का मतलब छूटा हुआ आपका क्या है, मतलब आप किस?
10: देखिए, हम यहाँ झारखंड में ही रहे थे, यहीं पले बड़े हैं और यहाँ झारखंड के आंदोलन में भी हम लोग शामिल हुए थे और आंदोलन करके इस राज को अलग किए थे। उसके बाद यहाँ पास ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को राज की गद्दी मिली है और वो अपना राज चला रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों के लिए हक की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हमने फाइनल एग्जाम दिया आपका सहायक आचार्य टीचर का, और उस पास होने के बाद चार एग्जाम लिया गया हम लोग से, चारों एग्जाम में हम सफलतापूर्वक पास कर गए। पास करने के बाद फिर हम लोग का रिजल्ट जारी हो गया, रिजल्ट जारी में हम लोग पास कर गए। पास करने के बाद हम लोग का जेएससी ऑफिस में मेरी सर्टिफिकेट की सारी सर्टिफिकेट की जाँच हुई, सारी जाँच में हमने ओके पाया। उसके बाद फिर वो दूसरे जिला में हम लोग को भेजा गया। यहाँ पास सर्टिफिकेट मेरे पास है, दूसरे जिले का यहाँ पास लिखा हुआ है और यह हमारा रोल नंबर है। और दूसरे जिला में गए थे कोडरमा में, वहां भी हमारा सफलता।
9: ये कब हुआ आपके?
10: ये अभी पिछला साल का बात है सर।
9: उसके बाद अभी आपकी ज्वाइनिंग हुई?
10: नहीं, अभी ज्वाइनिंग, अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला सर।
9: ये एक वानगी है, चूंकि बहुत वक्त की कमी रहती है हमारे पास भी, मजबूरी समझिए, लेकिन इनकी कहानी दिखाने का मकसद ये है सुमित, या बताने का या बातचीत करने का, कि ऐसे कई लोग हैं जो सालों से एक रोजगार के लिए, एक नौकरी के लिए, तमाम जो अलग अलग संस्थाएं हैं काम करती हैं, जिनका काम है नियुक्ति करना, और उनमें कहां गड़बड़ियां होती रहीं। और जो आज आप इतना बड़ा आंदोलन देख रहे हैं या देश के लोग देख रहे हैं, वो एक दिन में नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे धीरे धीरे चीजें इकट्ठा होती हैं। लोगों को लगता है शायद सुधार हो जाएगा, शायद बदलाव हो जाएगा, जब वो होता नहीं दिखता है।
0: बिल्कुल शशि, देखिए यही बात है कि ये आक्रोश, ये गुस्सा छात्रों का कोई एक दिन की बात नहीं है, लंबे समय से जो प्रणाली के अंदर खामियां थी उसको लेकर है, और शायद ये गुस्सा, ये नाराजगी लंबे समय से चलती आ रही है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, हम तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Honey, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील TMT से बना.
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड.

0: हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी चौधरी।
1: कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक वीरों से मिले मोदी, चैंपियंस से सुनी संघर्ष की कहानी, पढ़ाया हौसला। ये मुलाकात खास थी, ये मुलाकात थी उन चेहरों के साथ जिन्होंने सालों की मेहनत के बाद देश का मान बढ़ाया था। कॉमनवेल्थ गेम्स में तिरंगे की शान बढ़ाने वाले पदक वीरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और चैंपियंस के साथ चाय पर खूब चर्चा हुई।
2: भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
1: जूडो से वेटलिफ्टिंग और बॉक्सिंग से लेकर एथलेटिक्स तक हर विजेता ने सुनाई पोडियम तक पहुंचने की कहानी। इस दौरान हौसला बढ़ाने वाली गंभीर बातें भी हुई तो हल्के फुल्के लम्हे भी दिखाई दिए। खिलाड़ी पहले से ही पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए काफी उत्साहित थे। इस बार ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 39 मेडल अपने नाम किए, जिनमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे। इस प्रदर्शन के साथ भारत मेडल टैली में चौथे पायदान पर रहा। अगले कॉमनवेल्थ गेम्स उस शहर में होने हैं जो अरसे तक पीएम नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि रहा है। अब 2030 में भारत का दोहरा इम्तिहान अहमदाबाद में होगा, शानदार मेजबानी करने का और ढेरों मेडल जीतकर तिरंगे की शान एक बार फिर बढ़ाने का। आज तक ब्यूरो,

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: ब्रेक के बाद न्यूज रूम लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। और चलिए एक बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं, जहां पर जेपीएससी धांधली मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खयाकते गिरफ्तार कर लिए गए। सीआईडी ने पूर्व चेयरमैन एल खयाकते को गिरफ्तार किया है। एल खयाकते पर कई आरोप लगे गए हैं, जिसमें जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने के लिए ब्लैकलिस्टेड कंपनी टीडीपीएल को क्यों चुना गया। वह झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यजीत भी हमारे साथ जुड़ गए। सत्यजीत करते हैं। सत्यजीत, उनकी गिरफ्तारी खासतौर पे कई आरोप उन पे लग रहे थे, जिसमें ना सिर्फ उस कंपनी को जिसको ब्लैकलिस्टेड किया गया था उसको वो ठेका देना, इसके अलावा कई अनियमितताएं भी उन पर थी।
1: बिल्कुल, देखिए 14वीं जेपीएससी को लेकर लगातार उन पर ये आरोप लगे कि रिजल्ट जो दिया गया उसमें जो ऑथराइज सिग्नेटरी थे, यानी जो तीन मेंबर्स थे, उनका साइन नहीं लिया गया। ओएमआर सीट में जिसने बबल्स को कम कलर किया था, यानी जो कम बबल्स को कलर करने वाले थे उनका नाम जो है सक्सेसफुल में फिगर कर रहा था। इसके अलावा जो है टीडीपीएल को एप्लीकेशन इन्वाइट करने से लेकर रिजल्ट पब्लिकेशन तक का पूरा ठेका दिया गया और वो ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी उत्तर प्रदेश में। हालांकि खयाकते ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा था कि इस बारे में उन्हें जब इस कंपनी को एम्पैनल किया गया था उस वक्त उन्हें जानकारी नहीं थी और उस वक्त ये ब्लैकलिस्टेड भी नहीं था झारखंड सरकार के द्वारा। तो ये बातें उन्होंने कही थी और उन्होंने कहा था कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, अपना उन्होंने डिफेंड किया था, ये कहते हुए रिजाइन किया था 22 जुलाई 2026 को कि इंट्रोगेशन जो है वो फेयर हो सके। उनसे पूछताछ हो रही थी, उनके लोकेशंस पे भी रेड किए गए थे, सीआईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की थी और 19 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। तो इसको लेकर खयाकते ने ये कहा था कि उन्होंने भी फेयर इंट्रोगेशन हो इसके वजह से इस्तीफा दिया है। लेकिन उसके बाद भी कई राउंड की पूछताछ जो है वो होते रही। इसके पहले वो राज्य के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार उनके ऊपर ये आरोप लग रहा था कि पैसे लेकर ब्लैकलिस्टेड कंपनी को एम्पैनल किया है और लगातार पूछताछ चल रही थी। और अभय तिवारी एंड कंपनी जिसकी गिरफ्तारी हुई थी उनके उस वो जो टिप ऑफ दे रहा था, वो जो लीड दे रहा था, उसके आधार पर भी गिरफ्तारियां हो रही थी। तो मनी ट्रेल का कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट जो है या फिर मनी ट्रेल का सब्सटेंस जो है कहीं ना कहीं सीआईडी को मिला होगा, जिसके तार जो है वो वहां तक पहुंच रहे होंगे। इसको लेकर उनकी गिरफ्तारी संभवतः ये कहा जा रहा है कि की गई है।
0: बिल्कुल, और खासतौर पर एक और बात, क्योंकि अभी क्या कुछ और भी जो आप कह सकते हैं कि कुछ उसमें और ट्रेल्स हैं जिनको ट्रैक किया जा रहा है सीआईडी द्वारा, कुछ और भी गिरफ्तारी, और अभी तक इस मामले में पूरी कितनी गिरफ्तारी हो चुकी?
1: उन्नीस से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है और जितने भी एलिगेशन है कि सीट बेचे गए या फिर मनी ट्रेल है या फिनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए हैं, इसको लेकर सरकार की तरफ से भी बयान आया है। जरूरत पड़ी तो ईडी प्रूव किया जाएगा। हालांकि ईडी जो है इसकी जांच अब कर रही है, लगातार जो है ईडी जो है इसको जो है ईसीआई दर्ज करके इसमें मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो ये इस तरह की बातें लगातार आई और छात्रों का आंदोलन जो हो रहा है उसका आरोप ही यही है कि सीटें यहाँ बेच दी जाती थी, इसको लेकर वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनका जो वाजिब हक और अधिकार है लगातार वो तैयारियां कर रहे हैं सरकारी नौकरी के अलावा अपने पूरे किस्मत को बदलने के लिए, तकदीर को बदलने के लिए उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और कई बार जो है वो क्वालिफाई भी करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जाके मामला जो है उसमें या तो डिस्प्यूट हो जाता है या किसी तरह के विवादों में वो घिर जाता है, जिसके वजह से फाइनली उनका नहीं हो पाता है। एक छात्र जिससे हमारी बात हो रही थी, गढ़वा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आता था, उसने कहा कि उसके पूरे खानदान में वो इकलौता लड़का है जो पढ़ने भेजा गया है, पढ़ने आया है, अगर वो पढ़ लिख कर कुछ कर नहीं पाया तो उसके पूरे इलाके में बाकी बच्चों की पढ़ाई पेरेंट्स बंद कर देंगे, ये कहते हुए कि पढ़ने लिखने से आखिर फायदा ही क्या है, इसने पढ़ाई की इसका आखिर क्या हुआ, इसने एक अदद नौकरी भी नहीं ली। तो ये एक बड़ी बात है कि शिक्षा से भरोसा ही उठ जाएगा, इस तरह के आरोप भी लगाए गए। लेकिन ये भी जो है सरकार के तरफ से कहा गया कि एक्शन फटाफट हुआ है, कोई डिले उसमें नहीं हुआ, सरकार डे वन से एक्शन में है, एक्शन में स्विंग कर गई थी सरकार और ताबड़तोड़ छापेमारियां की गई थी, ये सरकार की तरफ से दावा किया गया। साथ ही साथ जो खयाकते हैं जो चेयरमैन थे उनको भी रेजिग्नेशन टेंडर करना पड़ा था। अब तो पूरा जेपीएससी जो है वही डिसॉल्व हो गया है, तीनों जो सदस्य थे उसने भी इस्तीफा दे दिया, राज्यपाल ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। अब उन तीनों से भी पूछताछ हो रही है, अलग अलग दिन तीनों को बुलाया गया है, आज इसके अलावा 11 और 12 तारीख को अलग अलग दिन उनको बुलाया।
0: बिल्कुल, हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके एल खयाक्ते को गिरफ्तार किया गया सीआईडी द्वारा, और बताया जा रहा है कि 1988 बैच के आईएएस रहे हैं, झारखंड के मुख्य सचिव रह चुके हैं और 2024 के बाद से ही लगातार वो एक आप कह सकते हैं चेयरमैन रहे थे जेपीएससी के, और इसके बाद उनकी गिरफ्तारी बहुत महत्वपूर्ण। हमारे साथ सत्यजीत बने हुए हैं। सत्यजीत, खासतौर पर इस समय जो छात्रों का प्रदर्शन है अभी, क्योंकि हमारे दो सहयोगी लगातार हम तक वो तस्वीरें दिखा रहे थे कि कैसे छात्र वहां पर बहुत आप कह सकते हैं कि पीसफुली लगातार वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा के बेहद करीब है, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर छात्रों के प्रदर्शन की तस्वीरें अगर आप दिखा सके और अभी मौजूदा हालात क्या है ये बता सके।
1: बिल्कुल, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि हम हैं कहां इस वक्त। ये देखिए विधानसभा ठीक हमसे 100-150 मीटर के दूरी पे है। ये गेट नंबर 1 जो है जहां से सीएम प्रवेश करते हैं वो बिल्कुल सामने है, और अब आपको हम दिखाते हैं कि प्रोटेस्टर्स जो हैं वो कैसे रूट जो होता है उसको एस्केप करके यहां तक पहुंच चुके हैं। बिल्कुल जो है यहीं से देखिए सबकी गाड़ियां जाती है, वीवीआईपी गाड़ी जो की जो मूवमेंट होती है, चाहे वो विधायक हों और या तो फिर मंत्री हों, वो इसी तरफ से जाते हैं, और एक रूट उधर वाला जो है ठीक सामने वाला वो सीएम के लिए रिजर्व है। तो अब आपको दिखाते हैं कि देखिए प्रोटेस्टर्स जो हैं झंडे लेकर यहां तक पहुंच चुके हैं। यहां पे उन्होंने पुलिस को पहले डॉज दिया, जो रूट था जहां बैरिकेटिंग की गई थी, कुछ बैरिकेटिंग्स को उन्होंने स्केल डाउन किया। स्केल डाउन करने के बाद जो ओपन इलाका था, ओपन जो लैंडस्केप था, वहां से वो भागते हैं और यहां तक पहुंच जाते हैं। जब तक उनको रोका जा सकता वो यहां तक पहुंच गए हैं। तो बिल्कुल ये एकदम यहां से 100 मीटर की दूरी पे विधानसभा है जहां मॉनसून सत्र की कार्रवाई चल रही है। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब जब जो है प्रोटेस्टर्स इतनी नज़दीक पहुंच गए हैं। झारखंड बनने के बाद ऐसा कभी हुआ नहीं। एक जो है नया विधानसभा जो बना तो एक डेजिग्नेटेड स्पेस बनाया गया था, जगन्नाथपुर टेम्पल जो है उसके ठीक सामने एक बड़ा सा मैदान था जहां पे वो डेजिग्नेटेड स्पेस था जहां आप आके धरना प्रदर्शन और विरोध कर सकते थे, और अगर कोई जुलूस या मोर्चा लेकर आ रहा है तो उसको वहीं रोका जाता था, और आज भी वहीं रोकने की तैयारी थी। कटीले तार जो है
0: बिल्कुल सत्यजीत, हम चाह रहे हैं कि अगर आप हमारे दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाए जहां पर आप मौजूद हैं। आपने बताया कि गेट नंबर 1 के पास आप मौजूद हैं जहां से वीआईपी मूवमेंट होती है, वहां पर भी छात्र पहुंचे हुए, उन छात्रों की तस्वीरें भी आप हमें दिखाएं। तो
2: पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हो गया है,
1: ये देखिए देखिए ये ठीक हमारे पीछे जो है नीचे बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो है यहाँ जो है बैरिकेटिंग, इसके आगे अब नहीं घुसने दिया जा रहा उन्हें, क्योंकि ये एकदम अब यहाँ से 100-150 मीटर की दूरी पे विधानसभा है। जो गेट्स हैं अलग अलग, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 4 नंबर से जो है मीडिया और बाकी बहुत सारे अधिकारी जो है वो जाते हैं। 1 नंबर गेट जो है वो रिजर्व है मुख्यमंत्री के लिए, इसके अलावा 2 नंबर से MLAs जो हैं वो घुसते हैं। तो ये देख सकते हैं नॉर्थ पोर्टिको या साउथ पोर्टिको जाने के लिए यही रास्ता लेना पड़ता है, क्योंकि एक रास्ता जो है वो सीएम के लिए रिजर्व है। और सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ तक ये लोग पहुंच चुके हैं। इन्होंने इनको इनका इनको जहां बैरिकेटिंग किया गया था उसको उन्होंने स्केल डाउन किया, उसको फांद कर यहां तक पहुंचे, और जब आगे इनको रोकने की कोशिश जब की जाती थी, चूंकि पुलिस ने आज फोर्स बहुत कम अप्लाई किया है, ना तो एक आध बार वाटर कैनन चले हैं, एक आध बार मामूली लाठी चार्ज किया गया है, तो पुलिस ने बल का प्रयोग कम किया, क्योंकि ये स्टूडेंट्स हैं और अपने मांग को लेकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा मार्च कर रहे हैं। यही वजह है कि यहां तक ये पहुंचे हैं। तो यहां अब जब इनको रोका जा रहा था हाईकोर्ट के सामने, तो सामने एक ठीक लैंडस्केप है, वहां से ये रूट को अपना अपने रास्ते को बदलकर यहां तक पहुंच चुके हैं। ये
0: बिल्कुल सत्यजीत, एक और बात, क्योंकि
1: बिल्कुल विधान
0: बिल्कुल क्या सरकार की तरफ से कुछ नई जानकारी सामने आई है कि सरकार की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई आप कोई नेता मिल सकता है छात्रों से बातचीत के लिए दोबारा से?
1: हेलो
0: सत्यजीत, क्या सरकार की तरफ से
1: अभी इस तरह की जो है?
0: जी जी
1: आप नहीं, अभी किसी तरह का इनिशिएटिव सरकार के तरफ से नहीं लिया गया है। सुबह सुदिव्य सोनू जो पैनल ऑफ मिनिस्टर में थे, चार मंत्रियों के पैनल में थे, जिनको इंट्रस्ट किया गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कि आप जाइए और आंदोलनकारी छात्रों से बात कीजिए, डायलॉग कीजिए और बीच का रास्ता निकालिए। तीन राउंड का डायलॉग हुआ और उसके बाद भी बात नहीं बनी, क्योंकि ये JSSC और CGL का कैंसिलेशन चाहते थे, CBI प्रोब चाहते थे, सरकार उस पर नहीं मानी। JSSC CGL को लेकर सरकार का ये कहना था कि ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट के डायरेक्शन पे इसका एग्जाम लिया गया और नियुक्तियां दी गई, तो इसमें वो इंटरवीन नहीं करना चाहती है। लेकिन कोई स्पेसिफिक केसेस अगर 3-4 लाख के देते हैं कोई, तो 90 दिन में उसका प्रोब जो है रिटायर्ड जज के निगरानी में करवा सकती है सरकार, ये प्रॉमिस किया जा सकता है। और देखिए ईडी प्रोब जो है वो भी सरकार ने प्रॉमिस किया है कि अगर कोई मनी ट्रेल है, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है, किसी तरह का लेन देन हुआ है, तो उसके लिए ईडी प्रोब का भी ऑर्डर किया जा सकता है। तो ये सरकार की तरफ से कहा गया। लेकिन आज सुबह जब सदन शुरू हुआ उस वक्त सुदीव सोनू ने कहा कि BJP गुमराह करने की कोशिश कर रही है विद्यार्थियों को, जब उनकी 98% मांगे मान ली गई थी। हालांकि विद्यार्थी ये कह रहे थे कि सिर्फ 90% मांग ही उनकी मानी गई है। तो अब जो है ये साफ तौर से जो है कहा जा सकता है कि गतिरोध बन गया है। अब गतिरोध ये दूर कैसे होगा, डेडलॉक कैसे रिजॉल्व होगा, ये देखना अभी बाकी है कि सरकार की तरफ से पहल किया जाता है या फिर स्टूडेंट्स, आज के मूवमेंट के बाद विधानसभा मार्च का उनका कार्यक्रम था, वो हो गया। अब सरकार कितना सुनती है, सरकार ने 3 राउंड डायलॉग किया, सरकार ने अपने भी बातें उनके जो मांग थे उसमें से ज्यादातर मांग पे उसने सहमति सरकार ने जताई कि जो 14वीं JPSC है जिसको लेकर विवाद हो रहा है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। बैकलॉग पेपर्स जो जिसमें 2300 का या फिर अलग अलग नंबर ऑफ सीट जो है जो 2025 में बाकी थे या 2023 में जिसके इम्तिहान होने थे सिविल सर्विसेज के, वो नहीं करवाएगी, उसको भी रद्द कर देगी। इसके अलावा जो है रिफॉर्म्स की जब बात हुई तो सरकार ने ये कहा कि jpsc.jssc.feedback.gmail.com जो है आपका हमने खोल दिया।
3: सत्यजीत आपका दोबारा से रुक करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी की वो बाइट भी सुनाते हैं जो लगातार उन्होंने छात्र आंदोलन को लेकर दी है।
2: पुलिस द्वारा लाठी चार्ज हो गया है, पुलिस का लाठी चार्ज हो गया, 2-3 छात्र घायल हो गए हैं, पुलिस का लाठी चार्ज है यहाँ पर, लाठी
4: जो कि अब अपने कैरियर के अंतिम चरण पे है। मान लीजिए एंट्रेंस एग्जाम में किसी का मौका चला गया तो अगले वर्ष फिर मौका आ सकता है, पर बहुत से लोग जो अपनी नौकरी की एज लिमिट के अंतिम वर्ष में हैं, उनके पास अब यह विकल्प नहीं है। मगर इतनी गंभीर बात के ऊपर भी राहुल गांधी को झारखंड रांची के छात्रों की गूंज सुनाई नहीं पड़ रही है। बताइए, जो जाके दहाड़ते और चिंगाड़ते थे कोटा से लेके और प्रयागराज तक, वो रांची पे मिमियाते हुए भी नजर नहीं आ रहे। यह दर्शाता है कि उनका उद्देश्य छात्र हितों की बात करना नहीं, अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करना है। और हम देश के युवाओं से भी यह अनुरोध करना चाहेंगे कि आप रांची और दिल्ली को एक तराजू पर तौल कर देखिए और उसके बाद समझ में आ जाएगा कि ये लोग जो कि छात्र हितों की बात करते हैं, या इनका मुखौटा है और असली चेहरा इसके पीछे छुपा हुआ है, जिसका उद्देश्य 100% राजनीति, छात्रों को भ्रमित करना और किसी न किसी मौके का लाभ उठाकर देश के अंदर अस्थिरता उत्पन्न करना है। तो मैं ये राहुल गांधी जी से कहना चाहूंगा कि जंतर मंतर पे कर्म और जो रांची के छात्र हैं उनके ऊपर जुल्म, राहुल बाबा ये जुल्म ना कर। धन्यवाद।
3: चलिए इसी पर एक प्रतिक्रिया और आपको सुनाते हैं जो लगातार इस छात्र आंदोलन को लेकर दी गई।
5: आते आते टूट गया, ये 3 लेयर का ब्रेकेटिंग था, ये 3 लेयर का ब्रेकेटिंग, आते आते ये छात्र लोग इससे हम लोग निकल जा रहे हैं। लेकिन बात

0: तक मांगों पर क्यों सहमति नहीं बना रही है, यह सबसे जरूरी बात है।
1: और इसको लेकर छात्र आंदोलन को लेकर झारखंड सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई, वो भी आपको सुनाते हैं।
2: सरकार ने एक हाई लेवल डेलीगेशन, हाई लेवल कमेटी बनाकर, चार मंत्रियों की एक कमेटी बनाकर संवाद का रास्ता खोला था। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि यदि यह आंदोलन सिर्फ छात्रों का होता तो आज प्रदर्शन की जरूरत नहीं थी। सरकार ने 95% मांगे बच्चों की मान ली थी। मैं स्पष्ट यह मानता हूँ कि छात्रों के पास आंदोलन का जरिया तो है ही है और रहेगा भी। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन जनता के अधिकार हैं और हम इस अधिकार को अक्षुण रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
1: और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरें के लिए आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: अखिलेश यादव जी कहते हैं मैं श्री कृष्ण का वंशज हूं, मैं यदुवंशी हूं, और आजकल तो वो नए नए सनातनी भी बन गए हैं, जय श्री राम का नारा भी लगा रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि श्रीमान अखिलेश यादव जी कृष्ण जन्मभूमि पर क्यों नहीं बोलते हैं, कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन के साथ क्यों नहीं जुड़ते हैं, तो सिर्फ यह चुनावी हिंदू है।
6: भारतीय जनता पार्टी का चश्मा धार्मिक हो जाता है जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, वही हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद भजन कीर्तन अजान लव जिहाद हिजाब नकाम मदरसा फिल्में मदारे यूसीसी इन्हीं पूरे मुद्दों के इर्द गिर्द उनकी पूरी राजनीति चलती है। भारतीय जनता पार्टी केवल मंदिर और मस्जिद के मुद्दे उठा के मुद्दों से भटकाना चाहती। समाजवादी पार्टी को मथुरा के मुद्दे पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। देश की न्यायपालिका में सब मामले विचाराधीन है, देश की न्यायपालिका जो फैसला करेगी सभी को मंजूर होगा।
7: बीजेपी और आरएसएस देश के लिए कुछ नहीं किया, आजादी के लिए कुछ नहीं किया। मेरे को बताओ कोई आरएसएस का आदमी देश के आजादी के लिए जेल में गया है? आपके पास कोई बीजेपी के चेले गई हैं? अगर गई भी है तो वो लोग ऐसे होंगे जो कांग्रेस में रह के उधर भाग गए होंगे, लेकिन असल बीजेपी का आदमी कोई भी इस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया। अरे ये इतिहास है तुम्हारा, और हमको हमेशा सिखाते हैं देशभक्ति। अरे देशभक्त तो असल हम हैं, तुम सब भगोड़े हैं।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियनों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों की सफलता के लिए सराहना भी की। वहीं खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री मोदी से अपने मन की बात कही। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने सभी विजेताओं के साथ मिलकर एक वीडियो भी बनाया था और देश के नाम एक संदेश भी दिया था। उन्होंने कहा कि जो खेलेगा वही खेलेगा, हमेशा भारत को चीयर करो। इसके बाद उन्होंने

0: भारत माता की जय का जय घोष भी किया।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: भारतीय शेयर बाजार में पिछले कुछ समय से चल रही आईपीओ की तेज रफ्तार हाल के दिनों में थोड़ी धीमी पड़ती नजर आने लगी है। जिन कंपनियों को कुछ महीने पहले तक बाजार से शानदार रिस्पांस मिलने की उम्मीद थी, वो अब अपने कदम फूंक फूंक कर रख रही है। इसकी वजह है कि बाजार में बढ़ती अस्थिरता, निवेशकों की सतर्कता और वैल्यूएशन को लेकर बढ़ती चिंता ने आईपीओ मार्केट को धीमा कर दिया है। ब्लूमबर्ग की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत के आईपीओ बाजार में फिलहाल पहले जैसी तेजी नहीं दिखाई दे रही है। कई कंपनियां तो अपनी रणनीति पर दोबारा विचार कर रही हैं और हाल ही में जेप्टो ने अपने आईपीओ का प्लान टाल भी दिया है। दरअसल इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्केट की कमजोरी के चलते कई कंपनियां अपने आईपीओ का साइज और वैल्यूएशन कम करने को मजबूर हो गई हैं। इसकी वजह है कि वैश्विक अनिश्चितताओं और बाजार में बढ़ते उतार चढ़ाव ने निवेशकों को ज्यादा सतर्क बना दिया है। वहीं कुछ हालिया लिस्टिंग्स के कमजोर प्रदर्शन के बाद निवेशक शेयरों की कीमत और बिजनेस मॉडल को ज्यादा बारीकी से परखने लगे हैं। बाजार के इस बदलते माहौल का असर केवल निवेशकों पर ही नहीं, उन कंपनियों पर भी दिखाई दे रहा है जो केवल बाजार के जरिए पूंजी जुटाने की तैयारी में थीं। ऐसे में कंपनियां जल्दबाजी में बाजारों में उतरने की जगह सही समय और सही वैल्यूएशन का इंतजार कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हाल के महीनों में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने की रफ्तार पहले के मुकाबले धीमी पड़ी है। वहीं कई कंपनियों ने बाजार की स्थिति को देखते हुए अपनी लिस्टिंग योजनाओं की टाइमिंग पर दोबारा विचार शुरू कर दिया है और मर्चेंट बैंकर्स कंपनियों को आक्रामक प्राइसिंग से बचने और निवेशकों के लिए आकर्षक वैल्यूएशन रखने की सलाह दे रहे हैं। यानी जो आईपीओ बाजार पिछले कुछ समय से रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा था, वो एक नए दौर में प्रवेश करता नजर आ रहा है। ऐसे में केवल नाम या चर्चा के दम पर निवेशकों का पैसा जुटाना आसान नहीं होगा। कंपनियों को मजबूत बिजनेस, संतुलित वैल्यूएशन और बेहतर ग्रोथ प्लान के साथ बाजार में आना होगा। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि बदलाव लंबे समय में बाजार को और ज्यादा परिपक्व और मजबूत बना सकता है। यानी फिलहाल आईपीओ बाजार में भले ही सुस्ती का माहौल नजर आ रहा है, लेकिन आगे चलकर यही कमजोरी इसकी ताकत बन सकती है, क्योंकि निवेशकों की बढ़ती समझ कंपनियों को ज्यादा भरोसेमंद बनने का रास्ता तैयार करने में मदद करेगी। आदित्य के राणा आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: विश्वास को।
1: संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सबसे ज्यादा उबाल की उम्मीद थी। समाजवादी पार्टी की रणनीति तैयार थी, कांग्रेस भी साथ था, इंडिया गठबंधन के सभी दलों का समर्थन था, सरकार की घेराबंदी का पूरा खाका तैयार था। लेकिन नीट परीक्षा लीक पर छात्र आंदोलन, छात्रों पर
2: सीधे आपको झारखंड रांची लिए चलते जहां पर जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। आशुतोष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। आशुतोष, इस समय की क्या तस्वीर है?
3: बहुत ये कन्फ्रंटेशन की स्थिति हो गई राजीव। अभी थोड़ी देर पहले जो है पुलिस ने फिर यहाँ पर देखिए आंसू गैस के गोले भी दागे हैं, वाटर कैनन चले गए, यहाँ पर काफी ज्यादा स्कफल हुआ। और हम चाहेंगे थोड़ी देर में आपको फिर वो तस्वीरें दिखाते हैं। अभी कम से कम 7 से 8 राउंड यहाँ पर दागे गए हैं ताकि छात्रों को डिस्पर्स किया जा सके। और अब जो घेरा है वो सुरक्षा बढ़ रहा है। दरअसल छात्रों की बड़ी संख्या, उन्होंने पूरा बैरिकेड हटा दिया है और बैरिकेड हटाने के बाद से अब वो आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने की वजह से वहां पर पुलिस ने उनको जो है कोशिश की है इनको रोकने के लिए। तो जैसे ही ये छात्र अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं 5 सेकंड के अंदर आपको वो तस्वीरें दोबारा प्ले आउट करके दिखाना चाहूंगा जैसे अभी धड़ाधड़ यहां पर दागे जा रहे थे। मुझे बस आप 5 सेकंड का समय दें, हम बता दें कि यहां पर जो है थोड़ी सी स्थिति उग्र हुई, पुलिस ने बल प्रयोग करने की कोशिश की, हालांकि छात्र फिर डट गए हैं और जहां पर हैं वह पूरी जगह से पुलिस का बैरिकेड वहां से हटा लिया गया है। और अब छात्र जो है ये देखे यहां से भी आवाज दी जा रही है कि वो आगे बढ़ने की कोशिश करें। अब थोड़ी स्थिति जो है ये प्रशासन के लिए चिंताजनक है। हम 10 सेकंड के अंदर आपको वो तस्वीरें दोबारा दिखाते हैं।
2: ठीक है, मैं आशुतोष आपके पास लौटते हैं। हम ये तस्वीरें हम इस समय दिखा रहे हैं, इस समय बहुत दूर नहीं है तमाम छात्र वहां असेंबली से, झारखंड विधानसभा से, लेकिन इस बीच में आप देखिए आप छात्रों को खदेड़ा भी जा रहा है 7 से 8 राउंड। अभी थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि आज सुबह इसके गोली दागे गए हैं, थोड़ी देर बाद वो जो विजुअल्स हैं वो भी आ जाएंगे, हम आपको भी दिखाएंगे। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और अब लाठी चार्ज हो गया है। ये तस्वीरें आप देखेंगे कि छात्रों को लाठियां मारकर पीछे की तरफ अब खदेड़ा जा रहा है, यहां से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। ये छात्रों का एक तरफ इंकलाब है, दूसरी तरफ पुलिस पूरी तरह से अब मुश्तैद है, उसके आगे जाने नहीं दे रही है। और आंसू गैस के गोले भी आशुतोष के पास एक बार फिर से चलते हैं।
3: गोले दागे, फ्लैश करो टीयर शेल फायर, फ्लैश करो टीयर शेल, लाठी चार्ज टीयर शेल, आंसू गैस के गोले दागे, ऑन है तू मुझे पैच नंबर पे कर, देखो फिर दागा

0: हाँ ले लो आंसू गैस के गोले का आगे शुरू हो गया, टियर गैस फायर आ जाएगा कभी भी आ जाएगा, 5 सेकंड में आ जाएगा।
1: ये लाइव तस्वीरें से मैं आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें। हमारे संवाददाता आशुतोष वहीं पर मौजूद हैं। आशुतोष मेरी आवाज आपको मिल रही हो, बताएं इस समय क्या चल रहा है?
2: नहीं मारना नहीं है।
1: आशुतोष अगर मेरी आवाज मिल रही हो तो प्लीज बताएं इस समय क्या सिचुएशन है।
0: कोशिश दरअसल पुलिस की ओर से भी है कि ये आक्रामक ना हो, हिंसक ना हो, और जी छात्रों की भी कोशिश दरअसल ये है कि वो किसी के साथ भिड़े नहीं, इसीलिए वॉलंटियर्स के सामने चुनौती। एक बार फिर आपको सीधी तस्वीरों पे ले चलते हैं। छात्रों में के जो वॉलंटियर है वो कोशिश कर रहे हैं कि ये भिड़ंत ना हो, पुलिसकर्मी भी रेस्ट्रेन मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन दरअसल जो बैरिकेड विधानसभा से 100 मीटर की दूरी पर जो आखिरी पॉइंट है वहां पर एस्केलेशन काफी ज्यादा हो गया है। तो आगे बढ़ने के लिए पुलिस ने जब फायर किया उसके बाद जब ये आगे छात्र पीछे हटे हैं, अब वहां बैरिकेडिंग लाइन नहीं है, 100-200 छात्र पहले ही पार करके जा चुके हैं। फिर जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं अब दरअसल पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है। जैसे जैसे शाम हो रही है प्रशासन की चिंता यह है कि विधानसभा के पास ज्यादा लोग ना पहुंचे, कई सारे छात्र इस अब ये जो बाउंड्री लाइन आप डिसॉल्व देख रहे हैं वो इसलिए क्योंकि वहां बिल्कुल बैरिकेड बचा नहीं है, छात्रों ने हटा दिया है, उठा दिया है पूरी तरह से। और उसी के साथ साथ अभी हमने देखा जैसे ही वो उग्र हुए फिर जो छात्र हैं उनकी ओर से पानी की बोतलें चप्पल भी फेंकी जाने लगी थी, फिर एक बार बातचीत शुरू हुई है यहां पर, यानी अब रह के दरअसल जैसे जैसे शाम होगी ऐसे में आक्रामकता जो है बढ़ने का एक चिंता प्रशासन के भीतर जरूर है। छात्र आह्वान कर रहे हैं आगे चलो वहां से, रोकने की कोशिश हो जा रही है, और फिर जब जैसे ही फायर किया गया।
1: आशुतोष अगर प्रशासन चिंतित है, प्रशासन गंभीर है तो डेलीगेशन को आ जाना चाहिए था बाहर, बहुत दूर नहीं है विधानसभा, बातचीत कर लेते, बातचीत क्यों नहीं हो रही है?
0: बातचीत का दौर तो 3 दिन तक चला, 2 फेज में। देखिए ये जितनी सड़क है ना 500 से 700 मीटर की पूरी सड़क, ये अब छात्रों ने इसको लगभग उनके नियंत्रण में आ चुका है। अब यहाँ से जो पूरा घेरा है अगर 180 डिग्री में आप देखेंगे तो लगभग 1 किलोमीटर की पूरी परिधि समय छात्रों के नियंत्रण में है। अब यहाँ पुलिस और प्रशासन बिल्कुल बेबस है, छात्र उग्र नहीं है वो भी रेस्ट्रेन मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन जैसे चूंकि विधानसभा संवेदनशील इलाका है जैसे वो संख्या बढ़ती है पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ रहा है। अब चलिए की बात यहाँ किससे करेंगे, जो नेतृत्व है छात्रों का उन्होंने तो समय दिया, उन्होंने तो मुलाकात की, कौन मंत्री कौन संतरी कौन अधिकारी इस छात्रों की भीड़ में यहाँ आकर के बातचीत करेगा? 1-2 पुलिसकर्मियों को मैंने देखा है और मिसाल तारीफ करनी होगी उन्होंने कि कैसे छात्रों को भी नियंत्रण में लिया, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को भी संभाला। लेकिन अब जैसे जैसे शाम बढ़ेगी अगर ये उग्र होगा, छात्र यहां से नहीं गए तो हमने देखे हैं रांची में प्रदर्शन कैसे हिंसक हो जाते हैं, 17 दिनों तक किसी तरह की हिंसा नहीं हुई है। इसलिए इन सीधी तस्वीरों को देख करके, हाथों में तिरंगा है, बाबा अम्बेडकर की तस्वीर है, संविधान की प्रतिलिपि हाथ में है और वो चाहते हैं कि वो रास्ता दें, पुलिस वहां रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार आह्वान किया जाता है 4 से 5 जितनी बैरिकेड्स हैं छात्र ऐसे उसको लेकर के भागे, उनके लिए एक आंदोलन की हमने तस्वीर देखी उन्हें तो ये देखिए पुलिस फोर्स के पीछे भी छात्रों की जो टोली चली गई थी वो भी वहां नारे लगा रही है, यानी अब किसी हिस्से में लोग बचे नहीं है, पुलिस के पीछे भी लोग इस पार भी लोग हैं। अगर ये कुछ करना चाहेंगे तो इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इनकी कोशिश ये थी कि बड़ी से बड़ी संख्या में ज्यादा से उनको भेजा जा सके। इसी के साथ साथ यहां पर भी जो प्रदर्शनकारी हैं जो नहीं पहुंच पाए थे या झारखंड के दूर दराज के इलाकों से जिनका आना रह गया था वो भी धीरे धीरे पहुंचे हैं, और अब इस इलाके में आपको अगर कुछ दिखाई देगा तो वो है सिर्फ छात्रों का, युवाओं का, प्रदर्शनकारियों का रेला जो इस इलाके पर अब
1: डटा हुआ है। लेकिन यहां
0: कंसर्निंग ये है, आह्वान किया जा रहा है छात्र फिर जो किनारे खड़े सबको मोबिलाईज कर रहे हैं, आइए आगे चलेंगे, अब यही मुश्किल हो जाती है पुलिस को। जी राजीव
1: आशुतोष चिंता की बात इसमें यह है ना कि अब छात्र पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, उनको आगे ही जाना है, आगे जाने नहीं दिया जा सकता, संवेदनशील इलाका है, प्रशासन सरकार है, सरकार बातचीत करने के लिए नहीं आ रही है, कॉल किसी तरह से कोऑर्डिनेट करते डेलीगेशन को जैसे दिल्ली में बुलाया गया था। अच्छा इस बीच में विजुअल्स जो आशुतोष आप ही ने भेजे हैं विजुअल्स वो दिखा देते हैं, ये देखिए कैसे छात्रों के तितर बितर करने के लिए टियर गैस का इस्तेमाल किया गया उनको वहां से तितर बितर करने के लिए, लेकिन कोई फायदा ज्यादा हुआ नहीं क्योंकि अब छात्र वहां पर अड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये विजुअल्स हैं जो आप इस समय आज तक पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, छात्रों की संख्या देखिए और कैसे उनको भगाने के गोले छोड़े जा रहे हैं, या आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं उनको हटाने के लिए, इधर उधर भगाने के लिए। छात्र थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो रहे हैं लेकिन वापस फिर वो एकजुट हो जा रहे हैं, ये इस समय की तस्वीर है, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप सिर्फ आज तक पर देख रहे हैं झारखंड में छात्रों का आंदोलन। लेकिन इसमें चिंताजनक बात यह है कि इन छात्रों से पहले तो कई दौर की बातचीत होगी, तो क्या वही बातचीत काफी है? अगर उस बातचीत का कोई हल नहीं निकला तो फिर आज बातचीत क्यों नहीं हो रही है? आज कोई डेलीगेशन क्यों नहीं जा रहा है? आज किसी डेलीगेशन को बुलाया क्यों नहीं जा रहा है? क्या आज बातचीत करना अहम नहीं है, आज सिर्फ आंदोलन ही होते देखना है, क्या आंदोलन होने देना है? ये कुछ और तस्वीरें भी जब लाठी चार्ज हुआ है लाठी चार्ज हुआ है, पुलिसिया एक्शन हुआ है, उसे भी आप इनकार नहीं हो सकते, एक्शन हुआ है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, पानी की बौछार हमने दिखाई थी, हम वो जो पुलिसिया एक्शन है वो भी साथ साथ में दिखा रहे हैं। पुलिस उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, जवान उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। ये तस्वीरें देखिए आप, ये दो तस्वीरें इस समय की हैं और इस समय आप सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं नजर आ रही है, क्योंकि छात्र जहां है वहीं पर है, वो बस वहां से आगे जाना चाहते हैं, वहां से आगे बढ़ना चाहते हैं, विधानसभा तक जाना चाहते हैं। प्रशासन बीच में इस समय, सरकार और लोगों के बीच में। आशुतोष हमारे साथ, आशुतोष चिंताजनक बात यह है ना कि अब तो ये टकराव और ज्यादा बढ़ेगा अगर बातचीत नहीं होगी। बातचीत ही सॉल्यूशन होना चाहिए था, लेकिन कुछ भी इस कड़ी में कोई भी आगे कोई स्टेप नहीं उठाया जा रहा है।
0: इसीलिए ये चिंता का विषय है और प्रशासन के भी हाथ पैर मानिए तो फूले हुए हैं। मैंने दर्जनों से कहीं ज्यादा इस तरह के प्रदर्शन देखे हैं और समय के साथ वो कैसे बदलते हैं उनको भी देखा है। अभी भी कह रहा हूं कि छात्र अनुशासन में है, रेस्ट्रेन पुलिस जो कहते हैं ना, कि झारखंड पुलिस ने मिसाल कायम की है कि हजारों की संख्या में जो छात्र आए हैं उनसे कैसे निपटना है, उन्होंने फिर भी बहुत एक मिसाल कायम की है। उन्हीं पुलिसकर्मियों के लिए देखिए वहां ताली भी बज रही है, तो बैनर पोस्ट, ये देखिए, ये आप देखा आपने कैसे बीच में जूते चप्पल भी, तो कई सारे ऐसे तत्व भी हैं। ये देखिए कोई पानी की बोतल भर के भेज रहा है, कोई चप्पल भेज रहा है, कोई लकड़ियां फेंक रहा है, और जब ये प्रशासन पुलिस बलों की ओर जाते हैं तो वहां से भी जवाबी का, ये देखिए देख रहे हैं आप, ये जूते चप्पल यहां से फेंके जा रहा है। अभी छात्रों की भीड़ में कौन से तत्व जब आ जाते हैं ये अपने आप में एक समस्या जरूर खड़ी हो जाती है, लेकिन बाकी अगर 180 डिग्री में देखेंगे तो ज्यादातर छात्र हैं बैनर पोस्टर लेकर के वो नारेबाजी कर रहे हैं, नाच गा भी रहे हैं। जेन जी का जो प्रदर्शन होता है वो प्रदर्शन के रंग दिखाई दे रहे हैं, स्पाइडरमैन बैटमैन से लेकर के पूरी की पूरी मार्वल सीरीज यहां दिखाई दे जाएगी। लेकिन डेडलॉक बना है इस कन्फ्रंटेशन पॉइंट पर कि क्या पुलिस यहां से अब छात्रों को आगे जाने देगी। ऐसा भी नहीं कि गए नहीं है, मैं पुलिसकर्मियों के पीछे सैकड़ों छात्रों को देख रहा हूं जो पहले ही पहुंच चुके हैं उस रेस्ट्रेन की बदौलत, क्योंकि चार्ज नहीं हुआ लेकिन जो हल्का बल प्रयोग किया कि वो पीछे रखें। देखिए फिर एक बार आह्वान किया जा रहा है, दरअसल यही होता है, जैसे अचानक वो जोश में आते हैं आह्वान करते हैं, छात्र आगे बढ़ते हैं, दबाव बढ़ता है और फिर यहां से रोक टोक की जाती है, छात्र कहां तक जाएंगे। और दरअसल ये कि अब वो लीडरशिप नहीं है, वॉलंटियर्स भी कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं तो संख्या बहुत ज्यादा है, और जब इस तरह की संख्या बल बढ़ रही है तब इस प्रदर्शन को कैसे नियंत्रित करेंगे, ये अब छात्र संगठनों के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। और प्रशासन तो खैर अपने आप में उसके हाथ पैर तो मैं फूले हुए दिखाई दे रहे, देखिए पानी की बोतलें चप्पल जूते डंडे सब हवा में उड़ते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। अब उसके बाद भी वहां पर महिला पुलिसकर्मी आईआरबी और जो पुलिस है उनके जवान डटे हुए हैं जस के तसम। फिर एक बार वो आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर ये डेडलॉक बना हुआ है, एक डेडलॉक उस फैसले को लेकर के है, मांगों को रहे, और एक डेडलॉक विधानसभा से सिर्फ 100 मीटर की दूरी, विधानसभा का द्वार समझ लीजिए कि 100 मीटर की दूरी पर जहां पर ये छात्र, और ऐसा भी नहीं है करीबन सैकड़ों छात्रों को मैं देख रहा हूं जो दूसरी तरफ पहुंच चुके हैं, आगे भी बैरिकेडिंग पे रुका है।
1: लेकिन यहां हम आपके पास तीन तस्वीरें से मैम दिखा रहे हैं दर्शकों को, तीनों तस्वीरें हैं पुलिस एक्शन की तस्वीर है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, आप पानी की बौछार देख रहे हैं, आप देख रहे हैं लाठी चार्ज भी किया गया, सब हो रहा है, लेकिन छात्र इस समय वहां पर अड़े हुए हैं, वहां पर डटे हुए हैं, सरकार मांग नहीं मान रही है, छात्र पीछे हट नहीं रहे, तो ऐसे में क्या विकल्प है? अब ऐसे लगता है कि छात्रों के पास, छात्रों को ही पीछे हटना होगा क्या, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ शशि भूषण भी जुड़े हुए, शशि भूषण, ऐसा लगता है कि सरकार ने अब छात्रों के ऊपर छोड़ दिया कि आपको ही पीछे हटना होगा, हम तो आपकी मांग नहीं मान रहे हैं 100%, तो अब आपको पीछे हटना होगा वरना जो भी अब खराब होगी चीजें तो ब्लेम आपके ऊपर आएगा।
3: प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
4: राजीव देखिए, पहले यह तय हुआ था कि 2 बजे तक का यह प्रदर्शन होगा विधानसभा घेराव का, लेकिन इतनी बड़ी संख्या राज्य के अलग अलग जिलों से, कोनों से और ग्रामीण इलाकों से स्टूडेंट आए हैं कि अब सरकार से ये सुनिश्चित कर लेना चाहता है पूरा आंदोलन वाला पक्ष कि इस मामले में एक्शन आज हो जाए, जैसा खुद देवेंद्र महतो बातचीत में कह रहे थे। दूसरी बात, जो प्रशासन है उसने क्या क्या रोकने के लिए इंतजाम किया, बैरिकेड्स बनाए, बैरिकेड्स ध्वस्त हो गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, वाटर कैनन का कोई असर नहीं हुआ, उसके बाद टीयर गैस, जो आंसू गैस के गोले हैं वो दागे गए हैं यहाँ पे, और कई छात्र जो हैं मतलब उनके आंखों में जो जलन हुई है उसके बाद यहाँ से निकले हैं। लेकिन अब तीसरा विकल्प, अंतिम विकल्प क्या है, जो लाठी चार्ज है वो विकल्प है, हम आपको आगे तक दिखाते हैं। देखिए जो छात्र यहाँ पे जमे हुए हैं बड़े लंबे वक्त से, उनको ये उम्मीद है कि वो आगे बढ़ेंगे, सरकार झुकेगी, विधानसभा का घेराव करने में वो सफल होंगे, लेकिन प्रशासन जो है वो एक एक करके दो चीजें कर चुका है, एक तो लाठी चार्ज कर चुका है, जो वाटर कैनन है उसका इस्तेमाल कर चुका है, जो टियर गैस है उसका इस्तेमाल कर चुका है। तो छात्रों ने अभी तक बहुत ही संवेदनशीलता दिखाई है, उनके तरफ से कोई प्रतिवाद नहीं है। उन परिस्थितियों में प्रशासन चाहता है कि छात्र आगे ना बढ़ें, किसी तरह से उनको रोका जाए। और सबसे दिलचस्प बात यह है राजीव, हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए बैरिकेड्स तो यहाँ सामने लगे हैं सड़क पे, लेकिन दूसरी तरफ जो बाईं तरफ का इलाका दिखाएंगे वहां पर कोई बैरिकेड्स नहीं है। जो ऊपरी सिरा है वहां से आराम से लोग आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो छात्र हैं उनको रोक पाने में प्रशासन सफल साबित हुआ है, इसीलिए छात्र आगे तक गए हैं। लेकिन हाँ, कोशिश यही है कि किसी तरह से जो सरकार है उसको झुकाया जाए, जो फैसला है वो बदले, जो सीबीआई जांच की मांग है वो सरकार उस पर तैयार हो। अब ये कब होगा, कैसे होगा?
1: अगर ये चीजें मान लेती है सरकार को झुकना होता तो अब तक झुक जाती, सरकार नहीं झुक रही है, ये तो क्लियर, ये भी तो दिख रहा है, वरना बातचीत इतना बड़ा नहीं होता।
4: ये बड़ी खबर
1: जी जी जी,
4: छात्रों ने कॉल कर दिया है कि वो दूसरे रास्ते से विधानसभा जाएंगे। और ये देखिए इधर से विधानसभा जाने लगे हैं छात्र, तो ये अपने आप में और बेहद दिलचस्प तस्वीर है। छात्र दूसरे रूट से विधानसभा के लिए कूच करेंगे, क्योंकि सामने डेडलॉक की स्थिति थी। हम आपको दिखाते हैं आगे, ये देखिए सामने डेडलॉक की स्थिति थी, जो प्रशासन है वो वहां पर बैरिकेड्स लगा करके खड़ा था और जो आगे बढ़ नहीं पा रहा था प्रोटेस्ट मार्च। तो वैसी परिस्थिति में
1: दूसरा रूट कौन सा, थोड़ा इसके बारे में भी बताएं, ये कौन सा रूट है, क्या वो जो मैदानी भाग से जाते हुए दूसरे रूट से, क्या वही वाला रूट है ये?
5: खड़ा होने के बाद भी देखिए कोई से पुलिस यहाँ मारी है।
4: देखिए एक यहाँ पे प्रोटेस्टर हैं, देखिए उनको कैसे चोट लगी है, ये कैसे चोट उनको लगी है वो दिखा रहे हैं कैमरे पर। इनके पीठ पे चोट लगी है, इनके हाथ में चोट लगी है,
6: हाथ जोड़ लिए थे खड़ा होने के बाद, हाथ जोड़े थे उसके बाद भी मारा है पुलिस। आतंकवादी है क्या? आतंकवादी है, जवाब दे, क्यों मारी पुलिस? खड़ा हुए थे यहाँ से यहाँ तक मारी गई, यहाँ मारी है क्यों मारी, जबकि हाथ जोड़ लिए थे। इससे शांतिपूर्ण इन लोग परेड नहीं होता होगा जितना शांतिपूर्ण हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी पुलिस जो है कि
4: बड़ा वाजिब सा सवाल है,
6: नहीं चलेगी। हेमंत सोरेन के 2029 में विदाई तय कर देंगे।
4: आप कहाँ से हैं?
6: हम गढ़वा से हैं।
4: क्या नाम है?
6: मेरा बिपिन बिहारी नाम है।
4: आपने कौन सा एग्जाम दिया?
6: हम जेपीएससी भी दिए हैं, जेएसएससी भी दिए हैं।
4: और लगता है कि सरकार बात मान नहीं रही।
6: सरकार कहाँ बात मान रही है, सरकार जबरदस्ती जेएसएससी वाला के सीजीएल वाला के ज्वाइनिंग कराई थी बिना जांच कंप्लीट हुए।
4: देखिए एक छात्र हैं और घर से आए हैं इस आंदोलन में, इस मार्च में, और देखिए
7: हम लोग को नक्सली समझा जा रहा है। हम लोग छात्र हैं, इतने सालों से हमारे इस आंख में हमें पहले लहू के आंसू हमने पहले ही सरकार ने रुला दी है, और आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आए थे, हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया, हमारे छात्र लोग घायल हो गए हैं और उसके बाद आंसू गैस का गोला का प्रयोग किया जा रहा है।
4: शांति तस्वीर भी दिखाते हैं, देखिए ये पुलिस बल भारी संख्या में तैनाती, पुलिस बल की, पुलिस के लोग चाहते हैं कि यहाँ से आगे न बढ़ने दिया जाए छात्रों को। लेकिन हम थोड़ा दूसरी तरफ जाकर के दिखाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल क्या तैयारी है, और कुछ छात्र दूसरे रास्ते से भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो झारखंड पुलिस है वो यहाँ पर कई कतारों में खड़ी है यहाँ पे, और यही वजह है कि यहाँ पर डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है। जहां तक नजर आपकी जाएगी वहां तक देखिए तमाम जो पुलिस की मौजूदगी है, और आगे जो रास्ता है वो विधानसभा की तरफ जाता है। सबको मालूम है कि विधानसभा की कार्यवाही अगले थोड़ी देर तक और चलनी है, और इस दौर को अगर निकाल लिया जाता है तो संभव है कि सरकार के लिए शायद थोड़ा सा।
1: लेकिन शशि भूषण, एक बड़ा सवाल है कि आप विधानसभा की कार्यवाही चल रही है, ये सब नजरअंदाज आपसे कैसे हो रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है।
8: आपके माध्यम से मैं पूरे भारत को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोग झारखंड का जिला प्रशासन का जो है ना जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, वही प्रशासन जो है ना हम लोग को लाठीचार्ज किया है।
4: हम लोग जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे जिला प्रशासन का, और आप पर लाठीचार्ज?
8: हाँ, पूरे विश्व में पहली बार हुआ है कि किसी प्रशासन का जिंदाबाद का नारा लगा है वो झारखंड। और हम लोग जन्मिन स्टूडेंट हैं और 2400 जिलों और हर प्रखंड से आए हुए हैं, और जितना वाटर टैंकर से पानी फेंका गया है ना उतना जो है हम लोग का पसीना बहा है एग्जाम हॉल में।
4: तो थोड़ा आगे बढ़ के और दिखाना चाहेंगे, ये देखिए जो छात्र है वो अपनी पीड़ा भी बता रहे हैं, व्यथा बता रहे हैं, चूंकि शांतिपूर्ण आंदोलन है राजीव, और शांतिपूर्ण आंदोलन के बीच अगर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज होता है, लाठी भाजी जाती है, टीयर गैस का इस्तेमाल होता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है।
1: ठीक है, तो शशि भूषण आपके पास लौट रहे, बने रहे। आशुतोष भी हमारे साथ, आशुतोष बताएं इसमें क्या चल रहा है।
9: Yeah.
0: राजीव, दरअसल अब छात्र नहा जहां कन्फ्रंटेशन पॉइंट वहां से कम हो गया। देखिए जंगलों के रास्ते भाग रहे, विधानसभा से 100-150 मीटर की दूरी पर ये जो जंगल बगीचे देखे पूरी की पूरी, यहां पर कोई तैयारी थी नहीं, पुलिस ने सारी बैरिकेडिंग सड़क पे लगा रखी थी, 1-1.5 घंटा इंतजार किया है, लाठी डंडा जो भी होना था सब हो लिया। ये देखिए जंगल के रास्ते सब उधर, जितने पतली पतली गलियारे हैं अब ये भाग रहे, अब इनको कैसे रोकेंगे, अब ये विधानसभा के द्वार तक पहुंच जाएंगे, वहां आखिरी चेक पॉइंट है और फिर उसको ब्रीच कर पाना मतलब पुलिस के लिए समझिए बहुत मुश्किलें होने वाली है। सड़क छोड़ दी है और अभी भी देखिए पुलिस वहां सड़क पर लगी है और छात्र जो अब ये पतली गली लेकर के दिए, ये जितने भी अंदर बगीचा है और ये जंगल का रास्ता है ये
9: लेकिन सरकार हमारे आवाज को कुचलने के लिए टियर गैस का, वाटर कैनन का, आंसू गोला का प्रयोग कर रही है जो निंदनीय है। सरकार डर गई है, कायर सरकार है और सरकार जब जब डरती है ये पुलिस को आगे करती है, लाठी गोली बंदूक वाटर कैनन का प्रयोग करती है। लेकिन हम लोग देखेंगे सरकार में कितना पावर है इसका टियर गैस में, हम लोग देखेंगे कितना दम है इसका लाठी में। हम सलाम चढ़ा के आए हैं महोदय, 9 दिन
10: आगे देख के आगे देख के आगे
1: देवेंद्र मैं तो आप सुन रहे हैं जो कह रहे हैं कि ये सरकार कायर सरकार है जो पुलिस को आगे कर रही है, सरकार डर गए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इनकी लाठियों में कितनी शक्ति, इनके टियर गैस में कितनी शक्ति है।
11: अभी सरकार से कोई बातचीत हो पाई है दोबारा?
9: अभी अभी सरकार से क्या बात करेंगे, और 3 राउंड बात हो गया, अब कोई बात नहीं करना है, हमारी मांग पूरी करे नहीं तो ये छात्र सरकार के मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुँच जाए।
11: 98% वो कह रहे हैं
9: सर, अगर अगर छात्रों की बात नहीं मानती है तो सरकार।
12: अरे भाई बंधु ही हैं, हम अभी भी यही अपील करेंगे, आप लोग पीसफुल रहिए, आप लोग वायलेंट मत होइए और हम जो है आपकी जो ये जो मांगे हैं वो आगे सरकार तक पहुंच रही हैं। आप लोग पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करिए, आप लोग एग्रेशन में मत आइए, और स्पेशली जो इनका जो जेपीएससी जेएसएससी न्याय मोर्चा है या फिर जितने अन्य मंच है अब इतने डिवाइडेड हो गए हैं स्टूडेंट्स की वो किसी की सुनने को रेडी नहीं है। हमारी सभी स्टूडेंट्स से अपील है कि शांतिपूर्वक तरीके से आप प्रोटेस्ट करिए, हमें उसमें कोई इशू नहीं है, और ये पत्थर ना फेंकें, पुलिस के ऊपर हमला ना करें, ये हमारी अभी भी आप लोगों से कॉन्स्टेंट रिक्वेस्ट है, आप लोगों के थ्री स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।
13: अभी तक दोनों राउंड की जो थोड़ा सा जो आप कह रहे हैं कि फोर्स यूज हुआ है, कितने लोग इंजर्ड हुए हैं
12: उसमें? पहले राउंड में हमारे 3 पुलिस वाले इंजर्ड हुए थे जो बैरियर जो तोड़ के जब भीड़ आगे बढ़ी और उसमें भीड़ पूरा।
1: आप सुन रहे हैं कि अब पुलिस के जो जवान हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई आप हिंसा ना करें। आशुतोष भी हमारे साथ हैं। आशुतोष, देवेंद्र मैं तो अब कह रहे हैं कि अब बात ही नहीं करनी हमें, अब तो बात कुर्सी तक जाएगी क्योंकि बात जो करनी थी वो तो हो गई, तो फिर अब क्या है मतलब, अब तो क्या विधानसभा जाएंगे छात्र?
0: इस बिखराव में बात कौन करेगा, किससे करेगा, जब डेलीगेशन प्रतिनिधिमंडल एक टेबल पर बैठता होगा, यहाँ कहाँ है? मैं किसी छात्र नेता को देख तक नहीं पा रहा हूँ, कुछ वॉलेंटियर्स हैं नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ से अब देखिए वो तो रास्ते एमएलए हॉस्टल है और ये जो इलाका रेसिडेंस है वहां से भागते हुए आगे पहुंच गए हैं, इस इलाके में भी धीरे धीरे खाली होकर पहुंच जाएंगे विधानसभा के बेहद नजदीक। बातचीत करेगा कौन अब, सरकार किसको फोन कॉल करेगी, एसडीओ एसडीएम किसको फोन कॉल करेंगे? आइए बातचीत कर भी लेंगे तो संदेश कैसे देंगे, किसको देंगे कि बातचीत में क्या निकला है? दूसरा, बहुत सारे लोग यहाँ देखिए, कई सारे छात्र तो एकदम हेलमेट वेलमेट पहन के आ गए, ये देखिए ये सब तो पूरी तैयारी के साथ आ गए हैं, इनको पता है कि पहले भी झारखंड में इस तरह के आंदोलनों के बाद क्या हुआ है, तो पूरा हेलमेट पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं, हाथों में झंडा है। लेकिन ये है देखिए छात्र के जो नेता है वो भी कह रहे हैं कि उग्र मत हो, ये आंदोलन शांत रहेगा, लेकिन क्या होता है कि काफी देर वो इंतजार कर रहे हैं और अब यहां पर कोई नेतृत्व तो संभालेगा कौन, उनके नेता उनके गुट कहां है, कौन सा गुट किसके पास है कोई नहीं जानता, तो ऐसे में इसे नियंत्रण करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसको प्रशासन कैसे हैंडल करेगा ये वो डेडलॉक पॉइंट होता है जहां से उनके भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करें क्या। बल प्रयोग वो नहीं कर रहे हैं, रेस्ट्रेन कर रहे हैं, छात्र भी आक्रामक नहीं है, कोई भिड़ंत नहीं है पुलिस के साथ, न उनके खिलाफ कोई नारेबाजी है, लेकिन अगर वो विधानसभा के नजदीक पहुंच रहे हैं तो आगे क्या, उसके बाद उन्हें कैसे संभालेंगे, उसकी एक अलग सैंक्टिटी होती है, प्रदर्शन में सांकेतिक होते हैं संसद या विधानसभा का मार्च, वहां पहुंच जाने के बाद वो कैसे संभालेंगे, वो विस्फोटक हो जाती है। ये देखिए पूरा जमावड़ा भी आपको पीछे जो भरा था ये सब धीरे धीरे करके एक एक करके इन गलियों के रास्ते आगे निकलते चले गए, तो सड़क पर अभी भी चंद 100 लोग हैं, वहां से भी मान मनोवल चल रही है, लेकिन छात्रों को जो रास्ता मिल रहा है देखिए अब इधर फिर एक बार जमावड़ा बढ़ गया, यहाँ पर जो है ना पीछे की सड़क जो खाली हो रही थी आगे बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा है कि छात्रों की संख्या लगातार आते जा रही है, वो आगे भी पार कर रहे हैं इस आखिरी बैरिकेड को और उसके बाद उनकी संख्या भी आगे लगातार बढ़ रही है। तो झंडा बैनर पोस्टर की कमी नहीं है, ना छात्रों की कमी है, वो आते जा रहे हैं और जो थोड़ा बहुत बच पाए देखे पेड़ पर बैठ गए हैं, उनको पता है यहाँ कैसे डंडा चलाओगे, यहाँ कैसे लाठी चलाओगे, टीयर गैस यहाँ कैसे काम करेगी। तो जिसको जहां मिला वहीं टिक गया। जितनी पुलिस प्रशासन की बसें हैं वो सब पर तो प्रदर्शनकारी और छात्र सवार हो गए हैं। अब नीचे क्या है कि अगर धक्का मुक्की होती है आंसू गैस के गोले चलेंगे तो ये रिपोर्ट पहुंचाने में हमें, हम खुद यहाँ पर बस पर ये जो बस है इस पर सवार हो गए ताकि हम आपको वो तस्वीरें और कम से कम एक बर्ड आई व्यू दिखा सकें। अभी भी डेडलॉक बना हुआ है, अब नहीं समझ में आता सरकार क्या रास्ता निकालेगी। जहां तक मैंने प्रदर्शनकार या इस तरह की चीजें देखी उसमें एक ही चीज है कि सरकार को एक ऐलान करे, खुद मुख्यमंत्री के ऐलान से कम संभवतः किसी को मंजूर नहीं होगा। और अगर वो एक वीडियो संदेश जारी करते हैं कि हाँ उनकी मांगे मान ली गई हैं, सरकार इसका रास्ता निकालेगी, कोई ठोस आश्वासन दे, तो अभी भी मुमकिन है कि ये आंदोलन यहाँ पर खत्म हो जाए, छात्र अपने घर चले जाएं। राजीव
1: बिल्कुल आशुतोष आप बने रहे हमारे साथ, लेकिन यहाँ से सरकार से भी सवाल पूछना उचित है कि आप क्या चाहते हैं। अगर छात्र सड़कों पर हैं, वो पीछे नहीं हट रहे हैं, आप उनकी अगर मांग नहीं भी मान रहे हो तो इस प्रदर्शन को तो आपको खत्म करवाना होगा, आपको इस मार्च का अंत करवाना होगा। वरना आप क्या चाहते हैं कि पुलिस वालों से भिड़ जाएं ये छात्र, क्योंकि वो नहीं हट रहे हैं, वो आगे जाना चाहते हैं। सरकार को इसमें जो है दखल अंदाजी करनी होगी, सरकार को आगे आना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए। अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो सिचुएशन अच्छी होने की संभावनाएं बहुत कम है, सिचुएशन खराब होने की संभावनाएं ज्यादा है। और अगर आप जितना देरी कर रहे हैं उस देरी से सिचुएशन खराब ज्यादा होगी, आप आमंत्रित कर रहे हैं कि सिचुएशन और ज्यादा खराब हो। और आशुतोष ये बड़ी चिंताजनक बात है क्योंकि समाधान सिर्फ संवाद से होगा, सिर्फ संवाद से होगा, लेकिन संवाद नहीं हो रहा है।
0: संवाद होगा कैसे, वो देखिए बैरिकेड लेके भागे पुलिस के पास, जो आखिरी बैरिकेड लगा हुआ था ना ये देखिए, पूरा का पूरा बैरिकेड उठा करके लेकर के भाग गए। अब यहाँ कौन संवाद करेगा और कैसे किससे बातचीत करेगा? छात्र तो अब है कि हमें तो विधानसभा पहुंचना है, उन्होंने ठान लिया, अब इनको आप कैसे रोकेंगे? अब प्रशासन शासन नहीं चाहता कि छात्रों पर बल प्रयोग हो, तो वो भी नहीं हो रहा है। अब ये ऐसा डेडलॉक है कि जो उस पार वर्दी में खड़े हैं,
1: क्या एक बार भी आज सुबह से बातचीत करने की कोशिश की?
0: कुछ साल पहले ये छात्र रहे थे, इन्हीं परीक्षाओं से गुजरे। सरकार के तौर पर अगर आप पूछ रहे हैं राजीव, तो नहीं, शासन के तौर पर इस तरह की बातचीत नहीं। अगर आप प्रशासन के तौर पर ये पूछ रहे हैं कि छात्रों के प्रदर्शन मार्च को कैसे नियंत्रित किया जाए, मैं यहाँ एक अधिकारी को देख रहा हूँ, ये मैं तारीफ करूंगा उनकी जिस तरह से उन्होंने अब तक इस परिस्थिति को संभाला है। वो अधिकारी थे, कहीं भी ये आदेश दिया गया डंडा नहीं चलेगा, बल प्रयोग नहीं होगा, मानने मनाने की कोशिश हुई, धक्का हुआ, वो हट गए, उन्हें जाने दिया गया। ओवर पावर किया छात्रों ने और इसलिए वो बहुत ज्यादा उन्होंने बल प्रयोग नहीं किया, वैसी नूरा कुश्ती नहीं हुई, इसलिए वो आगे चले गए। सरकार के स्तर पर बातचीत इसलिए कि आंदोलन खत्म हो, ये फैसला शासन का होता है। प्रशासन ने अपना काम किया और यहां तक हमने देखा कि वो रेस्ट्रेन जिसे कहते हैं, इस तरह के प्रदर्शन में जब विधानसभा के दरवाजे तक छात्र पहुंच जाएं, ये भी संभवतः पहले कभी नहीं हुआ होगा क्योंकि वो युवा हैं। और इसीलिए फिर वो याद आता है वो एक फ्रेज की, कैसे उस पार जो खड़े हैं वो कुछ साल पहले के छात्र थे, इस पार जो खड़े हैं वो मौजूदा छात्र हैं, कल को ये भी उसी वर्दी में होंगे, तो एक दूसरे को वो समझते हैं। इसीलिए डंडा, बल प्रयोग, लाठीचार्ज, ये जो प्रोटोकॉल के तहत एसओपी के तहत इस्तेमाल हो रहा है, हो रहा है। और छात्र उनसे भी आप देख लीजिए लड़ नहीं रहे हैं, उनको धक्का नहीं मार रहे, वो बैरिकेड हटा रहे हैं, हिला रहे हैं, धक्का मुक्के में निकल जा रहे हैं। किसी भी पुलिसकर्मी को यहाँ पर चोट नहीं आई है, ना ही पुलिसकर्मियों ने ये कोशिश की कि उनकी बर्बरता या उनका डंडा सीधा छात्रों को लगे। अब क्या होता है एसओपी में कई बार कुछ अनफॉर्चुनेट चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पर भी उसकी एक मिसाल देखने को मिली है। अब आते हैं आपके सवाल पर कि सरकार अब बातचीत का वक्त चला गया है, गेंद उसके पाले में है, और अगर वो जो जेएसएससी एससीजीएल का मामला है, अगर यहाँ पर एक फैसला नहीं होता है तो इस फैसले के बाद आंदोलन को खत्म करना बहुत मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि वो जो बस है वो निकल चुकी है, अब बिना एक ऐलान के और एक तरफा ऐलान के अलावा सरकार के पास कोई रास्ता बचा नहीं है।
1: बिल्कुल आशुतोष, लौटते हैं हम आपके पास। विश्वास लगातार हम दिखा रहे हैं, ये झारखंड रांची की तस्वीरें लगातार हैं, प्रदर्शन की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। जो बैरिकेडिंग है वो पकड़ पकड़ कर किनारे कर दी गई, कोई जंगलों के रास्ते से, कोई जिसको जिस दूर रास्ता मिल रहा है वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, और कुछ लोग छात्र जो है बचने के लिए, टीयर गैस से बचने के लिए, लाठीचार्ज से बचने के लिए कुछ पेड़ पर चढ़े हुए भी हमें छात्र दिखाए थे, अभी हमारे संवाददाता आशुतोष ने दिखाए थे। तो क्या सरकार ने बहुत देर कर दी छात्रों की मांग ना मानने पर? और आज भी क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती, कोई संवाद नहीं हो सकता, कोई प्रयास नहीं हो सकता? विधानसभा बहुत दूर नहीं है, वहां से यहां पर आकर कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं हो सकती क्या? लाउड स्पीकर्स हैं आपके पास, उपाय बहुत हैं आपके पास, विकल्प हैं, क्या प्रदर्शनकारियों तक कोई संदेश? शशि भूषण भी हमारे साथ है। शशि भूषण, आप जिस जगह पर, क्या इस समय तस्वीरें वहां की
14: देखते हैं? विधानसभा के तक हम
15: चले चले आए।
16: ए भाई कहां, ए भाई सामने
15: से क्या हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं? चले चले टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ।
1: शशि भूषण, तस्वीर हम इस वक्त दिखा भी रहे हैं, शशि भूषण के पास भी चलेंगे। आप देखिए, ये वो मार्ग जो खाली मैदान से है, सड़क के किनारे से दूसरी रोड जो विधानसभा की तरफ जाती है। शशि भूषण, आप बताएं।
17: क्या गुरु क्या हुआ, आवाज आ रहा है?
18: मैं बता रहा था राजीव कि ये सबसे जो नजदीक की तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं आपको। अपने सहयोगी नदीम से कहेंगे दिखाएं जरा जूम करके। विधानसभा भवन सामने है और उसके सामने छात्र हैं, खेतों के रास्ते। मैं उसी रास्ते से मैं भी आया हूं जिस रास्ते से छात्र पहुंचे यहां पे, और तमाम छात्रों ने वहां अपना पूरा जमावड़ा, विधानसभा घेराव जो है वो एक तरह से आप कहिए कि सफल बना लिया है उन्होंने। विधानसभा तक वो पहुंच गए हैं और पुलिस प्रशासन यहां टीयर गैस का इस्तेमाल कर रही है, और जाहिर तौर पे हम कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थिति है झारखंड के लिहाज से, छात्र आंदोलन के लिहाज से। राजीव,
1: बिल्कुल, ये खेतों की तस्वीरें, खेतों में खड़े आप इन प्रदर्शनकारियों को आप देखिए, तस्वीरें भी लगातार आप शशि दिखाते रही है। ये विधान के जो दीवार सामने दिख रही है, क्या विधानसभा की दीवार है जिसमें आप लाइव दिखा रहे हैं?
19: प्रदर्शनकारियों पर असुर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
18: देखिए, विधानसभा हम कहेंगे नदीम से थोड़ा जूम करके दिखाएं, विधानसभा परिसर का बोर्ड है वहां पे, और वो बोर्ड वाली तस्वीर मेरे कैमरे की तस्वीर है, अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो ध्यान से देख लीजिए। और ये सामने विधानसभा भवन है जो हमारे कैमरे के फ्रेम में है, और वहां जो छात्रों की मौजूदगी है, यही छात्र निकले थे विधानसभा का घेराव करने, पुलिस ने सामने की सड़क से रोका, बैरिकेड्स लगाए, बैरिकेड्स तोड़ दिए, छात्रों ने आगे बढ़े, पुलिस ने लाठियां चलाई, लाठी चार्ज हुआ, उसका भी असर नहीं हुआ, वाटर कैनन, टीयर गैस सब बेअसर, और अब तमाम छात्र खेतों के रास्ते होते हुए, मैंने सुबह बताया था राजीव आपको कि विधानसभा जो है झारखंड का वो एकदम अलग से थोड़ा शहरी इलाके से दूर बना है नया भवन, और यहां पर तमाम प्रशासनिक इंतजामों के बावजूद छात्र देखिए किस तरह पगडंडियों के सहारे, एक बार सहयोगी से कहेंगे थोड़ा दिखाएं, देखिए कैसे पगडंडियों के सहारे खेतों के बीच से छात्र होते हुए विधानसभा पहुंच रहे हैं। और अब सरकार जो दावे कर रही थी, जो तैयारी थी प्रशासन का अपने स्तर पे, तैयारी थी कि विधानसभा मार्च या विधानसभा घेराव को सफल नहीं होने दिया जाएगा, वो चीजें अब इतिहास बन चुकी है। देखिए, यह भगदड़ हुई है वहां पे, वहां पुलिस ने बल प्रयोग किया है, पुलिस वहां बल प्रयोग कर रही है, भगदड़ की स्थिति है वहां पे, छात्र नीचे की तरफ भागे हैं, लाठीचार्ज वहां पे, ये देखिए कैमरे के फ्रेम में लाठीचार्ज राजीव, तो ये अपने आप में अजीबो गरीब स्थिति है, इसके पहले हमने कभी नहीं देखा झारखंड में ऐसा, जो इस वक्त युवा शक्ति अपने आंदोलन को विधानसभा तक पहुंचाते हुए दिख रही है। राजीव,
1: बिल्कुल, शशि भूषण तस्वीरें तो दिखाते रहे, लेकिन शशि भूषण साथ साथ में तो सरकार से सीधा सीधा सवाल है कि आज इस परिस्थिति में चीजें पहुंची है, सिचुएशन इतनी खराब दिख रही है, तो इसके पीछे की जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार की लेट लतीफी और छात्रों की मांग ना मानना है।
19: चप्पल जूतों की बरसात कर रहे हैं, बोतल भी फेंक रहे हैं,
1: तो ये तीन हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब ये विधानसभा का आप देखेंगे कि दूसरी तरफ का हिस्सा है जो खेतों से लगा हुआ हिस्सा है, वहां पर गेट नंबर 1, 2, 3, 4 भी है, बोर्ड भी दिखाया था, अब वहां उस तरफ छात्र, लेकिन यहां भी पुलिस वाले हैं और वो वहां लाठी चार्ज कर रहे हैं, और यहां से भी छात्रों को खदेड़ा गया। तस्वीरें दिखाइए, हमारे संवाददाता शशि भूषण है, अगर शशि भूषण मेरी आवाज आपको मिल रही हो तो बताएं। आप छात्र अलग अलग मार्गों से जाने का प्रयास करें, लेकिन अब लीडरशिप, एक तरीके से लीडरशिप का रोल भी यहां पर कमजोर हो जाता है, क्योंकि कहां कोई देखे। इस बीच में बड़ी खबर आपको देते हैं, लाठी चार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, पानी की बौछारें तो की ही गई थी जिसपे नाचते गाते दिखाई दिए थे वो छात्र, और अब बड़ी खबर, पीछे के रास्ते से छात्र जब गए लेकिन वहां पर भी उन पर बल प्रयोग हुआ है। शशि भूषण, आवाज मिल रही है तो प्लीज इस समय बयां करें, बताएं क्या चल रहा है।
19: सरकारी चप्पल जूतों की बरसात कर रहे हैं, बोतल भी फेंक रहे हैं,
18: देखिए अलग अलग अलग अलग कौन से छात्र पहुंच रहे हैं, हम थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सामने जो है ना, ये एमएलए रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स है, जो झारखंड के विधायक हैं उनका ये आवासीय परिसर है, और इससे ठीक सटा हुआ ये आगे हमारी बाई तरफ विधान मंडल जो विधानसभा है झारखंड का वो है, लेकिन छात्र देखिए कहां से जा रहे हैं, थोड़ा हम आगे बताते हैं आपको चल करके जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। दरअसल ये कोई सड़क नहीं है, ये वो सड़क नहीं है जहां से सरकार जाती है विधानसभा तक या फिर विपक्ष भी पहुंचता है, ये पगडंडी है, ये खेतों के बीच की पगडंडी है जिसमें छात्र देखिए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और हर तरफ हर एंगल हर तरफ विजुअल्स हैं। सहयोगी नदीम से कहूंगा थोड़ा सा दिखाएं हर कोण के विजुअल कि कैसे एक गोरिल्ला वार की तरह छात्रों ने इसमें सफलता पाई है। और देखिए वहां पे जो मुख्य क्लाइमेक्स है वहां पे, मतलब सरकार जहां बैठी है इस वक्त, विपक्ष जहां बैठा है इस वक्त, उस सदन के सामने प्रदर्शन करते हुए उसका घेराव करने में लगभग सफल हो गए हैं, क्योंकि वहां से मुश्किल 100 मीटर की दूरी है सामने, यहां तक पहुंचना भी नामुमकिन था। लेकिन
1: आशुतोष भी जो छात्र हैं, आशुतोष आप बताएं आपके पास कैसे स्थिति है।
20: मैं उसी रास्ते पर, देखिए जो छात्र पार, मैंने कहा था ना बैरिकेड पार कर लिया है, अब वो खेतों के रास्ते विधानसभा की ओर पहुंचने लगे हैं। जहां पर मैं आया आपको बिल्डिंग दिखाता हूं, ये विधानसभा का इलाका है और ये सारे खेतों के रास्ते, वो देखिए वो विधानसभा है और ये जितने छात्र हैं एक एक करके, अब इस इलाके में क्या है दो बैरिकेड के बीच में जहां सुरक्षा व्यवस्था है, उन्होंने कहा छोड़िए आप पुलिस जो है वो बैरिकेड के पास रहेगी, ये खेतों के रास्ते निकल लिए। और देखिए रेला दो दो चार चार पांच पांच दस दस करके ऐसे ही सैकड़ों में पहुंच जाएंगे। और अब वहां पर पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, रोके तो रोके कैसे, जो बैरिकेड था वो छात्र उठा के लेके चले गए, जो कटीले तार थे उनको पता नहीं कहां फेंक दिया, थोड़ा बहुत आंसू डंडे जो चलाने की कोशिश की छात्रों को डर लगा नहीं। और अब वो सीजीएल के वही कह रहा हूं कि अब सरकार के लिए बहुत देर हो चुकी है, उनकी बस जा चुकी है, या तो मांगे माननी होंगी वरना इस आंदोलन को रोकना मुश्किल होगा। लोकेंद्र को कहूंगा जरा आइए दूसरी तरफ दिखाते, देखिए पतले रास्ते कोई रास्ता नहीं है, ये खेतों की पगडंडी है जहां से मैं वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, जहां से ये छात्र विधानसभा घेराव करने के लिए। मुझे नहीं पता भारत के आंदोलन में हाल फिलहाल में किसी पीढ़ी ने ऐसा आंदोलन किया कि संसद विधानसभा घेरने के लिए खेतों के रास्ते पुलिस को चकमा देते हुए। और ये भी नहीं याद आता कि कभी इस तरह के प्रदर्शन में पुलिस या प्रशासन की ओर से इस तरह का रेस्ट्रेन किया गया होगा कि वो डंडा नहीं चलाएंगे, बल प्रयोग नहीं करेंगे, एसओपी में भी इतनी ढिलाई। अभी सिर्फ बच्चे नहीं महिलाएं भी हैं, सब उधर उसी तरफ जा रही हैं। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं, जितने छात्र हैं पूरा इलाका हर ओर बैठे हुए हैं और आगे मानो रेला चल रहा है जो धीरे धीरे विधानसभा की ओर जा रहा है। और अगर विधानसभा का घेराव कर लिया, ये चारों ओर अगर बैठ गए हैं तो यहाँ पर वो देखिए, और वो सैकड़ों की संख्या है जो वहां पहुंच गए हैं। ये देखिए मुझे यहां से दूर से जो दिखाई दे रहा है वो एक दो दस पांच बीस नहीं है, वो सैकड़ों में है। जरा यहां से स्टेबल करके को दिखाने की कोशिश करता हूं, एक तस्वीर दिखाई लोकेंद्र, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि विधानसभा से लगभग 50 मीटर की दूर ये जो अकेले इलाके में बना हुआ है ये संख्या सैकड़ों की है। बहुत ज्यादा छात्र अगर यहां पर आ गए, इनको हटाएंगे कैसे, बातचीत करेंगे कैसे, नेतृत्व कौन है यहां पर, ये भी अपने आप में प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। और इसीलिए हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, लोकेंद्र कहूंगा थोड़ा सा आगे जरा इस तरफ आइए, देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन रास्तों से प्रदर्शनकारी विधानसभा पहुंच जाएंगे। सड़क बंद हुई तो उन्होंने सड़कों को छोड़ दिया, कच्चे रास्तों से उतर गए और उन्हीं कच्चे रास्ते, देखिए लगातार ये जो जमावड़ा है जा रहा है, ये सामने विधानसभा की बिल्डिंग मुझे दिखाई दे रही है और इसी विधानसभा के रास्ते ये जो छात्र हैं, ये आप लोगों को यहाँ का रास्ता कैसे पता चला?
21: यहाँ का रास्ता आदमी के साथ, जैसे आदमी आ रहा पीछे पीछे लोग भी आ रहे हैं।
20: नहीं तो वहाँ तो आप लोगों को रोकने की कोशिश की, अब मंशा क्या है, अब छात्र कहाँ तक रुकने वाले, क्या मंशा है आगे?
22: अब तो ऐसा लग रहा है कि अब कोई नहीं रुकने वाला,
20: आप लोग जा रहे हैं विधानसभा, लेकिन वहाँ बात किससे करेंगे?
23: अब देखिए किससे बात होता है, वहाँ पर कौन बात करता है।
20: अब कोई रास्ता अब लगता है निकलेगा, अगर विधानसभा जाएंगे भी तो क्या करेंगे?
23: बैरिकेड लगा के कुछ फायदा नहीं, साइड से एरिया इतना जगह है, खेत है, खलियान है, सब अपने छात्र जो है स्टूडेंट लोग यहाँ साइड से आ जा रहे हैं।
20: तो आगे है क्या इरादा, क्या है मंशा, क्या आप लोग वहाँ पहुँच तो जाएंगे, करेंगे क्या?
22: अब देखिए आगे जाकर के पता चलेगा, यहाँ से तो बता नहीं सकते।
20: तो इन छात्रों के साथ दरअसल आगे कटीला रास्ता, तो ये मुश्किल भरा रास्ता है, दुर्गम रास्ता है, और उसके बाद भी ये जो छात्र हैं वो यहाँ से विधानसभा की ओर पहुंच रहे हैं। मार्च कहा था निकालेंगे, मार्च इन्होंने निकाला, प्रशासन की तैयारी थी, उन तैयारियों को, ये जो जेंजी है ना इसे हर रास्ता बाईपास करना आता है। मैं लोकेंद्र कहूंगा थोड़ा सा यहाँ पर संभाले, कीचड़ है, थोड़ा सा यहाँ संभाल के आना होगा। और इन दुर्गम रास्तों से होते हुए छात्र सड़क बंद की तो गली मोहल्ले से निकल गए, मुख्य रास्ते बंद किए तो
1: के पास लौटते हैं,
20: के पास पहरा टीयर गैस चला,
1: सरकार को बातचीत करनी ही होगी, आप वो कैसे करेगी, बहुत सारी परेशानियां सरकार के समक्ष होंगी, लेकिन बहुत देर आपने कर दी, आपको छात्रों को समझाना तो होगा ही, अब वो विधानसभा तक पहुंच गए। शशि भूषण हमारे साथ, शशि भूषण आपके कैमरे से क्या दिख रहा है?
24: गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ये देखिए अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं,
18: देखिए मैं भी विधानसभा के बिल्कुल करीब आ गया हूँ राजीव, और जहाँ ये छात्र पहुंचे हैं उसी जगह पे हम भी हैं, और उसी रास्ते से आए हैं जिस रास्ते से ये छात्र यहाँ पहुंचे। जो आशुतोष बता रहे थे कि ये छापामार दस्ता है जेएनजी का, हम तो जेएनजी नहीं है लेकिन दौड़ते हुए कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए सामने वो विधानसभा है और ये पूरी सड़क विधानसभा की मुख्य सड़क है। इस वक्त छात्र हैं, ना कोई सुरक्षा है, ना कोई मार्शल्स हैं जो सुरक्षा में होते हैं विधानसभा के, सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। और आगे एक अंतिम पॉइंट है जहाँ पे छात्र हैं, तो मतलब पुलिस के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, लेकिन टीयर गैस इस्तेमाल रुक रुक करके किया जा रहा है। उसके बावजूद क्या ये छात्र पीछे हटेंगे? मुझे नहीं लगता है ये छात्र पीछे हटेंगे, क्योंकि छात्रों ने आज सुबह जब और 10:30 बजे से ये शुरू किया एजिटेशन, और लगातार वो है यहाँ चलते रहे। कई पड़ाव आए, कई बैरिकेड्स टूटे, लाठी चार्ज, वाटर कैनन, टीयर गैस, और यहाँ भी, लेकिन छात्रों ने जो अपना संकल्प था लगभग उसको पूरा किया। और सबसे बड़ी बात, उनकी तरफ से कोई प्रतिवाद नहीं, कोई अग्रेशन नहीं, कोई उस तरह की तस्वीरें देखने को नहीं मिली जो अमूमन ऐसे परिस्थितियों में दिख जाती हैं। तो ये बहुत ही दूसरे किस्म का आंदोलन कह लीजिए, प्रदर्शन कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन हाँ छात्र यहाँ पहुंच चुके हैं। अब इसके आगे ये अंतिम बैरिकेड्स है जहां मैं पहुंचा हूँ, ये अंतिम बैरिकेड्स है राजीव। इसके आगे अभी छात्र नहीं गए हैं, इसके आगे विधानसभा, सामने विधानसभा, टीयर गैस यहीं पर छोड़ा गया, और जो तमाम छात्र हैं वो दूसरी तरफ हैं, और इस तरफ में विधानसभा के सुरक्षा में लगे जो प्रशासनिक लोग हैं वो हैं यहाँ पे। जी राजीव,
1: तस्वीर देखा यहाँ पर सब, क्योंकि यहाँ पर भी वैसे खास व्यवस्था नहीं है, कटली तारे नहीं, तो यहाँ पर खुद ही रुक गए हैं छात्र, आगे नहीं जा रहे हैं या रोका गया है यहाँ पे?
18: नहीं देखिए, हम ये नहीं कर सकते हैं रोका गया है, ये क्या है, ये थोड़े बहुत बैरिकेड्स यहाँ पे लगाए हैं, बहुत बड़े बड़े बैरिकेड्स पार करके छात्र यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन छात्रों ने एक डिसिप्लिन बनाया है, वो यहाँ रुके हैं। सरकार अंदर बैठी है, विपक्ष के लोग अंदर हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि शायद कोई उधर से आदेश आ जाए, सरकार कोई फैसला ले ले, सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दे, और जो नियुक्तियां हुई हैं उन नियुक्तियों को निरस्त करने की घोषणा करे, तो एक उम्मीद लिए यहाँ पर आकर के ये टिके हैं, यहाँ पे आकर के रुके हैं, और इन छात्रों को ये लगता है कि सरकार शायद अंदर कोई फैसला करे। कुछ छात्रों से हम बात करेंगे।
1: मैं उससे पहले शशि भूषण प्लीज एक बार दोनों तरफ की तस्वीरें दिखा दें, जिस तरफ छात्र हैं उस तरफ की, और जिस तरफ सिस्टम है, जिस तरफ सरकार है उस तरफ की भी।
2: मुख्यमंत्री जी से आश्वासन चाहते हैं, बात चाहते हैं, पूरा
18: मैं आपसे बात करूंगा। देखिए ये जो है ना, ये सड़क है जिससे आप विधायक आवास में जाते हैं, जहां हम खड़े हैं इस वक्त, ये बैरिकेड्स हैं, और ये सामने विधान सभा है, ये हमारे ठीक सामने, देखिए ये विधानसभा है, और पुलिसकर्मियों की संख्या देखिए, जो पुलिसकर्मियों की तादाद हमने वहां इतनी बड़ी देखी थी ये राजीव, उससे बहुत कम है, और इन लोगों को पता है कि ये कोई अपराधी नहीं है, इसलिए जो अब तक इस पूरे प्रदर्शन के दौरान हमने पुलिस और प्रशासन का रुख देखा, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं था, बहुत ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा एग्रेशन के साथ कंट्रोल करना है, क्योंकि सुबह में ब्रीफिंग कवर कर रहा था, जो पुलिस पदाधिकारी डीएसपी वहां ब्रीफ कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें बहुत संयम के साथ पेश आना है छात्रों के साथ। थोड़ा आगे दिखाते हैं, अपने सहयोगी नदीम से कहेंगे यहाँ आकर के एक बार दिखाएं। देखिए ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा तादाद है, छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन छात्र यहाँ आकर के रुके हैं, छात्र इससे आगे नहीं जाना चाहते हैं। अब क्या यहाँ उनकी नीति है, किस चीज का वो वेट कर रहे हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और देखिए यहाँ जो रांची के और झारखंड पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ क्या रणनीति प्रशासन बना रहा है ये भी अपने आप में, चूंकि देखिए जो पुलिस पदाधिकारी हैं अब आगे वो जा रहे हैं, क्या वो यहाँ से सूचना देते हैं वो देखना होगा। और दूसरी तरफ देखिए, आपको दिखाते हैं जो विधानसभा सामने दाहिनी तरफ जो सहयोगी नदीम दिखा रहे हैं, ये विधानसभा है, और आगे जो तमाम प्रशासनिक अमले की गाड़ियां हैं वो हैं, तमाम अधिकारी और पहुंच रहे हैं वहां पे। सरकार के लिए बेहद अलर्ट की स्थिति, बेहद संवेदनशील मौका, जब जो आंदोलन
4: चल रहा है 17 दिनों से, उसमें कॉल किया गया विधानसभा घेराव का, और वो विधानसभा घेराव इस वक्त एकदम देखिए सामने ये विधानसभा है, गेट संख्या 1, और यही हम खड़े हैं, यहाँ हम खड़े हैं क्योंकि यहीं पर जो प्रोसेसर्स हैं, जो छात्र हैं, वो पहुंच चुके हैं और सबसे आगे इस जगह पर सबसे आगे तक ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आज तक ये बता रहा है, दिखा रहा है कि हालात किस कदर बने हुए हैं।
1: बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शशि भूषण, और हमारे साथ आशुतोष भी है, मैं आपके पास लौटता हूँ शशि भूषण, आशुतोष भी है। आशुतोष, क्या आप पहुंच गए विधानसभा तक?
3: स्टैंड बाय। मैं यहाँ पहुंच गया हूँ विधानसभा के जो बाहर का इलाका है, और यहीं से जो छात्र हैं उनका रेला पूरा बाहर की पेरिफेरी विधानसभा की पूरी तरह घेर ली गई है। और अब इसके आगे देखिए, अभी इसकी मुश्किल दरअसल ये है कि यहाँ से छात्रों को निकालेंगे कैसे, एक जो प्रमुख रास्ता है वहां से प्रशासन के लोग पहुंचे हैं, ये दरअसल जो आवासीय परिसर ये है, और ठीक इसके पीछे जहां से मैं, ये जो बाहर की पेरिफेरी आपको दिखाई दे रही है, यहां पर दीवारें नहीं थी, वो बैरिकेड, ये देख रहे हैं कैसे उठा करके रास्ता बना लिए, ये कोई सीढ़ी नहीं, ऐसा लग रहा था, मुझे भी लगा कि इतनी ऊंचाई ये जो दीवारें हैं ये आवासीय किसको चढ़ कैसे रहे हैं, इन्होंने बाकायदा जो बैरिकेड का हिस्सा है उसे उठाया और उसी को जो है सीढ़ी बना ली है, तो थोड़ा सा चढ़ने में मशक्कत करनी पड़ेगी, और छात्र ही हैं जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ये देखिए। और अब देखिए, ये कहा सोच सकते, ये विधानसभा से 50, वो देखिए पीछे विधानसभा 50 मीटर की दूरी पर छात्र, इन्होंने कहा था विधानसभा मार्च करेंगे, इन्होंने कर दिया, ये पहुंच गए विधानसभा के प्रांगण, जो परिसर है ये गेट संख्या 1, 2, 3 का रास्ता है विधानसभा भवन परिसर का, इसके बाहर अब छात्रों ने डेरा डाल दिया है। अब जैसे जैसे भीड़, अच्छा बाकी के छात्र एक बार जरा दिखाइए उधर तस्वीरें, देख लीजिए संख्या, कहीं से लग रहा है कि कोई बैरिकेडिंग, कोई व्यवस्था, शासन प्रशासन इनको रोक लेगा, ये रेला है, और जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ये रेला,
1: बिल्कुल
3: के रास्ते,
1: बिल्कुल वो रास्ते, ये क्या तस्वीर सामने आ रहे हैं आशुतोष, ये सब लोग वहाँ पे आकर शांतिपूर्ण बैठ गए, तो इनसे भी बातचीत करें कि यहाँ पर इतना दौड़ कर आप आए और यहाँ पर आप बैठ गए, आगे क्या करेंगे?
5: सरकार के पास आप लोग गए पूछने एक बार? भैया
3: उन्होंने कहा था घेराव करेंगे, घेराव करने आए, बैठ गए, तो अब आगे क्या करेंगे?
5: अब तो आगे जो जो सरकार हम लोग से करवाए, आप लोग सरकार के पास गए कि नहीं उनका पक्ष सुनने? एक भी बार
3: सरकार तो अभी कुछ कही नहीं रही, हम भी इंतजार कर रहे हैं, तो आप लोग अब यहीं बैठेंगे?
5: बिल्कुल।
3: ये तमाम सारे छात्र देखिए बेहद शांतिपूर्वक जो मिला छाता लेके आए हैं वो आराम से बैठ गए हैं, कोई हो हंगामा नहीं, उन्होंने कहा था मार्च करेंगे। एक बड़ा धड़ा जो है वो आगे है स्टूडेंट्स का, वो आगे विधानसभा की ओर देख रहे हैं, जहां पर एक बैरिकेड और लगाया गया कि वो परिसर जो मुख्य भवन है वो विधानसभा का भवन है, देखिए जहां पर इस समय सत्र चल रहा है मानसून का, वो विधानसभा प्रांगण है, और उससे ठीक 50 मीटर की दूरी जो आउटर फेरी है इसी बाउंड्री के पास छात्रों को रोक दिया गया, यहां से आगे वो भी बहुत ज्यादा नहीं जा रहे हैं और जो हैं वो इन्हीं सड़कों पर डट गए हैं। लेकिन इसके बाद आगे क्या होगा, अगर बातचीत नहीं होगी तो नारेबाजी करते हुए छात्र, हालांकि अभी भी बेहद शांतिपूर्ण तरीके से वो यहीं पर बैठे हैं, आपको और आगे लिए चलते हैं विधानसभा परिसर के पास, और ये देखिए पूरा रेला, अब लग रहा था ना कि छात्र कहां से आए और कैसे कैसे कितनी संख्या में, ये देखिए ये 1, 2, 4, 5, 10, 20, 50 नहीं है, गिन लीजिए इनकी संख्या, ये अनगिनत है, जितने थे वहां पर सारे के सारे आ गए, वही बैनर पोस्टर उन्हीं मांगों को लेकर के, पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का जो आंदोलन है वो विधानसभा के दरवाजे तक पहुंच गया, उन्होंने कहा था हम विधानसभा मार्च करेंगे और विधानसभा मार्च उन्होंने की, वो यहां तक पहुंच गए प्रांगण पर, अब फैसला सरकार के पास।
1: आशुतोष आपके पास लौटते हैं, शशि भूषण भी हमारे साथ हैं। शशि भूषण, मैंने देखा कि कुछ छात्र जो है पूछ रहे हैं कि क्या प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी दी गई है, कुछ कहा गया है, कोई बात आई है? ये प्रशासन इतना खामोश, मतलब सरकार इतनी खामोश क्यों है? कोई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है, कोई जानकारी नहीं दे रही है, कम से कम छात्रों को लिए कुछ तो बयान जारी किए जाते हैं, सब इंतजार ही कर रहे हैं।
4: राजीव,
1: हाँ
4: राजीव, राजीव अभी अभी अभी प्रशासन की तरफ से, अभी प्रशासन की तरफ से ऐलान किया गया है राजीव कि विधानसभा सत्र खत्म हो गया है, इसलिए छात्र अपना प्रदर्शन जो करते हुए यहां पहुंचे हैं वो वापस जाएं। हमारे स्थानीय सभी सत्यजीत यहां पे मौजूद हैं, क्या विधानसभा के अंदर की स्थिति क्या रही आज?
6: अभी मानसून सत्र चल रहा था, आज की जो कार्रवाई थी वो खत्म हो चुकी है, लिहाजा पुलिस की तरफ से ऐलान किया जा रहा है, SSP ने खुद अनाउंस किया है और अनाउंस किया जा रहा है कि अब जब आप विधानसभा मार्च आपका था, आप यहाँ पे अपने बातों को रखने के लिए आए थे, विधायक जो बैठते हैं, मंत्री जो बैठते हैं, जो डिसीजन मेकर हैं लोकतंत्र के मंदिर में जो बैठते हैं, उनसे जब आप बातें करने आए थे, तो जब सत्र खत्म हो गया आज का, तो क्यों नहीं आप वापस चले जा रहे हैं? और ये देखिए विधायक है विक्सल नमन विक्सल कोंगाली कोंगारी और यहाँ से किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि
18: विधायक अभी निकले नहीं है। सत्यजीत आप कह रहे हैं
6: बारी बारी से सब निकलना शुरू कर चुके हैं क्योंकि सदन स्थगित हो चुका है, कल तक के लिए सदन स्थगित हो चुका है। तो लेकिन अब जो है ये रास्ता जो है विधायकों और मंत्री का और सामने जो रास्ता देख रहे हैं वो मुख्यमंत्री उधर से उस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं और एक नंबर गेट से वो घुसते हैं विधानसभा परिसर में जाने के लिए। और ये रास्ता जो है अमूमन ये मंत्रियों और जो विधायक हैं उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, फिर वो दो नंबर या तीन नंबर गेट से घुसते हैं। और यहाँ देखिए एकदम जो प्रोटेस्टर्स हैं वो बिल्कुल सामने पहुंच चुके हैं।
18: आज तक आपने कभी देखा पुराना विधानसभा हो या नया विधानसभा इस तरह का कोई इरिटेशन जो यहाँ पहुंच जाए?
6: अब देखिए यहाँ पे मुझे रहते हुए लगभग 22 से 24 साल हो चुके हैं लेकिन ऐसा प्रोटेस्ट हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि कोई जो है यहाँ तक पहुंच जाए, प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ तक पहुंच जाए ऐसा कभी देखा नहीं गया है। और नया विधानसभा की स्थापना जब 2019 में हुई थी तो एक स्पेस डेजिग्नेट किया गया था, जैसे पटना में है उसी तरह से रांची में भी जगन्नाथ मंदिर के पास जो है वहाँ एक मैदान था जहाँ मोर्चा को रोक दिया जाता था और वहाँ पे वो विरोध प्रदर्शन करते थे। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि जो रूट था और जो बैरियर्स था उसको एस्केप करके उसको स्केल डाउन करके
18: और खेतों से तो मैं खुद आया जो
6: ओपन स्पेस जो था वहां से प्रोटेस्टर जो है वो घुसकर यहां पे आए और यहां आकर इस गेट तक पहुंच गए। और यहां पे प्रोहिबिटरी ऑर्डर ऑलरेडी जो है वो लगा हुआ है बीएनएस की धारा 163 और इसके अलावा जो है 144 सीआरपीसी का जिसको हम कहते हैं।
18: ये प्रशासनिक अधिकारी भी लगता है यहाँ से निकल रहे हैं पीछे की तरफ चूंकि उन्होंने जो मैसेज कॉल देना था वो दे दिया है कि विधानसभा का सत्र आज का स्थगित हुआ है, मतलब आज की कार्यवाही स्थगित हो गई है तो आप यहाँ से निकल जाइए। और यही वजह है कि ये पूरा हाई प्रोफाइल जोन जहाँ सुरक्षा होती है, जहाँ बगैर प्रवेश पत्र के बगैर एंट्री के पास के आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं, वहाँ वो मीडिया भी मौजूद है, हम भी मौजूद हैं और बाकी जो सोशल मीडिया कवर करने वाले हैं वो भी मौजूद हैं, छात्र भी मौजूद हैं। तो अपने आप में ये एक अभूतपूर्व स्थिति है राजीव, जो पहले कभी नहीं देखी हमने। और अपने सहयोगी नदीम से कहें थोड़ा किनारे हो जाए क्योंकि गाड़ियां जो हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों की जा रही हैं। और तो ये अभी भी छात्र जो है ना वो जमे हुए हैं यहाँ पे छात्र।
1: बिल्कुल शशिभूषण आपके पास हम लौटते हैं, हम इस समय डिमांड अलग अलग तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं लेकिन यहाँ पर सवाल है, सवाल बहुत बड़ा सरकार से है, क्या आपने पूरे दिन भर में छात्रों के साथ बात करने का प्रयास ही नहीं किया है? आपने इस आंदोलन को लंबा होने दिया गया है, विधानसभा तक पहुंचने दिया है, ठीक है बल वैसा प्रयोग नहीं हुआ जैसे आमतौर पर होता है लेकिन छात्रों के साथ संवाद तो आवश्यक था। आप उनकी मांगे नहीं मान रहे थे लेकिन उनके साथ संवाद तो स्थापित करना था। अब छात्र भी कह रहे हैं कि हमें बातचीत नहीं करनी है अब आपसे, अब बातचीत करने का समय चला गया, अब तो सीधा सरकार चुनने और उसके बाद गिराने की बात वो करने लगे हैं कि अब आने वाले चुनाव में देखेंगे। लेकिन ये डेमोक्रेसी में अगर लोकतंत्र में प्रदर्शन होता है तो दूसरी तरफ सरकार को बात भी करनी होगी, आप चाहे उनके कुछ मांगों पर आपको आपत्ति हो सकती है लेकिन संवाद तो होना ही चाहिए, भले ही आपकी पहले कई दौर की बातचीत हुई हो और बातचीत में कोई हल ना निकला हो लेकिन उसके बावजूद भी संवाद नहीं रुकना चाहिए। आज विधानसभा चलती रही विधानसभा के बाद हंगामा होता रहा और इस समय भी हो रहा है। छात्र आए हैं इस उम्मीद में कि कोई बात होगी, वो मीडिया कर्मियों से भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपकी कोई बातचीत हुई, क्योंकि सारे विधायक सारे मंत्री तो विधानसभा के अंदर हैं और वो सदन की कार्यवाही में है, ना उन्होंने बाहर मीडिया से बातचीत की है, वो तो विधानसभा के अंदर ही अपने मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जो झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है उस मुद्दे पर किसी ने बातचीत ही नहीं की, उस मुद्दे पर किसी ने कुछ बोलना उचित नहीं समझा, ये बहुत बड़ा सवाल है। शशि भूषण अभी बताएं क्या कोई सॉल्यूशन निकलता दिख रहा है?
18: देखिए मुझे तो नहीं दिख रहा है क्योंकि जो रांची के एसएसपी हैं वो थे वहां पे, दूसरे प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने एक वहां घोषणा की औपचारिक तौर पे, जो औपचारिकता होती है कि विधानसभा का आज की जो कार्यवाही है विधानसभा की वो खत्म हो गई है, इसलिए आप यहां पहुंचे भी हैं तो यहां पर कोई आपका फोरम नहीं है, मतलब उनके कहने का तात्पर्य यही था। और उसके बाद एसएसपी की गाड़ी भी लौट गई, तमाम पुलिस अधिकारी भी पीछे की तरफ चले गए, पता नहीं सरकार क्या प्लानिंग करके क्या दिमाग में सोच करके बैठी है। लेकिन हमने जो देखा राजीव आज दिन भर में, जो
4: पुलिस और प्रशासन रहा सिवाय कुछ मौकों के, जब टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, जब वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, या फिर जब लाठियां एक बार भाजी गई। बहुत ज्यादा बल प्रयोग हो सकता था, लेकिन चूंकि छात्र बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उनके मार्च में कहीं कोई हंगामा नहीं था, कोई हो हल्ला नहीं था, कहीं कोई प्रशासन या पुलिस के लोगों के प्रति गलत तरीके से वो पेश नहीं आ रहे थे। हमने तो कई जगह देखा वो पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे, कुछ छात्र हमसे कह भी रहे थे। तो ये परिस्थितियां ऐसी रही कि पुलिस बहुत बल प्रयोग भी नहीं कर पाई है। और देखिए स्थिति क्या है, सरकार जहां बैठी थी विधानसभा में, आज की कार्यवाही वहां खत्म हो चुकी है।

0: ऐसा नहीं है कि उनमें इतनी क्षमता इस वक्त मुझे नजर आ रही है, दिख रही है कि वो इन छात्रों को रोक लेंगे। छात्र जब चाहे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन छात्रों का धैर्य जो है ना, उसकी तारीफ करनी होगी। यहां पहुंचने के बाद छापामार दस्ते की तरह गोरिल्ला युद्ध मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, एक जेएनजी आंदोलन में उन्होंने खेतों का पगडंडियों का सहारा लेते हुए यहां पहुंचा उनका काफिला। और यहां पहुंचने के बाद भी वो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से खड़े हैं, हाथों में तिरंगा है, वही पोस्टर बैनर्स हैं, वही प्ले कार्ड्स हैं।
1: तो आने रही आपसे बातचीत करने के लिए, आप क्या करेंगे आगे, यहीं पर डटे रहेंगे या फिर वापस घर को जाएंगे?
0: उसको लेकर के जी देखिए, हम कोशिश करते हैं उन छात्रों से बात करने की, जो छात्र हैं यहाँ पे, क्या वो छात्र क्या कह रहे हैं, क्या चूंकि आप लोगों को तो कहा गया कि अंतर विधानसभा की कार्यवाही खत्म हो गई है, इसलिए आपका यहाँ कोई फोरम बनता नहीं है बातचीत करने का। तो आप, मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ, मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ कि अब आप लोग आगे क्या करेंगे, क्योंकि जो बड़े अधिकारी है वो तो पीछे चले गए।
2: देखिए, ये हम लोग भगवान, भैया देखिए, हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के वंशज है, और झारखंड, जब झारखंड के लिए वो लड़ सकते हैं तो हम लोग भी लड़।
0: रणनीति क्या होगी, चूंकि जो प्रशासनिक अधिकारी आए थे एसएसपी और बाकी, मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अब विधानसभा में आज की कार्यवाही खत्म हो गई है, सभी लोग चले गए हैं, तो अब आपको भी तो मैसेज यही दिया जा रहा है कि आप चले जाइए यहाँ से।
3: जी सर, लेकिन सर हमारी छोटी छोटी तीन मांगे हैं, हमारे तीन मांगे हैं सर, ठीक है, जो एग्जाम है उसको
0: ये देखिए, वॉलंटियर्स हैं जो पीछे की तरफ कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, और अब उन छात्रों को कहा जा रहा है कि थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए, और छात्र यहाँ बैठ भी गए हैं नीचे, राजीव छात्र बैठ भी गए हैं, और छात्रों का क्या क्या बोल रहे हैं?
4: जी सर,
0: क्या बोल रहे हैं आप?
4: हमारा कहना है कि सर, भले पूरा विधायक लोग चले गए, मंत्रिमंडल सारा चला गया, लेकिन छात्र तब तक यहाँ से नहीं हिलेगा जब तक उसने अपना जितना मांग रखा है पूरा ना हो जाए, तब तक छात्र यहाँ से एक बार भी हिलने का नाम नहीं।
0: रात यही गुजरेगी
4: जब तक मांग पूरा नहीं होती, हम लोग यहीं पे धरना।
0: अब देखिए, एक छात्र
1: नजर बना रखिए, हम अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। छात्र इस समय डटे हुए हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम तो नहीं हटेंगे, अब यहाँ चाहे विधायक आए ना आए, हम तो अभी यहीं पर रुकने वाले हैं। अब देखना होगा कि ये जो डेडलॉक बना हुआ है ये खत्म कैसे होगा। रुकने छोड़ से ब्रेक के लिए नजर बनी हुई है, हर अपडेट आज तक पर आपको मिलेगा, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Papa.
2: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का?
3: सब कैशलेस हो गया
2: है।
3: हाँ।
2: ला, ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ तो।
5: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with
1: Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you?
2: Punjab National Bank. Bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबा केसरी हिंट बड़े आराम से
3: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर मेरे साथ फिर से शुरू

0: वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
1: राजनीतिक दलों के लिए एक रास्ता बनता है जहां युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने का। मैं विशेष रूप से नौजवानों से कहूंगा, न हमारी राजनीतिक छत्र छाया की आपको आवश्यकता है, न किसी और राजनीतिक दलों की छत्र छाया की आपको आवश्यकता है। आप छात्र हैं, आपका अधिकार है, और आपका अधिकार आपको मिले, आपको न्याय मिले, ये काम करने की जिम्मेवारी सरकार की है जो पूरा होगा।
2: हमारे बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं, अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसके बारे में कुछ विस्तार से बताया। मेरा आग्रह है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा है उस पर भरोसा करें, और हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। आप बात करके इसका समाधान करें, और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित हैं इसके लिए, और वो लगातार हमसे बात कर रहे हैं कि बच्चों की समस्याओं को कैसे समाधान किया जाए। तो मेरा आप सभी बच्चों से आग्रह है कि बजाय लड़ाई इसके स्थान पर हमसे जब भी मिलेंगे आपको एक पॉजिटिव सकारात्मक रिस्पांस मिलेगा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
3: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: Vimal, bolo zubaan kesri. Hint, bade aaram se.
4: दिल्ली के जंतर मंतर की सड़कों से लेकर झारखंड के स्टेडियम तक देश ने इस बार उस जनरेशन की बुलंद आवाज की ताकत देख ली है जिसे दुनिया जेन जी कहती है।
5: हम लोग भी देश की सेवा करने चाहते हैं।
4: एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनसे संवाद साध रहे हैं तो दूसरी तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इनके बीच चौपाल लगा रहे हैं।
6: थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा।
7: वी आर गोइंग थ्रू ए स्ट्रेंज टाइम इन आवर कंट्री। Students are on the street in severe pain. They don't have work.
4: और तो और संघ प्रमुख मोहन भागवत भी अब जेन जी के साथ वैचारिक संवाद की टेबल पर हैं।
8: जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है।
9: जी सर,
8: इस अपनेपन से डायलॉग का 7 महीने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है। तो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
9: अरे वाह, बढ़िया है।
8: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील।
4: सवाल है आखिर अचानक सबका ध्यान जेन जी से बात करने, मनाने, समझाने या अपने साथ लाने पर क्यों है? क्योंकि ये वो पीढ़ी है जिसने बीते दौर की पुरानी राजनीतिक लड़ाइयों को नहीं जिया है। ये अतीत के बस्ते ढोने वाली पीढ़ी नहीं है, ये वो दौर है जो वर्तमान की हर एक चाल को खुली आंखों से देख रहा है और भविष्य का बारीक आकलन कर रहा है। साफ है, देश का ये युवा इतिहास के पन्नों को पलट कर नहीं बल्कि आज के हालात को देख कर अपना फैसला करेगा। जेन जी के वोट का रिमोट अब पुराने नारों से नहीं बल्कि नेताओं और राजनीतिक दलों के आज के एक्शन से कंट्रोल होगा।
10: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

रांची में असेंबली तक पहुंचे छात्रों पर दागे गए आंसू गैस के गोले, रोकने के लिए पुलिस ने किया लाठी चार्ज, कटीले तार और वाटर कैनन भी नहीं तोड़ पाए छात्रों के हौसले, विधानसभा तक छात्रों का सैलाब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जबरदस्त प्रदर्शन, झारखंड पब्लिक सर्विसेज कमीशन के पूर्व चेयरमैन गिरफ्तार, परीक्षा धांधली में प्रवर्तन निदेशालय ने शुरू की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच। लंबे गतिरोध के बाद छात्रों के मुद्दे पर संसद में अमित शाह के बयान के लिए सहमत हुई सरकार, किरण रिजिजू बोले जब गृहमंत्री सदन में बोले तो बैठकर शांति से सुने विपक्ष।

0: में नई हलचल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले शरद पवार गुट के सभी 8 सांसद। गौरव सावंत, आप देख रहे हैं रणभूमि। रांची में झारखंड पब्लिक सर्विसेज कमीशन पेपर लीक और कथित धांधली के खिलाफ छात्रों का जो आंदोलन है, उसमें आंधी में तिनके की तरह बैरिकेड्स बिखर गए। जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, वो रांची में विधानसभा के बिल्कुल पास तक पहुंच गए। उन्हें रोकने के लिए झारखंड पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, पानी की बौछार की, आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन छात्रों के आगे ना बैरिकेड टिके ना ही पुलिस के आंसू गैस के गोले। पुलिस के इंतजाम सब फेल हो गए। बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए छात्र विधानसभा के करीब इस समय पहुंचे हुए हैं। झारखंड में आज जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विसेज कमीशन और जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन, उसके लिए एक बड़ा दिन है। विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और अन्य मांगों को लेकर छात्र कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, और इसी क्रम में झारखंड विधानसभा के घेराव के लिए छात्रों का आज मार्च था, वो मार्च इस समय जारी है। छात्रों ने विधानसभा में रास्ते में बनाए गए और कई परतों में बैरिकेडिंग की गई थी, एक के बाद एक परतों को तोड़ते हुए छात्र आगे बढ़ रहे हैं। लगातार इस समय उन पर आंसू गैस के पहले गोले छोड़े गए, वाटर कैनन की बरसात की गई, फिर पुलिस का कहना है वो लाठीचार्ज नहीं, लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में छात्र आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें पीछे धकेलने का प्रयास किया गया, लाठियां दिखाई गई। विधानसभा के करीब पहुंच चुके इन छात्रों को रोकने के लिए प्रशासन के अब तक के सभी प्रयास विफल नजर आ रहे हैं। छात्रों के विधानसभा मार्च को देखते हुए रांची में सुरक्षा व्यवस्था पहले ही बेहद कड़ी कर दी गई थी। विधानसभा जाने वाले सभी रास्तों पर कई लेयर की बैरिकेडिंग, कई परतों में और हर कुछ दूरी पर अलग अलग बैरिकेड लगाए गए थे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कांटीले तार यानी बार्ब्ड वायर फेंसिंग एक तरह से वो भी सड़क पर बिछाए गए थे, कांटीले तार। लेकिन जब छात्र आगे बढ़े, जब सैलाब आगे बढ़ा, तो बैरिकेड भी टूटते चले गए और कांटेदार तार भी, सब जितने भी अरेंजमेंट्स किए थे प्रशासन ने, वो सभी धराशायी रह गए। विधानसभा के आसपास इस समय भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती है। वहीं इलाके में बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, इसकी धारा 163 ये लागू है, निषेधाज्ञा इस समय लागू है। दरअसल छात्रों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच 3 दौर की बातचीत अब तक हो चुकी है। कल भी दोनों पक्षों के बीच 5 घंटों से ज्यादा समय तक बातचीत चली। सरकार की ओर से छात्रों की कई मांगों पर सहमति जताकर आंदोलन खत्म कराने की कोशिश भी की गई। यहां तक कि सरकार ने कहा हमने 98% मांगे छात्रों की मान ली है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय फंसा हुआ है वो सीबीआई जांच का मुद्दा है। लेकिन यही इकलौता मुद्दा नहीं है, और मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। सत्यजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से, आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं, लगातार हम उनकी रिपोर्ट्स भी लेते रहेंगे। शशि मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि, क्या छात्रों को पीछे धकेलने का जो प्रयास है उसमें कुछ सफलता मिल पा रही है? प्रशासन का दावा तो यह है कि वो लाठी चार्ज नहीं कर रहे हैं, बस छात्रों से पीछे हटने का निवेदन कर रहे हैं, इस समय की स्थिति क्या है?
1: गौरव, असफलता असफलता और असफलता, प्रशासन के सामने सरकार के सामने कोई ऐसी बात आज नजर नहीं आई जो छात्रों के खिलाफ वो मजबूत स्टैंड दिखे। मैं आपको दिखाता हूं, मैं इस वक्त बिहार माफ कीजिएगा झारखंड विधानसभा परिसर के अंदर हूं और ये देखिए सामने जो है ना वो स्टूडेंट्स आ गए हैं, परिसर के अंदर आ गए हैं, कोई दूर नहीं है और तमाम ये सुरक्षा बलों की मौजूदगी है यहाँ पे। लेकिन छात्र कह रहे हैं कि हम हर हाल में यहाँ बने रहेंगे। हो सकता है ये पूरा प्रोटेस्ट जो अब तक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा था वो आज यहाँ देखने को मिलेगा। और ये देखिए, ये सामने जो झारखंड विधानसभा है वो है और थोड़ी देर पहले तक विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी, यहाँ पर मुख्यमंत्री मौजूद थे, सरकार के सभी मंत्री मौजूद थे, विपक्ष के नेता मौजूद थे, लेकिन चूंकि कार्यवाही खत्म हो गई तो सभी यहाँ से रवाना हो चुके हैं और यही ब्रीफिंग दी गई थी यहाँ से थोड़ी देर पहले SSP ने दी कि जब कार्यवाही खत्म हो गई है तो आप लोग जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते यहाँ पहुंचे हैं उनका बहुत प्रासंगिक नहीं है यहाँ बने रहना। लेकिन अब की स्थिति यह है कि छात्र यहीं पर धरने पर बैठने की तैयारी में है। दूसरी तरफ आपको दिखाता हूँ, देखिए ये दाहिनी तरफ बाईं तरफ का इलाका जो सहयोगी नदीम दिखा रहे हैं, तमाम जो दीवाल है उसके ऊपर ऊंची ढलान है, सब जगह छात्र हैं। सामने सुरक्षा कर्मी है, उनकी तादाद इतनी तो नहीं नजर आती कि अगर छात्र चाह लें तो आगे ना निकल पाए या रुक जाए, उनको रोक पाए, लेकिन सबके बीच में छात्रों ने धैर्य बना के रखा है। उनकी उम्मीद जो सुबह थी वही अभी है कि सरकार फैसला लेगी, जो JSCC जो मामला है उसमें जो नियुक्ति हुई है उसकी CBI जांच होगी और साथ ही साथ जो बहाली प्रक्रिया हुई है उसको रद्द किया जाएगा। गौरव,
0: अच्छा ये बताइए शशि, क्या मामला मुख्य तौर पर केवल CBI जांच को लेकर अटका है? क्योंकि सरकार की तरफ से इस तरह के दावे किए गए थे कि छात्रों की 98% बातें मान ली गई हैं, केवल कुछ मुद्दों पर मामला अटका है और इसीलिए छात्रों को अब अपना आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। छात्र क्या कह रहे हैं?
1: देखिए, छात्रों की दो प्रमुख मांगे हैं, जो 2% की बात कही जा रही है ना गौरव, उसमें दो प्रमुख मांगे हैं। एक तो ये कि JSCC जो है ना, JSSC जो है उसके अंदर जो CBI जांच है वो हो, और दूसरे जो CGL की परीक्षा हुई थी उस CGL की परीक्षा को रद्द किया जाए, उस नियुक्ति को रद्द किया जाए। तो ये दो ऐसी मांगे हैं जिसमें सरकार के लिए भी फांस है। सरकार ये कह रही है कि मामला उससे जुड़ा सुप्रीम कोर्ट में है, हम फैसला नहीं ले सकते हैं। कल 3 मंत्री आए थे डायलॉग के बाद, उन्होंने बात अपनी रखी। CBI जांच को लेकर के भी उनका अपना तर्क है, उनका कहना है कि CBI जांच को लेकर के जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है झारखंड में वो बहुत अच्छा नहीं रहा है, इसी वजह से हम CBI पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। ED जांच जो है वो GPSC में करने के लिए अनुशंसा कर दी गई है। जी,
0: अच्छा एक और बात कही जा रही थी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ये कह रहे थे कि हम पारदर्शी जांच करेंगे। अब जो हम तस्वीरें देख रहे हैं कि अब से कुछ देर पहले पुलिस ने हवा में लाठियां दिखाई, क्या लाठियां भांजी गई? कुछ छात्र संगठनों का यह कहना है कि कुछ छात्र घायल हुए हैं, सच्चाई क्या है?
2: अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, देखिए
1: नहीं, छात्र तो घायल हुए हैं, लाठियां जब चटकाई गई तो छात्र घायल हुए हैं। कई छात्रों को मैंने खुद देखा है, मैं खुद वहां सबसे करीब था जब लाठियां चटकाई गई और कई छात्रों के घुटने में चोट आई, कमर में चोट आई है, कुछ भगदड़ की वजह से भी घायल हुए हैं। टीयर गैस से काफी परेशानी हुई, जो टीयर गैस मतलब सरकार जो प्रशासन जो है वो जिन जिन माध्यमों से नियंत्रण कर सकता है स्टूडेंट्स को या किसी एजुकेशन को, वो तमाम चीजें आज की गई हैं, वाटर कैनन भी, लाठी चार्ज भी, और उस तरीके से लाठी चार्ज तो नहीं कहेंगे हम जो पुलिस कर सकती थी, लेकिन हाँ उसका एक सबसे बड़ी उसकी एक वजह यह रही कि छात्रों ने जो प्रदर्शन किया तो उसमें बहुत संयम था, बहुत धैर्य था और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उनका मार्च था। शायद यही वजह रही कि प्रशासन भी बहुत एग्रेसिव नहीं रहा उसको लेकर के, लेकिन हाँ वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, कई बार वाटर कैनन बंद हुआ, चालू हुआ, टीयर गैस छोड़े गए, लेकिन यहां तक पहुंचना गौरव अपने आप में बहुत छापेमार दस्ते की तरह ये जेंजी प्रोटेस्टर्स जो हैं वो पहुंचे हैं, वो बहुत दिलचस्प कहानी है। उस पूरी कहानी को ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हमने दिखाया भी है।
0: और वो ग्राउंड रिपोर्ट हम आपकी दिखाएंगे भी और आपसे ये सुनेंगे भी कि कैसे छापामार दस्ते के तौर पर छात्र छोटे छोटे समूहों में आगे बढ़ते गए और एकाएक बैरिकेड तोड़ते हुए, और ये जो वाटर कैनन चल रहा है, पानी की बौछार छात्रों पर की जा रही है उन्हें पीछे धकेलने के लिए, फिर भी वो डटे रहे। अच्छा, इस बीच देवेंद्र महतो जो पिछले 9 दिनों से अनशन पर थे और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका बेहद वजन अब कम भी हो गया है, उनका कहना है 3 राउंड की बातचीत हो चुकी है, अब आगे बातचीत नहीं करेंगे सरकार के साथ। सुनिए।
3: आंसू गैस, लाठी चार्ज, वाटर कैनन सब का प्रयोग किया जा रहा है हमारे आवाज को दबाने के लिए। ये सरकार डर गई है, कायर सरकार है। जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है, लेकिन हम लोग भी देखे हैं और देखेंगे, इनका जेल को भी देखे हैं, इनका पुलिस का लाठी में कितना दम है, इनका टीयर गैस में कितना पावर है, इनका वाटर कैनन तो घोटाला हो गया, वो भी आधा अधूरा छोड़ दिया उसको,
4: वो भी स्टूडेंट का ताकत के सामने टिक नहीं पाई।
3: तो हम यही कहेंगे कि ये सब से छात्र नहीं डरेंगे। जब हम 9 दिन भूखे हैं, हम यहाँ आए हैं, हमारा सलाइन चढ़ा करके हम यहाँ चल रहे हैं, अन्न ग्रहण नहीं कर रहे, तो इतना आसान है डरा देना? हम लोग डरने वाले नहीं है। सरकार का एक ही विकल्प है, हमारा मांग को पूरी करे, अन्यथा सरकार अपना कुर्सी नहीं बचा पाएगी, उसका कुर्सी पर खतरा है।
0: अब यह कहा जा रहा है कि जो छात्र हैं वो विधानसभा परिसर के अंदर या बिल्कुल उसके बाहर वहीं बैठकर तब तक विरोध करेंगे जब तक सीबीआई जांच की मांग मान नहीं ली जाए। अच्छा, अब से थोड़ी ही देर पहले किस तरह से छात्र छापामार दस्तों में आगे बढ़ रहे थे, आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर है, देखिए उनकी ये रिपोर्ट।
5: जैसे ही प्रशासन टीयर गैस चलाने की कोशिश में था, प्रदर्शन देखिए, फिर से वाटर कैनन शुरू हो गया, फिर से पानी चलाना शुरू कर दिया, यहाँ पे फिर से वाटर कैनन चलाना शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों पर दरअसल टीयर गैस चलाने की तैयारी थी, लेकिन तुरंत ही उनको पुलिस ने रोक दिया। प्रदर्शनकारी आगे पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों को घेर लिया, और अब जो है फिर से वाटर कैनन चल रहे, देखिए, और अब ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, इसका काम आग बुझाना है। इस फोर्स से भला आप प्रोटेस्टर्स को कैसे रोकेंगे? तो उन्होंने जैसे चलाया है, ये छात्र यहाँ पर नाचने लगे हैं, वो लग रहा है कि वाटर पार्क में कोई रेन डांस हो रहा है, इनके लिए तो रेन डांस का मौका मिल गया, उमस भरी गर्मी से राहत मिल गई है। अब पुलिस की कोशिश ये होगी कि इनको किसी भी तरह रोका जाए। 2 वाटर कैनन जो टैंकर थे वो खाली हो गए, एक फायर का जो टेंडर है वो भी खाली हो गया, और यहाँ पर देखिए इन छात्रों का यहाँ पर जश्न चल रहा है, रेन डांस चल रहा है।
0: अच्छा, जिसे रेन डांस कहा जा रहा है, पुलिस भी बच्चों को इस समय चोट नहीं पहुंचाना चाहती, वो इसीलिए इस तरह से वाटर कैनन मार रही है कि वो पीछे तक धकेला ना जाए, उन पर पानी पड़े अगर वो पीछे हटे। पुलिस भी यही कह रही है, हमारी कोशिश ये है कि छात्र पीछे हट जाए, उन्हें चोट ना पहुंचे। आशुतोष की एक और रिपोर्ट देखिए।
5: हेमंत सोरेन ने भी बयान जारी करके कहा कि छात्रों को आंदोलन, सरकार उनकी मांगों को लेकर के मान रही है, मंत्रिमंडल का जो एक डेलीगेशन बनाया गया था मंत्रियों का 4 कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन सारी मुद्दे मानने के बाद, यहां तक कि छात्र सीबीआई जांच को लेकर के भी सरकार के साथ एक बार कुछ कहते ना समझौते को तैयार थे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है सीजीएल पर पेच फंसा है। सरकार कह रही है हमारे हक में नहीं है, हमारे बस में नहीं है, छात्र कह रहे हैं अगर आपके बस में नहीं है तो हमारे हक में नहीं है, और इसीलिए सांकेतिक रूप से इन्होंने विधानसभा घेराव करने का संदेश दिया था, इसलिए कि विधानसभा से बड़ी कोई ताकत राज्य में नहीं हो सकती, सरकार चाहे तो किसी भी आदेश को विधानसभा के जरिए कानून या अध्यादेश ला करके पलट सकती है, और अगर ऐसे में होता है उसे केंद्र का सहयोग चाहिए, तो आप जान रहे छात्रों का सहयोग है, बीजेपी, बीजेपी युवा मोर्चा, बीजेपी के जितने संगठन उन सब ने सहयोग दिया है, तो ऐसे भी मुश्किलें नहीं लगती कि केंद्र सरकार अगर झारखंड की सरकार को अध्यादेश लाती है पलटने के लिए तो वो उसमें आनाकानी करेंगे, मदद नहीं करेंगे, और अगर ऐसा करेंगे तो उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के यहां राजनीतिक इच्छा शक्ति की परीक्षा है। छात्रों ने 16 दिन का समय दिया, बातचीत की, और आज देखिए हेमंत सोरेन के जन्मदिन के मौके पर ये छात्र ये उन्हें लोकतंत्र का गिफ्ट देने आए हैं कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप अगुवा हैं, हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई आपत्तिजनक नारेबाजी नहीं हुई, ये छात्रों ने अनुशासन का पालन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर सब्र की बांध टूटा तो हम मार्च करेंगे, मार्च करने आए हैं, वो कह रहे हैं हम दरवाजे पर आए हैं, अब यहाँ पुलिस उन्हें रोक रही है, छात्र भी रुके हुए हैं, तो एक बड़ा फ्रेंडली सा मैच हो रहा है, कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं, लेकिन अब वो विधानसभा के दरवाजे पर डट गए हैं, जवाब है सरकार, इंतजार है सरकार के जवाब का, क्या वो सीजीएल को लेकर के कोई फैसला लेती है, नहीं लेती है तो कोई नहीं जानता, ये डेडलॉक अब कब तक चलेगा।
6: कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम और एक स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन, इन्हीं मुद्दों पर यह मामला अटका हुआ है। सरकार हालांकि ये तो कह रही है कि आने वाले समय में कंप्यूटराइज एग्जाम करेंगे, इस समय जो कुछ भी जांच हो रही है वो कोर्ट की सहमति और कोर्ट के आदेश पर जांच हो रही है, इसीलिए नहीं कैंसिल किया जा सकता। लेकिन छात्र कह रहे हैं अब हम विधानसभा परिसर में ही प्रदर्शन करेंगे। किस तरह से बैरिकेड टूटे, देखिए मेरे सहयोगी शशि की ये रिपोर्ट।
7: छात्र घायल हो गए हैं, ये देखिए बैरिकेड्स तोड़ दिए हैं छात्रों ने, और जो कटीले तार लगाए गए थे उस बैरिकेड्स को लेकर के छात्र अब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लेकर के जा रहे हैं,
8: उसको किनारे करेंगे,
7: उसको आप लोगों ने ध्वस्त कर दिया,
8: सब तोड़ देंगे।
7: ये देखिए ये देखिए ये छात्र, ये मतलब बारी बारी से इसी तरह ले आइए क्या,
9: हम लोग सब तोड़ देंगे,
7: अभी सब तोड़ देंगे।
10: हम लोग बात का माना नहीं जा रहा है, क्या करें बताइए। 10 दिन से धरना में बैठे हुए हैं, दो को कल देखें, दो पेशेंट को कल तोड़ना पड़ा, भूख हड़ताल में सीरियस हो गए थे। तो
7: सरकार आपको देखें तस्वीरें दिखाते हैं, जो प्रशासन ने बैरिकेड्स लगाए थे, ये कटीले तार जो लगाए थे, उन कटीले तारों वाले बैरिकेड्स को छात्रों ने ध्वस्त कर दिया है और किनारे ला करके यहाँ पे फेंक दिया है उसको। तो ये छात्रों की ताकत है जिन्होंने तमाम सरकार और प्रशासन के इंतजाम को ध्वस्त कर दिया है। और देखिए ये लाठीचार्ज, ये देखिए ये देखिए ये भगदड़ यहाँ पे हुई है, ये भगदड़ यहाँ पे हुई है, और ये देखिए ये यहाँ पे ये पहली दफे छात्रों को खदेड़ा गया है, और पहली दफे बैकफुट पर छात्र आए हैं, और ये लाइव विजुअल्स जो हम दिखा रहे हैं, आप देखिए जो छात्र हैं वो पहली दफे बैकफुट पे आए हैं। संभव है पुलिस वालों ने उधर से कोई बल प्रयोग किया हो, कोई ऐसी स्थिति बनी हो जिसको लेकर के अब यहाँ से क्या ये पूरा एजिटेशन, क्या ये पूरा मार्च बना रहेगा शांतिपूर्ण, ये देखना दिलचस्प होगा। तो हम ये देखिए फिर छात्र आगे बढ़े हैं और अब यहाँ पे ये पहली दफे जो प्रतिवाद है, प्रतिरोध है, वो थोड़ा सा दिखता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी भी बहुत अनियंत्रित स्थिति नहीं है, छात्रों ने अपना वो संबल बना कर रखा है जो शांतिपूर्ण है वो, लेकिन पुलिस की तरफ से जरूर ऐसा एक्ट किया गया जिसकी वजह से जब हम बातचीत कर रहे थे आपसे, दर्शकों को बता रहे थे कि स्थिति क्या है, तो भागदड़ की स्थिति बनी है, और छात्र पहले पीछे आए, अब फिर छात्र तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं।
6: तो झारखंड विधानसभा में जो सेशन है वो 3 बजे का था, उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बाकी नेता वहां से जा चुके हैं। पुलिस अब बार बार छात्रों से कह रही है, अब जब मुख्यमंत्री यहां नहीं है, विधायक यहां नहीं है, अब आप लोग अपने घर जाइए। लेकिन जो छात्र हैं वो कह रहे हैं हम यही विधानसभा के सामने डटे रहेंगे। देवेंद्रनाथ महतो का दावा यह है कि अब यह जन आंदोलन बन चुका है एक बड़े तरीके से। छात्र क्या कह रहे हैं, अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं, सुनिए।
11: हम लोग भूखे प्यासे आए हैं, उत्पा सिपाही का एग्जाम सर जब दौड़ लिया गया था तब दौड़ के बाद कम से कम 60 से 65 अभ्यर्थी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन सरकार ने लिपापोती करके उसका दबा दिया। उसके बाद कितने भी आंदोलन लड़ लड़ के हम लोग एग्जाम को कंडक्ट करवाए, कितने बार तारीख को चेंज किया गया, लेकिन लिया गया उसी दिन धांधली हो गया जिस दिन एग्जाम सेंटर से हम लोग निकले, 166 अभ्यर्थी पकड़ा गए।
12: हम लोग एक शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, इसमें ना कोई हो हल्ला है, ना किसी पार्टी के खिलाफ नारा है, ना किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नारा है, हम बस अपने मांगों के लिए लड़ रहे हैं।
13: जब तक वो CBI जांच नहीं कराएंगे या फिर कुछ फैसला नहीं लेंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे। और ये मेरे पोस्टर का मतलब ये था कि हम लोग स्लैब को कोई फिल्टर नहीं जो हमारा फ्यूचर वो स्किप कर दे, उनको ध्यान देना चाहिए और जांच भी करना चाहिए, इसलिए हम लोग आए और इसी पे डटे रहेंगे जब तक ये पूरा ना हो।
14: तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको देखे, वो कितना दिन तक भूखे बैठे रहेंगे और इतना तेज बारिश में, इतना तेज धूप में, इतना हिम्मत है तो आके गवर्नमेंट देख के ले, एक बार एक दो दिन बैठ के वहाँ पे देखिए हम लोग पे ऊपर क्या बीत रहा है, आप देखिए आके, बात तो जरूर सुनना चाहिए।
15: जिनका पोटेंशियल जो एनर्जी है वो पूरा लगना चाहिए देश के डेवलपमेंट में, लेकिन आज कहाँ लग रहा है, प्रोटेस्ट में। हम प्रोटेस्ट के लिए नहीं बने हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट ने भी हमारे लिए क्या किया है, वेपन्स डिप्लॉयमेंट करके रखे हैं वहाँ,
16: भरोसा है कि जीत।
15: हाँ बिल्कुल, और जो वहाँ पे है फेंसिंग, कहा जा रहा है कांटे वाली फेंसिंग है, तो मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, हमें एक कबीरदास जी की पंक्ति याद आती है कि जो तो को काटा बोवे ताही बो को फूल, तो ही फूल के फूल है बाको है त्रिशूल। आप कांटा बोइए और हम जो है वो फूल बोएंगे।
9: अभी बैरिकेड सब पार करके हम पार करेंगे, विधानसभा तक जाएंगे।
5: रोक रहे हैं,
9: ये जीवन में बैरिकेड लगा दिया है, यहाँ भी रोकना चाहते, रुकने वाले हम लोग नहीं है।
6: और देवेंद्र नाथ महतो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार के साथ तीन राउंड की बातचीत हो चुकी है, जो गतिरोध है वो सीबीआई जांच को लेकर है। वो चाहते हैं कि ये सीबीआई जांच हो, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा, वरना ये जो जन आंदोलन है ये चलता रहेगा। सुनिए,
16: ये सरकार हमारे आवाज को कुचलने के लिए टीयर गैस का, वाटर कैनन का, आंसू गोला का प्रयोग कर रही है, जो निंदनीय है। सरकार डर गई है, कायर सरकार है, और सरकार जब जब डरती है ये पुलिस को आगे करती है, लाठी गोली बंदूक वाटर किरण का प्रयोग करती है। अभी अभी सरकार से क्या बात करेंगे, और तीन राउंड बात हो गया, अब कोई बात नहीं करना है। हमारी मांग पूरी करे, नहीं तो ये छात्र सरकार के मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंच जाए। मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है और मैं नहीं चाहता हूँ कि जन्मदिन के मौके पर छात्र को कुछ ऐसा करे कि दिल्ली का जंतर मंतर की तरह कुछ अनहोनी हो, ऐसा गिफ्ट छात्र को ना दे जिसके बदन पे खून निकले, जिसके माथा पे चोट आए और ये भीड़ और उग्र हो जाए।
17: कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है,
16: गिरफ्तारी ठीक है, वो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन आज हेमंत जी का जन्मदिन है, जन्मदिन के मौके पर ऐसा तोहफा न दे जो जिससे खून बहे, जिससे अराजकता फैले, जिससे आक्रोश, ये शांति है, इनको शांतिपूर्ण रहने दिया जाए।
6: इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर, फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
19: आगे आगे, अरे उधर उधर गया, करेक्ट करेक्ट,
20: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: In association with
3: Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: AU Savings Account में मिलते हैं amazing benefits, paperless banking and higher interest. वो भी हर महीने।
5: Money, money, money, money, every month.
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सम

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
5: सोच बदलो और बैंक भी।
6: घर खरीदने का सपना हर आम आदमी के दिल में बसता है, लेकिन इस साल के पहले 6 महीनों में देश के प्रॉपर्टी बाजार ने एक अलग ही तस्वीर पेश की है। जहां कुछ शहरों में घरों की बिक्री जोर शोर से बढ़ी, तो वहीं दिल्ली NCR में खरीदारी का रुझान काफी सुस्त पड़ गया है। नोवोमा की रिपोर्ट के अनुसार 2026 की पहली छमाही में देश भर में घरों की बिक्री वैल्यू 11% बढ़ी है। वहीं दूसरी तिमाही में ये बढ़ोतरी 9% रही। जून में सालाना आधार पर 5% और मई के मुकाबले 6% का इजाफा हुआ। इससे संकेत मिलता है कि निवेशकों और घर खरीदारों का पैसा बाजार में आ रहा है, लेकिन ये तेजी हर जगह एक जैसी नजर नहीं आ रही, क्योंकि दिल्ली NCR में सबसे ज्यादा सुस्ती देखी गई है। यहाँ बिक्री वैल्यू में 7% की गिरावट दर्ज की गई और बिक्री की मात्रा में 18% की बड़ी कमी दर्ज की गई है। NCR और चेन्नई में नए प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग 21-34% तक घटी। वहीं डेवलपर्स का दावा है कि Tier 2 और Tier 3 शहरों में डिमांड बढ़ रही है। उनका कहना है कि बेहतर शिक्षा, कम कीमतों और बदलते वर्क कल्चर की वजह से छोटे शहरों में घर खरीदने वालों की दिलचस्पी बढ़ी है।
7: Tier 2 में सबसे बड़ा रीजन यह है कि जो वहाँ की इंडस्ट्रीज और जो पैसा है लोगों के पास, दे वॉन्ट टू अपग्रेड देयर लाइफस्टाइल कम्प्लीटली। तो जो छोटे छोटे शहरों में छोटे घरों में रह रहे थे, अब मंडी बाजारों में बीच में उनके घर थे जहाँ पार्किंग और उनके बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं थी, तो ऐसे जो लोग हैं दे आर मूविंग इनटू न्यूअर फ्रेशर कम्युनिटीज जहाँ पे क्लब हाउसेज हैं, सारी तरीके की फैसिलिटीज हैं, एमिनिटीज है, सिक्योरिटी है। सो वो अपने बच्चों का बेटर फ्यूचर देखते हैं वहाँ पे, एंड ऑल्सो पैरेलली उनका जो बिजनेस है वो कोशिश कर रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम कर सकें या फिर जो गेटेड कम्युनिटीज में जो कॉमन एरियाज हैं वहाँ से ऑपरेट कर सकें।
6: छोटे शहरों में सीमित सप्लाई और ज्यादा डिमांड का फायदा डेवलपर्स को मिल रहा है, लेकिन बड़े शहरों में घरों की बिक्री पर दबाव बढ़ने से बगैर बिके घरों का स्टॉक चिंता की वजह बना हुआ है। रिपोर्ट बता रही है कि देश भर में अनसोल्ड इन्वेंट्री 20 महीने पर स्थिर है। पुणे में ये जहां महज 14 महीने की है, वहीं हैदराबाद में 29 महीने तक पहुंच गई है। कीमतों की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार दूसरी तिमाही में चेन्नई में घरों के दाम सालाना आधार पर 20% उछल गए हैं, जबकि बाकी बड़े शहरों में 4-8% का इजाफा हुआ है। अभी तक तो लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट की डिमांड मजबूत रहने का फायदा रियल एस्टेट सेक्टर की रफ्तार को बढ़ाने में।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

रांची में असेंबली तक पहुंचे छात्रों पर दागे गए आंसू गैस के गोले, रोकने के लिए पुलिस ने किया लाठी चार्ज, कंटीले तार और वाटर कैनन भी नहीं तोड़ पाए।

छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने हेमंत सोरेन सरकार को ललकारा, कहा युवा का उल्टा वायु, वायु का कोई कोई कोई नहीं रोक सकता, अब झारखंड सरकार के साथ नहीं होगी कोई बात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जबरदस्त प्रदर्शन, झारखंड पब्लिक सर्विसेज कमीशन के पूर्व चेयरमैन ख्यांगते गिरफ्तार, परीक्षा धांधली में प्रवर्तन निदेशालय ने शुरू की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच। लंबे गतिरोध के बाद छात्रों के मुद्दे पर संसद में गृहमंत्री अमित शाह के बयान के लिए सहमत हुई सरकार, किरण रिजिजू बोले जब गृहमंत्री बोले तो सदन में बैठकर शांति से सुने विपक्ष। परिसीमन और एफसीआरए पर तनातनी के बीच महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासत में नई हलचल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले शरद पवार गुट के सभी 8 सांसद।

0: जबरदस्त विरोध प्रदर्शन छात्रों का इस समय भी झारखंड में जारी है। विधानसभा परिसर के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं छात्र और अब ये कह रहे हैं कि छात्रों का जो विरोध प्रदर्शन है ये विधानसभा परिसर में चलेगा। झारखंड में आज जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन का बड़ा दिन है। विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और अन्य मांगों को लेकर छात्र आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं उनका जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। झारखंड विधानसभा का घेराव करने के लिए छात्रों का मार्च इस समय भी, मतलब विधानसभा का सत्र अभी आज का सेशन नहीं चल रहा है, वो 3 बजे तक का था, उसके बावजूद छात्र विधानसभा परिसर में अब बैठकर वहीं विरोध करना चाहते हैं। ये छात्र विधानसभा से महज जब 500 मीटर दूर थे तब रांची से आज तक संवाददाता सत्यजीत ने जो देखा, हम आपको सत्यजीत की वो रिपोर्ट दिखाएंगे, ये विस्तार से हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय भी छात्र धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हम सत्यजीत की रिपोर्ट से पहले आपको शशि भूषण मेरे सहयोगी वो ये रिपोर्ट देख रहे हैं, आखिरी बैरिकेड भी टूट गया है, देखिए ये रिपोर्ट।
1: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए अब आखिरी बैरिकेड भी ध्वस्त हो गया है और छात्र उससे आगे बढ़ के आ गए हैं और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल अफरा तफरी की स्थिति, प्रशासन ने यहाँ रोका है और इधर की स्थिति दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ भी जो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे की तरफ वहां से प्रवेश कर गए हैं और उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा आगे चलते हैं, हम आगे की तरफ दिखाते हैं, देखिए जो सामने की दीवार है, बड़ी दीवार, उस दीवार से भी छात्र नीचे की तरफ कूदे हैं और ये विधानसभा सामने ये निकास गेट है जहां देखिए छात्र अंदर की तरफ आ गए हैं और अब बेहद अफरा तफरी की स्थिति है यहां पे। जो सहयोगी नदीम हमारे दिखा रहे हैं कैमरे में, थोड़ा जूम करके थोड़ी दूर पर आप देखिए जो तमाम छात्र हैं वो अंदर जा चुके हैं इस वक्त और देखिए ये छात्र किस तरीके से अंदर आ रहे हैं। देखिए ये छात्र जो दीवार पे खड़े हैं वो थोड़ी देर में एक एक करके जंप कर रहे हैं, अंदर की तरफ आ रहे हैं और मकसद जो था विधानसभा घेराव का, ये सामने विधानसभा और सुरक्षा कर्मी जो हैं वो चेक पॉइंट जो ऊपर बनाए गए हैं, वॉच पॉइंट्स, वॉच टावर्स उस पे खड़े हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त आ चुके हैं इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाते हुए अंदर। ये बड़ा अपडेट है इस वक्त झारखंड विधानसभा से और इस छात्र आंदोलन से जुड़ा हुआ। विधानसभा के अंदर पहली दफे हम देख रहे हैं कि छात्र और पुलिस जो कर्मी हैं वो आमने सामने हैं। पुलिस वालों ने हल्का सा डंडा घुमाया, छात्र पहले पीछे गए और फिर वापस से छात्रों का पूरा हुजूम उन पुलिस वालों को पीछे धकेलता हुआ आगे बढ़ा है। तो ये अजीबोगरीब तस्वीर है जो इस वक्त विधानसभा में देखने को मिल रही है। ड्रोन आपको दिख रहे हैं लेकिन कोई भी जो वरीय पुलिस अधिकारी है वो यहाँ इस वक्त मौजूद नहीं दिख रहा है। जो ड्रोन है उसके जरिए पहचान करने की कोशिश हो रही है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं आपको ये बड़ी दीवार जो विधानसभा को सुरक्षित बनाती है, उस दीवार पे इस वक्त जो आंदोलनकारी छात्र हैं जो विधानसभा घेराव करने आज निकले थे उन लोगों ने कब्जा बनाया है और ये वो विधानसभा है जहां पे इस वक्त सब तरफ जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनका कब्जा है और पुलिस कहीं नहीं दिख रही है। ये देखिए तिरंगा पीठ पर लगाए जो स्टूडेंट्स हैं वो यहां घूम रहे हैं और पुलिस जो है वो समझ रही है कि हालात किस कदर यहाँ उनके नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। लगातार हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको झारखंड विधानसभा से। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीमालम के साथ शशि भूषण, आज तक रांची।
0: बड़ी खबर इस समय की 4:30 बजे आज तक पर हम आपको बता रहे हैं कैसे प्रदर्शनकारी छात्र इस समय झारखंड में विधानसभा के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। उसकी पेरिमीटर वॉल जो कहते हैं, जो बाउंड्री वॉल है, उस पर छात्र चढ़े हुए हैं। विधानसभा के गेट पर पहुंचे आंदोलनकारी छात्र झारखंड विधानसभा गेट पर इस समय जबरदस्त आक्रोश की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस वाले भी बड़ी संख्या में यहां तैनात तो हैं और उनके पास आंसू गैस के गोले भी हैं, हेलमेट भी पहने हैं, लाठियां भी हाथ में हैं, लेकिन अब वो बस देख रहे हैं छात्रों को
1: नजर आ रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीमालम के साथ शशि भूषण, आज तक रांची।
0: तो ये रांची से आप मेरे सहयोगी शशि भूषण की रिपोर्ट देख रहे हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी अब यहां पहुंच गए हैं, लेकिन छात्रों का गुस्सा या आक्रोश अगर कहे तो वो साफ नजर आ रहा है, और हर छात्र के हाथ में उसका मोबाइल फोन भी है, हर तस्वीर को वो कैप्चर भी कर रहा है। राइट गियर में आपको पुलिस बंदोबस्त नजर आ रहा है, हथियारों के साथ भी पुलिस और अर्धसैनिक बल यहां तैनात है। विधानसभा का ये गेट है और गेट पर दीवार पर छात्र चढ़े हुए हैं, कहा यह जा रहा है बिल्कुल गेट पर छात्रों का आक्रोश साफ नजर आ रहा है। छात्र कह रहे हैं अब हम यही विधानसभा परिसर पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये देखिए झारखंड पुलिस के अधिकारियों को भी आप देख सकते हैं, हालांकि उनके हाथ में हथियार और लाठियां भी हैं, लेकिन वो बहुत ही अभी वो इंतजार कर रहे हैं किसी आदेश का। शशि, छात्रों से बातचीत करने की पुलिस की, मैंने सुना है कि बातचीत की कोशिश भी हो रही है कि छात्र लौट जाएं, क्योंकि अब विधानसभा में मुख्यमंत्री यहां नहीं है, विधायक यहां नहीं है, छात्रों का क्या कहना है शशि?
1: देखिए, छात्रों का यह कहना है कि जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन चल रहा था अब तक, वो आंदोलन अब विधानसभा में चलेगा। तस्वीर बहुत मायने रखती है गौरव, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए झारखंड का विधानसभा है, झारखंड विधानसभा है, उसका गेट नंबर एक है। ये देखिए गेट नंबर एक, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और उसके बिल्कुल सामने ये प्रदर्शनकारी छात्र हैं जो विधानसभा घेराव करने आज निकले। ओल्ड असेंबली से, जहां पुरानी विधानसभा झारखंड की जो थी, वहां से इन्होंने कॉल बुलाया था। लगभग 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा ये मार्च चला दिन भर, और अब शाम के वक्त भले ही आज विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई हो, लेकिन तमाम छात्र यहां पर रुके हुए हैं, जमे हुए हैं, और छात्रों का ये कहना है कि हम अब कोई वार्ता नहीं करेंगे, जो भी होगा, अब जो भी होगा वो फैसला सरकार को लेना होगा। और छात्रों से बात कर रहे हैं, क्या आप लोगों का क्या कहना है? यहाँ तक आप लोग आ गए हैं, आज तक यहाँ कोई पहुँचा नहीं प्रदर्शन करते, मैसेज क्या है सरकार के लिए?
2: सरकार को हम लोग यही कहना चाहेंगे, जिस प्रकार हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसी प्रकार आप भी हमारी मांगों को पूरा करें, और जिसमें अनियमितता हुई है, जिसमें पेपर लीक हुआ है, उनको आप अविलंब रद्द कीजिए, अविलंब। ये नहीं कि आश्वासन हमें नहीं चाहिए। और
1: वार्ता की कोई स्थिति बची है अब?
3: हाँ सर, वार्ता की स्थिति बची हुई है। और चूंकि सर मैं पूछना चाहता हूँ, अगर इलेक्शन लीक नहीं होता तो परीक्षाएं क्यों लीक होती है? सर, पेपर लीक बात मुद्दा एसएससी सीजीएल जेपीएससी का नहीं है, कक्षा 8वीं की है, 10वीं की है, 12वीं की है, हर एक परीक्षा लीक हो रही है सर, जो कि हमारे युवाओं की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ जितने भी पदाधिकारी हैं सभी एग्जाम लिख के आए हुए हैं, यदि वही एग्जाम इनके साथ भी लिख होता,
1: आप
4: हमारे मांगे पूरा हो जाता तो हमें यहाँ तक नहीं आना पड़ता,
1: यहाँ तक नहीं आना पड़ता। अगर मांग पूरी हो जाती तो ये पोस्टर, बैनर, प्लेकार्ड्स लेकर के, जिसमें झारखंड में नौकरी बेचना बंद करो लिखा हुआ है, और यहाँ तक नहीं आना पड़ता छात्रों को। और सरकार के लिए कितनी असहज स्थिति, प्रशासन ने बहुत रणनीतिक तौर पे बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की, कोई बड़ी घटना ना हो जाए, छात्रों ने भी संयम दिखाया, लेकिन अंततः नतीजा क्या? विधानसभा तक जो मार्च है वो पहुंच चुका है, ये गेट नंबर एक है गौरव, और यहाँ पर इस वक्त मौजूदगी है छात्रों की। हम अंदर की स्थिति भी दिखाने की कोशिश करेंगे, सहयोगी नवीन से कहेंगे एक बार दिखाएं। देखिए अंदर में सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, उन सुरक्षाकर्मियों को भी मालूम है कि अब जाना आगे आसान नहीं होगा। हम भी सुरक्षा के मापदंड जो है उनका पालन करते हैं, और हम दूर हैं इससे, और लेकिन आपको दिखाते हैं यहाँ पे। अब चूंकि आज की कार्यवाही खत्म हो चुकी है, तो कुछ स्टाफ होंगे जो अमूमन सेशन पीरियड में रहते हैं यहाँ पे, जो मार्शल्स हैं, जो दूसरे सुरक्षाकर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, वो हैं यहाँ पे, सचिवालय विधानसभा का जो है उसके कर्मी हैं। लेकिन हाँ, सरकार के लिए ये खतरे की घंटी है। हेमंत सरकार ने कभी यह परिकल्पना नहीं की होगी, कभी नहीं सोचा होगा कि जो एक आंदोलन शुरू हुआ जेपीएससी को लेकर के, वो इतना बड़ा स्वरूप ले लेगा कि आज विधानसभा के सामने तक, गेट तक जो छात्र हैं वो प्रदर्शनकारी पहुंच जाएंगे।
0: अच्छा शशि, देवेंद्र महतो ने कहा कि अब सरकार से आगे कोई बातचीत नहीं होगी, अब जो प्रदर्शन होगा, या ये देवेंद्र महतो की तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को भी, उनसे बात करने का भी हम प्रयास करेंगे। वो लगातार छात्रों से कह रहे हैं, पिछले 9 दिन से वो अनशन पर बैठे हैं, झारखंड से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनको उनके मुताबिक उनका 10 किलो वजन कम हो गया है, अन्न का दाना उन्होंने ग्रहण नहीं किया और वो यही कह रहे हैं जब तक परीक्षा रद्द नहीं होती, जब तक सीबीआई की जांच नहीं होती वो धरना जारी रखेंगे। शशि ये बताइए, बाबूलाल मरांडी का कहना है कि एल कांगता ख्यांगते की जो गिरफ्तारी है, एक्स जेपीएससी चीफ की गिरफ्तारी, वो केवल दिखावा भर है, क्या छात्रों का भी यही मानना है?
1: देखिए छात्रों का कंसर्न थोड़ा अलग है, एक तो ये कि वो रिफॉर्म की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि आप किसी मंत्री का इस्तीफा दिला दीजिए या मुख्यमंत्री इस्तीफा देने। उनका जो हमने देखा जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुआ था गौरव, उसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है वो सबसे प्रमुख मांग थी, मतलब सबसे ऊपरी एजेंडा था। लेकिन यहां ऐसी कोई बात नहीं है, यहां तो रिफॉर्म की बात हो रही है कि रिफॉर्म करना है जेपीएससी में वो करिए, जेएसएससी में करिए, जो तमाम परीक्षाओं के अंदर लीक और बाकी ग्लीचेज होते हैं उसको आप ठीक करिए, और उससे बड़ी बात जो सीजीएल की परीक्षा है ना उसको रद्द करने की बात हो रही है, और सरकार वहीं आकर के फंस रही है कि उस परीक्षा को वो निरस्त नहीं करना चाहती, वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले का हवाला देती है। इसके अलावा इसके इतर जो सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, उस सीबीआई जांच के लिए सरकार तैयार नहीं है। तो जो 98% वर्सेस 2% का मामला है जिसमें सरकार ये क्लेम करती है कि 98% मसलों पे हमारी सहमति बन गई बातचीत में, 6 घंटे की जो बातचीत हुई लगभग, लेकिन 2% में मामला जो फंसा है वही सरकार के गले की फांस है और उसी चलते ये पूरा घटनाक्रम आज हुआ है गौरव।
0: और छात्र अब यहां से पीछे हटने से साफ इनकार कर रहे हैं। शशि आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। छात्रों की दो प्रमुख मांगे इस समय है, एक सीबीआई की जांच और दूसरा जो सीजीएल की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसकी परीक्षाएं भी रद्द हो। इस खबर पर रहेगी नजर, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खोल भी रहा हूँ ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों।
1: आपके प्रति पूरा सम्मान देते हुए मैं आपको पूछना चाहता हूँ इस बात और वो बोलता है
0: मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। मैं उन्हें हजार हजार हर सांस के साथ दुआएं देता हूं और हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूं। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर।
1: मैं 28 साल का एक किसान और बहुत पॉलिटिकली अवेयर हूं, वेल स्पोकन बच्चे।
0: आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम सब आपके साथ हैं और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सब याद रखा जाएगा,
1: सब कुछ याद रखा जाएगा। वहां पर भी इक्वली स्ट्रांग, इक्वली इंपॉर्टेंट, इक्वली वर्कन छात्र आंदोलन हुआ था जितना दिल्ली में और बॉम्बे में हुआ था।

0: इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खोल भी रहा हूँ ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों।
1: आपके प्रति पूरा सम्मान देते हुए मैं आपको सूचना चाह रहा हूँ इस वक्त और वो बोलता है
0: मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। मैं उन्हें हजार हजार हर सांस के साथ दुआएं देता हूं और हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूं। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहे, हम सब आपके साथ हैं और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ सब याद रखा जाएगा,
1: सब कुछ याद रखा जाएगा। वहाँ पर भी इक्वली स्ट्रॉन्ग, इक्वली इम्पोर्टेंट, इक्वली बल्कि छात्र आंदोलन हुआ था जितना दिल्ली में और बॉम्बे में हुआ था।
0: इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं।
1: पिज्जा बर्गर नहीं खाते थे, ये लोग जो है दाल भात खाते थे, उससे उन्होंने आंदोलन किया था। क्या आप लोग सिर्फ इसमें बोले आपको पिज्जा बर्गर की तलाश थी या आपको अपने किस्म का प्राउड मिला था? माफ कीजिएगा,
0: आप लड़ते रहें, मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है।
2: हमारा एक तिरंगा हमारे सादगी का, हमारे विकास का, हमारी विरासत का और भारत के आन बान और शान का प्रतीक है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने भारत के प्रतीकों के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों को संज्ञेय अपराध की सूची में रखते हुए दंडित करने का निर्णय भी लिया है। अब ये नहीं चल सकता कि रहेंगे भारत में लेकिन भारत के प्रतीकों को, भारत के महापुरुषों को, भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपमानित करें। तिरंगा हमारे घर में लगे, हर घर तिरंगा के संकल्प के साथ, हर घर तिरंगा के इस मंत्र के साथ, तिरंगा के मंत्र को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको भी अधिकार दिया है तिरंगा के प्रति सम्मान का भाव हो, लेकिन उसके कोड में संशोधन करते अनिवार्य कर दिया है कि आप अपने घर में पहना सकते हैं। पहले कांग्रेस के समय में इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती थी, कोर्ट में जाना पड़ता था, माननीय न्यायालय की शरण लेनी पड़ती थी, तब हम लोग तिरंगा अपने घर में लगा पाते थे। लेकिन मोदी जी ने 140 करोड़ भारतीयों को आजादी दी कि नहीं, अपने आन बान शान के प्रतीक तिरंगा को आप भी अपने घर के ऊपर लगाएं और ये भारत का स्वाधीनता दिवस के पूर्व ये तिरंगा यात्रा उसी का प्रतीक है।

0: पुलिस ने पानी की बौछार की तो छात्र नाचने लगे। पुलिस ने छात्रों को पीछे हटने को कहा तो राष्ट्रगान गाने लगे। ये रांची का छात्र आंदोलन है। हजारों की संख्या में झारखंड का युवा विधानसभा घेरने पहुंचा था। रांची पुलिस प्रदर्शनकारियों के साथ चलती रही, कोई अप्रिय घटना ना हो इसका पूरा ख्याल रखा गया। लेकिन जब छात्र विधानसभा मार्ग के उस बिंदु तक पहुंच गए जिसके आगे जाना संभव नहीं था तो वहीं पर जम गए। विधानसभा के पास ये पुलिस का अंतिम बैरिकेड था। इससे आगे किसी भी स्थिति में छात्रों को नहीं जाने दिया जा सकता था, लिहाजा पुलिस के जवान खड़े हो गए। कुछ छात्रों ने बैरिकेड्स पार करने की कोशिश की तो पुलिस ने डंडा लहराकर उन्हें भगा दिया।
1: जो कटीले तारों से बना बैरिकेड्स है वो प्रशासन ने कई जगह इंस्टॉल किया। यहाँ भी पहला वो बैरिकेड्स था कटीलो तारों वाला जो यहाँ लगाया गया था। लेकिन हुआ क्या उसका, दरअसल ये पूरी कहानी देखिए, आगे भी इसी तरह के बैरिकेड्स हैं। लेकिन देखिए प्रशासन यहाँ खड़ा है, पुलिस बल खड़े हैं। जो कटीले तारों वाला बैरिकेड्स है वो टूट चुका है, वो ध्वस्त हो चुका है और छात्र जो है वो आगे बढ़ते हुए बढ़े।
0: हालांकि कुछ प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि पुलिस ने लाठी चलाई जिससे उनको चोट लगी, लेकिन तस्वीरों में दिखा कि पुलिस ने लाठियां बैरिकेड्स पर चलाई ताकि छात्र नीचे उतर जाएं। रांची में छात्रों ने कोई हिंसक गतिविधि नहीं की, ना तो कानून के इकबाल को चुनौती दी। पुलिस ने जब वाटर कैनन चलाकर छात्रों को भगाने की कोशिश की तो ये लोग पानी की बौछार पर डांस करने लगे। छात्रों का समूह जिस भी रास्ते से निकलने की कोशिश करता पुलिस उन्हें रोक देती। कुछ छात्रों ने शॉर्टकट रास्ता भी अपनाया ताकि विधानसभा के गेट तक पहुंच सके, लेकिन उन्हें भी आगे से घेर कर वापस लौटा दिया गया।
2: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है, कई बैरिकेडिंग बनाए गए थे, कटीले तारों वाली बैरिकेडिंग भी बनाई गई थी, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। हर बैरिकेडिंग को इन्होंने स्केल डाउन कर दिया, उसको तोड़ के तमाम बाधाओं को तोड़ते हुए ये आगे बढ़ गए हैं। और देखिए हाथों में तिरंगा लेकर बिल्कुल विधानसभा के पास, हाईकोर्ट के प्रमाइसेस के पास ये पहुंच चुके हैं।
0: रांची छात्र आंदोलन झारखंड लोक सेवा आयोग की धांधली, झारखंड सीजीएल की गड़बड़ियों के खिलाफ है। छात्रों की एक ही मांग है कि इन भर्ती परीक्षाओं की धांधली की जाँच सीबीआई से कराओ। आशुतोष मिश्रा, सत्यजीत कुमार के साथ शशि भूषण सिंह, रांची आज तक।
3: अखिलेश यादव जी कहते हैं मैं श्री कृष्ण का वंशज हूँ, मैं यदुवंशी हूँ। और आजकल तो वो नए नए सनातनी भी बन गए हैं, जय श्री राम का नारा भी लगा रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि श्रीमान अखिलेश यादव जी कृष्ण जन्मभूमि पर क्यों नहीं बोलते हैं, कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन के साथ क्यों नहीं जुड़ते हैं? तो सिर्फ यह चुनावी हिंदू है,
4: भारतीय जनता पार्टी का चश्मा धार्मिक हो जाता है जैसे ही चुनाव नजदीक आता है। वही हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद भजन कीर्तन अजान लव जिहाद हिजाब नकाम मदरसा फिल्में मदारे यूसीसी इन्हीं पूरे मुद्दों के इर्द गिर्द उनकी पूरी राजनीति चलती है। भारतीय जनता पार्टी केवल मंदिर और मस्जिद के मुद्दे उठा के मुद्दों से भटकाना चाहती। समाजवादी पार्टी को मथुरा के मुद्दे पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। देश की न्यायपालिका में सब मामले विचाराधीन है, देश की न्यायपालिका जो फैसला करेगी सभी को मंजूर होगा।

0: मौजूद नहीं टूटा छात्रों का हौसला, लाठी चार्ज और आंसू गैस के बीच भी प्रदर्शन। झारखंड परीक्षा धांधली में बड़ा एक्शन, जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन गिरफ्तार, ईडी ने भी दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस, सीएम आवास पर बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। आखिरकार संसद का गतिरोध टूटा, छात्रों के मुद्दे पर बयान देंगे अमित शाह, किरण रिजिजू की विपक्ष को नसीहत, गृहमंत्री को शांति से सुने। परिसीमन और एफसीआरए पर तनातनी के बीच महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासत में नई हलचल, पीएम मोदी से मिले शरद पवार गुट के सभी 8 सांसद। एमपी के राजगढ़ में तेज बारिश बना जानलेवा, नाले में गिरी कार में 11 लोग बहे, 9 की लाश बरामद, मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। रांची में जेपीएससी पेपर लीक और धांधली के खिलाफ छात्र आंदोलन की आंधी में बैरिकेड्स तिनके की तरह बिखर गए। प्रदर्शनकारी छात्र रांची में झारखंड विधानसभा के गेट के पास तक पहुंच गए हैं। उन्हें रोकने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, लेकिन छात्रों का सैलाब नहीं थमा। पुलिस ने पानी की बौछार की, फिर भी छात्रों के कदम नहीं थमे। आखिर में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन फिर भी छात्रों के हौसलों के आगे वो भी काम नहीं कर पाए। फिलहाल छात्र रुकने को तैयार नहीं है और अब सोरेन सरकार की टेंशन बढ़ गई है। बैठकों पर बैठक जारी है, मंथन हो रहा है, लेकिन मंथन से कुछ परिणाम नहीं निकल पा रहा। इससे पहले छात्रों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच तीन दौर की बातचीत बेनतीजा हो चुकी है। कल भी दोनों पक्षों के बीच 5 घंटे से ज्यादा समय तक बातचीत चली थी। सरकार की ओर से छात्रों की कई मांगों पर सहमति जताकर आंदोलन किसी तरह खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन सीबीआई जांच समेत कुछ अहम मुद्दों पर सहमति अभी भी नहीं बन पाई है। और छात्र कह रहे हैं जब तक वो मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। छात्र संगठन की ओर से सभी छात्रों से यह अपील की गई है कि वे पुलिस से झड़प नहीं करें और उपद्रवी तत्वों का साथ नहीं दें। लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या आंदोलन से ही अब समाधान निकल पाएगा? और खास करके छात्र और शिक्षा से जुड़े सवालों का समाधान क्या सिर्फ आंदोलन से ही अब निकल पाएगा, सरकार भले किसी की भी हो? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं।
1: रांची में आंदोलनकारी छात्र आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। पुलिस ने विधानसभा घेरने जा रहे छात्रों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कटीले तारों की बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन जब छात्र इन्हें तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगे तो पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े।
2: अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, देखिए अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, कार्यों पर अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
1: जेपीएससी और झारखंड सीजीएल धांधली मामले में अब तक आंदोलन शांतिपूर्ण ही चल रहा था, लेकिन आज पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को पीछे हटाने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, लेकिन पुलिस ने पानी की बौछार की तो छात्र डांस करने लगे।
3: ये देखिए डांस करना शुरू कर दिया है इन छात्रों ने, यहाँ पर लिटरली जो है डांस करना शुरू कर दिया है।
1: जंतर मंतर स्टाइल में पुलिस ने छात्रों को पीछे हटने को कहा तो वो राष्ट्रगान गाने लगे, जिससे पुलिस छात्रों के आगे फंस दिखी।
4: लाठी चार्ज, वाटर कैनन सब का प्रयोग किया जा रहा है हमारे आवाज को दबाने के लिए। ये सरकार डर गई है, कायर सरकार है। जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है, लेकिन हम लोग भी देखे हैं और देखेंगे, इनका जेल को भी देखे हैं, इनका पुलिस का लाठी में कितना दम है, इनका टीयर गैस में कितना पावर है, इनका वाटर कैनन तो घोटाला हो गया, वो भी आधा अधूरा छोड़ दिया उसको,
5: वो भी स्टूडेंट का ताकत के सामने टिक नहीं पाई।
4: तो हम यही कहेंगे कि ये सब से छात्र नहीं डरेंगे। जब हम 9 दिन भूखे हैं, हम यहाँ आए हैं, हमारा सलाइन चढ़ा करके हम यहाँ चल रहे हैं, अन्न ग्रहण नहीं कर रहे, तो इतना आसान है डरा देना? हम लोग डरने वाले नहीं है। सरकार का एक ही विकल्प है, हमारा मांग को पूरी करे, अन्यथा सरकार अपना कुर्सी नहीं बचा पाएगी, उसका कुर्सी पर खतरा है।
1: रांची पुलिस प्रदर्शनकारियों के साथ साथ चलती रही, जिससे कोई अप्रिय घटना ना हो, लेकिन जब छात्र विधानसभा मार्ग के उस पॉइंट तक पहुंच गए जिसके आगे जाना संभव नहीं था तो वहीं पर जम गए। विधानसभा के पास ये पुलिस का आखिरी बैरिकेड था, इसके आगे किसी भी हालत में छात्रों को नहीं जाने दिया जा सकता था, लिहाजा पुलिस के जवान खड़े हो गए। कुछ छात्रों ने बैरिकेड पार करने की कोशिश की तो पुलिस ने डंडे के सहारे उन्हें भगाने की मशक्कत की।
6: एक जो बैरिकेड है ना उसको तोड़ करके अब छात्र आगे बढ़ गए हैं, और देखिए ये प्रशासन को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, लेकिन प्रशासन पीछे छूट गया और अब जगन्नाथ टेंपल वाली सड़क पे अब छात्र आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और बड़े संख्या में बड़ा हुजूम है छात्रों का जो अब आगे बढ़ता हुआ जा रहा है।
1: हालांकि कुछ प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि पुलिस ने लाठी चलाई जिससे उनको चोट लगी, वहीं पुलिस कह रही है कि छात्रों को तितर बितर करने के लिए बहुत हल्का बल प्रयोग करना पड़ा।
7: हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।
8: किस तरीके से
7: शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग शब्द भी नहीं बोले हैं, और अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है। ये अच्छा नहीं कर रहे,
8: लेकिन कोई रिपोर्ट
7: ये अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं।
9: बहुत ही कम प्रयोग किया गया था लाठी का, जब कुछ लोगों द्वारा बैरिकेडिंग, आखिरी बैरिकेडिंग वहाँ पे जाने का प्रयास किया गया जहाँ पे 163 की धारा ऑलरेडी लगी हुई है, तब थोड़ा बहुत लाठी का प्रयोग किया गया था, बहुत ही मिनिमम यूज।
10: इसकी वजह से गुस्सा काफी इनके अंदर और कुछ
9: नहीं, नहीं नहीं, हम कॉन्टिन्यूसली छात्रों से वार्तालाप कर रहे हैं।
1: रांची में जब छात्र बैरिकेड्स पर चढ़ गए तो पुलिस ने लाठियां लहराई, कुछ लाठियां बैरिकेड्स पर चलाई जिससे छात्र नीचे उतर जाएं और बैरिकेड्स छोड़कर चले जाएं। खास बात रही कि रांची में छात्रों ने कोई हिंसक गतिविधि नहीं की, ना तो कानून के इकबाल को चुनौती दी। पुलिस ने जब जब वाटर कैनन चलाकर छात्रों को भगाने की कोशिश की तो ये लोग पानी की बौछार पर झूमने लगे, जिससे आंदोलन हिंसक नहीं हुआ।
11: टियर गैस चलाने की कोशिश में था प्रदर्शन, फिर से वाटर कैनन शुरू हो गया, फिर से पानी चलाना शुरू कर दिया, यहाँ पे फिर से वाटर कैनन चलाना शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारी आगे पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों को घेर लिया, और अब जो है फिर से वाटर कैनन चल रहे। देखिए जिस बैरिकेड पर डेडलॉक था, ये देखिए ये डांस है, ये कैसा प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्टिंग प्रोटेस्टर लिटरली डांसिंग ऑन द वाटर कैनन। ये छात्र यहाँ पर नाचने लगे हैं, वो लग रहा है कि वाटर पार्क में कोई रेन डांस हो रहा है, इनके लिए तो रेन डांस का मौका मिल गया, उमस भरी गर्मी से राहत मिल गई है।
1: छात्रों का सैलाब जिस भी रास्ते से निकलने की कोशिश करता, पुलिस उन्हें रोक देती। कुछ छात्रों ने पुलिस को चकमा देने के लिए रास्ता बदला, जिससे वो विधानसभा के गेट तक पहुंच सके, लेकिन उन्हें भी वापस लौटना पड़ा।
12: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है, कई बैरिकेडिंग बनाए गए थे, कटीले तारों वाली बैरिकेडिंग भी बनाई गई थी, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। हर बैरिकेडिंग को इन्होंने स्केल डाउन कर दिया, उसको तोड़ के तमाम बाधाओं को तोड़ते हुए ये आगे बढ़ गए हैं, और देखिए हाथों में तिरंगा लेकर बिल्कुल विधानसभा के पास, हाईकोर्ट के प्रमाइसेस के पास ये पहुंच चुके हैं। लेकिन अब शायद
1: रांची छात्र आंदोलन झारखंड लोकसभा आयोग की धांधली, झारखंड सीजीएल की गड़बड़ियों के खिलाफ हो रहा है। छात्रों की एक ही मांग है कि इन भर्ती परीक्षाओं की धांधली की जांच सीबीआई से कराओ। लेकिन सवाल है कि पेपर लीक और शिक्षा में सुधार के लिए छात्रों को बार बार आंदोलन का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है। आशुतोष मिश्रा और सत्यजीत कुमार के साथ शशिभूषण सिंह, रांची आज तक।
0: तो अब एक बात तो तय है कि छात्र जब सड़क पर उतरते हैं तब सरकार के माथे पर पसीना आना शुरू हो जाता है, और यही बात कहीं ना कहीं झारखंड सरकार के सामने भी पेश हुई है। टेंशन बढ़ चुका है क्योंकि 3 बार बातचीत हो चुकी है लेकिन बातचीत कामयाब नहीं हो पाई है। छात्र अभी भी अपने मुद्दे पर कायम है और वो चाहते हैं कि सीजीएल की परीक्षा भी रद्द की जाए, वो चाहते हैं कि सीबीआई के पास इस पूरे मामले की जांच चली जाए। क्या कारण है कि हेमंत सोरेन सरकार ये बातें नहीं मान रही है, सवाल इस पर भी हम पूछेंगे सवाल। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं, अनिल यादव कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे थे कि हम इन छात्रों के साथ खड़े हैं तो अपनी सरकार पर दबाव क्यों नहीं बना रहे हैं, यह भी सवाल पूछा जाएगा। धीरज दुबे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता, वो भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। रजत सेठी हमारे राजनीतिक विश्लेषक, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। रजत से हम लोग कई बार इन सारे मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं, इस बार भी ये सवाल उठाना बहुत जरूरी होगा कि आखिरकार छात्रों को बार बार सड़क पर उतरना क्यों पड़ रहा है। 3 सवाल इस पैनल के सामने रहेंगे। पहला सवाल, क्या आंदोलन के बिना छात्रों की कोई भी सरकार कभी नहीं सुनेगी, क्योंकि जब तक छात्र सड़क पर नहीं उतरते तब तक सरकार की नींद नहीं खुलती है, क्या यह बात सही है। दूसरा सवाल, क्या जंतर मंतर पर सरकार पर सवाल उठाने वाले दल फिलहाल चुप क्यों है, क्योंकि यहां पर भी लाठीचार्ज हुआ है, और यहां पर लाठीचार्ज पर उन दलों की चुप्पी क्यों है, यह भी एक सवाल उठता है। और तीसरा सबसे अहम सवाल, शिक्षा से जुड़े मुद्दों की अनदेखी अब किसी भी सरकार के लिए क्या खतरे की घंटी बन चुकी है, फिर वो केंद्र की सरकार हो या किसी भी राज्य की सरकार हो। अगर शिक्षा से जुड़े मुद्दे हैं तो क्या छात्रों की अनदेखी करना, शिक्षा से जुड़े सवालों की अनदेखी करना सरकार के लिए खतरे की घंटी है। इस वक्त और एक बड़ी खबर आ रही है, चर्चा शुरू करने के पहले खबर यह आ रही है कि विधानसभा गेट पर आंदोलनकारी छात्र पहुंच चुके हैं। देवेंद्र महतो कह रहे हैं कि सरकार हमारी बातें मान ले, एम्बुलेंस से देवेंद्र महतो भी इस आंदोलन में शामिल हुए थे, उनका यह कहना था कि सरकार हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, और विधानसभा गेट पर आंदोलनकारी छात्र पहुंच चुके हैं, पुलिस ने आंसू गैस के गोले और पानी के फवारे भी मारे, लेकिन उसके बावजूद झारखंड विधानसभा गेट पर जबरदस्त आक्रोश चल रहा है। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता और उसके साथ साथ सत्यजीत भी उनके साथ में यह आंदोलन कवर कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, सत्यजीत, दोनों से ये सवाल है, सबसे पहले बताइए कि अभी की स्थिति क्या है, क्योंकि सुबह से हम देख रहे हैं लाठीचार्ज भी हुआ, पानी के फवारे भी उन पर छोड़े गए और उसके साथ साथ बैरिकेटिंग भी की गई है, लेकिन छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्या सरकार का डेलीगेशन एक बार फिर बात करेगा और अभी की स्थिति क्या बनी हुई है?
12: साहिल, ये ऐसा पहली बार झारखंड गठन के बाद हुआ होगा कि अगर कोई प्रोटेस्ट है तो विधानसभा में अगर सत्र चल रहा हो वहां तक पहुंच जाइए। देखिए, गेट नंबर 1 है जिसका इस्तेमाल मुख्यमंत्री करते हैं, यहीं से उनका आना जाना होता है और इस गेट तक आंदोलनरत छात्र पहुंच चुके हैं। यहां देख सकते हैं भारी तादाद में जो है वो छात्र यहां पहुंचे हुए हैं और यहीं बैठ गए हैं, लगातार बीच बीच में वो नारेबाजी करते हैं और सरकार को एक बार और डायलॉग करना पड़ेगा या फिर किस तरह से इस इशू को एड्रेस किया जा सकता है, ये जरूर जो है एक बड़ी विषय है जिस पर जो है सरकार को चिंता करना पड़ेगा। और इस मुद्दे पे हम आशुतोष हमारे साथ इनसे सीधे बातचीत करते हैं। 3 राउंड का डायलॉग हुआ लेकिन एमिकेबल सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। छात्र जो है वो एडमेंट थे CGL को लेकर, CBI प्रोब को लेकर, बाकी मांगे तो उनकी मान ली गई थी।
8: दरअसल इसको ऐसे समझेंगे साहिल, सत्यजीत, कि जो JSPC इस तरह बड़ी परीक्षाएं होती हैं वो कई बार 10 सीट 20 सीट 50 सीट निकलती हैं। ये जो CGL और JSSC है ना, ये बल्क में नौकरियां देने वाली हैं। अब आप 10 साल 1200 सीट में 2200 सीटें निकालते हैं, उसमें पेपर लीक हो जाए, अनियमितताएं, ये बच्चे हैं ना, पीढ़ी इनके तैयारियां करती रह जाती है। 25 साल का आंदोलन झारखंड का रहा और ये सही बात है सत्यजीत ने कहा। देखिए, ये विधानसभा गेट नंबर 1 है, यहां ये पहुंच गए हैं। आज तक ऐसा भारत के आंदोलन के इतिहास में नहीं हुआ, लेकिन ये जेन जी है, पुलिस ने, देखिए एक चीज की तारीफ करनी होगी, शासन पुलिस सरकार सख्ती नहीं की है। हमने देखा टीयर से चला गया थोड़ा डिस्पर्स करने के लिए, SOP में इतना डाइल्यूशन मुझे बिल्कुल याद आता है, बिल्कुल श्रीलंका की तरह, कि जब श्रीलंका में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवास की ओर जा रहे थे।
0: आशुतोष, दो चीजें मुझे आपसे जाननी है, क्योंकि 3 राउंड की बातचीत सरकार के साथ हो चुकी है,
8: सामने बैठ जाती
0: है, ये बात समझना जरूरी है कि क्या कारण है। आशुतोष मेरी अगर आपको आवाज आ रही है, क्या कारण है कि अभी भी सरकार उनकी बातें नहीं मांग रही है? जहां तक खबर आ रही है कि CGL की परीक्षा रद्द करने को लेकर सरकार के सामने मांग रखी हुई है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा है कि उम्र की सीमा पर छूट मिले, उस पर भी सरकार अभी तक मानने को तैयार नहीं है और CBI जांच देने के लिए तैयार नहीं है। बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि परतें खुलेंगी, इसके लिए वो CBI को जांच नहीं देना चाहते, अपने हाथ में जांच रखना चाहते हैं। क्या ये बात सही है? क्या ये बातें मांगी जाएगी? ये नॉन नेगोशिएबल डिमांड्स हैं इन स्टूडेंट्स की तरफ से?
8: और ये डिमांड्स क्यों? कई सारे छात्रों की जब बात हो रही थी तो छात्र CBI की जांच को लेकर के छात्रों ने टोन डाउन कर लिया था। सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि जो CGL में लापरवाही हुई है कि एक अभय नाम का लड़का जो हर जगह पास हो जा रहा है, वो चाहते पहले तो आप इसे रद्द कीजिए। इनमें से कई सारे छात्रों की उम्र 29 साल 30 साल हो गई है, वो चाहते कि उम्र सीमा बीत जाएगी उसके बाद उनके सामने चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। झारखंड में सरकारी नौकरी के इतर कोई और वेलफेयर या बहुत बड़ा सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो वो चाहते हैं कि आप जो परीक्षा हुई है वो रद्द करें, वो नियुक्तियां रद्द करें, पारदर्शी तरीके से फिर से भर्ती हो और जो छात्र उस मौके से चूक गए हैं, वंचित रह गए हैं, जो इस अनियमितताओं इस विक्स का विक्टिम रहे हैं, उन्हें उम्र सीमा में छीट जाए। सरकार का पक्ष क्या? वो कह रहे हैं कि देखिए, एक ऑटोनॉमस बॉडी ने जिस तरह परीक्षा कराई है उस पर हमारा बस अब नहीं चल सकता, लेकिन अगर कोई अदालत का दरवाजा खटखटाता है, अदालत जवाब मांगेगी तो सरकार विरोध नहीं करेगी। लेकिन ये विधानसभा है, यहां से कानून बनते हैं। मैंने देखा है इस देश में, इस राज्य की सरकारों में विधानसभा संसद कानून बनाती है। अगर सरकार के हित के खिलाफ कोई आदेश भी आता है ना अदालत का, उसको भी कानून बना के पलटा जा सकता है। तो ऐसा क्यों है कि छात्रों के लिए अगर कोई कानूनी बाध्यता है तो एक ऑर्डिनेंस लाकर?
0: यह वाजिब सवाल है। मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ बने रहे, उनके घर पर आप जाइए मत, क्योंकि आप ग्राउंड पर है और मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में अलग अलग प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और अपने अपनी पार्टी और सरकार का पक्ष भी उसमें रखेंगे। बीच बीच में मुझे आपके पास भी आना है क्योंकि आप सड़क पर है और छात्र जो कह रहे हैं, आशुतोष को भी विंडो में रखिएगा क्योंकि बार बार हमें जरा ग्राउंड पर भी जाना होगा और ग्राउंड पर हमारे संवाददाता है, उनसे भी हम पूछेंगे छात्र क्या समझते हैं, क्योंकि यहां पर स्टूडियो से बात करना और ग्राउंड से बात करना इसमें बहुत फर्क होता है। धीरज दुबे, शुरुआत तो आप ही से करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने एक बयान पढ़ा, हेमंत सोरेन बार बार कहते हैं कि हम युवाओं के साथ में हैं। अगर आप युवाओं के साथ में हैं तो ये लाठीचार्ज क्यों करना पड़ रहा है? अगर आप युवाओं के साथ में हैं तो इन्हें विधानसभा के इन गेट्स पर आकर क्यों प्रदर्शन करना पड़ रहा है? और अगर आप युवाओं के साथ में हैं तो उनकी मांगें आप क्यों नहीं मान रहे? 3 स्पेसिफिक सवाल है, स्पेसिफिक जवाब, और उसके बाद सिद्धार्थ यादव। धीरज दुबे, मेरी आवाज आपको आ रही है? तो
13: नहीं, मुझे मुझे आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आवाज में थोड़ा सा बफरिंग है। ऐसे मैंने तीन सवाल आपके शुरुआत में सुने थे, उसी के आधार पर मैं जवाब देता हूँ। सरकार जेएसएससी सीजीएल रद्द करने की जो बात स्टूडेंट के द्वारा उठाया जा रहा है, उसके बारे में आपके माध्यम से मैं जानकारी लोगों को देना चाहूंगा कि एसएससी सीजीएल का जो ट्रायल 2 साल माननीय उच्च न्यायालय झारखंड में चला, जो भाजपा के पूर्व महाधिवक्ता थे उन्होंने इस ट्रायल को कंटिन्यू किया, उन्होंने अपना पक्ष रखा। ट्रायल के बाद चीफ जस्टिस का डबल बेंच हाई कोर्ट झारखंड का फैसला दिया, तब सीजीएल में नियुक्ति हुई है। उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील किया जजमेंट के खिलाफ, ऑर्डर के खिलाफ, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के जजमेंट को यथावत रखा। तो मेरा कहना है कि सरकार के पास ये ऑथोरिटी नहीं है कि हाई कोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड करके और अपना कोई निर्णय ले सकती है या इस सीजीएल परीक्षा को रद्द कर सकती है। इस बात को शायद यहाँ के स्टूडेंट को भाजपा समझने नहीं दे रही है। और आज का जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट को पूरी तरह से हाईजेक करके उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ से अपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को बुलाकर, भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को बुलाकर, जो यहाँ बिरसावादी और गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें इस आंदोलन को जो है दिग्भ्रमित करने का काम किया गया है। इस आंदोलन को कह सकते उग्र बनाने का काम किया। 17 दिन से झारखंड के स्टूडेंट बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और पुलिस भी उनका सहयोग कर रही थी, झारखंड पुलिस भी सहयोग कर रही थी। आज भी आपके संवाददाता मिश्रा जी ने भी बताया कि पुलिस ने नॉमिनल सिर्फ हरकतें किए हैं ताकि और आंदोलन जो है वो विधानसभा के अंदर प्रवेश न कर जाए स्टूडेंट उसके लिए। तो ये सारा मामला है। दूसरा आपका प्रश्न था,
0: आशुतोष, क्या ये बात सही है? नॉमिनल बल का प्रयोग यहां पर किया गया है, जो दावा किया जा रहा है सरकार के जो प्रवक्ता है धीरज दुबे, उनके तरफ से दावा किया जा रहा है कि नॉमिनल, बहुत ही नॉमिनल प्रयोग किया गया, क्या आप इस बात की पुष्टि करेंगे?
8: बिल्कुल, नॉमिनल से भी कम। मतलब मुझे पता है वाटर टैंकर जब इस्तेमाल, कैनन इस्तेमाल किया जाता है, अगर वो लग जाए छाती पे तो आदमी उड़ जाता है। वो ऐसा लग रहा था कि बच्चे रेन डांस का है। अब जो है पुलिस, देखिए एक समझिए, ये जो झारखंड में जो जवान थे ना, खड़े थे ना, 10 साल पहले वो भी इन्हीं परीक्षाओं से गुजरे हैं और 10 साल बाद यही छात्र फिर उसी वर्दी में ये भी अपनी ड्यूटी कर रहे होंगे। ये शासन प्रशासन की ओर से निर्देश था कि रेस्ट्रेन होगा, रेस्ट्रेन हुआ, टीयर गैस चलाए गए डिस्पर्स करने के लिए, क्योंकि बैरिकेड विधानसभा के बाहर एक सैंटिटी होती है, एक एसओपी है, वो मैंडेट है, लेकिन उसके बाद भी लाठीचार्ज के नाम पर भी डंडा उठा, छात्र भागे, न छात्रों ने पुलिस के साथ बदसलूकी की, न पुलिस ने छात्रों के साथ बदसलूकी की। ये छात्र भी इसी जमीन के हैं,
0: ये भी बड़ी बात है,
8: वो भी इसी जमीन के हैं, लेकिन उनके लिए एक सवाल और साहिल, बस जरूर
0: एक और एक चीज आपसे मुझे जाननी है, लेकिन जरा सिद्धार्थ यादव,
8: कोर्ट ने राहत दी,
0: आपसे ये बात जानना जरूरी है, क्योंकि जो आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता से लगाया जा रहा है, उनका ये कहना है कि भाई हम तो बात करने को तैयार है, बात कर भी रहे हैं। उनका ये कहना है कि 3 परीक्षाएं, जेपीएससी बैकलॉग 2023, जेपीएससी बैकलॉग 2025 और 14वीं जेपीएससी की पीटी रद्द की गई है, उसकी घोषणा की गई है। टीडीपीएल की एजेंसी द्वारा जो जांच है वो पहले से ही चल रही है, लेकिन इसके बावजूद जो मांग सीजीएल की जा रही है वो उनके हाथ में है नहीं। जेएसएससी उसके बारे में तय कर सकता है, जिस तरीके से एनटीए ने परीक्षा रद्द की थी। तो हम पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? और वो बेसिकली राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, जो आरोप एक वक्त जंतर मंतर पर भी लगाया गया था, एग्जैक्टली रिवर्स आरोप जेएमएम की तरफ से भी लगाया जा रहा है। सिद्धार्थ यादव,
14: नमस्कार। साहिल जी, आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं थोड़ा सा जो पिछले मेरे से पहले दो लोग बोले उनकी बात को सुनकर के उनके विरोधाभास के कारण से कंफ्यूज हो गया। जेएमएम के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नॉमिनल फोर्स का प्रयोग किया गया, आपके संवाददाता ने तो उसको नॉमिनल से भी कम बता दिया, पर जेएमएम के प्रवक्ता ने बोला कि ये तो जितने लोग आए हैं ये तो वेस्ट बंगाल से आए हैं, बिहार से आए हैं, आपके पत्रकार ने बता दिया कि ये तो इसी माटी के लोग हैं। तो हमको कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए कि कौन लोग हैं। मैं किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोला हूं, ये डिबेट का तरीका नहीं, आप छात्रों की बात करने आए हैं, सुनने की भी हिम्मत रखिए। मैं पूछता हूं, अगर नॉमिनल और नॉमिनल से भी कम है, साहिल जी ये तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं? ये नॉमिनल से भी कम है, इस छात्र को जाकर के समझाइए कि नॉमिनल फोर्स का प्रयोग किया गया है। जो छात्र हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, जिन छात्रों को चोटें आई हैं, जिनको होश नहीं आ रहा, उनको हम समझाएं कि नॉमिनल का प्रयोग किया गया है। पर एक बात बिल्कुल ठीक कही उन्होंने, उनका गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था, बिरसावादी तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था, कोई गाली नहीं दी जा रही, कोई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स नहीं है, झारखंड के इस आंदोलन में किसी प्रकार की भद्दी भाषा का प्रयोग नहीं है, किसी प्रकार की हिंसा का प्रयोग नहीं है, किसी प्रकार का उकसाने का कोई प्रयास नहीं है। और उसके बाद भी पुलिस लाठी चार्ज भी करेगी, टीयर गैस भी मारेगी, कीले भी लगवाएगी, कांटे भी लगवाएगी, और ये पूरा गैंग जो जंतर मंतर पे बड़ी बड़ी बातें कर रहा था छात्रहितों की, वो चुप खड़ा रहेगा साहिल जी? तो इस हिपोक्रेसी को क्या नाम देंगे? इसको राहुल क्रेसी बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हिपोक्रेसी का नाम बदल देना चाहिए अब, क्योंकि जो राहुल गांधी राजस्थान से लेकर के इलाहाबाद तक जा सकते हैं, वो रांची नहीं जा पा रहे, अपनी सरकार को नहीं बता पा रहे, यहां पर सारे मापदंड बदल गए, सारे मायने बदल गए। तो मैं पूछता हूं, जो छात्र आज हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, उनको हम क्या कहें? 17 दिन से ये बच्चे बैठे हैं साहिल जी, 17 दिन से शांतिपूर्ण, किसी को कुछ नहीं कहा, और राहुल गांधी और उनकी गठबंधन की सरकार लाठियां चलवाएगी, मारेगी इन बच्चों को। जो पेपर की एक मांग बच्चों ने करी कि इसकी सीबीआई निष्पक्ष जांच करवा लीजिए, उस जांच को नहीं वो आदेश दे सकते, वो इस्तीफा नहीं मांग सकते अपने नेता का, तो कहां जाएंगे? अब
15: छात्रों के प्रोटेस्ट पर बर्बरता से लाठीचार्ज करने का विरोध सिद्धार्थ यादव भी यहां पर कर रहे हैं, और यह बड़ी बात है। छात्र जब सड़क पर उतरते हैं तब उन पर बर्बरता से लाठीचार्ज करना, पैलेट गन चलाना, इसका विरोध होना चाहिए, यह बिल्कुल सही है। और यही बात यहां पर अनिल यादव सवाल इसलिए पूछ रहा है, दूसरा सवाल हमारा यही था।
14: दो चीजों का और विरोध कर
15: जी
14: देता हूं।
15: सिद्धार्थ यादव जी जी बोलिए बोलिए।
14: मैं आप 10 सेकंड दीजिए, मैं दो चीजों का और विरोध कर देता हूं। देखिए, पहली बात तो यह हुई, मैं फिर दोहराता हूं, झारखंड के अंदर किसी प्रकार की हिंसा नहीं, किसी प्रकार की गाली नहीं, किसी प्रकार की उत्तेजना नहीं, उसके बावजूद ये कार्रवाई, ये सवाल खड़े करती है। हम खबरें देख रहे हैं, जो पत्रकार दिल्ली से गए थे, जो शायद इनकी सरकारों को पसंद नहीं आता, उनको नजरबंद किया जाता है। कहां गए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स वाले साहिल जी? कहां गए जो इस देश में लोग पत्रकारिता की आजादी की बात करते थे? तीसरी चीज, ये कोई पेपर लीक का ही मामला नहीं है, ये नौकरी का मामला है। जहां पर जिन बच्चों के आखिरी साल बचा हुआ हो,
16: और उनकी उनकी रिपोर्टिंग को देख लीजिए,
14: पर 60 घंटे की
16: रिपोर्टिंग को देख लीजिए।
14: बीच में मत बोलिए, आप बोल लीजिए, आपकी सरकार जो चला तो रही है
15: ना,
16: नहीं नहीं, आप
14: टीवी पे
15: उनको खत्म कर दीजिए,
14: टीवी पे भी
16: हिंसा लगेगा कि जो आपके पेपर में रिपोर्ट कर रहे हैं,
14: आप टीवी पे हिंसा क्यों कर रहे हैं? आपकी सरकार कर तो रही है सड़कों पे छात्रों के साथ।
15: ये मेरा प्रोटेस्ट, तुम्हारा प्रोटेस्ट मत कराइएगा,
14: मेरी सबसे
15: नहीं, अपनी बात खत्म करिएगा, और एक बात का भी जवाब दीजिएगा कि एबीवीपी का पूरा समर्थन रहा ना इस प्रोटेस्ट को, यह बात भी सही है ना? मतलब पहली बार अब हम देख रहे हैं कि बीजेपी सक्रिय तरीके से इस प्रोटेस्ट पे उतरी है छात्रों के साथ में, यह बहुत अच्छी बात है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस के सांसद पहुंच गए थे, आपके विधायक यहां पर सीएम आवास के सामने पहुंच गए थे, और अच्छी बात है, छात्रों को लेकर, छात्रों के आंदोलन को लेकर राजनीतिक पार्टियों को सड़क पर उतरना चाहिए, और यही कहीं ना कहीं छात्रों की डिमांड है। सिद्धार्थ जी, आपकी बात खत्म करिए, क्योंकि अनिल यादव जी भी इंतजार कर रहे हैं, उनके नेता के बारे में भी जरा पूछ।
14: मैं बात बोलिए, मैं बात पूरी कर रहा हूं साहिल जी। साहिल जी, ये देखने का ही तरीका होता है, एबीवीपी ने तो दिल्ली में भी एनटीए भवन के बाहर प्रोटेस्ट किया था, 12 तारीख को पेपर कैंसिल कर दिया गया था बिना किसी और के आंदोलन को, 13 तारीख को सीबीआई मांग के लिए प्रोटेस्ट हुआ था यहां पर। यह देखने का तरीका होता है, आप झारखंड के अंदर ना पेपर को कैंसिल करेंगे, नो जिन छात्रों की एज लिमिट खत्म हो रही है ना उनकी एज लिमिट को बढ़ाने का काम करेंगे, जो छात्र कुछ नहीं कह रहे उन पर लाठियां चलाने का काम करेंगे, और ये पूरी जमात राहुल गांधी एंड गैंग चुप रहेगी, झारखंड की तरफ देखेगी नहीं। साहिल जी, देश का युवा देख रहा है इनको, सबको देख रहा है, इनके
15: अनिल यादव जी
14: देख रहा है, इनके
15: देश का युवा देख रहा है,
14: देख रहा है इनके
15: प्रयागराज में गूंज का कार्यक्रम होता है,
14: समय पर,
15: लेकिन रांची में जाकर यह गूंज क्यों नहीं गूंजती, यह भी सुना जा रहा है, यह भी पूछा जा रहा है कि वहां पर क्यों नहीं। सिर्फ दिल्ली में बैठकर समर्थन देने से नहीं होगा, वहां भी सड़क पर जाना होगा, हो सकता है कि हेमंत सोरेन के घर के बाहर जाकर भी प्रदर्शन करना होगा, मांग तो यही कर रहे हैं सिद्धार्थ यादव जी।
17: साहिल जी, मैं अभी सिद्धार्थ भाई को सुन रहा था, और मुझे जो इनकी पीड़ा थी छात्रों के प्रति देख के, मुझे समझ ही नहीं आया कि ये कौन से वाले सिद्धार्थ यादव हैं, ये अब से कुछ दिन पहले तक कहां थे। जब ये फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसे कहते हैं उत्पीड़न, इसे कहते हैं बच्चा है सिद्धार्थ भाई, देख लीजिए इसे, इसकी इसकी पूरी कमर छलनी कर रखी है, इसकी आंख फोड़ दी पैलेट गन से, और ये केंद्र की दिल्ली पुलिस ने किया है, जिसका जवाब हम अमित शाह जी से मांग रहे हैं कि किसके आदेश पे ये हुआ है।
14: भाई, ये झारखंड वाले प्रोटेस्ट का दिखा रहे हैं,
17: इस बच्चे के प्रति आपको कुछ सहानुभूति नहीं आई? आज आप झारखंड की बात करने आ गए, मुझे देखिए ऐसे बिल्कुल सिद्धार्थ भाई, मैं आपका सम्मान करता हूँ सिद्धार्थ, मैं सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, मैं समझता हूं कि आज झारखंड में झारखंड में जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं वो हमारे बच्चे हैं, और हम उनकी समस्याओं के लिए अकाउंटेबल भी है, जिम्मेदार भी है, और उसको ठीक भी कर रहे हैं। आपने देखा कि 7 दिन के अंदर हमने 3 जो परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी गई हैं, 19 लोगों की अरेस्टिंग हो गई है, और तो और जो चेयरमैन है, जो चेयरमैन है झारखंड पीएससी का, उस तक को भी जेल में जा, उस तक की भी गिरफ्तारी हो गई है। मैं सिद्धार्थ भाई से पूछता हूं कि 25 दिन दिल्ली में बच्चे बैठे हुए थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, आपको 25 दिन में एक बार सुनवाई नहीं हुई है? आज भी एनडीए के जो चेयरमैन है, आपने उस पर क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि भाई क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार है तो आप नहीं करेंगे और यहाँ पर आप राजनीति करेंगे। मुझे लगता है कि छात्रों की हित की बात को सभी को सहमति से चीजें करनी चाहिए।
15: मैं भी कर लेता हूँ अनिल यादव, सुनिए तो एक वॉट अबाउटरी मैं भी कर लेता हूं। जो सवाल सिद्धार्थ यादव से पूछते हैं वो आपसे भी पूछ लेते हैं। जो चीजें आप गिनवा रहे हैं यहां पर कि जेपीएससी के चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई हुई क्या, 10 गिरफ्तारियां हुई क्या, हो गई, जेपीएससी के चेयरमैन है उनकी आज गिरफ्तारी हो रही है क्या, हो रही है, अभी तो ईडी भी उसमें कूद पड़ी है, कुछ 25 तारीख की 2 तारीख को पहले आरोप हुआ था, उसके बाद अभी ईडी भी उसमें आ गई है, ईडी भी उसकी जांच करने वाली है। जो जेपीएससी की मेंबर है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक वरिष्ठ नेता की पत्नी है, ये भी बात आपको पता है, वो भी अब जेपीएससी से हट चुकी है। ये सारी कार्रवाई हो चुकी थी, यही तो कार्रवाई एनटीए के भीतर भी हुई थी, यही तो कार्रवाई 10 11 जो भी 12 13 गिरफ्तारियां हुई थी पूरे देश भर में, सीबीआई की जांच भी शुरू हो गई थी, तब भी सरकार यही कह रही थी कि भाई अब तो कार्रवाई कर रहे हैं एनटीए की परीक्षा। अरे सुन लीजिए अनिल यादव जी, अरे वॉट अबाउटरी मुझे भी कर लेने दीजिए ना थोड़ी सी, भाई आप ही लोग करते रहेंगे क्या, मैं भी आपको पूछ लेता हूं। यही चीज एनटीए के समय पे केंद्र सरकार तो यह भी कहने की कोशिश कर रही थी, देखिए हमने री एग्जाम भी कर लिया, उसका रिजल्ट भी आ गया, सब कुछ तो हो गया, उसके बाद इस्तीफा क्यों दे, यही मांग तो वो भी कर रहे थे। अब जब आपके ऊपर आ रहा है तब आप गिनवा रहे हैं कि हमने क्या काम किया हुआ है, यही बात तो केंद्र सरकार भी गिनवा रही थी। मुद्दा छात्रों के मुद्दे का है, छात्रों के सवालों का है, यह बात याद रखिएगा अनिल यादव जी, इसका जवाब दे दीजिएगा।
17: अब मैं आपको थोड़ा सा जवाब दे देता हूं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी देखिए, मैं तो यहाँ पर बैठा हूँ अपने घर पे और सिद्धार्थ भाई अपने अच्छी जगह सेफ बैठे हैं, आप भी अपने वहां पर बैठे हैं अपने ऑफिस में, लेकिन अभी आपके पत्रकार ने बताया जो ग्राउंड पर मौजूद है उन हजारों बच्चों के बीच में कि पुलिस ने ना के बराबर कार्रवाई की है, और वो भी क्यों, क्योंकि भाई एसओपीज हैं, गाइडलाइंस होती है कि भाई इस एरिया के बाद नहीं जाने दिया जाएगा। इसे कहते हैं कि भाई सरकार जब अपने बच्चों के प्रति जो संवेदनशील है वो दिख रहा है। आज भी मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट क्या आया है कि भाई डायलॉग से बात होगी, डंडे से नहीं होगी, और डायलॉग से अच्छी अच्छी चीजें जो है, बातचीत से जो है, हर तरीके की जो समस्या है वो सुलझ जाती है। लेकिन वही
15: चलिए आपने लाठीचार्ज नहीं किया, मैं चलिए मान लेते हैं कि आपने आपकी कार्रवाई कम रही है, छात्र सड़क पर क्यों है, छात्र सड़क पर क्यों है, इसका जवाब दे दीजिएगा, और वहां पर राहुल गांधी क्यों नहीं है, इसका भी जवाब दे दीजिएगा। यह वॉटअबाउटरी का मौका इसलिए मिलता है ना कि सिलेक्टिव प्रोटेस्ट होता है और सिलेक्टिव सवाल उठते हैं और सिलेक्टिव समर्थन मिलता है दोनों तरफ से, दोनों तरफ से, मैं कह रहा हूं। यही सवाल सिद्धार्थ जी के पास भी जाएगा, लेकिन पहले आप जवाब दे दीजिएगा।
17: साहिल जी, जब दिल्ली में बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे हमें उनकी भी चिंता थी, और जब झारखंड में प्रदर्शन हो रहा है हमें उनकी भी चिंता है। इसी के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा मुख्यमंत्री के पास मिलने के लिए, हमने कहा कि भाई ये बच्चों की मांगे जो है वो जायज है, और मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर बात सरकार की और बच्चों की है तो हम बच्चों के साथ खड़े हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, बच्चों का भविष्य नहीं खराब होना चाहिए, और हमें खुशी है कि झारखंड की सरकार ने
15: क्यों क्यों बच्चों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है, सिर्फ जंतर मंतर पे नहीं, रांची के सड़कों पर भी क्यों उतरना पड़ रहा है। अगर सरकार इतनी संवेदनशील है, सरकार इतनी कार्यवाही कर रही है, तब भी छात्रों को सड़क पे क्यों उतरना पड़ रहा है? आशुतोष, आपने छात्रों से बात की है क्या, मुद्दा सिर्फ ये परीक्षा कैंसिल करने का, सीबीआई के पास जांच देने का यहां तक सीमित है, या उससे भी बड़ा मुद्दा है? कोई तो कारण होगा। चलिए मान लीजिए कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी उसमें है, जो आरोप जेएमएम के प्रवक्ता यहां पर लगा रहे कि अगल बगल के राज्यों से वहां पर आए हुए हैं, लेकिन छात्रों की अपनी भी तो मांगे हैं, छात्र अपनी बात भी तो कहने की कोशिश कर रहे, कुछ तो हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में वहां पर छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं। आशुतोष की आवाज नहीं आ रही है मेरे ख्याल से, आशुतोष आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, जरा उनकी आवाज ठीक करिएगा, दोबारा मैं उनके पास जाऊंगा, जरा उनकी आवाज ठीक करिएगा। लेकिन सिद्धार्थ यादव, इसका जवाब तो आपको भी देना होगा, वो कह रहे हैं कि भाई ये वॉटअबाउटरी होती है और इसी की वजह से वो कहने की कोशिश कर रहे, तो हम तो सॉफ्ट रहे इस पूरे मामले में, आपकी सरकार थी, आपने जंतर मंतर पे क्या किया, देखिए हम यहां पर क्या कर रहे हैं, और भाषा करीब करीब सेम, महातो जो भाषा वहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं वही जंतर मंतर पे यहाँ के छात्र लीडर कर रहे थे कि सरकार जब डरती है पुलिस को आगे करती है, घोषणाएं भी सेम दोनों जगह पे।
14: नहीं साहिल जी, मैं बिल्कुल सहमति इस बात से नहीं जता सकता, भाषा में झारखंड और दिल्ली में जमीन और आसमान का फर्क है। दिल्ली के अंदर जिस प्रकार के लोगों ने दिल्ली के प्रोटेस्ट पर कब्जा कर लिया था, वो झारखंड के छात्रों ने प्रोटेस्ट करते हुए दिखाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कैसे हो सकता है, दिनकर की कविताओं को गाकर के प्रदर्शन कैसे हो सकता है। 17 दिन से जिस मंच से आपने एक शब्द नहीं सुना हो, जिसको अमर्यादित कहा जाए, और हम सरकार में नहीं है, मैं कह रहा हूं वहां की कांग्रेस और जेएमएम की सरकार के लिए कोई अमर्यादित शब्द नहीं प्रयोग किया, उस आंदोलन को किसी भी ऐसे से तुलना नहीं करनी चाहिए कि भाषा सेम है, ये पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभी समझा रहे हैं टीवी पे बैठकर, नेशनल टीवी पे, कि एसओपीज होती हैं और एसओपी के आगे तो हमको पालन करना पड़ता है। एसओपी रांची में होती है, एसओपी दिल्ली में नहीं होती, एसओपी जंतर मंतर पर नहीं है, एसओपी संसद के बाहर नहीं है, संसद तक तो कोई भी जा सकता है, संसद के अंदर तो कोई भी अंदर भी चले जाइए, संसद में तो सब कुछ अलाउड है, पर झारखंड के अंदर एसओपी है। झारखंड के अंदर छात्र अगर विधानसभा का घेराव के लिए आगे बढ़ेगा तो डंडे चलाए जाएंगे, कीले लगाई जाएंगी, लाठी चार्ज किया जाएगा, वाटर कैनन मारे जाएंगे, टियर गैस मारा जाएगा, ये एसओपी है। तीसरी बात मैं पूछता हूं साहिल जी आपको, मैं तीसरी बात बोलता, मैं अभी चित्र दिखा दूंगा आपको, अभी चित्र दिखा रहा हूं, तीसरी बात भी बोलता हूं आपको, मैं कह रहा हूं साहिल जी, हमने जितनी कड़ी निंदा राहुल जी से लाठी चार्ज की दिल्ली में सुनी, उसका 1% आप अनिल जी से पूछ लीजिए कि रात को 12 बजे से पहले राहुल गांधी ट्वीट करेंगे कि नहीं करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, झारखंड पे मुंह मोड़ लेंगे, झारखंड का छात्र छात्र नहीं, उस छात्र को डंडे का दर्द नहीं होता, उस छात्र को टीयर गैस से आंसू नहीं आते, उस छात्र को पानी की बौछार से चोट नहीं लगती, पर राहुल गांधी की राजनीति अलग है। राहुल गांधी दिल्ली में
15: आंदोलन की राजनीति होगी तो आपके राज्य में भी होगी, और अगर आपके आप दूसरे आंदोलन पर सवाल उठाएंगे तो आपके आंदोलन पर भी सवाल उठेगा।
17: देखिए जितनी अच्छी एक्टिंग और जितना इमोशनल एक्ट मेरे भाई ने भी किया है यहाँ पर, मुझे तो लगता है इनको फिल्मों में चले जाना चाहिए भाई। ऐसा लग रहा था कि सारा का सारा दर्द इनके कलेजे में धड़क रहा है झारखंड के लिए। अरे दिल्ली में क्यों चुप हो गए थे, और
14: बात राहुल गांधी
15: की
14: फोन
17: पे बात की, राहुल गांधी मुख्यमंत्री से भी टच में है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं चले जाते, दिल्ली भी जाना चाहिए उन्हें, और हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री झारखंड भी आए, क्यों नहीं आते, वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है क्या, ये बच्चे उनके नहीं है क्या, या प्रधानमंत्री सिर्फ विदेशों में घूमने के लिए आए, आप बुलाइए ना प्रधानमंत्री को, गृहमंत्री भी आए, हम लोग तो करता हम तो कहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी आप उसे निभाइए, लेकिन समस्या ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। और मैं साहिल जी एक बात और स्पष्ट कर दूं कि यहां पर 98% मांगे बच्चों की मानी जा चुकी है, और जो भी दो मांगे हैं उन पर टेक्निकलिटी की प्रॉब्लम है, सिर्फ इस वजह से वो रुकी हुई है, और उसका भी सोल्यूशन हम जल्दी से जल्दी निकाल रहे हैं। यहां पर वो समस्या नहीं है कि हम दहशतगर्दी बता दें उनको, या गटर बता दें उनको, उनको विदेशी पंडित बता दें, चीजें नहीं हो रही है। हम आज भी कह रहे हैं कि हमारे बच्चे हैं और अगर ये रोड पे हैं तो हमारी कमी है और हम उसको दुरुस्त करेंगे।
14: अनिल यादव जी, जांच क्यों नहीं होगी साहिल जी,
15: एक बात
14: जी एक निंदा क्यों नहीं आएगी,
15: एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए, आप अगर कह रहे हैं कि आप छात्रों की बात सुन रहे हैं, ठीक है सिद्धार्थ जी एक मिनट, अगर आप और जेएमएम के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि हम तो छात्रों की बात सुन रहे हैं, मुझे रजत जी के पास जाना है एक बड़ा सवाल लेकर, लेकिन उससे पहले अगर आप कह रहे हैं कि आप छात्रों की बात सुन रहे हैं तो ये सड़क पे छात्र क्यों नजर आ रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण आपको नजर आता है, इसके पीछे क्या कारण नजर आता है?
17: देखिए मैं समझता हूं कि अगर कोई भी परीक्षा में, चाहे किसी भी स्टेट में हो, अगर कहीं भी कोई भी त्रुटि है तो सरकार भाग नहीं सकती। हम खुद कहते हैं कि अगर हमारी सरकार है तो हमारी जिम्मेदारी है और हम उसको ठीक करेंगे। समस्या ये है कि भाई और अगर ये रोड पे है तो ये भी एक लोकतंत्र का एक अच्छा चेहरा है, जहां पर छात्र अपनी मांग को लेकर सड़क पर आ रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि आपके प्रतिनिधिमंडल से हम बार बार बात कर रहे हैं, 3 rounds of talks।
15: चलिए एक बात तो अच्छी हुई सिद्धार्थ यादव इस बार कि आंदोलनकारी छात्रों को बदनाम करने की भी कोशिश नहीं हुई है। आंदोलनकारी छात्रों को पैसे कहां से मिल रहे हैं, फंडिंग कौन कर रहा है, पाकिस्तान का हाथ है कि नहीं है, चाइना का हाथ है कि नहीं है, ये सब चर्चा भी वहां पर नहीं हो रही है। तो मैं आपकी बात मानता हूं कि लाठीचार्ज वहां पर भी हुआ है, लेकिन ये भी नहीं हुआ,
14: डोमिनोज भी नहीं खा रहे हैं,
15: अच्छी बात है ना, ये
14: गाली भी नहीं, डोमिनोज भी नहीं खा रहे, उन्होंने अपने मंचों पर ऐसे लोगों को भी लेने बुलाया जो देश के नॉर्थ ईस्ट को अलग होने की बात कर रहे हैं, उनकी भीड़ में से कोई ऐसा भी नहीं कह रहा कि 370 को वापस बहाल कर दीजिए, कोई कब्र खोदने की बात भी नहीं कर रहा, कोई नेपाल बनाने की बात भी नहीं कर रहा। छात्रों को क्रेडिट दीजिए साहिल जी, अरे मैं कहता हूँ आप छात्र जो संयम से आंदोलन कर रहे हैं उनका क्रेडिट छीन करके कांग्रेस को क्यों दे रहे हैं? क्या शांतिपूर्ण आंदोलन करने के बाद भी छात्रों को गाली
17: दी? तो किसी को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं।
14: शांतिपूर्ण आंदोलन के बाद भी डंडा मारेंगे?
17: चेयरमैन पे कार्रवाई नहीं की है।
15: ये बात मुझे अच्छी लगी।
17: ये पार्टी जो
14: एनटीए के 45 लोग हट चुके हैं,
17: ऐसे लोगों को आप जिम्मेदारी देते हैं और फिर बात करते हैं हम सिस्टम सुधारेंगे। हमने तो
14: आपसे
17: बात कर दी है।
14: राहुल गांधी क्या झारखंड के छात्रों को पड़े हुए डंडे के दर्द को ट्वीट में बयां कर पाएंगे, या उनको लगता है कि झारखंड के छात्रों को डंडों से चोट नहीं लगती? ये बता जाइए, बस कुछ मत बताइए मुझे।
17: असल में
14: मैं कुछ नहीं कहना उसके आगे।
17: दुख आपका
14: क्या झारखंड के छात्रों को डंडों से चोट लगती है?
17: दुख आपका इस बात पे है कि दिल्ली में आप लोग एक्सपोज हो गए, दिल्ली में देश ने देख लिया।
14: दुख छोड़ दीजिए, अरे मेरा दुख छोड़ दीजिए, मेरे को क्यों दुख है, क्यों नहीं है?
17: ये भी देख लिया कि आपने गुंडे बुला के बच्चे पिटवाए थे।
14: आप अपना बताइए
17: क्या कि पुलिस वालों ने कैसे बच्चियों के गुप्तांग में लाठियां घुसाई थी? अच्छा नहीं ये नहीं सुनना है, बच्चियों की पिटाई नहीं सुननी है। देखा नहीं था वो दिल्ली पुलिस वाले कैसे बच्चियों के मुंह पे तमाचे मार रहे थे?
15: रजत सेठी,
17: वो बच्चियां हमारी
15: बड़ा सवाल ठीक है,
17: हमारी थी,
15: हमारी ये तूतुबे में होता रहेगा। धीरज दुबे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं जल्दी से, उसके बाद मुझे रजत सेठी के पास जाना है। धीरज दुबे, आपकी सरकार वहां पर चल रही है, आखिरकार जवाब तो आप ही के मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा इसमें, और इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि जेपीएससी का जो गठन किया गया था वो किस तरीके से किया गया था। आप तो उससे नहीं बच पाएंगे ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा ठोस, तभी तो ये सड़क पर जो भीड़ है छात्रों की और आंदोलनकारी छात्र हट पाएंगे, वहां पर कैसे संभलेंगे आप?
18: साहिल जी, सरकार ने विद्यार्थियों के, युवाओं के 98% बातों को मान लिया था। जेपीएससी के अध्यक्ष का इस्तीफा, आज उनकी गिरफ्तारी, 19 लोगों की गिरफ्तारी, टीडीपीएल ने जो एग्जाम लिए उसको कैंसिल करने की बात हो गई थी। उसके बाद रिफॉर्म के लिए हम लोगों ने ईमेल आईडी दिया है कि हम लोग सबसे सुझाव लेंगे, और अन्य कार्रवाई भी हम लोगों ने ईडी को, फाइनेंशियल लेन देन की जांच के लिए ईडी को मामला सौंप दिया है। हम भाजपा से आग्रह करेंगे कि आज का जो ये तमाशा है वो भाजपा का किया हुआ है। अगर हमारे न्यूट्रल छात्र आते, अभ्यर्थी आते, तो आते विधानसभा का घेराव करते। घेराव का मतलब होता है विधानसभा के पास गया, धरना पर बैठे और अपनी मांग को लेकर अडिग रहे। लेकिन ये जो तमाशा किया गया, चप्पल फेंके गए, पानी बोतल फेंके गए, ये
15: युवाओं
18: फिर नैतिकता मत पढ़ाइएगा
15: इस प्रोग्राम में।
18: नैतिकता मत पढ़ाइएगा,
15: रजत सेठी भी उस प्रोग्राम में कई बार आ चुके हैं और उनको भी याद होगा कि जब जंतर बंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था। सुन लीजिए धीरज,
18: ये मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूँ।
15: धीरज जी नहीं, ठीक है, उसका जवाब सिद्धार्थ यादव दे देंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कहता हूँ, 25 जुलाई से वहां पर आंदोलन चल रहा है और रजत चर्चा में कई बार आ चुके हैं, जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पर हमने कई बार चर्चा की थी, उनको याद होगा। तब भी हमने यही बात कही थी कि अगर पहले 13 दिन में सरकार अगर उनसे एंगेज करती बातचीत तो सड़क पर नहीं आना पड़ता, और जो 20 तारीख को वहां पर हुआ और उसके बाद लाठीचार्ज हुआ वहां पर, वो सारी चीजें नहीं होती। उसी तरीके से इतने दिन से जब छात्र बैठे हुए थे तभी अगर हेमंत सोरेन वहां चले जाते, बातचीत करते, तो यह आज स्थिति नहीं होती। आंदोलन जब सड़क पर होता है तो राजनीतिक पार्टियां उधर पहुंच ही जाती है। जंतर मंतर पर तमाम विपक्ष वहां पर पहुंच गया था, जाहिर सी बात है कि वहां पर बीजेपी विपक्ष में वो जाएंगे, वहां पर बाबूलाल मरांडी उस पर सवाल जवाब करेंगे,
18: लेकिन
15: उसमें क्या गलत है?
18: वेरी बिगनिंग बिफोर द प्रोटेस्ट स्टार्टेड इन द झारखंड, द चीफ मिनिस्टर सेड सीआईडी टू छापेमारी करने के लिए उन्होंने आदेश दे दिया बहुत ही शुरुआत दिन से। उसी दिन अध्यक्ष की इस्तीफा होती है, गिरफ्तारी शुरू हो जाती है, प्रोटेस्ट से पहले का ये सब घटना है। मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं, कोई चुप्पी नहीं साधा था। उसके बाद डेलीगेशन से तीन राउंड
15: मिलाकर आपका कहना है कि इसके तीन मंच बना।
18: यहाँ थोड़ा समय लगा कि तीन मंच बना, एक बना अभ्यर्थी न्याय मंच, एक बना जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच, और एक बना था आईसा का जो प्रोटेस्ट चल रहा था। वो तीन मंच का आपस का कोलैबोरेशन में समय हो रही थी कि स्टूडेंट का डेलीगेशन कौन कौन होंगे जो सरकार से बात करेगी।
15: ठीक है,
18: बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक में ही बात की, नेमरा में पिताजी के प्रथम
15: पुलिस
18: में बात की।
15: तीन आंदोलन हम देख रहे हैं,
18: प्रमुख कर रहे हैं, कभी
15: महाराष्ट्र में हम एमपीएससी की परीक्षाओं के बीच में जब भी गड़बड़ी होती है हर साल करीब आंदोलन वहां पर देखने को मिलता है। राजस्थान के भीतर इसी तरीके से आंदोलन हमें देखने को मिलता है। सारे ये आंदोलन उन परीक्षाओं को लेकर हो रहे हैं जो सरकारी नौकरी के भर्ती के लिए की जा रही है, और खास करके एंट्रेंस एग्जाम्स को लेकर। तो मेरा जो तीसरा सवाल था ना रजत, उस पर हमको बात करनी चाहिए, क्योंकि आप, मैंने जैसे कहा कि जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से लेकर हर डिबेट पे कई बार आप यहां पर आ चुके हैं। एक टेक अवे यह भी है, शिक्षा से जुड़े मुद्दों की अनदेखी किसी भी सरकार के लिए आज की स्थिति में खतरे की घंटी बन सकती है, किसी की भी सरकार। क्या यह बात सही मानी जाएगी?
19: देखिए साहिल जी, आप
16: अंतिम 10 सेकंड का रिएक्शन हमसे लीजिएगा।
19: अरे रुक जाइए भाई साहब, 35 मिनट से इंतजार कर रहा हूँ। देखिए साहिल जी, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, और मुझे ये मालूम है कि सरकारें किसी भी दल की हों, सिस्टम वही रहता है, और सिस्टम को आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो राजनीतिक किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है। आप वहां जो ब्यूरोक्रेट को झारखंड जेएसएससी के जो चेयरमैन थे या जेपीएससी के चेयरमैन थे, जो हटाया गया, क्यों हटाया गया उनको? बकायदा मनी ट्रेल्स है। अगर जो सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन पैसे खा रहा हो और उस पूरे सरकार पॉलिटिकल सिस्टम की नाक के नीचे पैसे खा रहा हो, तो अकाउंटेबिलिटी से चेयरमैन पे जाके कैसे रुक सकती है? इसलिए वहां पर आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पहुंच गया है, इसीलिए छात्र वहां पे सीबीआई का की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सीआईडी में तो स्टेट गवर्नमेंट के ही ब्यूरोक्रेट्स है, वो एक दूसरे को ही बचाते रहेंगे, लीपापोती होगी, समस्या का हल नहीं निकलेगा। और यहाँ पे कोई इस साल की परीक्षाओं की सिर्फ चर्चा नहीं हो रही है, 2023 के जो बैकलॉग रह गए सीटें वहां से चल रही है, 2024 है, 2025 है। मामला काफी गहरा है और सिस्टमिक है, ये सिर्फ तूतू मैमे से राजनीतिक दल करते रहेंगे, आउटपुट कुछ नहीं निकलेगा। आपने देखा होगा बीपीएससी भी कितना बड़ा विषय बना था बिहार के चुनाव के एन मौके पहले, हजारों हजार छात्र सड़कों पे हैं। ये विषय राजनीतिक दलों से हटके है, उनके आगे बढ़ के है। क्या ऐसी बात हो सकती है कि राजनीतिक दल अपनी राजनीति को छोड़कर ढंग से बैठें और टेक्नोक्रेटिक सोल्यूशन ढूंढ सकें? इन समस्याओं का स्पिल ओवर इंपैक्ट इतना ज्यादा हो रहा है, क्यों? देखिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज देश के पास हमेशा से उतनी ही रही हो, सरकारी नौकरी के माध्यम से उतनी जरूरी नहीं है, और इस समय मुझे लगता है कि सीटों की संख्या बहुत कम है।
15: क्या इसी के वजह से सरकारी नौकरी की चाह में छात्र यहां पर सड़क पर उतर रहे हैं? क्योंकि आशुतोष से मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि 30-30 साल के छात्र वहां पर है, वो बार बार जेपीएससी की परीक्षाएं दे रहे हैं ताकि किसी ना किसी तरीके से सरकारी नौकरी मिल सके, और ये बात हर राज्य में दिखाई देती है, नौकरियां कम होना, और इसीलिए सरकार से यह उम्मीद लगाए बैठना कि मुझे परीक्षा दूंगा तो नौकरी मिल जाएगी। रजत,
19: नहीं देखिए साहिल जी, ये जो एक मैसिव टर्न अराउंड करना है देश को, जिसमें हर प्रदेश को, चाहे वो तमिलनाडु हो, बिहार हो, झारखंड को, सबको मैन्युफैक्चरिंग की नौकरियां कैसे लेकर आनी है, इसके साथ एक एक एक, एक कोऑपरेटिव बहस करनी चाहिए सरकारों से आपस में। कभी तो एक ऐसा मौका आए कि आपस में लड़ना झगड़ना छोड़े राजनीतिक दल, और आगे ऐसे कुछ तो फ्यूचरिस्टिक डिस्कशंस हो सके कि हम लोग कैसे टर्न अराउंड कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, क्या कर सकते हैं ताकि इन्वेस्टर्स बाहर से यहाँ पे पैसा लगा सकें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आईटी की जो नौकरियां थी इस देश में वो टेपर आउट कर रही हैं, उस संख्या में इंफोसिस, एचसीएल इस टाइप की कंपनीज जॉब्स नहीं दे रही हैं। तो ये जो आप जनसमूह देख रहे हैं सड़कों पे, वो इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि जो पूरे केक का साइज है बहुत छोटा होता चला जा रहा है, उतनी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है जिसमें कि वो जाके सरकारी सिस्टम के बियॉन्ड सोच सके, उसके बियॉन्ड सोच सके, रेलवे भर्ती के बियॉन्ड सोच सके। तो मुझे लगता है ये एक गंभीर परिस्थिति है, और सबके सब राजनीतिक दलों के घर जलेंगे ये मान के चलिए अगर इस समस्या का संगठित समाधान नहीं निकाला गया। एक पल के लिए आप लोग भाजपा, कांग्रेस, ये सब राजनीतिक समीकरणों से उठ के सोचिए कि क्या करना है हमें, और इसके ऊपर राजनीति करना बंद करें, तभी आप सोल्यूशन निकाल पाएंगे। क्योंकि बात बहुत गहरी है जो झारखंड में चर्चा हो रही है, कई सारे स्टेट्स इससे इसी समस्या से उलझ रहे हैं, जिसमें जो स्टेट की सर्विस कमीशन है वो कभी भी कोई भी परीक्षा हो कभी भी टेंटफुल साफ सुथरे तरीके से नहीं हुई है, कहीं पर भी आप देख लीजिए। बिहार भी एक जीता जाता एग्जांपल है।
15: पुलिस और शासन का डर खत्म हो गया है जंतर मंतर के आंदोलन के बाद। क्या यह भी एक टेक अवे हम ले सकते हैं क्या रजत? आंदोलन जीवी अब बुरा शब्द नहीं रहा है।
19: नहीं देखिए साहिल जी, मैं अब जो बच्चों के अंदर का फ्रस्ट्रेशन है वो कहीं तो स्पिल ओवर करेगा। अगर वो स्पिल ओवर सड़कों पे कर रहा है और उसके बावजूद भी ध्यान सिस्टमिक ध्यान नहीं दिए जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं स्थिति काफी काफी गंभीर है। जो आज तक ने और ललन टॉप ग्रुप ने जो इस बच्ची का जो इंटरव्यू लिया, जब वो बोल रही है कि मैं कितने सारे एडमिट कार्ड्स हैं, आप उसकी मनस्थिति समझिए, उन बच्चों की क्या होगी, क्योंकि इसके बियॉन्ड उनको सिर्फ अंधेरा और अंधेरा ही दिखता है। तो मुझे लगता है इतनी गंभीर चर्चा होनी चाहिए जिसमें कि
15: चर्चा गंभीर होनी चाहिए, पॉलिटिकल आरोप करके नहीं होगा, और ये सभी के लिए, तीनों मेरे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से, सबके लिए लागू होता है। धीरज दुबे, और उसके
19: बिल्कुल, मैं रजत
18: बिल्कुल मैं रजत जीत की बात से 100% समर्थन करता हूं और उनकी बातों से इस्तेफाक रखता हूं। ये देशव्यापी समस्या हो गया है, कोई भाजपा शासित राज्य हो या गैर भाजपा शासित राज्य हो, हर जगह पेपर लीक की समस्या या कह सकते हैं कि पेपर में धांधली की समस्या आई है। इसका निवारण के लिए हम लोगों ने यहाँ झारखंड में 2023 में एक बिल भी लाया था। उस समय भी अपोजिशन में जो पार्टी थी वो विरोध कर रही थी। अपोजिशन में कौन है ये सब लोग जानता है। मेरा मानना है कि अगर इस्तीफे की बात हो रही है तो सब लोग इस्तीफा दें, सारे मुख्यमंत्री इस्तीफा दें जिस स्टेट में पेपर लीक हुआ है। हमारे राज्य में भी हम आग्रह करेंगे अपने मुख्यमंत्री से कि आप इस्तीफा दे दीजिए, प्रधानमंत्री जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। और लगता है कि फिर से चुनाव होने के बाद जो सरकार की गठन होगी वो रिफॉर्म कर सकता है। तो
15: एक सिस्टमैटिक सिस्टमिक बदलाव की जरूरत है क्या जो रजत बात कर रहे हैं? और पॉलिटिक्स से उठकर ये मेरा प्रोटेस्ट, ये तेरा प्रोटेस्ट, ये आंदोलनजीवी, ये अच्छे ये बुरे, लाठीचार्ज यहां होता है तो बुरा वहां होता है तो ठीक, इससे नहीं होगा। इसके ऊपर उठकर अब बात करनी होगी क्योंकि शिक्षा से जुड़े मुद्दे। सिद्धार्थ
14: साहिल जी, कोई दोहराई नहीं है। सिस्टमैटिक रिफॉर्म की आवश्यकता भी है और सरकारें इस सिस्टमैटिक रिफॉर्म के ऊपर काम करेंगी तो भी बेहतर है। हालांकि मैं इस बात से रजत जी के सहमत नहीं हूं कि घर जलाए जाएंगे और घर जलेंगे। भारत गांधीवादी तरीके से ही चलने वाला देश है और मुझे नहीं लगता कि हमको किसी ऐसी चीज को एंडोर्स करना चाहिए। पर यह कहते हुए भी हम सबकी समाज में इस बात की जिम्मेदारी है कि हमारे मापदंड भी एक हो जाए। अगर एक तरफ नीट का पेपर लीक हो बिना किसी प्रोटेस्ट के, वो नीट का पेपर कैंसिल हो जाए और उसको ज्यादा खराब बता करके
15: यही है
14: पेपर
15: कि मापदंड आंदोलन को लेकर, पेपर लीक को लेकर, उस पर होने वाली कार्रवाई को लेकर एक जैसा हो। देवेंद्रनाथ महा तो कह रहे हैं कि युवा का उल्टा वायु होता है और वायु को रोकना बड़ा मुश्किल है। आज की स्थिति में सड़क पर उतरे हुए विद्यार्थी को रोकना मुश्किल होता जा रहा है, उस युवा की बात करेंगे। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
2: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
5: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा
3: छक्का,
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ओले ला भाई मेरा बैट,
5: वो अभी तो ठीक हुआ तू
6: बिलोटे चार्ज हुआ यार।
7: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: In association with
2: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
3: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
1: Vimal, bolo zuban kesri. Hint, bade aaram se.
4: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम. AU
5: सोच बदलो और बैंक भी.
6: जहां जुर्म वहीं कहानी, जहां कहानी वहीं साजिश, जहां साजिश वहां क्राइम. जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो, उसकी परतें हम सुलझाते हैं. देखिए क्राइम तक यूट्यूब पर और बचिए हर क्राइम से.
7: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर. ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक.
8: हमारी सरकार की पूरी सहानुभूति छात्रों के साथ है और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कल इस पर बहुत देर तक अपने भाषण में छात्रों का साथ देने की बात उन्होंने कहा है. और हमारे जो माननीय मंत्रीगण गए थे छात्रों से वार्ता करने, उसमें छात्र और वो दोनों, उन दोनों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो ये बात सामने आई, आप देख सकते हैं मीडिया में भी है, कि 98% मांगों को मान लिया गया है. छात्रों की जो मांगे थी 98% मांगों को मान लिया गया है सरकार द्वारा. और जो 2% बचा हुआ वो इसलिए बचा हुआ है कि एक ऐसा एग्जाम है जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार वो एग्जाम लिया गया था, उसके बाद रिजल्ट आउट हुआ, कुछ लोगों को नौकरी भी मिल गई है. तो सरकार ये कह रही है कि जो कार्य माननीय न्यायालय के निर्देश के बाद हुआ है और उसके बाद लोग नौकरी भी में भी लग गए हैं, उसे रद्द करने का पावर सरकार के पास नहीं है.
9: सरकार झूठ कितना बोल सकती है? छात्र कोई डिमांड है CBI जांच कराओ, ED की जांच कराओ, TDPL जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी है उसने जितनी भी परीक्षा ली कैंसिल करो, रद्द करो. छात्र बोल रहे हैं कि हमारी एक एक सीट बेच दी गई, क्या आपत्ति है? TDPL की जितनी परीक्षाएं हुई क्यों नहीं रद्द कर रहे हो? सरकार देखो, सरकार संजीदा नहीं है. यह पूरा एजिटेशन नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन हम सब जब जनप्रतिनिधि है मेरा दायित्व तो हो जाता है उनकी आवाज उठाने के लिए. लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है. अरे आप एक एक सीट भी, अब TDPL के और सारे जो एजेंसियां परीक्षा लेने वाली हैं वो स्वीकार कर रही है हमने पैसा लिया.

0: ये झारखंड के छात्रों के विधानसभा मार्च की तस्वीरें हैं। हाथों में पोस्टर है, जुबान पर नारे और कोशिश है पुलिस की बैरिकेडिंग को पार करने की। छात्रों का जत्था रांची में विधानसभा के पास डटा है और किसी भी सूरत में मार्च खत्म करने को तैयार नहीं दिख रहा है। सिर्फ रांची नहीं, झारखंड के कई शहरों से छात्र इस मार्च में शामिल होने के लिए पहुंचे। मांग यही है कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार हो, छात्रों की मांगे मानी जाएं, परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर किसी का भविष्य बर्बाद ना हो। एक दिन पहले जब तीसरे दौर की वार्ता बेनतीजा रही, तब से ही सरकार ने छात्रों के मार्च को लेकर हुए सख्त तैयारियां शुरू कर दी। विधानसभा के पास सुरक्षा बलों की तैनाती की गई, बैरिकेडिंग पर कटीले तार लगाए गए। आशंका उपद्रव की थी, टकराव की थी, लेकिन झारखंड के इस आंदोलन में बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखी। बेहद शांति और अनुशासन के साथ मार्च शुरू हुआ, किसी ने भी व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया। इस बीच तस्वीरें ऐसी भी आईं, जब कुछ टकराव की स्थिति भी दिखी तो खुद छात्रों ने मोर्चा संभाल लिया। मार्च में कोई उपद्रवी तत्व ना आ सके, उसके लिए खुद घेरा बनाया गया है। यानी मंशा बिल्कुल साफ थी कि किसी भी सूरत में आंदोलन की दिशा नहीं बदलने देना है, छात्रों की मांगों को लेकर जारी आंदोलन को किसी भी तरह हिंसक नहीं होने देना है।
1: एक शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, इसमें ना कोई हो हल्ला है, ना किसी पार्टी के खिलाफ नारा है, ना किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नारा है। हम बस अपने मांगों के लिए लड़ रहे हैं।
2: जो मांगे हैं वही
1: बस हमने जो बैनर पे लिख रखा है, JSSCCGL रद्द करो, TDPL वापस करो, CBI जांच कराओ, बस हमारी यही कुछ प्रमुख मांगे हैं जो सरकार को पूरी करनी हो।
0: लगातार यही प्रयास जारी रहा कि किसी भी सूरत में आंदोलनकारी छात्र संयम न छोड़े। खुद देवेंद्र नाथ महतो एम्बुलेंस से इस आंदोलन में पहुंचे और लोगों से शांति की अपील की।
3: मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है और मैं नहीं चाहता हूं कि जन्मदिन के मौके पर छात्र को कुछ ऐसा करे कि दिल्ली का जंतर मंतर की तरह कुछ अनहोनी हो, ऐसा छात्र को न दे जिसके बदन पे खून निकले, जिसके माथा पे चोट आए और ये भीड़ और उग्र हो जाए।
4: कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
3: गिरफ्तारी ठीक है, वो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन आज हेमंत जी का जन्मदिन है, जन्मदिन के मौके पर ऐसा तोहफा न दे जो जिससे खून बहे, जिससे अराजकता फैले, जिससे आक्रोश हो। ये शांति है, इनको शांतिपूर्ण रहने दिया जाए।
0: छात्र अब भी रांची की सड़कों पर डटे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर मार्च जारी है, लेकिन इस आंदोलन में छात्रों की पहल से बिल्कुल ही अलग तस्वीर दिखी है। रांची से सत्यजीत शशिभूषण के साथ आशुतोष मिश्रा आज तक।
5: भाई और बहनों, डेटा आपका, दर्द आपका, दौलत इनकी, दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत इनकी। मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी का बैलेंस 150 करोड़ रुपए का होता था बैंक में, आज इनका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए का है। 10,000 करोड़ रुपए का एक पॉलिटिकल पार्टी का बैंक बैलेंस। जहां तक डेटा की बात है, आपका डेटा छीन लिया जाता है और आपको फंसाया जाता है। आपको कहा जाता है जितनी भी आपको रील्स देखनी है, जितने आपको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने हैं, जितना आप इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हो, रील्स बनाना चाहते हो, आप बनाओ। भाई और बहनों, ये 21वीं सदी का नशा है। मजदूरी करो, 21वीं सदी का नशा लो, मगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती, रोजगार नहीं मिल सकता इस हिंदुस्तान में।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही. खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ. देखते रहिए आज तक.
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.

0: रांची में झारखंड विधानसभा गेट पर आंदोलनकारी छात्रों का धरना, लाठीचार्ज, पानी की बौछार के बावजूद अपनी मांग को लेकर अड़े प्रदर्शनकारी, राहुल ने बल प्रयोग को गलत बताया। झारखंड परीक्षा धांधली में बड़ा एक्शन, जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन गिरफ्तार, ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस, सीएम आवास पर बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। आखिरकार संसद का गतिरोध टूटा, छात्रों के मुद्दे पर बयान देंगे गृहमंत्री अमित शाह, किरेन रिजिजू की विपक्ष को नसीहत, गृहमंत्री को शांति से सुने। परिसीमन और एफसीआरए पर तनातनी के बीच महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासत में नई हलचल, प्रधानमंत्री मोदी से मिले शरद पवार, गुट के सभी 8 सांसद। एमपी के राजगढ़ में तेज बारिश बना जानलेवा, नाले में गिरी कार में 11 लोग बहे, 9 की लाश बरामद, मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये देखिए अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
1: हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के वंशज हैं, झारखंड के लिए लड़ सकते हैं तो हम लोग भी
2: हम लोग डरने वाले नहीं है। सरकार का एक ही विकल्प है, हमारा मांग को पूरी करे, अन्यथा सरकार अपना कुर्सी नहीं बचा पाएगी, उसका कुर्सी पर खतरा।
3: गांव छोड़ब नहीं, हम जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं।
4: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। झारखंड में चल रहे स्टूडेंट प्रदर्शन पर आज हम हल्ला बोल में बहस करने वाले हैं और जिस तरह का बल प्रयोग छात्रों पर हुआ है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि अपनी रिपोर्ट हम आपको दिखाएं, आइए लिए चलते हैं। कांग्रेस पार्टी इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है
5: कि एक तरफ विद्यार्थियों के ऊपर लाठी चार्ज एक काम तो उन्होंने की और दूसरी तरफ चंदा चोरी का भी था, इसलिए हम तीसरी मांग ये रखे कि वो खुद देश से जनता से माफी मांगे, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों लोग राम मंदिर में आस्था रखते हैं, अयोध्या में आस्था रखते हैं, तो ऐसे आस्था के जगह पे अगर इतनी बड़ी घटना होती है तो प्राइम मिनिस्टर कभी 15 दिन में कभी मुंह नहीं खोले, कुछ बोलने की तैयारी नहीं किए। और मैं समझता हूँ ये पहली ऐसी घटना है जिस घटना के बारे में प्राइम मिनिस्टर भी चुप्पी साधे हैं और होम मिनिस्टर भी चुप्पी साधे हैं। तो इसीलिए हम इन तीनों मुद्दे पे ये तीनों मुद्दे हमारे नॉन निगोशिएबल हैं। ये तीनों मुद्दों को लेके हम लड़ रहे हैं, हम किसी एक मुद्दे के लिए नहीं लड़ रहे, हम तीनों मुद्दे।
4: तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो ये कह रहे हैं कि गृहमंत्री अमित शाह से जो लाठी चार्ज है उस पर वो जवाब चाहते हैं। बहरहाल इन सब का हम रुख करेंगे क्योंकि देखिए अपनी अपनी सियासत अपने अपने तरीके। हालांकि खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने पोस्ट किया है कि बल प्रयोग का इस्तेमाल करना छात्रों के खिलाफ झारखंड में गलत है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले रिपोर्ट के साथ शुरुआत करते हैं क्योंकि झारखंड में सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच ठन गई है। तस्वीरें दिखाइए, आंसू गैस, लाठी चार्ज, वाटर कैनन, कटीले तारों की बैरिकेडिंग के बावजूद हजारों छात्र आज राज्य विधानसभा घेराव के अपने इरादे से ना डिगे ना रुके। राज्य विधानसभा के गेट तक सैकड़ों प्रदर्शनकारी छात्र पहुंचने में कामयाब हुए। विधानसभा तक छात्रों का यह आंदोलन अभी भी थमा नहीं है। आज विधानसभा तक पहुंचने में प्रदर्शनकारी छात्रों की पुलिस से कई बार झड़प हुई, कई छात्र घायल भी बताए जा रहे हैं। पुलिस के आंसू गैस और लाठीचार्ज से छात्रों के बीच भगदड़ की स्थिति भी बन गई। प्रदर्शनकारी छात्र अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, कई जगहों पर जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए तो छात्रों को तितर बितर किया गया, लेकिन जेपीएससी भर्ती धांधली छात्र मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है इसकी सीबीआई जांच होनी ही चाहिए, ये वो अपनी सबसे अहम मांग बता रहे हैं जिस पर अभी तक सरकार तैयार नहीं है। छात्र प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच तीन दौर की बातचीत हो चुकी है। इस बीच छात्रों के मुद्दे पर आज बीजेपी ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर और रांची में छात्रों के मुद्दे पर राहुल गांधी जैसे नेताओं पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप भी लगाया है। हालांकि हम आपको दिखाएंगे, कुछ ही देर पहले राहुल गांधी ने इस पर अपना पोस्ट भी किया है और इस वक्त वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको फिर से लिए चलते हैं।
6: स्टूडेंट्स वर बीटन विद लाठीज विद नेल्स इन देम। The question was, Mr. Amit Shah should come clean. Did he order it or did he not order it? If he ordered it, he is guilty of getting our children shot. And if he didn't know about it happening, he's incompetent. Either way, he should go. This was the discussion. Second, there were two other conditions. First condition, I explained to you that we want to understand clearly who's responsible, who's culpable. Second, the Prime Minister apologizes for what has happened. And third was the issue of the Ram Temple theft, which Khargeji has elaborated upon. People very close to the Prime Minister have stolen from the Ram Mandir. These are the three issues. So now Mr. Amit Shah suddenly saying that he's ready to speak. We're not interested in his fantasy conversations. We're interested in whether he authorized or didn't authorize the shooting of our children. First, he should make that abundantly clear. After that, the question of any discussion arises. That is the situation. And that is what the opposition is demanding. That is what we've been demanding for the last 15 days. And that is what we are continuing to demand. The other thing I'd like to point out is the character of the Prime Minister and the Home Minister. For 15 days, neither of them has had the courage, and I'm saying courage and stressing courage, neither of them has had the courage to come to the house. Neither of them has had the guts to own up to what they have done. So that is for our students to see and understand that neither the Home Minister of this country nor the Prime Minister of this country think that what was done to you in Delhi, the brutality that was carried out in Delhi, is worth commenting on. This is what the real issue is. Now, if you have any questions.
7: ANI.
8: सर आप कह रहे हैं तीनों बातें आपकी नॉन निगोशिएबल हैं. सरकार ने अपना रुख क्लियर कर दिया है. अब दो दिन ही बचे हैं तो हम माने कि जो अब तक स्थिति थी आप लोगों की दो दिन बरकरार रहेगी तो पूरा सदन पूरा जो ये सेशन है पूरी तरीके से वॉश आउट रहा और सरकार ये कह रही है अपोजिशन ने नहीं चलने दिया.
6: नहीं मैं हिंदी में बता देता हूं रिपीट कर देता हूं. तो देखिए शुरुआत में 15 दिन पहले हमारी पोजिशन थी कि होम मिनिस्ट्री से पैलेट गन चलाने का कील वाली लाठी चलाने का ऑर्डर आया था और पूरे देश ने देखा कि हमारे स्टूडेंट्स को मारा गया पैलेट गन से अंधा किया गया. हमारी पहली डिमांड थी कि होम मिनिस्टर आए और देश को क्लियरली बता दें या उन्होंने ऑर्डर दिया और वो कल्पेबल हैं और उन्होंने हमारे बच्चों पर गोली चलाई युवाओं पर गोली चलाई या उनको मालूम ही नहीं था और किसी और ने ऑर्डर दे दिया और फिर वो इनकॉम्पिटेंट है. और हमारा कहना था कि इस पर उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए और हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं. सेकंड पॉइंट जो हमारे स्टूडेंट्स पे दिल्ली में गोली चलाई गई मारा गया उसके लिए प्रधानमंत्री को अपोलोजाइज करना है. और तीसरी डिमांड जो प्रधानमंत्री ने राम मंदिर ट्रस्ट पे अपने लोग बैठाए थे जिन्होंने करोड़ों रुपए चोरी किए हैं सबके सामने उस पर चर्चा हो. ये हमारे तीन डिस्कशंस थे. हमारा कहना नहीं था कि अमित शाह जी आके किसी भी सब्जेक्ट पे भाषण दे दे जनरल चीजें आके बोल दे. हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. देश को भी इंटरेस्ट नहीं है उनकी क्या ओपिनियन है किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें. हम यह जानना चाहते हैं कि गोली किसने चलवाई और अगर इन्होंने नहीं चलवाई तो होम मिनिस्ट्री ने किसने चलवाई और कल्पेबिलिटी है या इनकॉम्पिटेंस है ये हम समझना चाहते हैं. तो यह हमारी पोजिशन शुरुआत से थी. फ्रॉम डे वन इट इज बीन आवर पोजिशन. आवर पोजिशन इज नॉट चेंज्ड. यह पूरा ड्रामा जो चल रहा है अमित शाह का जो गुब्बारा फटा है उसको रिपेयर करने का उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश हो रही है. ठीक है. और वो गुब्बारा फट गया है उसमें कोई मतलब गैस नहीं भरी जा सकती. अमित शाह डज नॉट हैव द करेज गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए. 15 दिन उन्होंने ये दिखाया है और ना नरेंद्र मोदी जी में गट्स है ना अमित शाह जी में गट्स है.
9: राहुल जी सवाल आपसे है. खड़गे जी भी बोल सकते हैं. सवाल यह है कि 20 जुलाई का जिक्र आप कर रहे हैं जिसको लेकर संसद में भी लगातार विपक्षी पार्टी जो है वो प्रदर्शन कर रही है कह रही है गृह मंत्री आकर के जवाब दे. आज 10 अगस्त को झारखंड में भी एक तस्वीर दिख रही है जहां बैरिकेटिंग की गई, छात्रों को मारा गया, लाठी चार्ज की गई, वहां भी कीलों के जो तार है वो लगाए गए हैं। तो झारखंड के छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे?
6: झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है, वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स, डज नॉट मैटर वेयर इट इज हैपनिंग, वी कंडेम इट, वी आर अगेंस्ट इट, वी डू नॉट रिकमेंड इट, वी डू नॉट सपोर्ट इट, वी आर वेरी क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। खड़गे जी,
5: नहीं ठीक है जो आपने बताया।
7: विजयलक्ष्मी जी,
9: राहुल जी, आपने कहा कि तीन नॉन नेगोशिएबल डिमांड्स हैं, उसमें राम मंदिर पर चंदा चोरी की बात आप कर रहे हैं, गृह मंत्री के सदन में आने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार
4: अमित शाह को जवाब देना चाहिए, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, तमाम खास मेहमानों से आपका परिचय करा दें, अगर हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाठी डंडे खाएंगे, छात्र व्यवस्था से टकराएंगे, सुधांशु त्रिवेदी सांसद और प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, एक बार दिखा दीजिए। अतुल लौंडे पाटिल साहब, स्वागत है आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। नीलम मिश्रा जेएमएम का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। सुनील सिंह साजन प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि आज किस तरह से शांतिपूर्ण छात्र आंदोलन ये चल रहा था, वहां पर लाठीचार्ज हुआ है झारखंड में, और कौन कौन चुप है, कौन कौन इस पर बोल रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
6: या नहीं चलवाई, अगर आपने चलवाई यू आर कल्पेबल, अगर आपने नहीं चलवाई और किसी और ने चलवा दी यू आर इनकॉम्पिटेंट, आइदर वे यू हैव टू गो, दैट वाज द स्टेटमेंट। 15 दिन के लिए पार्लियामेंट में आ नहीं पाए, मैं देख रहा था पार्लियामेंट में बैठे थे बट आ नहीं पाए अंदर। अब जैसे मैंने बोला, अब गुब्बारे को स्टिच करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें गैस बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द करेज टू स्टैंड फॉर व्हाट ही हैज डन, दैट इज अ फैक्ट, देयर इज नो अदर फैक्ट। एंड अगेन, नो वन इन द ऑपोजिशन इज इंटरेस्टेड इन हिज ओपिनियंस, वी डोंट केयर अबाउट हिज ओपिनियंस, ही कैन टॉक अबाउट हिज ओपिनियंस टू समबडी एल्स, द कंट्री वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड समथिंग एल्स, द कंट्री इज नॉट इंटरेस्टेड इन वॉट अमित शाह थिंक्स ऑन एजुकेशन। Country is interested, did you, Mr. Amit Shah, shoot our children or not? And if you did, why? Okay.
7: Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद।
4: तो आइए जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, झारखंड में आज छात्रों का आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ा है, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में धांधली के आरोपों के खिलाफ प्रदर्शनकारी छात्रों के विधानसभा घेराव मार्च को झारखंड पुलिस ने रोकने की बहुत कोशिशें की, लेकिन प्रदर्शनकारियों को ना कटीले तारों वाली 6 स्तरों की बैरिकेडिंग रोक पाई, ना आंसू गैस के गोले,
0: अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ये देखिए अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, प्रदर्शनकारियों पर अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं,
4: और ना वाटर कैनन
10: जा रही है। इस बैरिकेड पर कुछ छात्र हालांकि जा रहे हैं, ये देखिए डांस करना शुरू कर दिया है, ये क्या है?
11: सरकार जितना जुल्म करेगी हम उसका मजा लेंगे।
4: झारखंड विधानसभा परिसर के बाहर हजारों प्रदर्शनकारी पहुंचने में कामयाब हो गए। प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच इस संघर्ष में कई छात्र घायल हुए।
12: अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है, ये अच्छा नहीं कर रहे,
13: लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं,
12: ये अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहे।
14: किसी भी शर्त पर यहाँ से नहीं हटने वाले जब तक सरकार घोषणा नहीं कर दे कि सीजीएल रद्द हो गया।
15: ये मेरे पोस्टर का मतलब ये था कि हम लोग स्नैप को कोई फिल्टर नहीं जो हमारा फ्यूचर वो स्किप कर दे। इतना हिम्मत है तो आके गवर्नमेंट देख के ले, एक बार एक दो दिन बैठ के वहाँ पे देखिए हम लोग पे ऊपर क्या बीत रहा है, आप देखिए आके, बात तो जरूर सुनना चाहिए।
16: जो तो को काटा बोए ताही बो को फूल, तो ही फूल के फूल है बाको है त्रिशूल, आप कांटा बोइए और हम जो है वो फूल बोएंगे।
4: छात्रों के इस विधानसभा घेराव मार्च में 9 दिनों से अनशन पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो शामिल हुए। उन्होंने झारखंड सरकार पर अराजकता का आरोप लगाया।
2: ये सरकार डर गई है, कायर सरकार है। जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है कि ये सब से छात्र नहीं डरेंगे। जब हम 9 दिन भूखे हैं, हम यहाँ आए हैं, हमारा सलाइन चढ़ा करके हम यहाँ चल रहे हैं, अन्न ग्रहण नहीं कर रहे, तो इतना आसान है डरा देना? हम लोग डरने वाले नहीं है। सरकार का एक ही विकल्प है, हमारा मांग को पूरी करे, अन्यथा सरकार अपना कुर्सी नहीं बचा पाएगी, उसका कुर्सी पर खतरा है।
4: प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों से झारखंड सरकार की 3 दौर की बातचीत नाकाम हुई है। सरकार का दावा है कि 95 से 98% मांगे मान ली गई हैं, लेकिन जेएसएस सीसीजीएल परीक्षा रद्द करने और जेपीएससी भर्ती धांधली की सीबीआई जांच की मांग न माने जाने तक प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं।
13: सरकार ने एक हाई लेवल डेलीगेशन, हाई लेवल कमेटी बनाकर, 4 मंत्रियों की एक कमेटी बनाकर संवाद का रास्ता खोला था। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि यदि यह आंदोलन सिर्फ छात्रों का होता तो आज प्रदर्शन की जरूरत नहीं थी। सरकार ने 95% मांगे बच्चों की मान ली थी। मैं स्पष्ट यह मानता हूं कि छात्रों के पास आंदोलन का जरिया तो है ही है और रहेगा भी। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन जनता के अधिकार हैं और हम इस अधिकार को अक्षुण रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
4: इस बीच झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव और जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते को ब्लैकलिस्टेड कंपनी टीडीपीएल को परीक्षा का ठेका देने के लिए सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उधर झारखंड में छात्रों के इस प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा है।
17: रांची और दिल्ली को एक तराजू पर तौल कर देखिए और उसके बाद समझ में आ जाएगा कि ये लोग जो कि छात्र हितों की बात करते हैं या इनका मुखौटा है और असली चेहरा इसके पीछे छुपा हुआ है, जिसका उद्देश्य 100% राजनीति, छात्रों को भ्रमित करना और किसी न किसी मौके का लाभ उठाकर देश के अंदर अस्थिरता उत्पन्न करना है।
4: झारखंड में छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने शनिवार को वहां गए एक्टर पीयूष मिश्रा ने भी डबल स्टैंडर्ड पर सवाल उठाए थे।
18: आप जिन के मुंह में हड्डी है वो बोल नहीं पा रहे, माफ कीजिएगा, आपके प्रति पूरा सम्मान देते हुए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इसका कौन जिनके मुंह में हड्डी है और वो बोल रहे।
4: छात्रों पर जंतर मंत्र और रांची के बीच के अंतर पर सवाल पहले से उठ रहे हैं। नीट पेपर लीक पर प्रदर्शनकारियों की सभी मांगे माने जाने के बाद जंतर मंत्र का प्रोटेस्ट खत्म हुआ था, लेकिन झारखंड में आज छात्रों और सरकार के बीच संग्राम की नौबत आ गई है। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं सुधांशु जी आपसे। आपकी पार्टी आरोप लगा रही है कि डबल स्टैंडर्ड्स है, लेकिन राहुल गांधी तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, वो कह रहे हैं वो इसका समर्थन नहीं करते हैं कहीं भी बल प्रयोग हो छात्रों के खिलाफ।
19: देखिए, राहुल गांधी जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अब अंजना जी आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं, इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जाए या रिपीट टेलीकास्ट कहा जाए? जैसे आपके यहां एक प्रोग्राम का बार बार रिपीट टेलीकास्ट होता है, सेम रिपीट टेलीकास्ट। और रिपीट टेलीकास्ट में प्रॉब्लम क्या होती है कि उस दिन की घटना का जिक्र ही नहीं होता है। राहुल गांधी जी के अपने वक्तव्य में झारखंड के बारे में एक शब्द नहीं था, और प्रश्न पूछने पर जो व्यक्ति ये कह रहा है कि अमित शाह जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, वो आप सोचिए कितना दोहरा चरित्र है। 4 मंत्री आपके हैं, आप गठबंधन में बड़े भाई, यू आर ए मच मच बिगर ब्रदर। एक फोन कॉल जाना चाहिए, सिर्फ छात्रों की जांच की मांग में कौन सी समस्या है? कैंसिल करना है ये भी, वो किसी का इस्तीफा भी नहीं मांग रहे, और ये वो छात्र कौन है जो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, अनुशासित तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, मर्यादित तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई अभद्र भाषा नहीं, कोई गालीबाजी नहीं, कोई रीलबाजी नहीं, पुलिस वालों पे अटैक नहीं, पुलिस वालों पे पथराव नहीं, पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की नहीं, और इनके लिए कोई अज्ञात रूप से ऑर्डर करके स्विगी और जोमैटो से पिज्जा और बर्गर के अंबार भी नहीं लगा रहा है। उनको बिचारों को अपनी व्यवस्था स्वयं करनी है। यहां कोई पिकनिक भी नहीं मना रहा है, और यहां पर कोई वो भी नहीं कर रहा है कि उनके रहने की बड़ी उत्तम कोठी की व्यवस्था की जा रही हो। अतः यह आंदोलन और यहां पर छात्र लोग किसी राजनीतिक दल को भी अपने स्थान पे आने नहीं दे रहे हैं, वो इस विषय के ऊपर एकदम अपना जेन्युइन ढंग से विचार रख रहे हैं। और वो क्या है, ये पेपर लीक का मामला नहीं, उससे बड़ा मामला है। यहां तो उनका आरोप है कि सेटिंग करके नौकरियां दी जा रही हैं और वो ऐसे उदाहरण दे रहे हैं कि एक ही व्यक्ति को कितनी कितनी जगहों पर क्या क्या चीजें सेलेक्ट होती रही और उन्होंने तो किसी के इस्तीफे की मांग नहीं की। उन्होंने कहा साहब रिजाइन कर दे, वो रिजाइन न करें केवल जांच करवा दे और जांच भी क्या केवल सीबीआई की जांच। अरे एक सेकंड का ऑर्डर जाता सरकार जांच को नहीं जी हम जांच तो नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? अब शक उत्पन्न होता है। राहुल गांधी जी एक मिनट में फोन करें खट से काम हो जाएगा, यहां आगे भाषण देने की आवश्यकता ही नहीं है। मगर क्या करें ये जिस प्रकार से इन लोगों का जो उद्देश्य है, मतलब एक पंक्ति में कहूं कि जंतर मंतर पे कर्म और रांची में सितम, राहुल बाबा ये जुल्म न कर, पूरी दुनिया देख रही है, रहने दे अभी थोड़ा सा भरम, राहुल बाबा ये जुर्म न करे, कुछ तो भरम रहने दीजिए। और एक पॉइंट और कह दूं, ये राम मंदिर पे बोल रहे थे अंजना जी, एक लाइन बोल दूं मैं राम मंदिर पे भी, ये वही व्यक्ति है ना जिन्होंने ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ली 2024 में, अंग्रेजी में शपथ ली आई एम सोलेमनली अफर्म, यानी भगवान पे भरोसा नहीं, वैसे 2014 में ली थी ईश्वर के नाम की शपथ। और ये वही व्यक्ति हैं जिनकी पार्टी गई नहीं राम मंदिर पे, और ये वही व्यक्ति है जो 2005 में बिना बुलाए बाबर की कब्र पे जाके मत्था टेक के आए मनमोहन सिंह के साथ। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा क्या, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी केवल एक जैसे असिस्टेंट साथ में बैठा दिया जाता है, एक जूनियर प्रवक्ता हम लोग साथ बैठता वैसे बैठे हुए।
4: चलिए अतुल जी,
19: आश्चर्य की बात है, कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा पार्टी का राजनीतिक अध्यक्ष,
4: ठीक है सुधांशु जी,
19: जो स्वयं नेता प्रतिपक्ष है वो बेकेवल बैठे हैं,
4: ठीक है वो अपने उनकी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लेकिन उससे पहले अतुल जी, मैं नहीं मानती कि ये सवाल उतना बड़ा है जितना सवाल ये बड़ा है कि आज कम से कम रांची के बच्चों के नाम, मतलब कई बार तो ऐसा लगा कि राहुल जी जवाबदेही मांग रहे हैं कि भाई किसने ऑर्डर किया है लाठी चार्ज का हेमंत सोरेन सरकार से। आज की कम से कम घटना पर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोलना चाहिए था, सवाल पूछे जाने पर बोलना और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी घटना पर करना दो अलग चीजें होती है अतुल जी।
20: अतुल जी
4: एक सेकंड मैं लौट रही हूँ, इसका जवाब आप दीजिएगा। हमारे साथ आशुतोष हमारे सहयोगी जुड़ गए, एक सेकंड आशुतोष आपके साथ कुछ छात्र भी दिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो और इस वक्त स्थिति क्या है वहां पर, कहां पर है छात्र?
21: स्थिति अब बिल्कुल सामान्य है अंजना, और ये जो वॉलेंटियर्स हैं प्रदर्शनकारी, इन्होंने कहा था हम आएंगे, ठाना था और आए, अब यही छात्रों को वापस भी निकाल रहे हैं, कह रहे हैं प्रदर्शन हमारा सांकेतिक प्रदर्शन संकेत देना था, सरकार पर दबाव डालना था, जेएसएस सीजीएल खत्म हो और अब उसको वापस लिया जाए, अब तक सरकार ने मांगी नहीं लेकिन बेहद शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। अब आप क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग यहां पर?
20: हम लोग जितने भी हमारे छात्र यहां पर प्रोटेस्ट करने आए हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपना हम लोग का स्थान वहां पर बोला गया कि जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होती है हम रात दिन 24 घंटा 48
21: विधानसभा से अब जा रहे हैं।
20: हाँ, विधानसभा से बाहर हम लोग निकालेंगे काम।
21: आंदोलन जो जेएसएस सीजीएल था वो फंसा हुआ था, क्या अभी भी उस पर बातचीत चल रही है? कुछ उम्मीद है कि अभी भी सरकार पीछे हटेगी उस पर?
20: सरकार तो पीछे हटी रही है कि हम लोग कहाँ दे रही है, हम तो उनके मना ही रहे हैं कि आप लोग हमको सीजीएल दे दीजिए हम लोग चले जाएंगे।
21: हम जरा तस्वीर दिखा दे, जितना छात्रों का जमावड़ा था एक एक करके दो दो करके सब निकल रहे हैं, कहीं कोई ऐसी हिंसा नहीं हुई, एक दूसरे की मदद की छात्रों ने रहे और बड़ा फ्रेंडली मैच हो रहा था, बिल्कुल मुझे श्रीलंका की याद आ गई कि वहां पर भी सेना कैसे जगह पुलिस वालों के साथ, कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, वो आए अपना आंदोलन किया उन्होंने बताया और संभवतः प्रशासन का भी एक ऐसा सहयोग दिखाई दे रहा था, वो आए और जैसे ही देखिए समय खत्म हुआ,
4: किसी वजह से आपसे संपर्क कट गया है। लेकिन इस प्रोटेस्ट को देखकर, झारखंड को प्रोटेस्ट को देखकर श्रीलंका की याद क्यों आई, खैर ये अलग बात है, लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को वो यही है कि छात्र लगातार आज वहां पर आंदोलनरत थे। अतुल जी सुबह से ऐसी तस्वीरें जिसको देखकर पूरा देश लगातार आज तक पर टिका हुआ था कि भाई क्या हो रहा है, छात्र इतनी शांति से कि मतलब ये अपने आप में एक जिसको आप कह सकते हैं एक पूरा तरीका है कि आंदोलन करना हो तो कैसे करना चाहिए। आपस में वो चिल्लाए जा रहे थे, कोई गाली नहीं, कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई मतलब बहुत शांति से बच्चों ने किया। इसका अर्थ ये थोड़ी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकी चर्चा न की जाए अपनी तरफ से।
22: वो राहुल गांधी है, वो संगी थोड़ी है, बोल दिया उन्होंने और उन्होंने विरोध किया कि छात्रों के ऊपर जो भी थोड़ा बहुत भी जो लाठीचार्ज हुआ है, मैं तो वहां था नहीं, आप ही नहीं थे, लेकिन आशुतोष मिश्रा आपके रिपोर्टर जो वहां पर थे उन्होंने इसके थोड़ी देर पहले एक अपना बाइट दिया था कि बहुत मिनिमम जो है वो लाठीचार्ज हुआ है और वाटर कैनन का स्पीड भी बहुत कम था। ये बताया, ये थोड़ी कि किसी वहां के झारखंड के पुलिस ने वहां जाके पत्थरों से भरा हुआ ट्रक रख दिया, टूटी फूटी गाड़ियां पहले से रख दी, कील वाली लाठियां लेकर आ गए, कुछ महिलाओं के छात्राओं के प्राइवेट पार्ट में डंडा डाले, वैसे ये झूठ बहुत बोलते हैं लोग, तो ये यही बोलते हैं ये आईएसआई को पठानकोट में बुलाने वाले और बिना बुलाए बिरयानी खाने जाने वाले हरदम, वो गांधी परिवार जिसने बलिदान दिया उसके ऊपर हरदम टीका टिप्पणी करने वाले, अपना इतिहास बहुत खराब है इनका, इनका इतिहास ही गद्दारी का रहा है। अब मैं ज्यादा हार्श नहीं होता हूँ लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूँ।
4: अच्छा ठीक है, आपने एक सवाल है मेरा, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, एक सवाल है बस, क्योंकि आप सरकार में है वहां पर, तो एक दो सवाल तो आपसे पूछने की इजाजत दे दीजिए अतुल जी, उसके बाद मैं नीलम जी से भी पूछूंगी। आपने कहा कि हल्की फुल्की लाठी चार्ज की गई थी, पानी का जो फुहार था वो भी बड़ा हल्का हल्का छोड़ा गया था, ये आंसू गैस के जो गोले छोड़े गए थे उसमें भी कुछ मॉडरेशन था क्या, या फिर आंसू गैस का भी गोले में कुछ कमाल था?
22: मैंने अपने अपने से कुछ नहीं बताया, मैंने आशुतोष मिश्रा जो
4: मैं आपको बता रही हूँ ना सर, मैं पूछ रही हूँ, आंसू गैस का इस वक्त वीडियो दिखा रहे हैं।
22: मैंने सुनिए ना, आप सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए, जो आशुतोष मिश्रा ने जो रिपोर्टिंग की मैंने बस वो दोहराई है। अब मैं आपको इनका चाल चरित्र चलन दिखाता हूँ।
1: तो कौन भेजा आपको?
4: ऑडियो नहीं आ रहा है साफ।
22: ये मैंने ट्वीट किया है, आप मेरे ट्वीट से उठाकर दिखा दीजिए। बंगाल से और बिहार से कुछ छात्र जो है, छात्र जैसे उतने उम्र के जेंजी जो है वो ट्रक में बिठा के आए हैं, उनको पूछा गया, रिपोर्टर ने पूछा आप कहां से आए हो, तो बता रहे बंगाल बिहार से आए हैं, किसने भेजा है, तो बीजेपी ने भेजा है, क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट है, किस चीज का प्रोटेस्ट है तो पता नहीं है। तो ये इनका चाल चरित्र चलन जो है ना एकदम सामने आया है। और मैंने एक वीडियो और भी ट्वीट किया है, वो भी दिखा दीजिए। ये जो छात्रों के स्पोक्स पर्सन है, छात्रों की जो संगठन है उसके स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व हमारे इसमें घुस गए, जैसे सीजेपी के भी लोगों ने कहा था, अभिजीत दिपके ने कहा था कि हमारे यहाँ कुछ बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे घुसे हैं, वो असामाजिक तत्व है, उन्होंने हिंसा फैलाई, ये उन्होंने आरोप किया, मेरे तरफ से मैंने कुछ नहीं बोला है। तो ये सारी बातें एकदम स्पष्ट है, राहुल गांधी जी ने आके कहा कि जो भी सौम्य भी किया होगा आशुतोष मिश्रा के हिसाब से तो भी हम उसका विरोध करते हैं, बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से आए थे। अब रही बात सीजीएल की, सीजीएल की बात जहां तक मुझे पता है कि कोर्ट मॉनिटर्ड एग्जाम थी, कुछ लोगों की बहाली हुई है, और कोर्ट मॉनिटर्ड एग्जाम होने की वजह से राज्य सरकार के पास, झारखंड राज्य सरकार के पास वो अधिकार नहीं है कि वो उसे कैंसल करा सके। पहचान पे भी सारी बातें मान गई, जेपीएससी का चेयरमैन, ये तो ऑटोनोमस बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पब्लिक सर्विस कमीशन जैसा यूपीएससी।
4: एक सेकंड, आपको टोक रही हूं, इस वक्त आंदोलनकारी नेता देवेंद्र नाथ महतो हमारे साथ फोन लाइन पर आज तक पर जुड़ रहे हैं। देवेंद्र जी, सबसे पहले तो क्या स्थिति है इस वक्त आंदोलन की, विधानसभा तक आप लोग पहुंचे थे, उसके बाद से क्या क्या हुआ है, अगर आज दिन भर का घटनाक्रम आप हमारे दर्शकों को बताएं।
3: जी, अभी रांची का मौसम हल्का फुल्का बारिश है और हम लोग अभी हजारों स्टूडेंट जिस गेट पर माननीय विधायकों का एंट्री होती है उसी गेट के करीब में हम लोग हजारों की संख्या में भिंगते हुए बारिश में डटे हुए हैं। और मेरा आज भूख हड़ताल का 9वां दिन है और ये सत्याग्रह का 17वें दिन है, और आज उसके बावजूद भिंग भिंग के दिन भर हम लोग इस प्रोटेस्ट को जारी रखे हैं। आज बहुत लाखों की संख्या में छात्र एकजुटता दिखे, और जबकि सुबह से ब्रेकडिंग लगा करके 2400 दिनों से रोकने का प्रयास किया गया, फिर हम आज तक का पूरा हम लोग का भारत का इतिहास में पहली बार ऐसा देखे कि ये नोकीले कांटेदार तार का ब्रेकडिंग लगाया गया था 3-4 लेयर करके। तब मैंने सोचा कि जब मेरा इतना दर्द है, तकलीफ है, पीड़ा है शरीर में, 9 दिन से खाए नहीं है, लेकिन ये स्थिति देख करके हमसे रहा नहीं गया। मैं खुद विधानसभा में उसी हालत में आया, एम्बुलेंस से आया हूँ मैं, एम्बुलेंस से आकर के स्ट्रेचर से बच्चे हमको दिन भर करना पहले करके रखे हैं, हमको उसका विजुअल भी आपको मिला ही होगा, और अभी भींगते हुए भी हम लोग डटे हुए हैं। हम सोचा कि आज अब मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि मेरा दर्द है, मेरे भूख है, मेरा बॉडी हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरा बीपी लो है, मेरा शुगर लो है, मेरा 10.5 kg वजन घट गया है, ये सब अब मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहता, चाहे क्यों मैं मर भी जाऊं तो वो भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आज का स्थिति देख करके लगा, और मैं आया तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ छात्र का मांग पूरी करने के बजाय ये सरकार पुलिस या लाठी बरसा रही है, टियर गैस का उपयोग कर रही है, वाटर कैनन का प्रयोग कर रही है, मैंने इतना डर गई है, सरकार कायर जैसा हरकत कर रही है। आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, हम लोग मुख्यमंत्री को जन्मदिन का विश कर रहे हैं, और उधर से तोहफा से दिया हम लोग को लाठी बरसाया जा रहा है, खून बहाया जा रहा है, लथपथ कराया जा रहा है। इतना इस तस्वीर को आज पूरा भारत ही ने, पूरा दुनिया देख करके एकदम शर्मसार हो रहा है। झारखंड बहुत ही बुरा लग रहा है, क्या बताएं। और हम तो अब इसीलिए हम आ गए और सीधे आज बोलना कि आज मेरा तबियत का हालचाल कोई नहीं पूछे, हम मर भी जाए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा जो दर्द है तकलीफ है पीड़ा है इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस राज्य के युवाओं का नौकरी को बेचा जा रहा है, वो बड़ा दर्दनाक है, वो बहुत तकलीफ दे है, वो बहुत
4: पीड़ादायक
3: है, कष्टदायक है, क्योंकि यहाँ लाखों युवा का भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर है और इस लड़ाई को मैं 2 जुलाई से लड़ रहा हूँ। जिस दिन पीटी रिजल्ट आया मैं डे वन ही कहा था कि ये आवाज देवेंद्र नाथ महतो का नहीं है, ये आवाज उन लाखों युवाओं का है जो अपने सपनों की तलाश किताबों में करते हैं। इस आवाज में कई बहनों का उम्मीद है, कई माओ का त्याग है, कई पिताओं का पसीना है जो आज झारखंड में देखने को मिला, लेकिन ये कायर निरंकुश सरकार अभी तक कोई हम लोग के हित में अभी तक जो संतोषजनक बातें नहीं हुई है। हम चाहते हैं छात्र को संतुष्ट करने में क्या उसको दिक्कत है।
4: अच्छा मैं तो जी 2-3 सवाल था सर मेरा आपसे, चूंकि आप लाइव हैं, एक वक्त तो आप इस वक्त कहां पर हैं, क्या अभी भी आप लोग विधानसभा के ही बाहर हैं या विधानसभा से आप लोग निकल चुके हैं, और फिर आगे का आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या रहेगी। प्रश्न का दूसरा हिस्सा क्या मतलब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई बहुत लाठीचार्ज नहीं किया है, हल्का फुल्का पानी मारा है, और हम लोग तो तस्वीरें देख रहे हैं, लाठीचार्ज के भी देख रहे हैं, आंसू गैस के गोले के भी देख रहे हैं, तो पुलिस ने जो जो किया है उसके बारे में भी आप जानकारी दें, और क्या कुछ छात्रों के घायल होने की भी खबर है। 2 सवाल है सर आपसे।
3: हाँ मौजूद है हम लोग नए विधानसभा परिसर के गेट 1 जहाँ पे 81 माननीय समेत मुख्यमंत्री और सभी मंत्री का इस द्वार से प्रवेश होता है, उसी गेट के नियर पर एकदम नियरेस्ट में एकदम सामने पे है। इसी फूल की बारिश भी हो रही है, सारे स्टूडेंट्स भी गए हैं और आज दिन भर कहने को तो पक्ष और विपक्ष सब अपने अपने बात रखते हैं, हम अगर सही भी हो जाएंगे तो कह देंगे कि बीमारी से मर गया, इसलिए जो क्या कहते हैं नहीं कहते हैं ये मैटर नहीं करता है, मैं क्या कहता हूँ ये भी मैटर नहीं करता है। लेकिन आज जो पूरे दुनिया ये चौथे स्तंभ का आईना, जो समाज का आईना, जो कैमरा के नजरों में हुआ, मुझे टारगेट करके टियर गैस आंसू गोला छोड़ा गया, मेरा इर्द गिर्द 3 बार ब्लास्टिंग किया गया, मेरा आंख जलन से कम 20 मिनट मेरा हालत खराब हुई थी, मेरा सांस में दिक्कत हुई थी, मेरा इम्यून सिस्टम अपने परेशानी है, लेकिन मैं एक अंदर का इंस्पिरेशन से हूँ कि भाई जान भी चला जाए तो जान तो आज या 10 साल बाद या 15 साल बाद जाना ही है, लेकिन उस जान का क्या करूं जो आज छात्र को न्याय नहीं दे सकूं, इसी इंस्पिरेशन के साथ अभी टिका हुआ हूं। आज मेरा जांच भी नहीं हुआ है, अभी सलाइन इतना टाइम पे मेरा चढ़ता है लगभग, के बावजूद ये स्थिति में भी अभी यही हूं। और आगे का स्ट्रेटजी हम लोग सरकार पर निर्भर रख रहे हैं कि सरकार घोषणा कर दे हमारे सभी मांगों को पूर्ण करने का, नहीं तो जब 9 दिनों का भूखा आदमी जिसका शुगर लेवल 53 है, जिसका वजन 10.5 kg घटा है, वो इतना बात बोल पा रहा है, तो सोचिए ये एक दिन का दर्द नहीं है, सिर्फ 14 KPSC का दर्द नहीं है, यहाँ सारे एग्जाम पर पेपर लीक होता है, जंतर मंतर पर एक पेपर लीक का प्रोटेस्ट था, यहाँ जो मंत्री का नाम लेंगे, जिसका जिस पार्टी का मंत्री का नाम लेंगे, सारे भर परिवार का, भाई का, भतीजा का, भगना का, भगनी का यहाँ हम निकाल देंगे, ये उन लोग का नौकरी हुआ है, क्या बताएं, 11 परीक्षाओं पर CBI जांच हुई है, CBI जांच से पुष्टि भी हुआ है कि जितने सचिव लेवल के यहाँ पदाधिकारी हैं जो हम लोग को आज लाठी बारिश बरसा रहे हैं, आंसू गोला दे रहे हैं, ये सभी आरोपित हैं CBI का, जो PSC पर चयनित हुए हैं, इन लोग पर नेमडेप खाया रहा है, ये लोग सारे लोग बेल पर नौकरी कर रहे हैं, 20 दिन फास्ट ट्रैक कोर्ट से ट्रायल होगा, सभी कोई जेल के अंदर होंगे, और हम लोग को लाठीचार्ज कर रहे हैं, इन लोग हम लोग को वाटर किरण से प्रताड़ित कर रहे हैं, हम तो चैलेंज करते हैं झारखंड का सचिव लेवल का जो JPSC से चयनित हुए हैं, कोई हम लोग से टेबल टॉक नहीं कर सकते हैं, सब बेल पर नौकरी कर रहे हैं, मुंह छिपा के सब ड्यूटी करते हैं।
4: अच्छा ये बताइए कि क्या कुछ छात्रों के घायल होने की भी खबर आई है, आपने बताया कि आपके आसपास भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे।
3: जी मेरे सामने एक साथी को चोट हुआ, वर्सन पर भी बैठे थे, उनका पर भी चोट हुआ, उनको बहुत ज्यादा दर्द है अभी, और इसके अलावे और कई साथियों को लाठीचार्ज की खबर है, हालांकि उसको मैं देख नहीं पाया हूँ, मैं अपने एक पेशेंट की स्थिति में हूँ, खुद मुझे लोग पात्र हमको अपने धो करके लेके चल रहे हैं अपने कंधों पे, मैं चलने की भी स्थिति में नहीं हूँ, मैं तो कई दिनों से बैठ भी नहीं पा रहा था, लेकिन आज ये जो कटीले तार का पाकिस्तान का बॉर्डर टाइप का जो ब्रैकेटिंग लगा दिया ना, हम सोच रहे हैं यार हम आज 16 दिन से आंदोलन में हैं, 2 तारीख से हम लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 5 तारीख को इस सारे गलतियों गड़बड़ियों का उजागर किए, 21 तारीख से जांच शुरू हुई आज तक, और अभी एंड अभी तक मैं एक भी पॉलिटिकल नारा लगने नहीं दिया हूँ, एकदम शांतिपूर्ण डिसिप्लिन से यहाँ चल रहा है अभी भी, आज भी इतना धैर्यता के बावजूद हम लोग शांति प्रिय रहे, आज कम से कम लाखों की संख्या में स्टूडेंट होंगे, लेकिन एक भी स्टूडेंट को न सरकार का अगेंस्ट न कोई नेता का अगेंस्ट एक नारा तक लगने नहीं दिए, हम लोग बिल्कुल शुद्ध रूप से पूरा विश्व का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि इस तरह का आंदोलन यहाँ लग रहा है कि एजुकेटेड है, सिर्फ न्याय की बात कर रहे हैं।
4: जिस कटीले तार की आप बात कर रहे हैं विधानसभा के बाहर, वो विजुअल भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं लगातार देवेंद्रनाथ महतो जी, लेकिन पुलिस प्रशासन के सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि संसद हो विधानसभा हो वहां पर जी अगर लोग घुसे तो फिर
3: दिक्कत पर हो रही है जी। अंजना मैडम आप हमारी आवाज बने हैं, तभी जाकर के अभी बहुत उम्मीद है कि सरकार और पुलिस के पास किस बात का चैलेंज, एक मिनट में सरकार संतुष्ट कर दे छात्र को, सभी कोई पढ़ने लिखने चले जाएंगे, छात्र का काम नहीं है आंदोलन करना, सड़क पे हो हल्ला करना, सड़क पे प्रदर्शन करना, नारेबाजी करना, छात्र का काम है पढ़ना, छात्र का काम है परीक्षा देना, नौकरी करना, लेकिन उसका नौकरी को बेच दिया जाएगा, क्या करे छात्र बता दीजिए आप, मजबूर है छात्र, आज इतने दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से आवाज, उनको मालूम था कि हम गलती किए हैं, सीट बेचे हैं, यार ये स्टूडेंट को भी पता है, ये बहुत दिनों से झेल रहे हैं, हम लोग कई बार आंदोलन किए लेकिन हम लोग का आवाज पूरा देश भर में गूंजा नहीं था, क्योंकि हम लोग को बड़े चैनल का सहयोग नहीं मिला था, सभी हम लोग गरीब छात्र लोग हैं, तो आज आप लोग का सहयोग मिला है तो पूरा भारत और पूरा दुनिया में यहाँ की आवाज गूंज रही है, ये एक दिन का पीड़ा नहीं है, ये वर्षों का पीड़ा है, तभी तो जाकर के यहाँ आपको लगेगा बात सुन के यहाँ का सेटिंग और धांधली को आप आश्चर्य करेंगे, यहाँ पे 100 पूर्णांक पे जिसका पैरवी रहता है उसको 122 नंबर दिया जाता है, इसका पैरवी रहता है क्वालिफाइंग पेपर का मार्क्स को भी मेरिट लिस्ट के लिए उसको भी जोड़ा जाता है, यहाँ अगर पैरवी रहता है तो अगर आपका आर्ट्स सब्जेक्ट है तो साइंस का वैकेंसी में भी आपको नौकरी दिया जाता है, यहाँ एकेडमिक सर्टिफिकेट का भी यहाँ कोई मतलब नहीं, अगर आपके पास पैरवी है तो ये स्थिति है, बहुत ही बुरा स्थिति है बता रहे हैं ना, एकदम एक एक बात मेरा सच्चाई है, एक भी बात में मेरा पूरा भारत सुन रहा है, एक भी बात में मेरा दाग नहीं है, और एक भी बात मेरा एक इनका का भी आग बढ़ा के नहीं बोल रहे हैं, बल्कि हम सब बात भी नहीं बोल पा रहे हैं, यह बुरा स्थिति है, हमेशा लाठी बरसा करके आवाज को दबा दिया जाता है, पहली बार तो आवाज निकली है।
4: अच्छा देवेंद्र जी, अब जो शर्तें हैं उस पर जरा सा आते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो सब यही चाहते हैं, जैसा आपने भी कहा कि छात्र पढ़े, पढ़ना चाहते हैं, और बड़े हमने तो ऐसे ऐसे बच्चों की वहां बात सुनी है, कह रहे हैं नारेबाजी मत करो, जाके बाद में नेतागिरी नहीं करना, पढ़ाई करना है, किताब लेके बैठे हुए आंदोलन में, मतलब लोगों की आंख भर रही है कि मतलब इतना मच्योर बिहेवियर बच्चों का कि मतलब सब कोई सीख सकता है इन बच्चों से, लेकिन जिन बातों पर अभी एक लॉक जैम बना हुआ है देवेंद्र जी, उस पर चाह रहे थे कि आप बताएं कि एक तो सीबीआई जांच की मांग, और कितने एग्जाम्स को रद्द करने के लिए आप लोग कह रहे हैं, सरकार कितने पे तैयार है, कहां पर जाकर अभी भी बात अटकी हुई है, फंसी हुई है देवेंद्र जी?
3: आपका कॉल आने से पहले 5 मिनट पहले कोई एक आदमी नारा लगाने का प्रयास किया था सरकार के विरोध, मैंने कहा कि एकदम बंद करिए, स्टूडेंट का नारा लगाएंगे, जैसा आपका फोन आने से पहले, हमारा जो डिमांड है वो 2 कैटेगरी का है, एक अर्जेंटली डिमांड है और एक टाइम टेकिंग डिमांड है, अर्जेंटली डिमांड जो भी TDPL एजेंसी जो ब्लैकलिस्टेड एजेंसी के द्वारा जितने भी एग्जाम दिए गए हैं वो सारे एग्जाम को रद्द कर दिया जाए, साथ ही साथ CGL जो बहुत विवादित परीक्षा है उसको भी रद्द किया जाए, और टाइम टेकिंग वाला में हम लोग का रिफॉर्म का है कि भाई उसको रिफॉर्म किया जाए, यहाँ नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को हटाया जाए, यहाँ 3 ऐसा नियमावली लाया जाए, ऐसा SOP लाया जाए, मिनिमम 3 कार्बन कॉपी दिया जाए, निगरानी कमेटी गठित किया जाए, और यहाँ बहुत सारा हम लोग का ब्लू प्रिंट तैयार है जो एकदम जेन्युइन डिमांड है, अगर बैठ के सरकार एकदम मन को शांत करके एक स्टूडेंट समझ के बात कर ले तो बहुत अच्छे से सब चीज पूरी हो जाएगी, और पूरा हिंदुस्तान के लिए झारखंड एक ऐसा स्टेट उदाहरण प्रस्तुत करेगा जहाँ पेपर लीक आंदोलन फिर भी ना के बराबर होगी, एकदम नहीं, हो ही नहीं सकता, ऐसा हम लोग का पूरा प्लान है। तो हमारा अर्जेंट जो टाइम टेकिंग डिमांड है उसको हम लोग 3 महीने का समय दिए, और जो अर्जेंटली डिमांड है वो प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा जब तक वो पूरी नहीं होती है।
4: देवेंद्र जी आप अपना ख्याल रखिए, और हमारी तरफ से यही विनती होगी कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, और जो अनशन है वो जल्द से जल्द खत्म हो, सरकार के साथ बातचीत आप लोगों की सफल हो ताकि कोई रास्ता निकले, और ये जो छात्रों ने अपनी ताकत पूरी दिखाई है उस ताकत को समझे सरकार भी और एक रास्ता उनके लिए निकले, क्योंकि बच्चा जब हर तरफ से हार जाता है ना, जब वो देखता है कि इस तरह की नियुक्तियां हो रही हैं, एक ही परिवार में इतने लोगों की हो रही हैं, एक ही व्यक्ति 12-12 एग्जाम निकाल ले रहा है, आप सोचिए। ऐसे में जो अभय तिवारी की चर्चा हो रही है, TGPL जो बैंड ये है, बहुत सारे प्रश्न हैं, उन सबका हल बच्चों के लिए निकलना चाहिए। और बाबूलाल मरांडी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो झारखंड इकाई है वो जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन बाबूलाल जी ये अब कहां पर किस तरफ जाता हुआ आप लोगों को ये दिख रहा है? बाबूलाल जी आंदोलन छात्र अभी भी विधानसभा के बाहर है,
5: नहीं, मुझे लगता है कि सरकार बिल्कुल अपनी जिद पर अड़ी हुई है। छात्रों की तो क्या मांग है, छात्रों की मांग है JCC में और JPSC में जिस भी एग्जामिनेशन में गड़बड़ी होगी उन सारे मामलों को CBI से जांच करावे, और JCC ने सहायक आचार्यों की भर्ती नियुक्ति की उसमें भी गड़बड़ किया, एक बार में रिजल्ट नहीं दिया, 5-6-7 बार में रिजल्ट दिया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर रिजल्ट दिया, और उसमें कट ऑफ तो बहुत दिनों के बाद किया। फिर CGL का एग्जाम लिया उसमें भी गड़बड़ हुआ, उसमें तो नेपाल में, बिहार में, बंगाल में, झारखंड में बच्चों को क्वेश्चन पेपर रटवाया गया पैसे लेकर के। फिर उसी प्रकार से PGT का एग्जाम लिया उन्होंने प्राथमिक शिक्षक का, वहां भी गड़बड़ी हुई, फिर उत्पाद सिपाही में भी गड़बड़ी हुई। ये तो JCC का झारखंड चरमचारी चयन आयोग के द्वारा परीक्षा आयोजित किया था, इसमें से ये गड़बड़ी। और दूसरा झारखंड लोक सेवा आयोग जिसमें से 11वीं 12वीं और 13वीं JPSC का 2023 में उन्होंने एग्जाम लिया था उसमें भी गड़बड़ी हुआ था। उसमें तो पैसे लेकर के यहाँ के बच्चों को नहीं बल्कि बाहर के बच्चों को, और वो भी आश्चर्य है कोरठा में बाहर के बच्चे लोगों ने पास किया और यहाँ के बच्चे नहीं निकल पाए, उसमें भी कई गड़बड़ी हुई। मामला अदालत में सरकार ने JPSC ने खुद कहा था सरकार ने कि हम जो बच्चे पास करेंगे मेंस में
4: जी, और अब यही है कि अब ये रास्ता ये निकले। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जल्दी से अन्य मेहमानों को दिखा दीजिए। अतुल जी आपकी बात बीच में रुक गई थी, टाइम बहुत कम बचा है क्योंकि देवेंद्रनाथ महतो जी हमारे साथ वहां पर जुड़ गए, लेकिन 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर नीलम जी और सत्यप्रकाश जी से जल्दी एक रिएक्शन लूंगी। और आपने सुना वो तो कह रहे हैं कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनके पास भी छोड़े गए, वो इतने दिन से व्रत कर मतलब भूखे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके उनके साथ ऐसा हो रहा है।
22: नहीं, उसका तो हमने तो कहा ना कि माइल्ड स्वरूप से भी हुआ होगा तो गलत है, मैंने देखा हो आपके इसमें वीडियो में वो साइड में डाल रहे हैं, जैसे जंतर मंतर में सीधे लोगों को मारे गए, ये साइड में डाले गए, लेकिन उसका भी हम निषेध करते हैं, नहीं होना चाहिए। ये अपने बच्चे हैं और अपने छात्र जो है जो मांग कर रहे हैं, जब ये बाबूलाल जी मरांडी जो बता रहे थे उनके जमाने में तो बहुत 4 ही एग्जाम हुई 18 साल में, लेकिन उनके जमाने में भी काफी पेपर लिखा उसका उन्होंने उल्लेख नहीं किया, लेकिन बात ये नहीं है। बात
8: आपका जमाना कहीं कहीं याद आता है कि नहीं, राजस्थान और सब जमाना याद आता है।
22: सत्यप्रकाश जी ये तेरा मेरा नहीं है, मैं भी उसी से आया हूँ, मैंने भी सिविल सर्विसेज पास किया। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी बहुत देखो मैं करना है तो आप करो, मैं कुछ सीरियसली बात करता हूँ। देखिए अतुल लिमय जी को छोड़ दीजिए, नितिन नवीन को छोड़ दीजिए, कंगना रानावत को छोड़ दीजिए, ये आंदोलन में एक बात तो दिख रही है कि छात्र मुद्दे उठा रहे हैं, सरकार रेस्पॉन्ड भी कर रही है, लेकिन छात्र CGL की बात की है तो मेरे ख्याल से कोर्ट में जाना पड़ेगा सरकार को कि ये एग्जाम रद्द करना पड़ेगा, क्योंकि छात्र इस एग्जाम के रिजल्ट को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि कोर्ट मॉनिटर चल रहा है, तो उसके देखना पड़ेगा। और ये बात तो सही है,
8: मुझे लगा था राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और झारखंड के छात्रों को न्याय देंगे कि CBI जांच वहां की सरकार स्वीकार कर ले, लेकिन राहुल गांधी तो राजनीति करने आए थे, छात्र वहां आंदोलन कर रहे थे, जंतर मंतर पर भी शांतिपूर्ण कर रहे थे, जब तक शांतिपूर्ण था सब चीज शांति थी, वहां भी शांतिपूर्ण होना।
4: जल्दी से एक टाइम कम है,
8: बहुत दिन कर कविता वो गा रहे हैं, वर्षों तक वन में घूम घूम विघ्नो बाधाओं को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, छात्र आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखेंगे आगे क्या होता है।
4: नीलम जी बस छात्रों की बात ही तो माननी थी, जो नियम दिल्ली के लिए था वो नियम वहां पर क्यों नहीं, कोई चांद तारा थोड़ी मांग रहे हैं वो लोग।
6: अंजना जी, झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में डे वन से छात्रों के साथ है। इस चीज को समझना होगा क्योंकि सरकार ऐसी सरकार है जो रातों रात एक्शन लेती है।
7: उनके कॉलर तक पहुंच जाएगी जांच। ऐसे ऐसे सीट बिके मुख्यमंत्री के घर से सीट बेचा गया।
4: स्टूडियो में बैठने का फायदा ना उठा।
6: जंतर मंतर क्यों नहीं गए?
7: दे दीजिए ना सीबीआई जांच का आदेश। हाथ जोड़कर कह रहे हैं झारखंड के छात्रों के हितों के लिए सीबीआई जांच।
4: जितना ही टाइम बचा है सुनील सिंह साजन जी, आपसे मैं माफी मांग रही हूँ हाथ जोड़कर, क्योंकि आज हमारे साथ मेहतो जी जुड़ गए थे तो मैं आपके पास एक बार भी नहीं आ पाई। अगली बार इसकी भरपाई की कोशिश करूंगी। बहुत धन्यवाद आप सभी का। लेकिन आज छात्रों की आवाज, और उस आवाज में ये देखा जाएगा कि कौन मेरा और तेरा का फर्क कर रहा है। देखते रहिए आज तक।

0: बहुत टायर्ड हो गई।
1: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
2: लायन डेट नट बाइट्स।
3: बिजली का बिल पेड
4: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
5: कैसे?
4: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
5: इतना माही वे।
6: पापा।
7: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
8: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
7: छक्का?
8: सब कैशलेस हो गया
7: है। ओ ला भाई मेरा बैट।
8: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
7: चार्ज हुआ यार।

0: हर महीने भीम ऐप से करो पे।
1: इत्ता माही वे।
2: पापा।
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ
4: ला भाई मेरा बैट।
5: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
4: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
1: आगे आगे। अरे उधर उधर। करेक्ट करेक्ट।
8: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: In association with
3: Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: तक, Digital First Channels, 11 billion views, 85 million unique viewers, one stop solution for your brand, regional or hyper local reach. हर शहर, हर कस्बे तक advertise करने के लिए email करें।
5: तीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
6: बहुत ही साफ साफ हमने अपना पक्ष सरकार का रखा है कि स्टूडेंट्स का जो एजुकेशन से संबंधित मुद्दे पर वी आर रेडी टू डिस्कस, गवर्नमेंट इज रेडी टू डिस्कस ऑन द पुलिस एक्शन और द स्टूडेंट मूवमेंट्स और एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, बट आवर कंडीशन इज ऐसा है। इसमें गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट का सवाल नहीं, हम तो बहुत व्यापक कह रहे हैं, स्टेटमेंट ही क्यों, पूरा डिटेल चर्चा होना चाहिए और जवाब सरकार का जवाब जब देंगे तो उसमें कोई ऑपोजिशन पार्टी ऐसा हरकत नहीं करना चाहिए जवाब को डिस्टर्ब करने के लिए, पूरी तरह से सुनना पड़ेगा।
7: कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूँ, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूँ कांग्रेस पार्टी और इनको के गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। मैंने पिछले एडवाइजरी में भी सर सार्वजनिक वहां सबके सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में धांधली के आरोपों के खिलाफ प्रदर्शनकारी छात्रों के विधानसभा घेराव मार्च को झारखंड पुलिस ने रोकने की बहुत कोशिशें की, लेकिन प्रदर्शनकारियों को ना कटीले तारों वाली 6 स्तरों की बैरिकेडिंग रोक पाई, ना आंसू गैस के गोले
3: छोड़े जा रहे हैं। ये देखिए, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं प्रदर्शनकारियों पर, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं,
2: और ना वाटर कैनन।
4: इस बैरिकेड पर कुछ छात्र हालांकि जा रहे हैं, ये देखिए डांस करना शुरू कर दिया है, ये क्या है?
5: सरकार जितना जुल्म करेगी हम उसका मजा लेंगे।
2: झारखंड विधानसभा परिसर के बाहर हजारों प्रदर्शनकारी पहुंचने में कामयाब हो गए। प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच इस संघर्ष में कई छात्र घायल हुए।
6: अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है। ये अच्छा नहीं कर रहे,
7: लेकिन कोई रिपब्लिक,
6: ये अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहे।
8: किसी भी शर्त पर यहाँ से नहीं हटने वाले जब तक सरकार घोषणा नहीं कर दे कि सीजीएल रद्द हो गया।
9: ये मेरे पोस्टर का मतलब ये था कि हम लोग इस लैब का कोई फिल्टर नहीं जो हमारा फ्यूचर वो स्किप कर दे। इतना हिम्मत है तो आके गवर्नमेंट देख के ले, एक बार एक दो दिन बैठ के वहाँ पे देखे हम लोग पे ऊपर क्या बीत रहा है, आप देखिए आके, बात तो जरूर सुनना चाहिए।
10: जो तो को काटा बोवे ताही बो को फूल, तो वही फूल के फूल है बाको है त्रिशूल। आप कांटा बोइए और हम जो है वो फूल बोएंगे।
2: छात्रों के इस विधानसभा घेराव मार्च में 9 दिनों से अनशन पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो शामिल हुए। उन्होंने झारखंड सरकार पर अराजकता का आरोप लगाया।
11: ये सरकार डर गई है, कायर सरकार है, जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है। कि ये सब से छात्र नहीं डरेंगे, जब हम 9 दिन भूखे हैं, हम यहाँ आए हैं, हमारा सलाइन चढ़ा करके हम यहाँ चल रहे हैं, अन्न ग्रहण नहीं कर रहे, तो इतना आसान है डरा देना? हम लोग डरने वाले नहीं है। सरकार का एक ही विकल्प है, हमारा मांग को पूरी करे, अन्यथा सरकार अपना कुर्सी नहीं बचा पाएगी, उसका कुर्सी पर खतरा है।
2: प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों से झारखंड सरकार की 3 दौर की बातचीत नाकाम हुई है। सरकार का दावा है कि 95 से 98% मांगे मान ली गई हैं, लेकिन जेएसएस सीसीजीएल परीक्षा रद्द करने और जेपीएससी भर्ती धांधली की सीबीआई जांच की मांग न माने जाने तक प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं।
12: सरकार ने एक हाई लेवल डेलीगेशन, हाई लेवल कमेटी बनाकर, 4 मंत्रियों की एक कमेटी बनाकर संवाद का रास्ता खोला था। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि यदि यह आंदोलन सिर्फ छात्रों का होता तो आज प्रदर्शन की जरूरत नहीं थी। सरकार ने 95% मांगे बच्चों की मान ली थी। मैं स्पष्ट यह मानता हूं कि छात्रों के पास आंदोलन का जरिया तो है ही है और रहेगा भी। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन जनता के अधिकार हैं और हम इस अधिकार को अक्षुण रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
2: इस बीच झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव और जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते को ब्लैकलिस्टेड कंपनी टीडीपीएल को परीक्षा का ठेका देने के लिए सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उधर झारखंड में छात्रों के इस प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा है।
13: रांची और दिल्ली को एक तराजू पर तौल कर देखिए और उसके बाद समझ में आ जाएगा कि ये लोग जो कि छात्र हितों की बात करते हैं या इनका मुखौटा है और असली चेहरा इसके पीछे छुपा हुआ है, जिसका उद्देश्य 100% राजनीति, छात्रों को भ्रमित करना और किसी न किसी मौके का लाभ उठाकर देश के अंदर अस्थिरता उत्पन्न करना है।
2: झारखंड में छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने शनिवार को वहां गए एक्टर पीयूष मिश्रा ने भी डबल स्टैंडर्ड पर सवाल उठाए थे।
14: आप जिन के मुंह में हड्डी है वो बोल नहीं पा रहे, माफ कीजिएगा, आपके प्रति पूरा सम्मान देते हुए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इस बात
2: छात्रों पर जंतर मंत्र और रांची के बीच के अंतर पर सवाल पहले से उठ रहे हैं। नीट पेपर लीक पर प्रदर्शनकारियों की सभी मांगे माने जाने के बाद जंतर मंत्र का प्रोटेस्ट खत्म हुआ था, लेकिन झारखंड में आज छात्रों और सरकार के बीच संग्राम की नौबत आ गई है। आज तक ब्यूरो

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: शुक्रिया शकील। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर पर राहुल का हमला, पूछा किसने दिया पैलेट गन चलाने का आदेश। चढ़ावा चोरी को लेकर प्रधानमंत्री को घेरा, खड़गे बोले अमित शाह दे जवाब। प्रदर्शन में बदला झारखंड में छात्रों का धरना, असेंबली मार्च के दौरान झड़प, आज तक से बोले देवेंद्र मैं तो, अब नहीं होगी सरकार से बात। झारखंड परीक्षा धांधली में बड़ा एक्शन, जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन गिरफ्तार, ईडी ने दर्ज किया केस, सीएम आवास पर बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। उत्तर भारत के कई राज्यों में बाढ़, चमोली में बुरा हाल, रायगढ़ में 9 मौत, राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों में भी परेशानी। परमाणु हथियार के बहाने दबाव बनाने में जुटे ईरान का ट्रंप को जवाब, का हॉर्मुज तभी खुलेगा जब अमेरिकी देंगे हर्जाना। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी में धांधली के विरोध में 16 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे छात्रों का पेशेंस आखिरकार टूट गया। आज छात्रों ने सरकार के खिलाफ विधानसभा का घेराव किया। हालांकि प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे, लेकिन छात्र विधानसभा तक पहुंच ही गए, मगर छात्रों के आंदोलन के आगे प्रशासन पस्त हो गया।
1: बजे से शुरू हुआ छात्रों का शांतिपूर्ण आंदोलन 2 बजते बजते इन तस्वीरों में बदल गया। छात्र विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे और उन्हें रोकने के लिए पुलिस वाटर कैनन चला रही थी। छात्रों पर वाटर कैनन का असर नहीं हुआ तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और इस लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हो गए। छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा। छात्र सवाल करने लगे कि आखिर उन्हें क्यों पीटा जा रहा है।
2: यहाँ पे प्रोटेस्टर हैं, देखिए उनको कैसे चोट लगी है, ये कैसे चोट उनको लगी है वो दिखा रहे हैं कैमरे पर। इनके पीठ पे चोट लगी है, इनके हाथ में चोट लगी है।
3: आप हाथ जोड़ लिए थे खड़ा होने के बाद, हाथ जोड़े थे उसके बाद भी मारा है पुलिस। आतंकवादी है क्या? आतंकवादी है, जवाब दे। क्यों मारी पुलिस? खड़ा हुए थे, यहाँ से यहाँ तक मारी है, यहाँ मारी है, यहाँ मारी है, क्यों मारी जबकि हाथ जोड़ लिए थे? इससे शांतिपूर्ण इन लोग परेड नहीं होता होगा जितना शांतिपूर्ण हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं।
4: हम लोग को नक्सली समझा जा रहा है। हम लोग छात्र हैं, इतने सालों से हमारे इस आंख में हमें पहले लहू के आंसू हमने पहले ही सरकार ने रुला दी है और आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आए थे, हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया, हमारे छात्र लोग घायल हो गए हैं और उसके बाद आंसू गैस का गोला।
5: सिटी एसपी सर हम लोग को यहाँ अलाउ किए बैठे थे, बोलो वहाँ से जितने लोग हैं उनको कंटेन कर, सभी लोगों को भगा दिया, लाठी चार्ज किया गया, सभी लोगों को भगाया गया, हमें वहाँ बैठने का अलाउ किया सर ने और अब भगा दिया गया।
6: सरकार से लड़ेंगे, इस बार हम लौटेंगे। ये पुलिस पुलिस को इज्जत कर रहे थे उस टाइम से,
7: पार्टी मना रहे
6: हैं,
7: बहुत अच्छा कर रहे हैं,
6: पार्टी मना रहे हैं,
7: पार्टी मना रहे
6: हैं, उनकी जन्मदिन पर उनके लंबे आयु के लिए हम कामना करते हैं। झारखंड के युवाओं को रुला रहे हो,
8: पूरे देश के युवाओं पे लाठी
6: चले, झारखंड के युवाओं को रुला रहे हो, लाठी चार्ज कर रही है पुलिस। हमारे सर पैर में चोट लगा हुआ है, हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन
7: क्या कह रहे हैं, किस प्रकार का व्यवहार हुआ?
6: हम लोग तो शांति से, हम लोग सरकार को भी इससे कम नहीं करेंगे।
7: हम लोग पीसफुली बैठे हुए हैं, कौन सा लाठी चार्ज किया है हम लोग, बताइए। हम लोग पीसफुली यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग को जबरदस्ती है, बताइए। संविधान में विरोध का अधिकार है,
6: पुलिस वाले के पास बेटा बेटी नहीं है, हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
8: पीछे से
6: आप लोग हमारे सर पर
8: जो हुआ जो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे
6: हैं, कुछ भी हो जाए,
8: कुछ भी हो जाए,
6: जान ले लो, जान ले लो, ये पुलिस मारी है,
7: बैठे रहेंगे।
0: के संवाददाता सत्यजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो सीधे रांची से आ रहे हैं। सत्यजीत, ये जो तस्वीरें आ रही हैं, बहुत ही आक्रोश की आ रही है, छात्रों का आक्रोश अब सड़कों पे दिख रहा है। ये कौन सी लाठी चार्ज हुई है, क्या फिर से उन पर लाठी चार्ज किया गया है?
9: नहीं देखिए, ये जो जब वो मार्च कर रहे थे उस दरमियान जो है पुलिस का ये कहना है कि मिनिमम फोर्स यूज किया गया है, बैरिकेडिंग कई बनाए गए थे और बार्ब वायर जो है वो वैसे कटीले तार भी लगाए गए थे, उसको भी स्केल डाउन इन लोगों ने किया। और विधानसभा के प्रमाइजेस में घुसे हैं, उस वक्त जो है वाटर कैनन छोड़े गए हैं और लाठी चार्ज की गई है। और लास्ट में शाम के वक्त जो है वो विधानसभा के गेट नंबर 1 के बाहर तक पहुंच गए, ऐसा कभी हुआ नहीं था झारखंड बनने के बाद की कोई प्रोटेस्टर जो है झारखंड के विधानसभा के गेट तक पहुंच जाए, और वो भी जब विधानसभा का कोई सत्र चल रहा हो, ऐसी ऐसा पहली बार देखा गया है। तो जाहिर तौर पे पुलिस का ये कहना है कि मिनिमम जो है बल्ब का प्रयोग किया गया, जिसके वजह से ये देखने को मिला कि वो यहाँ तक पहुंच गए। उधर प्रोटेस्टर जो है वो ये कहते हैं कि वो झारखंड के ही रहने वाले हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं, संवैधानिक तरीके से मांग रहे हैं, फिर भी लाठी चार्ज किया गया। जबकि ये भी अब रांची जिला प्रशासन का भी कहना है कि पहले ही प्रोहिबिटरी ऑर्डर जो है वो लागू किया गया था, ये कहा गया था कि यहाँ जो है वो ना आए, जो 750 मीटर का दायरा है वहाँ पे जो है बीएनएस का 163 और सीआरपीसी के 144 का धारा जो है वो प्रोहिबिटेड है। ऐसे में वो लोग जब यहाँ पहुंचे हैं तो ये उनको यहाँ नहीं आना चाहिए था, एक चेतावनी भी पुलिस ने दी थी, रांची प्रशासन ने दी थी कि कल को अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। हालांकि छात्र अपने मांग पे एडमेंट थे, इसके अलावा जो है फर्म उन्हें बिलीव था, जो उनकी मंजिल थी वो झारखंड के विधानसभा तक थी और वहां तक उन्होंने वो पहुंच कर दिखाया, वो पहुंच चुके थे। दो तीन मांगे जो है जिस पर वो जो है लगातार पब्लिक डोमेन में है, जिस पर उनकी बात जो है सरकार से नहीं बनी, उसके बाद पहले से ही उन्होंने घोषणा की थी कि झारखंड विधानसभा तक मार्च करेंगे, इसी के तहत मार्च था और इसी दरमियान बल का प्रयोग किया गया।
0: सो विधानसभा का जो घेराव है वो तो अब खत्म हो गया, तो क्या अब छात्र वापस जा रहे हैं? क्या ये आंदोलन आज के लिए खत्म हुआ? अब वापस जाएंगे छात्र अपने अनशन पे जो बैठे हुए हैं वो आगे जारी रखेंगे?
9: देखिए ये उनका साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी तरह से नहीं मानी जाती है आंदोलन जारी रहेगा। विधानसभा से ज्यादातर छात्र जो है ज्यादातर आंदोलनकारी थे तो वो वापस जा चुके हैं। बारिश जब हुई मौसम खराब हुआ आधे लोगों को जाते हुए देखा गया। कुछ लोग अभी भी वहां पे हैं और वो कह रहे हैं कि यहां पे अब आंदोलन जारी रहेगा तो अब पुलिस उनको किस तरह से टैकल करती है ये देखना होगा।
0: तो ये जो तस्वीरें आ रही हैं सत्यजीत, ये जो तस्वीरें आ रही हैं बच्चियों की, जो छात्रा हैं वो सब चीख रही हैं, कुछ बातें कर रही हैं, कुछ बोल रही हैं पुलिसकर्मी के खिलाफ, ये क्या हो रहा है? ये जो तस्वीरें आ रही हैं क्या ये विधानसभा के अंदर की तस्वीरें हैं?
9: अंदर भी टियर गैस जो है जब ये अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, प्रमाइसेस तक पहले ही अंदर आ चुके थे, उसके बाद जब वो कोशिश कर रहे थे गेट नंबर वन तक आने का, उस दरमियान जो है थोड़ा बल का प्रयोग जरूर किया गया क्योंकि विधानसभा तक अभी तक कोई प्रोटेस्ट नहीं पहुंचा था। तो ऐसे में उनसे पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई है और धक्का मुक्की भी हुई है और इसी दरमियान थोड़ा बल का भी प्रयोग किया गया, लेकिन एक नंबर गेट पहुंचने के बाद भी वो जब वहीं पे गेट के बाहर बैठ गए, विधानसभा के गेट के बाहर बैठ गए, उस दरमियान भी पुलिस के तरफ से कोई खास बल का प्रयोग उस वक्त तक नहीं किया गया था, लेकिन वो ना पहुंचे विधानसभा इसके लिए उस वक्त जो है बल का प्रयोग जरूर किया गया था।
0: और देवेंद्र महतो जिन्होंने अब कह दिया है साफ तौर पर कि कोई बातचीत नहीं होगी सरकार के साथ, अब क्या होगा आगे, कैसे ये पूरा जो प्रदर्शन है वो कैसे आगे बढ़ेगा?
9: देखिए छात्रों ने ये कह दिया है कि उनकी जो दो मांगे हैं, सीजीएल को रद्द करने की मांग जिस पर सरकार ने अपना इनएबिलिटी एक्सप्रेस किया है कि वो ऑथराइज नहीं है क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर पे ये नियुक्तियां हुई थी, ये इम्तिहान हुआ था उसमें वो इंटरवीन नहीं कर सकते हैं, तो सरकार ने भी अपना स्टैंड रख दिया है और इधर जो है छात्र भी आ रहे हुए हैं, तो ऐसे में बीच का रास्ता डायलॉग से ही निकलेगा। अब ये देखना होगा कि ये डायलॉग जो है अब कब होता है,
0: ये डायलॉग अब कब होता है ये हमें पता नहीं, क्योंकि सरकार की तरफ से क्या कोई इंडिकेशन है सत्यजीत कि अब फिर से बातचीत होगी? दो राउंड बातचीत हो चुकी है, तीसरे राउंड की बातचीत भी जल्द होगी।
9: देखिए तीन राउंड बातचीत हो चुकी है, तीन तीन बार सरकार ने बात की है स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव से भी और सरकार ने अपनी भी बातों को रखा है, उन्होंने भी अपनी मांग को रखा है। अब ऐसे में आज सुबह भी सोनू जो पैनल ऑफ मिनिस्टर
10: ये सरकार जो है ना महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया ना, लाठी बरसाया ना, और जेंट्स पुलिस शर्म लगना चाहिए। महिला पुलिस रहता तो अलग बात थी, जेंट्स पुलिस जब भी हम लोग शांति से बैठे हुए थे देवेंद्र महतो के साथ अनशन में बैठे हुए थे, लेकिन ये पुलिस बर्बरता कर रही है और महिलाओं के साथ लाठीचार्ज किया, कपड़ा फाड़ा गया है, महिलाओं का कपड़ा फाड़ के पीटा है। ये पुलिस का तानाशाही नहीं चलेगा और इस सरकार का तानाशाही नहीं चलेगा। इस सरकार ये पुलिस प्रशासन को हम लोग बहुत ही इज्जत करते थे, हम लोग संवैधानिक ढंग से कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर बहुत अन्याय हुआ।
0: अच्छी से आ रही हैं वहां पर जो छात्र थे, उन्होंने उनका आज एक कॉल था, उनका कहना था कि जो विधानसभा तक वो पहुंचेंगे, वो आखिरकार विधानसभा तक पहुंच गए। आज छात्रों ने सरकार के खिलाफ विधानसभा का घेराव का ऐलान किया था, प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे लेकिन छात्र विधानसभा तक पहुंच गए और यही ये वही तस्वीरें आ रही हैं। तीन राउंड बातचीत हो चुकी है, आगे क्या होगा सरकार का रुख? सरकार का कहना है कि वो 90% जो स्टूडेंट्स के डिमांड हैं वो मान चुकी है, अब कुछ ही डिमांड ऐसे हैं जो शायद वो मान नहीं सकती। तो यही सवाल होगा मेरा सत्यजीत से, कौन सी ऐसी डिमांड है जो सरकार नहीं मानने के लिए तैयार है?
9: देखिए, बताया हमने कि सीजीएल जेएसएससी सीजीएल को जो रद्द करने की मांग स्टूडेंट की थी, इसके अलावा सीबीआई प्रोब की जो मांग थी, ये दोनों मांगे नहीं मानी गई है। और सीजीएल जेएसएससी इससे इम्पोर्टेंट है कि बाकी जो जेपीएससी इम्तिहान करवाता है, अधिकारियों के लिए इम्तिहान कराता है, अधिकारियों के बहाली के लिए यानी कमीशन ऑफिसर के लिए करवाता है, जबकि जेएसएससी जो है थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड का की बहालियां निकालता है, 22-22 पोस्ट एक बार में निकलता है।
11: हमसे यहाँ बैठिए, तो हम लोग वहीं बैठे हुए थे, हम लोग की विधानसभा, हम लोग विधानसभा में भी नहीं घुसते हैं, हम लोग पीसफुल तरह से बैठे हुए थे, एसपी सर बोले, उसके बावजूद उनके मारने की कोशिश की, हमने बहुत मारा है सर, बहुत मारा हुआ है, लाठी से मारा है सर, हम चमारे अब
12: सर, हम गोल बना के बीच में बैठे थे, उधर से लाठी चार्ज हुआ है और हमारे गिर गिरी है, उधर से लाठी चार्ज,
13: क्या नाम है सर?
12: तो आपको भी मारा गया? नहीं लगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो हमारे लगा है और अचानक अचानक या बिल्कुल अचानक, कोई बात नहीं
14: है।
15: क्या हुआ था?
14: हाँ, जब भगदड़ हुआ हम पुलिस के बीच में ही थे, पर उसके बाद भी पुलिस जबरदस्ती भगाने के चक्कर में मेरे को इतना हाइपर की कि हम मेरा पैर मुझका और मेरे पैर में देखिए यहाँ पे स्पेन आया हुआ है। अगर फ्यूचर में अगर मेरे पैर में कुछ होता है तो झारखंड सरकार उसका जिम्मेदारी लेगी या ये जो पुलिस इसका जिम्मेदारी लेगी?
15: क्या की सरकार ने अभी जब बैठे हुए थे तो
14: कुछ नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे ना, अभी कुछ नहीं कर रहे थे, हम लोग बैठ के हम लोग
16: का बर्थडे पार्टी मना रही है और कुछ नहीं कर रहे।
14: तो चाहिए ना उनके लिए स्पेस चाहिए, हम लोग उनका स्पेस कवर कर रहे थे।
15: आज क्या आप क्या कर रही हो?
16: आज हेमंत सोरेन का बर्थडे है तो अपना बर्थडे पार्टी में वो व्यस्त है, हम लोग को यहाँ पे छोड़ दिए हैं, बारिश में भीग रहे हैं, कभी सूख रहे हैं और ऊपर से लाठी चार्ज भी हो ही गया, और इससे बढ़िया गिफ्ट और क्या हो सकता है। लेकिन एक बात है, हम लोग भी कानून जानते हैं, कोई भी महिला पुलिसकर्मी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी, जबकि यहाँ पे इतनी सारी महिलाएं, हम लोग लड़कियां थी, फिर भी कोई महिला पुलिसकर्मी यहाँ पे नहीं थी, बावजूद इसके हम लोग को भगाया गया है, लाठी उठाया गया हम लोगों पे, हालांकि हमको नहीं लगता किसी को लगा होगा लाठी से, लेकिन फिर भी भगदड़ में
14: लगा है
16: गिर के भागदर में सब एक दूसरे पे गिर गया, ये हुआ है,
14: नहीं लाठी से भी मारे हैं।
16: कम से कम इतना तो आपको नॉलेज रखना ही चाहिए कि महिला पुलिसकर्मी यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए थी।
17: ये तीन युवा जो यहाँ पर
0: रांची में, आपको याद होगा जेपीएससी और जेएसएससी में धांधली के विरोध में 16 दिन से लगातार प्रदर्शन चल रहा है, और उसके बाद छात्रों ने सरकार के खिलाफ, हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ विधानसभा का घेराव किया। हालांकि प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे, लेकिन छात्र विधानसभा तक पहुंच गए और ये सब सीधे तस्वीरें आ रही हैं विधानसभा के अंदर के जो किए जो वहां पर है, वहां से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर फिर से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है, और सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह की कार्रवाई कितनी गलत है, प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ क्यों लाठी चार्ज हुआ, ये सवाल, इस सवाल का जवाब सरकार को देना होगा। सत्यजीत हमारे साथ जुड़ गया है, तो सत्यजीत, क्या वहां से स्टूडेंट्स को हटा दिया गया है अब, और वहां की क्या स्थिति है अब?
9: देखिए, अभी जो है डिस्पर्स किया गया है, फिर थोड़ा सा बल प्रयोग करके जो है स्टूडेंट्स को वहां से क्लियर करवाया गया है, और विधानसभा का परिसर जो है वो सेंसिटिव परिसर है, वहाँ पे 750 मीटर के दायरे में धारा 144 और बीएनएस की धारा 163 यानी प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लागू था, और ये लोग गेट तक पहुँच आए थे, एक नंबर गेट जिसका इस्तेमाल एक्सक्लूसिवली मुख्यमंत्री करते हैं जब वो विधानसभा आते जाते हैं। सत्र अभी चल रहा है, मानसून सत्र 2 दिन और चलेगा, 12 तारीख तक जो है सत्र का अवधि है, तो पुलिस प्रशासन का ये कहना है, सोर्सेज जो है वो जो पुलिस प्रशासन में सोर्सेज है उन्होंने कहा कि हम लोगों ने मिनिमम बल प्रयोग किया था, जिसके वजह से नतीजा ये हुआ कि ये इन लोगों ने बैरिकेडिंग लांगा। इसके अलावा जो है विधानसभा तक आज तक झारखंड गठन के बाद कोई प्रोटेस्ट नहीं पहुंचा था, वो प्रोटेस्ट लेकर स्टूडेंट्स जो है वहां तक पहुंच गए, और यहां पे एक डेजिग्नेटेड स्पेस है, जगन्नाथपुर जो मंदिर है वहां वहीं पे एक मैदान है, मोर्चा जब भी आता है उसको वहीं रोक दिया जाता है, और वहां पे एक बड़ा बैरिकेटिंग किया जाता है, उस बैरिकेटिंग को भी इन्होंने लांग लिया, हाई कोर्ट के पास जो बैरिकेडिंग था वहां तक वो पहुंचे नहीं, एक अलग सा रूट लिया इन्होंने और विधानसभा के प्रेमाइसेज में दाखिल हो गए। उसके बाद भी प्रशासन जो है उसका कहना है कि हम लोगों ने प्रदर्शन करने दिया, बाद में ये कूद
0: सभा के परिसर में आ गए थे। तो मुझे ये बताइए कि
11: मांग किया हमने परीक्षा को रद्द करने का मांग किया, अब लाठी से बात कीजिएगा, अब लाठी से बात कीजिएगा, यह नहीं चलेगा, यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी।
13: रविंद्र अंदर क्या हुआ, क्या हुआ रविंद्र,
18: रो क्यों रहे भैया, रो क्यों रहे,
13: अंदर क्या हुआ,
11: पुलिस पर शासन का, पुलिस पर शासन का,
13: स्कूल के बाद
11: जो सब गलत साबित हो रहा है,
13: पुलिस आज हम लोग क्या
11: कर रहे हैं, हम लोग पीसफुल ठीक है बैठिए, अचानक से लाठी चार्ज कर रहे हैं
13: सर, बोले
11: क्या छात्रियां खाए पिए नहीं आए, हमारे हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अब उस पर लाठियां बरसाई गई,
13: पुलिस कमांडेंट के पुलिस टीम को ऑर्डर
14: से शामिल किया जाना चाहिए,
11: हमारे बहुत सारे साथी को चोट लगा है,
13: राकेश
11: हमारे साथी को हमको पुलिस पकड़ के अलग कर दिया, हम छात्रों के साथ नहीं रहे, जो नेतृत्व करेगा उसको पकड़ के अलग कर देगा,
14: आपको कहाँ ले गई थी पुलिस,
11: अलग उस साइड ले गया था हमको कोना में।
14: अच्छा आगे आपका आगे का एक्शन क्या होने वाला है, आप कहाँ जा रहे हैं,
11: हमारा एक्शन फाइनल है
13: भाई,
11: हम जब तक अपनी मांगों पर हम अपनी मांग पर कायम है, सरकार जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करती हम लोग आंदोलनरत रहेंगे, हम लोग आंदोलनरत रहेंगे।
13: रविंद्र फिर से वार्ता के लिए बुलाया जाएगा तो जाओगे,
19: जिस तरीके से
11: अब वार्ता जो है सो सीधे सीएम से होगा, उनका अलचर बेलचर से वार्ता नहीं होगा, उन लोग के पास छात्रों के साथ बात करने का कोई तर्क नहीं है,
13: अब
11: सीएम से
13: अनाउंसमेंट
11: हुआ था, डायरेक्ट लाइन के मारने की कोशिश के मारे डायरेक्ट लाइन के पूरा हजारों लाखों सैनिक पूरे छावनी में तब्दील करके मारने का भगाने का,
19: कितने मीटर तक उन्होंने पीछा करके,
11: अरे यहाँ से कम देख रहे हैं कितना,
13: एक किलोमीटर डेढ़ किलोमीटर वहाँ तक मारा भैया, वो दबड़ा दबड़ा के मारा है,
19: और साथ में आपके जो साथी कुणाल सर उनके ऊपर भी लाठीचार्ज
11: पूरा, अभी तक पता भी नहीं कि कुणाल
13: सर अंदर से सब कोई निकल गए हैं,
19: पहले बताने की कोशिश करी कि कुणाल सर
11: है कहाँ तो पता ही नहीं है,
13: कुणाल सर कोई निकल गए हैं,
11: नहीं निकले मेरे अंदर है, पर सदन जो है तीन बार उसको मारने का औकात नहीं हुआ, जब तक हमारे साथ 50,000 छात्र थे उन्होंने नहीं मारा, रात के अंधेरे में हमको खदेड़ने और मारने का काम कर रही है, हम आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं छात्र तटस्थ है, अपनी मांगों पर तटस्थ है, और अब जो है चाहता हूँ आप जो है छात्रों के मुद्दे पर जमेंगे, आप एक तरफ काटने और दूसरी तरफ छात्रों पर लाठियां बरसा रहे हैं, एक तरफ अपने बर्थडे मना रहे हैं, दूसरी तरफ छात्रों पर लाठियां, अरे कहाँ आपका नैतिकता, नैतिकता कहाँ की चल गया आपका, कोई भी धारा लगे हासिल करना, आंदोलन को मैं घोषणा कर रहा हूँ आज से, यह छात्र आंदोलन जन आंदोलन में बदल गया है,
20: चेंज कर रहे हैं, उनका उद्देश्य संवाद करना नहीं है बल्कि अराजकता फैलाना है, पहले उन्होंने संसद शुरू होते समय नीट पर चर्चा मांगी, जब हम नीट पर चर्चा के लिए तैयार हुए तो वह राम मंदिर न्यास का विषय उठाकर के लिए आए, और उसके बाद फिर गृह मंत्री जंतर मंतर के घटना पर बयान दे इस बात पर अड़े, देखा जाए तो उनका कोई भी इरादा हाउस को न चलने देने का है, वह नहीं चाहते कि हाउस चले, और इसलिए पिछले 15 दिनों से वो हाउस को सदन को बाधित कर रहे हैं, और बाधित करने के साथ साथ वो इस बात का भी प्रयास कर रहे हैं कि जंतर मंतर के विषय पर चर्चा हो, आज जब इस बात पर चर्चा होकर के तय हुआ कि जंतर मंतर के विषय पर चर्चा होगी तो वह अब लोगों को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह देश को कर रहे हैं कि संसद में जंतर मंतर में गोली चली, बल्कि वहां कोई गोली नहीं चली है, और गृह मंत्री हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, और गृह मंत्री आज से नहीं, हमारा एक ही कहना था कि लेट द हाउस फंक्शन, हाउस चले, और हाउस चलेगा तो हम हर विषय पर आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं, और हमने हमेशा दिया है, हमारा इतिहास इस बात का गवाह है, आपने एसआईआर पर चर्चा मांगी थी, खूब चर्चा हुई और चर्चा के समय जब हम जवाब देने पर आए तो आप भाग गए। आपने प्राइस राइज पर चर्चा मांगी थी, हमने प्राइस राइज पर चर्चा की। जब सरकार जवाब दे रही थी तो कांग्रेस में हिम्मत तक नहीं थी कि वो हाउस में बैठे। ये इनका इतिहास है, ये इनका रिकॉर्ड है। और इसलिए कोई भी विषय हो, जिस विषय पर भी, पॉलिटिकल विषय पर उन्होंने चर्चा मांगी है, हमने उनको हमेशा चर्चा के लिए आमंत्रित किया है और हमने कहा है कि हम तैयार हैं और चर्चा करेंगे। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि आज जैसे उन्होंने गोल पोस्ट चेंज किया है, वो भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ में वो जब गृह मंत्री जी ने कह दिया कि अब हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो फिर वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, राहुल गांधी, चर्चा से मत भागना, हम तैयार हैं। सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तुम भागना मत। और इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं, आज उनको झारखंड में छात्रों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? आज उनको, और मेरी जानकारी बताती है कि उनके इशारे पर वहां कटीली तारें लगाई गई हैं, उनके इशारे पर जो सरकार के पार्ट एंड पार्सल हैं वो सरकार वहां चला रहे हैं, क्या उनको छात्रों की आवाज वहां सुनाई नहीं दे रही है? मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का डबल स्टैंडर्ड राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपनाती है, उनका कोई भी देश के भविष्य के लिए और देश के आगे ठीक ढंग से चले, इसमें अराजकता पैदा करना, नकारात्मक राजनीति लाना, गैर जिम्मेदाराना अपना योगदान, गैर जिम्मेदाराना विपक्ष की भूमिका निभाना, यही वो करते रहे हैं। मैं इसकी तीव्र भर्त्सना करता हूं और फिर से मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर में। थैंक यू। मेरा हो गया।
0: लीडर ऑफ द हाउस, राज्यसभा के जेपी नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं और सरकार बातचीत के लिए तैयार है, हर चीज पर डिस्कशन और डिबेट के लिए तैयार है, लेकिन राहुल गांधी गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं। जेपी नड्डा का कहना है कि कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर पर, राहुल गांधी गलत बात बोल रहे हैं और उन्होंने जो वो बोल रहे हैं वो सही नहीं है, कोई जंतर मंतर पर गोली नहीं चली है, जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का कहना है। राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं, भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, सीधा आरोप लगाया जा रहा है लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी पर। इस बात पर एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
21: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
22: सॉरी यार, ये गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
23: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा,
22: छक्का
23: सब कैशलेस हो गया है।
22: हाँ
24: टाटा ए आई जी है तो भरोसा है।
25: आगे आगे, करेक्ट
26: करेक्ट, मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
3: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
4: लायन डेट नट बाइट्स।
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।
8: बिजली का बिल पेड
9: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
10: कैसे?
9: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
10: पे।
11: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबां केसरी हिंट बड़े आराम से
2: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर ये है खबरें सात तक देखते रहिए आज तक
3: के लिए जो है इनको बाकायदा इनके खिलाफ कार्रवाई हो कड़ी कार्रवाई हो ताकि दूसरा कोई तथाकथित साधु संत इस तरह की बात ना कर सके।
4: तो क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव फिर से हिंदुत्व की पिच पर ही लड़ा जाएगा? क्या अखिलेश यादव के सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड की कार्ड बीजेपी ने तैयार कर ली है? समाजवादी पार्टी के कृष्ण और सुदामा दाम का भी क्या बीजेपी ने तोड़ निकाल लिया है? राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड के बाद हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी को घेरने की कोशिश अखिलेश यादव ने की। लखनऊ से दिल्ली तक हर कदम फूंक फूंक कर रखा, लेकिन अब बीजेपी को मथुरा से नई किरण दिख गई। बीजेपी और आनुषंगिक संगठन हमेशा से कहते आए थे कि अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी है, लेकिन अब मथुरा से संत समाज ने इसका ऐलान कर दिया है कि कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा की तैयारी है। समय तय हो चुका है, बस 6 दिसंबर 2026 का इंतजार है। 6 दिसंबर वही तारीख है जब 1992 में अयोध्या में कार सेवा हुई थी। मथुरा के हिंदू संगठनों ने कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा की घोषणा करके हिंदुत्व की इस पिच को फिर गर्मा दिया है।
5: 6 दिसंबर को मथुरा में कार सेवा की घोषणा की जाती है।
4: मथुरा के कई हिंदू संगठनों और संतों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा का ऐलान किया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले संत समाज ने इस मुद्दे को हवा दे दी है। मथुरा के संतों ने पहले 9 अगस्त को कार सेवा की तैयारी की थी। इसके लिए बाकायदा हवन पूजन भी कर लिया गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद मामला टल गया। अब संतों ने 6 दिसंबर 2026 को कार सेवा करने का ऐलान किया है। हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर ही बीजेपी केंद्र की सत्ता तक पहुंची और फिर एक एक
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो

0: और विशेष में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीधा रांची से, जहां तमाम प्रदर्शनकारी छात्र अभी भी विधानसभा के बाहर डटे हुए हैं। उन्हें हटाने के लिए कुछ ही देर पहले पुलिस ने फिर से लाठीचार्ज किया, लेकिन छात्र हट नहीं रहे और पुलिस की इस हिंसा के बाद छात्र और उग्र हो गए हैं और अब वो कह रहे हैं कि पूरी रात वो वहीं पर धरना करेंगे। सो ये तस्वीरें आ रही हैं सीधा रांची से। और अब जो रांची का विधानसभा है, झारखंड का विधानसभा, वहां के परिसर में अब छात्र आगे बैठ गए हैं।
1: देखिए, आज जो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच है उसके द्वारा ये विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम का जो है ऐलान किया गया था। इनिशियली बोला गया था कि ये जो घेराव है वो पीसफुल रहेगा, हालांकि पुलिस ने अपनी तरफ से जो है एडिक्वेट तैयारी करने का जो है प्रयास इसमें पुलिस के द्वारा किया गया था। उसमें काफ़ी लोगों के द्वारा आलोचना भी की गई थी कि ऐसी बैरिकेडिंग कर दी, वैसी बैरिकेडिंग कर दी, बट जो नेचर जो आया भीड़ का, उसमें जो ऑर्गेनाइजर जो थे इस मार्च के, उनसे भी वो भी बार बार अनुरोध करते रहे क्राउड से कि आप शांतिपूर्वक रहिए, शांतिपूर्वक रहिए, लेकिन उनके द्वारा भी बार बार पथराव किया गया है। उसमें पथराव में हमारे पुलिस के जो है 3 से 4 जवान इंजर्ड हुए हैं, 2 लोगों के सिर में टाके आए हैं। और एक पॉइंट पर जब बैरिकेडिंग तोड़ी गई तो 3 जवान जो है हमारे उसमें कुचले, जब भीड़ बैरिकेडिंग तोड़ के भीड़ आगे बढ़ने लगी तो 3 जवान हमारे गिर गए थे उसमें, जिसको भीड़ ने कुचलने का जो है प्रयास किया था। उसमें थोड़ा रिटेलिएट करके इवैक्यूएशन के लिए माइनर लाठीचार्ज हमें करना पड़ा था, लेकिन उसमें हम फॉर्चुनेटली हम उनको जो है वो बचा पाए हैं, वो ठीक हैं, वो स्वस्थ हैं। दूसरा, एक जगह से एक और घटना हुई थी जिसमें पत्थरबाजी जो है प्रोटेस्टर्स की तरफ से की गई थी, तो चूंकि उस पॉइंट पर जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था तो कुछ स्मोक शेल वगैरह और डमी शेल्स भी हमारे द्वारा वहां पर फायर किए गए थे कि एटलीस्ट वहां से पत्थरबाजी ना हो। और उसके बाद जो है अभी जो है मल्टीपल लेयर्स के होने के बाद भी ये जो है जितनी भी जो उग्र भीड़ थी वो काफी डिस्टेंस जो है ट्रैवल करके विधानसभा की बाउंड्री के पास पहुंच गई है। दूसरा हमारा एक जो कंसर्न था कि जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज, जिन्होंने इसको अनाउंस किया था इस घेराव को, उनके द्वारा बोला गया था कि हमारे प्रोटेस्टर्स पीसफुल रहेंगे। हालांकि काफी 80 से 90% प्रोटेस्टर्स पीसफुल थे, बट 15 से 20% लोग ऐसे थे जिन्होंने हुड़दंगी करी, जिनके द्वारा पुलिस पर पत्थर मारे गए, जिनके द्वारा जो ऑर्गेनाइजर हैं उनकी बात भी नहीं सुनी गई है उनके द्वारा।
0: ये रांची के सिटी एसपी हैं जो उन्होंने अपने बताया कि छात्र वहीं पर धरने पर बैठ गए हैं। शशि भूषण हमारे साथ जुड़े हैं। शशि, बताइए क्या हो रहा है वहां पर?
2: देखिए, प्रोटेस्टर्स जो हैं उनको निकाला गया है और जैसा कि रांची के एसएसपी भी बता रहे थे कि हमने हल्का बल प्रयोग किया है, लेकिन बड़ी संख्या में जो वहां प्रदर्शनकारी छात्र पहुंचे जो विधानसभा के गेट नंबर 1 तक, उस वक्त पुलिस की संख्या काफ़ी कम थी। अंधेरा होने का इंतजार किया पुलिस ने और उसके बाद बारिश भी चूंकि शुरू हो गई थी तो थोड़ा जैसे ही माहौल ऐसा लगा कि अब छात्रों की संख्या कम हो गई है और रात का अंधेरा भी हो गया है, तो उन परिस्थितियों का फायदा प्रशासन ने भी उठाया है। हालांकि हमने पूरे दिन आज जो प्रोटेस्ट देखा, जो विधानसभा घेराव स्टूडेंट करने के लिए निकले थे हमारे का, वो कहीं भी उन्होंने कोई ऐसा कह सकते हैं कि बहुत एग्रेशन नहीं था उनमें, बहुत शांत तरीके से उन्होंने पूरा मार्च किया है। और शायद ये भी एक वजह रही कि प्रशासन बहुत ज़्यादा बल का प्रयोग या सख्ती नहीं कर पाया, क्योंकि सामने वाले छात्र थे, जेएनजी थे, स्टूडेंट्स थे, लेकिन सबके बावजूद वो बहुत नियंत्रित तरीके से, उनके वॉलंटियर्स को हमने देखा कई अलग अलग लेवल पे वो मॉनिटरिंग कर रहे थे कि कहीं कोई अवांछित तत्व तो उसमें नहीं घुस जा रहा है। तो कुल मिलाकर के मामला शांति से ही निपट गया। बैरिकेड्स टूटे, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, टीयर गैस छोड़े गए, लाठीचार्ज भी हल्का फुल्का हुआ, लेकिन उस सबके बावजूद जब विधानसभा के मुख्य गेट पे, 1 नंबर गेट पे पहुंच गए थे स्टूडेंट्स, तो उस वक्त जब बारिश होने लगी और अंधेरा जब छाने लगा तो बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स वहां से वापस भी आने लगे, लेकिन फिर भी अच्छी खासी तादाद थी ऐसे स्टूडेंट्स।
0: चलिए शशि, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रांची में छात्रों ने सरकारी तंत्र को जगाने के लिए भले ही आज विधानसभा का घेराव किया हो, लेकिन पिछले 17 दिनों से ये लगातार शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। रांची के एक स्टेडियम में टेंट लगाकर धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुन ही नहीं रही। ये आंदोलन इसलिए हो रहा है ताकि झारखंड में सरकार की नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं में धांधली ना हो, कोई करप्शन ना हो। पूरी रिपोर्ट देखिए।
3: हड़ताल से ज्यादा दर्द हुआ उस कांटेदार तार का जाली से।
4: झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा? 16 दिनों तक झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में टेंट के नीचे प्रदर्शन करने के बाद 17वें दिन छात्रों को विधानसभा का घेराव करना पड़ा। पुलिस का लाठी चार्ज भी हुआ। छात्रों ने बैरिकेडिंग भी उखाड़ी।
5: देखिए अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
4: पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े।
5: अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
4: छात्रों को डराने की, धमकाने की कोशिश भी हुई, लेकिन छात्र पीछे नहीं हटे। छात्र डटे हुए हैं, उनका हौसला टूटा नहीं, और इसकी वजह है वो अराजकता, वो धांधली, वो भ्रष्टाचार जिसका आरोप ये छात्र लगा रहे हैं। आरोप है कि झारखंड में सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार है। आरोप है कि सरकारी नौकरी योग्यता से नहीं बल्कि सेटिंग से मिलती है। आरोप है कि सरकारी नौकरियां बेची जा रही हैं। आरोप है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में नंबर बेचे जा रहे हैं। आरोप है कि बरसों तक तैयारी करने के बाद भी योग्य उम्मीदवारों को नौकरी नहीं मिलती। आरोप है कि खाली पदों को सरकार भर नहीं रही, भर्ती नहीं निकाल रही। आरोप है कि योग्य छात्रों की उम्र निकलती जा रही है लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि नौकरियों में भ्रष्टाचार है। बिना पैसों के, घूस के, जुगाड़ के, सेटिंग के सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। आरोप है कि हर एक नौकरी का पैसा तय है, बिना पैसे के नौकरी नहीं मिलती। इन्हीं आरोपों की जांच के लिए और पारदर्शी सिस्टम बनाने के लिए ये छात्र आंदोलन कर रहे हैं। 16 दिन धरने पर बैठे, सरकार ने नहीं सुनी तो अब मजबूरी में सड़कों पर उतरे हैं।
3: सरकार डर गई है, कायर सरकार है। जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है, लेकिन हम लोग भी देखे हैं और देखेंगे, इनका जेल को भी देखे हैं, इनका पुलिस का लाठी में कितना दम है, इनका टीयर गैस में कितना पावर है, इनका वाटर कैनन तो घोटाला हो गया, वो भी आधा अधूरा छोड़ दिया उसको,
6: वो भी स्टूडेंट का ताकत के सामने टिक नहीं पाई।
3: तो हम यही कहेंगे कि ये सब से छात्र नहीं डरेंगे। जब हम 9 दिन भूखे हैं, हम यहाँ आए हैं, हमारा सलाइन चढ़ा करके हम यहाँ चल रहे हैं, अन्न ग्रहण नहीं कर रहे, तो इतना आसान है डरा देना? हम लोग डरने वाले नहीं है। सरकार का एक ही विकल्प है, हमारा मांग को पूरी करे, अन्यथा सरकार अपना कुर्सी नहीं बचा पाएगी, उसका कुर्सी पर खतरा है। आंदोलन जारी रहेगा।
4: देवेंद्र नाथ महतो इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे हैं। वैसे तो भूख हड़ताल पर बहुत से आंदोलनकारी बैठे हैं, उनके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन देवेंद्र नाथ महतो वो शख्स जो अन्न जल त्याग कर बैठे थे। हफ्ते भर पहले सोनम वांगचुक ने पानी पीने की अपील की तो अब पानी तो पी रहे हैं लेकिन अन्न अभी भी त्यागा हुआ है। आज के आंदोलन में देवेंद्र नाथ महतो भी आए। कमजोरी है तो 4 छात्रों ने उन्हें स्ट्रेचर पर उठाया हुआ था, एक हाथ में तिरंगा और दूसरे हाथ में शिबू सोरेन की फोटो लेकर महतो प्रदर्शन के लिए पहुंचे।
7: गुरु जी शिबू सोरेन जीवन भर संघर्ष किया है, जीवन भर आंदोलन किया है, अगर गुरु जी जिंदा होते तो ये हम लोग साथ आंदोलन में आते। गुरु जी जिंदा नहीं है, उनका तस्वीर हमारे साथ इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। अगर गुरुजी को आदर्श मानती है हेमंत सोरेन जी, ये छात्रों का दर्द, छात्रों का पीड़ा, मैं बहुत जान को जोखिम में डाल के आया हूँ, एक तो मैं चल नहीं सकता हूँ, ये भीड़ कभी भी पुलिस के साथ भिड़ंत हो सकती है, कभी भी ये भीड़ में भगदड़ हो सकता है। मैं जान रहा हूँ मैं भाग भी नहीं पाऊंगा, मैं जान रहा हूँ ये आंसू गैस छोले जाएंगे।
8: सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी तब तक
7: जारी रहेगा, जब तक नहीं सुनेगी तब तक जारी रहेगा।
4: सवाल यह है कि सरकार के साथ प्रदर्शनकारी छात्रों की कई राउंड की बातचीत हो गई है, लेकिन पूरी तरह से छात्रों की मांगों पर सहमति नहीं बनी है। छात्रों की मांग थी कि 14वीं जेपीएससी की परीक्षा रद्द हो, सरकार ने पीटी यानी प्रिलिमिनरी टेस्ट कैंसिल कर दिया, यानी ये मांग पूरी हो गई। दूसरी मांग थी सीबीआई जांच की, सरकार सीआईडी ईडी से जांच को तैयार है, लेकिन सीबीआई जांच की मांग नहीं मानी जा रही। तीसरी मांग थी सीजीएल परीक्षा रद्द हो, सरकार रिटायर्ड जज से जांच को तैयार है, अभी तक परीक्षा रद्द नहीं हुई। तो इन्हीं मांगों को लेकर ये छात्र सड़कों पर उतरे हैं। देवेंद्रनाथ महतो कह रहे हैं कि सरकार से अब बात करने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार को ये मांगे पूरी करनी ही होगी।
2: एक बार लगता है कि सरकार के साथ फिर बैठना पड़ सकता है, क्योंकि आप बहुत दिनों से फास्टिंग पे हैं, 16-17वां दिन है, तो हम ज्यादा सवाल नहीं करना चाहते हैं 16वां, तो मतलब लगता है कि एक बार फिर वार्ता टेबल पे आ सकते हैं।
7: वार्ता की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मांग पूरा करिए,
2: मांग पूरा किया जाए।
7: वार्ता का क्या जरूरत है, यहाँ कोई पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है, यहाँ कोई पक्ष विपक्ष का मामला है नहीं, सीधे तौर पर यहाँ छात्र का मामला है, छात्र नाखुश है, छात्र असंतुष्ट है, छात्र को संतुष्ट करिए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है संतुष्ट करना छात्र को, ये छात्र सभी आपके छात्र हैं।
4: झारखंड में प्रदर्शनकारियों की मांगों में एक मांग ये भी है, अभय तिवारी नाम के शख्स के पोस्टर और उसका नाम हर प्रदर्शनकारी की जुबान पर है। सवाल है कि कौन है अभय तिवारी जिसका नाम ये छात्र ले रहे हैं। अभय कुमार तिवारी गोड्डा जिले के पौड़ैया हाट में ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर यानी बीएसओ के पद पर तैनात था। सीआईडी की जांच में सामने आया कि सरकारी नौकरी में आने से पहले वो टीडीपीएल नाम की एजेंसी का मार्केटिंग मैनेजर रह चुका था। टीडीपीएल उत्तर प्रदेश में पहले से ही ब्लैकलिस्टेड कंपनी है। अभय तिवारी अभ्यर्थियों को जाल में फंसाने के लिए एक बेहद शातिर पैंतरा आजमाता था। वो अभ्यर्थियों के सामने खुद की सफलता का ढिंढोरा पीटता था। वो पहले छात्रों का भरोसा हासिल करता था और फिर उन्हें गारंटीड सिलेक्शन का झांसा देकर उनसे 25-40 लाख रुपए वसूलता था। आरोप है कि अभय तिवारी ने अपने परिवार के बहुत से लोगों को सरकारी नौकरी दिलाई।
9: अभय तिवारी जो भैया इसमें जो टीडीपीएल कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर थे, मैं वहीं से आता हूँ, पौड़ैया हाट में ये फूड सप्लाई ऑफिसर में पदरत थे।
2: कौन कौन है जो इनके परिवार से सरकारी नौकरी,
9: सबका नाम लिखा हुआ है, आप इनको पढ़ लीजिए, बहुत है।
2: ये अभय तिवारी के साले हैं जो उपेंद्र मिश्रा है उनके।
9: हमारी मांग है, सरकार से हमारी मांग है, जैसे सीजीएल को रद्द करना होगा, सीबीआई जांच करनी होगी।
4: इसीलिए छात्र पूरे घोटाले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार इसके लिए तैयार नहीं है।
10: किसी भी शर्त पर यहाँ से नहीं हटने वाले, जब तक सरकार घोषणा नहीं कर दे कि सीजीएल रद्द हो गया। और रद्द क्यों नहीं करिएगा जी, आपका एक अभय तिवारी का पूरा रिलेटिव बीएसओ पद पर है, क्या ये संयोग है? नहीं, ये प्रयोग है। आपने पैसा लेकर उन लोगों को नौकरी दिया, या फिर अगर पैसा आपने नहीं लिया दिया तो वैसे लोगों को क्यों टेंडर आप दिए जो अपने ही परिवार छात्रों।
4: सवाल उन हजारों लाखों युवाओं के सपनों का है जो सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं, सरकारी नौकरी के लिए पूरी जवानी लगा देते हैं, हर तरह से मेहनत करते हैं, रैंक लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि नौकरी तो बिक गई तो वो ऐसे ही आंदोलन करते हैं। सरकारें सुनती नहीं है तो उम्र निकल जाती है, ऐसा ही सवाल इनके सामने खड़ा है।
0: विशेष में मेरे साथ आज इतना ही, आगे देखिए खबरदार श्वेता सिंह के साथ।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: AU savings account में मिलते हैं amazing benefits, paperless banking and higher interest. वो भी हर महीने.
2: Money, money, money, money, every month.
3: सोच बदलो और बैंक भी.
4: बिजली का बिल पेड.
5: तो है मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया.
6: कैसे?
5: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने. भीम ऐप से करो.
6: इतना माही वे.
7: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं. गोल्डी हिंग कण कण में जाओ.

सस्ता स्मार्टफोन खरीदना पहले जितना आसान नहीं रह गया है। जो फोन 10 से 15,000 रुपए खर्च करके मिल जाते थे, अब उसी फोन के लिए जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है। हैरानी की बात है कि इसकी वजह ना तो कोई टैक्स है, ना कोई कंपनी की मनमानी। इसके पीछे तो AI की वो भूख है जो चिप इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल रही है। दरअसल AI डेटा सेंटर बनाने के लिए दुनिया भर की टेक कंपनियां भारी मात्रा में मेमोरी चिप खरीद रही हैं। ऐसे में स्मार्टफोन में भी लगने वाली इस मेमोरी चिप के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि सैमसंग, SK हाइनिक्स और माइक्रोन जैसी बड़ी कंपनियां अपनी ज्यादातर मेमोरी चिप प्रोडक्शन क्षमता अब AI डेटा सेंटर की तरफ शिफ्ट कर चुकी हैं। वजह है कि AI कंपनियां ऊंची कीमत चुका रही हैं, जबकि स्मार्टफोन और PC बनाने वाली कंपनियां कम कीमत पर मोल भाव करती रही हैं। इसी वजह से पिछले कुछ समय में मेमोरी की सप्लाई कम हुई है और कीमतें आसमान छू रही हैं। इसका सबसे ज्यादा असर सस्ते और मिड रेंज स्मार्टफोन पर पड़ा है। आंकड़ों के मुताबिक 2022 के मुकाबले DRAM मेमोरी की कीमतें करीब 700% तक बढ़ चुकी हैं, जिससे सस्ते स्मार्टफोन की कुल लागत में मेमोरी का हिस्सा बढ़कर 60% तक पहुंच गया है। इसके चलते दुनिया भर में $400 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन की शिपमेंट इस साल 22% तक घट चुकी है। इस पूरे असर को सबसे साफ तौर पर भारत के बाजार में देखा जा रहा है। काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से जून तिमाही में भारत में स्मार्टफोन शिपमेंट सालाना आधार पर 10% गिर गई, जो पिछले 6 साल में जून तिमाही की सबसे बड़ी गिरावट है। वहीं इसी दौरान चीन में गिरावट महज 2% रही। भारत में ये गिरावट इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि यहाँ का ज्यादातर बाजार सस्ते फोन पर टिका है। डेटा के मुताबिक भारत के करीब 60% स्मार्टफोन बाजार की कीमत 20,000 रुपए से कम है, जिससे मेमोरी की महंगाई का सबसे ज्यादा असर यहाँ पड़ा है। ऐसे में 15,000 रुपए से सस्ते सेगमेंट में शिपमेंट सालाना आधार पर 45% तक गिर गई है। वही मॉडल के हिसाब से भारत में फोन की कीमतें 4 से 68% तक बढ़ चुकी है। इस उठापटक के बीच कंपनियों की रणनीति भी बदल रही है। काउंटर पॉइंट रिसर्च के मुताबिक सैमसंग भारत में इकलौती बड़ी कंपनी रही जिसकी शिपमेंट 2% बढ़ी, जबकि सप्लाई की दिक्कतों की वजह से एप्पल की शिपमेंट 3% घट गई। जानकारों का कहना है कि लोग अब फोन जल्दी नहीं बदल रहे और औसतन 3.5 साल की जगह करीब 4 साल तक पुराना फोन ही चला रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो मेमोरी की ये महंगाई साल 2027 के आखिर तक बनी रह सकती है, यानी आने वाले वक्त में भी सस्ता स्मार्टफोन खरीदना आसान नहीं होने वाला। आदित्य राणा, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: AU savings account में मिलते हैं amazing benefits, paperless banking and higher interest. वो भी हर महीने.
2: Money, money, money, money every month.
3: सोच बदलो और बैंक भी.
4: असरो गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं. ये देखें, असरो गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं.
5: रांची में आंदोलनकारी छात्र आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं. पुलिस ने विधानसभा घेरने जा रहे छात्रों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कटीले तारों की बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन जब छात्र इन्हें तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगे तो पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े.
4: असरो गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं. ये देखिए, असरो गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं. दरअसल कार्य पर असरो गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं.
5: जेपीएससी और झारखंड सीजीएल धांधली मामले में अब तक आंदोलन शांतिपूर्ण ही चल रहा था, लेकिन आज पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को पीछे हटाने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, लेकिन पुलिस ने पानी की बौछार की तो छात्र डांस करने लगे.
6: ये देखिए, डांस करना शुरू कर दिया है इन छात्रों ने. यहाँ पर लिटरली जो है डांस करना शुरू कर दिया है.
5: जंतर मंतर स्टाइल में पुलिस ने छात्रों को पीछे हटने को कहा तो वो राष्ट्रगान गाने लगे, जिससे पुलिस छात्रों के आगे मस्त दिखी. रांची पुलिस प्रदर्शनकारियों के साथ साथ चलती रही, जिससे कोई अप्रिय घटना ना हो, लेकिन जब छात्र विधानसभा मार्ग के उस पॉइंट तक पहुंच गए जिसके आगे जाना संभव नहीं था तो वहीं पर जम गए. विधानसभा के पास ये पुलिस का आखिरी बैरिकेड था. इसके आगे किसी भी हालत में छात्रों को नहीं जाने दिया जा सकता था, लिहाजा पुलिस के जवान खड़े हो गए. कुछ छात्रों ने बैरिकेड्स पार करने की कोशिश की तो पुलिस ने डंडे के सहारे उन्हें भगाने की मशक्कत की. हालांकि कुछ प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि पुलिस ने लाठी चलाई जिससे उनको चोट लगी. वहीं पुलिस कह रही है कि छात्रों को तितर बितर करने के लिए बहुत हल्का बल प्रयोग करना पड़ा.
7: बहुत ही कम प्रयोग किया गया था लाठी का. जब कुछ लोगों द्वारा बैरिकेडिंग, आखिरी बैरिकेडिंग वहाँ पे जाने का प्रयास किया गया जहाँ पे 163 की धारा ऑलरेडी लगी हुई है, तब थोड़ा बहुत लाठी का प्रयोग किया गया था. बहुत ही मिनिमम यूज.
8: इसकी वजह से गुस्सा काफी इनके अंदर.
7: नहीं, हम कॉन्टिन्यूसली छात्रों से वार्तालाप कर रहे हैं.
5: रांची में जब छात्र बैरिकेड्स पर चढ़ गए तो पुलिस ने लाठियां लहराई. कुछ लाठियां बैरिकेड्स पर चलाई जिससे छात्र नीचे उतर जाएं और बैरिकेड्स छोड़कर चले जाएं. खास बात रही कि रांची में छात्रों ने कोई हिंसक गतिविधि नहीं की, ना तो कानून के इकबाल को चुनौती दी. पुलिस ने जब जब वाटर कैनन चलाकर छात्रों को भगाने की कोशिश की तो ये लोग पानी की बौछार पर झूमने लगे, जिससे आंदोलन हिंसक नहीं हुआ. छात्रों का सैलाब जिस भी रास्ते से निकलने की कोशिश करता पुलिस उन्हें रोक देती. कुछ छात्रों ने पुलिस को चकमा देने के लिए रास्ता बदला जिससे वो विधानसभा के गेट तक पहुंच सके, लेकिन उन्हें भी वापस लौटना पड़ा.
9: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है. कई बैरिकेडिंग बनाए गए थे, कटीले तारों वाली बैरिकेडिंग भी बनाई गई थी, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ. हर बैरिकेडिंग को इन्होंने स्केल डाउन कर दिया, उसको तोड़ के तमाम बाधाओं को तोड़ते हुए ये आगे बढ़ गए हैं. और देखिए, हाथों में तिरंगा लेकर बिल्कुल विधानसभा के पास, हाईकोर्ट के प्रमाइसेस के पास ये पहुंच चुके हैं. लेकिन अब शायद
5: रांची छात्र आंदोलन झारखंड लोकसभा आयोग की धांधली, झारखंड सीजीएल की गड़बड़ियों के खिलाफ हो रहा है. छात्रों की एक ही मांग है कि इन भर्ती परीक्षाओं की धांधली की जाँच सीबीआई से कराओ. लेकिन सवाल है कि पेपर लीक और शिक्षा में सुधार के लिए छात्रों को बार बार आंदोलन का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है. आशुतोष मिश्रा और सत्यजीत कुमार के साथ शशि भूषण सिंह, रांची आज तक.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर राहुल का बड़ा हमला, पूछा किसने दिया छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश, चढ़ावा चोरी को लेकर पीएम को घेरा नड्डा का पलटवार, माहौल खराब कर रहे हैं राहुल। प्रदर्शन में बदला झारखंड में छात्रों का धरना, विधानसभा मार्च के दौरान जोरदार झड़प, आंसू गैस लाठीचार्ज के बाद अड़े स्टूडेंट्स, देवेंद्र महतो बोले अब नहीं होगी सरकार से बात। झारखंड परीक्षा धांधली में बड़ा एक्शन, जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन गिरफ्तार, ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस, मुख्यमंत्री के घर पर बीजेपी का प्रदर्शन। उत्तर भारत के कई राज्यों में बाढ़, पहाड़ से लेकर जमीन तक कहर, चमोली में बह गया पुल, रायगढ़ में 9 की मौत, गुजरात राजस्थान के कई इलाकों में बाढ़। और परमाणु हथियार बहाने दबाव बनाने में जुटे ईरान का ट्रंप को तगड़ा जवाब, कहा हॉर्मुज तभी खुलेगा जब अमेरिका देगा हर्जाना और हटाएगा प्रतिबंध।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health ka Sach in association with
2: Bharat ki apni electric sawari Sokudo।

0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का, जहां हम आज पूरा फोकस अपना रांची में जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर रखते हुए आपको बता दें, 17 दिन और 10 घंटे अब तक बीत चुके हैं। जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो लगातार धरना दे रहे हैं, और आज वो दिन जब प्रदर्शनकारी पहुंचे विधानसभा का घेराव करने के लिए, कम से कम 4 बार पुलिस का लाठीचार्ज हो चुका है। इस समय का अपडेट यह है कि विधानसभा के पास से प्रदर्शनकारियों को हटाने में पुलिस जुट गई है। प्रदर्शनकारी इस बात पर अड़े हैं कि जब तक उनकी मांग को सुना नहीं जाएगा वो हटेंगे नहीं। करीब 1 घंटा पहले पुलिस ने लाठीचार्ज किया। विधानसभा के गेट नंबर 1 के पास प्रदर्शनकारी बैठे हैं जिनको हटाना चाह रही है वहां से पुलिस। काफी देर तक तनातनी रही है। रांची SP का कहना है कि किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है और सब प्रदर्शनकारी धीरे धीरे हट रहे हैं।
1: देखिए, आज जो JPSC JSSC रिफॉर्म मंच है उसके द्वारा ये विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम का जो है ऐलान किया गया था। इनिशियली बोला गया था कि ये जो घेराव है वो पीसफुल रहेगा। जो ऑर्गेनाइजर जो थे इस मार्च के, उनसे भी वो भी बार बार अनुरोध करते रहे क्राउड से कि आप शांतिपूर्वक रहिए, लेकिन उनके द्वारा भी बार बार पथराव किया गया है। उसमें पथराव में हमारे पुलिस के जो है 3 से 4 जवान इंजर्ड हुए हैं, 2 लोगों के सिर में टाके आए हैं, और उसके बाद जो है अभी जो है मल्टीपल लेयर्स के होने के बाद भी ये जो है जितनी भी जो उग्र भीड़ थी वो काफी डिस्टेंस जो है ट्रेवल करके विधानसभा की बाउंड्री के पास पहुंच गई है। उनके चक्कर में जो है पुलिस को कुछ माइनर लाठीचार्ज करना पड़ा है। स्टूडेंट्स को माइनर इंजरीज हैं, 4 से 5 स्टूडेंट को इंजरी हुई होंगी, वो भी जितना रिस्ट्रेंट हो सकता था वो पुलिस के द्वारा रिस्ट्रेंट करते हुए जो है काम जो है किया गया है। अभी भी स्टूडेंट्स से अनुरोध किया जा रहा है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहां से अब लौट गए हैं। जो ये घेराव है वो संपन्न हो चुका है। जो शांतिपूर्वक जो मार्च की जो बात हो रही थी बार बार उसको मनवाने में ये असफल रहे हैं।

0: जुलाई महीने की शुरुआत में झारखंड सिविल सर्विस प्री का रिजल्ट आया था। उसके बाद छात्रों को ऐसा एहसास हुआ कि उसमें गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी की वजह से उन लोगों ने अपनी तरफ से इसका विरोध करना शुरू किया। जब ज्यादा दबाव बढ़ा तो वहां पर सुरेंद्र सरकार ने सीआईडी जांच बिठा दी, लेकिन छात्रों को ये लगा कि इससे कोई नतीजा नहीं निकल रहा है और ये केवल टाल मटोल किया एक तरीका मात्र है। इसीलिए उन्होंने अपने विरोध प्रदर्शन को तेजी दी और उसके बाद वो झारखंड में रांची में लगातार इस विरोध प्रदर्शन के लिए बैठ गए।
1: अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ये देखिए अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, सरकारी पर अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे
2: रांची ने साबित कर दिया, बेरोजगारों की मांग पर आंसू गैस के गोले गिराकर आंसू बहाने के लिए मजबूर कर देने का सत्ता का चरित्र हर जगह एक जैसा होता है। सत्रह दिन तक सरकार को अपनी मांगों पर वक्त पर वक्त देने के बाद जब अपने हक की नौकरी ईमानदारी से चाहने वाली व्यवस्था मांगते हजारों प्रदर्शनकारी झारखंड विधानसभा की तरफ बढ़ते, झारखंड की सोरेन सरकार ने ये गलत फहमी नहीं होने दी कि नौजवान अगर विपक्ष शासित राज्य के होंगे तो उन पर आंसू गैस का गोला नहीं छूटेगा। लोकतंत्र में प्रदर्शन और आंदोलन की आवाज से जो राज्य बना, उसी राज्य में परत दर परत जब भर्तियों में भ्रष्टाचार का दीमक युवाओं के सपने खोखले करता आया, तब जाकर युवा मुट्ठी तान कर आगे बढ़े। लेकिन झारखंड की जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने इस बात का गुमान किसी को नहीं होने दिया कि युवाओं की पीठ पर वो सत्ता की लाठी की ताकत को नहीं आजमाएगी, इसीलिए दौड़ाया भी गया, पीटा भी गया। सुबह 10 बजे विधानसभा का घेराव करके सत्ता के कानों तक अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए बड़े छात्रों के जत्थे पर गिरे आंसू गैस के गोले और बरसी लाठियों ने इस बात को मजबूत कर दिया कि आंदोलन से निकली पार्टियों और आंदोलन से निकले नेताओं को आंदोलन करके उठती आवाजें पसंद नहीं आती हैं। देखिए एक युवा के इस बदन को, इस पर रांची पुलिस की लाठियों की छाप बताती है कि 5 साल जिस जनता के निशान से सत्ता बनती और बिगड़ती है, वो अपने बिगाड़ के डर से निशान के बदले निशान देती है, लेकिन शरीर पर लाठियों का।
3: हाथ जोड़ लिए थे, खड़ा होने के बाद हाथ जोड़े थे, उसके बाद भी मारा है पुलिस। आतंकवादी है क्या? आतंकवादी है, जवाब दे, क्यों मारी पुलिस? खड़ा हुए थे, यहाँ से यहाँ तक मारी है, यहाँ मारी है, यहाँ मारी है, क्यों मारी? जबकि हाथ जोड़ लिए थे। इससे शांतिपूर्ण इन लोग परेड नहीं होता होगा जितना शांतिपूर्ण हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी पुलिस जो है कि
4: बड़ा बड़ा वाजिब सा सवाल है।
2: पुलिस की लाठी जब शरीर पर कहीं पड़ती है तो केवल दर्द नहीं उठता, ये भरोसा भी उठ जाता है कि वो युवा जो केवल भ्रष्टाचार से चकनाचूर सिस्टम की वजह से जख्मी है, उन्हें पारदर्शिता का मरहम नहीं मिलेगा, जख्म पर पुलिस की लाठी का नमक मिलेगा।
5: हमें पहले लहू के आंसू हमने पहले ही सरकार ने रुला दिए और आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आए थे, हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया गया, हमारे छात्र लोग घायल हो गए हैं और उसके बाद आंसू गैस का गोला का प्रयोग किया गया।
2: 25 साल पुराने राज्य में 25-30 साल के युवा जिन्होंने अपनी आंखों के सामने बने राज्य में सोचा होगा मिलेगी अपने राज्य की अपने संसाधन वाली नौकरी, वहां नौकरी का साफ सुथरा सिस्टम मांगने पर यूं पीटा गया कि कुछ देर सांसें इनके ऊपर नीचे होने लगी। जिनकी नौकरी पाने की उम्मीदों को पहले ही कुचला जा चुका है, बस उन्हीं की उम्मीदों को एक बार फिर झारखंड की पुलिस ने वापस सपना देखने से पहले कुचल दिया है।
0: इस आंदोलन में जो जो छात्र सबसे आगे 9 दिन से वो भूख हड़ताल पर हैं, वो आज सुबह भी जब धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे तो एम्बुलेंस में बैठकर निकले थे, और अब देवेंद्र महतो को अस्पताल ले जाया गया है ये जानकारी दी जा रही है। अस्पताल उन्हें ले जाया गया है क्योंकि तबीयत उनकी बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने पर देवेंद्र महतो को ले जाया गया है अस्पताल। ये वहां की तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं, छात्र वहां बैठे थे, उन सबको हटाने की वहां कोशिश होती रही है, तिरंगे को अपने ऊपर लपेट कर। देवेंद्र नाथ महतो आपको अस्पताल के उस बिस्तर पर इस समय दिख रहे हैं, उस स्ट्रेचर पर दिख रहे हैं जिसके साथ उन्हें उठाकर अस्पताल में उनकी बेड पर रखा जाएगा। तबीयत उनकी बिगड़ गई, शुरुआत में भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी जब उन्होंने अपने इस भूख हड़ताल की शुरुआत की थी। शशि भूषण हमारे साथ, हमारे संवाददाता वहां से जुड़ रहे हैं। शशि, उस समय भी सोनम वांगचुक की तरफ से उन्हें रिक्वेस्ट किया गया था कि आप कम से कम पानी पीजिए क्योंकि आपकी जान जरूरी है। आज क्या वहां पर परिस्थिति है और देवेंद्र महतो की तबीयत बिगड़ने की जो बात है वो कितनी सीरियस है इस समय?
6: देखिए, गंभीर स्थिति तो है, इससे इनकार नहीं किया सकता स्मिता, क्योंकि आज खुद देवेंद्र महतो जब बात कर रहे थे हमसे तो उन्होंने कहा कि 10 केजी से ज़्यादा वजन उनका कम हुआ है पिछले 8-9 दिनों में, जब से उन्होंने अन्न लेना छोड़ा है। और साथ ही साथ जो शुगर लेवल है वो आज दिन के वक्त 53 पे था, तो वो भी बहुत अलार्मिंग स्थिति थी। बाकी अन्य तरह के भी कॉम्प्लिकेशन हैं। कल रात भी जो हम लोगों की बात हुई थी, देवेंद्र महतो के जो करीबी लोग हैं कोर ग्रुप के, उनका ये कहना था कि अगर आज का मार्च नहीं होता तो संभव था कि देवेंद्र महतो के सेहत को लेकर के कुछ और फैसला लिया जाता। लेकिन देखिए, देवेंद्र महतो ने ना केवल आज के एजिटेशन में शामिल हुए, प्रोटेस्ट में शामिल हुए, बल्कि उन्होंने संबोधन भी किया, उनका स्वागत भी हुआ, मैंने खुद उनसे बातचीत करी वहां पे। एक कमजोरी तो उनके शारीरिक रूप से वो कमजोर तो दिख रहे थे, लेकिन जो छात्रों का जमावड़ा रहा और जिस तरीके से, जिस तर्ज पे पूरा प्रोटेस्ट आगे बढ़ा है शांतिपूर्ण तरीके से, जब उसको उन्होंने ग्राउंड पे उसी तर्ज पे आगे बढ़ते हुए देखा, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में शांतिपूर्ण धरना और फिर विधानसभा मार्च जो आज झारखंड के विधानसभा का, उसमें भी वही शांतिपूर्ण मिजाज, तो इससे भी उनका उत्साह ऊपर गया था। लेकिन अब जो खबर आ रही है, जो देवेंद्र महतो हैं उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है, जाहिर है उनकी स्थिति ऐसी नहीं होगी जिसकी वजह से उनको रखा जा सके। आप समझा जा सकता है कि 8-9 दिनों से अगर कोई फास्टिंग में है तो उसकी क्या स्थिति या परिस्थिति हो सकती है। जी,
0: सब युवा हैं, ये सब छात्र हैं जो इस समय अपनी अपने अधिकार, अपनी मांगे सरकार के सामने रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया शशि भूषण इस पूरी जानकारी के लिए। देवेंद्र नाथ महतो दरअसल इस आंदोलन का चेहरा बनकर उभरे हैं। आज सुबह भी जैसे कि हमने आपको बताया कि जब सुबह 10 बजे सभी छात्र आंदोलन के लिए अपने दूसरे चरण के लिए पर उसे ले जाने के लिए विधानसभा के बाहर पहुंचे तो एम्बुलेंस में बैठकर देवेंद्र महतो वहां पर पहुंचे। तबीयत बिगड़ी है, अभी अस्पताल उन्हें भर्ती कराया गया, लेकिन जब प्रदर्शन में वहां पर सभी छात्रों के साथ बैठे तो उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों को गंभीरता से लेना ही होगा।
7: आंसू गैस, लाठी चार्ज, वाटर कैनन सब का प्रयोग किया जा रहा है हमारे आवाज को दबाने के लिए। ये सरकार डर गई है, कायर सरकार है। जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है, लेकिन हम लोग भी देखे हैं और देखेंगे, इनका जेल को भी देखे हैं, इनका पुलिस का लाठी में कितना दम है, इनका टीयर गैस में कितना पावर है, इनका वाटर कैनन तो घोटाला हो गया, वो भी आधा अधूरा छोड़ दिया उसको,
8: वो भी स्टूडेंट का ताकत के सामने टिक नहीं पाई।
7: तो हम यही कहेंगे कि ये सब से छात्र नहीं डरेंगे। जब हम 9 दिन भूखे हैं, हम यहाँ आए हैं, हमारा सलाइन चढ़ा करके हम यहाँ चल रहे हैं, अन्न ग्रहण नहीं कर रहे, तो इतना आसान है डरा देना? हम लोग डरने वाले नहीं है। सरकार का एक ही विकल्प है, हमारा मांग को पूरी करे, अन्यथा सरकार अपना कुर्सी नहीं बचा पाएगी, उसका कुर्सी पर खतरा है।
9: ये देखिए, अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
10: अभी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मांग पूरा करिए,
11: मांग पूरा किया जाए।
10: वार्ता का क्या जरूरत है, यहाँ कोई पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है। हाँ, कोई पक्ष विपक्ष का मामला है नहीं, सीधे तौर पर यहाँ छात्र का मामला है। छात्र नाखुश है, छात्र असंतुष्ट है, छात्र को संतुष्ट करिए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है संतुष्ट करना छात्र को। ये छात्र सभी आपके छात्र हैं।
0: तीन दौर की बातचीत जो है वो अब तक हो चुकी है, कुछ मांगों को सरकार ने माना है, कुछ मांगों को नहीं माना है, और जो छात्र हैं वो कहते हैं कि जो प्रमुख मांगे हैं उनको लेकर सरकार सीरियस नहीं दिख रही है और इसीलिए इस आंदोलन में वो इस प्रकार तेजी दिखा रहे हैं। अब देखिए जिस तरीके से छात्रों को आगे बढ़ने से रोका गया, उसमें वो कांटेदार तार जिन्हें कॉन्सेंटिना वायर्स कहा जाता है उन सबको यहाँ पर लगाया गया, उनका इस्तेमाल किया गया, इनके शरीर को छूने भर से चमड़ी उधड़ जाती है वहां की, लेकिन बैरिकेड्स के ऊपर इन्हें बांध कर इसका इस्तेमाल किया गया है, लाठी चार्ज किया गया है, छात्र बैठे हुए थे वहां पर, देखिए तिरंगा लहरा कर छात्र अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। 4 से 5 किलोमीटर तक का ये कुल मिलाकर रास्ता था और छात्र अब ये कह रहे हैं कि कटीले तार छात्रों को डरा नहीं सकते।
11: ये देखिए बैरिकेड्स तोड़ दिए हैं छात्रों ने और जो कटीले तार लगाए गए थे उस बैरिकेड्स को लेकर के छात्र अब कहां जा रहे हैं, कहां लेकर के जा रहे हैं,
12: उसको किनारे करेंगे,
11: उसको आप लोगों ने ध्वस्त कर दिया,
12: सब तोड़ देंगे।
11: ये देखिए ये छात्र ये मतलब बारी बारी से इसी तरह ले आइए,
12: अभी सब तोड़ देंगे,
13: ये क्या करें बताइए,
12: हम लोगों को बात का माना नहीं जा रहा है, क्या करें बताइए, 10 दिन से धरना में बैठे हुए हैं, दो को कल देखें, दो पेशेंट को कल तोड़ना पड़ा भूख हड़ताल में, सीरियस हो गए थे
11: सरकार। आपको देखिए तस्वीरें दिखाते हैं, जो प्रशासन ने बैरिकेड्स लगाए थे, ये तार, ये कटीले तार जो लगाए थे, उन कटीले तारों वाले बैरिकेड्स को छात्रों ने ध्वस्त कर दिया है और किनारे ला करके यहाँ पे फेंक दिया है उसको।
14: बैरिकेड का एक एक हिस्सा छात्र दरअसल धीरे धीरे उठा के ला रहे हैं, अगले कुछ सेकंड में आपको ये तस्वीरें दिखेंगी, जो बैरिकेड का एक एक हिस्सा उठा के ला रहे हैं, मतलब छात्र ये देखे ये आ गया बैरिकेड का एक और हिस्सा, अब इसके बाद वो रास्ता खुल चुका है, वो अगर चाहे तो धक्का देख करके चले जाएंगे। पुलिस की संख्या 2000 है, छात्रों की संख्या 20,000, पुलिस और जो सुरक्षा बल है वो इनके आगे बिल्कुल बेबस लाचार है, लेकिन अभी भी वो आगे नहीं जा रहे, उनके वॉलंटियर्स लगातार नियंत्रण में है, पुलिस सुरक्षा बल वहां तैनात है, लेकिन बातचीत के रास्ते समाधान करने की कोशिश की जा रही है, पुलिस दरअसल ये चाहती है कि छात्र यहां से लौट जाए और अगर नहीं आगे जाए तो कम से कम, क्योंकि प्रोटोकॉल है, विधानसभा एक संवेदनशील इलाका है, वहां वो छात्रों को नहीं जाने देना चाहते, तो वॉलंटियर्स भी मदद कर रहे हैं कि आप यहीं बैठ जाइए।
15: कांटे वाली फेंसिंग है, तो मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, हमें एक कबीरदास जी की पंक्ति याद आती है कि जो तो को कांटा बोवे ताही बो को फूल, तो ही फूल के फूल है बाको है त्रिशूल, आप कांटा बोइए और हम जो है वो फूल बोएंगे, आप क्या कीजिए, आप पैलेट गन यूज कीजिए हम दिवाली मना लेंगे, आप वाटर कैनन यूज कीजिए हम होली खेल लेंगे, और आप टीयर गैस यूज कीजिए हम आपकी अर्ली विदाई की सेरेमनी भी सेलिब्रेट।
16: जब कुछ लोगों द्वारा बैरिकेडिंग, आखिरी बैरिकेडिंग जिस वहाँ पे जाने का प्रयास किया गया, जहाँ पे 163 की धारा ऑलरेडी लगी हुई है, तब थोड़ा बहुत लाठी का प्रयोग किया गया था, बहुत ही मिनिमम यूज,
17: इसकी वजह से गुस्सा काफी इनके अंदर और कुछ
16: नहीं, नहीं नहीं हम कॉन्टिन्यूसली छात्रों से वार्तालाप कर रहे हैं।
0: तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अधिकांश मांगे छात्रों की मान ली गई है, 98% जो छात्रों की मांगे हैं मान ली गई हैं, लेकिन छात्र कहते हैं कि संख्या की बात नहीं है बल्कि इम्पोर्टेंस की बात है, जो मांगे अहम हैं उन पर ऐसा लग रहा है जैसे सरकार कुछ बोलने से बच रही है, उस पर कुछ कमिट करने से बच रही है, जो मांगे सरकार मान चुकी है वो हम आपको दिखाते हैं और नहीं मान रही है वो भी, जो माना जा चुका है जेपीएससी सिविल सेवा पीटी यानी प्रिलिमिनरी टेस्ट को रद्द किया जाएगा, सीआईडी की जांच 90 दिन में पूरी होगी, पैसों के लेन देन के आरोपी की ईडी से जांच होगी, जेपीएससी की बैकलॉग परीक्षा 2023 और 2025 भी रद्द की जाएगी, रिटायर्ड जज से भी जांच कराने को सरकार तैयार है, और जो मांगे अब तक नहीं मांगी गई हैं और पेच फंसा है, जैसे छात्र चाहते हैं टीडीपीएल से सारी परीक्षाओं की सिर्फ जांच नहीं कराई जाए बल्कि रद्द किए जाए परीक्षाओं, जेएसएससी सीजीएल की न्यायिक जांच नहीं बल्कि ये रद्द हो, और इन सभी परीक्षाओं को रद्द कर सीआईडी और न्यायिक जांच नहीं बल्कि सीबीआई की जांच हो, छात्र कह रहे हैं कि उन्हें केवल सीआईडी नहीं बल्कि सीबीआई की जांच पर भरोसा है। इस सब के बीच में अगर हम देखें तो एक वो प्रोटेस्ट जो जंतर मंतर पर हुआ जिसमें बड़ी संख्या में छात्र जुटे, जिसकी अगुवाई कॉकरोच जनता पार्टी ने की, और वहां पर छात्रों के प्रदर्शन उनकी मांगों से कमोबेश पूरा देश सहमत था। एक बात वहां से निकली कि जिस तरीके से वहां पर जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया या फिर पुलिस को लेकर जो रवैया था उसको लेकर कुछ लोगों ने कहा कि मांगे तो वाजिब है लेकिन तरीका वाजिब नहीं है। अब ये जो प्रोटेस्ट है इसकी कुछ समानताएं हैं जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से और कुछ असमानताएं भी हैं। आज जब ये प्रदर्शनकारी छात्र आगे निकले तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो व्यवहार है उसके टेस्ट में ये जो छात्र हैं, जो युवा है प्रदर्शनकारी, वो पास हुए।
18: तस्वीर नंबर एक, एक छाता और छाते के नीचे सुरक्षा कर्मी भी, प्रदर्शनकारी छात्र भी। और अब तस्वीर नंबर दो, बारिश आई तो रांची में शाम को प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी दोनों एक ही छाते के नीचे आ जाते हैं। और अब इस वीडियो को देखिए जो दिखाता है कि विधानसभा घेरने पहुंचे पुलिस और प्रदर्शनकारी दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं साथ। क्या यही वजह रही जब पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया और कुछ प्रदर्शनकारी छात्र जख्मी हो जाते? तब उस वक्त एक बार ऐसा लगा कि कहीं छात्रों का प्रदर्शन फिर सवालों के कटघरे में ना खड़ा कर दिया जाए, जहां कुछ प्रदर्शनकारी एक पुलिस वाले को घेर लेते। लेकिन तभी कुछ युवा एकजुट होते, पुलिस वाले को लोगों के गुस्से से बचाने के लिए सुरक्षा घेरा बनाते, उसे बचाकर अलग निकाल कर लाते। इस बात को मजबूती से कहते हुए कि एक भी पुलिसकर्मी पर निशान नहीं साधा जाना चाहिए। ये सुरक्षा घेरा इस बात को मजबूत करता है कि छात्रों की किसी से दुश्मनी नहीं, बल्कि वो इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं कि पुलिस पर अगर हमला होता है तो आंदोलन कमजोर पड़ेगा। जिस मांग के लिए वो विधानसभा तक आ गए हैं वो मांगे कमजोर पड़ेंगी। इसीलिए सोमवार को दिन भर आंदोलन की चर्चा रांची के होती है, किसी तरह की हिंसा की नहीं।
0: मारना नहीं है। एक भर्ती परीक्षा ऐसी है जो 11 साल बाद भी सवालों के घेरे में है। आपको यकीन नहीं होगा, 5 राज्यपाल बदल गए, आपके 4 मुख्यमंत्री बदल गए, 6 जेएसएससी के चेयरमैन बदल गए, पर अब तक झारखंड के छात्रों के सपनों की नौकरी जेएसएससी सीजीएल ईमानदारी से एक बार नहीं हो पाई है। जेएसएससी सीजीएल में पहली बार 1150 पदों पर नियुक्ति के लिए नवंबर 2015 में विज्ञापन निकलता है। 236,000 लोगों ने आवेदन किए, लेकिन 2015 में निकली जेएसएससी सीजीएल की मुख्य परीक्षा होने से 8 दिन पहले इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। 2017 में इस वैकेंसी की फिर से फॉर्म भरवाया गया, परीक्षा फरवरी मार्च 2018 में कराने की संभावित तारीख रखी गई, परीक्षा नहीं हुई। फिर कहा गया कि नवंबर दिसंबर 2019 में परीक्षा होगी, लेकिन आचार संहिता के कारण मामला फंसा रहा। फिर 2021 में नए नियमों के साथ जेएसएससी सीजीएल कराने की चर्चा हुई, लेकिन नए नियम को दिसंबर 2021 में कोर्ट ने खारिज कर दिया, परीक्षा लटक गई। फिर 21 अगस्त 2022 को निर्धारित जेएसएससी सीजीएल को एक बार फिर अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया। नाराजगी बढ़ी तो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा फिर जनवरी 2024 में कराए जाने की बात हुई। 660,000 बेरोजगार बच्चे 3 शिफ्ट में पेपर देने के लिए बैठे, लेकिन फिर तीसरा पेपर लीक हो गया और फिर प्रदर्शन करके बाकी परीक्षा भी रद्द हो जाती है। हर तरफ हो रही फजीहत के बाद आयोग ने एक बार फिर 2024 में भर्ती की डेट निकाली 21 और 22 सितंबर 2024 को फिर से यह परीक्षा हुई। इस दौरान पेपर लीक से बचने के लिए पूरे राज्य में इंटरनेट बंद कर दिया गया। परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि पहले से ही आंसर की वायरल थे। हालांकि इस बार सरकार ने तमाम आरोपों को खारिज कर दिया, एग्जाम को क्लीन चिट मिल गई। ये भर्ती परीक्षा 2025 पदों के लिए थी, जबकि छात्र कहते हैं कि सीआईडी की जांच में आरोपी ने कबूला है कि उसने जेएसएससी सीजीएल में भी धांधली की थी, इसीलिए वो लगातार 2015 से केवल टलती आ रही परीक्षा में धांधली की जाँच के साथ उसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं।
19: इस प्रोटेस्ट से हमारी डिमांड पूरी होगी और ठीक है आप इतने दिनों बाद आपकी आंख खुली, बहुत अच्छी बात है, बट हमें सीआईडी जांच चाहिए और हम उसके बिना सीबीआई जांच चाहिए और हम उसके बिना अपना प्रोटेस्ट नहीं छोड़ेंगे।
20: बोलिए, तो गवर्नमेंट का रिस्पांसिबिलिटी है कि वो उनको देखे, वो कितना दिन तक भूखे बैठे रहेंगे और इतना तेज बारिश में, इतना तेज धूप में, इतना हिम्मत है तो आके गवर्नमेंट देख के ले, एक बार एक दो दिन बैठ के वहाँ पे देखिए हम लोग पे ऊपर क्या बीत रहा है, आप देखिए आके, बात तो जरूर सुनना चाहिए।
21: हम लोग ऊर्जावान है, नौजवान है, हम लोग छात्र है, 26 वर्ष से हमारा हक मारा जा रहा है, इस बार हम लोग नहीं छोड़ेंगे सरकार।
22: सरकार जब तक हम लोग को लिखित नहीं देती है और जब तक सीबीआई सीआईडी जांच नहीं करवाती है, तब तक हम लोग रोड पे रहेंगे, सड़क पे रहेंगे और हम लोग को लिखित के साथ ही हम लोग तोड़ेंगे।
23: मैं हम प्रोटेस्ट के लिए नहीं बने हैं और इसके लिए गवर्नमेंट ने भी हमारे लिए क्या किया है, वेपन्स डिप्लॉयमेंट करके रखे हैं वहाँ,
24: भरोसा है कि जीत।
23: हाँ बिल्कुल, और जो वहाँ पे है फेंसिंग, कहा जा रहा है कांटे वाली फेंसिंग है, तो मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, हमें एक कबीरदास जी की पंक्ति याद आती है कि जो तो को कांटा बोवे ताही बो को फूल, तो ही फूल के फूल है बाको है त्रिशूल। आप कांटा बोइए और हम जो है वो फूल बोएंगे।
25: किसी भी शर्त पर यहाँ से नहीं हटने वाले जब तक सरकार घोषणा नहीं कर दे कि सीजीएल रद्द हो गया। और रद्द क्यों नहीं करिएगा जी, आपका एक अभय तिवारी का पूरा रिलेटिव बीएसओ पद पर है, क्या ये संयोग है? नहीं, ये प्रयोग है। आपने पैसा लेकर उन लोगों को नौकरी दिया, या फिर अगर पैसा आपने नहीं लिया दिया तो वैसे लोगों को क्यों टेंडर आप दिए?
26: क्यों रद्द करना पड़ेगा? हम लोग आंदोलनरत इसी कारण से है कि ये परीक्षा रद्द होगा, आगे से आने वाली सभी परीक्षाएं पारदर्शी रूप से ले जाएंगी, सीटें नहीं बिकेंगी, पेपर लीक नहीं होगा और जो झारखंड के युवा जो इतना मेहनती है, इनका युग जो है स्वर्णिम युग होगा।
27: हम लोग भूखे प्यासे आए हैं, उत्पाद सिपाही का एग्जाम सर जब दौड़ लिया गया था तब दौड़ के बाद कम से कम 60 से 65 अभ्यर्थी की मिट्टी हो गई थी, लेकिन सरकार ने लिपापोती करके उसका दबा दिया। उसके बाद कितने भी आंदोलन लड़ लड़ के हम लोग एग्जाम को कंडक्ट करवाए, कितने बार तारीख को चेंज किया गया, लेकिन लिया गया उसी दिन धांधली हो गया जिस दिन एग्जाम सेंटर से हम लोग निकले। 166 अभ्यर्थी पकड़ा गए जो तमाड़ के एक क्षेत्र में पुलिस द्वारा जांच किया गया, उसका सीआईडी को दिया गया तो सीआईडी बोलते नहीं स्टूडेंट ने पढ़ाई करता है, तो हम बोल रहे हैं 166 का कौन सा पढ़ाई करता है।
0: झारखंड सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि दरअसल उनके हाथ में ही नहीं है इसे रद्द करना, वो कहते हैं कि अदालत के आदेश पर हुआ था, उनकी निगरानी में हुआ था और इसीलिए उनके पास ये आदेश नहीं है। तो छात्र पूछते हैं कि जो सबसे बड़ा इसका मैस्कट बन गया है बेईमानी का, वो व्यक्ति को लेकर क्या? अभय तिवारी ने 2013 में नेवी में एसएआर पद की लिखित परीक्षा पास की, अगले साल भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में सहायक पद की लिखित परीक्षा पास की, आईआरबी कांस्टेबल की लिखित परीक्षा पास की, एनसीएल यानी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की पीटी परीक्षा पास की, 2018 के दारोगा की लिखित परीक्षा पास की, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की लिखित और टाइपिंग परीक्षा पास की, जेपीएससी की पीजीटी टीचर परीक्षा पास की, एसएससी सीजीएल परीक्षा, जेपीएससी की सहायक वन रक्षक परीक्षा, जेपीएससी वन क्षेत्र पदाधिकारी परीक्षा, जेपीएससी खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा, जेपीएससी 11वीं झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा। अब सोचिए कि एक छात्र झारखंड में 2013 से यानी पिछले 13 सालों में 12 परीक्षाएं पास कर चुका है, जो अभी गोड्डा जिले में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर काम कर रहा है। छात्र कहते हैं कि कैसे फिर सीआईडी जांच स्वीकार कर लें।
28: भारत 80 साल में स्वतंत्र दिवस मनाएगा, 80 साल में भी हम लोग को पेपर लीक के लिए आंदोलन करना पड़े, पेपर लीक के लिए बैठना पड़े, स्वास्थ्य के लिए बैठना पड़े।
29: बनाया है आपने, ये क्या बनाया है?
28: ये बनाया भ्रष्टाचार के खाका।
11: बहुत दिलचस्प है, अभय तिवारी जो चर्चा में रहा लगातार इस पूरे प्रकरण में, उसके परिवार के कौन कौन लोग किस परीक्षा में क्वालिफाई किए, ये अभय तिवारी बताइए, जरा बताइए।
1: अभय तिवारी जो भैया इसमें जो टीडीपीएल कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर थे, मैं वहीं से आता हूँ, पोड़िया हाट में ये फूड सप्लाई ऑफिसर में पदरत थे।
11: कौन कौन है जो इनके परिवार से सरकारी नौकरी,
1: सबका नाम लिखा हुआ है, आप इनको पढ़ लीजिए, बहुत है।
11: ये अभय तिवारी के साले हैं जो उपेंद्र मिश्रा है उनके।
1: हमारी मांग है सरकार से, हमारी मांग है जैसे सीजीएल को रद्द करना होगा, सीबीआई जांच करनी होगी।
14: अभय तिवारी को आईपीएस भी बना दिया है, अभय तिवारी को एसडीएम भी बना दिया गया है, इसरो में साइंटिस्ट भी बना दिया गया है, डॉक्टर भी बना दिया गया, नेता भी बना दिया, मुख्यमंत्री, झारखंड का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये जेनजी का आंदोलन है, इसके आप कैसे इसको देखें और इस पर कैसे डंडा चलाएंगे? ये इतना तगड़ा व्यंग है कि इस पर तो आप देखिए, एआई का इस्तेमाल कहते हैं ना कि भारत एआई में आगे बढ़ रहा है, अब आंदोलनों में एआई आएगा, कोई सोचा था? ले आए एआई, मुख्यमंत्री सीट बेचो योजना कर दी है, हमारी गारंटी कोई लिखित परीक्षा नहीं, 100% सिटिंग, जीरो टेंशन, पेमेंट करो, अप्रूवल लो, ट्रांसफर पोस्टिंग फ्री, शर्तें लागू, रेट लिस्ट है, पीजीटी के लिए 40 लाख, जेएस के लिए 40 लाख, बीएसओ के लिए 30 लाख, अदर्स के लिए 25 लाख, डिप्टी कलेक्टर का 60 लाख रेट, यूपी हरियाणा रेसिडेंट है तो 80 लाख का रेट, डिप्टी एसपी के लिए 1 करोड़ 1.25 करोड़, पेमेंट करो आराम से, नौकरी पाओ सम्मान। अब आप इस तरह का प्रदर्शन अगर देखते हैं तो ये एक चेहरा, हर आंदोलन में एक चेहरा एक विलेन होता है, झारखंड के लोगों का विलेन ये है, और सवाल ये कि अब तक ये सलाखों के पीछे क्यों नहीं है।
2: यहाँ झारखंड के आंदोलन में भी हम लोग शामिल हुए थे और आंदोलन करके इस राज्य को अलग किए थे, उसके बाद यहाँ पास ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को राज की गद्दी मिली है और वो अपना राज चला रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों के लिए हक की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हमने फाइनल एग्जाम दिया आपका सहायक आचार्य टीचर का, और उस पास होने के बाद चार एग्जाम लिया गया हम लोग से, चारों एग्जाम में हम सफलतापूर्वक पास कर गए, पास करने के बाद फिर हम लोग का रिजल्ट जारी हो गया, रिजल्ट जारी में हम लोग पास कर गए, पास करने के बाद हम लोग का जेएससी ऑफिस में मेरी सर्टिफिकेट की सारी सर्टिफिकेट की जांच हुई, सारी जांच में हमने ओके पाया, उसके बाद फिर वो दूसरे जिला में हम लोग को भेजा गया, यहाँ पर सर्टिफिकेट मेरे पास है दूसरे जिले का, यहाँ पास लिखा हुआ है और ये हमारा रोल नंबर है, और दूसरे जिला में गए थे कोडरमा में, वहाँ भी हमारा सफलता।
11: ये कब हुआ?
2: ये अभी पिछला साल का बात है सर।
11: उसके बाद अभी आपकी ज्वाइनिंग हुई
2: है? नहीं, अभी ज्वाइनिंग, अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला सर।
0: तो जैसे जंतर मंतर पर जब छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा था तो राजनीति हो रही थी, उसी तरीके से रांची में जो कुछ हो रहा है उस पर भी राजनीति हो रही है। बीजेपी पूछ रही है कि जंतर मंतर को लेकर जो कांग्रेस और विपक्ष के बाकी दल इतनी बातें कर रहे थे, वो अब रांची को लेकर चुप क्यों है, खामोश क्यों है? हालांकि शाम में राहुल गांधी की तरफ से बल प्रयोग गलत है ये कहा गया था।
3: झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है, वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स, डज नॉट मैटर वेयर इट इज हैपनिंग, वी कंडेम इट, वी आर अगेंस्ट इट, वी डू नॉट रिकमेंड इट, वी डू नॉट सपोर्ट इट, वी आर वेरी क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, कब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना, उसके खिलाफ है।
4: आज उनको झारखंड में छात्रों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? आज उनको, और मेरी जानकारी बताती है कि उनके इशारे पर वहां कटीली तारें लगाई गई हैं, उनके इशारे पर जिस जो सरकार के पार्ट एंड पार्सल हैं वो सरकार वहां चला रहे हैं, क्या उनको छात्रों की आवाज वहां सुनाई नहीं दे रही है?
5: झारखंड के बच्चों से बातचीत हुई है सरकार की, और सरकार बातचीत कर रही है, हमें उम्मीद है रास्ता निकलेगा, लेकिन असली जिम्मेदार है भारत की सरकार। भारत की सरकार ने क्या किया है झारखंड के लोगों को नौकरी देने के लिए? भाई भारत सरकार अगर कुछ काम अच्छा करती तो स्टेट गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती। असली जिम्मेदार अगर कोई है बेरोजगारी के लिए और नौजवानों को उनका भविष्य अंधकार में डालने के लिए, वो भारत सरकार।
6: आज के विधानसभा मार्च में न कोई उपद्रव था, न कोई अनुशासनहीनता थी, न पुलिस पे पत्थर फेंका गया, न पुलिस मुर्दाबाद था, न हेमंत सोरेन मुर्दा, कुछ नहीं था। संस्कारी तरीके से हजारों हजार छात्र जा रहे थे, उन पे कुठाराघात हुआ, वाटर कैनन, लाठी चार्ज हुआ। अभी मेरी बात हुई है, चार हमारे बच्चे हॉस्पिटल, उनका माथे में चोट लगी, खून बह रहा, वो हॉस्पिटल गए हैं। देखो कितना भी आप दमनात्मक कार्रवाई कर लो, आप छात्रों की आवाज दबा नहीं सकते।
7: भाजपा जो है ये नाटक कर रही है, युवा हमारे हैं, बच्चे हमारे हैं, वार्ता हम लोग कर रहे हैं, कई ग्रुप सामने आ गए। झारखंड आदिवासियों का है, मूलवासियों का, भाजपा का नहीं है, उसे बाप की जागीर नहीं है,
8: तमाशा मत करो, युवाओं को मत भड़काओ हमारे बच्चों को। मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ, आपने मेरा अच्छा ही देखा है, हमारा खड़ा रुक नहीं देखा है भाजपा, बहुत हो गया मैं बता रहा हूँ।
9: वहाँ इंडी गठबंधन की सरकार है और जिस तरह से राहुल गांधी राजनीति छात्रों और युवाओं को लेकर के कर रहे हैं, जंतर मंतर पे कर रहे हैं, जिस तरह से आर्टिकल लिख रहे हैं, पूरा मानसून सत्र नहीं चलने दे रहे हैं, 17 दिन से रांची में छात्र अनशन पे बैठे हैं, हस्तक्षेप तक नहीं किया, गए तक नहीं, कोई कांग्रेस का डेलीगेशन नहीं गया, समाजवादी का नहीं गया, और आज तो वो मार्च कर रहे हैं विधानसभा पे और वहां चुप्पी है।
10: छात्रों की जो मांगे थी 98% मांगों को मान लिया गया है सरकार द्वारा, और जो 2% बचा हुआ वो इसलिए बचा हुआ है कि एक ऐसा एग्जाम है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार वो एग्जाम लिया गया था, उसके बाद रिजल्ट आउट हुआ, कुछ लोगों को नौकरी भी मिल गई है। तो सरकार ये कह रही है कि जो कार्य माननीय न्यायालय के निर्देश के बाद हुआ है और उसके बाद लोग नौकरी भी में भी लग गए हैं, उसे रद्द करने का पावर सरकार के पास नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बहुत दुखी, कल एक आदिवासी महोत्सव था तो उसमें वो मंच से भी जब भाषण दे रहे थे तो ज्यादातर समय उन्होंने छात्रों के हित में ही बात की है, वो उनके साथ है, उसको पॉलिटिकल कुछ लोग पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं।
12: छात्र धरना पर भी यार भूख हड़ताल और सरकार वार्ता के नाम पर बच्चों को सिर्फ टहला रहे, ये सरकार की तानाशाही जो रवैया है ये साफ दिखता है। तो हमारी पार्टी छात्र और नौजवानों के लिए रांची ही नहीं पूरे झारखंड में हम सब लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और झारखंड के नौजवानों को न्याय दिलाने तक ये लड़ाई जारी रहेगी।
0: जिस तरीके से जब जंतर मंतर में छात्रों का प्रदर्शन था तो न केवल प्रदर्शन बल्कि उस प्रदर्शन को करने के अंदाज की खूब चर्चा हुई थी, उनके मजाक पर भी चर्चा हुई थी, जो कि वो सामने से जब डराने की कोशिश होती थी तब वो किया करते थे। मसलन दिल्ली से लेकर बिहार तक हमने देखा कि छात्र ये भी पूछ लेते थे पुलिस वालों से कि आंसू गैस के गोले का इंतजाम हुआ है या नहीं। झारखंड में भी जो ये प्रदर्शन हुआ है उसमें छात्रों की तरफ से जिस तरह के रिएक्शन आए उसमें ऐसा नहीं लगा कि वो डर रहे हैं।
13: भारत माता की, भारत माता की।
15: ये भी कहा कि तिलक लगाइए मैम,
16: एक जो परंपरा है वो भी यहाँ दिख रही है। आज सोमवारी भी है, सावन की सोमवारी, और आप तिलक लगा रही हैं सबको, क्या मकसद है तिलक लगाने का जरा बता दीजिए।
13: मकसद यही है कि हमारे सारे स्टूडेंट की आज विजय प्राप्त होगी। आज सोमवार का दिन है, हमारे भाई बहन मंदिर नहीं जा सके, मैं सुबह उठ के मंदिर गई हूँ और भोलेनाथ से आशीर्वाद लेके आई हूँ कि मेरे सारे बच्चे आज उनकी जीत हासिल हो, विजय प्राप्त हो।
16: ये देखिए, ये एक मैसेज है और एक अलग तरीके से आंदोलन में जुड़ने छात्रों के प्रोटेस्ट, उनके मार्च के बीच ये बहन पहुंची हैं और सभी जो आंदोलनकारी छात्र हैं जो मार्च में शामिल होने वाले उनको तिलक लग रहा है, ये तिलक।
0: राजस्थान में नई भर्तियां तो खूब निकल रही हैं लेकिन पुरानी भर्तियां अभी भी लटकी हुई हैं। आज तक लगातार उन बेरोजगारों के हित की आवाज उठाता है, जैसे कि एक ऐसा मामला जहां 6 साल बाद आखिरकार उन लोगों को नौकरी तो दे दी गई, उनको नौकरी पर रख लिया गया जो 6 साल से जिनकी भर्ती लटकी हुई थी, लेकिन 8 महीने बीत गए, न तो वेतन मिला न काम, और अब वो एक बार फिर धरना कर पर बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं।
17: खबरदार करके खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ता आज तक, खबर को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लगातार खबरदार करता है आज तक।
24: आपका बेटा या बेटी अगर भर्ती परीक्षा पास कर लेता है तो फिर आप मिठाई बांटते होंगे, लेकिन राजस्थान के हजारों ऐसे युवा हैं जो भर्ती परीक्षा पास करके भी बेरोजगार हैं। कहीं नियुक्ति पत्र लेकर भटक रहे हैं तो कहीं पोस्टिंग पाने के लिए धरना दे रहे हैं।
29: ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जो भर्ती है ना सर, भर्तियों के मामले में ये इस सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है।
30: इसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आया, उसमें हमारा रोल नंबर दिखा, उसके बाद में हम बिल्कुल फ्री हो गए कि एक बार मेहनत करके 2-2.5 साल हमने एक अच्छा परिणाम पा लिया, लेकिन उसके बाद जैसे ही हमें पता लगता है कि ये इस भर्ती पे दुनिया भर की रिट लग रही है और स्टे आ जाता है, उसके बाद ना तो सर पढ़ाई होती है, बिल्कुल मेंटली टॉर्चर हो चुके हैं सर, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं।
17: आपकी टीवी स्क्रीन पर बाईं तरफ एक साल पहले की रिपोर्ट का वीडियो है, जब आजादी के बाद पहली बार 2019 और 2022 में निकली राजस्थान के खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती को पास करके भी नौकरी नहीं पा रहे युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए आज तक ने मुद्दा उठाया, जिसके बाद इन्हें नियुक्ति पत्र तो भजनलाल सरकार के राज में बटा, लेकिन अब फिर से ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी धरना देने के लिए मजबूर कर दिए गए हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर में खुद के बेरोजगार सरकारी कर्मचारी नौकरी और तनख्वाह के लिए धरने पर बैठे। आप सोचेंगे कि एक सरकारी कर्मचारी कैसे बेरोजगार हो सकता है, तो समझिए, ये राजस्थान सरकार के वो 225 स्वास्थ्य सुरक्षा अधिकारी हैं जिन्हें भर्ती निकलने के 7 साल बाद भी न तो काम दिया जा रहा है न ही सैलरी। 225 खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिन्हें रुला रुला कर नवम्बर दिसम्बर 2025 में ज्वाइन तो कराया गया, लेकिन 8 महीने में न तो इनको कोई काम दिया न ही तनख्वाह। ये रोज जिला चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर में जाकर साइन करते हैं और बैठे रहते हैं।
1: सर, हमारी जो ज्वाइनिंग है वो दिसंबर में हो चुकी थी, अभी 8 महीने पूरे होने को आए हैं, तो हमें ना तो पोस्टिंग दी जा रही है, सारी हमारी जो प्रोसेस होनी चाहिए थी पोस्टिंग तक की वो पूरी हो चुकी है, पर आज दिन तक हमें कोई भी पोस्टिंग नहीं मिली है, ना ही हमें अभी तक सैलरी दी गई है। तो हम यही चाहते हैं कि आचार संहिता लगने से पहले हमें पोस्टिंग दे दी जाए, ताकि हमें आचार संहिता के टाइम में भी इस भर्ती को आगे तक धक्के नहीं मारने पड़े और हमें पोस्टिंग मिल जाए हमारी यथास्थिति पे।
17: संजय कुमार जैसे युवा IIT दिल्ली से PhD की है, अब भरतपुर जिला चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर में काम करते, पहले की तनख्वाह भी गई और अब बेरोजगार होकर घूमने को लाचार है। कोई बैंक मैनेजर की नौकरी छोड़कर आया, कोई टीचर और कोई प्रिंसिपल की नौकरी छोड़कर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती में परीक्षा निकाल कर नियुक्ति पाया, कोई MSc केमिस्ट्री करने के बाद लंदन से फूड सेफ्टी में PG डिप्लोमा करने के बाद 6 साल से धरने पर ही बैठ रहे हैं। सैलरी न मिलने से इनको परिवार चलाना मुश्किल हो चुका है।
18: हमारी बहुत बड़ी बड़ी EMI पुराने जॉब की वजह से चल रही है और परिवार के
19: पुराने जॉब छोड़ के आए थे।
18: जी सर, और अभी मेन प्रॉब्लम EMI तो चली रही है, साथ में सर फैमिली के खर्चे भी हैं, क्योंकि बच्चों की फीस भी पे करनी पड़ती है, उसके अलावा परिवार का खर्चा भी चलाना पड़ता है। सर, हमें कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है।
20: हम लोग यहाँ वापस जाते हैं, सुबह साइन करते हैं, शाम को वापस घर पर चले जाते हैं। ठीक है, अब इस पर डेपोटेशन वाले पर ये विभाग क्यों मेहरबान है इसका तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये डेपोटेशन के रुके रहने की वजह से हमारी भर्ती या हमारी जो पोस्टिंग है वो नहीं हो पा रही है।
21: पहले भी हम गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में सर पिछले 11 साल से मैं वर्किंग हूँ। इससे पहले मैं वाइस प्रिंसिपल था, झुंझुनू में पोस्टेड था। अब समस्या ये आ रही है सर कि जो सैलरी वहाँ मिल रही थी नियमित सैलरी, वो भी अब यहाँ पिछले 8 महीने से नहीं मिल रही है। मैडम से काफी बार अनुरोध किया, 2-3 बार हम मिले व्यक्तिगत रूप से CA लेके, लेकिन आश्वासन के अलावा हमें कुछ मिला नहीं अभी तक।
17: दरअसल चयन होने के बाद भी जब इनको सरकार नौकरी नहीं दे रही थी तो ये लोग कोर्ट गए और कोर्ट में सरकार ने जवाब ये दे दिया कि विभाग में पहले जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पद था उस पर हमने डेपुटेशन पर दूसरे विभागों से रख लिया, उनकी जगह इनको पद दे दिया जाएगा। मगर दूसरे विभाग से आए लोग जो डेपुटेशन पर लगे वो इस मलाईदार विभाग को छोड़कर अपने पुराने विभाग में जाना नहीं चाहते। अधिकारी कहते हैं कि उन्होंने फाइल मंत्री जी को भेज रखी, मंत्री जी के पास से फाइल आई तो फिर आगे काम हो पाएगा।
22: जब वो आया हमारे पास सर्टिफिकेट्स, वेरी माइनर मिस्टेक्स वेर देयर इन द स्पेलिंग्स, तो हमने उसको रेक्टिफाई कराया थ्रू FSSAI, बिकॉज वो गैजेट में जाता है तो स्पेलिंग में भी एरर नहीं होना है, तो भिजवाया तो 31 जुलाई को इनका नोटिफिकेशन जारी हो गया। अभी क्योंकि इनका सैलरी का है, वी आर वर्किंग ऑन द सैलरी पार्ट, वी हैव मेड देम एज अ ड्यूटी मान के इनको सैलरी देने वाला, और दूसरा इनका राजहेल्थ पोर्टल के थ्रू पोस्टिंग दिलाना है द प्लेस वेर दे कैन वर्क बेस्ड ऑन हमने जो एरिया आइडेंटिफाई किया है अंडर द एक्ट, तो फाइल अभी पेंडिंग है, तो हम भी उस पर थोड़ा एक्सपेरेट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके करें।
17: खाने पीने में मिलावट और नकली दूध और पनीर से लेकर नकली आटा और नकली धनिया पाउडर तक बेचे जाने की घटनाएं राजस्थान में लगातार सामने आ रही हैं। मगर वर्षों से विभाग में डेपुटेशन पर लगे अधिकारियों की लॉबी की वजह से मंत्री जी फाइल से भाग रहे हैं और लाचार होकर 225 खाद्य सुरक्षा अधिकारी बिना काम बिना सैलरी के धरना देने के लिए छोड़ दिए गए हैं।
23: ये राजस्थान का स्वास्थ्य भवन है और स्वास्थ्य भवन में ये नीचे बैठे हुए राजस्थान के खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं। आजादी के बाद पहली बार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती निकली थी, इन्हें ज्वाइनिंग तो दे दी गई बड़े लंबी लड़ाई के बाद, मगर कोई काम नहीं दिया गया, न तनख्वाह मिलती है और इन्हें दफ्तर के अंदर बैठना चाहिए था, ये गलियारे में बैठे हुए हैं। अधिकारियों के दफ्तरों के बाहर अपने मांग को लेकर कि 2019 में भर्ती हुई थी और अब तक नौकरी नहीं मिल पाई, कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, कैसे घर चलता है इनका।
0: देश को जरूरत है भर्तियों में भ्रष्टाचार से आजादी सबको मिले। मध्य प्रदेश की यह खबर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे।
2: सरकारी नौकरी की लाइन, वो लाइन जिस पर लोकतंत्र की लकीरें खींचती हैं, वो लाइन जहां खड़े खड़े कुछ को नौकरी मिलने पर लड्डू घरों में बंटता है और बहुत से बेरोजगार नौकरी की लाइन में खड़े खड़े ओवर एज हो जाते हैं। लाइन में खड़े सी लोकतंत्र के इन्हीं बेरोजगारों के नाम पर जब होता है सौदा तो आज तक करता है खबरदार। खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर की, जहां 66 पदों की आउटसोर्स भर्ती की मंजूरी मिली, लेकिन आरोप है मार्च से अप्रैल के बीच 70,000 रुपए घूस लेकर 318 लोगों को भर्ती कर दिया गया। आज तक के पास मौजूद इस दस्तावेज को देखिए, ये वो जांच रिपोर्ट है जो बताती है कि बेरोजगारों के नौकरी पाने के अरमानों पर भ्रष्टाचारियों ने जेब भरकर धोखा दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार ने जिला अस्पताल, सिविल हॉस्पिटल, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सपोर्ट स्टाफ के लिए 66 पदों की आउटसोर्स भर्ती को मंजूरी दी थी। सरकार ने केवल 25% कर्मचारी रखने की स्वीकृति दी थी। मंदसौर में तत्कालीन CMHO ऑफिस ने बिना किसी सरकारी इजाजत के मार्च और अप्रैल के भीतर 318 लोगों को नौकरी पर रख लिया, जो मंजूर पदों से लगभग 5 गुना ज्यादा था। कई नियुक्तियां सीधे तौर पर केवल आउटसोर्सिंग एजेंसी के लेटर हेड पर जारी कर दी गई। एक्स्ट्रा रखे गए इन कर्मचारियों को सैलरी किस फंड से दी जाएगी, इसका कोई वित्तीय प्रावधान तय नहीं था। तत्कालीन CMHO गोविंद सिंह चौहान के भतीजे जयदीप पर आरोप है कि इस पूरे रैकेट में उसने बिचौलिए का काम किया। भर्ती के नाम पर प्रति उम्मीदवार 70,000 रुपए की डीलिंग की जाती थी। पूरा खेल अस्पताल परिसर में मौजूद CMHO के सरकारी बंगले से चलता रहा। पूरा फर्जीवाड़ा तब उजागर हुआ जब बिना रिकॉर्ड वाले कई कर्मचारियों की सैलरी फंस गई। सैलरी न मिलने पर कर्मचारियों ने शिकायत की, इसके बाद जांच शुरू हुई। उधर नौकरी के नाम पर कथित तौर पर पैसे देने का दावा करने वाले कई शिकायतकर्ता अब अपने पैसे वापस दिलाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं।
3: केस दिए होंगे 3 लाख, उसके बाद फिर दूसरा केस दिया मैंने CMHO के बंगले में, दूसरी बार पैसे दिए CMHO बंगले में, फिर तीसरी बार पैसे दिए मैंने जयदीप भैया को अस्पताल के अंदर ही, एक स्टोर रूम है गोली दवाई का डबल मंजिल, वहां जाकर मैंने पैसे दिए। कोई मांगीलाल मैंने 13 लोगों को पैसे दिए टोटल 70,000 रुपए से, आप जो लोग कितने होते हैं 9,10,000 लगभग पैसे दी मैंने उनको, ठीक। फिर 4 लोगों को सैलरी इन्होंने नहीं दी, फिर बाहर निकाल दिया, चाचा पास मैंने काम करवा लिया, किसी को पैसे नहीं दिए। और बाकी 4-5 लड़के 5-6 लड़के वो रहे थे, उनका हाथ तक नहीं लगाया, ना जयदीप भैया ने मेरे को पेमेंट लौटाया, मैं कैसे थक गया।
2: राज्य सरकार ने तत्कालीन CMHO डॉक्टर गोविंद सिंह चौहान को निलंबित कर दिया। 5 लोगों की जांच कमेटी बनी है जिसने कहा है कि आपराधिक मामला दर्ज हो।
4: शिकायत की थी उस जांच के आधार पे उनकी जांच की गई, जिसमें कुछ गड़बड़ियां पाई गई और इस जो जांच प्रतिवेदन था, हमारी जो जांच सदस्य टीम थी उनके द्वारा जांच प्रतिवेदन दिया गया और उस प्रतिवेदन के आधार पे CMHO मंदसौर निलंबित है।
5: बिल्कुल 9 लाख रुपए करीबन बताए हैं, लिखे हैं आवेदन में, और डॉक्टर जो गोविंद सिंह चौहान जी उनका उसमें नाम है और पैसे दिए गए हैं सर, और एक अन्य जयदीप नाम के व्यक्ति का भी नाम लिखा हुआ है, इनके माध्यम से पैसे लिए गए। अब ये तथ्यों में क्या साक्ष्य है, साक्ष्य के आधार पर उसका वैधानिक आगे कार्रवाई की गई।
2: हालांकि आज तक ने भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी से बात की तो डॉक्टर चौहान अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हैं।
11: और संबंधित एजेंसी को मेरे द्वारा कार्यादेश दिया गया था कि गवर्नमेंट के निर्देशानुसार जो सर्कुलर है उसके अनुसार जहां जहां जितनी संस्थाओं में कर्मचारी रखना है उनको आप देखें और वो कर्मचारी रख के हमें उपलब्ध कराएं संस्थाओं में, ये कंपनी के द्वारा लगाए गए हैं। नहीं, जो जयदीप का नाम आ रहा है वो न तो मेरा भतीजा है और न ही कोई रिश्तेदार है।
2: सवाल है कि जब आंखों के सामने ही नौकरी देने के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ दिखता है तो केवल निलंबन ही क्यों हुआ? क्या CMHO तक ये मामला है या फिर प्रशासन के और लोग शामिल है जिन्होंने नौकरी दिलाने के नाम पर ऐसा ठगा जो बेरोजगार जीवन भर भूल नहीं पाएंगे?
14: जिन हाथों पर बेरोजगारों को रोजगार देने की जिम्मेदारी थी उन्हीं हाथों ने नौकरी

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: ये मजबूर हैं, पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
3: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
3: टैंकर ने घुसकर मारी अलमारी को टक्कर।
4: आश्चर्यजनक, एक खरोच भी नहीं आई अलमारी पे। कैसे कदम?
3: क्रॉसबॉन सुपर स्ट्रॉन्ग।
4: सुपर स्ट्रॉन्ग
3: और मॉइस्चर प्रूफ।
4: वारंटी
3: 15 साल की।
4: कदम
3: सर प्लीज
4: ऑर्डर करो और मेरे घर भिजवाओ। वार्डरोब्स क्रॉसबॉन से ही बनेंगे।
5: क्रॉसबॉन HDMR Max फर्नीचर बने स्ट्रॉन्ग, चले वेरी वेरी लॉन्ग।
6: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
7: AU
8: सोच बदलो और बैंक भी।
9: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
10: Take a date, not bites.
11: No added sugar, preservative के बिना। Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया Lion Dates Nut Bites.
10: Lion Date Nut Bites.
12: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
13: बिजली का बिल पेड
14: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
15: कैसे?
14: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
15: इत्ता माही वे।
16: पापा।
17: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
16: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
17: छक्का?
16: सब कैशलेस हो गया है।
17: हाँ ओला ला भाई मेरा बैट।
16: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
17: अभी तो चार्ज हुआ यार।
16: ओला बैट किसका है?
18: टाटा AIG है तो भरोसा है।
19: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
20: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
21: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रांग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
22: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst. Meets the cool UI UX designer. Meets the gifted content writer. Meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: हमारी सरकार की पूरी सहानुभूति छात्रों के साथ है और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कल इस पर बहुत देर तक अपने भाषण में छात्रों का साथ देने की बात उन्होंने कहा है। और हमारे जो माननीय मंत्रीगण गए थे छात्रों से वार्ता करने, उसमें छात्र और वो दोनों, उन दोनों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो ये बात सामने आई, आप देख सकते हैं मीडिया में भी है, कि 98% मांगों को मान लिया गया है। छात्रों की जो मांगे थी 98% मांगों को मान लिया गया है सरकार द्वारा, और जो 2% बचा हुआ वो इसलिए बचा हुआ है कि एक ऐसा एग्जाम है जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार वो एग्जाम लिया गया था, उसके बाद रिजल्ट आउट हुआ, कुछ लोगों को नौकरी भी मिल गई है। तो सरकार ये कह रही है कि जो कार्य माननीय न्यायालय के निर्देश के बाद हुआ है और उसके बाद लोग नौकरी भी में भी लग गए हैं, उसे रद्द करने का पावर सरकार के पास नहीं है।
2: सरकार झूठ कितना बोल सकती है? छात्र कोई डिमांड है, CBI जांच कराओ, ED की जांच कराओ, TDPL जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी है उसने जितनी भी परीक्षा ली कैंसिल करो, रद्द करो। छात्र बोल रहे हैं कि हमारी एक एक सीट बेच दी गई, क्या आपत्ति है? TDPL की जितनी परीक्षाएं क्यों नहीं रद्द कर रहे हो? सरकार देखो, सरकार संजीदा नहीं है। यह पूरा एजिटेशन नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन हम सब जब जनप्रतिनिधि है मेरा दायित्व तो हो जाता है उनकी आवाज उठाने के लिए। लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। अरे आप एक एक सीट भी, अब TDPL के और सारे जो एजेंसियां परीक्षा लेने वाली हैं वो स्वीकार कर रही है हमने पैसा लिया,

0: मिडिल ईस्ट लग रहा है और इसकी तपन में दुनिया भर के बाजारों में बेचैनी बढ़ गई है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ता तनाव फिर से आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ाने की आशंका पैदा कर रहा है। दरअसल जब भी किसी बड़े तेल उत्पादक क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, सबसे पहले कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ जाती है। इस बार भी अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने ऊर्जा बाजारों की धड़कनें तेज कर दी हैं। गोल्डमैन सैक्स ने चेतावनी दी है कि अगर होर्मुज में सप्लाई संकट लंबा खिंचता है तो कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। और चौथी तिमाही तक ब्रेंट क्रूड ऑयल $120 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। तनाव लंबे समय तक जारी रहने पर कुछ विश्लेषकों ने $150 से $200 प्रति बैरल तक जाने की आशंका जताई है। फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड करीब $91 और WTI क्रूड लगभग $83 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है। तेल बाजार में बढ़ती इस बेचैनी का असर भारत पर भी पड़ सकता है। इसकी वजह है कि देश अपनी जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयातित कच्चे तेल से पूरा करता है और पश्चिम एशिया ग्लोबल क्रूड सप्लाई का खास हिस्सा है। आंकड़ों के मुताबिक भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है। वहीं पश्चिम एशिया में दुनिया के करीब 20% तेल व्यापार की आवाजाही होर्मुज के रास्ते होती है और होर्मुज में बाधा आने पर भारत का आयात बिल बढ़ सकता है। यही वजह है कि होर्मुज में किसी भी तरह की रुकावट भारत जैसे बड़े आयातक देशों की चिंता बढ़ा देती है। तेल महंगा होने से ऊर्जा लागत बढ़ सकती है और महंगाई पर भी दबाव बन सकता है। इसी खतरे को देखते हुए भारतीय रिफाइनरियां अपनी खरीद रणनीति में बदलाव करती नजर आ रही हैं, जिसके चलते जून तिमाही में रूस और लैटिन अमेरिकी देशों से तेल खरीद बढ़ाई गई, क्योंकि रिफाइनरियां वैकल्पिक स्रोतों पर फोकस बढ़ा रही हैं और उनका मकसद किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम करना है। फिलहाल बाजार की नजर अमेरिका और ईरान के बीच जारी कूटनीतिक कोशिशों पर है। अगर तनाव कम होता है तो कच्चे तेल की कीमतों में राहत मिल सकती है, लेकिन अगर संकट लंबा खिंचता है तो इसका असर पेट्रोल डीजल महंगाई और शेयर बाजार तक महसूस किया जा सकता है। यानी पश्चिम एशिया का ये तनाव हजारों किलोमीटर दूर भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों के बजट पर भी असर डाल सकता है। आदित्य राणा आज तक
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको झारखंड में छात्रों का प्रचंड आंदोलन दिखाएंगे। युवा आक्रोश में डूबी राजधानी रांची आज रण क्षेत्र बन गई। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली और गड़बड़ी, जिसके खिलाफ छात्रों का गुस्सा आज ऐसा फूटा कि झारखंड विधानसभा के सुरक्षा घेरे के सातों द्वार युवाओं की हुंकार के आगे तरक गए। शुरुआत दोपहर के आसपास हुई, जब हजारों युवाओं का सैलाब विधानसभा की तरफ बढ़ा। पुलिस ने रास्ते रोकने के लिए कटीले तार, बैरिकेड सब कुछ बिछाए थे, लेकिन छात्रों ने उन कटीले तारों को ही उखाड़ फेंका। पुलिस ने रोकने के लिए पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन पानी की तेज बौछारों के बीच छात्रों ने गजब का हौसला दिखाते हुए डांस शुरू कर दिया। पानी और चलाओ के नारे लगाए। देखते ही देखते ये जोश और हंगामेदार हो गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, फिर लाठीचार्ज भी शुरू हुआ। इस बीच छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल तक ले जाना पड़ा। बात यही खत्म नहीं हुई। दिन ढलते ही पुलिस एक बार फिर पूरी फोर्स के साथ एक्शन में आ गई और विधानसभा के सामने जमे छात्रों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने दोबारा लाठीचार्ज किया। 17 दिनों से चल रहा यह प्रदर्शन अब आर पार की लड़ाई बन चुका है। भारी सुरक्षा के बीच रात के अंधेरे में भी छात्र अपनी मांगों पर अड़े हैं। अब देखना है कि इस घेराव के बाद टकराव बढ़ेगा या कोई सुलह का रास्ता खुलेगा। और इसके बाद 4 अगस्त को एयर इंडिया की फुकेट दिल्ली फ्लाइट के बारे में बताएंगे। एयर टर्बुलेंस की वजह से हवा में अचानक 300 फीट नीचे आई। इस घटना में कई यात्रियों को गंभीर चोटें आई थी। इस घटना की जांच में एक नया खुलासा हुआ है। पता चला है कि फ्लाइट का एक पायलट आरोपों के मुताबिक उड़ान के वक्त ड्रग्स के नशे में था। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं जो अब से कुछ देर पहले की हैं, और पुलिस ने झारखंड विधानसभा के बाहर धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है और उन्हें वहां से खदेड़ने की कोशिश की है। देखिए,
1: हम लोग विधानसभा में भी नहीं घुसे हैं। हम लोग पीसफुल तरह से बैठे हुए थे, एसपी सर बोले, उसके बावजूद हमके मारने की कोशिश की। हमने तो बहुत मारा है सर, अब सब हाँ मेरा भी हमको भी मारा।
0: तो सुना आपने इन बच्चों को। पुलिस की कई कोशिशों के बावजूद आज 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारी रांची में बवाल करते हुए नजर आए। विधानसभा भवन तक वो पहुंच गए थे और यही पुलिस का कहना है कि इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि ये तमाम प्रदर्शनकारी वहां पर आराम कर रहे थे। परिसर में तो गए लेकिन विधानसभा के अंदर नहीं गए। ये कह रहे थे कि कल जब सुबह विधानसभा का सत्र फिर से शुरू होगा तब वो सरकार का घेराव करेंगे। लेकिन पुलिस ने आज शाम को वहां लाठीचार्ज किया और इस वक्त का अपडेट यह है कि विधानसभा के गेट से प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है। तो दो बातें हैं। एक बात कि कुछ प्रदर्शनकारी विधानसभा के अंदर तक गए थे लेकिन वो चुपचाप वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने कोई हंगामा बवाल नहीं किया। दूसरी बात, जिन प्रदर्शनकारियों को अभी लाठीचार्ज के जरिए भगाया गया है वो ये कह रहे हैं कि हम गेट के बाहर बैठे थे, हम अंदर नहीं गए थे, बावजूद इसके हमें वहां से खदेड़ कर लाठीचार्ज करके भगाया गया है। अब हम आपको हर तरह का पक्ष दिखा रहे हैं। अब ये विरोध प्रदर्शन वापस से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जारी रखा जाएगा। यहां एक और अपडेट यह है कि 9 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो को रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि पैदल मार्च में शामिल होने के कारण देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा है। वो कई दिनों से भूख हड़ताल पर है। देखिए,
2: पच्चीस में
3: हम लोग नहीं बोल रहे।
0: आज जो हजारों छात्र रांची में विधानसभा का घेराव करने के लिए सड़कों पर इकट्ठा हुए, उनके चेहरों पर सिर्फ गुस्सा नहीं था, उनके अंदर एक डर भी था। डर इस बात का कि कहीं उनका ये पैदल मार्च बदनाम ना हो जाए, कहीं कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिसकी वजह से बाद में उनकी जो पूरी ये लड़ाई, उनका संघर्ष क्या है कि भाई फर्जी भर्तियां बंद करो, भर्ती घोटाला बंद करो, पेपर और एग्जाम में जो भी पेपर इधर से उधर निकल जाता है, एक ही परिवार के इतने लोगों का चयन हो जाता है, बाकी बच्चे ऐसे के तैसे रह जाते हैं, एक सालों साल बीत जाते हैं, भर्तियां नहीं निकलती हैं, इसके खिलाफ था। अब उन्हें डर एक ही था कि क्या उनके इस कठिन परिश्रम को, उनके संघर्ष को बदनाम कर दिया जाएगा, और कहीं ऐसा ना हो जिस मुद्दे के लिए वो इतने दूर दूर से पैदल चल चल कर पहुंचे थे और जिस दर्द को लेकर वो सत्ता के दरवाजे तक पहुंचे हैं, लोग उस दर्द को भूल जाएं और सिर्फ ये चर्चा होने लगे कि प्रदर्शनकारियों ने ये कर दिया, प्रदर्शनकारियों ने वो कर दिया। ये डर इसलिए था कि आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ भीड़ नहीं होती, आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत होती है लोगों का भरोसा, और ये छात्र शायद इसी भरोसे को बचाने के लिए आज सबसे ज्यादा सतर्क थे, सावधान थे। और आज दिन भर प्रशंसा होती रही है जिस तरह से झारखंड में रांची में इन बच्चों ने यह आंदोलन किया। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब लाठीचार्ज के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ, ये आप वाटर कैनन से देख रहे हैं, पानी की बौछारें छोड़ी गई। अब आरोप है कि कुछ प्रदर्शनकारियों के सिर और कमर से ऊपर लाठियां मारी गई हैं, और इसके बाद गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने एक सुरक्षा कर्मी को घेर भी लिया। एक पल ऐसा हुआ जब लगा कि गुस्सा कहीं हिंसा में ना बदल जाए, लेकिन फिर जो हुआ वो इस पूरे आंदोलन की सबसे शक्तिशाली और खूबसूरत तस्वीर है। लोकतंत्र की ऐसी तस्वीर जिसमें भीड़ में मौजूद कुछ युवाओं ने उस सुरक्षा कर्मी को चारों तरफ से घेरा बना लिया और ये सुनिश्चित किया कि उन पर कोई हमला ना हो पाए। ऐसा उसे बचाने के लिए हुआ और ऐसा उसे पीछे ले जाने के लिए हुआ ताकि लोगों का गुस्सा इस पर ना निकले। सोचिए जिन युवाओं पर लाठियां बरसी हों, जिनके भीतर गुस्सा, दर्द, जिनके साथी घायल हुए हों, उन्हीं में से कुछ युवाओं ने कहा कि नहीं, इसे कुछ मत होने दो, क्योंकि शायद उन्हें पता था कि एक पल का गुस्सा उनकी महीनों की लड़ाई पर भारी पड़ सकता है। देखिए तो उनको सुरक्षित पुलिस को हैंडओवर कर दिया इन छात्रों ने मिलकर। कल्पना कीजिए जब ये हजारों छात्र आज विधानसभा मार्च के लिए निकले होंगे तब उनके मन में क्या चल रहा होगा। उन्हें पता होगा कि आज उनकी तस्वीरें कैमरों में कैद होंगी, उन्हें पता होगा कि आज उनके हर कदम को देखा जाएगा, उन्हें पता होगा कि बहुत सारे कैमरे तलाश रहे होंगे कि इनसे एक चूक हो और वो वीडियो वायरल किया जाए, उन्हें पता होगा कि अगर भीड़ में किसी एक प्रदर्शनकारी से भी कोई बड़ी गलती हो गई तो उसकी कीमत सिर्फ उस एक व्यक्ति को नहीं बल्कि इस पूरे आंदोलन को चुकानी पड़ सकती है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें पता था कि जनता का समर्थन बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन एक गलती से ये छिन भी सकता है, और समर्थन खोने का मतलब सिर्फ कुछ लोग कम हो जाना नहीं होता है, समर्थन खोने का मतलब होता है आपकी आवाज का कमजोर पड़ना। और शायद इसीलिए इन बच्चों ने आप जिस सवाल को विधानसभा तक लेकर गए थे वो सवाल पीछे छूट जाना हो जाता, आप जिस बेईमानी के खिलाफ खड़े हुए थे उसकी जगह चर्चा आपकी हिंसा पर होने लगना, और फिर पूरा देश ये भूल जाता है कि हजारों युवा आखिर रांची में सड़क पर उतरे क्यों थे, बस इसी पर चर्चा। और यही वजह है कि आज का ये मार्च सिर्फ विधानसभा तक पहुंचने की परीक्षा नहीं था, ये उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा कड़ी परीक्षा थी, ये गुस्से पर नियंत्रण की परीक्षा थी, ये इस बात की परीक्षा थी कि जब आपके साथ गलत हो रहा हो तब भी आप गलत रास्ता नहीं चुनेंगे। और इसीलिए सब झुककर आज कह रहे हैं कि इन बच्चों ने जो संदेश दिया है, जब सामने से लाठी आए तब भी आप अपने हाथ को रोक पाए, और वो भी इस उम्र में, जब आपके भीतर गुस्सा उबल रहा हो तब भी आप ये याद रखेंगे कि आप यहां बदला लेने नहीं आए हैं, आप यहां अपना हक मांगने आए हैं। और शायद इसीलिए उस सुरक्षाकर्मी के चारों तरफ बनाया गया वो घेरा इतना महत्वपूर्ण था। वो सिर्फ एक पुलिसकर्मी को बचाने वाला घेरा नहीं था, वो इस आंदोलन की मर्यादा के चारों तरफ बनाया गया घेरा था। और हमें लगता है कि आज इसी वजह से इन छात्रों की और इन जेन जी युवाओं की पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। देखिए,
2: लाठीचार्ज का नियम क्या होता है, कंधे कमर से नीचे लाठीचार्ज की जाती है, पर यहाँ पे सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है। ये सरकार की नीति को समझाता है। महेंद्र मंडल जो आज 8 दिनों से भूख हड़ताल पे थे, उनको पुलिस, झारखंड की पुलिस ने पूरा का पूरा बदल लाल कर दिया, उन्हें 4 डंडा मारा है। इस सरकार को हम बताना चाहते है, ये सरकार कभी किसी की सरकार बपोती नहीं होती है।
3: जब छात्रों की भीड़ बढ़ रही है और सरकार वहीं से चली जा रही है, तो आप लोगों को लग रहा है कि अब हेमंत सोरेन चले गए सीएम तो इन लोग पर लाठीचार्ज कर दे। 3-4 लड़के को बेरहमी से मारा, अभी एक लड़का वहाँ बेहोश है।
4: तो मोबाइल देखिए, हम लोग गरीब पढ़ने वाले स्टूडेंट है, फोर्स लोग डंटा चालू करके मोबाइल सारा चीज तोड़ दिया।
5: हम लोग को बात ना सुनकर लाठी चार्ज करके बेरहमी से हम लोग को मारा गया है। ये अभी इस तरह से मारा गया लाठी से करके, कम से कम बहुत लाठी से पिटा गया है।
0: ये पैदल मार्च झारखंड के उस खाली मैदान से शुरू हुआ जहां विधानसभा का पुराना भवन है। सभी प्रदर्शनकारियों से ये कहा गया कि वो जयपाल सिंह मुड्डा स्टेडियम से इस मैदान में पहुंचे और फिर यहां से अपना पैदल मार्च शुरू करें। इन प्रदर्शनकारियों को करीब 5 किलोमीटर का पैदल मार्च निकालना था, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने कड़े इंतजाम किए थे, ऐसे इंतजाम जिन्हें कई लोगों ने असंवैधानिक बताया।

0: 5 किलोमीटर के इस पूरे रास्ते में 7 से ज्यादा जगह सैकड़ों बैरिकेड्स लगाए गए 7 जगहों पर। इन प्रदर्शनकारियों की भीड़ गिरा ना पाए इसलिए इन बैरिकेड्स को बांस के डंडों के साथ आपस में बांधा गया था। तो ये जो बैरिकेड्स हैं लोहे के, इनको आपस में बांस के डंडों के साथ बांधा गया था। यही नहीं, इन सभी बैरिकेड्स के ऊपर कटीले तारे लगाई गई थी। ये देखिए, इन बैरिकेड्स पर कटीली तारे लगाई गई थी, ऐसी तारे जो बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए लगाई जाती हैं। 5 किलोमीटर के इलाके में 1,500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को 24 घंटे तैनात करके रखा गया। इंडिया रिजर्व बटालियन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स और क्विक रिस्पांस टीम्स, ये सारी लगा दी गई। ये पूरा रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस विभाग के सभी बड़े अधिकारियों को सड़कों पर उतारा गया, उन्हें कड़ी कार्रवाई के ऑर्डर्स दिए गए। देखिए, 5 किलोमीटर तक ये कहा गया। पूरे रूट पर ड्रोन्स, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की गई और एक कंट्रोल रूम में स्पेशल टीम को भी बैठाया गया। और ये सब सोचिए सिर्फ इस एक मार्च को रोकने के लिए हुआ। हालांकि प्रदर्शनकारी युवा कुछ और सोच कर आए थे। सबसे पहले वो 8 किलोमीटर का सफर तय करके जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम गए। देखिए, अलग अलग जगहों से, कहीं जगहों से 5 किलोमीटर जा रहे थे और जो जयपाल मुंडा स्टेडियम से आए वो 8 किलोमीटर चल के जो पुराने विधानसभा भवन के खाली मैदान में पहले इकट्ठा हुए। ये तय हुआ कि भीड़ में मौजूद हर युवा शांतिपूर्ण मार्च की रक्षा करेगा। आपको मार्च की रक्षा करना है, ये वहां बार बार कहा जा रहा था। अगर पुलिस बल प्रयोग करेगी तो ये युवा खुद को बचाएंगे और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए या पलटवार किए अपने पैदल मार्च को जारी रखेंगे। सुबह 10 बजे ये पैदल मार्च शुरू हुआ और अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते चुने। इन दोनों रास्तों को पुलिस ने बंद किया था, लेकिन प्रदर्शनकारी धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। कुछ जगह उन्होंने कटीली तारों पर खड़े होकर बैरिकेड्स को लांघा और कुछ जगह उन्होंने सड़क किनारे बने कच्चे रास्तों से आगे बढ़ने की कोशिश की। और यहां आप देख सकते हैं कि जब ये प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे थे तब पुलिस को भी समझ नहीं आया कि वो इन्हें कैसे रोके।
1: छात्र जो है वो बैरिकेड्स के ऊपर है, कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह इस पहले हर्डल से निकला जाए, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। देखिए, हम दूसरी तरफ है बैरिकेड से। पहली दफे एक जो बैरिकेड है ना उसको तोड़ करके अब छात्र आगे बढ़ गए हैं और देखिए, ये प्रशासन को भी उम्मीद नहीं थी। ये देखिए, बैरिकेड्स तोड़ दी है छात्रों ने और जो कटीले तार लगाए गए थे उस बैरिकेड्स को लेकर के छात्र अब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लेकर के जा रहे हैं
2: उसको किनारे करेंगे।
1: तो इसको आप लोगों ने ध्वस्त कर दिया,
2: सब तोड़ देंगे।
3: पुलिसकर्मी बैरिकेड पर चढ़ गए हैं, छात्रों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पर वो रोका जा रहा है छात्रों को।
4: पुलिस रोक रही है सवाल के सीधे और ये अगली बैरिकेडिंग की तरफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, साथ में पुलिस के जवान हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं। बैरिकेडिंग तीसरी टूट गई है
5: तो काफी मशक्कत प्रशासन को करने पड़ी, तमाम बैरिकेड्स टूट गए हैं, अब एक आध बैरिकेड ही बचा हुआ है। यहाँ इन्हें इशारा किया जा रहा है कि आप आगे मत जाएं। तमाम बैरिकेडिंग धरे के धरे रह गए, इन्होंने शॉर्टकट निकाल लिया है कि कैसे अपने मंजिल तक पहुंचना है। ये फर्म थे अपने उस बिलीफ में कि विधानसभा उनकी मंजिल है, वहां तक पहुंचना है।
1: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए अब आखिरी बैरिकेड भी ध्वस्त हो गया है।
0: जब प्रदर्शनकारियों की भीड़ विधानसभा के गेट से करीब 2 किलोमीटर दूर थी तब पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लेने की कोशिश की गई। आरोप है कि यह भी तब हुआ जब प्रदर्शनकारी कोई हुड़दंग या उपद्रव बिल्कुल नहीं कर रहे थे। उल्टा प्रदर्शनकारियों की इस भीड़ ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड के सामने राष्ट्रगान गाया और ये कहा कि पुलिस उनके संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करे। लेकिन जब कुछ युवा पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुए तब पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया और उन पर आंसू गैस का भी इस्तेमाल हुआ। देखिए,
6: चप्पल ये देखिए, ये देखिए, ये भगदड़ यहाँ पे हुई है, ये भगदड़ यहाँ पे हुई है, और ये देखिए, ये यहाँ पे, ये पहली दफे छात्रों को खदेड़ा गया है और पहली दफे बैकफुट पर छात्र आए हैं।
0: लाठीचार्ज के बाद सड़कों पर बिखरी हमारे युवाओं की ये चप्पलें बता रही हैं कि यहाँ सिर्फ चप्पलें नहीं छूटी बल्कि उनका सपना छूटा है। सोचिए, जिस उम्र में इन पैरों को नौकरी और भविष्य की ओर बढ़ना था, उसी उम्र में ये पैर लाठियों से बचने के लिए भाग रहे थे। और ऐसा नहीं है कि ये दृश्य हमने पहली बार देखा। पिछले महीने 20 जुलाई को जब दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, तब भी सड़कों पर बिखरी ये सैकड़ों चप्पलें हमारे युवाओं की व्यथा बता रही थी। और आज भी ये बिखरी हुई चप्पलें हमारी बिखरी हुई व्यवस्था और उससे प्रभावित युवाओं की पीड़ा दिखा रही है। सुनिए,
7: पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हो गया है, पुलिस का लाठीचार्ज हो गया, दो तीन छात्र घायल हो गए हैं। पुलिस का लाठीचार्ज है, यहाँ पर लाठीचार्ज घायल हो गए हैं। यह देखिए, पुलिस का लाठीचार्ज है।
0: पुलिस के लाठीचार्ज के बावजूद प्रदर्शनकारी छात्रों का एक गुट जो है वो विधानसभा के गेट तक पहुंचने में कामयाब रहा, और यहाँ भी उन पर कैसे लाठियां बरसाई गई हैं वो देखिए। पुलिस के मैनुअल और ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है कि अगर कभी बल प्रयोग के लिए लाठीचार्ज करना पड़े तो लाठी कमर से नीचे मारी जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी प्रदर्शनकारी के सिर, गर्दन या कॉलरबोन पर लाठी ना लगे। लेकिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर कई प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने लाठीचार्ज के दौरान सीमाएं लांघी, और अब झारखंड के इस आंदोलन में भी कई प्रदर्शनकारियों ने अपनी चोटें दिखाते हुए ये सवाल पूछा है कि पुलिस उनके सिर पर लाठियां क्यों चला रही थी। और आप भी जब इन तस्वीरों को देखेंगे तो ये सवाल आपके मन में भी आएगा कि इन बच्चों की आखिर गलती क्या थी। अगर आपको इन्हें रोकना था तो आप इन्हें समझाते, जरूरत पड़ने पर हल्का बल प्रयोग करते, लेकिन यहां कैसे कई प्रदर्शनकारी बुरी तरह से घायल हुए उनका दर्द आप खुद देखिए। और ये भी समझिए कि हमारे देश में सरकारों से इंसाफ मांगना आसान नहीं है।
8: भाई देखिए, खून
9: क्या हुआ था।
10: हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग कोई शब्द भी नहीं बोले हैं, अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है। ये अच्छा नहीं कर रहे हैं,
8: लेकिन कोई रिप्सा
10: ये अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं।
11: माथा पूरा तोड़ दिया है, पूरा ब्लड आ गया है, पूरा अभी पट्टी और अथी लगा दिया मलहम। हम पूरा एकदम माथा और कान पूरा दर्द कर रहा है।
12: पुलिस आके एक लाठी बहुत जोर से मारी यहाँ पे, उसके बाद मैंने भागने का कोशिश किया था, मैं नीचे गिर गया तो इधर पैर में भी बहुत चोट लग गया है।
0: जानते हैं इस मार्च में एक छात्रा ने हमसे क्या कहा। उसने कहा कि जो युवा पहले ही आंखों में आंसू लेकर अपने हक के लिए सड़कों पर उतरे हैं, उन्हें सरकार आंसू गैस से और क्यों रुला रही है। सोचिए, इन युवाओं की आंखों में आंसू किसी गैस के कारण नहीं आए थे। ये आंसू बेरोजगारी के थे, ये आंसू टूटे भरोसे के थे, ये आंसू उस मेहनत के थे जिसका उन्हें सही फल नहीं मिला है। आंसू गैस के गोले फिर वहां छोड़े जा रहे थे। और ये भी सोचिए कि जब वही युवा अपनी आंखों के आंसू पोंछकर सत्ता के दरवाजे तक पहुंचे तो उनके हिस्से में फिर आंसू गैस क्यों आई। देखिए,
7: ये देखिए, अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं प्रदर्शनकारियों पर, अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
13: कपड़ा भिगा के रखो, कपड़ा भिगा कुछ रखो, ठीक हो जाएगा।
14: आगे में बहुत ज्यादा
9: आंदोलन हो रहा है। हम लोग तो केवल अपना हक मांगने के लिए खड़े थे। बिना बोले
0: सरकार और पुलिस, उन्होंने इस पैदल मार्च को रोकने की कई कोशिशें की। हजारीबाग से रांची आने वाली बसों को इसलिए रोक दिया गया ताकि ज्यादा युवा विधानसभा के इस घेराव में शामिल ना हो। दूसरे जिलों से भी पुलिस बल को रांची बुलाया गया, जिनकी तैनाती विधानसभा और उसके आसपास की सड़कों पर की गई। लेकिन अपने भविष्य के लिए सड़कों पर उतरे इन युवाओं के हौसले कमजोर नहीं पड़े। इस पैदल मार्च की सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें आंदोलन का नेतृत्व कर रहे लोग भी खुद शामिल हुए। 9 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो, जिनका वजन लगभग 10 किलो से ज्यादा घट चुका था, डॉक्टर्स ने उन्हें सलाह दी थी कि वो पैदल मार्च में शामिल होने ना जाएं। लेकिन यहां पर यह जरूर दिखा कि जो लोग इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो भी मार्च में शामिल हुए। देवेंद्र महतो ने कहा कि अगर वो इस पैदल मार्च का नेतृत्व नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। वो एम्बुलेंस से प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे। भीड़ में शामिल एक एक प्रदर्शनकारी को यही समझाया कि सरकार भले क्रूरता करे लेकिन युवाओं को अपने असली मुद्दे को पकड़ कर रखना है। सुनिए।
14: मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है और मैं नहीं चाहता हूं कि जन्मदिन के मौके पर छात्र को कुछ ऐसा करे कि दिल्ली का जंतर मंतर की तरह कुछ अनहोनी हो। ऐसा छात्र को ना दे जिसके बदन पे खून निकले, जिसके माथा पे चोट आए और ये भीड़ और उग्र हो जाए।
15: कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
14: गिरफ्तारी ठीक है, वो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन आज हेमंत जी का जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर ऐसा तोहफा न दे जो जिससे खून बहे, जिससे अराजकता फैले, जिससे आक्रोश।
16: हम लोग का भारत का इतिहास में पहली बार ऐसा देखे कि ये नोकिले फांटेदार तार का ब्रेकेटिंग लगाया गया था 3-4 लेयर करके। तब मैंने सोचा कि जब मेरा इतना दर्द है, तकलीफ है, पीड़ा है शरीर में, 9 दिन से खाए नहीं है, लेकिन ये स्थिति देख करके हमसे रहा नहीं गया। मैं खुद विधानसभा में उसी हालत में आया, एम्बुलेंस से आया हूँ मैं, और मैं आया तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ छात्र का मांग पूरी करने के बजाय ये सरकार पुलिस या लाठी बरसा रही है, टियर गैस का उपयोग कर रही है, वाटर कैनन का प्रयोग कर रही है। मैंने इतना डर गई है, सरकार कायर जैसा हरकत कर रही है। आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, हम लोग मुख्यमंत्री को जन्मदिन का विश कर रहे हैं और उधर से तोहफा से दिया हम लोग को लाठी बरसाया जा रहा है, खून बहाया जा रहा है, लथपथ कराया जा रहा है। इतना इस तस्वीर को आज पूरा भारत ही नहीं पूरा दुनिया देख करके एकदम शर्मसार हो रहा है। झारखंड बहुत ही बुरा लग रहा है, क्या बताएं। अंजना मैडम, आप हमारी आवाज बने हैं, तभी जा करके अभी बहुत उम्मीद है। किस वर्ष सरकार और पुलिस के पास किस बात का चैलेंज, 1 मिनट में सरकार संतुष्ट कर दे छात्र को, सभी कोई पढ़ने लिखने चले जाएंगे। छात्र का काम नहीं है आंदोलन करना, सड़क पे हो हल्ला करना, सड़क पे प्रदर्शन करना, नारेबाजी करना। छात्र का काम है पढ़ना, छात्र का काम है परीक्षा देना, नौकरी करना, लेकिन उसका नौकरी को बेच दिया जाएगा, क्या करे छात्र, बता दीजिए आप, मजबूर है छात्र।
0: जिस वक्त पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, तब उस वक्त कई छात्र पानी की तेज बौछार के नीचे नाच रहे थे और शायद ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो पुलिस की इस कार्रवाई से झुकने वाले नहीं हैं। जो जज्बा, जो हौसला आज इन्होंने दिखाया है, अभी बहुत सारे लोग इस घटना को मनोरंजन के रूप में देख रहे हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि वाटर कैनन का इस्तेमाल कोई मजाक नहीं है। वाटर कैनन से जो पानी निकलता है उसका प्रेशर 10 से 20 बार के बीच होता है। ये प्रेशर इतना ज्यादा कि इससे हड्डी टूट सकती है, फ्रैक्चर्स हो सकता है। और झारखंड में भी जब पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया तब ये छात्र मस्ती करने के लिए इसमें डांस नहीं कर रहे थे, वो एक संदेश दे रहे थे। इनका कहना है कि पुलिस की कार्रवाई से प्रदर्शनकारी युवाओं का मनोबल ना टूटे, इसीलिए उन्होंने इस तरह अपना विरोध जताया है। और ये भी बताया कि जो प्रदर्शनकारी भूखे प्यासे बैठे हैं जो कई दिनों से तेज बारिश में भी डट रहे हैं, वो वाटर कैनन से डरने वाले नहीं है।
3: ये डांस है, ये कैसा प्रोटेस्ट है? दे आर प्रोटेस्टिंग एंड दीज आर प्रोटेस्टर्स आर लिटरली डांसिंग ऑन द वाटर कैनन। पुलिस ने वाटर कैनन चलाना शुरू कर दिया है और इन प्रदर्शनकारियों को पीछे करने के लिए झारखंड पुलिस ने जब वो बैरिकेड तोड़ करके आए हैं उसके बाद इन पर वाटर कैनन शुरू कर दिया है। ये देखिए डांस करना शुरू कर दिया है इन छात्रों ने, यहाँ पर लिटरली जो है डांस करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर वाटर कैनन चलाए जा रहे हैं, लोग इनसे डरते हैं, अगर लग जाए वाटर कैनन की चोट तो गहरी होती है। ये यहाँ नाचने लगे हैं, ये सिर्फ झारखंड में हो सकता है। ये जेन जी है, ये जनरेशन जी है, ये जनरेशन जी है। पानी का टैंकर
17: बचाने के लिए, गर्मी से बच्चा लोगों को बचाने के लिए सरकार पानी का बौछार कर रही है।
3: ये उपहास कर रहे हैं इसको, इसका भी मजा ले
17: लिया। सरकार हम लोग का सहायता कर रही है गर्मी से,
3: अरे गर्मी से बचाने के लिए।
0: यहाँ बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार प्रदर्शनकारी छात्रों की ज्यादातर मांगे मान चुकी है तो ये पैदल मार्च आज क्यों निकला? तो ऐसा नहीं है। इस सवाल पर प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि सरकार ने मुख्य मांगों पर अब भी सहमति नहीं दी है। सबसे पहली मांग ये है कि जिन परीक्षाओं में धांधली हुई उनकी जांच सीआईडी की जगह केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से कराई जाए। और दूसरी मांग ये है कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो सीजीएल की परीक्षा है उसे भी रद्द किया जाए। और अभी झारखंड सरकार इन दोनों मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। सीबीआई केंद्रीय जांच एजेंसी है, अगर सीबीआई को झारखंड की परीक्षा में धांधली की जांच सौंपी जाती है तो झारखंड सरकार को उसे कई सवालों के जवाब देने होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को डर है और यह आशंका है विपक्ष की तरफ से, चूंकि वो हैं, पहले भी उन पर केस हुआ है कि सीबीआई के जरिए केंद्र सरकार का दखल झारखंड सरकार में बढ़ सकता है और ये दखल ना हो इसीलिए विपक्ष के कई राज्यों में सीबीआई जांच पर अंकुश लगाया गया है। ये नियम बनाया गया कि सीबीआई को इन राज्यों में किसी भी मामले की जांच करने से पहले वहां की सरकार की अनुमति लेनी होगी। ये नियम 5 नवंबर 2020 को झारखंड में भी लागू किया गया जिसके कारण सीबीआई जांच को लेकर पूरी कहानी अब भी फंसी है। यहां ये भी समझिए कि सीबीआई पर छात्रों को इतना भरोसा क्यों है। 2005 से 2026 के बीच कुल 220 परीक्षा धांधली और पेपर लीक के मामले दर्ज किए गए हैं जो 21 अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के थे। इनमें भी नीट जैसी जो बड़ी परीक्षाएं हैं उनकी जांच हर बार सीबीआई को ही सौंपी गई। 2015 के बाद से सीबीआई को पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली के कुल 17 मामले सौंपे गए हैं और यही कारण है कि जब कहीं भी इस तरह की कोई बेईमानी होती है तो छात्रों को लगता है कि निष्पक्ष जांच होगी, तभी होगी जब सीबीआई करेगी और सीबीआई भरोसेमंद है। हालांकि यहां हम इस बात का भी जोड़ना चाहते हैं कि 2015 के बाद सीबीआई ने जिस भी पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली के मामले की जांच की उसमें सीबीआई एक भी मामले में अभी तक आरोपियों को दोषी साबित नहीं कर पाई है। दोषियों को सजा दिलाने का जो सक्सेस रेट है वो अभी आपके सामने है, नहीं के बराबर। अगर सिर्फ 2024 की नीट परीक्षा की बात करें तो उस वक्त भी सीबीआई को इसकी जांच सौंपी गई थी, 90 दिन के अंदर चार्जशीट को तैयार करने में नाकाम रही जिसके बाद उस पेपर लीक के आरोपी जमानत पर बाहर आ गए। और यहां बात सिर्फ सीबीआई की नहीं है, 2015 के बाद ईडी ने भी पेपर लीक के कुल 11 मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच की लेकिन सक्सेस रेट 0। यानी ईडी ने जिन 11 मामलों की जांच की उनमें एक भी मामले में आरोपियों को वो दोषी साबित नहीं कर पाई। और सवाल यही है कि ईडी हो या सीबीआई, प्राथमिकता क्या है? यहां हम कोई सवाल नहीं उठा रहे, भाई जांच तो होनी ही चाहिए। हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि जब न्याय दिलाने की बात आती है तो इस देश के तमाम लोग सीबीआई पर भरोसा करते हैं, अपने मामले की जांच सीबीआई से ये बच्चे कराना चाहते हैं जेन जी। लेकिन सीबीआई का अब तक का सक्सेस रेट परीक्षा के टेस्ट में किसी का भी, किसी पुलिस, किसी सीबीआई, किसी ईडी, सबका वही हाल रहा है और इसी वजह से स्थिति इतनी बिगड़ी है। और ये बात कई बार उठाया गया है कि क्या सीबीआई की जांच में प्रभावशीलता बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। हालांकि यहां ये भी देखिए कि प्रदर्शनकारी छात्र आखिर झारखंड की सीआईडी पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे। आज ही झारखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं एल ख्यांगते, उनको सीआईजी ने गिरफ्तार किया जबकि उन पर शुरुआत से ही सवाल उठ रहे थे। एल ख्यांगते जो है वो 27 फरवरी 2025 को ये जिम्मेदारी तक उनको सौंपी गई थी जब वो झारखंड सरकार के मुख्य सचिव रह चुके थे। रिटायरमेंट के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन पर भरोसा दिखाया, झारखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बना दिया और जब इस आयोग की इन परीक्षाओं में धांधली के आरोप लगे तो दावा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद उनका इस्तीफा नहीं मांगा। यही माना गया कि पिछले मामलों की तरह ये मामला भी रफा दफा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विवाद बढ़ा और फिर एल ख्यांगते ने नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दिया और अब छात्र उनकी गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं, तो आज जाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। यहां यह भी देखिए कि एल ख्यांगते वही अफसर हैं जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि वो शायद चुनावों में व्यस्त होंगे। यानी एल ख्यांगते जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफी करीबी माने गए और यही कारण है कि छात्रों को झारखंड सरकार की सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं है। कुछ तस्वीरें दिखा दीजिए क्योंकि अगर प्रदर्शनकारी छात्र जो है वो सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे दूसरा बड़ा कारण जो है वो अब हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं और आपको सीधा दिखाते हैं। 13 साल में 12 परीक्षा ये साहब पास कर चुके हैं और इसीलिए हमने सोचा कि अभय तिवारी की जो पूरी कहानी है वो आपको जरूर दिखाएं। ये अभय तिवारी, ये वो नाम है जो आज पेपर लीक के मामले में सबसे बड़ी परेशानी इन छात्रों के लिए बना हुआ है। अब आप बस देखते जाइए कौन सा वो एग्जाम है जिसको अभय तिवारी ने निकाला नहीं। पुलिस एसआई लिखित परीक्षा का एग्जाम, फिर नेवी एसएआर का लिखित परीक्षा वो भी निकाल लिया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर सहायक आईआरबी कांस्टेबल लिखित परीक्षा वो भी निकाला, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल परीक्षा वो भी निकाल लिया, नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड का एग्जाम वो भी निकाल लिया, जेएसएससी पीजीटी परीक्षा निकाल लिया, सोचे जेएसएससी सीजीएल परीक्षा, जेपीएससी सहायक वन संरक्षक और जेपीएससी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर ये भी निकाल लिया। आप सोचिए मतलब उसके बाद से झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, पुलिस एसआई पुलिस के सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होता है वो भी इस शख्स ने निकाल लिया लिखित परीक्षा, और नेवी वाला तो हमने आपको दिखाई दिया था। तो ये है इसका पूरा कच्चा चिट्ठा जिसमें आप देख रहे हैं कि 13 साल में ये एक शख्स कितने एग्जाम्स निकालता है और आखिर छात्रों का इस शख्स पर इतना गुस्सा क्यों है। क्योंकि ये उस सिस्टम का एक प्रतीकात्मक चेहरा है, एक ऐसा व्यक्ति जो 12 एग्जाम्स निकाल लेता है, या तो बहुत बड़ा प्रोडिजी इंटेलिजेंट जीनियस आदमी या फिर घोटाला। और फिर घोटाले की जब बात सामने आई है तो आइए आपको जो पूरी प्लानिंग है वो जरा यहां पर दिखा देते हैं। और पूरा परिवार देखिए, परिजन है ये इनके, तो सिर्फ अभय तिवारी ही 12 एग्जाम नहीं लगा रहा निकाल रहा था, ये देखिए मौसा के भाई का बेटा बापी कुमार मिश्रा, ये बीएसओ रैंक 124 लाते हैं ये वाला। उसके बाद से आप देख लीजिए, सबसे पहले तो अभय तिवारी है ही, दूसरे नंबर पर आते हैं अभय तिवारी का साला, झारखंड में जेएसएससी सीजीएल बीएसओ में रैंक पाने वाला। आपको पता है जितने छात्रों से वहां पर बात हो रही है वो छात्र बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि नेताओं के परिवार में एक हर कोई एग्जाम निकाल लेता है, एक एक परिवार में 6-6, 8-8, 10-10 लोग एक बार में एग्जाम निकाल ले रहे हैं नेताओं के और इन लोगों के जो कि झारखंड में ये जेएसएससी सीजीएल बीएसओ में रैंक पाने वाला है, मतलब अधिकारी। अब इसके परिवार का इसका पूरा नेटवर्क देखिए कि कैसे एक ही परिवार के इतने लोग निकालते हैं। उसके बाद से देखिए ममेरा भाई, तो इस पर आपको हाईलाइट करा देते हैं, एक तो साले से आपकी पहचान हो गई। फिर देखिए ममेरा भाई, ये भी एग्जाम निकाल लेता है, उपेंद्र मिश्रा नाम है और ये बीएसओ रैंक 51 निकाल लेता है। तो एक ममेरा भाई जो है वो भी एग्जाम निकाल लिया है। उसके बाद आ जाइए चाचा के साढ़ू का बेटा, ये है तेज नारायण पंडित, बीएसओ रैंक 68, ये भी जेएसएससी सीजीएल में ये देखिए एग्जाम निकाल लेते हैं। अब आ जाइए नीचे आइए, साले का मौसेरा भाई, तो एक और रिश्ता निकला, तो साले साले के मौसेरे भाई का भी विक्रम पांडे जो झारखंड में जेएसएससी सीजीएल बीएसओ में रैंक पाने वाला बीएसओ रैंक 127, ठीक है। अब यहां पे आ जाइए अभय तिवारी की भाभी, भाभी का भी हो जाता है और यही बच्चे बता रहे हैं अभय तिवारी की भाभी का भी झारखंड में जेएसएससी सीजीएल बीएसओ में रैंक पाने वाली, ठीक है। अब आ जाइए इनके साले की तो हो ही चुकी थी, साले के मौसेरे भाई की हो चुकी थी, फिर साली की भी हो गई। अभय तिवारी की साली है, ये भी जेएसएससी में सीजीएल में बीएसओ में रैंक पाने वाली है। उसके बाद हमने मौसा के भाई का बेटा आपको दिखाई दिया था भाभी कुमार मिश्रा, और ये बहनोई का भांजा, ये क्यों पीछे रहे, तो बहनोई का जो भांजा है वो भी आप देखिए, वो भी निकाल लेते हैं रैंक, और वो भी बीएसओ रैंक 143 झारखंड में जेएसएससी, ये जो सीजीएल है उसमें वो भी एग्जाम निकाल लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने आपको इस परिवार के 10 लोगों का दिखा दिया जिसके तार शख्स से जुड़े थे, और इसीलिए छात्रों का सबसे ज्यादा गुस्सा ऐसे लोगों के खिलाफ है जो सिस्टम में परीक्षा करा रहे थे, और इस परीक्षा के जरिए आप सोचिए कि वो क्या क्या धांधली कर रहे थे, वो क्या कुछ नहीं कर रहे थे। और अब आपको केरल में 36 दिन से चल रहे प्रोटेस्ट के बारे में बताएंगे, जहां आंदोलनकारियों ने अनोखा तरीका अपनाते हुए घास और मिट्टी खाकर विरोध जताया है। इन आंदोलनकारियों का कहना है कि उन्होंने दिन रात एक करके कठिन परीक्षा पास की, मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाई और सरकारी शिक्षक बनने का सपना देखा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जंतर मंतर से लेकर रांची, रांची से लेकर अगर केरल में ये प्रदर्शन हो रहे हैं तो वहां की भी जरूरत है दिखाने की। जानते हैं बदले में सिर्फ सरकारी दफ्तरों के चक्कर और लंबा इंतजार इन बच्चों। ये तस्वीरें केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की है। यहां सरकारी नौकरी की आस लगाए बैठे पढ़े लिखे युवाओं ने विरोध का ऐसा तरीका चुना जिसने हर किसी को हैरान किया। मामला केरल लोक सेवा आयोग की लोअर प्राइमरी स्कूल टीचर यानी एलपीएसटी परीक्षा से जुड़ा है। मई 2025 में रैंक लिस्ट जारी हुई थी, लेकिन परीक्षा पास करने वाले ये होनहार युवा अपनी नियुक्ति का इंतजार करते करते थक चुके हैं। इसकी वजह से पिछले 36 दिनों से केरल सचिवालय के बाहर लगातार आंदोलन चल रहा है। 36वां दिन है ये। इस आंदोलन में वलारमती एस पिछले 12 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा पास करना एक सपने जैसा था, अच्छी रैंक भी आई, लेकिन अब लोग लगातार पूछ रहे हैं कि नौकरी कब मिलेगी। ये अनिश्चितता हमें मानसिक तनाव और गहरे डर में धकेल रही है, और इसी वजह से सोचे 36वें दिन यह आंदोलन। इस आंदोलन के दौरान युवाओं ने सचिवालय के बाहर जमीन पर बैठकर घास और मिट्टी खाई। इसके पीछे उनका दर्द साफ था, वो सिस्टम को यह बताना चाहते थे कि परीक्षा पास करने के बावजूद उन्हें इस हद तक लाचार कर दिया गया है कि जब उनके पास भूख से तड़पने के अलावा कोई चारा बचा नहीं है।

0: Now it's our condition, sitting here on the street, day and night. We feel so sad.
1: It's been 36 days. We are protesting in front of the secretariat. There is nothing happened.
2: इसी महीने 4 अगस्त को एयर इंडिया की एक फ्लाइट थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही थी. एयर टर्बुलेंस की वजह से वो हवा में अचानक 300 फीट नीचे आ गई. इस घटना में कई यात्रियों को गंभीर चोटें भी आई थी. डीजीसीए ने एसओपी के तहत इसकी जांच करवाई. तो जानते हैं क्या पता चला. पता चला कि फ्लाइट का एक पायलट ड्रग्स के नशे में था. इस खबर ने हवाई यात्रियों को चिंता में डाल दिया है. फ्लाइट में पायलट की एक मामूली सी गलती यात्रियों की जान ले सकती है, और एक दो नहीं अनेकों जान. और यहां तो एयर इंडिया का पायलट ड्रग्स के नशे में प्लेन उड़ा रहा था. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के मुताबिक इस घटना के बाद तय एसओपी के तहत दोनों पायलट्स का डोप टेस्ट किया गया. इसमें दोनों पायलट्स को साइको एक्टिव सब्सटेंस स्क्रीनिंग टेस्ट से गुजरना पड़ा. इस टेस्ट में एयर इंडिया फुकेट दिल्ली फ्लाइट के पायलट इन कमांड यानी मुख्य पायलट को ड्रग्स टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है. हालांकि उनका दोबारा टेस्ट भी किया जा रहा है. इस रिपोर्ट ने डीजीसीए के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है. अब उसे यह पता लगाना है कि जो फ्लाइट हवा में 300 फीट जो है अचानक नीचे आ गई, उसका पायलट नशे में आखिर क्यों था. डीजीसीए ने इसी वजह से इस केस को गंभीर घटना की श्रेणी में डाला है, जिसका मतलब यह है कि अब इस मामले की जांच एएआईबी यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो करेगा. ऐसा करना जरूरी भी था. दरअसल जिस फ्लाइट का पायलट आरोपों के मुताबिक ड्रग्स के नशे में चूर था, उसमें करीब 137 यात्री थे. 137 जिंदगियां, 3 नवजात, 8 क्रू मेंबर्स सवार थे. ये कितनी चिंता की बात है कि ड्रग्स के नशे में धुत पायलट के हाथों में इन मासूमों की जिंदगी की डोर थमा दी गई थी. जिस फ्लाइट में यह घटना हुई है उसके यात्रियों का बुरा हाल था. फ्लाइट केबिन की कुछ तस्वीरें सामने आई है, जिसमें फ्लाइट की छत से बड़े बड़े क्रैक्स नजर आए. फ्लाइट केबिन के एसी वेंट, जिसे गैस्पर वेंट भी कहते हैं, उसमें भी क्रैक्स आ गए थे. यही नहीं, फ्लाइट केबिन के ओवरहेड कंपार्टमेंट, जिसमें केबिन जो लगेज रखा जाता है, उसके दरवाजे उखड़ गए थे. टर्बुलेंस के समय इनमें रखा गया सामान यात्रियों पर आकर गिरा था. एयर टर्बुलेंस का सामान्य सा मतलब यह है कि जिस दिशा में विमान उड़ रहा है वहां की हवा के बहाव में अचानक जो है बदलाव आना, और जिसकी वजह से रफ्तार में किसी भी बदलाव जो है वो किसी भी तरफ हो सकता है, किसी दिशा में. ऐसा होने पर विमान में झटके महसूस होते हैं. कई बार विमान के ऑल्टीट्यूड में गिरावट आती है, यानी विमान ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरता है, जैसा कि फुकेट दिल्ली फ्लाइट में हुआ. मौसम खराब होने पर ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन क्रू मेंबर्स पहले ही सचेत कर देते हैं. लेकिन जब अचानक ऐसी स्थिति आती है तो विमान में बैठे यात्रियों को गंभीर चोटें आ जाती हैं. फुकेट दिल्ली फ्लाइट के करीब 17 यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं. कुछ यात्रियों ने बताया कि टर्बुलेंस सुबह के वक्त हुआ था, इसलिए ज्यादातर यात्री उस वक्त सो रहे थे. जैसे विमान 300 फीट नीचे गिरा, उस दौरान कई यात्रियों से जो उनके सिर थे वो विमान की छत से टकराए और वो विमान के फर्श पर आ गिरे. दिल्ली में विमान लैंड होने के बाद चोटिल यात्रियों को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया. कुछ यात्रियों ने तो यहां तक बताया कि उन्हें विमान का पायलट नशे में लग रहा था. उन्होंने बताया कि लखनऊ और हैदराबाद में लैंड करने का विकल्प मिलने के बावजूद वो घायल यात्रियों को लेकर दिल्ली आया. सुनिए.
3: ये दिखता है नेग्लिजेंस ऑफ द स्टाफ जो एयरलाइंस में पायलट हैं, और नेग्लिजेंस ऑफ जो सिस्टम है, क्योंकि उनको पता है कि ये करके हम बच सकते हैं, उसीलिए उन्होंने ये किया है. उनको पूरा का पूरा ये कॉन्फिडेंस है कि हम तो निकल जाएंगे.
4: जब फ्लाइट नीचे जा रही थी तो मेरे को सबसे ज्यादा चिंता हुई बच्चों की. ये हमारे पास में जो बैठा हुआ था, मेरा दोहेता बैठा हुआ था, मैंने जोर से उसको पकड़ के बेल्ट लगाई, उसमें वो हैंडल मेरे यहाँ पे घुस के रिब्स में दो में थोड़ी चोट आई है. पर ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है, इतना मतलब फैमिलीज, इतने लोग बैठे हुए, 3 साल की बच्ची उछल के इतना पीछे तक चली गई, ये कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं यार. छोटे छोटे इंस्टेंसेस होते हैं जो जिंदगी भर के लिए हमारे बच्चे अब कह रहे हैं कि हमको बैठना ही नहीं कभी फ्लाइट में.
2: फिलहाल विमान दोनों पायलट और क्रू मेंबर्स की उड़ान पर रोक लगा दी गई है, और जांच एजेंसियों ने फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को भी जब्त किया है. मुख्य पायलट का ड्रग्स के नशे में पाया जाना एक बहुत बड़ी लापरवाही है. सच ये है कि हर पायलट की प्री फ्लाइट और पोस्ट फ्लाइट जांच होती है. लेकिन क्या जांच होती है? पायलट के लिए नियम यह है कि वो उड़ान के 12 घंटे पहले तक शराब का नशा नहीं कर सकता. यानी उड़ान के दौरान शरीर में अल्कोहल की मात्रा शून्य होनी चाहिए। इसके लिए प्री फ्लाइट ब्रेथ एनालाइजर जो है ना वो टेस्ट करवाया जाता है, वो अनिवार्य है, मैंडेटरी है। इसी तरह से भारत के बाहर से आने वाली फ्लाइट्स के पायलट्स का पोस्ट फ्लाइट ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया जाता है। अब हम एक ऐसी खबर आपको मध्य प्रदेश की बताएंगे जो बताती है कि सिस्टम की नजर में मृत इंसान की कीमत कचरे से ज्यादा कुछ नहीं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक महिला के शव को कचरा ढोने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली से ले जाया गया। छतरपुर के एक सिविल अस्पताल का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें अस्पताल से महिला के शव को ले जाने के लिए कचरे वाली गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। नियमों के हिसाब से शव को ले जाने के लिए शव वाहन का इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन अस्पताल ने शव को किसी कचरे से कम नहीं समझा और इसीलिए यह खबर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को देखनी चाहिए। मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य बजट करीब 24,000 करोड़ रुपए का है और इतने भारी भरकम स्वास्थ्य बजट वाले राज्य में ऐसी घटना सामने आने से हड़कंप मचा है। सभी अधिकारी एक दूसरे से यही सवाल कर रहे हैं जिसका जवाब आम लोग उन्हीं से पूछना चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक मृतक के परिजनों ने नगर पालिका से शव वाहन देने की अपील की थी लेकिन उन्हें वो नहीं दिया गया। ऐसे में अस्पताल में शव भेजने की जल्दबाजी में कचरा उठाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली मंगवा ली गई और उसी में शव लादकर भेज दिया गया। अब से कुछ घंटे पहले दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में 7.4 की तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के झटके कोलंबिया के पड़ोसी देश इक्वाडोर और वेनेजुएला तक महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके इतनी तेज थे कि कई इमारतों को नुकसान हुआ है। अब तक करीब 20 लोगों के मारे जाने की खबर है, सैकड़ों लोगों के घायल होने की आशंका है। भूकंप का केंद्र कोलंबिया की राजधानी बोगोटा से करीब 400 किलोमीटर दूर सैन होजे जो जयपामा में पाया जा रहा है। और इसी के साथ हम रुक रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट में एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।

0: मैं करता हूँ ना,
1: मैं करूँगा।
2: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
0: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
2: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
0: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
2: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: टैंकर ने घुसकर मारी अलमारी को टक्कर।
2: आश्चर्यजनक, एक खरोच भी नहीं आई अलमारी पे। कैसे कदम?
1: क्रॉसबॉन, सुपर स्ट्रॉन्ग।
2: सुपर स्ट्रॉन्ग
1: और मॉइस्चर प्रूफ।
3: वारंटी
1: 15 साल की।
2: कदम
1: सर प्लीज
2: ऑर्डर करो और मेरे घर भिजवाओ। वार्डरोब्स क्रॉसबॉन से ही बनेंगे।
4: क्रॉसबॉन HGMR Max, फर्नीचर बने स्ट्रॉन्ग, चले वेरी वेरी लॉन्ग।
5: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: रांची में आंदोलनकारी छात्र आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। पुलिस ने विधानसभा घेरने जा रहे छात्रों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कटीले तारों की बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन जब छात्र इन्हें तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगे तो पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े।
3: अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ये देखिए अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, सरकारी पर अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
2: जेपीएससी और झारखंड सीजीएल धांधली मामले में अब तक आंदोलन शांतिपूर्ण ही चल रहा था, लेकिन आज पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को पीछे हटाने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, लेकिन पुलिस ने पानी की बौछार की तो छात्र डांस करने लगे।
4: ये देखिए डांस करना शुरू कर दिया है इन छात्रों ने, यहाँ पर लिटरली जो है डांस करना शुरू कर दिया है।
2: जंतर मंतर स्टाइल में पुलिस ने छात्रों को पीछे हटने को कहा तो वो राष्ट्रगान गाने लगे, जिससे पुलिस छात्रों के आगे मस्त दिखी। रांची पुलिस प्रदर्शनकारियों के साथ साथ चलती रही, जिससे कोई अप्रिय घटना ना हो, लेकिन जब छात्र विधानसभा मार्ग के उस पॉइंट तक पहुंच गए जिसके आगे जाना संभव नहीं था तो वहीं पर जम गए। विधानसभा के पास ये पुलिस का आखिरी बैरिकेड था, इसके आगे किसी भी हालत में छात्रों को नहीं जाने दिया जा सकता था, लिहाजा पुलिस के जवान खड़े हो गए। कुछ छात्रों ने बैरिकेड्स पार करने की कोशिश की तो पुलिस ने डंडे के सहारे उन्हें भगाने की मशक्कत की। हालांकि कुछ प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि पुलिस ने लाठी चलाई जिससे उनको चोट लगी, वहीं पुलिस कह रही है कि छात्रों को तितर बितर करने के लिए बहुत हल्का बल प्रयोग करना पड़ा।
5: बहुत ही कम प्रयोग किया गया था लाठी का, जब कुछ लोगों द्वारा बैरिकेडिंग आखिरी बैरिकेडिंग वहाँ पे जाने का प्रयास किया गया जहाँ पे 163 की धारा ऑलरेडी लगी हुई है, तब थोड़ा बहुत लाठी का प्रयोग किया गया था, बहुत ही मिनिमम यूज। नहीं, हम कॉन्टिन्यूसली छात्रों से वार्तालाप कर रहे हैं।
2: रांची में जब छात्र बैरिकेड्स पर चढ़ गए तो पुलिस ने लाठियां लहराई, कुछ लाठियां बैरिकेड्स पर चलाई जिससे छात्र नीचे उतर जाएं और बैरिकेड्स छोड़कर चले जाएं। खास बात रही कि रांची में छात्रों ने कोई हिंसक गतिविधि नहीं की, ना तो कानून के इकबाल को चुनौती दी। पुलिस ने जब जब वाटर कैनन चलाकर छात्रों को भगाने की कोशिश की तो ये लोग पानी की बौछार पर झूमने लगे, जिससे आंदोलन हिंसक नहीं हुआ। छात्रों का सैलाब जिस भी रास्ते से निकलने की कोशिश करता पुलिस उन्हें रोक देती। कुछ छात्रों ने पुलिस को चकमा देने के लिए रास्ता बदला जिससे वो विधानसभा के गेट तक पहुंच सके, लेकिन उन्हें भी वापस लौटना पड़ा।
6: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है, कई बैरिकेटिंग बनाए गए थे, कटीले तारों वाली बैरिकेटिंग भी बनाई गई थी, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। हर बैरिकेटिंग को इन्होंने स्केल डाउन कर दिया, उसको तोड़ के तमाम बाधाओं को तोड़ते हुए ये आगे बढ़ गया है। और देखिए हाथों में तिरंगा लेकर बिल्कुल विधानसभा के पास, हाईकोर्ट के प्रमाइसेस के पास ये पहुंच चुके हैं, लेकिन अब शायद।
2: रांची छात्र आंदोलन झारखंड लोकसभा आयोग की धांधली, झारखंड सीजीएल की गड़बड़ियों के खिलाफ हो रहा है। छात्रों की एक ही मांग है कि इन भर्ती परीक्षाओं की धांधली की जाँच सीबीआई से कराओ, लेकिन सवाल है कि पेपर लीक और शिक्षा में सुधार के लिए छात्रों को बार बार आंदोलन का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है। आशुतोष मिश्रा और सत्यजीत कुमार के साथ शशि भूषण सिंह, रांची आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। पूछा, किसने दिया छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश? चढ़ावा चोरी को लेकर पीएम को घेरा नड्डा का पलटवार। माहौल खराब कर रहे हैं राहुल। परीक्षा धांधली के विरोध में रांची में छात्रों का धरना। विधानसभा मार्च के दौरान लाठीचार्ज। हेमंत सोरेन ने प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कार्रवाई का दिया भरोसा। देवेंद्र महतो बोले, अब नहीं होगी सरकार से बात। रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी ने कल झारखंड बंद बुलाया। आज सीएम के घर पर किया था प्रदर्शन। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन गिरफ्तार। ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक कुदरत का कहर। चमोली में बह गया पुल। बीजेपी सांसद बलूनी बोले, राहत बचाव पर सरकार की नजर। रायगढ़ में 9 की मौत। गुजरात असम में भी आसमानी आफत। और परमाणु हथियार के बहाने दबाव बनाने में जुटे ईरान का ट्रंप को तगड़ा जवाब। का हॉर्मुज तभी खुलेगा जब अमेरिका देगा हर्जाना और हटाएगा प्रतिबंध।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर, आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक झारखंड छात्र आंदोलन की, जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और अनियमितताओं के विरोध में आज छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया। सरकार के मंत्रियों और छात्र प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की वार्ता विफल होने के बाद आंदोलन के 17वें दिन हजारों की संख्या में छात्रों ने रांची में विधानसभा की ओर कूच किया। छात्रों में इस कदर आक्रोश गुस्सा दिखा कि पुलिस बैरिकेड उखाड़ फेंके छात्रों ने। प्रदर्शनकारी छात्र रांची में झारखंड विधानसभा के गेट के पास तक पहुंच गए। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। छात्र अपनी मांग पर अड़े रहे। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने की मांग छात्र कर रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग भी। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इस छात्र आंदोलन ने झारखंड की सोरेन सरकार को बड़ी टेंशन में डाल दिया है।
1: अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ये देखिए अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
2: झारखंड में छात्रों का आक्रोश, विधानसभा तक विरोध।
3: ये देखिए बैरिकेड्स तोड़ दी है छात्रों ने।
4: तोड़ेंगे जितना लेवल पे होगा, सिंहासन खाली करो, अब जनता आ रही है।
2: लाठीचार्ज, आंसू गैस, पानी की बौछार, रांची में आर पार।
1: ये देखिए अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
4: ऐसा किसान सरकार नहीं खुश हो रही है।
2: विधानसभा गेट तक पहुंचे छात्र बैरिकेड टूटे, झुकेगी सरकार।
5: फिर से वाटर कैनन चलाना शुरू कर दिया है।
6: बच्चों का सीट बेच के और नौकरी उन लोग खा जा रहे हैं, तो अवसर की समानता कहाँ है?
2: पेपर लीक और परीक्षा में धांधली, छात्रों ने छेड़ी अगस्त क्रांति।
7: अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है,
8: सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है।
2: आंदोलन से छात्रों ने दिखाई ताकत, सरकार मानेगी हर एक शर्त।
9: आपकी सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाहती है।
10: युवा को पलटी कर देते हैं वायु, वायु को कोई रोक नहीं सकता।
2: 17 दिन से जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर रांची के जयपाल मुंडा स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन और अनशन कर रहे छात्रों का सब्र टूटा तो आक्रोश से भरे छात्र सीधे विधानसभा के लिए कूच कर गए। उसके बाद जो हुआ तस्वीरें आपके सामने। छात्र आंदोलन की सांधी में बैरिकेड भी उखड़ गए और विधानसभा को घेरने के लिए की गई कटीले तारों की बाड़बंदी भी छात्रों ने उखाड़ फेंकी। प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, फिर भी छात्रों का सैलाब नहीं थमा तो वाटर कैनन यानी पानी की बौछारें बरसानी पड़ गई। तो आखिर में पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी डाले।
1: ये देखिए अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
2: अब छात्र अड़े हैं और सुरेंद्र सरकार के खिलाफ डटे हैं, अपनी शर्तों के लिए, अपनी मांगे मनवाने के लिए। आज हम आपको रांची आंदोलन में विधानसभा घेराव की पूरी टाइमलाइन दिखाएंगे। ये भी बताएंगे कि प्रदर्शनकारी छात्रों और सुरेंद्र सरकार के बीच बात कहां अटकी है, सरकार क्या कह रही है और छात्र किस बात पर अड़े हैं।
11: हम लोग डरने वाले नहीं है, सरकार का एक ही विकल्प है, हमारा मांग को पूरी करे, अन्यथा सरकार अपना कुर्सी नहीं बचा पाएगी, उसका कुर्सी पर खतरा है।
12: किसी भी शर्त पर यहाँ से नहीं हटने वाले जब तक सरकार घोषणा नहीं कर दे कि सीजीएल रद्द हो गया।
13: ये मेरे पोस्टर का मतलब ये था कि हम लोग स्लैब को कोई फिल्टर नहीं जो हमारा फ्यूचर वो स्किप कर दे।
2: रविवार को झारखंड सरकार के मंत्रियों की विशेष कमेटी और प्रदर्शन कर रहे छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीन दौर में करीब 5 घंटे तक मैराथन वार्ता चलती, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती। और फिर छात्र 10 अगस्त को पहले से घोषित विधानसभा घेराव करने का फैसला लेते। छात्रों को सुबह 10 बजे से पहले पुरानी विधानसभा के पास जमा होने के लिए कहा जाता है, क्योंकि मार्च पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा तक का था। ऐसे में छात्र पोस्टरों और बैनरों के साथ पुरानी विधानसभा पहुँचने लगते।
14: हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहां से मार्च की शुरुआत होनी है। आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार सीजीएल रद्द करेगी?
15: क्यों रद्द करना पड़ेगा? हम लोग आंदोलनरत इसी कारण से है कि ये परीक्षा रद्द होगा, आगे से आने वाली सभी परीक्षाएं पारदर्शी रूप से ले जाएंगी, सीटें नहीं बिकेंगी, पेपर लीक नहीं होगा।
16: सरकार से हमारी मांग है जैसे सीजीएल को रद्द करना होगा, सीबीआई जांच करनी होगी।
14: और देखिए छात्र यहाँ सड़क पे बैठ गए हैं, छात्रों की तरफ से नारेबाजी हो रही है।
17: कितनों ब्रेक कटी, कितनों काटा लगा ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 26 वर्ष से हमारा हक मारा जा रहा है, इस बार हम लोग नहीं छोड़ेंगे सरकार।
18: सरकार जब तक हम लोग को लिखित नहीं देती है और जब तक सीबीआई सीआईडी जांच नहीं करवाती है,
3: तब तक हम लोग रोड पे रहेंगे, सड़क पे रहेंगे।
0: और जब रांची में प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा घेराव के लिए निकले तो पूरे दिन हंगामा होता रहा। छात्र दिन भर विधानसभा के बाहर जमे रहे। शाम को भी छात्रों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्र इस बात पर अड़े रहे कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा, नहीं सुना उनकी बात जाएगी, तो पीछे नहीं हटेंगे। तो आइए दिखाएं आपको छात्रों के विधानसभा घेरने की पूरी टाइमलाइन।
18: और पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा के लिए आंदोलनकारी छात्रों का मार्च शुरू हो जाता है। छात्र विधानसभा तक ना पहुंचे इसके लिए बैरिकेडिंग की जाती है और कटीले तारों की बाड़बंदी भी कर दी जाती है। पुलिस बैरिकेडिंग से प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन छात्र बैरिकेडिंग को लांघ कर आगे बढ़ जाते हैं। आपको बता दें कि विधानसभा तक के रास्ते में 6 जगह बैरिकेडिंग की गई।
19: हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के वंशज हैं, झारखंड के लिए वो लड़ सकते हैं तो हम लोग भी लड़।
20: हमारे 3 मांगे हैं सर, तो तब तक यहाँ से नहीं लेगा जब तक उसने अपना जितना मांग रखा है पूरा ना हो जाए।
18: प्रदर्शन में शामिल एक छात्र गुलाब लेकर आते हैं। आज तक से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं ये फूल हमारे प्रिय सीएम हेमंत सोरेन के लिए लाया, जिनके कानों पर 16 दिन से जू नहीं रेंग रही है। हम हर कांटे का जवाब फूल से देंगे।
21: तरीका सबसे बेहतर तरीका है, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का एक प्रतीक भी है कि हम इतने शांतिपूर्ण हैं कि हम कांटों का जवाब फूल से दे सकते हैं।
18: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्रनाथ महतो एम्बुलेंस से विधानसभा के लिए रवाना होते हैं। देवेंद्रनाथ महतो स्ट्रेचर पर बैठकर मार्च में शामिल होते हैं। ऐसे में महतो को छात्रों ने अपने कंधे पर उठा लिया और फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने तिरंगा लहराकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। आप देख सकते हैं कि देवेंद्रनाथ महतो स्ट्रेचर पर है और प्रदर्शनकारियों ने स्ट्रेचर को कंधे पर उठाया हुआ है। महतो के हाथ में हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन की तस्वीर भी है। प्रदर्शनकारी जैसे ही आखिरी लेयर की बैरिकेडिंग तक पहुंचे, पुलिस वाटर कैनन एक्शन शुरू कर देती है। ऐसे में छात्र पानी में जमकर डांस करने लगे और कहने लगे, और चलाओ और चलाओ।
22: ये जेन ज़ी क्यों बहुत मारक प्रचार करती है? आपको ये तस्वीर याद है, बहुत मशहूर फिल्म का है, हेमंत सोरेन की तस्वीर लगाई है, लिखा है बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अब आप इस तरह के व्यंग अगर लेकर के आएंगे, इस व्यंग का कोई मार है क्या? ये वो एक नाम अभय तिवारी, वो उनको एस्ट्रोनॉट में भी दिखा दिया है, अभय तिवारी को आईपीएस भी बना दिया है, अभय तिवारी को एसडीएम भी बना दिया गया है, इसरो में साइंटिस्ट भी बना दिया गया है, डॉक्टर भी बना दिया गया, नेता भी बना दिया, मुख्यमंत्री, झारखंड का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया।
23: वो जस्ट एक मोहरा है, असली विलन अभी भी पर्दे के पीछे है सर।
24: पीछे सर असली विलन।
25: मेरे दिल में सबसे ज्यादा अगर दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, तो मेरा भूख हड़ताल से ज्यादा दर्द हुआ उस कांटेदार तार का जाली से, एक आते आते टूट गया। ये 3 लेयर का ब्रेकडिंग था, ये 3 लेयर का ब्रेकडिंग आते आते ये छात्र लोग इससे हम लोग निकल जा रहे हैं।
18: प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा भवन के निकट पहुंच जाते हैं। अंतिम बैरिकेडिंग तोड़े जाने पर पुलिस प्रशासन की ओर से छात्रों पर लाठी चार्ज किया जाता है। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच भिड़ंत हो जाती है और इस दौरान पुलिस भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़ देती है।
22: प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
26: आंसू गैस, लाठी चार्ज, वाटर कैनन सब का प्रयोग किया जा रहा है हमारे आवाज को दबाने के लिए। ये सरकार डर गई है, कायर सरकार है। जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है।
18: पुलिसिया सख्ती और वाटर कैनन की बौछारों को देखते हुए छात्र रणनीति बदलते हैं और शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। प्रदर्शनकारी छात्र मुख्य मार्ग छोड़कर झारखंड उच्च न्यायालय के बगल से खेतों के रास्ते से विधानसभा की ओर तेजी से बढ़ने लगे।
22: मैं उसी रास्ते पर देखिए, जो छात्र पार, मैंने कहा था ना बैरिकेड पार कर लिया है, अब वो खेतों के रास्ते विधानसभा की ओर पहुंचने लगे हैं। जहां पर मैं आई आपको बिल्डिंग दिखाता हूं, ये विधानसभा का इलाका है और ये सारे खेतों के रास्ते, वो देखिए वो विधानसभा है और ये जितने छात्र हैं एक एक करके। अब इस इलाके में क्या है, दो बैरिकेड के बीच में जहां सुरक्षा व्यवस्था है, उन्होंने कहा छोड़िए आपको पुलिस जो है
4: वो बैरिकेड के पास रहेगी, ये खेतों के रास्ते निकल लिए और देखिए रेला।
18: आखिरी बैरिकेडिंग के पास जब छात्र पहुंचते हैं तो पुलिस अपील करती है कि छात्र पीछे लौट जाएं, लेकिन छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं होते।
5: जो कार्रवाई थी वो खत्म हो चुकी है, लिहाजा पुलिस की तरफ से ऐलान किया जा रहा है, एसएसपी ने खुद अनाउंस किया है और अनाउंस किया जा रहा है कि अब जब आप विधानसभा मार्च आपका था, आप यहाँ पे अपने बातों को रखने के लिए आए थे, विधायक जो बैठते हैं, मंत्री जो बैठते हैं, जो डिसीजन मेकर हैं लोकतंत्र के मंदिर में जो बैठते हैं, उनसे जब आप बातें करने आए थे, तो जब सत्र खत्म हो गया आज का, तो क्यों नहीं आप वापस चले जा रहे हैं।
18: प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा के गेट पर पहुंच जाते हैं जहां भारी पुलिस बल तैनात रहता है, लेकिन छात्रों का प्रदर्शन जारी रहता है और वो अपनी मांगों पर अड़े रहते हैं। अलग अलग वेश में प्रदर्शनकारी नजर आते हैं। इस प्रदर्शन को देखिए, ये स्पाइडरमैन बन के आया है।
22: वाटर कैनन थे, टैंकर थे, सबका पानी खाली हो गया। बाकायदा छात्रों ने रेन डांस का मजा लिया और अब इस सड़क से आगे ये जो बैरिकेडिंग, यही रास्ता नई विधानसभा है। सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर ही यहाँ पर विधानसभा का प्रमुख द्वार है और उसी के पहले देखिए स्पाइडरमैन भी दिख गए यहाँ पे। जंतर मंतर से बहुत सारी सिमिलैरिटी दिखाई पड़ती है, स्पाइडरमैन भी है, बैटमैन भी है, कुच्चू पुच्चू वाले पोस्टर भी है।
18: रांची में सीएम आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ाई जाती है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों से झारखंड सरकार की 3 दौर की बातचीत नाकाम हुई है। सरकार का दावा है कि 95 से 98% मांगे मान ली गई हैं, लेकिन जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और जेपीएससी भर्ती धांधली की सीबीआई जांच की मांग ना माने जाने तक प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं।
6: एक हाई लेवल डेलीगेशन, हाई लेवल कमेटी बनाकर, 4 मंत्रियों की एक कमेटी बनाकर संवाद का रास्ता खोला था। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि यदि यह आंदोलन सिर्फ छात्रों का होता तो आज प्रदर्शन की जरूरत नहीं थी। सरकार ने 95% मांगे बच्चों की मान ली थी।
18: इस प्रदर्शन के बीच झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव और जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते को ब्लैक लिस्टेड कंपनी TDPL को परीक्षा का ठेका देने के लिए CID ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन छात्रों का कहना है कि जब तक सोरेन सरकार उनकी एक एक मांग नहीं मान लेती, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। आज तक ब्यूरो।
0: क्या हमारे देश के नौजवानों के पास अब आंदोलन ही एकमात्र विकल्प बचा है? सरकारी नौकरियों में धांधली, पेपर लीक, खस्ताहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर शहर शहर नौजवान और छात्र विरोध प्रदर्शन को मजबूर हैं। क्या सरकार जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के बाद रांची प्रदर्शन से सबक सीखते हुए ठोस कदम उठाएगी, या फिर अपना अधिकार पाने के लिए हमारे देश के युवाओं को आंदोलन की डगर पर ही चलना पड़ेगा?
7: करेंगे हम उसका मजा लेंगे।
8: जंतर मंतर प्रदर्शन से लेकर रांची आंदोलन तक देश का भविष्य अपने भविष्य पर छाए अंधेरे पर उजालों की उम्मीदों का सूरज उगाने के लिए सिस्टम से सीधा टकराने को खड़ा नजर आ रहा है। ये तस्वीरें गवाह हैं कि अब जेन जी अपने हक के लिए आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। ये दस्तक उस सिस्टम के खिलाफ है जहाँ अब तक नौजवानों को मिला है तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। नौजवान जवाबदेही चाहते हैं, लेकिन मिला पेपर लीक वाला बीमार सिस्टम। नौजवान नौकरी चाहते हैं, लेकिन बदले में मिल रहा है छल वाला सरकारी तंत्र। चाहे नौकरी हो, चाहे पढ़ाई हो, हर मोर्चे पर फेल सिस्टम ने नौजवानों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। उम्मीद यही है कि हालात बदलने हैं तो हक की आवाज बुलंद करनी होगी। अब सवाल यही है, क्या देश के नौजवानों के पास सिर्फ और सिर्फ अब आंदोलन का विकल्प है? क्या सब चलता है वाले सिस्टम की बीमारी को युवा अपने आंदोलन से कड़वी दवा देना चाहता है? क्या शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों की अनदेखी अब सरकारों के लिए भारी पड़ने वाली है? जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के पीछे छात्रों की 3 बड़ी मांगे थी। पहली मांग, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो ताकि नीट पेपर लीक पर जवाबदेही तय हो। दूसरी मांग, देश में लीक प्रूफ पेपर का नया सिस्टम बने। तीसरी, बदहाल शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर बदलनी चाहिए। आंदोलन का नतीजा ये हुआ कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ और पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून बना।
9: धर्मेंद्र ने रिजाइन कर दिया है।
1: सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
2: दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ।
9: जंतर मंतर का प्रदर्शन इसलिए खत्म हुआ क्योंकि सरकार ने छात्रों की मांगे मान ली, युवाओं की आवाज को सुना गया। जबकि रांची में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वजह है सरकारी नौकरियों में धांधली और पेपर लीक। आंदोलन से पहले तक छात्रों की आवाज को अनसुना किया गया, लेकिन अब झारखंड सरकार भी आंदोलनकारियों की मांगों पर बड़े और कड़े कदम उठाने को मजबूर है। रांची में छात्रों के आंदोलन ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। जिम्मेदारों को भी अब ये एहसास हो गया है कि युवाओं की अनदेखी महंगी पड़ सकती है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में स्कूल कॉलेज के छात्र भी अधिकारों को लेकर लामबंद नजर आ रहे हैं। मतलब यही है, युवा बखूबी समझ चुके हैं कि सिस्टम के खिलाफ बिना संघर्ष के समाधान नहीं मिलेगा। तभी तो इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में भारत के युवाओं ने बेरोजगारी भारत छोड़ो, पेपर लीक भारत छोड़ो, लटकी भर्ती भारत छोड़ो, भर्ती में भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, स्कूलों में बदहाली भारत छोड़ो का आंदोलन छेड़ रखा है। सोते सिस्टम पर सीधी चोट करती ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन जुलाई में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ पूरा हो चुका है। इस वक्त रांची के जंतर मंतर कहे जा रहे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में झारखंड में भर्ती में हुई धांधलियों के खिलाफ आंदोलन जारी है। उत्तर प्रदेश में लटकी भर्ती पर आंदोलन प्रदर्शन लगातार बेरोजगार करते आ रहे हैं। यूपी के फतेहपुर में स्कूल के भीतर साफ पानी, साफ टॉयलेट की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन अपनी मांगे पूरी करा चुका है। पंजाब में पेपर लीक के आरोप लगाकर प्रदर्शन होता आ रहा है। राजस्थान के अलग अलग कई हिस्सों में स्कूली छात्र प्रदर्शन करके अपने हक के टीचर हासिल कर चुके हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिव्यांग बच्चों की मौन क्रांति ने सरकार के कान खोल दिए हैं। बिहार की राजधानी पटना में 2 साल से लटकी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर प्रदर्शन होने लगा है। बिहार के गया में स्कूली छात्र प्रदर्शन करके अपने हक को मांगना जान चुके हैं। 2 अगस्त को कर्नाटक के विजयपुरा में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के ओएमआर शीट का नंबर और सवालों का नंबर बेमेल होने और प्रश्न पत्र तय समय से देर से बांटने जैसे आरोपों पर छात्रों का आक्रोश फूट चुका है। इन सब आंदोलन, धरना प्रदर्शन की मांगे इस बात का सबूत है कि अब सरकारों को मिलकर छात्रों के हक में बड़े फैसले लेने होंगे।
2: हाय फ्रेंड्स, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
10: हर सरकार स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए।
11: और उत्तर प्रदेश के जेंजी और अल्फा भी देख रहे हैं तो जो पेपर लीक करते हैं वही सरकार में बैठे हुए लोग।
9: सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक युवाओं की ताकत को अब बखूबी समझ रहा है, क्योंकि युवा यही चाहता है कि अब उनके हक पर डाका नहीं चलेगा। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक युवाओं की यही मांग है कि लाइलाज बीमारी का इलाज जरूरी है। इसी बीमारी का इलाज करने के लिए केरल के एलपीएस की उम्मीदवार प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने नियुक्ति पत्र लटका रखा है, कई बार गुहार लगाई लेकिन सरकार ने नहीं सुनी, तो अब सभी आंदोलन पर बैठ गए। यहाँ तक कि सचिवालय के बाहर घास खाकर अनोखे तरीके से अपना विरोध किया। ये हक की लड़ाई है।
12: एक सरकार नौकरी पाने की सपने देख के दिन रात मेहनत किया ये सारे लोग, लेकिन रैंक लिस्ट में फीचर होने के बाद फिर भी इनका सपना अधूरी रह गया और इनका ये होप है कि गवर्नमेंट इसके लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेगी और इनका प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगी।
9: इन आंदोलनों में छात्रों के मुद्दों से सत्ता पक्ष और विपक्ष को जोड़ दिया है। मतलब अब छात्रों के मुद्दों को अनसुना करने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हर दल किसी न किसी तरह से जेंजी से मिलने जुलने उन्हें प्रभावित करने की कोशिश में जुट चुका है। चाहे वो पीएम मोदी की इंस्टा रील्स हो या राहुल गांधी के इंस्टा क्वेश्चन आंसर सेशन, चाहे वो मोहन भागवत का जेंजी कनेक्ट हो या राहुल गांधी के गूंज कार्यक्रम, हर दल को लगता है कि जेंजी से कनेक्ट रहे बिना देश की सियासत में मौजू नहीं रहा जा सकता।
2: जब जब बदलाव का दौर आता है तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा।
3: हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जेंजी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला रही।
13: बिल्कुल,
3: उसको ठीक करना चाहिए।
14: हिंदुस्तान का कल्चर सत्य और अहिंसा का है, नफरत का नहीं है, और एक भी स्टूडेंट के दिल में नफरत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मोहब्बत होनी चाहिए।
0: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर से जंतर मंतर प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने सवाल किया कि लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया, इसका जिम्मेदार कौन है, वो सामने आए। गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर बयान दें। राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जवाब दिया। जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल अराजकता फैला रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन राहुल हैं कि वो संसद चलने देना ही नहीं चाहते।
15: अमित शाह ने ऑर्डर दिया था या नहीं? बिना होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के ना दिल्ली पुलिस गोली चला सकती है, ना आरएएफ गोली चला सकती है, राइट? तो हमारा सिर्फ एक सवाल है और उसका हम पहले जवाब मांग रहे हैं, आपने गोली चलवाई या नहीं चलवाई? अगर आपने चलवाई, यू आर कल्पेबल। अगर आपने नहीं चलवाई और किसी और ने चलवा दी, यू आर इनकॉम्पिटेंट। आइदर वे यू हैव टू गो।
16: जब गृह मंत्री जी ने कह दिया कि हम हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो फिर वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, राहुल गांधी, चर्चा से मत भागना, हम तैयार हैं। सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तुम भागना मत। मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर में।
0: दर्शक, में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। लौटकर जब आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे ईरान के साथ युद्ध में ट्रंप का सरेंडर। आप देखते रहिए दस्तक।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
27: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
28: आगे आगे, उधर उधर, करेक्ट
29: करेक्ट, मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
3: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
4: लायन डेट नट बाइट्स।
5: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
8: सोच बदलो और बैंक भी।
9: बिजली का बिल पेड,
10: तो है मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
11: कैसे?
10: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
11: इतना माही वे।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Papa.
2: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का?
3: सब कैशलेस हो गया है।
2: हाँ, ओले ला भाई मेरा बैट। वो अभी तो ठीक हुआ तू।
4: वो अभी तो चार्ज हुआ यार।
5: ओले बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: Where the software engineer meets the cool UI/UX designer to create the big dream, the world comes together at Sharda University.
8: कहीं इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with
1: Cera Sanitary Wear. It's your moment of Cera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: 6000 करोड़ रुपए का AUM था, उसको बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया.
3: हाँ, ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़. यस, मैंने कमाना 2005 में शुरू किया, निवेश करना 2006 में किया और सब पैसा इक्विटी में डाल दिया. एंड यू कैन इमेजिन 2008 में आधा हो गया. आपको एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए दाल चावल का. एवरीवन एस्पायर्स टू बी अ मैंगो मिलियनेयर. उसको वॉरेन बफेट नहीं बनना, उसको लेट राकेश झुनझुनवाला नहीं बनना. सिर्फ महीने के 1.5 लाख की ऐसा ही 18 साल तक अगर आप करते हैं इक्विटी फंड में, आपके 10 करोड़, क्योंकि आपने वो पैसा डाला मार्केट में, उसने रिटर्न कमाया, रिटर्न के ऊपर रिटर्न कमाया, वो पावर.
4: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर. ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक.

0: इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खोल भी रहा हूँ ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों। मेरी पूरी हमदर्दियों के साथ है, मैं उन्हें हजार हजार हर सांस के साथ दुआएं देता हूं और हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूं। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहे, हम सब आपके साथ हैं और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सब याद रखा जाएगा,
1: सब कुछ याद रखा जाएगा। वहां पर भी इक्वली स्ट्रॉन्ग, इक्वली इम्पोर्टेंट, इक्वली वर्ल्ड छात्र आंदोलन हुआ था जितना दिल्ली में और हुआ था।
0: इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि हिम्मत ना हारें, बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं।
1: पिज्जा बर्गर नहीं खाते थे, ये लोग जो है दाल भात खाते थे, उससे उन्होंने आंदोलन किया था। क्या आप लोग सिर्फ इसलिए उन्होंने आपको पिज्जा बर्गर की तलाश थी, क्या आपको अपने किस तरह का आवेदन मिला था? माफ कीजिएगा,
0: आप लड़ते रहें, मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है।
1: मेरे खास से दो आंदोलन कम से कम एक बहुत दिनों बाद लहर आएगी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब खबर ट्रंप के सरेंडर प्लान की। ईरान धमकाने वाले और ईरान को धमकी देने वाले ट्रंप के तेवर बीते कुछ दिनों में ढीले पड़ गए। अभी तक ट्रंप यही धमकी दे रहे थे कि ईरान को अमेरिका की शर्तों के आगे सरेंडर करना होगा, अगर ईरान ने सरेंडर नहीं किया तो अमेरिका ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करेगा। लेकिन अब ट्रंप खुद ईरान के साथ किसी भी तरह युद्ध विराम का रास्ता खोज रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के एटमी प्रोग्राम को ट्रंप शांति समझौते की डील से बाहर कर सकते हैं। यह वही मुद्दा है जिस पर ईरान किसी भी कीमत पर अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं हुआ। ईरान के तेवरों को देखते हुए ट्रंप को यह समझ में आ गया कि युद्ध तभी खत्म होगा जब ईरान की शर्तों पर बात होगी। ऐसे में ईरान के साथ युद्ध विराम का रास्ता खोज रहे ट्रंप अपनी सबसे बड़ी शर्त से पीछे हट सकते हैं। मतलब यह हुआ कि ईरान की शर्तों पर ट्रंप समझौता करने को अब तैयार है।
3: हॉर्मुज में फंसे ट्रंप की हेकड़ी हुई गुल। होती की एंट्री से ट्रंप की टेंशन है फुल। ईरान के साथ डील के लिए ट्रंप बेचैन। ट्रंप पर भारी पड़ा ईरान का नया दांव। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर छोड़ी जिद। मिसाइलें खत्म तो बैकफुट पर अमेरिका। ईरान के आगे ट्रंप करेंगे आत्मसमर्पण।
4: The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard, and then the strait's going to be open. We were going to a tremendous attack, the biggest since World War II, and they called me and said, very politely, please, can we talk? Can we talk? They didn't want. And I said, yes, we can talk. Let's get it done. Finally, let's get it.
3: America aur Iran ke beech 28 February ko yuddh shuru hua. तब से लेकर अब तक कई बार दोनों मुल्कों के बीच युद्ध विराम हुआ, लेकिन ज्यादा दिनों तक सीज फायर की शर्तें टिक नहीं पाई। वजह है स्थायी युद्ध विराम के लिए ट्रंप की शर्तें, वही शर्तें जिन्हें मानने के लिए ईरान तैयार नहीं है। ट्रंप की धमकी और हमलों के बावजूद ईरान हॉर्मुज और अपने परमाणु प्रोग्राम को लेकर झुकने के लिए तैयार नहीं हुआ।
4: We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow. Completely open, and then we'll talk about the nuclear capacity, the nuclear what you know, as we've been mentioned. That basically, it's I think most say the denuclearization of Iran has to happen. They cannot have a nuclear weapon. Iran cannot have a nuclear weapon. And
3: Iran ke fauladi iradon ke chalte Ameriki rashtrapati do morchon par phans gaye. अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर ईरान ने साबित कर दिया कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना भी उसे हरा नहीं सकी, यानी सुपर पावर अमेरिका की छवि को बड़ा धक्का लगा। दूसरी तरफ ईरान के साथ लंबा खींचते युद्ध से ट्रंप अपने घरेलू फ्रंट पर बुरी तरह घिर गए हैं। ईरान युद्ध के चलते अमेरिकी सेना मिसाइलों की किल्लत से जूझने को मजबूर हो गई, तो वहीं अमेरिका में बढ़ी महंगाई ने विपक्ष को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा थमा दिया।
5: The jobs report this morning revealed America lost 23,000 jobs because of Trump's disastrous agenda, his tariffs, and his failed war. The only person who ought to lose their job right now is Donald Trump. Trump sowed mayhem in our economy with his costly war, with his chaotic and inconsistent economic policies, and with his nonstop corruption. But he's not suffering the consequences. Working Americans are. Trump cost America 23,000 jobs last month. But he has the gall to call this, quote,
4: We have the greatest economy maybe in the history of the world for any country.
5: What planet is he on? Does he not care at all about the people? The 300 and some odd million Americans he represents? It's cruel and callous to the people who are no longer earning a salary.
3: वॉल स्ट्रीट जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक अब ईरान के साथ ट्रंप युद्ध को लंबा खींचने की बजाय जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। भले इसके लिए उन्हें ईरान के परमाणु प्रोग्राम की शर्त को शांति समझौते के मुद्दों से बाहर निकालना पड़े। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का मानना है कि उनके कार्यकाल में ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को दोबारा आसानी से शुरू नहीं कर पाएगा। ऐसे में अगर परमाणु प्रोग्राम को शांति समझौते से बाहर निकाल दिया जाता है तो भी अमेरिका की खुफिया एजेंसियां ईरान की हर गतिविधि पर नजर रख सकती है। अगर भविष्य में कभी ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करता है तब अमेरिका दोबारा सैन्य कार्रवाई कर सकता है।
4: Down to less than two in many places like Iowa, oil was down to gasoline was down at numbers that people hadn't seen in years. $1.85, $1.95. So it passed Tuesday. I was in Iowa at a stop, and we had $1.95, another one $1.85 a gallon. And we'll see those days pretty soon again, based on everything I see, as soon as the war ends. And I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. Yeah.
3: आज ट्रंप बैकफुट पर है, लेकिन दुनिया के सामने यही माहौल बनाने की कोशिश में जुटे हैं कि ईरान अब युद्ध लड़ने की हालत में नहीं है। ईरान के पास न तो हथियार बचे हैं और न ही ईरान के पास अपने सैनिकों को सैलरी देने के लिए पैसा है। मतलब अमेरिका ने आर्थिक तौर पर ईरान को इस कदर तोड़ दिया है कि अब उसके पास ट्रंप के आगे आत्मसमर्पण करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। ट्रंप के इस दावे को सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि अमेरिका के सांसद भी सिरे से खारिज कर रहे हैं।
6: So Donald Trump has lost this war. America is weaker. Iran is stronger. The price to reopen the strait increases by the day. The supposed deal that's on the table right now would pay Iran $100 billion a year in order to reopen the strait. That is one-third of Iran's entire economy. What a victory for Iran that at the end of this war, they get paid to reopen the strait. They get paid to rebuild their military. They get paid to rebuild their support for proxies in the region. The answer to your question is, yes, I will support a deal to end this war and to reopen the strait. I am prepared to support a bad deal to end this war and reopen the strait, because the only deal that is available at this point of in time is a terrible bad deal. But the war needs to end, because every day that the war continues, America gets weaker, Iran gets stronger, and people here in the United States get screwed as prices go up and up and up.
7: Let me ask you.
3: Sochi. ट्रंप बार बार यही दोहरा रहे हैं कि ईरान के पास युद्ध लड़ने के लिए हथियार खत्म हो चुके हैं, लेकिन ईरान ने अमेरिकी हमले का जवाब मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले से दिया। यही नहीं, अब तो हूती ने भी ईरान के इशारे पर सऊदी अरब की नाक में दम कर रखा है। पहले लाल सागर में सऊदी अरब के तेल के टैंकरों की एंट्री पर पाबंदी लगाई, और अब हूती की मिसाइलें सऊदी के अलग अलग ठिकानों पर कहर बरपा रही हैं। हुती की तरफ से 9 अगस्त को यमन के मोखा बंदरगाह पर मिसाइलें दागी गईं, निशाने पर थे सऊदी समर्थित सेना। 9 अगस्त को ही हुती ने दक्षिण पश्चिमी सऊदी में आरामको रिफाइनरी को अपना निशाना बनाया। ड्रोन हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई। इससे पहले 5 अगस्त को यानबू तेल टर्मिनल के पास सऊदी के तेल टैंकर वफा पर मिसाइल से हमला किया गया था। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी के साथ साथ अमेरिका में भी ट्रंप की युद्ध नीति को लेकर बवाल मचा हुआ है। विपक्षी सांसदों का यही दावा है कि युद्ध में ईरान के हाथों ट्रंप बुरी तरह हार चुके हैं। न तो ट्रंप होर्मुज को खुलवा सके और न ही युद्ध भूमि में ईरान को हरा पाए। उल्टा ईरान ने अमेरिका के सामने होर्मुज खोलने के बदले अपनी शर्त रख दी। मतलब होर्मुज तभी खुलेगा जब ट्रंप ईरान की शर्तें मानेंगे। शर्त नंबर 1, जंग हमेशा के लिए खत्म करनी होगी। शर्त नंबर 2, ईरान की समुद्री नाकेबंदी हटानी होगी। शर्त नंबर 3, मिडिल ईस्ट से अपने सैनिक हटाने होंगे। शर्त नंबर 4, ईरान पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाने होंगे। शर्त नंबर 5, विदेशों में रोकी गई ईरानी संपत्ति लौटानी होगी। शर्त नंबर 6, जंग में हुए नुकसान का मुआवजा देना होगा। शर्त नंबर 7, ईरान के सहयोगी संगठनों पर सैन्य हमले बंद करने होंगे। ईरान ने अपना स्टैंड एकदम साफ कर दिया है। मतलब ईरान को लेकर ट्रंप का हर दावा गलत साबित हुआ।
8: You just said it very hard.
7: And I say we hit them 20 to 1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. They did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. Another way of doing it. We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. Because they're sort of crazy, to be honest with you. They're sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal badly.
3: ईरान को लेकर ट्रंप की युद्ध नीति पूरी तरह नाकाम रही और अब यही नाकामी ट्रंप और अमेरिका की इमेज पर सबसे बड़ी चोट है, क्योंकि ईरान युद्ध से पहले जहां खड़ा था आज भी वहीं खड़ा है। आज तक ब्यूरो।
8: और अब खबर पाकिस्तान की आइए करते हैं, कैसे पाकिस्तान में सिस्टम फेल हुआ। तो आसिम मुनीर खूनी खेल खेल रहा है। जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में मुनीर ने एक बार फिर से गोलियां चलवाई कई लोगों की, जिसमें मौत हो गई, एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। एक पीओके में चुनाव के बहिष्कार को लेकर दूसरा बवाल मच रहा है और दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर पूरे पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश भड़क उठा है। 12 अगस्त को पाकिस्तान में चक्का जाम का ऐलान किया गया है तो 16 अगस्त को पाकिस्तान के चारों प्रांतों में जमात इस्लामी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान हर तरफ हर मोर्चे पर सुलग रहा है। तो आइए दिखाएं आगे कि अब पाकिस्तान का क्या होगा।
9: पाकिस्तान में सिस्टम फेल, मुनीर का खूनी खेल। पीओके में जबरन चुनाव, बहिष्कार करने वालों पर बरसाई गोली। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक विद्रोह की भड़की आग। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के लिए सरकार के खिलाफ उतरे लोग। सुलग उठा है पाकिस्तान, चारों प्रांतों में मच गया है कोहरा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में आसिम मुनीर ने जबरन चुनाव तो करवा लिए, लेकिन पीओके में विद्रोह की आग अब बुरी तरह से भड़क चुकी है। आपको बता दें कि पीओके में पुंछ डिवीजन के बाग और हवेली जिलों में मतदान हो गया, जबकि 7 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए। और अब आपको पीओके में चुनाव से ठीक पहले की तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे जेएसी और पीओके के आम लोगों ने चुनावों का बहिष्कार किया तो मुनीर की सेना ने गोलियां बरसा दी।
10: ये विजुअल्स आपको नजर आ रहे हैं, उसकी ऑडियो हम जानबूझ के नहीं चला रहे हैं क्योंकि रेंजर्स की जानिब से इनके ऊपर, लोगों के ऊपर फायरिंग की जा रही है और जिसके नतीजे के अंदर जो जख्मी अफराद हैं और जो हलाक हुए हैं उनकी तस्वीर हम माजरत चाहते हैं, हम दिखा नहीं सकते क्योंकि हमें कम्युनिटी गाइडलाइंस उसको दिखाने की इजाजत नहीं देती, लेकिन हालात क्या है वो आपके सामने है। इसके अलावा भी हमारे पास जो वीडियोज इन इलाकों से मौसूल हुई है वो भी आप देख लीजिए, वो भी हम साथ साथ आपको रिपोर्ट करेंगे और आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। ये जरूरी है कि ये विजुअल्स आप देखिए और जो मटेरियल ग्राउंड से आ रहा है उसमें फायरिंग और टियर गैस शेलिंग रिपोर्ट हो रही है, नजर आ रही है। हवेली में 2 लोगों के शहीद होने की इत्तलात है, 13 से ज्यादा जख्मी हुए हैं लोग, लेकिन एक और इंसिडेंट बहुत बड़ा और डिस्टर्बिंग है। रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग सिर्फ और सिर्फ जो है वो आम आवाम या इन मुजाहिरीन की तरफ नहीं की गई बल्कि एक रेजिडेंशियल घर के अंदर भी फायरिंग की गई है।
9: आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में पीओके के लोग अपनी मांगों के लिए पहले से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मुनीर और शहबाज सरकार ने उनकी मांगे सुनने और मानने के बजाय जबरन चुनाव थोपने की कोशिश की। अब पूरा पीओके पाकिस्तान से आजादी के लिए आर पार पर उतर आया है।
10: इलेक्शन है या ये एक इलेक्शन करवाया जा रहा है या एक बकायदा सिक्योरिटी ऑपरेशन करवाया जा रहा है, ये सवालात यहाँ पे उठाए जा रहे हैं और अवाम ये सवाल उठा रही है और अवाम सवाल करती है, किस तरह करती है ये भी आप देख लीजिए। ये भी वीडियो लेटेस्ट हम तक पहुंची है, ये डी चौक रावला कोर्ट की वीडियो है।
11: کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی 2 اگست 2026 کے جاری کیے گئے اعلامیہ کا احاطہ کرتے ہوئے موجودہ قاتل حکومت اور اس کی طرف سے رچائے گئے ٹونگ الیکشن کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے، جس کو میرپور ڈویژن اور مظفر آباد ڈویژن کے عوام بھی مسترد کر چکے ہیں، اور دنیا کی انسانی حقوق کی تنظیمیں، انٹرنیشنل میڈیا بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر چکا ہے۔ لہٰذا پونچھ ڈویژن کے عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اس ٹونگ الیکشن کو مسترد کریں۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نئی عبوری حکومت اور الیکشن کے ری شیڈول کے مطالبے کو دہراتی ہے۔
9: ایک طرف پی او کے سلگ رہا ہے تو دوسری طرف پورے پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو لے کر ویرودھ پردرشن شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں 335 روپے پرتی لیٹر تک پہنچ گئی ہیں۔ تیل کی بڑھتی قیمتوں کے چلتے پورے پاکستان میں 500 سے زیادہ ریلیاں، ویرودھ پردرشن اور چکا جام کیے گئے۔ آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ اونرز فیڈریشن اور گڈس ٹرانسپورٹ نے اعلان کیا ہے کہ 12 اگست کی صبح سے پاکستان میں چکا جام ہوگا، تو جماعت اسلامی نے گھوشنا کی ہے کہ وہ پاکستان کے چاروں پرانتوں کی راجدھانیوں میں ویرودھ پردرشن کرے گی۔ پاکستان کے گرہ منتری خود کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں سسٹم فیل ہو چکا ہے۔
12: آپ 10 سال بعد بھی یہیں بیٹھے ہوں گے اور اسی طرح تقریر کر رہے ہوں گے اور اسی طرح اپنے مسئلے بیان کر رہے ہوں گے، اس نے ایسے کا ایسا رہنا ہے، کیونکہ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے، آپ مانے نہ مانے۔ آپ ایک چیز جو 70 سال سے گھسیٹ رہے ہیں، میں آج بھی کہوں گا جمہوریت ہم سب چاہتے ہیں اور میں اس کا سب سے بڑا سپورٹر ہوں اور رہوں گا، لیکن جمہوریت کے اندر بھی تو 3-4-5 قسم کے نظام ہیں، خالی ایک نظام تو موجود نہیں ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، جو مرضی ہو جائے، جس طرح کا مرضی ہو جائے، ہم نے اسی کو گھسیٹنا ہے، اسی کو چلانا ہے، چاہے ہم 14 بلین کی باہر سے ایگریکلچر کی پروڈکٹس لے آئیں، چاہے ہم اپنا ایگریکلچر ملک ہوتے ہوئے بھی گندم باہر سے لے آئیں، چاہے جو مرضی آپ کہہ لیں، ہر ایک نے اپنی اپنی چیزیں بتائی۔
9: پاکستان میں پی او کے ودروہ کی آگ میں دھدک رہا ہے تو خیبر پختونخوا کے سی ایم سہیل افریدی نے اعلان کیا ہے کہ ان کی پارٹی 27 ستمبر کو اسلام آباد مارچ کرے گی۔ انہوں نے الٹیمیٹم دیا کہ اس مارچ سے پہلے سرکار عمران خان پر لگی پابندیاں ہٹا لے، ان کے ڈاکٹر، پریوار اور وکیلوں کو ان سے ملنے دے، نہیں تو ان کی پارٹی اسلام آباد کوچ کرے گی۔
13: میرے نوجوانوں، آج نوجوانوں، اس کو آپ کی ضرورت ہے، تیار ہو، تو انشاءاللہ تعالی 27 ستمبر کو اسلام آباد کا رخ کریں گے۔
9: خیبر پختونخوا کی بات کریں تو آستین میں پالے گئے سانپ اب خود پاکستان کو ڈس رہے ہیں۔ آتنکی گٹ ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان کے سلسلے وار حملوں نے فوج کی ناک میں دم کر رکھا ہے، جبکہ بلوچستان میں سشستر ودروہ اور آزادی کا رن چھڑ چکا ہے۔ بلوچ سوتنترتا سینانی پاکستانی قبضے کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے آر پار کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ لمبے سمے سے پاکستان سے آزادی کی مانگ کر رہے بلوچ راشٹروادیوں نے پچھلے دنوں بلوچستان کا سوتنترتا دیوس 11 اگست گھوشت کر دیا ہے۔ بلوچ نیتاؤں نے دنیا بھر میں رہ رہے بلوچ ناگرکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 11 اگست کو اپنے گھروں، بازاروں، دکانوں، شیکشنک سنستھانوں اور سارجنک ستھلوں پر سوتنتر بلوچستان کا جھنڈا پھہرائیں، اس دن کو راشٹری ایکتا کے روپ میں منائیں۔
14: بلوچ علاقوں میں بغاوتیں تھیں، پورا بلوچ علاقہ پاکستان کے اختیار سے نکل چکا تھا، آج بھی وہاں پر پاکستان حکومت کی کوئی رٹ موجود نہیں ہے، لیکن ہم تو بلوچ علاقے کو رو رہے تھے، اب تو پشتون علاقہ بھی خون میں نہا رہا ہے۔ پشتون علاقے میں ہم نے 2-3 دن کے اندر 50 سے زیادہ لاشیں وصول کی۔
9: سندھ میں پوری طرح سے سسٹم فیل ہو چکا ہے، لوگ دانے دانے کو ترس رہے ہیں اور بدحالی کا عالم یہ ہے کہ حکومت نام کی کوئی چیز بچی ہی نہیں ہے۔ تو پی او کے میں ہو رہے چناؤں کا بہشکار کرتے ہوئے منیر اور شہباز شریف کے خلاف آر پار کی جنگ چھیڑ دی ہے، یعنی منیر ودروہ کے چکرویو میں پوری طرح سے پھنس چکے ہیں۔ آج تک بیرو
8: درشک میں آج کے لیے بس اتنا ہی، آپ پلیز اپنا بہت خیال رکھیے گا، شبھ راتری۔
0: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: In association with
6: Sera Sanitaryware, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: हमारी सरकार की पूरी सहानुभूति छात्रों के साथ है और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कल इस पर बहुत देर तक अपने भाषण में छात्रों का साथ देने की बात उन्होंने कहा है। और हमारे जो माननीय मंत्रीगण गए थे छात्रों से वार्ता करने, उसमें छात्र और वो दोनों, उन दोनों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो ये बात सामने आई, आप देख सकते हैं मीडिया में भी है, कि 98% मांगों को मान लिया गया है। छात्रों की जो मांगे थी 98% मांगों को मान लिया गया है सरकार द्वारा, और जो 2% बचा हुआ वो इसलिए बचा हुआ है कि एक ऐसा एग्जाम है जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार वो एग्जाम लिया गया था, उसके बाद रिजल्ट आउट हुआ, कुछ लोगों को नौकरी भी मिल गई है। तो सरकार ये कह रही है कि जो कार्य माननीय न्यायालय के निर्देश के बाद हुआ है और उसके बाद लोग नौकरी भी में भी लग गए हैं, उसे रद्द करने का पावर सरकार के पास नहीं है।
8: सरकार झूठ कितना बोल सकती है? छात्र कोई डिमांड है सीबीआई जांच कराओ, ईडी के जांच कराओ, टीडीपीएल जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी है उसने जितनी भी परीक्षा ली कैंसिल करो, रद्द करो। छात्र बोल रहे हैं कि हमारी एक एक सीट बेच दी गई, क्या आपत्ति है? टीडीपीएल की जितनी परीक्षाएं हुई क्यों नहीं रद्द कर रहे हो? सरकार देखो, सरकार संजीदा नहीं है, यह पूरा एजिटेशन नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन हम सब जब जनप्रतिनिधि है मेरा दायित्व हो जाता है उनकी आवाज उठाने के लिए। लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। अरे आप एक एक सीट भी, अब टीडीपीएल के और सारे जो एजेंसी परीक्षा लेने वाली हैं वो स्वीकार कर रही है हमने पैसा लिया,

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: आज के समय में मोबाइल से स्कैन करके पेमेंट करना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन आने वाले दिनों में यूपीआई ट्रांजैक्शन के नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसके बाद 2000 रुपए से ज्यादा के कुछ यूपीआई मर्चेंट पेमेंट्स पर एमडीआर लग सकता है। दरअसल संसद में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है, जिसके बाद यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर लागू करने का रास्ता खुल सकता है। आसान भाषा में समझे तो एमडीआर वो फीस होती है जो दुकानदार डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने के बदले बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को देते हैं। फिलहाल यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जीरो एमडीआर लागू है, लेकिन आगे चलकर इस पर एक तय सीमा के बाद चार्ज लगाया जा सकता है। हालांकि प्रस्तावित बदलाव के बाद कई तरह के विकल्पों पर चर्चा हो रही है, जिनमें बड़े कारोबारियों के लिए ट्रांजैक्शन वैल्यू या टर्नओवर के आधार पर एमडीआर लागू करने पर विचार हो सकता है। वहीं 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना टर्नओवर वाले बड़े कारोबारियों को दायरे में लाने का प्रस्ताव सामने आया है और 2000 से ज्यादा की यूपीआई पेमेंट पर 0.3 से 0.5% तक एमडीआर लगाने का प्रस्ताव भी सामने आया है। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन कुल यूपीआई वॉल्यूम का महज 4% है, लेकिन कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू में इनकी हिस्सेदारी करीब 67% है। अनुमान है कि अगर इस तरह का मॉडल लागू होता है तो डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री को हर साल 5000 से 10000 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है, लेकिन इस संभावित बदलाव का असर ग्राहकों और कारोबारियों के व्यवहार पर भी पड़ सकता है। लोकल सर्कल्स के एक सर्वे के मुताबिक 53% लोग एमडीआर लागू होने पर 3000 से महंगे पेमेंट के लिए यूपीआई का इस्तेमाल घटा सकते हैं। वहीं 27% लोग क्रेडिट कार्ड, 14% डेबिट कार्ड और 12% बैंक ट्रांसफर या नगद भुगतान का विकल्प चुन सकते हैं, जबकि 18% लोगों का कहना है कि अगर अतिरिक्त लागत दुकानदार खुद वहन करें तो वो यूपीआई का इस्तेमाल जारी रखेंगे। सर्वे में शामिल 12% लोगों ने कहा कि वो चार्ज लगने के बाद भी यूपीआई का इस्तेमाल करते रहेंगे और 14% लोगों ने कहा कि उनका फैसला लगने वाले शुल्क पर निर्भर करेगा। सरकार ने संशोधन प्रस्ताव में सेक्शन 10A हटाने का प्रावधान किया है, जो फिलहाल जीरो एमडीआर का प्रावधान देता है, लेकिन फिलहाल ग्राहकों पर किसी तरह का प्रत्यक्ष शुल्क लगाने का प्रस्ताव नहीं है। जानकारों का मानना है कि पेमेंट सिस्टम को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए राजस्व मॉडल की जरूरत हो सकती है। साफ है कि इसके बाद ये बहस तेज हो सकती है कि देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट व्यवस्था को आगे कैसे फंड किया जाएगा। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। पूछा किसने दिया छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश। चढ़ावा चोरी को लेकर पीएम को घेरा। नड्डा का पलटवार, माहौल खराब कर रहे हैं नेता विपक्ष। परीक्षा धांधली के खिलाफ रांची में छात्रों का धरना। विधानसभा मार्च के दौरान लाठीचार्ज। हेमंत सोरेन ने प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। देवेंद्र महतो बोले, अब नहीं होगी सरकार से बात। रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी ने कल झारखंड बंद बुलाया। आरसीएम आवास पर किया था प्रदर्शन। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन गिरफ्तार। ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक कुदरत का कहर। चमोली में बह गया पुल। बीजेपी सांसद बलूनी बोले, राहत बचाव पर सरकार की नजर है। रायगढ़ में 9 लोगों की मौत। गुजरात असम में भी आसमानी आफत। और परमाणु हथियार के बहाने दबाव बनाने में जुटे हैं ईरान का ट्रंप को तगड़ा जवाब। कहा, हॉर्मुज तभी खुलेगा जब अमेरिका देगा हर्जाना और हटाएगा प्रतिबंध।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स तहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अमूमन चोर उन्हीं चीजों को चुराते या चुराकर अपने साथ ले जाते जो नजर ना आए, लेकिन बिहार में चोरों ने चोरी की दुनिया के सारे उसूल नियम ही तोड़ डाले हैं। वो ऐसी ऐसी चीजों को चुरा रहे जिन्हें चुराकर अपने साथ ले जाना किसी करिश्मे से कम नहीं। ट्रेन इंजन, मोबाइल टावर और पुल के बाद अब बिहार में चोर ने 18 पहियों वाला एक लंबा चौड़ा ट्रक थाने से ही चुरा लिया। क्या ट्रेन, क्या इंजन, क्या पुल, क्या सड़क, क्या टावर, कुछ भी तो नहीं बचा जो चोरों को चुनौती दे कि इसे चुरा कर दिखाओ। ले देकर 18 चक्कों वाला एक लंबा चौड़ा ट्रक बचा था, वो भी जब्त करने के बाद केस प्रॉपर्टी के तौर पर थाने के अंदर खड़ा था। चोरों ने इस चुनौती को भी मंजूर किया और थाने के अंदर से पूरा का पूरा ट्रक ही चुरा ले गए। यानी सचमुच गजब है, बिहार में कुछ भी हो सकता है, चोर कुछ भी चुरा सकते हैं। याद होगा आपको, अभी कुछ वक्त पहले ही इसी बिहार से एक पूरा का पूरा मोबाइल टावर ही चोर चुरा ले गए थे। हालांकि उस चोरी की कहानी खुल चुकी है, वो कहानी आगे बताऊंगा। पहले बिहार में हुए इस सबसे ताजा ताजा चोरी की कहानी जान लीजिए। ये बिहार के मुंगेर जिले का मुफसिल थाना है और इसी थाने के बाहर जब्त गाड़ियों वाहनों को रखने के लिए हर थाने की तरह ये खुला माल खाना है। बात 3 जुलाई की है। एक चेकिंग के दौरान 18 चक्कों वाला एक ट्रक BR10GD5005 को नियम तोड़ने के जुर्म में खनन विभाग ने पकड़ा और ट्रक मालिक पर 11,18,600 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। बाद में जब्त ट्रक को इसी मुफसिल थाने में लाकर पार्क कर दिया गया। करीब महीना बीत गया, इस बीच खनन विभाग ने एक और ट्रक को जब्त किया। जब्ती के बाद उसे भी लेकर इसी थाने में पहुंचे। यही वो दूसरा ट्रक है जिसे जब्त किया गया था, लेकिन खनन विभाग के अधिकारी थाने पहुंचने के बाद अचानक पाते हैं कि जिस 18 पहियों वाले ट्रक को 3 जुलाई को यहां लाकर उन्होंने लोकल पुलिस को सौंपा, वो है ही नहीं। पहले तो खनन विभाग के अधिकारियों के होश उड़े, फिर थाने के अफसरों। अब को ये बताने को तैयार ही नहीं था कि इतना भारी भरकम ट्रक थाने से कोई कैसे चुरा सकता है।
1: उन्होंने गाड़ी को जब्त किया था 3 जुलाई को और मुफस्सिल थाना को सुपुर्द किया था। उसके बाद अभी पता चली है कि वाहन वहां पे नहीं है, तो इसके आलोक में FIR दर्ज की गई है और इसकी जांच की जा रही है। उस पे 11,18,600 फाइन किया गया था।
2: खनन विभाग की टीम ने इसी जगह उस ट्रक को BR10GD5005 को ठीक इसी जगह पर आकर लगाया था जहां पर इस वक्त BR01GR1234 खड़ी है। उस समय 5005 गाड़ी जो है वो यहां पे खड़ी थी और वो खनन विभाग की टीम ने जो है एक मुफस्सिल थाने के PTC हैं धनंजय कुमार, उनको वो रिसीव कराया था। हालांकि गाड़ी कब यहां से गायब हो गई ना तो पुलिस को पता है ना ही खनन विभाग को पता है।
0: मुफसिल थाने के पुलिस वालों के पास ट्रक चोरी को लेकर कोई जवाब नहीं था, लिहाजा मामला अब मुंगेर के SP तक पहुंचा। पहले तो SP भी हैरान हुए, फिर उसी हैरानी में कहा कि ट्रक चोरों का पता लगा रहे, जांच हो रही है।
3: इस महीने में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गाड़ी पकड़ाई है जो माइनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा जुलाई के महीने में पकड़ करके थाना मुफस्सिल को सौंपी गई थी। अभी हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि वो गाड़ी थाना से गायब हो गई है। इस संबंध में कल माइनिंग ऑफिसर और थाना प्रभारी को बुलाया गया था ऑफिस में और उनसे जब पूछताछ करने पर मालूम पड़ा कि थाना में एक ASI के माध्यम से उस गाड़ी को रिसीव किया गया था और रिसीविंग माइनिंग डिपार्टमेंट के ऑफिसर को दी गई थी। थाना प्रभारी के द्वारा इस चीज में बताया गया कि उनको नॉलेज नहीं थी इस चीज की, तो ये गंभीर मामला है कि थाना से अगर कोई वाहन गायब होता है तो उसमें हम लोग सीरियस होकर के इसमें कार्रवाई करेंगे। इसमें जांच के लिए हमने टीम गठित की है DSP हेडक्वार्टर के नेतृत्व में, 3 दिन के अंदर वो जांच कंप्लीट करके हमको देंगे। इसमें जिसकी भी सहभागिता संलिप्तता होगी उसमें कार्रवाई की जाएगी।
0: अब जाहिर है पूरा का पूरा ट्रक थाने के अंदर से चुरा ले जाना न बच्चों का खेल है और न ट्रक चला पाना बच्चों के बस की बात। ट्रक छोड़िए, खाली ट्रक के 18 पहियों को ही निकाल कर ले जाना मामूली बात नहीं। अब जाहिर है ट्रक चोर न कंधों पर उठा कर ले गए होंगे, नकल पुर्जे खोल कर किश्तों में ले गए होंगे। ट्रक को स्टार्ट किया होगा, इंजन की आवाज आई होगी, ट्रक को आगे पीछे किया होगा, फिर थाने से बाहर निकला होगा। अब ये तो हो नहीं सकता कि ये सब कुछ हो और थाने में मौजूद एक भी पुलिस वाले को इसकी भनक तक न लगे, यानी मामला कहीं न कहीं थाने से ही जुड़ा है। अब ट्रक जब मिले तब मिले, पर इसी बिहार में कुछ वक्त पहले एक और अजूबा हुआ था, जब चोर पूरा का पूरा एक मोबाइल टावर ही चुरा ले गए थे। मतलब दिमाग घूम जाए, सर चकरा जाए, यकीन पर भी यकीन न हो, यार कोई पूरा टावर कैसे चुरा सकता है, और चुरा भी ले तो लेके कैसे जा सकता है। हमें छोड़िए, खुद पुलिस को भी शायद अब तक यकीन नहीं हुआ है कि कोई टावर चुरा सकता है, तो फिर किस मन से पुलिस FIR लिखे। इतने पढ़े लिखे SP साहब भी सामने शिकायत होने और पीछे लापता हो चुके टावर को अपनी आंखों से देखने के बाद भी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि कोई टावर भी चुरा सकता है। इसीलिए जब हमारे रिपोर्टर ने मोबाइल टावर चोरी की बात पर उनसे सवाल किया, तो सुनिए पहले वो क्या जवाब देते हैं।
4: जी, एक आवेदन अभी आया है, उस आवेदन के अंतर्गत में बताया गया है कि एक जो टावर था वो लगभग 10 से 15 दिन पहले जो है उसको वहाँ से हटाया गया है, और इसी के संबंध में जो है हम लोगों ने जो है जांच प्रारंभ कर दी है। इसमें जो ओनर हैं जो ज़मीन के, जिनके यहाँ पे टावर जो स्थित था, उनसे भी जो है हम लोग जो है पूछताछ कर रहे हैं।
0: पर कंपनी लिखित में शिकायत दे रही है कि उनका टावर चोरी हो गया है, ये रही वो शिकायत। इसमें साफ लिखा है कि मोबाइल टावर जो 40 मीटर ऊंचा है और जिसके साथ साथ 15 किलोवाट का जनरेटर और साथ में कुछ अन्य उपकरण अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी कर लिया गया है। अब जैसे ही हमारे रिपोर्टर ने SP साहब से पूछा कि टावर हटाया नहीं गया है बल्कि चोरी हुआ है, तब वो जांच की बात करने लगते हैं।
5: लेकिन कंपनी कह रही है कि उसका चोरी हुआ है, ये बात वो
4: बिल्कुल, जैसे ही मामला जो है वो स्पष्ट हो जाएगा, प्रकाश में आ जाएगा ये मामला, तो उसमें हम लोग FIR करके आगे कार्रवाई करेंगे।
0: खैर, अब कंपनी की शिकायत और लुट चुकी इस लुटी पिटी जमीन की तस्वीर पर यकीन तो करना ही होगा कि मोबाइल टावर चोरी हो चुका है। पर ये कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, और इतना बड़ा और इतना भारी भरकम चोरी का आइडिया आखिर आया कहां से? मतलब पूरे के पूरे टावर को चुरा लेने का मतलब है कई दिनों का काम, किश्तों में काम, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चोरी का माल उठाकर ले जाने का काम, और ये सारा काम खुलेआम और वो भी दिन की रोशनी में करना है। फिर टावर चुराने वाले चोरों में ऐसा जिगरा आया कहां से? क्यों जिस जमीन पर ये मोबाइल टावर लगा है उसके मालिक को इसका पता नहीं चला? क्यों आस पड़ोस के लोगों को इसे लेकर कोई शक नहीं हुआ? गाड़ियों में भर भर कर टावर लुटता रहा, और क्यों पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी? पूरा का पूरा टावर चोर हजम कर गए, टावर वाली कंपनी को इसकी जानकारी क्यों नहीं लगी? तो चलिए अब आपको सिलसिलेवार द ग्रेट मोबाइल टावर हाइस्ट यानी चोरी की कहानी सुनाता हूं। बात 16 साल पुरानी है, 2010 की। GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी ने बक्सर जिले के डुमराव इलाके में एक मोबाइल टावर लगाया था। ये मोबाइल टावर इलाके के ही हरेनाथ यादव की जमीन पर लगा था। इस मोबाइल टावर को लगाने का मकसद वही था जो हर मोबाइल टावर का होता है, आसपास के इलाके को बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ना। हरेनाथ को उनकी जमीन पर मोबाइल टावर लगाने के लिए 3,000 रुपए महीना किराया मिलता था। एग्रीमेंट 12 सालों के लिए था, यानी 2022 तक। लेकिन कंपनी ने 2017 से हरेनाथ यादव को किराया देना बंद कर दिया। इस पर हरेनाथ ने कंपनी को 2-3 लीगल नोटिस भी भेजे, पर कोई जवाब नहीं आया।
6: चोरी का जानकारी नहीं है, लेकिन उसका एग्रीमेंट 2022 में खत्म हो गया था। हम उसको लीगल नोटिस दिया, 2-3 लीगल नोटिस दिया, उसका बावजूद भी वो कोई सुनवाई नहीं। उस वक्त क्या हुआ, कौन देखने जा रहा उसको, यही बात, कौन उठा ले जा रहा, क्या हो रहा, हम तो पहरेदार नहीं है।
0: 2 जून को कंपनी के कुछ अधिकारी पिछले कुछ सालों से जो टावर बंद था उसे फिर से चालू करने के लिए मौके पर पहुंचते हैं। पर मौके पर जाते ही कंपनी के अधिकारी के पांव तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस जमीन पर 40 लाख का 132 फीट ऊंचा टावर खड़ा था, उस जमीन पर टावर के नाम पर टावर के सिर्फ चार पांव बचे थे, चबूतरे की शक्ल में। पहले तो खुद कंपनी के अधिकारियों को समझ नहीं आया कि वो करें क्या, दिल दिमाग मान ही नहीं रहा था कि कोई टावर भी चुरा सकता है। उन्हें लगा हो सकता है कि वो किसी गलत जगह पर टावर को ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब आसपास चारों तरफ आसमान में नजरें उठाई तो दूर दूर तक कोई दूसरा टावर दिखा ही नहीं। बड़ी मुश्किल से यकीन आया, फिर भी बेयकीनी के साथ एक शिकायत लेकर थाने पहुंचे। न इससे पहले कंपनी के इन अधिकारियों ने कभी ऐसी शिकायत लिखी थी और न ही कभी इससे पहले खुद पुलिस वालों ने चोरी की ऐसी शिकायत पड़ी थी। खैर, अब मामले की जांच शुरू हुई। मोबाइल टावर चोरी होने की खबर डुमराओं से बाहर निकलकर सोशल मीडिया के जरिए पहले बिहार और फिर पूरे देश और दुनिया तक पहुंच गई। जो भी सुन रहा था हैरान बाद में हो रहा था, हंस पहले रहा था। मतलब सच में ऐसा हो सकता है? पर टावर चोरी तो हुआ था, लिहाजा पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। सबसे पहले तो ये जानना था कि टावर चोरी हुआ कैसे। तो शुरुआती जांच में जो आधी कच्ची आधी पक्की जानकारी सामने आई वो कुछ यूं थी। जनरेटर को छोड़ दें तो सवाल ये कि चोर टावर क्यों चुराएंगे। तो अंदाजा हुआ कि इतना लंबा टावर जिसमें 10,000 किलो से ज्यादा लोहा था, मतलब लोहा बेचकर ही लाखों कमाया जा सकता है, पर 132 फीट ऊंचे टावर को काटने और तोड़ने के लिए जिगरे के साथ साथ मशीनें और औजार भी चाहिए, फिर लोहे को बटोर कर ले जाने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां भी चाहिए, और उससे भी जरूरी ये कि जब टावर कट रहा हो तो लोगों को शक भी ना हो। तो चोरों ने इन सारी बातों का ध्यान रखा। जो थोड़े बहुत गवाह सामने आए, कैमरे पर नहीं पुलिस के, उनके हिसाब से इस पूरे टावर को चुराने में चोरों ने 3 दिन का वक्त लिया। इन 3 दिनों में चोर तमाम औजारों और गैस कटर मशीनों के साथ यहाँ आए, किस्तों में टावर को छोटा करते और फिर काटे गए टावर को छोटे छोटे लोहे को गाड़ी में रख कर निकल लेते, फिर अगले दिन वापस आने के लिए। 10,000 किलो लोहा ले जाने के लिए जाहिर है कई गाड़ियां चाहिए होंगी या फिर बड़ी गाड़ियां चाहिए होंगी, लेकिन इस मोबाइल टावर तक जाने वाला जो इकलौता रास्ता है उसको देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ तक कोई बड़ी गाड़ी यानी ट्रक या ट्रैक्टर आ ही नहीं सकता, छोटी गाड़ियां जरूर आ सकती है। तो क्या चोरों ने छोटी गाड़ियों में भर भर कर टावर को समेटा? वैसे डुमराव पुलिस को हम 2 केस स्टडी दे सकते हैं। शायद उस केस स्टडी से वो इस मोबाइल टावर की चोरी का कोई सुराग ढूंढ निकाले। इत्तेफाक से ये दोनों केस स्टडी बिहार के ही पटना की है। 2022 में पटना के गर्दनी बाग इलाके में एक रोज GTPL हैथवे लिमिटेड कंपनी के नाम पर कुछ लोग लल्लन सिंह के घर पहुंचते हैं। असल में लल्लन सिंह की छत पर इस कंपनी का मोबाइल टावर लगा था, 50 मीटर ऊंचा टावर। कंपनी के अधिकारियों के भेस में आए चोरों ने लल्लन सिंह से कहा कि कंपनी घाटे में चल रही है, इसीलिए वो इस टावर को बंद कर रहे हैं। इसके बाद पूरे 3 दिन तक उन लोगों ने टावर को किश्तों में काटा और अपने साथ ले गए। जब कनेक्टिविटी की शिकायतें आनी शुरू हुई तब कंपनी के असली लोग ललन सिंह के घर पहुंचे और देखा कि टावर ही गायब है, तब इस चोरी का खुलासा हुआ। इसी तरह पटना में ही एयरसेल मोबाइल कंपनी का एक टावर भी कंपनी का मुलाजिम बनकर चोरों ने एक घर की छत से उड़ा लिया था। वैसे खाली मोबाइल टावर की चोरी पर ही आप क्यों हैरान हो रहे हैं? ये वो बिहार है जहां एक बार चोरों ने रोहतास जिले में लोहे और स्टील का एक पूरा पुल ही चुरा लिया था। इतना ही नहीं, इसी बिहार के बरौनी इलाके में नवंबर 2022 में भारतीय रेल का डीजल का एक पूरा इंजन ही चोर चुरा कर ले गए। असल में एक डीजल इंजन मरम्मत के लिए बरौनी के रेलवे यार्ड में आया था। चोरों ने जिस जगह ये इंजन यार्ड में खड़ी थी वहां तक एक सुरंग बनाई, फिर उसी सुरंग के रास्ते कई दिनों तक इंजन के कलपुर्जे काटते निकालते रहे और बोरियों में भर भर कर एक गोदाम में रखते रहे। कई दिनों बाद जब डीजल इंजन के नाम पर सिर्फ ढांचा बचा तब रेल स्टाफ की नजर पड़ी। बरौनी पुलिस में डीजल इंजन की चोरी की रिपोर्ट लिखाई गई, तब कहीं जाकर मामला सामने आया। तब पुलिस ने जांच के बाद उसी सुरंग के रास्ते उस गोदाम का पता लगाया। ज्यादातर माल तो बाजार में बिक चुका था, फिर भी कई बोरियों में डीजल इंजन का इंजन और उसके कई कलपुर्जे बरामद हुए। अब आप ही बताइए, मनी हाइस्ट जैसी कहानियां बड़ी है या हमारे बिहार के चोर बड़े, मतलब जिसके चोरी होने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, ये उसे तक चुरा ले जाते हैं। वाकई कमाल है। वैसे बाद में इस टावर चोरी का खुलासा हो गया। पता चला कि जिस शख्स की जमीन पर यह टावर लगा था और जिसे मोबाइल कंपनी किराया दे दी थी, उसने किराया देना बंद कर दिया तो भाई ने पूरा टावर ही किस्तों में चुरा कर बेच दिया। बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे के साथ गोविंद कुमार, मुंगेर, आज तक। बिहार के बाद अब बिहार के पड़ोस यूपी में चलते हैं। यहाँ तो और भी गजब की चोरी हुई। यूपी के एक थाने के मालखाने में करीब 1 करोड़ रुपए के जेवर रखे थे। बकौल पुलिस वाले, जेवर भीग गए, इसलिए उसे धूप में सुखाने उन्होंने उसे छत पर रख दिया। बाद में बंदर आए और सारा जेवर अपने साथ ले गए। ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद थाना कोतवाली सदर है और ये इसी पुलिस स्टेशन की छत। एक दिन पुलिस वाले इसी छत पर 1 करोड़ रुपए के सोने के जेवर धूप में सुखा रहे थे। जी हाँ, 1 करोड़ के सोने के जेवर थाने की छत पर धूप में सुखाया जा रहा था। फिर तभी छत पर बंदर आया और 1 करोड़ रुपए का सारा जेवर अपने साथ ले गया। अब ये सुनकर हंसिएगा मत, न ये समझिएगा कि हम आपको कोई चुटकुला सुना रहे। 1 करोड़ रुपए का माल ले जाने वाले उन बंदरों के नाम, माफ कीजिएगा, बंदरों के नाम तो होते ही नहीं। तो बंदरों का जिक्र बाकायदा इसी थाने के कंप्लेन लेटर से लेकर अदालत के दस्तावेज तक शामिल है। वैसे जिन लोगों को ज्यादा हंसी आ रही है उन्हें बता दूं कि हमारे इसी देश में कई थानों के मालखानों में इससे पहले बंदर, गांजा, अफीम, हशीश के साथ साथ कैरेट के कैरेट शराब भी पी चुके हैं। अब चूंकि मामला बंदरों का है और बंदर बोलते तो है नहीं, ना ही बंदर गहने पहनते हैं, तो फिर 1 करोड़ का गहना ये क्यों और कैसे ले गए? ये यकीन दिलाने के लिए सबसे पहले आपको यूपी पुलिस के इसी थाना कोतवाली में दर्ज ये तहरीर दिखाता हूँ ताकि आप थोड़ा सीरियस हो जाए। बाकायदा इस तहरीर पर थाना कोतवाली सदर की मोहर भी लगी। इस तहरीर सिर्फ काम की चीजें पढ़ लीजिए। आईजी जोन महोदय के मुआयने के दौरान सभी 4 झाल पीएम पोर्ट में श्रीमान एसएचओ महोदय के आदेश अनुसार चौकीदारों द्वारा कोतवाली की छत पर खुले में रख दी गई थी, जो पानी से भीग कर सभी पोटलियां सड़ गई एवं बंदरों द्वारा खुर्द बुर्द कर दी गई। अगर कोतवाली सदर थाने में दर्ज इस तहरीर यानी इस कानूनी दस्तावेज पर भी आपको भरोसा नहीं, तो चलिए यूपी पुलिस की तरफ से जारी इस प्रेस नोट को ही पढ़वा देता हूँ। 17 जून को जारी इस प्रेस नोट में लिखा है कि एक मृतका के शव से प्राप्त कपड़ों व गहनों की एक पीएम पोटली मालखाने में जमा कराई गई थी। उस पीएम पोटली का प्रभार तत्कालीन हेड मुहर्रिर चंद्रिका प्रसाद के पास था। दुर्भाग्यवश हेड मुहर्रिर चंद्रिका प्रसाद की 2009 में मौत हो गई। उनके बाद नियुक्त रहे हेड मुहर्रिर राम बख्श पाल का भी निधन हो गया। इसके बाद तैनात हुए हेड मुहर्रिर संजय सिंह को इस पीएम पोटली का चार्ज ही नहीं मिला। अब इन सारे सबूतों और दस्तावेज के बाद चलिए आपको लखीमपुर खीरी की अदालत के जज साहब के फैसले का दस्तावेज भी दिखाते और पढ़ाते भी। ये न्यायालय सत्र न्यायाधीश लखीमपुर खीरी के ऑर्डर की कॉपी है, देखिए इसमें क्या लिखा गया है।
7: जेवरात सोने के कहे गए हैं, जिनके भीग कर खराब होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा लगता है कि तत्कालीन डीआईजी द्वारा थाने के मालखाने में जमा उन पीएम पोटली को, जिनमें ऐसी वस्तुएं थी जो भीग कर नष्ट होने की प्रकृति रखती थी, को सुखाने का निर्देश दिया गया था। लेकिन कोई आम आदमी भी कीमती सोने के सामान को छत पर सुखाने नहीं ले जाएगा। बिना निगरानी के सोना छोड़ दिए जाना यकीन लायक नहीं है। साफ है कि थाने से संबंधित पुलिस वालों ने पीएम पोटली में सील बंद कीमती सामान को खुद ही उपयोग कर लिया और जिम्मेदारी से बचने के लिए जीडी में फर्जी रिपोर्ट लिख दी गई। कोर्ट के इस आदेश में आगे लिखा है कि जिम्मेदार पुलिस वालों का पता लगाकर उनके खिलाफ आपराधिक और विभागीय कार्रवाई की जाए, साथ ही उन्हीं जिम्मेदार पुलिस वालों से इसकी भरपाई कराई जाए।
0: तो उम्मीद है बंदरों की 1 करोड़ की सोना चोरी के बारे में कानून के रखवालों के इन दस्तावेजों को देखने के बाद अब आप थोड़े गंभीर हो चुके होंगे। तो चलिए अब उसी गंभीरता से पूरी कहानी सुन लीजिए। यह मुदित कुमार अग्रवाल है। 2007 में ठीक दीपावली के दिन इनकी पत्नी आभा रानी ने खुदकुशी कर ली थी। आभा रानी के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और मुदित अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। अब चूंकि इस सिलसिले में थाना कोतवाली सदर में FIR दर्ज हो चुकी थी, लिहाजा आभा के पोस्टमार्टम के बाद उनके कपड़े और जेवर जो उन्होंने उस वक्त पहने हुए थे उन्हें केस प्रॉपर्टी के तौर पर पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर इसी थाने के मालखाने में रख दिया। चूंकि आभा ने दिवाली के दिन खुदकुशी की थी, इसलिए उस रोज उन्होंने नए कपड़ों के साथ साथ तमाम सोने के गहने पहन रखे थे। असल में आभा का मुकदमा लंबा चला। 17 साल बाद 2024 में अदालत ने मुदित कुमार अग्रवाल को आभा की खुदकुशी के मामले में बरी कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद ही मुदित ने थाना कोतवाली सदर में एक अर्जी देकर अपनी बीवी के गहनों को वापस देने की मांग की। तब पहली बार मुदित कुमार ये सुनकर चौंक उठे कि मालखाने में रखा करीब 1 करोड़ का जेवर थाने से बंदर ले। इस अजीबोगरीब जवाब से हैरान मुदित तब सीधे अदालत पहुंच गए। कमाल तो ये कि जब कोर्ट ने मुदित की शिकायत पर पुलिस से जवाब मांगा तो पुलिस ने बंदरों वाली कहानी कोर्ट के सामने भी रख दी। पर बंदरों की कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती। बंदरों के नाम पर पुलिस वालों को बचाने के लिए यूपी पुलिस एक और खेल खेलती है। चूंकि मामला पुराना था तो वो 1 करोड़ के सोने की चोरी का सारा ठीकरा दो ऐसे पुलिस वालों के मत्थे मार देती है जो इस दुनिया में है ही नहीं। पर यहाँ भी पुलिस एक गलती कर जाती है। पहले यूपी पुलिस के इस प्रेस नोट को देखें। इसमें लिखा है कि उस पीएम पोटली की जिम्मेदारी जिन तत्कालीन मुहर्रिर यानी मालखाने के इंचार्ज चंद्रिका प्रसाद को सौंपी गई थी, उनकी 2009 में मौत हो गई। उनके बाद तैनात किए गए हेड मुहर्रिर रामबख्श पाल का भी निधन हो चुका है। जबकि कोर्ट ऑर्डर की जो कॉपी है उसमें उसी यूपी पुलिस ने उस वक्त तैनात रहे हेड मुहर्रिर के तौर पर मोहेराम और मेव्या राम का नाम लिखा है और ये दोनों जिंदा है। यानी यूपी पुलिस बंदरों के साथ साथ मुर्दों से भी खेल रही है। वैसे मजाक से हट के ये तो सच है कि इस थाने में और थाने के आसपास काफी बंदर है। थाने की दीवारों और छत पर भी इनका आना जाना लगा रहता है। मगर ये बात हजम नहीं होती कि कोई सोने को सुखाने के लिए वो भी 1 करोड़ के सोने को छत पर यूं ही कैसे डाल सकता है। सोना पानी में खराब होने वाली चीज नहीं। हाँ, जिस पोटली में सोना रखा हुआ था अगर वो गीला हो चुका था तो उस कपड़े को धूप में सुखाने की बात समझ में आती। बाकी आप सब भी समझदार, बस एक नुक्ते का ही तो फर्क है, माल खाना में और माल खाने में। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
10: अखिलेश यादव जी कहते हैं मैं श्री कृष्ण का वंशज हूँ, मैं यदुवंशी हूँ, और आजकल तो वो नए नए सनातनी भी बन गए हैं, जय श्री राम का नारा भी लगा रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि श्रीमान अखिलेश यादव जी कृष्ण जन्मभूमि पर क्यों नहीं बोलते हैं, कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन के साथ क्यों नहीं जुड़ते हैं, तो सिर्फ यह चुनावी हिंदू है?
11: भारतीय जनता पार्टी का चश्मा धार्मिक हो जाता है जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, वही हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद भजन कीर्तन अजान लव जिहाद हिजाब नकाम मदरसा फिल्में मदारे यूसीसी इन्हीं पूरे मुद्दों के इर्द-गिर्द उनकी पूरी राजनीति चलती है। भारतीय जनता पार्टी केवल एक केवल मंदिर और मस्जिद के मुद्दे उठा के मुद्दों से भटकाना चाहती। समाजवादी पार्टी को मथुरा के मुद्दे पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, देश की न्यायपालिका में सब मामले विचाराधीन है, देश की न्यायपालिका जो फैसला करेगी सभी को मंजूर होगा।

0: प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। पूछा किसने दिया छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश। चढ़ावा चोरी को लेकर पीएम को घेरा। नड्डा का पलटवार, माहौल खराब कर रहे हैं नेता विपक्ष। परीक्षा धांधली के खिलाफ रांची में छात्रों का धरना। विधानसभा मार्च के दौरान लाठीचार्ज। हेमंत सोरेन ने प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। देवेंद्र महतो बोले, अब नहीं होगी सरकार से बात। रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी ने कल झारखंड बंद बुलाया। आज सीएम आवास पर किया था प्रदर्शन। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन गिरफ्तार। ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक कुदरत का कहर। चमोली में बह गया पुल। बीजेपी सांसद बलूनी बोले, राहत बचाव पर सरकार की नजर है। रायगढ़ में 9 लोगों की मौत। गुजरात असम में भी आसमानी आफत। और परमाणु हथियार के बहाने दवा बनाने में जुटे हैं ईरान का ट्रंप को तगड़ा जवाब। कहा, हॉर्मुज तभी खुलेगा जब अमेरिका देगा हर्जाना और हटाएगा प्रतिबंध।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। आज शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी एसपी के सभी 8 सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। सुप्रिया सुले की अगुवाई में हुई मुलाकात कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी को रास नहीं आई। विपक्ष कह रहा है कि बार बार शरद पवार गुट के नेता अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। इसका मतलब है कुछ तो पक रहा होगा। हालांकि मुलाकात करके आए सांसद कह रहे हैं कि उन्होंने किसानों और अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर बात की है, लेकिन विपक्ष को आशंका है कि परिसीमन बिल के समर्थन का ऐलान कर चुकी एनसीपीएसपी इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो विपक्षी गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका होगा।
2: क्या शरद पवार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल होना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि परिसीमन बिल पर अटकलों के बीच सुप्रिया सुले की अगुवाई में एनसीपी शरद गुट के सभी 8 सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की है, जिससे एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है कि शायद शरद पवार का हृदय परिवर्तन होने वाला है। हालांकि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद शरद गुट के सांसद इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनका दल पाला बदलने वाला है।
3: एक तो पहले मैं ये बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो कयासबाजी जो चल रही है इसमें कोई भी तथ्य नहीं। हम 8 सांसद हैं एनसीपी एसपी के, हम विपक्ष में बैठते हैं और हमारे कई सारे मुद्दे हैं जो कई दिनों से प्रलंबित है। महाराष्ट्र के कुछ मुद्दे जैसे किसानों की ऋण माफी को लेकर मुद्दे, महाराष्ट्र के ड्रॉट के बारे में मुद्दे, प्याज के बारे में मुद्दे, पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेलवे के बारे में मुद्दे, ऐसे हर चुनाव क्षेत्र के जो मुद्दे इन समस्याओं को लेकर आज हमने पीएम सर से मुलाकात की। और आई एम रियली थैंकफुल कि पीएम सर काफी वार्म थे। पीएम सर ने ये सब मुद्दे सुन लिए, समस्याएं सुन ली और उन्हें इस पर कोई ठोस कार्रवाई करेंगे ऐसा आश्वासन दिया।
4: दरअसल पहले शरद पवार साहब की मुलाकात होती है प्रधानमंत्री जी से और उसके बाद आप लोग सब लोग जाके मिलते हैं, और इस मौसम में जब लगातार हंगामा हो हल्ला हो रहा है, सरकार को नंबर्स चाहिए, तो कुछ जिक्र हुआ डिलिमिटेशन का या कोई और एफसीआरए का और कुछ समर्थन मांगने देने की बात हुई?
3: जी नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। जो आज मुलाकात हुई ये मुलाकात सिर्फ हमारे 8 जो संसदीय क्षेत्र है इन क्षेत्रों की जो दिक्कतें हैं, महाराष्ट्र के किसानों के बारे में जो समस्या है इसके बारे में बात।
4: अच्छा, आज आपकी मुलाकात थी और आप भगवा कुर्ता पहने हुए हैं, तो ये चॉइस जो है इंटेंशनल थी कि एक्सीडेंटल थी, और आगे क्या ये देखने को भी मिलेगा कि भगवा खेमे में आप लोग आ जाएंगे?
3: जी, मैंने कई बार इससे पहले, एक तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे मेरा भाषण भी आपने सुना, तो मैं ये मानने वाला हूँ कि भगवा मेरे तिरंगे का एक रंग है और इसीलिए मुझे लगता है कि किसी को मेरे भगवा रंग पहनने पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
4: तो वैसे आप लोग इधर है कि उधर है? वैसे इधर ही है ना, मतलब
3: मैंने हमेशा यही बात की
4: है। यही बयान 10 दिन बाद भी चलेगा?
3: डेफिनेटली यही बयान हर बार चलेगा कि शिव शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा और महाराष्ट्र के हित में हम लोगों के साथ।
2: वैसे बताया जा रहा है कि शरद पवार गुट के सांसदों और प्रधानमंत्री के बीच करीब आधे घंटे की बैठक हुई। एनसीपी एसपी सांसद दावा कर रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने महाराष्ट्र में सूखे और सिंचाई से जुड़े मुद्दों पर चिंता जताई।
5: आज सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे उसमें किसानों के बारे में, जो कर्ज माफी हो, और कोई किसानों के अतिवृष्टि हो गई थी, बहुत से बारिश से वजह से हमारे किसानों का नुकसान हो गया था, वो कुछ विषय थे। और दूसरा हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, सब स्टेट के सब डिस्ट्रिक्ट में एक कैंसर केयर हॉस्पिटल होना चाहिए। और दूसरा पीएम रिलीफ फंडर रहता है, उनके जो संख्या है वो बढ़ानी चाहिए। और तीसरा हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो किले बनाए 365 किले, उसमें से 12 किले यूनेस्को में लिया है, तो उसमें संख्या बढ़ानी चाहिए। और जो जो किले उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देके वो किले अच्छे बनाने चाहिए।
2: इससे पहले भी एनसीपी शरद गुट ऐलान कर चुका है कि वो परिसीमन बिल के मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ है, लेकिन सियासत में जो होता है वो कहा नहीं जाता है, और अक्सर जो कहा जाता है वो होता नहीं है। बार बार पीएम मोदी से शरद पवार या उनके सांसदों का मिलना विपक्ष को रास नहीं आ रहा है, इससे विपक्षी गठबंधन में खलबली मच गई है।
6: वारंवार अमित शाह आणि नरेंद्र मोदींच्या दरबारात हे का जाता है, कशामुळे जात आहेत? पवार साहेब ज्येष्ठ आहेत, ठीक आहे, पण इतर जे जात आहेत त्यांच्याकडे जाऊन नतमस्तक होताना आम्हाला दिसत आहे। याचा अर्थ काहीतरी आतून शिजलेलं असावं, आणि त्यातून मला वाटतं की पुढच्या डिलिमिटेशनसाठी काही प्लॅनिंग असावी।
2: इस मुलाकात पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विपक्ष क्यों बेचैन, प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए किसी भी पार्टी के प्रतिनिधि पीएम से मिलते जुलते रहते हैं।
7: पंतप्रधान हे देशाचे असतात, ते कुठल्या पक्षाचे नसतात, त्यांना भेटायला जाणं यामध्ये काही भावगय असं मला वाटत नाही। मी देखील मुख्यमंत्री आहे, अनेक विरोधी पक्षाचे लोक मला भेटत असतात, त्यांची कामं सांगत असतात, त्यामुळे मला असं वाटतं की कुठल्याही वेगळ्या दृष्टीने याच्याकडे पाहण्याचं कारण नाही आहे। ते त्या ठिकाणी गेले आहेत अतिशय किंवा जाणार असतील तर अतिशय चांगली गोष्ट।
2: इधर शिवसेना युबीटी पूछ रही है कि परिसीमन बिल से क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी?
8: नहीं, बात एक ही है। देखिए, डिलिमिटेशन के बारे में जो कहा जाता है कि रिप्रेजेंटेशन हो, पहली बात तो यह है कि जब सांसद अब बढ़ाओगे लगभग 500 से लेके 850 तक लेके जाओगे, तो उनका जो खर्चा होता है, उनकी तनख्वाह होती है, उनका डेली अलाउंस होता है, उनका घर होता है, फिर बंगला हो या फ्लैट हो, आने जाने का खर्चा होता है, उस पर तो हम सारे लोग ही तो खर्चा करने वाले टैक्स पेयर। और ये खर्चा करने के बाद क्या जो व्यवस्था है, जो परिस्थिति है, वो बदलने वाली है? उससे अच्छा ये सोचिए आप कि पावर्स को डिवॉल्व कैसे किया जाए, डिसेंट्रलाइज कैसे किए जाए। जो नगर निगम होते हैं उनको अगर आप ताकत दें तो कितना अच्छा हो सकता है, विधायक होते हैं उनको अगर आप ताकत दें अच्छा काम हो सकता है, जो अभी के सांसद है उनको फंड बढ़ाया जाए तो भी अच्छा काम हो सकता है। और एक तरफ आप देख रहे हो कि 850 एमपी की बात कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या वो इसमें से सॉल्व होने वाली है?
2: हालांकि सुप्रिया सुले ने प्रस्तावित एफसीआरए बिल के प्रति अपनी पार्टी के कड़े विरोध को दोहराया और मांग की कि इसे वापस लिया जाए या जेपीसी को भेजा जाए। एफसीआरए बिल पर फडणवीस ने कहा कि ये बिल किसी के खिलाफ नहीं है, इस पर विपक्ष ऐतराज क्यों जता रहा है?
7: एफसीआरए के ऊपर बिल लाने का कारण यही है कि लगातार इस देश के अंदर एफसीआरए का उपयोग करके कुछ संस्थाएं पैसा ला रही है और उस पैसे का उपयोग देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए इस बिल में कोई अड़चन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। एफसीआरए की प्रोविजन भी रहने वाली है, जो हिसाब देंगे उनके लिए उनका लाइसेंस भी रहने वाला है। मुझे विश्वास है कि अगर किसी को इसमें कुछ कहना होगा वो संसद में कह सकते हैं। भारत सरकार रिसेप्टिव है और ये किसी एक समुदाय का इसमें विषय ही नहीं है, क्योंकि केवल क्रिश्चियन संस्थाओं के लिए एफसीआरए नहीं है, सारी संस्थाओं के लिए एफसीआरए ये आवश्यक है। और सारी संस्थाएं किसी भी समाज की हो, जो संस्थाएं जिनको फॉरेन से डोनेशन मिलता है उनको एफसीआरए ये आवश्यक है।
2: फिलहाल इंडिया गठबंधन की नजर शरद पवार के अगले कदम पर है। उन्हें आशंका है कि पवार परिसीमन बिल का समर्थन करने के बहाने एनडीए में शामिल हो सकते हैं, लेकिन पवार इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे या एनडीए में जाएंगे, ये बात सिर्फ और सिर्फ शरद पवार ही जानते हैं। मुंबई से ऋत्विक भालेकर के साथ मौसमी सिंह और पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने एक बार फिर से सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए चल रही राजस्व संबंधी प्रक्रियाओं में बाधाएं आ रही हैं, साथ ही साथ कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट हासिल करने में भी दिक्कतें हो रही हैं। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है कि अगर समय पर जाति प्रमाण पत्र और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं मिले तो 29 अगस्त को एक बार फिर से वो अनशन शुरू कर देंगे। पाटिल ने डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि शिंदे मराठों के साथ डबल गेम खेल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि वो शिंदे के 25 से 30 विधायक गिरा सकते हैं।
9: विचार ले कस का होता कस का हो सग मराठी विरोधक मराठी विरोधक कस का तो शिंदे साहब खंगल शादी शिंदे साहब कस का ठरवून प्लॅन आहे सगळ्यांचा मला उघड पाडायचं पण त्यांच्यासाठी शिंदे साहेब मी तुम्हाला उघड पाडू शकतो हो 25-30 त्यांचेही घालू शकतो आमदार मी आणि 25-30-52 कुळ्यामुळं फडणवीसांचे सुद्धा घालू शकतो।
10: मराठा समाज के युवकों को कास्ट वैलिडेशन सर्टिफिकेट मिलने में दिक्कतें आ रही है और इसीलिए फिर से जरांगे पाटिल अब आक्रामक होते नजर आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले जो जरांगे पाटिल एकनाथ शिंदे की सराहना करते थे अब ऐसा नजर आ रहा है कि उन्होंने उनके खिलाफ भी मोर्चा खोला है। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस पे वो टीका करते थे लेकिन महाराष्ट्र के सीएम के साथ भी अब डीसीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ भी पहली बार ऐसा हो रहा है कि जरांगे पाटिल सीधा सीधा उन पर निशाना लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनका कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी आप करना नहीं चाहते हो तो आप पूरे समाज को फंसा रहे हो, उनकी दिशा भूल कर रहे हो। और इतना ही नहीं, सबसे अहम ये है कि इस अगस्त के आखिरी सप्ताह में पूरा मराठा समाज फिर से अगर जरूरत हो तो मुंबई पर आके थड़केगा।
0: 15 अगस्त से पहले बीजेपी ने मुंबई में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया और इसमें सैकड़ों लोग हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए।
11: देश में स्वतंत्रता दिन मनाया जाना है और उससे पहले हम देख पा रहे हैं कि देश भर में किस तरह से हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया है। ठीक उसी के तर्ज पर आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस हर घर तिरंगा अभियान में शरीक हो रहे हैं और उनके नेतृत्व में वर्ली प्रोमिनेड पर हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में बड़ी तादाद में लोग जो है खासकर मुंबई कर इस तिरंगा रैली में सहभागी हुए हैं और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के प्रदेश के मुखिया रविंद्र चौहान, मुंबई अध्यक्ष अमित साटम की अगुवाई में ये तिरंगा रैली वर्ली सीफेस यानी वर्ली प्रोमिनेड से निकाली जा रही है। हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं देश में जेंजी आंदोलन के बाद अब बीजेपी युवा वर्ग को अपनी ओर खींचने के लिए कई सारे कदम उठा रही है और उसी के माध्यम से हम देख रहे हैं कि आज की इस तिरंगा रैली में युवा जो है उनकी संख्या जो है बड़ी तादाद में नजर आ रही है। बीजेपी का और खासकर देश भर में ये संदेश देने का प्रयास दिख रहा है कि देश के विकास के लिए हर एक को एक साथ आना होगा, एकजुट रहना होगा और कहीं ना कहीं हर राज्य में इसी तरह का हर घर तिरंगा अभियान जो है वो देखा जा रहा है। मुंबई में भी आज इस तरह तिरंगा रैली निकाली गई और हम देख रहे हैं कि हर कोई हाथों में तिरंगा लेते हुए तिरंगा लहराते हुए इस अभियान में इस तिरंगा रैली में जो है शरीक होते नजर आ रहा है। हर तरफ हम भारत माता की जय का नारा और गूंज सुन रहे हैं। बीजेपी के कई सारे विधायक हो या फिर पार्षद हो वो अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ बड़ी तादाद में आज यहाँ पर इकट्ठा हुए। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ में ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
0: मुंबई के इकलौते फुटबॉल स्टेडियम नेविल डिसूजा फुटबॉल ग्राउंड के रिजर्वेशन को प्लेग्राउंड से बदलकर एग्जीबिशन सेंटर करने के प्रस्ताव का विरोध तेज हो चुका है। सरकार भरोसा दे रही है कि वो फुटबॉल स्टेडियम के लिए दूसरी जगह दे देगी लेकिन मुंबई फुटबॉल एसोसिएशन और खिलाड़ियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
12: We won! मुंबई के इकलौते फुटबॉल स्टेडियम पर भी ग्रहण लगने जा रहा है। फुटबॉल खिलाड़ी, फैंस, कोच और मुंबई फुटबॉल एसोसिएशन के सदस्य बांद्रा के नेविल डिसूजा फुटबॉल ग्राउंड के रिजर्वेशन को प्लेग्राउंड से बदलकर एग्जीबिशन सेंटर करने के प्रस्ताव के विरोध में इकट्ठा हुए। मुंबई के शानदार फुटबॉल स्टेडियम में साल भर में 5,000 से ज्यादा खिलाड़ी खेलते हैं।
13: इस वक्त हम बांद्रा के नेविल डिसूजा ग्राउंड में हैं। यहाँ पर जो ग्राउंड है उसको कन्वेंशन सेंटर किया गया है। जून में बीएमसी की इम्प्रूवमेंट्स कमेटी ने इस प्रपोजल को पास किया। आज एक प्रोटेस्ट रखा गया था फिर से, जिसमें आप कह सकते हैं फुटबॉल प्लेयर्स आए थे, कोच आए थे, फुटबॉल मुंबई फुटबॉल एसोसिएशन के लोग आए हुए हैं। इस वक्त ट्रेजरर जो है मुंबई फुटबॉल एसोसिएशन यू बैनर्जी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दो चीज़ें एज ए सोल्यूशन दी गई है सरकार की तरफ से, ऐसा कीजिए लोकल एमएलए और मिनिस्टर आशीष शाला की तरफ से, एक अल्टरनेट जगह ये ग्राउंड को छोड़कर, और दूसरा जो परेल ग्राउंड है उसको मुंबई फुटबॉल एसोसिएशन यूज करे। इन बारे में आपका क्या कहना?
14: मैंने पहले ही बताया कि इस ग्राउंड को पहले बात है नेवल डिसोजा ग्राउंड, इस ग्राउंड को लास्ट 10 साल से इतना अच्छे से हमारा बच्चे लोग एंजॉय कर रहे हैं, हमारा जो टूर्नामेंट इतना स्मूथली चल रहा है। इंडिया में अवर मुंबई फुटबॉल एसोसिएशन इज द लार्जेस्ट फुटबॉल एसोसिएशन, जहाँ पे इतना लोग, इतना बच्चे लोग, इतना फुट प्लेयर्स ये लोग खेल रहा है। Why to disturb? क्यों डिस्टर्ब करने का इन लोगों को? जो चीज स्मूथली चल रहा है उसको डिस्टर्ब करके हमको बोलेगा नहीं और एक जगह में जाओ। Why can't that BMC take a decision? They are the owners of this entire city. देखा वो लोग का तो एक कहाँ पे भी जगह मिल सकता है, BKC इतना बड़ा जगह है। Why can't they shift that? Why not in other places, गोरेगांव और एनी अदर places? तो हमारा रिक्वेस्ट है जो जिस तरफ से पैरल का ग्राउंड बोल रहा है, पैरल ग्राउंड हमने अभी थोड़ा टाइम पहले ही बताया, पैरल ग्राउंड को 2021 से बीएमसी लिया है अंडरग्राउंड टैंक बनाने के लिए। इज इट नॉट देयर ड्यूटी, उनका ये नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ग्राउंड को प्रॉपर लेवल करके जो कंडीशन में खेलने का था, जो 21 में जब लिया था कोविड का पहले, वही कंडीशन में हम लोग को देने के लिए, तो हम केयर टेकर होके उसका हम लोग एवरी टाइम टैक्स भरता हूँ, 3 लाख 4 लाख रुपया पर ईयर हम लोग टैक्स भरता हूँ।
12: खिलाड़ियों के विरोध और एसोसिएशन के कोर्ट जाने के बाद बांद्रा के विधायक और कैबिनेट मंत्री आशीष सेलार ने फुटबॉल स्टेडियम के लिए दूसरी जगह देने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया कि 2.47 एकड़ का प्लॉट असल में एग्जीबिशन सेंटर के लिए रिजर्व था।
15: ये फुटबॉल प्लेयर्स के साथ हम है, उनको सुविधा देना यह हमारी जिम्मेदारी है। जो आंदोलन में राजनीतिक बात करते हैं, वो आदित्य ठाकरे जी को सीधा सवाल है, क्या आपने ग्राउंड बनाया है? क्या क्या आपने ग्राउंड दिलाया है? क्या अरे वो छोड़िए, पूरे मुंबई में फुटबॉल के लिए आपने एक ग्राउंड बनाया तो बताइए, आपके साथ चर्चा करने के लिए हम तैयार है। म्हाड़ा का प्रस्ताव है, वो ग्राउंड था ही नहीं, उसको हमने प्रोटेक्शन के लिए खेलने के लिए दिया, उस पर आरक्षण ही पहले से कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स था, मालकियत म्हाड़ा की थी। म्हाड़ा ने बीएमसी को कहा है कि हमारे ग्राउंड के ऊपर, हमारे जगह के ऊपर हमारा आरक्षण था, वापिस करिए। ये कोई आरक्षण बदलने का प्रस्ताव नहीं, झूठ बात फैलाना आदित्य ठाकरे जी का स्वभाव है, वो मुंह पर गिर जाएंगे। और मुंबई के फुटबॉल प्लेयर्स को मैं कहना चाहता हूँ, इसी परिसर में अगल बगल में इससे भी अच्छा फुटबॉल ग्राउंड हम देंगे, लेकिन आदित्य ठाकरे की संस्था को नहीं, मुंबई के फुटबॉल वासियों को देंगे।
12: मुंबई फुटबॉल एसोसिएशन कह रहा है कि मंत्री आशीष सेलार हमें भोईवाड़ा में ग्राउंड इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं, बीएमसी ने जमीन नहीं सौंपी है क्योंकि उन्होंने वहां पानी की निकासी के लिए काम किया है।
13: इसमें ये कभी रिजर्वेशन रिक्रिएशनल ग्राउंड के लिए, स्पोर्ट ग्राउंड के लिए था ही नहीं, ये तो ग्राउंड का दुरुपयोग ना हो बोल के मुंबई फुटबॉल एसोसिएशन को दिया गया था, और अब उसके ऊपर क्योंकि कन्वेंशन सेंटर है इसके लिए उसको कन्वेंशन सेंटर बनाया गया।
16: लेकिन अगर वो कन्वेंशन सेंटर के लिए जाएगा तो तकलीफ हमको होगा, क्योंकि वो एक्सपर्ट वो May 1st से ये 31st में से सीजन एंड होता है, तो अभी तक हमारा सीजन चालू है जो 2 महीना लेट हो गया हम लोग, क्योंकि ग्राउंड का प्रॉब्लम है। पूरे बॉम्बे में एक ही ग्राउंड है और उसमें 300 टीम बच्चे लोग का है, 300 टीम सीनियर लेवल का, मतलब 600 टीम्स खेल रहे हैं टोटल, और एक ही ग्राउंड में हम लोग जो भी कर रहे हैं एक ही ग्राउंड में पूरा कर रहे हैं। ग्राउंड नहीं है तो प्रॉब्लम ही होगा। और मेन बात तो बांद्रा क्या होता है, सब लोग के लिए ईजी पड़ता है, तुम्हारा सबअर्बन के लिए, तुम्हारा सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन, सिटी के लिए, सबके लिए सबसे इजीएस्ट प्लेस है। अभी समझो अगर गवर्नमेंट दूसरा जगह देता भी होगा, अगर देगा बोरोल में एक कोने में किधर या और किधर कोने में देगा, तो पब टीम्स को प्रॉब्लम हो जाएगा।
12: जून में बीएमसी की इम्प्रूवमेंट कमेटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस हफ्ते इसे मंजूरी के लिए कॉरपोरेटर्स के सिविक हाउस के सामने पेश किया जाना है। इस बीच मुंबई फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच में दायर याचिका में रिजर्वेशन में प्रस्तावित बदलाव को चुनौती दी गई है।
17: प्रोटेस्ट तो हो ही रहा है, जब से ये कन्वेंशन सेंटर का ऑर्डर निकला है, माननीय मुख्यमंत्री और पालक मंत्री जो पॉलिटिक्स में है, दिस इज बाय द पीपल फॉर द पीपल। ये जो गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है वो रिवर्ट होना चाहिए। यहाँ 6 साल के बच्चे से लेके, सर ने जैसे कहा, 50 साल के बच्चे तक खेल रहे। इट इज़ नॉट अबाउट ओनली द क्वेश्चन अबाउट प्लेयर्स, यहाँ कितना रोजी रोटी प्लेयर्स है, उनका रोजी रोटी है, कोचिज है, रेफरीज है, हज़ारों लोग इस पे आमदनी भी कमा रहे। और बची बात मुंबई का, ये जो वजह बताया जा रहा है दैट वील गेट फंड्स बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन सेंटर, ये तो गलत है। मुंबई जहाँ पूरे इंडिया को इतना फाइनेंस और टैक्सेस दे रही है, आर वी शॉर्टेज ऑफ टैक्सेस और फॉर द फंड्स? बच्चों के लिए एकमेव ग्राउंड बचा है, वो हमें बचाने की हमारी अभी जिम्मेदारी बनती है।
12: पूर्व भारतीय फुटबॉलर और अब कोच स्टीवन डायस को भारत का डेविड बेकहम कहा जाता है, वो भी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने खिलाड़ियों को खेल के लिए मैदान

0: लेकिन बिना ग्राउंड के कैसे करें?
1: बिना ग्राउंड के इम्पॉसिबल है। जैसे आप टूर्नामेंट देखो, यहाँ पर अभी टूर्नामेंट चल रहा है बच्चों का, इतना पैशनेटली, ये अंडर 10 अंडर 12 के बच्चे मैचेस खेल रहे हैं, इतना पैशनेटली खेल रहे हैं। इमेजिन करो अगर ये ग्राउंड नहीं होगा तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे करके। तो जैसे हम लोग का जो अभी जो ड्रीम था इंडियन टीम को खेलने के लिए, बिकॉज ऑफ दिस ग्राउंड एवरीबडी इज टॉक अबाउट कि हम लोग वर्ल्ड कप के लिए क्यों क्वालिफाई नहीं होते, क्योंकि हम लोग अभी फुटबॉल को प्रेफरेंस ही नहीं दे रहे। अभी एक ग्राउंड है उस पर भी हम लोग सोच रहे हैं कि एग्जीबिशन सेंटर बनाना है। तो ये जो वर्ल्ड कप वाला ड्रीम है, इसके लिए एक ग्राउंड नहीं, इसके लिए हमको 10 ग्राउंड चाहिए। जब 10 ग्राउंड में जब हज़ारों लाखों बच्चों जब फुटबॉल खेलेंगे, उसमें से हम लोग को मिलेंगे 20 बच्चे 50 बच्चे जो हम लोग वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग के लिए भेज सकते हैं, वर्ल्ड कप के लिए भेज सकते हैं। पर जो फुटबॉल ग्राउंड ही है वही ख़त्म करेंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे।
2: फुटबॉल फैंस और स्थानीय लोगों में भी नाराजगी देखी जा रही है।
3: कंफर्टेबल जगह है क्योंकि नियर बाय स्टेशन से करीब है, और मेन चीज़ है कि बॉम्बे में ये ग्राउंड को छोड़ के कोई दूसरा ग्राउंड है ही नहीं मुंबई बच्चों को खेलने के लिए। MFA के पास एक ही ओनली फॉर ग्राउंड है, पर ये ग्राउंड बंद है 6 साल से, ये टैंकी बना पानी का करके इसलिए ग्राउंड बंद है सर 6 साल लास्ट। तो 6 साल में यहाँ पर कम से कम 15,000 से ज्यादा बच्चे खेलते हैं ये ग्राउंड के ऊपर सर, और 5 साल से लेकर 50 साल तक आदमी फुटबॉल खेलता है, क्योंकि वेटरन भी होता है हमारे पास यहाँ पर, तो पूरा साल फुटबॉल मैच चलता रहता है ये ग्राउंड के ऊपर। तो समझो एक दो आदमी का नहीं नुकसान हो रहा है, असल हजारों बच्चों का नुकसान हो रहा है।
2: जहाँ आदित्य ठाकरे इस बहाने BMC और BJP सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वहीं BJP पूछ रही है कि उद्धव ठाकरे सरकार और उनके परिवार ने फुटबॉल के लिए क्या योगदान दिया है।
4: हम उसकी चिंता करेंगे, सरकार चिंता भी कर रही है, और ओपन स्पेस, मैनग्रोव, सुशोभीकरण, जैसे अभी जहां हम खड़े या 2000 पेड़ थे अभी 8000 पेड़ हो गए, 6000 पेड़ हमने बढ़ाए। आदित्य ठाकरे हो या अपोजिशन हो, ऐसा कुछ काम किया बताइए, और इसके लिए इनके बातों पर मुंबईकरों का भरोसा नहीं। मुंबई वासियों के ओपन स्पेस की चिंता करना हमारा कर्तव्य है और हम करेंगे।
2: फुटबॉल फैंस कह रहे हैं कि हम इस मैदान के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। ओलंपिक खेलों में हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर नेविल डिसूजा के नाम पर रखे गए इस मैदान पर लंबे समय से ग्रासरूट कोचिंग, स्कूल टूर्नामेंट, लोकल लीग और कॉम्पिटिटिव फुटबॉल के आयोजन होते रहे हैं।
5: फुटबॉल एसोसिएशन की बॉडी है, एक्स प्लेयर्स हैं, यहाँ पर बच्चे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं कन्वेंशन सेंटर ना बनाया जाए इस ग्राउंड को, ऐसा कहा जा रहा है। जो MLA लोकल MLA है मिनिस्टर आशीष शेलार, उनका कहना है कि इसी परिसर में एक अल्टरनेट लोकेशन दी जाएगी या परेल ग्राउंड को यूटिलाइज किया जाए। तो अब जब कोर्ट में ये केस जाता है, प्रोटेस्ट सिटीजन्स की तरफ से होती है, तब नेविल डिसोजा फुटबॉल ग्राउंड का फ्यूचर क्या होगा ये देखना होगा। नितिन वन्ने के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।
6: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: मुंबई आर्किटेक्ट्स कलेक्टिव के बैनर तले 127 आर्किटेक्ट्स अर्बन डिजाइनर्स प्लानर्स के एक समूह ने मुख्यमंत्री और बीएमसी कमिश्नर को पत्र लिखकर चेतावनी दी है। उन्होंने शहर के विकास, इंफ्रा और वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक और पर्यावरण से जुड़ी संपत्तियों पर बढ़ती हुई निर्भरता के खिलाफ ये बात कही है। और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पर राहुल गांधी का बड़ा हमला, पूछा किसने दिया छात्रों के ऊपर पैलेट गन चलाने के आदेश, चढ़ावा चोरी को लेकर प्रधानमंत्री को घेरा नड्डा का पलटवार, माहौल खराब कर रहे हैं नेता विपक्ष। परीक्षा धांधली के खिलाफ रांची में छात्रों का धरना, विधानसभा मार्च के दौरान लाठीचार्ज, हेमंत सोरेन ने प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया, देवेंद्र महतो बोले अब नहीं होगी सरकार से बात। रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी ने आज झारखंड बंद बुलाया, सीएम आवास पर प्रदर्शन किया गया, जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन गिरफ्तार, ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक कुदरत का कहर, चमोली में बह गया पुल, बीजेपी सांसद बलूनी बोले राहत और बचाव पर सरकार की नजर, रायगढ़ में 9 लोगों की मौत, गुजरात असम में भी आसमानी आफत। और परमाणु हथियार के बहाने दबाव बनाने में जुटे ईरान का ट्रंप को तगड़ा जवाब, का हॉर्मुज तभी खुलेगा जब अमेरिका देगा हर्जाना और हटाएगा प्रतिबंध।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

रांची में छात्रों का जोरदार आंदोलन, शाम को एक बार फिर पुलिस ने भांजी लाठियां। प्रशासन ने लाठीचार्ज पर फूटा छात्रों का आक्रोश, कहा पुलिस वालों ने छात्राओं पर बरसाई थी लाठियां। लाठीचार्ज के बाद बढ़के छात्र का आप तो होगी सीधे सीएम से बात, उनसे कम कुछ भी मंजूर नहीं। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हजारों छात्र बैरिकेड्स तोड़कर विधानसभा के गेट के पास पहुंचे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस ने विधानसभा के गेट से छात्रों को खदेड़ने की कोशिश की, 2 से 3 बार किया गया लाठीचार्ज। प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने लगाए गंभीर आरोप, का पुरुष पुलिसकर्मियों ने छात्राओं पर बरसाई थी लाठियां, कपड़े भी फाड़े। रांची के एसपी सिटी पारस राणा बयान दिया, उन्होंने छात्रों के बीच कुछ लोग उन्हें पत्थर बरसाए थे। एसपी सिटी पारस राणा बोले पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। एसपी सिटी पारस राणा का बयान, शांतिपूर्ण तरीके से छात्रों को भेजा जा रहा था वापस, छात्रों को मामूली चोटें आई हैं। प्रदर्शन के दौरान छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो की बिगड़ी तबीयत, भेजा गया अस्पताल। दोपहर 2 बजे के आसपास रांची में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन, पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। दूसरे रास्ते से झारखंड विधानसभा के एकदम करीब पहुंचे छात्र, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वाटर कैनन से बचने के लिए छाता हाथ में लेते हुए नजर आए छात्र, हाथों में झंडा लेकर नारेबाजी की। कटीले तारों की बैरिकेड्स पर चढ़ने के बाद छात्र वाटर कैनन पर डांस करते हुए भी नजर आए। 6 लेयर की बैरिकेड्स को गिराकर झारखंड विधानसभा के पास जमे हजारों आंदोलनकारी छात्र, अभ्यर्थियों को रोक रही थी पुलिस। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, बोले अंधेरा होते ही छात्रों पर करवाया गया लाठीचार्ज, डरपोक है सोरेन सरकार। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, का आपकी अपील के बावजूद हुआ है लाठीचार्ज, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं राहुल गांधी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी और अखिलेश पर साधा निशाना, कहा इन्हीं के इशारों पर सोरेन सरकार ने लाठीचार्ज करवाया। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का सोरेन सरकार पर हमला, कहा सीआईडी जांच तो सिर्फ दिखावा है, सीबीआई जांच से क्यों भाग रही है सरकार। सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन को गिरफ्तार किया, छात्र आंदोलन के बीच बड़ा एक्शन, छापे के बाद दिया था इस्तीफा। जेपीएससी और जेएसएससी विवाद में सरकार का बड़ा फैसला, 98% मांगे मानने का दावा, 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द, गड़बड़ी की जांच के आदेश। जेपीएससी के तीनों ही सदस्यों ने दिया था इस्तीफा, राज्यपाल ने तीनों ही सदस्यों के इस्तीफे को मंजूर किया, कथित परीक्षा गड़बड़ी के मामले में सदस्यों से पूछताछ होगी। जेपीएससी सदस्यों से पूछताछ का पूरा शेड्यूल तय हुआ, 10 अगस्त को अजीता भट्टाचार्य, 12 को जमाल अहमद और 14 अगस्त को अनिमा हासंदा से पूछताछ होगी। केशव मौर्य ने कहा झारखंड के जेपीएससी कथित धांधली मामले में कांग्रेस का दौरा चरित्र उजागर हो रहा है। संसद में सोमवार को भी जबरदस्त हंगामा, मंगलवार सुबह 11 बजे तक दोनों ही सदन स्थगित। संसद में आज भी जारी रहेगा हंगामा, छात्रों के साथ जंतर मंतर पर हुई हिंसा के मामले में अमित शाह के जवाब की मांग पर अड़ा हुआ है विपक्ष। लोकसभा में आज ट्रिब्यूनल रिफॉर्म समेत 4 अहम बिल पेश किए गए। एफसीआरए बिल पर संसद में विरोध की चेतावनी, के सी वेणुगोपाल बोले अल्पसंख्यकों और एनजीओ को निशाना बनाता है, बिल पास नहीं होने देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर सवाल, चढ़ावा चोरी पर चुप क्यों हैं प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री, उनकी तरफ से पूछे गए सवाल। खड़गे का बयान, लाठीचार्ज पर बयान दें गृहमंत्री, पीएम माफी मांगे। संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का गृहमंत्री पर हमला, कहा सदन में आने का गृहमंत्री में साहस ही नहीं। राहुल गांधी ने कहा पैलेट गन के इस्तेमाल और लाठीचार्ज पर जवाब दें गृहमंत्री, छात्रों पर क्यों चलाई गई पैलेट गन। राहुल गांधी ने कहा युवाओं पर हुए हमले के मामले में प्रधानमंत्री माफी मांगे, चंदा चोरी और पेपर लीक पर भी जवाब दें। राहुल गांधी के आरोपों पर बोले जेपी नड्डा, जंतर मंतर पर गोली चलने की बात सच नहीं है। जेपी नड्डा ने लगाया राहुल गांधी पर गुमराह करने का आरोप, राहुल गांधी नहीं चाहते सदन में चर्चाएं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा गृहमंत्री हर बात का जवाब देने को तैयार है, राहुल गांधी करें सदन को बाधित। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर लगाया अराजकता फैलाने का आरोप, बोले चर्चा से भाग रहे राहुल गांधी। छात्र आंदोलन पर भी राहुल गांधी पर नड्डा का निशाना, बोले छात्रों की बात करने वाले राहुल गांधी झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन पर क्यों नहीं बोलते। चमोली के जोशीमठ नीति घाटी में बादल फटा, 40 मीटर लंबा वैली ब्रिज बह गया है। 13 गांव का जोशीमठ तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट गया है, भारत चीन सीमा मार्ग भी बंद। बादल फटने के बाद भारी मात्रा में मलबा, पत्थर और बोल्डर गिरने से नाली में तेज बहाव, नदी के किनारे खेतों और सेब के बगीचों को भारी नुकसान। उत्तराखंड के विकास नगर में भी भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है, मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। विकास नगर में कहीं सैलाब के तेज बहाव में वाहन फंसे तो कहीं राहगीरों की जान आफत में पड़ गई।
हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी फ्लैश फ्लड, पिन घाटी में बहुत सी सड़कें प्रभावित, कई गांवों से संपर्क टूटा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बारिश का कहर, नाले में बह गई थी एक कार, 9 शव बरामद हुए, कुल 11 लोग सवार थे, 2 तैरकर बाहर निकले। राजगढ़ हादसे में मृतकों के परिजनों को सरकार ने 4-4 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया है। प्रथम दृष्टया ड्राइवर की लापरवाही सामने आई। राजगढ़ के ही खिचलीपुर जल मंदिर में फंस गए थे 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया। जल मंदिर आधे से ज्यादा डूबा है, गेट और तोपखाना की दुकानों में पानी घुसा। वाराणसी में गंगा की बाढ़ से डूबे पक्के घाट, कई घाटों का संपर्क टूटा, नौका संचालन पर प्रतिबंध, गंगा द्वार से विश्वनाथ धाम में प्रवेश पर रोक। हरियाणा के फरीदाबाद में सेक्टर 31 में ई रिक्शा के नीचे दबकर 7 साल के बच्चे की मौत हो गई, पूरे हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। अमृतसर पुलिस की बड़ी कामयाबी, सीमा पर नशा और हथियार सप्लाई करने वाले 2 नेटवर्क बेनकाब, 7 की गिरफ्तारी, 10 पिस्तौल, 1 किलो से ज्यादा हेरोइन और ड्रोन्स बरामद। मुंबई क्राइम ब्रांच की कार्रवाई, 2 ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 कारतूसों के साथ आरोपी गिरफ्तार, यूपी से हथियार सप्लाई करने आया था आरोपी। मुंबई में अमूल के नाम पर नकली दूध का कारोबार पकड़ा गया, 4 आरोपियों की गिरफ्तारी, दहिसर में नामी कंपनियों के नाम पर बेच रहे थे नकली दूध। महाराष्ट्र के नांदेड़ में दिल को दहलाने वाली वारदात, खाने में दबा दिए जाने के शक में एक लड़के ने अपनी मां को बैत से मारकर हत्या की और खुद भी खुदकुशी कर ली। यूपी के ललितपुर में थप्पड़बाज पुलिसकर्मी कैमरे में कैद हुए, मेडिकल के दौरान आरोपी को लगातार कई थप्पड़ मारते हुए पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल। अलवर के कोटासे में छत से रास्ते में घुसे थे 4 बदमाश, 15 लाख नकद समेत सोना चांदी चोरी करके गायब हुए, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। भोपाल के हाई सिक्योरिटी इलाके में 4 इमली में पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अजय विश्नोई के बंगले में चोरी हुई, चोर ताले तोड़कर घुसे, नलों की टोंटियां तक ले गए। भरूच में चलती हुई ट्रेन में मोबाइल स्नैचिंग का आतंक, ट्रेन के दरवाजे पर बैठे यात्री का मोबाइल छीनते हुए संतुलन बिगड़ने से युवक ट्रेन की चपेट में आया, घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, युवक की मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर में पत्नी का बर्थडे पार्टी का बुलावा बना आखिरी सफर, ससुराल पहुंचे 25 साल के दामाद की संदिग्ध मौत हुई, माता पिता ने हत्या के आरोप लगाए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई से की मुलाकात, दोनों ही नेताओं के बीच सैन्य और मौजूदा आर्थिक चुनौतियों को लेकर हुई चर्चा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई का बड़ा बयान, कहा सुरक्षा को झूठे दलालों से नहीं खरीदा जा सकता। ईरान की सुरक्षा नीति में बड़ा बदलाव, पूर्व आईआरजीसी कमांडर मोहसिन रजाई बने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव, 1981 से 1997 तक संभाली थी आईआरजीसी की कमान। रूस के यूक्रेनी शहरों पर भीषण बमबारी, ज़ापोरोजिया और सुमी शहर पर बरसाए गए थे बम, रात भर हमले में 3 बच्चों समेत 23 से ज्यादा लोग घायल हुए, कई की हालत गंभीर है। रूस के एक शहर में यूक्रेनी ड्रोन से भीषण हमला किया गया, बच्चों समेत 13 लोगों की मौत की खबर, 39 लोग लापता। दक्षिण कोरिया और अमेरिका का 17 अगस्त से बड़ा सैन्य अभ्यास, ड्रोन, साइबर और जीपीएस हमलों से निपटने की तैयारियां। कूटनीतिक संबंधों में खटास के बीच काठमांडू में भारतीय राजदूत नेपाल के पीएम बालिन शाह से मिले, वहीं ढाका में भारतीय राजदूत दिनेश त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात की। फिलीपींस में तूफान डॉल्फिन के बाद भीषण तबाही, लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़, मेट्रो मनीला में भी बाढ़ के हालात। अमेरिकी पॉपुलर टीवी सीरीज द ड्यूक्स ऑफ हेजार्ड के अभिनेता और पूर्व अमेरिकी सांसद बेन जोन्स का निधन हुआ, 84 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। नेशनल बैंक ओपन के क्वार्टर फाइनल में नाओमी ओसाका ने कनाडा की फर्नांडिस को 6-4, 6-4 से हराया। स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेनसिच ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको झारखंड में छात्रों का प्रचंड आंदोलन दिखाएंगे। युवा आक्रोश में डूबी राजधानी रांची आज रण क्षेत्र बन गई। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली और गड़बड़ी, जिसके खिलाफ छात्रों का गुस्सा आज ऐसा फूटा कि झारखंड विधानसभा के सुरक्षा घेरे के सातों द्वार युवाओं की हुंकार के आगे तरक गए। शुरुआत दोपहर के आसपास हुई जब हजारों युवाओं का सैलाब विधानसभा की तरफ बढ़ा। पुलिस ने रास्ते रोकने के लिए कटीले तार, बैरिकेड सब कुछ बिछाए थे, लेकिन छात्रों ने उन कटीले तारों को ही उखाड़ फेंका। पुलिस ने रोकने के लिए पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन पानी की तेज बौछारों के बीच छात्रों ने गजब का हौसला दिखाते हुए डांस शुरू कर दिया। पानी और चलाओ के नारे लगाए। देखते ही देखते ये जोश और हंगामेदार हो गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, फिर लाठीचार्ज भी शुरू हुआ। इस बीच छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल तक ले जाना पड़ा। बात यहीं खत्म नहीं हुई। दिन ढलते ही पुलिस एक बार फिर पूरी फोर्स के साथ एक्शन में आ गई और विधानसभा के सामने जमे छात्रों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने दोबारा लाठीचार्ज किया। 17 दिनों से चल रहा यह प्रदर्शन अब आर पार की लड़ाई बन चुका है। भारी सुरक्षा के बीच रात के अंधेरे में भी छात्र अपनी मांगों पर अड़े हैं। अब देखना है कि इस घेराव के बाद टकराव बढ़ेगा या कोई सुलह का रास्ता खुलेगा। और इसके बाद 4 अगस्त को एयर इंडिया की फुकेट दिल्ली फ्लाइट के बारे में बताएंगे। एयर टर्बुलेंस की वजह से हवा में अचानक 300 फीट नीचे आई। इस घटना में कई यात्रियों को गंभीर चोटें आई थी। इस घटना की जांच में एक नया खुलासा हुआ है। पता चला है कि फ्लाइट का एक पायलट आरोपों के मुताबिक उड़ान के वक्त ड्रग्स के नशे में था। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं जो अब से कुछ देर पहले की हैं। और पुलिस ने झारखंड विधानसभा के बाहर धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है और उन्हें वहां से खदेड़ने की कोशिश की है। देखिए,
1: विधानसभा में भी नहीं घुसे हैं। हम लोग पीसफुल तरह से बैठे हुए थे, एसपी सर बोले, उसके बावजूद आके मारने की कोशिश की। हमने बहुत मारा है सर, अब सब हाँ मेरा भी हमको भी मारा।
0: तो सुना आपने इन बच्चों को। पुलिस की कई कोशिशों के बावजूद आज 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारी रांची में बवाल करते हुए नजर आए। विधानसभा भवन तक वो पहुंच गए थे और यही पुलिस का कहना है कि इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि ये तमाम प्रदर्शनकारी वहां पर आराम कर रहे थे। परिसर में तो गए लेकिन विधानसभा के अंदर नहीं गए। ये कह रहे थे कि कल जब सुबह विधानसभा का सत्र फिर से शुरू होगा तब वो सरकार का घेराव करेंगे। लेकिन पुलिस ने आज शाम को वहां लाठीचार्ज किया और इस वक्त का अपडेट ये है कि विधानसभा के गेट से प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है। तो दो बातें हैं। एक बात कि कुछ प्रदर्शनकारी विधानसभा के अंदर तक गए थे लेकिन वो चुपचाप वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने कोई हंगामा बवाल नहीं किया। दूसरी बात, जिन प्रदर्शनकारियों को अभी लाठीचार्ज के जरिए भगाया गया है वो ये कह रहे हैं कि हम गेट के बाहर बैठे थे, हम अंदर नहीं गए थे, बावजूद इसके हमें वहां से खदेड़ कर लाठीचार्ज करके भगाया गया है। अब हम आपको हर तरह का पक्ष दिखा रहे हैं। अब ये विरोध प्रदर्शन वापस से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जारी रखा जाएगा। यहां एक और अपडेट यह है कि 9 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो को रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि पैदल मार्च में शामिल होने के कारण देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा है। वो कई दिनों से भूख हड़ताल पर है। देखिए,
2: पच्चीस में
3: हम लोग नहीं बोल रहे।
0: आज जो हजारों छात्र रांची में विधानसभा का घेराव करने के लिए सड़कों पर इकट्ठा हुए, उनके चेहरों पर सिर्फ गुस्सा नहीं था, उनके अंदर एक डर भी था। डर इस बात का कि कहीं उनका ये पैदल मार्च बदनाम ना हो जाए, कहीं कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिसकी वजह से बाद में उनकी जो पूरी ये लड़ाई, उनका संघर्ष क्या है कि भाई फर्जी भर्तियां बंद करो, भर्ती घोटाला बंद करो, पेपर और एग्जाम में जो भी पेपर इधर से उधर निकल जाता है, एक ही परिवार के इतने लोगों का चयन हो जाता है, बाकी बच्चे ऐसे के तैसे रह जाते हैं, एक सालों साल बीत जाते हैं, भर्तियां नहीं निकलती हैं, इसके खिलाफ था। अब उन्हें डर एक ही था कि क्या उनके इस कठिन परिश्रम को, उनके संघर्ष को बदनाम कर दिया जाएगा, और कहीं ऐसा ना हो जिस मुद्दे के लिए वो इतने दूर दूर से पैदल चल चल कर पहुंचे थे और जिस दर्द को लेकर वो सत्ता के दरवाजे तक पहुंचे हैं, लोग उस दर्द को भूल जाएं और सिर्फ ये चर्चा होने लगे कि प्रदर्शनकारियों ने ये कर दिया, प्रदर्शनकारियों ने वो कर दिया। ये डर इसलिए था कि आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ भीड़ नहीं होती, आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत होती है लोगों का भरोसा, और ये छात्र शायद इसी भरोसे को बचाने के लिए आज सबसे ज्यादा सतर्क थे, सावधान थे। और आज दिन भर प्रशंसा होती रही है जिस तरह से झारखंड में रांची में इन बच्चों ने ये आंदोलन किया। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब लाठीचार्ज के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ, ये आप वाटर कैनन से देख रहे हैं, पानी की बौछारें छोड़ी गई। अब आरोप है कि कुछ प्रदर्शनकारियों के सिर और कमर से ऊपर लाठियां मारी गई हैं, और इसके बाद गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने एक सुरक्षा कर्मी को घेर भी लिया। एक पल ऐसा हुआ जब लगा कि गुस्सा कहीं हिंसा में ना बदल जाए, लेकिन फिर जो हुआ वो इस पूरे आंदोलन की सबसे शक्तिशाली और खूबसूरत तस्वीर है। लोकतंत्र की ऐसी तस्वीर जिसमें भीड़ में मौजूद कुछ युवाओं ने उस सुरक्षा कर्मी को चारों तरफ से घेरा बना लिया और ये सुनिश्चित किया कि उन पर कोई हमला ना हो पाए। ऐसा उसे बचाने के लिए हुआ और ऐसा उसे पीछे ले जाने के लिए हुआ ताकि लोगों का गुस्सा इस पर ना निकले। सोचिए जिन युवाओं पर लाठियां बरसी हों, जिनके भीतर गुस्सा, दर्द, जिनके साथी घायल हुए हों, उन्हीं में से कुछ युवाओं ने कहा कि नहीं, इसे कुछ मत होने दो, क्योंकि शायद उन्हें पता था कि एक पल का गुस्सा उनकी महीनों की लड़ाई पर भारी पड़ सकता है। देखिए तो उनको सुरक्षित पुलिस को हैंडओवर कर दिया इन छात्रों ने मिलकर। कल्पना कीजिए जब ये हजारों छात्र आज विधानसभा मार्च के लिए निकले होंगे तब उनके मन में क्या चल रहा होगा। उन्हें पता होगा कि आज उनकी तस्वीरें कैमरों में कैद होंगी, उन्हें पता होगा कि आज उनके हर कदम को देखा जाएगा, उन्हें पता होगा कि बहुत सारे कैमरे तलाश रहे होंगे कि इनसे एक चूक हो और वो वीडियो वायरल किया जाए, उन्हें पता होगा कि अगर भीड़ में किसी एक प्रदर्शनकारी से भी कोई बड़ी गलती हो गई तो उसकी कीमत सिर्फ उस एक व्यक्ति को नहीं बल्कि इस पूरे आंदोलन को चुकानी पड़ सकती है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें पता था कि जनता का समर्थन बहुत मुश्किल से मिलता है लेकिन एक गलती से ये छिन भी सकता है, और समर्थन खोने का मतलब सिर्फ कुछ लोग कम हो जाना नहीं होता है, समर्थन खोने का मतलब होता है आपकी आवाज का कमजोर पड़ना, और शायद इसीलिए इन बच्चों ने आप जिस सवाल को विधानसभा तक लेकर गए थे वो सवाल पीछे छूट जाना हो जाता, आप जिस बेईमानी के खिलाफ खड़े हुए थे उसकी जगह चर्चा आपकी हिंसा पर होने लगना, और फिर पूरा देश ये भूल जाता है कि हजारों युवा आखिर रांची में सड़क पर उतरे क्यों थे, बस इसी पर चर्चा। और यही वजह है कि आज का ये मार्च सिर्फ विधानसभा तक पहुंचने की परीक्षा नहीं था, ये उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा कड़ी परीक्षा थी, ये गुस्से पर नियंत्रण की परीक्षा थी, ये इस बात की परीक्षा थी कि जब आपके साथ गलत हो रहा हो तब भी आप गलत रास्ता नहीं चुनेंगे, और इसीलिए सब झुककर आज कह रहे हैं कि इन बच्चों ने जो संदेश दिया है, जब सामने से लाठी आए तब भी आप अपने हाथ को रोक पाए, और वो भी इस उम्र में, जब आपके भीतर गुस्सा उबल रहा हो तब भी आप ये याद रखेंगे कि आप यहां बदला लेने नहीं आए हैं, आप यहां अपना हक मांगने आए हैं। और शायद इसीलिए उस सुरक्षाकर्मी के चारों तरफ बनाया गया वो घेरा इतना महत्वपूर्ण था, वो सिर्फ एक पुलिसकर्मी को बचाने वाला घेरा नहीं था, वो इस आंदोलन की मर्यादा के चारों तरफ बनाया गया घेरा था। और हमें लगता है कि आज इसी वजह से इन छात्रों की और इन जेन जी युवाओं की पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। देखिए,
2: लाठीचार्ज का नियम क्या होता है, कमर से नीचे लाठीचार्ज की जाती है, पर यहाँ पे सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है। ये सरकार की नीति को समझाता है। महेंद्र मंडल जो आज 8 दिनों से भूख हड़ताल पे थे, उनको पुलिस, झारखंड की पुलिस ने पूरा का पूरा बदन लाल कर दिया, उन्हें 4 घंटा मारा है। इस सरकार को हम बताना चाहते है, ये सरकार कभी किसी की सरकार बपोती नहीं होती है।
3: जब छात्रों की भीड़ बढ़ रही है और सरकार वहीं से चली जा रही है, तो आप लोगों को लग रहा है कि अब हेमंत सोरेन चले गए सीएम, तो इन लोग पर लाठीचार्ज कर दे। 3-4 लड़के को बेरहमी से मारा, अभी एक लड़का वहाँ बेहोश है।
4: तो मोबाइल देखिए, हम लोग गरीब पढ़ने वाले स्टूडेंट है, फोर्स लोग डंडा चालू करके मोबाइल सारा चीज तोड़ दिया।
5: हम लोग को बात ना सुनकर लाठीचार्ज करके बेरहमी से हम लोग को मारा गया है। ये अभी इस तरह से मारा गया, लाठी से करके कम से कम बहुत लाठी से पीटा गया है।
0: ये पैदल मार्च झारखंड के उस खाली मैदान से शुरू हुआ जहाँ विधानसभा का पुराना भवन है। सभी प्रदर्शनकारियों से ये कहा गया कि वो जयपाल सिंह मुड्डा स्टेडियम से इस मैदान में पहुंचे और फिर यहां से अपना पैदल मार्च शुरू करें। इन प्रदर्शनकारियों को करीब 5 किलोमीटर का पैदल मार्च निकालना था, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने कड़े इंतजाम किए थे, ऐसे इंतजाम जिन्हें कई लोगों ने असंवैधानिक बताया।

0: 5 किलोमीटर के इस पूरे रास्ते में 7 से ज्यादा जगह सैकड़ों बैरिकेड्स लगाए गए 7 जगहों पर। इन प्रदर्शनकारियों की भीड़ गिरा ना पाए इसलिए इन बैरिकेड्स को बांस के डंडों के साथ आपस में बांधा गया था। तो ये जो बैरिकेड्स हैं लोहे के, इनको आपस में बांस के डंडों के साथ बांधा गया था। यही नहीं, इन सभी बैरिकेड्स के ऊपर कटीले तारे लगाई गई थी। ये देखिए, इन बैरिकेड्स पर कटीली तारे लगाई गई थी, ऐसी तारे जो बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए लगाई जाती है। 5 किलोमीटर के इलाके में 1,500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को 24 घंटे तैनात करके रखा गया। इंडिया रिजर्व बटालियन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स और क्विक रिस्पांस टीम्स, ये सारी लगा दी गई। ये पूरा रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस विभाग के सभी बड़े अधिकारियों को सड़कों पर उतारा गया, उन्हें कड़ी कार्रवाई के ऑर्डर्स दिए गए। देखिए 5 किलोमीटर तक ये कहा गया। पूरे रूट पर ड्रोन्स, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की गई और एक कंट्रोल रूम में स्पेशल टीम को भी बैठाया गया। और ये सब सोचिए सिर्फ इस एक मार्च को रोकने के लिए हुआ। हालांकि प्रदर्शनकारी युवा कुछ और सोच कर आए थे। सबसे पहले वो 8 किलोमीटर का सफर तय करके जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम गए। देखिए अलग अलग जगहों से, कहीं जगहों से 5 किलोमीटर जा रहे थे और जो जयपाल मुंडा स्टेडियम से आए वो 8 किलोमीटर चल के जो पुराने विधानसभा भवन के खाली मैदान में पहले इकट्ठा हुए। ये तय हुआ कि भीड़ में मौजूद हर युवा शांतिपूर्ण मार्च की रक्षा करेगा। आपको मार्च की रक्षा करना है, ये वहां बार बार कहा जा रहा था। अगर पुलिस बल प्रयोग करेगी तो ये युवा खुद को बचाएंगे और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए या पलटवार किए अपने पैदल मार्च को जारी रखेंगे। सुबह 10 बजे ये पैदल मार्च शुरू हुआ और अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते चुने। इन दोनों रास्तों को पुलिस ने बंद किया था लेकिन प्रदर्शनकारी धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। कुछ जगह उन्होंने कटीली तारों पर खड़े होकर बैरिकेड्स को लांघा और कुछ जगह उन्होंने सड़क किनारे बने कच्चे रास्तों से आगे बढ़ने की कोशिश की। और यहां आप देख सकते हैं कि जब ये प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे थे तब पुलिस को भी समझ नहीं आया कि वो इन्हें कैसे रोके।
1: जो है वो बैरिकेड्स के ऊपर है, कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह इस पहले हर्डल से निकला जाए लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। देखिए हम दूसरी तरफ है बैरिकेड से, पहली दफे एक जो बैरिकेड है ना उसको तोड़ करके अब छात्र आगे बढ़ गए हैं और देखिए ये प्रशासन को भी उम्मीद नहीं थी। ये देखिए बैरिकेड्स तोड़ दिए हैं छात्रों ने और जो कटीले तार लगाए गए थे उस बैरिकेड्स को लेकर के छात्र अब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लेकर के जा रहे हैं
2: उसको किनारे करेंगे।
1: तो इसको आप लोगों ने ध्वस्त कर दिया,
2: सब तोड़ देंगे।
3: पुलिसकर्मी बैरिकेड पर चढ़ गए हैं, छात्रों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है लेकिन यहाँ पर वो रोका जा रहा छात्रों को।
4: पुलिस रोक रही है सवाल के सीधे और ये अगली बैरिकेडिंग की तरफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, साथ में पुलिस के जवान हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं। बैरिकेडिंग तीसरी टूट गई है
5: तो काफी मशक्कत प्रशासन को करने पड़ी, तमाम बैरिकेड्स टूट गए हैं। अब एक आध बैरिकेड ही बचा हुआ है जहां इन्हें इशारा किया जा रहा है कि आप आगे मत जाएं। तमाम बैरिकेडिंग धरे के धरे रह गए, इन्होंने शॉर्टकट निकाल लिया है कि कैसे अपने मंजिल तक पहुंचना है। ये फर्म थे अपने उस बिलीफ में कि विधानसभा इनकी मंजिल है, वहां तक पहुंचना है।
1: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए अब आखिरी बैरिकेड भी ध्वस्त हो गया है।
0: जब प्रदर्शनकारियों की भीड़ विधानसभा के गेट से करीब 2 किलोमीटर दूर थी तब पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लेने की कोशिश की गई। आरोप है कि यह भी तब हुआ जब प्रदर्शनकारी कोई हुड़दंग या उपद्रव बिल्कुल नहीं कर रहे थे। उल्टा प्रदर्शनकारियों की इस भीड़ ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड के सामने राष्ट्रगान गाया और ये कहा कि पुलिस उनके संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करे। लेकिन जब कुछ युवा पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुए तब पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया और उन पर आंसू गैस का भी इस्तेमाल हुआ। देखिए
2: ये देखिए, ये देखिए, ये भगदड़ यहाँ पे हुई है, ये भगदड़ यहाँ पे हुई है। और ये देखिए, ये यहाँ पे, ये पहली दफे छात्रों को खदेड़ा गया है और पहली दफे बैकफुट पर छात्र आए हैं।
0: लाठीचार्ज के बाद सड़कों पर बिखरी हमारे युवाओं की ये चप्पलें बता रही हैं कि यहाँ सिर्फ चप्पलें नहीं छूटी बल्कि उनका सपना छूटा है। सोचिए, जिस उम्र में इन पैरों को नौकरी और भविष्य की ओर बढ़ना था, उसी उम्र में ये पैर लाठियों से बचने के लिए भाग रहे थे। और ऐसा नहीं है कि ये दृश्य हमने पहली बार देखा। पिछले महीने 20 जुलाई को जब दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, तब भी सड़कों पर बिखरी ये सैकड़ों चप्पलें हमारे युवाओं की व्यथा बता रही थी। और आज भी ये बिखरी हुई चप्पलें हमारी बिखरी हुई व्यवस्था और उससे प्रभावित युवाओं की पीड़ा दिखा रही है। सुनिए,
6: पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हो गया है, पुलिस का लाठीचार्ज हो गया, दो तीन छात्र घायल हो गए हैं। पुलिस का लाठीचार्ज है, यहाँ पर लाठीचार्ज घायल हो गए हैं। यह देखिए, पुलिस का लाठीचार्ज है।
0: पुलिस के लाठीचार्ज के बावजूद प्रदर्शनकारी छात्रों का एक गुट जो है वो विधानसभा के गेट तक पहुंचने में कामयाब रहा। और यहाँ भी उन पर कैसे लाठियां बरसाई गई हैं वो देखिए। पुलिस के मैनुअल और ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है कि अगर कभी बल प्रयोग के लिए लाठी चार्ज करना पड़े तो लाठी कमर से नीचे मारी जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी प्रदर्शनकारी के सिर, गर्दन या कॉलरबोन पर लाठी ना लगे। लेकिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर कई प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने लाठीचार्ज के दौरान सीमाएं लांघी। और अब झारखंड के इस आंदोलन में भी कई प्रदर्शनकारियों ने अपनी चोटें दिखाते हुए ये सवाल पूछा है कि पुलिस उनके सिर पर लाठियां क्यों चला रही थी। और आप भी जब इन तस्वीरों को देखेंगे तो ये सवाल आपके मन में भी आएगा कि इन बच्चों की आखिर गलती क्या थी। अगर आपको इन्हें रोकना था तो आप इन्हें समझाते, जरूरत पड़ने पर हल्का बल प्रयोग करते, लेकिन यहां कैसे कई प्रदर्शनकारी बुरी तरह से घायल हुए उनका दर्द आप खुद देखिए। और ये भी समझिए कि हमारे देश में सरकारों से इंसाफ मांगना आसान नहीं है।
7: हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग कोई अशब्द भी नहीं बोले हैं। अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है। ये अच्छा नहीं कर रहे हैं,
8: लेकिन कोई रिप्सा
7: ये अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं।
9: माथा पूरा तोड़ दिया है, पूरा ब्लड आ गया है, पूरा अभी पट्टी और अथी लगा दिया मलहम। हम पूरा एकदम माथा और कान पूरा दर्द कर रहा है।
10: पुलिस आके एक लाठी बहुत जोर से मारी यहाँ पे, उसके बाद मैंने भागने का कोशिश किया, मैं नीचे गिर गया, नीचे गिर गया तो पैर में भी चोट लग गया है।
0: जानते हैं इस मार्च में एक छात्रा ने हमसे क्या कहा। उसने कहा कि जो युवा पहले ही आंखों में आंसू लेकर अपने हक के लिए सड़कों पर उतरे हैं, उन्हें सरकार आंसू गैस से और क्यों रुला रही है। सोचिए, इन युवाओं की आंखों में आंसू किसी गैस के कारण नहीं आए थे। ये आंसू बेरोजगारी के थे, ये आंसू टूटे भरोसे के थे, ये आंसू उस मेहनत के थे जिसका उन्हें सही फल नहीं मिला है। आंसू गैस के गोले फिर वहां छोड़े जा रहे थे। और ये भी सोचिए कि जब वही युवा अपनी आंखों के आंसू पोंछकर सत्ता के दरवाजे तक पहुंचे तो उनके हिस्से में फिर आंसू गैस क्यों आई। देखिए,
11: ये देखिए, अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं प्रदर्शनकारियों पर, अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
12: कपड़ा भिगा के रखो, कपड़ा भिगा कुछ रखो, ठीक हो जाएगा।
13: आगे में बहुत ज्यादा
8: जलन हो रहा है। हम लोग तो केवल अपना हक मांगने के लिए खड़े थे। हाँ, बिना बोले।
0: सरकार और पुलिस, उन्होंने इस पैदल मार्च को रोकने की कई कोशिशें की। हजारीबाग से रांची आने वाली बसों को इसलिए रोक दिया गया ताकि ज्यादा युवा विधानसभा के इस घेराव में शामिल ना हो। दूसरे जिलों से भी पुलिस बल को रांची बुलाया गया, जिनकी तैनाती विधानसभा और उसके आसपास की सड़कों पर की गई। लेकिन अपने भविष्य के लिए सड़कों पर उतरे इन युवाओं के हौसले कमजोर नहीं पड़े। इस पैदल मार्च की सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें आंदोलन का नेतृत्व कर रहे लोग भी खुद शामिल हुए। 9 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो, जिनका वजन लगभग 10 किलो से ज्यादा घट चुका था, डॉक्टर्स ने उन्हें सलाह दी थी कि वो पैदल मार्च में शामिल होने ना जाएं। लेकिन यहां पर यह जरूर दिखा कि जो लोग इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो भी मार्च में शामिल हुए। देवेंद्र महतो ने कहा कि अगर वो इस पैदल मार्च का नेतृत्व नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। वो एम्बुलेंस से प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे। भीड़ में शामिल एक एक प्रदर्शनकारी को यही समझाया कि सरकार भले क्रूरता करे लेकिन युवाओं को अपने असली मुद्दे को पकड़ कर रखना है। सुनिए।
13: मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है और मैं नहीं चाहता हूं कि जन्मदिन के मौके पर छात्र को कुछ ऐसा करे कि दिल्ली का जंतर मंतर की तरह कुछ अनहोनी हो। ऐसा छात्र को ना दे जिसके बदन पे खून निकले, जिसके माथा पे चोट आए और ये भीड़ और उग्र हो जाए।
14: कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
13: गिरफ्तारी ठीक है, वो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन आज हेमंत जी का जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर ऐसा तोहफा न दे जो जिससे खून बहे, जिससे अराजकता फैले, जिससे आक्रोश।
15: हम लोग का भारत का इतिहास में पहली बार ऐसा देखे कि ये नोकिले कांटेदार तार का ब्रेकेटिंग लगाया गया था 3-4 लेयर करके। तब मैंने सोचा कि जब मेरा इतना दर्द है, तकलीफ है, पीड़ा है शरीर में, 9 दिन से खाए नहीं है, लेकिन ये स्थिति देख करके हमसे रहा नहीं गया। मैं खुद विधानसभा में उसी हालत में आया, एम्बुलेंस से आया हूँ मैं, और मैं आया तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ छात्र का मांग पूरी करने के बजाय ये सरकार पुलिस या लाठी बरसा रही है, टियर गैस का उपयोग कर रही है, वाटर कैनन का प्रयोग कर रही है। मैं इतना डर गई है, सरकार कायर जैसा हरकत कर रही है। आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, हम लोग मुख्यमंत्री को जन्मदिन का विश कर रहे हैं और उधर से तोहफा से दिया हम लोग को, लाठी बरसाया जा रहा है, खून बहाया जा रहा है, लथपथ कराया जा रहा है। इतना इस तस्वीर को आज पूरा भारत ही नहीं पूरा दुनिया देख करके एकदम शर्मसार हो रहा है। झारखंड बहुत ही बुरा लग रहा है, क्या बताएं। अंजना मैडम, आप हमारी आवाज बने हैं, तभी जा करके अभी बहुत उम्मीद है। किस वर्ष सरकार और पुलिस के पास किस बात का चैलेंज, 1 मिनट में सरकार संतुष्ट कर दे छात्र को, सभी कोई पढ़ने लिखने चले जाएंगे। छात्र का काम नहीं है आंदोलन करना, सड़क पे हो हल्ला करना, सड़क पे प्रदर्शन करना, नारेबाजी करना। छात्र का काम है पढ़ना, छात्र का काम है परीक्षा देना, नौकरी करना, लेकिन उसका नौकरी को बेच दिया जाएगा, क्या करे छात्र, बता दीजिए आप, मजबूर है छात्र।
0: जिस वक्त पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, तब उस वक्त कई छात्र पानी की तेज बौछार के नीचे नाच रहे थे और शायद ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो पुलिस की इस कार्रवाई से झुकने वाले नहीं है। जो जज्बा, जो हौसला आज इन्होंने दिखाया है, अभी बहुत सारे लोग इस घटना को मनोरंजन के रूप में देख रहे हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि वाटर कैनन का इस्तेमाल कोई मजाक नहीं है। वाटर कैनन से जो पानी निकलता है उसका प्रेशर 10 से 20 बार के बीच होता है। ये प्रेशर इतना ज्यादा कि इससे हड्डी टूट सकती है, फ्रैक्चर्स हो सकता है। और झारखंड में भी जब पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, तब ये छात्र मस्ती करने के लिए इसमें डांस नहीं कर रहे थे, वो एक संदेश दे रहे थे। इनका कहना है कि पुलिस की कार्रवाई से प्रदर्शनकारी युवाओं का मनोबल ना टूटे, इसीलिए उन्होंने इस तरह अपना विरोध जताया है। और ये भी बताया कि जो प्रदर्शनकारी भूखे प्यासे बैठे हैं जो कई दिनों से तेज बारिश में भी डट रहे हैं वो वाटर कैनन से डरने वाले नहीं है।
3: डांस है ये कैसा प्रोटेस्ट है? दे आर प्रोटेस्टिंग एंड दीज आर प्रोटेस्टर्स आर लिटरली डांसिंग ऑन द वाटर कैनन। वाटर कैनन चलाना शुरू कर दिया है और इन प्रदर्शनकारियों को पीछे करने के लिए झारखंड पुलिस ने जब वो बैरिकेड तोड़ करके आए हैं उसके बाद इन पर वाटर कैनन शुरू कर दिया है। ये देखिए डांस करना शुरू कर दिया है इन छात्रों ने, यहाँ पर लिटरली जो है डांस करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर वाटर कैनन चलाए जा रहे हैं, लोग इनसे डरते हैं, अगर लग जाए वाटर कैनन की चोट तो गहरी होती है। ये यहाँ नाचने लगे हैं, ये सिर्फ झारखंड में हो सकता है। ये जेन जी है, ये जनरेशन जी है, ये जनरेशन जी है। पानी का टैंकर
16: बचाने के लिए, गर्मी से बच्चा लोग को बचाने के लिए सरकार पानी का बौछार कर रही है।
3: ये उपहास कर रहे हैं इसको, इसका भी मजा ले
16: लिया। सरकार हम लोग का सहायता कर रही है गर्मी से,
3: अरे गर्मी से बचाने के लिए।
0: यहाँ बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार प्रदर्शनकारी छात्रों की ज्यादातर मांगे मान चुकी है तो ये पैदल मार्च आज क्यों निकला? तो ऐसा नहीं है। इस सवाल पर प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि सरकार ने मुख्य मांगों पर अब भी सहमति नहीं दी है। सबसे पहली मांग ये है कि जिन परीक्षाओं में धांधली हुई उनकी जाँच CID की जगह केंद्रीय जाँच एजेंसी CBI से कराई जाए। और दूसरी मांग ये है कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो CGL की परीक्षा है उसे भी रद्द किया जाए। और अभी झारखंड सरकार इन दोनों मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। CBI केंद्रीय जांच एजेंसी है, अगर CBI को झारखंड की परीक्षा में धांधली की जांच सौंपी जाती है तो झारखंड सरकार को उसे कई सवालों के जवाब देने होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को डर है और यह आशंका है विपक्ष की तरफ से, चूंकि वो हैं, पहले भी उन पर केस हुआ है कि CBI के जरिए केंद्र सरकार का दखल झारखंड सरकार में बढ़ सकता है और ये दखल ना हो इसीलिए विपक्ष के कई राज्यों में CBI जांच पर अंकुश लगाया गया है। ये नियम बनाया गया कि CBI को इन राज्यों में किसी भी मामले की जांच करने से पहले वहां की सरकार की अनुमति लेनी होगी। ये नियम 5 नवंबर 2020 को झारखंड में भी लागू किया गया जिसके कारण CBI जांच को लेकर पूरी कहानी अब भी फंसी है। यहां ये भी समझिए कि CBI पर छात्रों को इतना भरोसा क्यों है। 2005 से 2026 के बीच कुल 220 परीक्षा धांधली और पेपर लीक के मामले दर्ज किए गए हैं जो 21 अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के थे। इनमें भी नीट जैसी जो बड़ी परीक्षाएं हैं उनकी जांच हर बार CBI को ही सौंपी गई। 2015 के बाद से CBI को पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली के कुल 17 मामले सौंपे गए हैं और यही कारण है कि जब कहीं भी इस तरह की कोई बेईमानी होती है तो छात्रों को लगता है कि निष्पक्ष जांच होगी, तभी होगी जब CBI करेगी और CBI भरोसेमंद है। हालांकि यहां हम इस बात का भी जोड़ना चाहते हैं कि 2015 के बाद CBI ने जिस भी पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली के मामले की जांच की उसमें CBI एक भी मामले में अभी तक आरोपियों को दोषी साबित नहीं कर पाई है। दोषियों को सजा दिलाने का जो सक्सेस रेट है वो अभी आपके सामने है, नहीं के बराबर। अगर सिर्फ 2024 की नीट परीक्षा की बात करें तो उस वक्त भी CBI को इसकी जांच सौंपी गई थी, 90 दिन के अंदर चार्जशीट को तैयार करने में नाकाम रही जिसके बाद उस पेपर लीक के आरोपी जमानत पर बाहर आ गए। और यहां बात सिर्फ CBI की नहीं है, 2015 के बाद ED ने भी पेपर लीक के कुल 11 मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच की लेकिन सक्सेस रेट 0। यानी ईडी ने जिन 11 मामलों की जांच की उनमें एक भी मामले में आरोपियों को वो दोषी साबित नहीं कर पाई। और सवाल यही है कि ईडी हो या CBI, प्राथमिकता क्या है? यहां हम कोई सवाल नहीं उठा रहे, भाई जांच तो होनी ही चाहिए। हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि जब न्याय दिलाने की बात आती है तो इस देश के तमाम लोग CBI पर भरोसा करते हैं, अपने मामले की जांच CBI से ये बच्चे कराना चाहते हैं जेन जी। लेकिन CBI का अब तक का सक्सेस रेट परीक्षा के टेस्ट में किसी का भी, किसी पुलिस, किसी CBI, किसी ED, सबका वही हाल रहा है और इसी वजह से स्थिति इतनी बिगड़ी है। और ये बात कई बार उठाया गया है कि क्या सीबीआई की जांच में प्रभावशीलता बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। हालांकि यहां ये भी देखिए कि प्रदर्शनकारी छात्र आखिर झारखंड की सीआईडी पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे। आज ही झारखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं एल क्यांगते, उनको सीआईजी ने गिरफ्तार किया जबकि उन पर शुरुआत से ही सवाल उठ रहे थे। एल क्यांगते जो है वो 27 फरवरी 2025 को ये जिम्मेदारी तक उनको सौंपी गई थी जब वो झारखंड सरकार के मुख्य सचिव रह चुके थे। रिटायरमेंट के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन पर भरोसा दिखाया, झारखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बना दिया और जब इस आयोग की इन परीक्षाओं में धांधली के आरोप लगे तो दावा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद उनका इस्तीफा नहीं मांगा। यही माना गया कि पिछले मामलों की तरह ये मामला भी रफा दफा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विवाद बढ़ा और फिर एल क्यांगते ने नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दिया और अब छात्र उनकी गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं, तो आज जाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। यहां ये भी देखिए कि एल क्यांगते वही अफसर हैं जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि वो शायद चुनावों में व्यस्त होंगे। यानी एल क्यांगते जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफी करीबी माने गए और यही कारण है कि छात्रों को झारखंड सरकार की सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं है। कुछ तस्वीरें दिखा दीजिए क्योंकि अगर प्रदर्शनकारी छात्र जो है वो सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे दूसरा बड़ा कारण जो है वो अब हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं और आपको सीधा दिखाते हैं। 13 साल में 12 परीक्षा ये साहब पास कर चुके हैं और इसीलिए हमने सोचा कि अभय तिवारी की जो पूरी कहानी है वो आपको जरूर दिखाएं। ये अभय तिवारी, ये वो नाम है जो आज पेपर लीक के मामले में सबसे बड़ी परेशानी इन छात्रों के लिए बना हुआ है। अब आप बस देखते जाइए कौन सा वो एग्जाम है जिसको अभय तिवारी ने निकाला नहीं। पुलिस एसआई लिखित परीक्षा का एग्जाम, फिर नेवी एसएआर का लिखित परीक्षा वो भी निकाल लिया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर सहायक, आईआरबी कांस्टेबल लिखित परीक्षा वो भी निकाला, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल परीक्षा वो भी निकाल लिया, नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड का एग्जाम वो भी निकाल लिया, जेएसएससी पीजीटी परीक्षा निकाल लिया, सोचे जेएसएससी सीजीएल परीक्षा, जेपीएससी सहायक वन संरक्षक और जेपीएससी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर ये भी निकाल लिया। आप सोचिए मतलब उसके बाद से झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, पुलिस एसआई पुलिस के सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होता है वो भी इस शख्स ने निकाल लिया लिखित परीक्षा, और नेवी वाला तो हमने आपको दिखाई दिया था। तो ये है इसका पूरा कच्चा चिट्ठा जिसमें आप देख रहे हैं कि 13 साल में ये एक शख्स कितने एग्जाम्स निकालता है और आखिर छात्रों का इस शख्स पर इतना गुस्सा क्यों है। क्योंकि ये उस सिस्टम का एक प्रतीकात्मक चेहरा है, एक ऐसा व्यक्ति जो 12 एग्जाम्स निकाल लेता है, या तो बहुत बड़ा प्रोडिजी इंटेलिजेंट जीनियस आदमी या फिर घोटाला। और फिर घोटाले की जब बात सामने आई है तो आइए आपको जो पूरी प्लानिंग है वो जरा यहां पर दिखा देते हैं। और पूरा परिवार देखिए, परिजन है ये इनके, तो सिर्फ अभय तिवारी ही 12 एग्जाम नहीं लगा रहा निकाल रहा था, ये देखिए मौसा के भाई का बेटा बापी कुमार मिश्रा, ये बीएसओ रैंक 124 लाते हैं ये वाला। उसके बाद से आप देख लीजिए, सबसे पहले तो अभय तिवारी है ही, दूसरे नंबर पर आते हैं अभय तिवारी का साला, झारखंड में जेएसएससी सीजीएल बीएसओ में रैंक पाने वाला। आपको पता है जितने छात्रों से वहां पर बात हो रही है वो छात्र बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि नेताओं के परिवार में एक हर कोई एग्जाम निकाल लेता है, एक एक परिवार में 6-6, 8-8, 10-10 लोग एक बार में एग्जाम निकाल ले रहे हैं नेताओं के और इन लोगों के जो कि झारखंड में ये जेएसएससी सीजीएल बीएसओ में रैंक पाने वाला है, मतलब अधिकारी। अब इसके परिवार का इसका पूरा नेटवर्क देखिए कि कैसे एक ही परिवार के इतने लोग निकालते हैं। उसके बाद से देखिए ममेरा भाई, तो इस पर आपको हाईलाइट करा देते हैं, एक तो साले से आपकी पहचान हो गई। फिर देखिए ममेरा भाई, ये भी एग्जाम निकाल लेता है, उपेंद्र मिश्रा नाम है और ये बीएसओ रैंक 51 निकाल लेता है, तो एक ममेरा भाई जो है वो भी एग्जाम निकाल लिया है। उसके बाद आ जाइए चाचा के साढ़ू का बेटा, ये है तेज नारायण पंडित, बीएसओ रैंक 68, ये भी जेएसएससी सीजीएल में ये देखिए एग्जाम निकाल लेते। अब आ जाइए नीचे आइए, साले का मौसेरा भाई, तो एक और रिश्ता निकला, तो साले तो साले, साले के मौसेरे भाई का भी। विक्रम पांडे जो झारखंड में जेएसएससी सीजीएल बीएसओ में रैंक पाने वाला, बीएसओ रैंक 127, ठीक है। अब यहां पे आ जाइए, अभय तिवारी की भाभी, भाभी का भी हो जाता है, और यही बच्चे बता रहे हैं अभय तिवारी की भाभी का भी झारखंड में जेएसएससी सीजीएल बीएसओ में रैंक पाने वाली, ठीक है। अब आ जाइए, इनके साले की तो हो ही चुकी थी, साले के मौसेरे भाई की हो चुकी थी, फिर साली की भी हो गई, अभय तिवारी की साली है, ये भी जेएसएससी में सीजीएल में बीएसओ में रैंक पाने वाली है। उसके बाद हमने मौसा के भाई का बेटा आपको दिखाई दिया था, भाभी कुमार मिश्रा, और ये बहनोई का भांजा, ये क्यों पीछे रहे, तो बहनोई का जो भांजा है वो भी आप देखिए, वो भी निकाल लेते हैं रैंक, और वो भी बीएसओ रैंक 143 झारखंड में जेएसएससी, ये जो सीजीएल है उसमें वो भी एग्जाम निकाल लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमने आपको इस परिवार के 10 लोगों का दिखा दिया जिसके तार शख्स से जुड़े थे, और इसीलिए छात्रों का सबसे ज्यादा गुस्सा ऐसे लोगों के खिलाफ है जो सिस्टम में परीक्षा करा रहे थे, और उस परीक्षा के जरिए आप सोचिए कि वो क्या क्या धांधली कर रहे थे, वो क्या कुछ नहीं कर रहे थे। और अब आपको केरल में 36 दिन से चल रहे प्रोटेस्ट के बारे में बताएंगे, जहां आंदोलनकारियों ने अनोखा तरीका अपनाते हुए घास और मिट्टी खाकर विरोध जताया है। इन आंदोलनकारियों का कहना है कि उन्होंने दिन रात एक करके कठिन परीक्षा पास की, मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाई और सरकारी शिक्षक बनने का सपना देखा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जंतर मंतर से लेकर रांची, रांची से लेकर अगर केरल में ये प्रदर्शन हो रहे हैं तो वहां की भी जरूरत है दिखाने की। जानते हैं बदले में सिर्फ सरकारी दफ्तरों के चक्कर और लंबा इंतजार इन बच्चों, ये तस्वीरें केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की है। यहां सरकारी नौकरी की आस लगाए बैठे पढ़े लिखे युवाओं ने विरोध का ऐसा तरीका चुना जिसने हर किसी को हैरान किया। मामला केरल लोक सेवा आयोग की लोअर प्राइमरी स्कूल टीचर यानी LPST परीक्षा से जुड़ा है। मई 2025 में रैंक लिस्ट जारी हुई थी, लेकिन परीक्षा पास करने वाले ये होनहार युवा अपनी नियुक्ति का इंतजार करते करते थक चुके हैं। इसकी वजह से पिछले 36 दिनों से केरल सचिवालय के बाहर लगातार आंदोलन चल रहा है। 36वां दिन है ये। इस आंदोलन में वलारमती एस पिछले 12 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा पास करना एक सपने जैसा था, अच्छी रैंक भी आई, लेकिन अब लोग लगातार पूछ रहे हैं कि नौकरी कब मिलेगी। ये अनिश्चितता हमें मानसिक तनाव और गहरे डर में धकेल रही है, और इसी वजह से सोचे 36वें दिन ये आंदोलन। इस आंदोलन के दौरान युवाओं ने सचिवालय के बाहर जमीन पर बैठकर घास और मिट्टी खाई। इसके पीछे उनका दर्द साफ था, वो सिस्टम को ये बताना चाहते थे कि परीक्षा पास करने के बावजूद उन्हें इस हद तक लाचार कर दिया गया है कि जब उनके पास भूख से तड़पने के अलावा कोई चारा बचा नहीं है।

0: Now it's our condition, sitting here on the street, day and night. It's we feel so sad.
1: It's been 36 days. We are protesting in front of the secretariat. There is nothing happened.
2: इसी महीने 4 अगस्त को एयर इंडिया की एक फ्लाइट थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही थी. एयर टर्बुलेंस की वजह से वो हवा में अचानक 300 फीट नीचे आ गई. इस घटना में कई यात्रियों को गंभीर चोटें भी आई थी. डीजीसीए ने एसओपी के तहत इसकी जांच करवाई. तो जानते हैं क्या पता चला? पता चला कि फ्लाइट का एक पायलट ड्रग्स के नशे में था. इस खबर ने हवाई यात्रियों को चिंता में डाल दिया है. फ्लाइट में पायलट की एक मामूली सी गलती यात्रियों की जान ले सकती है, और एक दो नहीं अनेकों जान. और यहां तो एयर इंडिया का पायलट ड्रग्स के नशे में प्लेन उड़ा रहा था. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के मुताबिक इस घटना के बाद तय एसओपी के तहत दोनों पायलट्स का डोप टेस्ट किया गया. इसमें दोनों पायलट्स को साइको एक्टिव सब्सटेंस स्क्रीनिंग टेस्ट से गुजरना पड़ा. इस टेस्ट में एयर इंडिया फुकेट दिल्ली फ्लाइट के पायलट

0: चुनौती खड़ी कर दी है। अब उसे यह पता लगाना है कि जो फ्लाइट हवा में 300 फीट जो है अचानक नीचे आ गई, उसका पायलट नशे में आखिर क्यों था। डीजीसीए ने इसी वजह से इस केस को गंभीर घटना की श्रेणी में डाला है, जिसका मतलब यह है कि अब इस मामले की जांच एएआईबी यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो करेगा। ऐसा करना जरूरी भी था। दरअसल जिस फ्लाइट का पायलट आरोपों के मुताबिक ड्रग्स के नशे में चूर था, उसमें करीब 137 यात्री थे। 137 जिंदगियां, 3 नवजात, 8 क्रू मेंबर्स सवार थे। ये कितनी चिंता की बात है कि ड्रग्स के नशे में धुत पायलट के हाथों में इन मासूमों की जिंदगी की डोर थमा दी गई थी। जिस फ्लाइट में यह घटना हुई है उसके यात्रियों का बुरा हाल था। फ्लाइट केबिन की कुछ तस्वीरें सामने आई है, जिसमें फ्लाइट की छत से बड़े बड़े क्रैक्स नजर आए। फ्लाइट केबिन के एसी वेंट, जिसे गैस्पर वेंट भी कहते हैं, उसमें भी क्रैक्स आ गए थे। यही नहीं, फ्लाइट केबिन के ओवरहेड कंपार्टमेंट, जिसमें केबिन जो लगेज रखा जाता है, उसके दरवाजे उखड़ गए थे। टर्बुलेंस के समय इनमें रखा गया सामान यात्रियों पर आकर गिरा था। एयर टर्बुलेंस का सामान्य सा मतलब यह है कि जिस दिशा में विमान उड़ रहा है, वहां की हवा के बहाव में अचानक जो है बदलाव आना, और जिसकी वजह से रफ्तार में किसी भी बदलाव जो है वो किसी भी तरफ हो सकता है, किसी दिशा में। ऐसा होने पर विमान में झटके महसूस होते हैं, कई बार विमान के ऑल्टीट्यूड में गिरावट आती है, यानी विमान ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरता है, जैसा कि फुकेट दिल्ली फ्लाइट में हुआ। मौसम खराब होने पर ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन क्रू मेंबर्स पहले ही सचेत कर देते हैं। लेकिन जब अचानक ऐसी स्थिति आती है तो विमान में बैठे यात्रियों को गंभीर चोटें आ जाती हैं। फुकेट दिल्ली फ्लाइट के करीब 17 यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। कुछ यात्रियों ने बताया कि टर्बुलेंस सुबह के वक्त हुआ था, इसलिए ज्यादातर यात्री उस वक्त सो रहे थे। जैसे विमान 300 फीट नीचे गिरा, उस दौरान कई यात्रियों से जो उनके सिर थे वो विमान की छत से टकराए और वो विमान के फर्श पर आ गिरे। दिल्ली में विमान लैंड होने के बाद चोटिल यात्रियों को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ यात्रियों ने तो यहां तक बताया कि उन्हें विमान का पायलट नशे में लग रहा था। उन्होंने बताया कि लखनऊ और हैदराबाद में लैंड करने का विकल्प मिलने के बावजूद वो घायल यात्रियों को लेकर दिल्ली आया। सुनिए,
1: ये दिखता है नेग्लिजेंस ऑफ द स्टाफ जो एयरलाइंस में पायलट हैं, और नेग्लिजेंस ऑफ जो सिस्टम है, क्योंकि उनको पता है कि ये करके हम बच सकते हैं, उसीलिए उन्होंने ये किया है। उनको पूरा का पूरा ये कॉन्फिडेंस है कि हम तो निकल जाएंगे।
2: जब फ्लाइट नीचे जा रही थी तो मेरे को सबसे ज्यादा चिंता हुई बच्चों की। ये हमारे पास में जो बैठा हुआ था, मेरा दोहेता बैठा हुआ था, मैंने जोर से उसको पकड़ के बेल्ट लगाई, उसमें वो हैंडल मेरे यहाँ पे घुस के रिब्स में दो में थोड़ी चोट आई है। पर ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है, इतना मतलब फैमिलीज, इतने लोग बैठे हुए, 3 साल की बच्ची उछल के इतना पीछे तक चली गई, ये कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं यार। छोटे छोटे इंस्टेंसेस होते हैं जो जिंदगी भर के लिए हमारे बच्चे अब कह रहे हैं कि हमको बैठना ही नहीं कभी फ्लाइट में।
0: फिलहाल विमान दोनों पायलट और क्रू मेंबर्स की उड़ान पर रोक लगा दी गई है और जांच एजेंसियों ने फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को भी जब्त किया है। मुख्य पायलट का ड्रग्स के नशे में पाया जाना एक बहुत बड़ी लापरवाही है। सच ये है कि हर पायलट की प्री फ्लाइट और पोस्ट फ्लाइट जांच होती है, लेकिन क्या जांच होती है? पायलट के लिए नियम यह है कि वो उड़ान के 12 घंटे पहले तक शराब का नशा नहीं कर सकता, यानी उड़ान के दौरान शरीर में अल्कोहल की मात्रा 0 होनी चाहिए। इसके लिए प्री फ्लाइट ब्रेथ एनालाइजर जो है ना, वो टेस्ट करवाया जाता है, वो अनिवार्य है, मैंडेटरी है। इसी तरह से भारत के बाहर से आने वाली फ्लाइट्स के पायलट्स का पोस्ट फ्लाइट ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया जाता है। फ्लाइट ऑपरेशंस में नशा करना यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़ करने जैसा है, इसीलिए इस बड़े अपराध की तरह इसे देखा जाता है। यही वजह है कि नशे के आरोप सही पाए जाने पर डीजीसीए सख्त एक्शन लेता है। प्री फ्लाइट टेस्ट में अगर पायलट को शराब के नशे में पाया जाता है तो इस पहली गलती पर लाइसेंस 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, दूसरी गलती पर 3 साल के लिए, और तीसरी गलती पर स्थायी रूप से रद्द किया जाता है। पोस्ट फ्लाइट टेस्ट में पहली गलती पर लाइसेंस 1 साल के लिए, दूसरी गलती पर स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाता है। पायलट के लिए ड्रग्स के नशे को लेकर नियम अलग है। पहली बार रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो पहली गलती मानकर उड़ान भरने से रोक दिया जाता है, नशा मुक्ति केंद्र भेजा जाता है। पायलट अपनी ड्यूटी पर तभी लौट सकते हैं जब नशा पूरी तरह से छूट चुका हो। दूसरी बार रिपोर्ट पॉजिटिव आई यानी दूसरी गलती की, तो लाइसेंस 3 साल के लिए सस्पेंड, और तीसरी बार अगर ऐसा होता है तो लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द। इसके अलावा अगर पायलट ने ड्रग्स टेस्ट देने से इनकार किया तो भी लाइसेंस 1 साल के लिए सस्पेंड और नशा मुक्ति प्रोग्राम से जुड़ना होता है। दूसरी बार अगर टेस्ट देने से मना किया तो लाइसेंस 3 साल के लिए सस्पेंड, तीसरी बार किया तो हमेशा के लिए लाइसेंस रद्द हो जाता है।

अब हम एक ऐसी खबर आपको मध्य प्रदेश की बताएंगे जो बताती है कि सिस्टम की नजर में मृत इंसान की कीमत कचरे से ज्यादा कुछ नहीं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक महिला के शव को कचरा ढोने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली से ले जाया गया। छतरपुर के एक सिविल अस्पताल का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें अस्पताल से महिला के शव को ले जाने के लिए कचरे वाली गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। नियमों के हिसाब से शव को ले जाने के लिए शव वाहन का इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन अस्पताल ने शव को किसी कचरे से कम नहीं समझा और इसीलिए यह खबर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को देखनी चाहिए। मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य बजट करीब 24,000 करोड़ रुपए का है और इतने भारी भरकम स्वास्थ्य बजट वाले राज्य में ऐसी घटना सामने आने से हड़कंप मचा है। सभी अधिकारी एक दूसरे से यही सवाल कर रहे हैं जिसका जवाब आम लोग उन्हीं से पूछना चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक मृतक के परिजनों ने नगर पालिका से शव वाहन देने की अपील की थी लेकिन उन्हें वो नहीं दिया गया। ऐसे में अस्पताल में शव भेजने की जल्दबाजी में कचरा उठाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली मंगवा ली गई और उसी में शव लादकर भेज दिया गया। अब से कुछ घंटे पहले दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में 7.4 की तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के झटके कोलंबिया के पड़ोसी देश इक्वाडोर और वेनेजुएला तक महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके इतनी तेज थे कि कई इमारतों को नुकसान हुआ है। अब तक करीब 20 लोगों के मारे जाने की खबर है, सैकड़ों लोगों के घायल होने की आशंका है। भूकंप का केंद्र कोलंबिया की राजधानी बोगोटा से करीब 400 किलोमीटर दूर सैन होजे जो जयपामा में पाया जा रहा है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट पे इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और याद रहे, मुंह के मीठे तो सब हैं, मसला तो अंदर ही अंदर चल रहा है। नमस्कार।

0: जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और अनियमितताओं के विरोध में छात्रों ने रांची में विधानसभा का घेराव किया। छात्र झारखंड विधानसभा के गेट के पास तक पहुंच गए थे। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने की मांग कर रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है।
1: गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ये देखें, अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
2: झारखंड में छात्रों का आक्रोश, विधानसभा तक विरोध।
3: ये देखिए, बैरिकेड्स तोड़ दी है छात्रों ने।
4: तोड़ेंगे जितना लेवल पे होगा। सिंहासन खाली करो, अब जनता आ रही है।
2: लाठीचार्ज, आंसू गैस, पानी की बौछार, रांची में आर पार। विधानसभा गेट तक पहुंचे छात्र, बैरिकेड टूटे, झुकेगी सरकार।
5: फिर से वाटर कैनन चलाना शुरू कर दिया है।
6: बच्चों का सीट बेच के नौकरी उन लोग खा जा रहे हैं, तो अवसर की समानता कहाँ है?
2: पेपर लीक और परीक्षा में धांधली, छात्रों ने छेड़ी अगस्त क्रांति।
7: अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है, सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है।
2: आंदोलन से छात्रों ने दिखाई ताकत, सरकार मानेगी हर एक शर्त।
8: आपकी सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाहती है।
9: युवा को पलटी कर दिया जाता है वायु, वायु को कोई रोक नहीं सकता।
2: 17 दिन से जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर रांची के जयपाल मुंडा स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन और अनशन कर रहे छात्रों का सब्र टूटा तो आक्रोश से भरे छात्र सीधे विधानसभा के लिए कूच कर गए। उसके बाद जो हुआ, तस्वीरें आपके सामने। छात्र आंदोलन की सांधी में बैरिकेड भी उखड़ गए और विधानसभा को घेरने के लिए की गई कटीले तारों की बाड़बंदी भी छात्रों ने उखाड़ फेंकी। प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। फिर भी छात्रों का सैलाब नहीं थमा तो वाटर कैनन यानी पानी की बौछारें बरसानी पड़ गई तो आखिर में पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे।
1: ये देखिए, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
2: अब छात्र अड़े हैं और सुरेंद्र सरकार के खिलाफ डटे हैं, अपनी शर्तों के लिए, अपनी मांगे मनवाने के लिए। आज हम आपको रांची आंदोलन में विधानसभा घेराव की पूरी टाइमलाइन दिखाएंगे। ये भी बताएंगे कि प्रदर्शनकारी छात्रों और सुरेंद्र सरकार के बीच बात कहां अटकी है, सरकार क्या कह रही है और छात्र किस बात पर अड़े हैं।
10: हम लोग डरने वाले नहीं है। सरकार का एक ही विकल्प है, हमारा मांग को पूरी करे, अन्यथा सरकार अपना कुर्सी नहीं बचा पाएगी, उसका कुर्सी पर खतरा है।
11: किसी भी शर्त पर यहाँ से नहीं हटने वाले, जब तक सरकार घोषणा नहीं कर दे कि सीजीएल रद्द हो गया।
12: ये मेरे पोस्टर का मतलब ये था कि हम लोग स्नैप को कोई फिल्टर नहीं जो हमारा फ्यूचर वो स्किप कर दे।
2: रविवार को झारखंड सरकार के मंत्रियों की विशेष कमेटी और प्रदर्शन कर रहे छात्र प्रतिनिधियों के बीच 3 दौर में करीब 5 घंटे तक मैराथन वार्ता चलती, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती। और फिर छात्र 10 अगस्त को पहले से घोषित विधानसभा घेराव करने का फैसला लेते। छात्रों को सुबह 10 बजे से पहले पुरानी विधानसभा के पास जमा होने के लिए कहा जाता है, क्योंकि मार्च पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा तक का था। ऐसे में छात्र पोस्टरों और बैनरों के साथ पुरानी विधानसभा पहुँचने लगते।
13: हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहां से मार्च की शुरुआत होनी है। आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार सीजीएल रद्द करेगी?
14: क्यों रद्द करना पड़ेगा? हम लोग आंदोलनरत इसी कारण से है कि ये परीक्षा रद्द होगा। आगे से आने वाली सभी परीक्षाएं पारदर्शी रूप से ले जाएंगी, सीटें नहीं बिकेंगी, पेपर लीक नहीं होगा।
15: सरकार से हमारी मांग है जैसे सीजीएल को रद्द करना होगा, सीबीआई जांच करनी होगी।
13: और देखिए, छात्र यहाँ सड़क पे बैठ गए हैं, छात्रों की तरफ से नारेबाजी हो रही है।
16: कितनों ब्रेक कटी, कितनों काटा लगा ले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 26 वर्ष से हमारा हक मारा जा रहा है, इस बार हम लोग नहीं छोड़ेंगे सरकार।
17: सरकार जब तक हम लोग को लिखित नहीं देती है और जब तक सीबीआई सीआईडी जांच नहीं करवाती है, तब तक हम लोग रोड पे रहेंगे, सड़क पे रहेंगे।
0: छात्र सोमवार दिन भर विधानसभा के बाहर जमे रहे। शाम को भी छात्रों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी इस बात पर अड़े हैं कि जब तक उनकी मांगों को सुना नहीं जाएगा वो पीछे नहीं हटेंगे।
2: और पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा के लिए आंदोलनकारी छात्रों का मार्ग शुरू हो जाता है। छात्र विधानसभा तक ना पहुंचे इसके लिए बैरिकेडिंग की जाती है और कटीले तारों की बाड़बंदी भी कर दी जाती है। पुलिस बैरिकेडिंग से प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने की कोशिश करती है,
18: लेकिन छात्र बैरिकेडिंग को लांग कर आगे बढ़ जाते हैं। आपको बता दें कि विधानसभा तक के रास्ते में 6 जगह बैरिकेडिंग की गई।
19: हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के वंशज हैं, झारखंड के लिए लड़ सकते हैं तो हम लोग भी लड़।
20: हमारे 3 मांगे हैं सर, तब तक यहाँ से नहीं हिलेगा जब तक उसने अपना जितना मांग रखा है पूरा ना हो जाए।
18: प्रदर्शन में शामिल एक छात्र गुलाब लेकर आते आज तक से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं ये फूल हमारे प्रिय सीएम हेमंत सोरेन के लिए लाया, जिनके कानों पर 16 दिन से जू नहीं रेंग रही, हम हर कांटे का जवाब फूल से देंगे।
21: तरीका सबसे बेहतर तरीका है, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का एक प्रतीक भी है कि हम इतने शांतिपूर्ण हैं कि हम कांटों का जवाब फूल से दे सकते हैं।
18: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्रनाथ महतो एम्बुलेंस से विधानसभा के लिए रवाना होते हैं। देवेंद्रनाथ महतो स्ट्रेचर पर बैठकर मार्च में शामिल होते हैं। ऐसे में महतो को छात्रों ने अपने कंधे पर उठा लिया और फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने तिरंगा लहराकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। आप देख सकते हैं कि देवेंद्रनाथ महतो स्ट्रेचर पर है और प्रदर्शनकारियों ने स्ट्रेचर को कंधे पर उठाया हुआ है। महतो के हाथ में हेमंत सोरेन के पिता शिबु सोरेन की तस्वीर भी है। प्रदर्शनकारी जैसे ही आखिरी लेयर की बैरिकेडिंग तक पहुंचे, पुलिस वाटर कैनन एक्शन शुरू कर देती है। ऐसे में छात्र पानी में जमकर डांस करने लगे और कहने लगे, और चलाओ और चलाओ।
22: ये जेन जी क्यों बहुत मारक प्रचार करती है, आपको ये तस्वीर याद है, बहुत मशहूर फिल्म का है, हेमंत सोरेन की तस्वीर लगाई, लिखा है बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अब आप इस तरह के व्यंग अगर लेकर के आएंगे, इस व्यंग का कोई मार है क्या? ये वो एक नाम अभय तिवारी, वो उनको एस्ट्रोनॉट में भी दिखा दिया है, अभय तिवारी को आईपीएस भी बना दिया है, अभय तिवारी को एसडीएम भी बना दिया गया है, इसरो में साइंटिस्ट भी बना दिया गया है, डॉक्टर भी बना दिया गया, नेता भी बना दिया, मुख्यमंत्री, झारखंड का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया।
23: वो जस्ट एक मोहरा है, असली विलन अभी भी पर्दे के पीछे
24: सर, असली विलन।
25: मेरे दिल में सबसे ज्यादा अगर दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, तो मेरा भूख हड़ताल से ज्यादा दर्द हुआ उस कांटेदार तार का जाली से, एक आते आते टूट गया। ये 3 लेयर का ब्रेकेडिंग था, ये 3 लेयर का ब्रेकेडिंग आते आते ये छात्र लोग इससे हम लोग निकल जा रहे हैं।
18: प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा भवन के निकट पहुंच जाते हैं। अंतिम बैरिकेडिंग तोड़े जाने पर पुलिस प्रशासन की ओर से छात्रों पर लाठी चार्ज किया जाता है। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच भिड़ंत हो जाती है और इस दौरान पुलिस भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़ देती है।
22: प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं,
10: आंसू गैस, लाठी चार्ज, वाटर कैनन सब का प्रयोग किया जा रहा है हमारे आवाज को दबाने के लिए। ये सरकार डर गई है, कायर सरकार है, जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है।
18: पुलिसिया सख्ती और वाटर कैनन की बौछारों को देखते हुए छात्र रणनीति बदलते हैं और शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। प्रदर्शनकारी छात्र मुख्य मार्ग छोड़कर झारखंड उच्च न्यायालय के बगल से खेतों के रास्ते से विधानसभा की ओर तेजी से बढ़ने लगे।
22: मैं उसी रास्ते पर देखिए, जो छात्र पार, मैंने कहा था ना बैरिकेड पार कर लिया है, अब वो खेतों के रास्ते विधानसभा की ओर पहुंचने लगे हैं। जहां पर मैं आया आपको बिल्डिंग दिखाता हूं, ये विधानसभा का इलाका है और ये सारे खेतों के रास्ते, वो देखिए वो विधानसभा है और ये जितने छात्र हैं एक एक करके, अब इस इलाके में क्या है, दो बैरिकेड के बीच में जहां सुरक्षा व्यवस्था है, उन्होंने कहा छोड़िए आपको, पुलिस जो है वो बैरिकेड के पास रहेगी, ये खेतों के रास्ते निकल लिए। और देखिए रीला,
18: आखिरी बैरिकेडिंग के पास जब छात्र पहुंचते हैं तो पुलिस अपील करती है कि छात्र पीछे लौट जाएं, लेकिन छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं होते।
26: जो कार्रवाई थी वो खत्म हो चुकी है, लिहाजा पुलिस के तरफ से ऐलान किया जा रहा है, एसएसपी ने खुद अनाउंस किया है और अनाउंस किया जा रहा है कि अब जब आप विधानसभा मार्च आपका था, आप यहाँ पे अपने बातों को रखने के लिए आए थे, विधायक जो बैठते हैं, मंत्री जो बैठते हैं, जो डिसीजन मेकर हैं लोकतंत्र के मंदिर में जो बैठते हैं, उनसे जब आप बातें करने आए थे, तो जब सत्र खत्म हो गया आज का, तो क्यों नहीं आप वापस चले जा रहे हैं?
18: प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा के गेट पर पहुंच जाते हैं जहां भारी पुलिस बल तैनात रहता है, लेकिन छात्रों का प्रदर्शन जारी रहता है। और वो अपनी मांगों पर अड़े रहते हैं। अलग अलग वेश में प्रदर्शनकारी नजर आते हैं। इस प्रदर्शन को देखिए, ये स्पाइडरमैन बन के आया है।
22: वाटर कैनन थे, टैंकर थे, सबका पानी खाली हो गया। बाकायदा छात्रों ने रेन डांस का मजा लिया। और अब इस सड़क से आगे ये जो बैरिकेडिंग, यही रास्ता नई विधानसभा है। सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर ही यहाँ पर विधानसभा का प्रमुख द्वार है। और उसी के पहले देखिए, स्पाइडरमैन भी दिख गए यहाँ पे। जंतर मंतर से बहुत सारी सिमिलैरिटी दिखाई पड़ती है। स्पाइडरमैन भी है, बैटमैन भी है, कुच्चू पुच्चू वाले पोस्टर भी है।
18: रांची में सीएम आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ाई जाती है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों से झारखंड सरकार की 3 दौर की बातचीत नाकाम हुई है। सरकार का दावा है कि 95 से 98% मांगे मान ली गई हैं, लेकिन जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और जेपीएससी भर्ती धांधली की सीबीआई जांच की मांग ना माने जाने तक प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं।
3: एक हाई लेवल डेलीगेशन, हाई लेवल कमेटी बनाकर, 4 मंत्रियों की एक कमेटी बनाकर संवाद का रास्ता खोला था। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि यदि यह आंदोलन सिर्फ छात्रों का होता तो आज प्रदर्शन की जरूरत नहीं थी। सरकार ने 95% मांगे बच्चों की मान ली थी।
18: इस प्रदर्शन के बीच झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव और जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते को ब्लैक लिस्टेड कंपनी TDPL को परीक्षा का ठेका देने के लिए CID ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन छात्रों का कहना है कि जब तक सोरेन सरकार उनकी एक एक मांग नहीं मान लेती, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। आज तक ब्यूरो।
0: और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर जंतर मंतर प्रदर्शन पर हुए लाठी चार्ज का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी ने सवाल किया कि लाठी चार्ज का आदेश किसने दिया था, इसका जिम्मेदार कौन है, वो सामने आए। गृहमंत्री अमित शाह सदन में आकर बयान दें। राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अराजकता फैला रहे हैं। गृहमंत्री हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। राहुल गांधी नहीं चाहते कि संसद चले।
4: अमित शाह ने ऑर्डर दिया था या नहीं? बिना होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के ना दिल्ली पुलिस गोली चला सकती है, ना RAF गोली चला सकती है, राइट? तो हमारा सिर्फ एक सवाल है और उसका हम पहले जवाब मांग रहे हैं। आपने गोली चलवाई या नहीं चलवाई? अगर आपने चलवाई, यू आर कल्पेबल। अगर आपने नहीं चलवाई और किसी और ने चलवा दी, यू आर इनकॉम्पिटेंट। Either way you have to go।
5: जब गृह मंत्री जी ने कह दिया कि हम हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो फिर वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, राहुल गांधी, चर्चा से मत भागना। हम तैयार हैं, सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तुम भागना मत। मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर में।
0: शरद पवार की अगुवाई वाली NCP SP के सभी 8 सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। सुप्रिया सुले की अगुवाई में हुई ये मुलाकात कांग्रेस और शिवसेना UBT को रास नहीं आई। विपक्ष कह रहा है कि बार बार शरद पवार गुट के नेता अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो पक रहा होगा। हालांकि मुलाकात करने आए सांसद कह रहे हैं कि उन्होंने किसानों और अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर बात की है।

0: क्या शरद पवार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल होना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि परिसीमन बिल पर अटकलों के बीच सुप्रिया सुले की अगुवाई में एनसीपी शरद गुट के सभी 8 सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की है, जिससे एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है कि शायद शरद पवार का हृदय परिवर्तन होने वाला है। हालांकि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद शरद गुट के सांसद इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनका दल पाला बदलने वाला है।
1: एक तो पहले मैं ये बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो कयासबाजी जो चल रही है इसमें कोई भी तथ्य नहीं। हम 8 सांसद हैं एनसीपी एसपी के, हम विपक्ष में बैठते हैं और हमारे कई सारे मुद्दे हैं जो कई दिनों से प्रलंबित है। महाराष्ट्र के कुछ मुद्दे जैसे किसानों की ऋण माफी को लेकर मुद्दे, महाराष्ट्र के ड्रॉट के बारे में मुद्दे, प्याज के बारे में मुद्दे, पुणे नासिक सेमी हाईस्पीड रेलवे के बारे में मुद्दे, ऐसे हर चुनाव क्षेत्र के जो मुद्दे इन समस्याओं को लेकर आज हमने पीएम सर से मुलाकात की और आई एम रियली थैंकफुल कि पीएम सर काफी वार्म थे। पीएम सर ने ये सब मुद्दे सुन लिए, समस्याएं सुन ली और उन्हें इस पर कोई ठोस कार्रवाई करेंगे ऐसा आश्वासन दिया।
2: दरअसल पहले शरद पवार साहब की मुलाकात होती है प्रधानमंत्री जी से और उसके बाद आप लोग सब लोग जाके मिलते हैं और इस मौसम में जब लगातार हंगामा हो हल्ला हो रहा है, सरकार को नंबर्स चाहिए, तो कुछ जिक्र हुआ डीलिमिटेशन का या कोई और एफसीआरए का और कुछ समर्थन मांगने देने की बात हुई?
1: जी नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। जो आज मुलाकात हुई ये मुलाकात सिर्फ हमारे 8 जो संसदीय क्षेत्र है इन क्षेत्रों की जो दिक्कतें हैं, महाराष्ट्र के किसानों के बारे में जो समस्या है इसके बारे में बात।
2: अच्छा, आज आपकी मुलाकात थी और आप भगवा कुर्ता पहने हुए हैं, तो ये चॉइस जो है इंटेंशनल थी कि एक्सीडेंटल थी और आगे क्या है? ये देखने को भी मिलेगा कि भगवा खेमे में आप लोग आ जाएंगे?
1: जी, मैंने कई बार इससे पहले, एक तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे मेरा भाषण भी आपने सुना है, तो मैं ये मानने वाला हूँ कि भगवा मेरे तिरंगे का एक रंग है और इसीलिए मुझे लगता है किसी को मेरे भगवा रंग पहनने पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
2: तो वैसे आप लोग इधर है कि उधर है? वैसे इधर ही है ना, मतलब
1: मैंने हमेशा यही बात की है।
2: यही बयान 10 दिन बाद भी चलेगा?
1: डेफिनेटली यही बयान हर बार चलेगा कि शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा और महाराष्ट्र के हित में लोगों के साथ।
0: वैसे बताया जा रहा है कि शरद पवार गुट के सांसदों और प्रधानमंत्री के बीच करीब आधे घंटे की बैठक हुई। एनसीपी एसपी सांसद दावा कर रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने महाराष्ट्र में सूखे और सिंचाई से जुड़े मुद्दों पर चिंता जताई।
3: आज सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे उसमें किसानों के बारे में जो कर्ज माफी हो और कोई किसानों के अतिवृष्टि हो गई थी, बहुत से बारिश से वजह से हमारे किसानों का नुकसान हो गया था, वो कुछ विषय थे। और दूसरा हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, सब स्टेट के सब डिस्ट्रिक्ट में एक कैंसर केयर हॉस्पिटल होना चाहिए। और दूसरा पीएम रिलीफ फंडर रहता है उनके जो संख्या है वो बढ़ानी चाहिए। और तीसरा हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो किले बनाए 365 किले, उसमें से 12 किले यूनेस्को में लिया है, तो उसमें संख्या बढ़ानी चाहिए और जो जो किले उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देके वो किले अच्छे बनाने चाहिए।
0: इससे पहले भी एनसीपी शरद गुट ऐलान कर चुका है कि वो परिसीमन बिल के मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ है, लेकिन सियासत में जो होता है वो कहा नहीं जाता है और अक्सर जो कहा जाता है वो होता नहीं है। बार बार पीएम मोदी से शरद पवार या उनके सांसदों का मिलना विपक्ष को रास नहीं आ रहा है, इससे विपक्षी गठबंधन में खलबली मच गई है।
4: वारंवार अमित शाह आणि नरेंद्र मोदींच्या दरबारात हे का जात आहेत, कशामुळे जात आहेत? पवार साहेब ज्येष्ठ आहेत, ठीक आहे, पण इतर जे जात आहेत त्यांच्याकडे जाऊन नतमस्तक होताना आम्हाला दिसत आहे, याचा अर्थ काहीतरी आतून शिजलेलं असावं आणि त्यातून मला वाटतं की पुढच्या डिलिमिटेशनसाठी काही प्लॅनिंग असावी।
0: इस मुलाकात पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विपक्ष क्यों बेचैन, प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए किसी भी पार्टी के प्रतिनिधि पीएम से मिलते जुलते रहते हैं।
5: पंतप्रधान हे देशाचे असतात, ते कुठल्या पक्षाचे नसतात, त्यांना भेटायला जाणं यामध्ये काही अवघड असं मला वाटत नाही। मी देखील मुख्यमंत्री आहे, अनेक विरोधी पक्षाचे लोक मला भेटत असतात, त्यांची कामं सांगत असतात, त्यामुळे मला असं वाटतं की कुठल्याही वेगळ्या दृष्टीने याच्याकडे पाहण्याचं कारण नाही आहे। ते त्या ठिकाणी गेले आहेत ही अतिशय किंवा जाणार असतील तर अतिशय चांगली गोष्ट.
0: इधर शिवसेना यूबीटी पूछ रही है कि परिसीमन बिल से क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी.
6: नहीं, बात एक ही है. देखिए, डिलिमिटेशन के बारे में जो कहा जाता है कि रिप्रेजेंटेशन हो, पहली बात तो यह है कि जब सांसद आप बढ़ाओगे लगभग 500 से लेके 850 तक लेके जाओगे तो उनका जो खर्चा होता है, उनकी तनख्वाह होती है, उनका डेली अलाउंस होता है, उनका घर होता है, फिर बंगला हो या फ्लैट हो, आने जाने का खर्चा होता है, उस पर तो हम सारे लोग ही तो खर्चा करने वाले टैक्स पेयर. और ये खर्चा करने के बाद क्या जो व्यवस्था है, जो परिस्थिति है, वो बदलने वाली है? उससे अच्छा ये सोचिए आप कि पावर्स को डिवॉल्व कैसे किया जाए, डिसेंट्रलाइज कैसे किए जाए. जो नगर निगम होते हैं उनको अगर आप ताकत दें तो कितना अच्छा हो सकता है. विधायक होते हैं उनको अगर आप ताकत दें अच्छा काम हो सकता है. जो अभी के सांसद है उनको फंड बढ़ाया जाए तो भी अच्छा काम हो सकता है. और एक तरफ आप देख रहे हो कि 850 एमपी की बात कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या वो इसमें से सॉल्व होने वाली है?
0: हालांकि सुप्रिया सुले ने प्रस्तावित FCRA बिल के प्रति अपनी पार्टी के कड़े विरोध को दोहराया और मांग की कि इसे वापस लिया जाए या JPC को भेजा जाए. FCRA बिल पर फडणवीस ने कहा कि ये बिल किसी के खिलाफ नहीं है, इस पर विपक्ष ऐतराज क्यों जता रहा है?
5: देखिए, FCRA के ऊपर बिल लाने का कारण यही है कि लगातार इस देश के अंदर FCRA का उपयोग करके कुछ संस्थाएं पैसा ला रही है और उस पैसे का उपयोग देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है. जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए इस बिल में कोई अड़चन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है. FCRA की प्रोविजन भी रहने वाली है, जो हिसाब देंगे उनके लिए उनका लाइसेंस भी रहने वाला है. मुझे विश्वास है कि अगर किसी को इसमें कुछ कहना होगा वो संसद में कह सकते हैं. भारत सरकार रिसेप्टिव है और ये किसी एक समुदाय का इसमें विषय ही नहीं है, क्योंकि केवल क्रिश्चियन संस्थाओं के लिए FCRA नहीं है, सारी संस्थाओं के लिए FCRA ये आवश्यक है. और सारी संस्थाएं किसी भी समाज की हो, जो संस्थाएं जिनको फॉरेन से डोनेशन मिलता है उनको FCRA ये आवश्यक है.
0: फिलहाल इंडिया गठबंधन की नजर शरद पवार के अगले कदम पर है. उन्हें आशंका है कि पवार परिसीमन बिल का समर्थन करने के बहाने NDA में शामिल हो सकते हैं. लेकिन पवार इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे या NDA में जाएंगे, ये बात सिर्फ और सिर्फ शरद पवार ही जानते हैं. मुंबई से ऋत्विक भालेकर के साथ मौसमी सिंह और पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक.
7: राजस्थान में नई भर्तियां खूब निकल रही हैं, लेकिन पुरानी भर्तियों के लिए धरना प्रदर्शन का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा. राजस्थान सरकार ने खाने पीने के सामान की जांच के लिए पहली बार 2019 और फिर 2022 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती की थी. आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद सरकार ने 6 साल के बाद ज्वाइनिंग तो दे दी है, लेकिन 8 महीने हो चुके हैं, न सैलरी मिली है और न ही काम मिला. 6 साल के बाद ज्वाइनिंग पाए युवा एक बार फिर से धरना देने के लिए मजबूर हैं, जो इस बार स्वास्थ्य विभाग के अंदर ही धरने पर बैठ गए हैं.
8: खबरदार करके खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ता आज तक. खबर को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लगातार खबरदार करता है आज तक.
9: आपका बेटा या बेटी अगर भर्ती परीक्षा पास कर लेता है तो फिर आप मिठाई बांटते होंगे, लेकिन राजस्थान के हजारों ऐसे युवा हैं जो भर्ती परीक्षा पास करके भी बेरोजगार हैं. कहीं नियुक्ति पत्र लेकर भटक रहे हैं तो कहीं पोस्टिंग पाने के लिए धरना दे रहे हैं.
10: ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जो भर्ती है ना सर, भर्तियों के मामले में ये इस सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है.
11: इसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आया, उसमें हमारा रोल नंबर दिखा, उसके बाद में हम बिल्कुल फ्री हो गए कि एक बार मेहनत करके 2-2.5 साल हमने एक अच्छा परिणाम पा लिया. लेकिन उसके बाद जैसे ही हमें पता लगता है कि ये इस भर्ती पे दुनिया भर की रिट लग रही है और स्टे आ जाता है, उसके बाद ना तो सर पढ़ाई होती है, बिल्कुल मेंटली टॉर्चर हो चुके हैं सर, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं.
8: आपकी टीवी स्क्रीन पर बाईं तरफ 1 साल पहले की रिपोर्ट का वीडियो है, जब आजादी के बाद पहली बार 2019 और 2022 में निकली राजस्थान के खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती को पास करके भी नौकरी नहीं पा रहे युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए आज तक ने मुद्दा उठाया, जिसके बाद इन्हें नियुक्ति पत्र तो भजनलाल सरकार के राज में बंटा, लेकिन अब फिर से ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी धरना देने के लिए मजबूर कर दिए गए हैं. राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर में खुद के बेरोजगार सरकारी कर्मचारी नौकरी और तनख्वाह के लिए धरने पर बैठे। आप सोचेंगे कि एक सरकारी कर्मचारी कैसे बेरोजगार हो सकता है, तो समझिए ये राजस्थान सरकार के वो 225 स्वास्थ्य सुरक्षा अधिकारी हैं, जिन्हें भर्ती निकलने के 7 साल बाद भी न तो काम दिया जा रहा है न ही सैलरी। 225 खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिन्हें रुला रुला कर नवंबर दिसंबर 2025 में ज्वाइन तो कराया गया, लेकिन 8 महीने में न तो इनको कोई काम दिया न ही तनख्वाह। ये रोज जिला चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर में जाकर साइन करते हैं और बैठे रहते हैं।
12: सर हमारी जो ज्वाइनिंग है वो दिसंबर में हो चुकी थी, अभी 8 महीने पूरे होने को आए हैं, तो हमें ना तो पोस्टिंग दी जा रही है, सारी हमारी जो प्रोसेस होनी चाहिए थी पोस्टिंग तक की वो पूरी हो चुकी है, पर आज दिन तक हमें कोई भी पोस्टिंग नहीं मिली है, ना ही हमें अभी तक सैलरी दी गई है। तो हम यही चाहते हैं कि आचार संहिता लगने से पहले हमें पोस्टिंग दे दी जाए, ताकि हमें आचार संहिता के टाइम में भी इस भर्ती को आगे तक धक्के नहीं मारने पड़े और हमें पोस्टिंग मिल जाए हमारी यथास्थिति पे।
8: संजय कुमार जैसे युवा IIT दिल्ली से PhD की है, अब भरतपुर जिला चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर में काम करते हैं। पहले की तनख्वाह भी गई और अब बेरोजगार होकर घूमने को लाचार है। कोई बैंक मैनेजर की नौकरी छोड़कर आया, कोई टीचर और कोई प्रिंसिपल की नौकरी छोड़कर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती में परीक्षा निकाल कर नियुक्ति पाया, कोई MSc केमिस्ट्री करने के बाद, लंदन से फूड सेफ्टी में PG डिप्लोमा करने के बाद 6 साल से धरने पर ही बैठ रहे हैं। सैलरी न मिलने से इनको परिवार चलाना मुश्किल हो चुका है।
13: हमारी बहुत बड़ी बड़ी EMI पुराने जॉब की वजह से चल रही है और परिवार के
14: पुराने जॉब छोड़ के आए हैं।
13: जी सर, और अभी मेन प्रॉब्लम EMI तो चल ही रही है, साथ में सर फैमिली के खर्चे भी हैं, क्योंकि बच्चों की फीस भी पे करनी पड़ती है, उसके अलावा परिवार का खर्चा भी चलाना पड़ता है। सर हमें कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है।
15: हम लोग यहाँ वापस जाते हैं, सुबह साइन करते हैं, शाम को वापस घर पर चले जाते हैं। ठीक है, अब इस पर डेपोटेशन वाले पर ये विभाग क्यों मेहरबान है इसका तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये डेपोटेशन के रुके रहने की वजह से हमारी भर्ती या हमारी जो पोस्टिंग है वो नहीं हो पा रही है।
16: पहले भी हम गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में सर पिछले 11 साल से मैं वर्किंग हूँ। इससे पहले मैं वाइस प्रिंसिपल था, झुंझुनू में पोस्टेड था। अब समस्या ये आ रही है सर कि जो सैलरी वहाँ मिल रही थी नियमित सैलरी, वो भी अब यहाँ पिछले 8 महीने से नहीं मिल रही है। मैडम से काफी बार अनुरोध किया, 2-3 बार हम मिले व्यक्तिगत रूप से CA लेके, लेकिन आश्वासन के अलावा हमें कुछ मिला नहीं अभी तक।
8: दरअसल चयन होने के बाद भी जब इनको सरकार नौकरी नहीं दे रही थी तो ये लोग कोर्ट गए और कोर्ट में सरकार ने जवाब ये दे दिया कि विभाग में पहले जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पद था उस पर हमने डेपुटेशन पर दूसरे विभागों से रख लिया है, उनकी जगह इनको पद दे दिया जाएगा। मगर दूसरे विभाग से आए लोग जो डेपुटेशन पर लगी वो इस मलाईदार विभाग को छोड़कर अपने पुराने विभाग में जाना नहीं चाहते। अधिकारी कहते हैं कि उन्होंने फाइल मंत्री जी को भेज रखी, मंत्री जी के पास से फाइल आई तो फिर आगे काम हो पाएगा।
17: जब वो आया हमारे पास सर्टिफिकेट्स, वेरी माइनर मिस्टेक्स वेर देयर इन द स्पेलिंग्स, तो हमने उसको रेक्टिफाई कराया थ्रू FSSAI, बिकॉज वो गैजेट में जाता है तो स्पेलिंग में भी एरर नहीं होना है, तो भिजवाया तो 31 जुलाई को इनका नोटिफिकेशन जारी हो गया। अभी क्योंकि इनका सैलरी का है, वी आर वर्किंग ऑन द सैलरी पार्ट, वी हैव मेड देम एज अ ड्यूटी मान के इनको सैलरी देने वाला, और दूसरा इनका राजहेल्थ पोर्टल के थ्रू पोस्टिंग दिलाना है द प्लेस वेर दे कैन वर्क बेस्ड ऑन हमने जो एरिया आइडेंटिफाई किया है अंडर द एक्ट, तो फाइल अभी पेंडिंग है, तो हम भी उस पर थोड़ा एक्सपेरेट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके करें।
8: खाने पीने में मिलावट और नकली दूध और पनीर से लेकर नकली आटा और नकली धनिया पाउडर तक बेचे जाने की घटनाएं राजस्थान में लगातार सामने आ रही हैं। मगर वर्षों से विभाग में डेपुटेशन पर लगे अधिकारियों की लॉबी की वजह से मंत्री जी फाइल से भाग रहे हैं और लाचार होकर 225 खाद्य सुरक्षा अधिकारी बिना काम बिना सैलरी के धरना देने के लिए छोड़ दिए गए हैं।
18: ये राजस्थान का स्वास्थ्य भवन है और स्वास्थ्य भवन में ये नीचे बैठे हुए राजस्थान के खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं। आजादी के बाद पहली बार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती निकली थी, इन्हें ज्वाइनिंग तो दे दी गई बड़े लंबी लड़ाई के बाद, मगर कोई काम नहीं दिया गया न तनख्वाह मिलती है, और इन्हें दफ्तर के अंदर बैठना चाहिए था, ये गलियारे में बैठे हुए हैं अधिकारियों के दफ्तरों के बाहर अपने मांग को लेकर कि 2019 में भर्ती हुई थी और अब तक नौकरी नहीं मिल पाई, कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, कैसे घर चलता है इनका।
7: इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।

0: प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पर राहुल गांधी का बड़ा हमला, पूछा किसने दिया छात्रों के ऊपर पैलेट गन चलाने के आदेश, चढ़ावा चोरी को लेकर प्रधानमंत्री को घेरा नड्डा का पलटवार, माहौल खराब कर रहे नेता विपक्ष। परीक्षा धांधली के खिलाफ रांची में छात्रों का धरना, विधानसभा मार्च के दौरान लाठीचार्ज, हेमंत सोरेन ने प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया, देवेंद्र महतो बोले अब नहीं होगी सरकार से बात। रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी ने आज झारखंड बंद बुलाया, सीएम आवास पर प्रदर्शन किया गया, जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन गिरफ्तार, ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक कुदरत का कहर, चमोली में बह गया पुल, बीजेपी सांसद बलूनी बोले राहत और बचाव पर सरकार की नजर, रायगढ़ में 9 लोगों की मौत, गुजरात असम में भी आसमानी आफत। और परमाणु हथियार के बहाने दबाव बनाने में जुटे ईरान का ट्रंप को तगड़ा जवाब, का हॉर्मुज तभी खुलेगा जब अमेरिका देगा हर्जाना और हटाएगा प्रतिबंध। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और अनियमितताओं के विरोध में छात्रों ने रांची में विधानसभा का घेराव किया। छात्र झारखंड विधानसभा के गेट के पास तक पहुंच गए थे। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने की मांग कर रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है।
1: गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ये देखें अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
2: झारखंड में छात्रों का आक्रोश, विधानसभा तक विरोध,
3: ये देखिए बैरिकेड्स तोड़ दी है छात्रों ने,
4: तोड़ेंगे जितना लेवल पे होगा, सिंहासन खाली करो, अब जनता आ रही है।
2: लाठीचार्ज, आंसू गैस, पानी की बौछार, रांची में आर पार,
1: देखिए
3: अश्रु
1: गैस के गोले छोड़े जा रहे
3: हैं। सरकार नियम खुश हो रही है।
2: विधानसभा गेट तक पहुंचे छात्र, बैरिकेड टूटे, झुकेगी सरकार,
5: फिर से वाटर कैनन चलाना शुरू कर दिया है।
6: बच्चों का सीट बेच के नौकरी उन लोग खा जा रहे हैं, तो अवसर की समानता कहाँ है?
2: पेपर लीक और परीक्षा में धांधली, छात्रों ने छेड़ी अगस्त क्रांति।
7: अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है, सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है।
2: आंदोलन से छात्रों ने दिखाई ताकत, सरकार मानेगी हर एक शर्त।
8: आपकी सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाहती है।
9: युवा को पलटी कर देता था वायु, वायु को कोई रोक नहीं सकता।
2: 17 दिन से जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर रांची के जयपाल मुंडा स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन और अनशन कर रहे छात्रों का सब्र टूटा, तो आक्रोश से भरे छात्र सीधे विधानसभा के लिए कूच कर गए। उसके बाद जो हुआ तस्वीरें आपके सामने, छात्र आंदोलन की सांधी में बैरिकेड भी फड़ गए और विधानसभा को घेरने के लिए की गई कटीले तारों की बाड़बंदी भी छात्रों ने उखाड़ फेंकी। प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, फिर भी छात्रों का सैलाब नहीं थमा तो वाटर कैनन यानी पानी की बौछारें बरसानी पड़ गई, तो आखिर में पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे।
1: ये देखिए अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
2: अब छात्र अड़े हैं और सोरेन सरकार के खिलाफ डटे हैं, अपनी शर्तों के लिए, अपनी मांगे मनवाने के लिए। आज हम आपको रांची आंदोलन में विधानसभा घेराव की पूरी टाइमलाइन दिखाएंगे, ये भी बताएंगे कि प्रदर्शनकारी छात्रों और सोरेन सरकार के बीच बात कहां अटकी है, सरकार क्या कह रही है और छात्र किस बात पर अड़े हैं।
10: हम लोग डरने वाले नहीं है, सरकार का एक ही विकल्प है, हमारा मांग को पूरी करे, अन्यथा सरकार अपना कुर्सी नहीं बचा पाएगी, उसका कुर्सी पर खतरा है।
11: किसी भी शर्त पर यहाँ से नहीं हटने वाले, जब तक सरकार घोषणा नहीं कर दे कि सीजीएल रद्द हो गया।
12: ये मेरे पोस्टर का मतलब ये था कि हम लोग स्नैप को कोई फिल्टर नहीं जो हमारा फ्यूचर वो स्किप कर दे।
2: रविवार को झारखंड सरकार के मंत्रियों की विशेष कमेटी और प्रदर्शन कर रहे छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीन दौर में करीब 5 घंटे तक मैराथन वार्ता चलती, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती। और फिर छात्र 10 अगस्त को पहले से घोषित विधानसभा घेराव करने का फैसला लेते। छात्रों को सुबह 10 बजे से पहले पुरानी विधानसभा के पास जमा होने के लिए कहा जाता है, क्योंकि मार्च पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा तक का था। ऐसे में छात्र पोस्टरों और बैनरों के साथ पुरानी विधानसभा पहुँचने लगते।
13: हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहां से मार्च की शुरुआत होनी है। आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार सीजीएल रद्द करेगी?
14: क्यों रद्द करना पड़ेगा, हम लोग आंदोलनरत इसी कारण से है कि ये परीक्षा रद्द होगा। आगे से आने वाली सभी परीक्षाएं पारदर्शी रूप से ले जाएंगी, सीटें नहीं बिकेंगी, पेपर लीक नहीं होगा।
15: सरकार से हमारी मांग है जैसे सीजीएल को रद्द करना होगा, सीबीआई जांच करनी होगी।
13: और देखिए छात्र यहाँ सड़क पे बैठ गए हैं, छात्रों की तरफ से नारेबाजी हो रही है।
16: कितनों ब्रेक कटी, कितनों काटा लगा ले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 26 वर्ष से हमारा हक मारा जा रहा है, इस बार हम लोग नहीं छोड़ेंगे सरकार।
17: सरकार जब तक हम लोग को लिखित नहीं देती है और जब तक सीबीआई सीआईडी जांच नहीं करवाती है, तब तक हम लोग रोड पे रहेंगे, सड़क पे रहेंगे।
0: छात्र सोमवार दिन भर विधानसभा के बाहर जमे रहे। शाम को भी छात्रों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी इस बात पर अड़े हैं कि जब तक उनकी मांगों को सुना नहीं जाएगा वो पीछे नहीं हटेंगे।
18: और पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा के लिए आंदोलनकारी छात्रों का मार्च शुरू हो जाता है। छात्र विधानसभा तक ना पहुंचे इसके लिए बैरिकेडिंग की जाती है और कटीले तारों की बाड़बंदी भी कर दी जाती है। पुलिस बैरिकेडिंग से प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन छात्र बैरिकेडिंग को लांग कर आगे बढ़ जाते हैं। आपको बता दें कि विधानसभा तक के रास्ते में 6 जगह बैरिकेडिंग की गई।
19: हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के वंशज हैं, झारखंड के लिए लड़ सकते हैं तो हम लोग भी लड़।
20: हमारे 3 मांगे हैं सर, तब तक यहाँ से नहीं हिलेगा जब तक उसने अपना जितना मांग रखा है पूरा ना हो जाए।
18: प्रदर्शन में शामिल एक छात्र गुलाब लेकर आते आज तक से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं ये फूल हमारे प्रिय सीएम हेमंत सोरेन के लिए लाया, जिनके कानों पर 16 दिन से जू नहीं रेंग रही है। हम हर कांटे का जवाब फूल से देंगे।
21: तरीका सबसे बेहतर तरीका है, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का एक प्रतीक भी है कि हम इतने शांतिपूर्ण हैं कि हम कांटों का जवाब फूल से दे सकते हैं।
18: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्रनाथ महतो एम्बुलेंस से विधानसभा के लिए रवाना होते हैं। देवेंद्रनाथ महतो स्ट्रेचर पर बैठकर मार्च में शामिल होते हैं। ऐसे में महतो को छात्रों ने अपने कंधे पर उठा लिया और फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने तिरंगा लहराकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। आप देख सकते हैं कि देवेंद्रनाथ महतो स्ट्रेचर पर है और प्रदर्शनकारियों ने स्ट्रेचर को कंधे पर उठाया हुआ है। महतो के हाथ में हेमंत सोरेन के पिता शिव सोरेन की तस्वीर भी है। प्रदर्शनकारी जैसे ही आखिरी लेयर की बैरिकेडिंग तक पहुंचे, पुलिस वाटर कैनन एक्शन शुरू कर देती है। ऐसे में छात्र पानी में जमकर डांस करने लगे और कहने लगे, और चलाओ और चलाओ।
22: ये जेन जी क्यों बहुत मारक प्रचार करती है? आपको ये तस्वीर याद है, बहुत मशहूर फिल्म का है, हेमंत सोरेन की तस्वीर लगाई, लिखा है बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अब आप इस तरह के व्यंग अगर लेकर के आएंगे, इस व्यंग का कोई मार है क्या? ये वो एक नाम अभय तिवारी, वो उनको एस्ट्रोनॉट में भी दिखा दिया है, अभय तिवारी को आईपीएस भी बना दिया है, अभय तिवारी को एसडीएम भी बना दिया गया है, इसरो में साइंटिस्ट भी बना दिया गया है, डॉक्टर भी बना दिया गया, नेता भी बना दिया, मुख्यमंत्री झारखंड का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया।
23: वो जस्ट एक मोहरा है, असली विलन अभी भी पर्दे के पीछे
24: है। सर असली विलन
25: मेरे दिल में सबसे ज्यादा अगर दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, तो मेरा भूख हड़ताल से ज्यादा दर्द हुआ उस कांटेदार तार का जाली से, एक आते आते टूट गया। ये 3 लेयर का ब्रेकेडिंग था, ये 3 लेयर का ब्रेकेडिंग आते आते ये छात्र लोग इससे हम लोग निकल जा रहे हैं।
18: प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा भवन के निकट पहुंच जाते हैं। अंतिम बैरिकेडिंग तोड़े जाने पर पुलिस प्रशासन की ओर से छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच भिड़ंत हो जाती है और इस दौरान पुलिस भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़ देती है।
22: प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
26: आंसू गैस, लाठी चार्ज, वाटर कैनन सब का प्रयोग किया जा रहा है हमारे आवाज को दबाने के लिए। ये सरकार डर गई है, कायर सरकार है। जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है।
18: पुलिसिया सख्ती और वाटर कैनन की बौछारों को देखते हुए छात्र रणनीति बदलते हैं और शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। प्रदर्शनकारी छात्र मुख्य मार्ग छोड़कर झारखंड उच्च न्यायालय के बगल से खेतों के रास्ते से विधानसभा की ओर तेजी से बढ़ने लगे।
22: मैं उसी रास्ते पर देखिए जो छात्र पार मैंने कहा था ना बैरिकेड पार कर लिया है, अब वो खेतों के रास्ते विधानसभा की ओर पहुंचने लगे हैं। जहां पर मैं आई आपको बिल्डिंग दिखाता हूं, ये विधानसभा का इलाका है और ये सारे खेतों के रास्ते, वो देखिए वो विधानसभा है और ये जितने छात्र हैं एक एक करके अब इस इलाके में क्या है, दो बैरिकेड के बीच में जहां सुरक्षा व्यवस्था है उन्होंने कहा छोड़िए आपको, पुलिस जो है वो बैरिकेड के पास रहेगी, ये खेतों के रास्ते निकल लिए। और देखिए रीला
18: आखिरी बैरिकेडिंग के पास जब छात्र पहुंचते हैं तो पुलिस अपील करती है कि छात्र पीछे लौट जाएं, लेकिन छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं होते।
3: जो कार्रवाई थी वो खत्म हो चुकी है, लिहाजा पुलिस के तरफ से ऐलान किया जा रहा है, एसएसपी ने खुद अनाउंस किया है और अनाउंस किया जा रहा है कि अब जब आप विधानसभा मार्च आपका था, आप यहाँ पे अपने बातों को रखने के लिए आए थे, विधायक जो बैठते हैं, मंत्री जो बैठते हैं, जो डिसीजन मेकर हैं लोकतंत्र के मंदिर में जो बैठते हैं, उनसे जब आप बातें करने आए थे, तो जब सत्र खत्म हो गया आज का तो क्यों नहीं आप वापस चले जा रहे हैं।
18: प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा के गेट पर पहुंच जाते हैं जहां भारी पुलिस बल तैनात रहता है, लेकिन छात्रों का प्रदर्शन जारी रहता है और वो अपनी मांगों पर अड़े रहते हैं। अलग अलग वेश में प्रदर्शनकारी नजर आते हैं। इस प्रदर्शन को देखिए, ये स्पाइडरमैन बन के आया है।
22: वाटर कैनन थे, टैंकर थे, सबका पानी खाली हो गया, बाकायदा छात्रों ने रेन डांस का मजा लिया। और अब इस सड़क से आगे ये जो बैरिकेडिंग, यही रास्ता नई विधानसभा है। सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर ही यहाँ पर विधानसभा का प्रमुख द्वार है और उसी के पहले देखिए स्पाइडरमैन भी दिख गए यहाँ पे। जंतर मंतर से बहुत सारी सिमिलैरिटी दिखाई पड़ती है, स्पाइडरमैन भी है, बैटमैन भी है, कुच्चू पुच्चू वाले पोस्टर भी है।
18: रांची में सीएम आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ाई जाती है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों से झारखंड सरकार की 3 दौर की बातचीत नाकाम हुई है। सरकार का दावा है कि 95 से 98% मांगे मान ली गई हैं, लेकिन जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और जेपीएससी भर्ती धांधली की सीबीआई जांच की मांग ना माने जाने तक प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं।
4: एक हाई लेवल डेलीगेशन, हाई लेवल कमेटी बनाकर, 4 मंत्रियों की एक कमेटी बनाकर संवाद का रास्ता खोला था। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि यदि यह आंदोलन सिर्फ छात्रों का होता तो आज प्रदर्शन की जरूरत नहीं थी। सरकार ने 95% मांगे बच्चों की मान ली थी।
18: इस प्रदर्शन के बीच झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव और जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते को ब्लैक लिस्टेड कंपनी TDPL को परीक्षा का ठेका देने के लिए CID ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन छात्रों का कहना है कि जब तक सोरेन सरकार उनकी एक एक मांग नहीं मान लेती, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। आज तक ब्यूरो।
0: और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर जंतर मंतर प्रदर्शन पर हुए लाठी चार्ज का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी ने सवाल किया कि लाठी चार्ज का आदेश किसने दिया था, इसका जिम्मेदार कौन है, वो सामने आए। गृहमंत्री अमित शाह सदन में आकर बयान दें, राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अराजकता फैला रहे हैं, गृहमंत्री हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं, राहुल गांधी नहीं चाहते कि संसद चले।
5: अमित शाह ने ऑर्डर दिया था या नहीं? बिना होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के ना दिल्ली पुलिस गोली चला सकती है, ना RAF गोली चला सकती है, राइट? तो हमारा सिर्फ एक सवाल है और उसका हम पहले जवाब मांग रहे हैं, आपने गोली चलवाई या नहीं चलवाई? अगर आपने चलवाई, यू आर कल्पेबल। अगर आपने नहीं चलवाई और किसी और ने चलवा दी, यू आर इनकॉम्पिटेंट। Either way you have to go।
6: जब गृह मंत्री जी ने कह दिया कि हम हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो फिर वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, राहुल गांधी चर्चा से मत भागना, हम तैयार हैं। सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तुम भागना मत। मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर में।
0: शरद पवार की अगुवाई वाली NCP SP के सभी 8 सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। सुप्रिया सुले की अगुवाई में हुई यह मुलाकात कांग्रेस और शिवसेना UBT को रास नहीं आई। विपक्ष कह रहा है कि बार बार शरद पवार गुट के नेता अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो पक रहा होगा। हालांकि मुलाकात करने आए सांसद कह रहे हैं कि उन्होंने किसानों और अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर बात की है।

0: क्या शरद पवार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल होना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि परिसीमन बिल पर अटकलों के बीच सुप्रिया सुले की अगुवाई में एनसीपी शरद गुट के सभी 8 सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की है, जिससे एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है कि शायद शरद पवार का हृदय परिवर्तन होने वाला है। हालांकि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद शरद गुट के सांसद इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनका दल पाला बदलने वाला है।
1: जी, एक तो पहले मैं ये बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो कयासबाजी जो चल रही है इसमें कोई भी तथ्य नहीं। हम 8 सांसद हैं एनसीपी एसपी के, हम विपक्ष में बैठते हैं और हमारे कई सारे मुद्दे हैं जो कई दिनों से प्रलंबित है। महाराष्ट्र के कुछ मुद्दे जैसे किसानों की ऋण माफी को लेकर मुद्दे, महाराष्ट्र के ड्रॉट के बारे में मुद्दे, प्याज के बारे में मुद्दे, पुणे नासिक सेमी हाईस्पीड रेलवे के बारे में मुद्दे, ऐसे हर चुनाव क्षेत्र के जो मुद्दे इन समस्याओं को लेकर आज हमने पीएम सर से मुलाकात की और आई एम रियली थैंकफुल कि पीएम सर काफी वार्म थे। पीएम सर ने ये सब मुद्दे सुन लिए, समस्याएं सुन ली और उन्हें इस पर कोई ठोस कार्रवाई करेंगे ऐसा आश्वासन दिया।
2: दरअसल पहले शरद पवार साहब की मुलाकात होती है प्रधानमंत्री जी से और उसके बाद आप लोग सब लोग जाके मिलते हैं और इस मौसम में जब लगातार हंगामा हो हल्ला हो रहा है, सरकार को नंबर्स चाहिए, तो कुछ जिक्र हुआ डीलिमिटेशन का या कोई और एफसीआरए का और कुछ समर्थन मांगने देने की बात हुई?
1: जी नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। जो आज मुलाकात हुई ये मुलाकात सिर्फ हमारे 8 जो संसदीय क्षेत्र है इन क्षेत्रों की जो दिक्कतें हैं, महाराष्ट्र के किसानों के बारे में जो समस्या है इसके बारे में बात।
2: अच्छा, आज आपकी मुलाकात थी और आप भगवा कुर्ता पहने हुए हैं, तो ये चॉइस जो है इंटेंशनल थी कि एक्सीडेंटल थी और आगे क्या है? ये देखने को भी मिलेगा कि भगवा खेमे में आप लोग आ जाएंगे?
1: जी, मैंने कई बार इससे पहले, एक तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे मेरा भाषण भी आपने सुना, तो मैं ये मानने वाला हूँ कि भगवा मेरे तिरंगे का एक रंग है और इसीलिए मुझे लगता है कि किसी को मेरे भगवा रंग पहनने पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
2: तो वैसे आप लोग इधर है कि उधर है? वैसे इधर ही है ना, मतलब
1: मैंने हमेशा यही बात की है।
2: यही बयान 10 दिन बाद भी चलेगा?
1: डेफिनेटली यही बयान हर बार चलेगा कि शिव शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा महाराष्ट्र के हित में लोगों के साथ।
0: वैसे बताया जा रहा है कि शरद पवार गुट के सांसदों और प्रधानमंत्री के बीच करीब आधे घंटे की बैठक हुई। एनसीपी एसपी सांसद दावा कर रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने महाराष्ट्र में सूखे और सिंचाई से जुड़े मुद्दों पर चिंता जताई।
3: आज सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे उसमें किसानों के बारे में जो कर्ज माफी हो और कोई किसानों के अतिवृष्टि हो गई थी, बहुत से बारिश से वजह से हमारे किसानों का नुकसान हो गया था, वो कुछ विषय थे। और दूसरा, हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, सब स्टेट के सब डिस्ट्रिक्ट में एक कैंसर केयर हॉस्पिटल होना चाहिए। और दूसरा, पीएम रिलीफ फंडर रहता है उनके जो संख्या है वो बढ़ानी चाहिए। और तीसरा, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो किले बनाए 365 किले, उसमें से 12 किले यूनेस्को में लिया है, तो उसमें संख्या बढ़ानी चाहिए और जो जो किले उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देके वो किले अच्छे बनाने चाहिए।
0: इससे पहले भी एनसीपी शरद गुट ऐलान कर चुका है कि वो परिसीमन बिल के मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ है, लेकिन सियासत में जो होता है वो कहा नहीं जाता है और अक्सर जो कहा जाता है वो होता नहीं है। बार बार पीएम मोदी से शरद पवार या उनके सांसदों का मिलना विपक्ष को रास नहीं आ रहा है, इससे विपक्षी गठबंधन में खलबली मच गई है।
4: वारंवार अमित शाह आणि नरेंद्र मोदींच्या दरबारात हे का जातात, कशामुळे जातात? पवार साहेब ज्येष्ठ आहेत, ठीक आहे, पण इतर जे जातात त्यांच्याकडे जाऊन नतमस्तक होताना आम्हाला दिसतंय, याचा अर्थ काहीतरी आतून शिजलेला असावं आणि त्यातून मला वाटतं की पुढच्या डिलिमिटेशनसाठी काही प्लॅनिंग असावी।
0: इस मुलाकात पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विपक्ष क्यों बेचैन है, प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए किसी भी पार्टी के प्रतिनिधि पीएम से मिलते जुलते रहते हैं।
5: पंतप्रधान हे देशाचे असतात, ते कुठल्या पक्षाचे नसतात, त्यांना भेटायला जाणं यामध्ये काही अवघड असं मला वाटत नाही। मी देखील मुख्यमंत्री आहे, अनेक विरोधी पक्षाचे लोक मला भेटत असतात, त्यांची कामं सांगत असतात, त्यामुळे मला असं वाटतं की कुठल्याही वेगळ्या दृष्टीने याच्याकडे पाहण्याचं कारण नाही आहे। ते त्या ठिकाणी गेले आहेत अतिशय किंवा जाणार असतील तर अतिशय चांगली गोष्ट.
0: इधर शिवसेना यूबीटी पूछ रही है कि परिसीमन बिल से क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी.
6: नहीं, बात एक ही है. देखिए, डिलिमिटेशन के बारे में जो कहा जाता है कि रिप्रेजेंटेशन हो, पहली बात तो यह है कि जब सांसद आप बढ़ाओगे लगभग 500 से लेके 850 तक लेके जाओगे तो उनका जो खर्चा होता है, उनकी तनख्वाह होती है, उनका डेली अलाउंस होता है, उनका घर होता है, फिर बंगला हो या फ्लैट हो, आने जाने का खर्चा होता है, उस पर तो हम सारे लोग ही तो खर्चा करने वाले टैक्स पेयर. और ये खर्चा करने के बाद क्या जो व्यवस्था है, जो परिस्थिति है, वो बदलने वाली है? उससे अच्छा ये सोचिए आप कि पावर्स को डिवॉल्व कैसे किया जाए, डिसेंट्रलाइज कैसे किए जाए. जो नगर निगम होते हैं उनको अगर आप ताकत दें तो कितना अच्छा हो सकता है. विधायक होते हैं उनको अगर आप ताकत दें अच्छा काम हो सकता है. जो अभी के सांसद है उनको फंड बढ़ाया जाए तो भी अच्छा काम हो सकता है. और एक तरफ आप देख रहे हो कि 850 एमपी की बात कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या वो इसमें से सॉल्व होने वाली है?
0: हालांकि सुप्रिया सुले ने प्रस्तावित एफसीआरए बिल के प्रति अपनी पार्टी के कड़े विरोध को दोहराया और मांग की कि इसे वापस लिया जाए या जेपीसी को भेजा जाए. एफसीआरए बिल पर फडणवीस ने कहा कि ये बिल किसी के खिलाफ नहीं है, इस पर विपक्ष ऐतराज क्यों जता रहा है?
5: देखिए, एफसीआरए के ऊपर बिल लाने का कारण यही है कि लगातार इस देश के अंदर एफसीआरए का उपयोग करके कुछ संस्थाएं पैसा ला रही है और उस पैसे का उपयोग देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है. जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए इस बिल में कोई अड़चन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है. एफसीआरए की प्रोविजन भी रहने वाली है, जो हिसाब देंगे उनके लिए उनका लाइसेंस भी रहने वाला है. मुझे विश्वास है कि अगर किसी को इसमें कुछ कहना होगा वो संसद में कह सकते हैं. भारत सरकार रिसेप्टिव है और ये किसी एक समुदाय का इसमें विषय ही नहीं है, क्योंकि केवल क्रिश्चियन संस्थाओं के लिए एफसीआरए नहीं है, सारी संस्थाओं के लिए एफसीआरए ये आवश्यक है. और सारी संस्थाएं किसी भी समाज की हो, जो संस्थाएं जिनको फॉरेन से डोनेशन मिलता है उनको एफसीआरए ये आवश्यक है.
0: फिलहाल इंडिया गठबंधन की नजर शरद पवार के अगले कदम पर है. उन्हें आशंका है कि पवार परिसीमन बिल का समर्थन करने के बहाने एनडीए में शामिल हो सकते हैं. लेकिन पवार इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे या एनडीए में जाएंगे, ये बात सिर्फ और सिर्फ शरद पवार ही जानते हैं. मुंबई से ऋत्विक भालेकर के साथ मौसमी सिंह और पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक.
7: राजस्थान में नई भर्तियां खूब निकल रही हैं, लेकिन पुरानी भर्तियों के लिए धरना प्रदर्शन का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा. राजस्थान सरकार ने खाने पीने के सामान की जांच के लिए पहली बार 2019 और फिर 2022 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती की थी. आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद सरकार ने 6 साल के बाद ज्वाइनिंग तो दे दी है, लेकिन 8 महीने हो चुके हैं, न सैलरी मिली है और न ही काम मिला. 6 साल के बाद ज्वाइनिंग पाए युवा एक बार फिर से धरना देने के लिए मजबूर हैं, जो इस बार स्वास्थ्य विभाग के अंदर ही धरने पर बैठ गए हैं.
8: खबरदार करके खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ता आज तक. खबर को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लगातार खबरदार करता है आज तक.
9: आपका बेटा या बेटी अगर भर्ती परीक्षा पास कर लेता है तो फिर आप मिठाई बांटते होंगे, लेकिन राजस्थान के हजारों

0: आपकी टीवी स्क्रीन पर बाईं तरफ एक साल पहले की रिपोर्ट का वीडियो है, जब आजादी के बाद पहली बार 2019 और 2022 में निकली राजस्थान के खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती को पास करके भी नौकरी नहीं पा रहे युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए आज तक ने मुद्दा उठाया, जिसके बाद इन्हें नियुक्ति पत्र तो भजनलाल सरकार के राज में बटा, लेकिन अब फिर से ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी धरना देने के लिए मजबूर कर दिए गए हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर में खुद के बेरोजगार सरकारी कर्मचारी नौकरी और तनख्वाह के लिए धरने पर बैठे। आप सोचेंगे कि एक सरकारी कर्मचारी कैसे बेरोजगार हो सकता है, तो समझिए, ये राजस्थान सरकार के वो 225 स्वास्थ्य सुरक्षा अधिकारी हैं, जिन्हें भर्ती निकलने के 7 साल बाद भी न तो काम दिया जा रहा है न ही सैलरी। 225 खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिन्हें रुला रुला कर नवम्बर दिसम्बर 2025 में ज्वाइन तो कराया गया, लेकिन 8 महीने में न तो इनको कोई काम दिया न ही तनख्वाह। ये रोज जिला चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर में जाकर साइन करते हैं और बैठे रहते हैं।
1: सर, हमारी जो ज्वाइनिंग है वो दिसंबर में हो चुकी थी, अभी 8 महीने पूरे होने को आए हैं, तो हमें ना तो पोस्टिंग दी जा रही है, सारी हमारी जो प्रोसेस होनी चाहिए थी पोस्टिंग तक की वो पूरी हो चुकी है, पर आज दिन तक हमें कोई भी पोस्टिंग नहीं मिली है, ना ही हमें अभी तक सैलरी दी गई है। तो हम यही चाहते हैं कि आचार संहिता लगने से पहले हमें पोस्टिंग दे दी जाए, ताकि हमें आचार संहिता के टाइम में भी इस भर्ती को आगे तक धक्के नहीं मारने पड़े और हमें पोस्टिंग मिल जाए हमारी यथास्थिति पे।
0: संजय कुमार जैसे युवा आईआईटी दिल्ली से पीएचडी की है, अब भरतपुर जिला चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर में काम करते हैं। पहले की तनख्वाह भी गई और अब बेरोजगार होकर घूमने को लाचार है। कोई बैंक मैनेजर की नौकरी छोड़कर आया, कोई टीचर और कोई प्रिंसिपल की नौकरी छोड़कर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती में परीक्षा निकाल कर नियुक्ति पाए, कोई एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद, लंदन से फूड सेफ्टी में पीजी डिप्लोमा करने के बाद 6 साल से धरने पर ही बैठ रहे हैं। सैलरी न मिलने से इनको परिवार चलाना मुश्किल हो चुका है।
2: हमारी बहुत बड़ी बड़ी ईएमआई पुराने जॉब की वजह से चल रही है और परिवार के
3: पुराने जॉब छोड़ के आए हैं।
2: जी सर, और अभी मेन प्रॉब्लम ईएमआई तो चली रही है, साथ में सर फैमिली के खर्चे भी हैं, क्योंकि बच्चों की फीस भी पे करनी पड़ती है, उसके अलावा परिवार का खर्चा भी चलाना पड़ता है। सर, हमें कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है।
4: हम लोग यहाँ वापस जाते हैं, सुबह साइन करते हैं, शाम को वापस घर पर चले जाते हैं। ठीक है, अब इस पर डेपोटेशन वाले पर ये विभाग क्यों मेहरबान है इसका तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये डेपोटेशन के रुके रहने की वजह से हमारी भर्ती या हमारी जो पोस्टिंग है वो नहीं हो पा रही है।
5: पहले भी हम गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में सर पिछले 11 साल से मैं वर्किंग हूँ। इससे पहले मैं वाइस प्रिंसिपल था, झुंझुनू में पोस्टेड था। अब समस्या ये आ रही है सर कि जो सैलरी वहाँ मिल रही थी नियमित सैलरी, वो भी अब यहाँ पिछले 8 महीने से नहीं मिल रही है। मैडम से काफी बार अनुरोध किया, 2-3 बार हम मिले व्यक्तिगत रूप से सीएल लेके, लेकिन आश्वासन के अलावा हमें कुछ मिला नहीं अभी तक।
0: दरअसल चयन होने के बाद भी जब इनको सरकार नौकरी नहीं दे रही थी तो ये लोग कोर्ट गए और कोर्ट में सरकार ने जवाब ये दे दिया कि विभाग में पहले जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पद था उस पर हमने डेपुटेशन पर दूसरे विभागों से रख लिया है, उनकी जगह इनको पद दे दिया जाएगा। मगर दूसरे विभाग से आए लोग जो डेपुटेशन पर लगे वो इस मलाईदार विभाग को छोड़कर अपने पुराने विभाग में जाना नहीं चाहते। अधिकारी कहते हैं कि उन्होंने फाइल मंत्री जी को भेज रखी, मंत्री जी के पास से फाइल आई तो फिर आगे काम हो पाएगा।
6: जब वो आया हमारे पास सर्टिफिकेट्स, वेरी माइनर मिस्टेक्स वर देयर इन द स्पेलिंग्स, तो हमने उसको रेक्टिफाई कराया थ्रू एफएसएसआई, बिकॉज वो गैजेट में जाता है तो स्पेलिंग में भी एरर नहीं होना है, तो भिजवाया, तो 31 जुलाई को इनका नोटिफिकेशन जारी हो गया। अभी क्योंकि इनका सैलरी का है, वी आर वर्किंग ऑन द सैलरी पार्ट, वी हैव मेड देम एज अ ड्यूटी मान के इनको सैलरी देने वाला, और दूसरा इनका राजहेल्थ पोर्टल के थ्रू पोस्टिंग दिलाना है द प्लेस वेर दे कैन वर्क बेस्ड ऑन हमने जो एरिया आइडेंटिफाई किया है अंडर द एक्ट। तो फाइल अभी पेंडिंग है, तो हम भी उस पर थोड़ा एक्सपेरेट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके करें।
0: खाने पीने में मिलावट और नकली दूध और पनीर से लेकर नकली आटा और नकली धनिया पाउडर तक बेचे जाने की घटनाएं राजस्थान में लगातार सामने आ रही हैं। मगर वर्षों से विभाग में डेपुटेशन पर लगे अधिकारियों की लॉबी की वजह से मंत्री जी फाइल से भाग रहे हैं और लाचार होकर 225 खाद्य सुरक्षा अधिकारी बिना काम बिना सैलरी के धरना देने के लिए छोड़ दिए गए हैं।
7: ये राजस्थान का स्वास्थ्य भवन है और स्वास्थ्य भवन में ये नीचे बैठे हुए राजस्थान के खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं। आजादी के बाद पहली बार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती निकली थी, इन्हें ज्वाइनिंग तो दे दी गई बड़े लंबी लड़ाई के बाद, मगर कोई काम नहीं दिया गया, न तनख्वाह मिलती है, और इन्हें दफ्तर के अंदर बैठना चाहिए था, ये गलियारे

0: में बैठे हुए हैं अधिकारियों के दफ्तरों के बाहर अपने मांग को लेकर कि 2019 में भर्ती हुई थी और अब तक नौकरी नहीं मिल पाई, कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, कैसे घर चलता है इनका।
1: इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।

0: प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पर राहुल गांधी का बड़ा हमला, पूछा किसने दिया छात्रों के ऊपर पैलेट गन चलाने के आदेश, चढ़ावा चोरी को लेकर प्रधानमंत्री को घेरा नड्डा का पलटवार, माहौल खराब कर रहे हैं नेता विपक्ष। परीक्षा धांधली के खिलाफ रांची में छात्रों का धरना, विधानसभा मार्च के दौरान लाठीचार्ज, हेमंत सोरेन ने प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया, देवेंद्र महतो बोले अब नहीं होगी सरकार से बात। रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी ने आज झारखंड बंद बुलाया, सीएम आवास पर प्रदर्शन किया गया, जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन गिरफ्तार, ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक कुदरत का कहर, चमोली में बह गया पुल, बीजेपी सांसद बलूनी बोले राहत और बचाव पर सरकार की नजर, रायगढ़ में 9 लोगों की मौत, गुजरात असम में भी आसमानी आफत। और परमाणु हथियार के बहाने दबाव बनाने में जुटे ईरान का ट्रंप को तगड़ा जवाब, का हॉर्मुज तभी खुलेगा जब अमेरिका देगा हर्जाना और हटाएगा प्रतिबंध। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और अनियमितताओं के विरोध में छात्रों ने रांची में विधानसभा का घेराव किया। छात्र झारखंड विधानसभा के गेट के पास तक पहुंच गए थे। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने की मांग कर रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है।
1: अस्त्रो गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ये देखिए अस्त्रो गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
2: झारखंड में छात्रों का आक्रोश, विधानसभा तक विरोध।
3: ये देखिए बैरिकेड्स तोड़ दी है छात्रों ने, तोड़ेंगे जितना लेवल पे होगा, सिंहासन खाली करो, अब जनता आ रही है।
2: लाठीचार्ज, आंसू गैस, पानी की बौछार, रांची में आर पार।
1: ये देखिए अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
3: सरकार नियम खुश हो गई है।
2: विधानसभा गेट तक पहुंचे छात्र, बैरिकेड टूटे, झुकेगी सरकार।
4: फिर से वाटर कैनन चलाना शुरू कर दिया है।
5: बच्चों का सीट बेच के नौकरी उन लोग खा जा रहे हैं, तो अवसर की समानता कहाँ है?
2: पेपर लीक और परीक्षा में धांधली, छात्रों ने छेड़ी अगस्त क्रांति।
6: अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है, सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है।
2: आंदोलन से छात्रों ने दिखाई ताकत, सरकार मानेगी हरेक शर्त।
7: आपकी सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाहती है।
8: युवा को पलटी कर दिया जाता है वायु, वायु को कोई रोक नहीं सकता।
2: 17 दिन से जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर रांची के जयपाल मुंडा स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन और अनशन कर रहे छात्रों का सब्र टूटा, तो आक्रोश से भरे छात्र सीधे विधानसभा के लिए कूच कर गए। उसके बाद जो हुआ तस्वीरें आपके सामने, छात्र आंदोलन की सांधी में बैरिकेड भी उखड़ गए और विधानसभा को घेरने के लिए की गई कटीले तारों की बाड़बंदी भी छात्रों ने उखाड़ फेंकी। प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, फिर भी छात्रों का सैलाब नहीं थमा तो वाटर कैनन यानी पानी की बौछारें बरसानी पड़ गई, तो आखिर में पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी डाले।
1: ये देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
2: अब छात्र अड़े हैं और सुरेंद्र सरकार के खिलाफ डटे हैं, अपनी शर्तों के लिए, अपनी मांगे मनवाने के लिए। आज हम आपको रांची आंदोलन में विधानसभा घेराव की पूरी टाइमलाइन दिखाएंगे, ये भी बताएंगे कि प्रदर्शनकारी छात्रों और सुरेंद्र सरकार के बीच बात कहां अटकी है, सरकार क्या कह रही है और छात्र किस बात पर अड़े हैं।
9: हम लोग डरने वाले नहीं है, सरकार का एक ही विकल्प है, हमारा मांग को पूरी करे, अन्यथा सरकार अपना कुर्सी नहीं बचा पाएगी, उसका कुर्सी पर खतरा है।
10: किसी भी शर्त पर यहाँ से नहीं हटने वाले जब तक सरकार घोषणा नहीं कर दे कि सीजीएल रद्द हो गया।
11: ये मेरे पोस्टर का मतलब ये था कि हम लोग स्लैब को कोई फिल्टर नहीं जो हमारा फ्यूचर वो स्किप कर दे।
2: रविवार को झारखंड सरकार के मंत्रियों की विशेष कमेटी और प्रदर्शन कर रहे छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीन दौर में करीब 5 घंटे तक मैराथन वार्ता चलती, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती। और फिर छात्र 10 अगस्त को पहले से घोषित विधानसभा घेराव करने का फैसला लेते। छात्रों को सुबह 10 बजे से पहले पुरानी विधानसभा के पास जमा होने के लिए कहा जाता है, क्योंकि मार्च पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा तक का था। ऐसे में छात्र पोस्टरों और बैनरों के साथ पुरानी विधानसभा पहुँचने लगते।
12: फैक्ट हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहां से मार्च की शुरुआत होनी है। आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार सीजीएल रद्द करेगी?
13: क्यों रद्द करना पड़ेगा, हम लोग आंदोलनरत इसी कारण से है कि ये परीक्षा रद्द होगा। आगे से आने वाली सभी परीक्षाएं पारदर्शी रूप से ले जाएंगी, सीटें नहीं बिकेंगी, पेपर लीक नहीं होगा।
14: सरकार से हमारी मांग है जैसे सीजीएल को रद्द करना होगा, सीबीआई जांच करनी होगी।
12: और देखिए छात्र यहाँ सड़क पे बैठ गए हैं, छात्रों की तरफ से नारेबाजी हो रही है।
15: कितनो ब्रेक है, कितनो काटा लगा ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 26 वर्ष से हमारा हक मारा जा रहा है, इस बार हम लोग नहीं छोड़ेंगे सरकार।
16: सरकार जब तक हम लोग को लिखित नहीं देती है और जब तक सीबीआई सीआईडी जांच नहीं करवाती है, तब तक हम लोग रोड पे रहेंगे, सड़क पे रहेंगे।
0: छात्र सोमवार दिन भर विधानसभा के बाहर जमे रहे। शाम को भी छात्रों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी इस बात पर अड़े हैं कि जब तक उनकी मांगों को सुना नहीं जाएगा वो पीछे नहीं हटेंगे।
17: और पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा के लिए आंदोलनकारी छात्रों का मार्च शुरू हो जाता है। छात्र विधानसभा तक ना पहुंचे इसके लिए बैरिकेडिंग की जाती है और कटीले तारों की बाड़बंदी भी कर दी जाती है। पुलिस बैरिकेडिंग से प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन छात्र बैरिकेडिंग को लांग कर आगे बढ़ जाते हैं। आपको बता दें कि विधानसभा तक के रास्ते में 6 जगह बैरिकेडिंग की गई।
18: हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के वंशज हैं, झारखंड के लिए लड़ सकते हैं तो हम लोग भी लड़।
19: हमारे 3 मांगे हैं सर, तब तक यहाँ से नहीं हिलेगा जब तक उसने अपना जितना मांग रखा है पूरा ना हो जाए।
17: प्रदर्शन में शामिल एक छात्र गुलाब लेकर आते हैं। आज तक से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं ये फूल हमारे प्रिय सीएम हेमंत सोरेन के लिए लाया हूँ, जिनके कानों पर 16 दिन से जू नहीं रेंग रही। हम हर कांटे का जवाब फूल से देंगे।
20: तरीका सबसे बेहतर तरीका है, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का एक प्रतीक भी है कि हम इतने शांतिपूर्ण हैं कि हम कांटों का जवाब फूल से दे सकते हैं।
17: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्रनाथ महतो एम्बुलेंस से विधानसभा के लिए रवाना होते हैं। देवेंद्रनाथ महतो स्ट्रेचर पर बैठकर मार्च में शामिल होते हैं। ऐसे में महतो को छात्रों ने अपने कंधे पर उठा लिया और फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने तिरंगा लहराकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। आप देख सकते हैं कि देवेंद्रनाथ महतो स्ट्रेचर पर है और प्रदर्शनकारियों ने स्ट्रेचर को कंधे पर उठाया हुआ है। महतो के हाथ में हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन की तस्वीर भी है। प्रदर्शनकारी जैसे ही आखिरी लेयर की बैरिकेडिंग तक पहुंचे, पुलिस वाटर कैनन एक्शन शुरू कर देती है। ऐसे में छात्र पानी में जमकर डांस करने लगे और कहने लगे, और चलाओ और चलाओ।
21: ये जेन ज़ी क्यों बहुत मारक प्रचार करती है? आपको ये तस्वीर याद है, बहुत मशहूर फिल्म का है, हेमंत सोरेन की तस्वीर लगाई, लिखा है बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अब आप इस तरह के व्यंग अगर लेकर के आएंगे, इस व्यंग का कोई मार है क्या? ये वो एक नाम अभय तिवारी, वो उनको एस्ट्रोनॉट में भी दिखा दिया है, अभय तिवारी को आईपीएस भी बना दिया है, अभय तिवारी को एसडीएम भी बना दिया गया है, इसरो में साइंटिस्ट भी बना दिया गया है, डॉक्टर भी बना दिया गया, नेता भी बना दिया, मुख्यमंत्री, झारखंड का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया।
22: वो जस्ट एक मोहरा है, असली विलन अभी भी पर्दे के पीछे है।
23: पीछे सर असली विलन।
24: मेरे दिल में सबसे ज्यादा अगर दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, तो मेरा भूख हड़ताल से ज्यादा दर्द हुआ उस कांटेदार तार का जाली से, एक आते आते टूट गया। ये 3 लेयर का ब्रेकडिंग था, ये 3 लेयर का ब्रेकडिंग आते आते ये छात्र लोग इससे हम लोग निकल जा रहे हैं।
17: प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा भवन के निकट पहुंच जाते हैं। अंतिम बैरिकेडिंग तोड़े जाने पर पुलिस प्रशासन की ओर से छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच भिड़ंत हो जाती है और इस दौरान पुलिस भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़ देती है।
21: प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
9: आंसू गैस, लाठी चार्ज, वाटर कैनन सब का प्रयोग किया जा रहा है हमारे आवाज को दबाने के लिए। ये सरकार डर गई है, कायर सरकार है। जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है।
17: पुलिसिया सख्ती और वाटर कैनन की बौछारों को देखते हुए छात्र रणनीति बदलते हैं और शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। प्रदर्शनकारी छात्र मुख्य मार्ग छोड़कर झारखंड उच्च न्यायालय के बगल से खेतों के रास्ते से विधानसभा की ओर तेजी से बढ़ने लगे।
3: मैं उसी रास्ते पर देखिए जो छात्र पार, मैंने कहा था ना बैरिकेड पार कर लिया है, अब वो खेतों के रास्ते विधानसभा की ओर पहुंचने लगे हैं। जहां पर मैं आया आपको बिल्डिंग दिखाता हूं, ये विधानसभा का इलाका है और ये सारे खेतों के रास्ते, वो देखिए वो विधानसभा है और ये जितने छात्र हैं एक एक करके। अब इस इलाके में क्या है, दो बैरिकेड के बीच में जहां सुरक्षा व्यवस्था है, उन्होंने कहा छोड़िए आपको, पुलिस जो है वो बैरिकेड के पास रहेगी, ये खेतों के रास्ते निकल लिए। और देखिए रेला,
17: आखिरी बैरिकेडिंग के पास जब छात्र पहुंचते हैं तो पुलिस अपील करती है कि छात्र पीछे लौट जाएं, लेकिन छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं होते।
4: जो कार्रवाई थी वो खत्म हो चुकी है, लिहाजा पुलिस की तरफ से ऐलान किया जा रहा है, एसएसपी ने खुद अनाउंस किया है और अनाउंस किया जा रहा है कि अब जब आप विधानसभा मार्च आपका था, आप यहाँ पे अपने बातों को रखने के लिए आए थे, विधायक जो बैठते हैं, मंत्री जो बैठते हैं, जो डिसीजन मेकर हैं लोकतंत्र के मंदिर में जो बैठते हैं, उनसे जब आप बातें करने आए थे, तो जब सत्र खत्म हो गया आज का, तो क्यों नहीं आप वापस चले जा रहे हैं।
17: प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा के गेट पर पहुंच जाते हैं जहां भारी पुलिस बल तैनात रहता है, लेकिन छात्रों का प्रदर्शन जारी रहता है और वो अपनी मांगों पर अड़े रहते हैं। अलग अलग वेश में प्रदर्शनकारी नजर आते हैं। इस प्रदर्शन को देखिए, ये स्पाइडरमैन बन के आया है।
3: वाटर कैनन थे, टैंकर थे, सबका पानी खाली हो गया, बाकायदा छात्रों ने रेन डांस का मजा लिया। और अब इस सड़क से आगे ये जो बैरिकेडिंग, यही रास्ता नई विधानसभा है। सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर ही यहाँ पर विधानसभा का प्रमुख द्वार है और उसी के पहले देखिए स्पाइडरमैन भी दिख गए यहाँ पे। जंतर मंतर से बहुत सारी सिमिलैरिटी दिखाई पड़ती है, स्पाइडरमैन भी है, बैटमैन भी है, कुच्चू पुच्चू वाले पोस्टर भी है।
17: रांची में सीएम आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ाई जाती है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों से झारखंड सरकार की तीन दौर की बातचीत नाकाम हुई है। सरकार का दावा है कि 95 से 98% मांगे मान ली गई हैं, लेकिन जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और जेपीएससी भर्ती धांधली की सीबीआई जांच की मांग न माने जाने तक प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं।
5: एक हाई लेवल डेलीगेशन, हाई लेवल कमेटी बनाकर, चार मंत्रियों की एक कमेटी बनाकर संवाद का रास्ता खोला था। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा, यदि यह आंदोलन सिर्फ छात्रों का होता तो आज प्रदर्शन की जरूरत नहीं थी। सरकार ने 95% मांगे बच्चों की मान ली थी।
17: इस प्रदर्शन के बीच झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव और जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते को ब्लैक लिस्टेड कंपनी टीडीपीएल को परीक्षा का ठेका देने के लिए सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन छात्रों का कहना है कि जब तक सोरेन सरकार उनकी एक एक मांग नहीं मान लेती, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। आज तक ब्यूरो।
0: और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर जंतर मंतर प्रदर्शन पर हुए लाठी चार्ज का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी ने सवाल किया कि लाठी चार्ज का आदेश किसने दिया था, इसका जिम्मेदार कौन है, वो सामने आए। गृहमंत्री अमित शाह सदन में आकर बयान दें, राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अराजकता फैला रहे हैं, गृहमंत्री हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं, राहुल गांधी नहीं चाहते संसद चले।
6: अमित शाह ने ऑर्डर दिया था या नहीं? बिना होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के ना दिल्ली पुलिस गोली चला सकती है, ना आरएएफ गोली चला सकती है, राइट? तो हमारा सिर्फ एक सवाल है और उसका हम पहले जवाब मांग रहे हैं, आपने गोली चलवाई या नहीं चलवाई? अगर आपने चलवाई, यू आर कल्पेबल। अगर आपने नहीं चलवाई और किसी और ने चलवा दी, यू आर इनकॉम्पिटेंट। Either way you have to go।
7: जब गृह मंत्री जी ने कह दिया कि हम हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो फिर वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, राहुल गांधी चर्चा से मत भागना, हम तैयार हैं। सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तुम भागना मत। मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर में।
0: शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी एसपी के सभी 8 सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। सुप्रिया सुले की अगुवाई में हुई यह मुलाकात कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी को रास नहीं आई। विपक्ष कह रहा है कि बार बार शरद पवार गुट के नेता अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। इसका मतलब कुछ तो पक रहा होगा। हालांकि मुलाकात करने आए सांसद कह रहे हैं कि उन्होंने किसानों और अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर बात की है।

0: क्या शरद पवार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल होना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि परिसीमन बिल पर अटकलों के बीच सुप्रिया सुले की अगुवाई में एनसीपी शरद गुट के सभी 8 सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की है, जिससे एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है कि शायद शरद पवार का हृदय परिवर्तन होने वाला है। हालांकि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद शरद गुट के सांसद इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनका दल पाला बदलने वाला है।
1: एक तो पहले मैं ये बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो कयासबाजी जो चल रही है इसमें कोई भी तथ्य नहीं। हम 8 सांसद हैं एनसीपी एसपी के, हम विपक्ष में बैठे हैं और हमारे कई सारे मुद्दे हैं जो कई दिनों से प्रलंबित है। महाराष्ट्र के कुछ मुद्दे जैसे किसानों की ऋण माफी को लेकर मुद्दे, महाराष्ट्र के ड्रॉट के बारे में मुद्दे, प्याज के बारे में मुद्दे, पुणे नासिक सेमी स्पीड रेलवे के बारे में मुद्दे, ऐसे हर चुनाव क्षेत्र के जो मुद्दे इन समस्याओं को लेकर आज हमने पीएम सर से मुलाकात की और आई एम रियली थैंकफुल कि पीएम सर काफी वार्म थे। पीएम सर ने ये सब मुद्दे सुन लिए, समस्याएं सुन ली और उन्हें इस पर कोई ठोस कार्रवाई करेंगे ऐसा आश्वासन दिया।
2: दरअसल पहले शरद पवार साहब की मुलाकात होती है प्रधानमंत्री जी से और उसके बाद आप लोग सब लोग जाके मिलते हैं और इस मौसम में जब लगातार हंगामा हो हल्ला हो रहा है, सरकार को नंबर्स चाहिए, तो कुछ जिक्र हुआ डीलिमिटेशन का या कुछ और एफसीआरए का और कुछ समर्थन मांगने देने की बात हुई?
1: जी नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। जो आज मुलाकात हुई ये मुलाकात सिर्फ हमारे 8 जो संसदीय क्षेत्र है इन क्षेत्रों की जो दिक्कतें हैं, महाराष्ट्र के किसानों के बारे में जो समस्या है इसके बारे में बात।
2: अच्छा, आज आपकी मुलाकात थी और आप भगवा कुर्ता पहने हुए हैं, तो ये चॉइस जो है इंटेंशनल थी कि एक्सीडेंटल थी और आगे क्या ही? ये देखने को भी मिलेगा कि भगवा खेमे में आप लोग आ जाएंगे?
1: जी, मैंने कई बार इससे पहले, एक तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे मेरा भाषण भी आपने सुना, तो मैं ये मानने वाला हूँ कि भगवा मेरे तिरंगे का एक रंग है और इसीलिए मुझे लगता है कि किसी को मेरे भगवा रंग पहनने पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
2: तो वैसे आप लोग इधर है कि उधर है? वैसे इधर ही है ना, मतलब
1: मैंने हमेशा यही बात की है।
2: यही बयान 10 दिन बाद भी चलेगा?
1: डेफिनेटली यही बयान हर बार चलेगा कि शिव शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा और महाराष्ट्र के हित में हम लोगों के साथ।
0: वैसे बताया जा रहा है कि शरद पवार गुट के सांसदों और प्रधानमंत्री के बीच करीब आधे घंटे की बैठक हुई। एनसीपी एसपी सांसद दावा कर रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने महाराष्ट्र में सूखे और सिंचाई से जुड़े मुद्दों पर चिंता जताई।
3: आज सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे उसमें किसानों के बारे में जो कर्ज माफी हो और कोई किसानों के अतिवृष्टि हो गई थी, बहुत से बारिश से वजह से हमारे किसानों का नुकसान हो गया था, वो कुछ विषय थे। और दूसरा हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, सब स्टेट के सब डिस्ट्रिक्ट में एक कैंसर केयर हॉस्पिटल होना चाहिए। और दूसरा पीएम रिलीफ फंडर होता है उनके जो संख्या है वो बढ़ानी चाहिए। और तीसरा हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो किले बनाए 365 किले, उसमें से 12 किले यूनेस्को में लिया है, तो उसमें संख्या बढ़ानी चाहिए और जो जो किले उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देके वो किले अच्छे बनाने चाहिए।
0: इससे पहले भी एनसीपी शरद गुट ऐलान कर चुका है कि वो परिसीमन बिल के मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ है, लेकिन सियासत में जो होता है वो कहा नहीं जाता है और अक्सर जो कहा जाता है वो होता नहीं है। बार बार पीएम मोदी से शरद पवार या उनके सांसदों का मिलना विपक्ष को रास नहीं आ रहा है, इससे विपक्षी गठबंधन में खलबली मच गई है।
4: वारंवार अमित शाह आणि नरेंद्र मोदींच्या दरबारात हे का जाता है, कशामुळे जात आहेत? पवार साहेब ज्येष्ठ आहेत, ठीक आहे, पण इतर जे जात आहेत त्यांच्याकडे जाऊन नतमस्तक होताना आम्हाला दिसत आहे, याचा अर्थ काहीतरी आतून शिजलेलं असावं आणि त्यातून मला वाटतं की पुढच्या डिलिमिटेशनसाठी काही प्लॅनिंग असावी।
0: इस मुलाकात पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विपक्ष क्यों बेचैन है, प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए किसी भी पार्टी के प्रतिनिधि पीएम से मिलते जुलते रहते हैं।
5: पंतप्रधान हे देशाचे असतात, ते कुठल्या पक्षाचे नसतात, त्यांना भेटायला जाणं यामध्ये काही अवघड असं मला वाटत नाही। मी देखील मुख्यमंत्री आहे, अनेक विरोधी पक्षाचे लोक मला भेटत असतात, त्यांची कामं सांगत असतात, त्यामुळे मला असं वाटतं की कुठल्याही वेगळ्या दृष्टीने याच्याकडे पाहण्याचं कारण नाही आहे, ते त्या ठिकाणी गेले आहेत ही अतिशय किंवा जाणार असतील तर अतिशय चांगली गोष्ट.
0: इधर शिवसेना यूबीटी पूछ रही है कि परिसीमन बिल से क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी.
6: नहीं, बात एक ही है. देखिए, डिलिमिटेशन के बारे में जो कहा जाता है कि रिप्रेजेंटेशन हो, पहली बात तो यह है कि जब सांसद आप बढ़ाओगे लगभग 500 से लेके 850 तक लेके जाओगे तो उनका जो खर्चा होता है, उनकी तनख्वाह होती है, उनका डेली अलाउंस होता है, उनका घर होता है, फिर बंगला हो या फ्लैट हो, आने जाने का खर्चा होता है, उस पर तो हम सारे लोग ही तो खर्चा करने वाले टैक्स पेयर. और ये खर्चा करने के बाद क्या जो व्यवस्था है, जो परिस्थिति है, वो बदलने वाली है? उससे अच्छा ये सोचिए आप कि पावर्स को डिवॉल्व कैसे किया जाए, डिसेंट्रलाइज कैसे किया जाए. जो नगर निगम होते हैं उनको अगर आप ताकत दें तो कितना अच्छा हो सकता है. विधायक होते हैं उनको अगर आप ताकत दें अच्छा काम हो सकता है. जो अभी के सांसद है उनको फंड बढ़ाया जाए तो भी अच्छा काम हो सकता है. और एक तरफ आप देख रहे हो कि 850 एमपी की बात कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या वो इसमें से सॉल्व होने वाली है?
0: हालांकि सुप्रिया सुले ने प्रस्तावित FCRA बिल के प्रति अपनी पार्टी के कड़े विरोध को दोहराया और मांग की कि इसे वापस लिया जाए या JPC को भेजा जाए. FCRA बिल पर फडणवीस ने कहा कि ये बिल किसी के खिलाफ नहीं है, इस पर विपक्ष ऐतराज क्यों जता रहा है?
5: देखिए, FCRA के ऊपर बिल लाने का कारण यही है कि लगातार इस देश के अंदर FCRA का उपयोग करके कुछ संस्थाएं पैसा ला रही है और उस पैसे का उपयोग देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है. जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए इस बिल में कोई अड़चन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है. FCRA की प्रोविजन भी रहने वाली है, जो हिसाब देंगे उनके लिए उनका लाइसेंस भी रहने वाला है. मुझे विश्वास है कि अगर किसी को इसमें कुछ कहना होगा वो संसद में कह सकते हैं. भारत सरकार रिसेप्टिव है और ये किसी एक समुदाय का इसमें विषय ही नहीं है, क्योंकि केवल क्रिश्चियन संस्थाओं के लिए FCRA नहीं है, सारी संस्थाओं के लिए FCRA ये आवश्यक है. और सारी संस्थाएं किसी भी समाज की हो, जो संस्थाएं जिनको फॉरेन से डोनेशन मिलता है उनको FCRA ये आवश्यक है.
0: फिलहाल इंडिया गठबंधन की नजर शरद पवार के अगले कदम पर है. उन्हें आशंका है कि पवार परिसीमन बिल का समर्थन करने के बहाने NDA में शामिल हो सकते हैं. लेकिन पवार इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे या NDA में जाएंगे, ये बात सिर्फ और सिर्फ शरद पवार ही जानते हैं. मुंबई से ऋत्विक भालेकर के साथ मौसमी सिंह और पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक.
7: राजस्थान में नई भर्तियां खूब निकल रही हैं, लेकिन पुरानी भर्तियों के लिए धरना प्रदर्शन का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा. राजस्थान सरकार ने खाने पीने के सामान की जांच के लिए पहली बार 2019 और फिर 2022 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती की थी. आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद सरकार ने 6 साल के बाद ज्वाइनिंग तो दे दी है, लेकिन 8 महीने हो चुके हैं, न सैलरी मिली है और न ही काम मिला. 6 साल के बाद ज्वाइनिंग पाए युवा एक बार फिर से धरना देने के लिए मजबूर हैं, जो इस बार स्वास्थ्य विभाग के अंदर ही धरने पर बैठ गए हैं.
8: खबरदार करके खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ता आज तक. खबर को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लगातार खबरदार करता है आज तक.
9: आपका बेटा या बेटी अगर भर्ती परीक्षा पास कर लेता है तो फिर आप मिठाई बांटते होंगे, लेकिन राजस्थान के हजारों ऐसे युवा हैं जो भर्ती परीक्षा पास करके भी बेरोजगार हैं. कहीं नियुक्ति पत्र लेकर भटक रहे हैं तो कहीं पोस्टिंग पाने के लिए धरना दे रहे हैं.
10: ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जो भर्ती है ना सर, भर्तियों के मामले में ये इस सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है.
11: इसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आया, उसमें हमारा रोल नंबर दिखा, उसके बाद में हम बिल्कुल फ्री हो गए कि एक बार मेहनत करके 2-2.5 साल हमने एक अच्छा परिणाम पा लिया. लेकिन उसके बाद जैसे ही हमें पता लगता है कि ये इस भर्ती पे दुनिया भर की रिट लग रही है और स्टे आ जाता है, उसके बाद ना तो सर पढ़ाई होती है, बिल्कुल मेंटली टॉर्चर हो चुके हैं सर, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं.
8: आपकी टीवी स्क्रीन पर बाईं तरफ 1 साल पहले की रिपोर्ट का वीडियो है, जब आजादी के बाद पहली बार 2019 और 2022 में निकली राजस्थान के खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती को पास करके भी नौकरी नहीं पा रहे युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए आज तक ने मुद्दा उठाया, जिसके बाद इन्हें नियुक्ति पत्र तो भजनलाल सरकार की राज में बटा, लेकिन अब फिर से ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी धरना देने के लिए मजबूर कर दिए गए हैं. राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर में खुद के बेरोजगार सरकारी कर्मचारी नौकरी और तनख्वाह के लिए धरने पर बैठे। आप सोचेंगे कि एक सरकारी कर्मचारी कैसे बेरोजगार हो सकता है, तो समझिए ये राजस्थान सरकार के वो 225 स्वास्थ्य सुरक्षा अधिकारी हैं जिन्हें भर्ती निकलने के 7 साल बाद भी न तो काम दिया जा रहा है न ही सैलरी। 225 खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिन्हें रुला रुला कर नवंबर दिसंबर 2025 में ज्वाइन तो कराया गया लेकिन 8 महीने में न तो इनको कोई काम दिया न ही तनख्वाह। ये रोज जिला चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर में जाकर साइन करते हैं और बैठे रहते हैं।
12: सर हमारी जो ज्वाइनिंग है वो दिसंबर में हो चुकी थी, अभी 8 महीने पूरे होने को आए हैं तो हमें ना तो पोस्टिंग दी जा रही है, सारी हमारी जो प्रोसेस होनी चाहिए थी पोस्टिंग तक की वो पूरी हो चुकी है पर आज दिन तक हमें कोई भी पोस्टिंग नहीं मिली है ना ही हमें अभी तक सैलरी दी गई है। तो हम यही चाहते हैं कि आचार संहिता लगने से पहले हमें पोस्टिंग दे दी जाए ताकि हमें आचार संहिता के टाइम में भी इस भर्ती को आगे तक धक्के नहीं मारने पड़े और हमें पोस्टिंग मिल जाए हमारी यथास्थिति पे।
8: संजय कुमार जैसे युवा IIT दिल्ली से PhD की हैं, अब भरतपुर जिला चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर में काम करते हैं। पहले की तनख्वाह भी गई और अब बेरोजगार होकर घूमने को लाचार है। कोई बैंक मैनेजर की नौकरी छोड़कर आया, कोई टीचर और कोई प्रिंसिपल की नौकरी छोड़कर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती में परीक्षा निकाल कर नियुक्ति पाया, कोई MSc केमिस्ट्री करने के बाद, लंदन से फूड सेफ्टी में PG डिप्लोमा करने के बाद 6 साल से धरने पर ही बैठ रहे हैं। सैलरी न मिलने से इनको परिवार चलाना मुश्किल हो चुका है।
13: हमारी बहुत बड़ी बड़ी EMI पुराने जॉब की वजह से चल रही है और परिवार के
14: पुराने जॉब छोड़ के आए थे।
13: जी सर, और अभी मेन प्रॉब्लम EMI तो चल ही रही है, साथ में सर फैमिली के खर्चे भी हैं क्योंकि बच्चों की फीस भी पे करनी पड़ती है, उसके अलावा परिवार का खर्चा भी चलाना पड़ता है। सर हमें कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है।
15: हम लोग यहाँ वापस जाते हैं, सुबह साइन करते हैं, शाम को वापस घर पर चले जाते हैं। ठीक है, अब इस पर डेपोटेशन वाले पर ये विभाग क्यों मेहरबान है इसका तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये डेपोटेशन के रुके रहने की वजह से हमारी भर्ती या हमारी जो पोस्टिंग है वो नहीं हो पा रही है।
16: पहले भी हम गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में सर पिछले 11 साल से वर्किंग हूँ। इससे पहले मैं वाइस प्रिंसिपल था, झुंझुनू में पोस्टेड था। अब समस्या ये आ रही है सर कि जो सैलरी वहाँ मिल रही थी नियमित सैलरी वो भी अब यहाँ पिछले 8 महीने से नहीं मिल रही है। मैडम से काफी बार अनुरोध किया, 2-3 बार हम मिले व्यक्तिगत रूप से CA लेके, लेकिन आश्वासन के अलावा हमें कुछ मिला नहीं अभी तक।
8: दरअसल चयन होने के बाद भी जब इनको सरकार नौकरी नहीं दे रही थी तो ये लोग कोर्ट गए और कोर्ट में सरकार ने जवाब ये दे दिया कि विभाग में पहले जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पद था उस पर हमने डेपुटेशन पर दूसरे विभागों से रख लिया है, उनकी जगह इनको पद दे दिया जाएगा। मगर दूसरे विभाग से आए लोग जो डेपुटेशन पर लगी वो इस मलाईदार विभाग को छोड़कर अपने पुराने विभाग में जाना नहीं चाहते। अधिकारी कहते हैं कि उन्होंने फाइल मंत्री जी को भेज रखी, मंत्री जी के पास से फाइल आई तो फिर आगे काम हो पाएगा।
17: जब वो आया हमारे पास सर्टिफिकेट्स, वेरी माइनर मिस्टेक्स वर देयर इन द स्पेलिंग्स, तो हमने उसको रेक्टिफाई कराया थ्रू FSSI बिकॉज वो गैजेट में जाता है तो स्पेलिंग में भी एरर नहीं होना है, तो भिजवाया तो 31 जुलाई को इनका नोटिफिकेशन जारी हो गया। अभी क्योंकि इनका सैलरी का है, वी आर वर्किंग ऑन द सैलरी पार्ट, वी हैव मेड दम एज अ ड्यूटी मान के इनको सैलरी देने वाला, और दूसरा इनका राजहेल्थ पोर्टल के थ्रू पोस्टिंग दिलाना है द प्लेस वेर दे कैन वर्क बेस्ड ऑन हमने जो एरिया आइडेंटिफाई किया है अंडर द एक्ट। तो फाइल अभी पेंडिंग है तो हम भी उस पर थोड़ा एक्सपेरेट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके करें।
8: खाने पीने में मिलावट और नकली दूध और पनीर से लेकर नकली आटा और नकली धनिया पाउडर तक बेचे जाने की घटनाएं राजस्थान में लगातार सामने आ रही हैं। मगर वर्षों से विभाग में डेपुटेशन पर लगे अधिकारियों की लॉबी की वजह से मंत्री जी फाइल से भाग रहे हैं और लाचार होकर 225 खाद्य सुरक्षा अधिकारी बिना काम बिना सैलरी के धरना देने के लिए छोड़ दिए गए हैं।
18: ये राजस्थान का स्वास्थ्य भवन है और स्वास्थ्य भवन में ये नीचे बैठे हुए राजस्थान के खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं। आजादी के बाद पहली बार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती निकली थी, इन्हें ज्वाइनिंग तो दे दी गई बड़े लंबी लड़ाई के बाद, मगर कोई काम नहीं दिया गया न तनख्वाह मिलती है और इन्हें दफ्तर के अंदर बैठना चाहिए था, ये गलियारे में बैठे हुए हैं अधिकारियों के दफ्तरों के बाहर अपने मांग को लेकर कि 2019 में भर्ती हुई थी और अब तक नौकरी नहीं मिल पाई, कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, कैसे घर चलता है इनका।
7: इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।

0: प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पर राहुल गांधी का बड़ा हमला, पूछा किसने दिया छात्रों के ऊपर पैलेट गन चलाने के आदेश, चढ़ावा चोरी को लेकर प्रधानमंत्री को घेरा नड्डा का पलटवार, माहौल खराब कर रहे हैं नेता विपक्ष। परीक्षा धांधली के खिलाफ रांची में छात्रों का धरना, विधानसभा मार्च के दौरान लाठीचार्ज, हेमंत सोरेन ने प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया, देवेंद्र महतो बोले अब नहीं होगी सरकार से बात। रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी ने आज झारखंड बंद बुलाया, सीएम आवास पर प्रदर्शन किया गया, जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन गिरफ्तार, ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक कुदरत का कहर, चमोली में बह गया पुल, बीजेपी सांसद बलूनी बोले राहत और बचाव पर सरकार की नजर, रायगढ़ में 9 लोगों की मौत, गुजरात असम में भी आसमानी आफत। और परमाणु हथियार के बहाने दबाव बनाने में जुटे ईरान का ट्रंप को तगड़ा जवाब, का हॉर्मुज तभी खुलेगा जब अमेरिका देगा हर्जाना और हटाएगा प्रतिबंध। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और अनियमितताओं के विरोध में छात्रों ने रांची में विधानसभा का घेराव किया। छात्र झारखंड विधानसभा के गेट के पास तक पहुंच गए थे। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने की मांग कर रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है।
1: गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ये देखें अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
2: झारखंड में छात्रों का आक्रोश, विधानसभा तक विरोध।
3: ये देखिए बैरिकेड्स तोड़ दी है छात्रों ने,
4: तोड़ेंगे जितना लेवल पे होगा, सिंहासन खाली करो, अब जनता आ रही है।
2: लाठीचार्ज, आंसू गैस, पानी की बौछार, रांची में आर पार।
1: देखिए अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
5: ये सरकार नहीं है, खुश हो गई है।
2: विधानसभा गेट तक पहुंचे छात्र, बैरिकेड टूटे, झुकेगी सरकार।
6: फिर से वाटर कैनन चलाना शुरू कर दिया है।
7: बच्चों का सीट बेच के नौकरी उन लोग खा जा रहे हैं, तो अवसर की समानता कहाँ है?
2: पेपर लीक और परीक्षा में धांधली, छात्रों ने छेड़ी अगस्त क्रांति।
8: अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है, सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है।
2: आंदोलन से छात्रों ने दिखाई ताकत, सरकार मानेगी हर एक शर्त।
9: आपकी सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाहती है।
10: युवा को पलटी कर देता था वायु, वायु को कोई रोक नहीं सकता।
2: 17 दिन से जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर रांची के जयपाल मुंडा स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन और अनशन कर रहे छात्रों का सब्र टूटा, तो आक्रोश से भरे छात्र सीधे विधानसभा के लिए कूच कर गए। उसके बाद जो हुआ तस्वीरें आपके सामने, छात्र आंदोलन की सांधी में बैरिकेड भी उखड़ गए और विधानसभा को घेरने के लिए की गई कटीले तारों की बाड़बंदी भी छात्रों ने उखाड़ फेंकी। प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, फिर भी छात्रों का सैलाब नहीं थमा तो वाटर कैनन यानी पानी की बौछारें बरसानी पड़ गई, तो आखिर में पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे।
1: ये देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
2: अब छात्र अड़े हैं और सुरेंद्र सरकार के खिलाफ डटे हैं, अपनी शर्तों के लिए, अपनी मांगे मनवाने के लिए। आज हम आपको रांची आंदोलन में विधानसभा घेराव की पूरी टाइमलाइन दिखाएंगे, ये भी बताएंगे कि प्रदर्शनकारी छात्रों और सुरेंद्र सरकार के बीच बात कहां अटकी है, सरकार क्या कह रही है और छात्र किस बात पर अड़े हैं।
11: हम लोग डरने वाले नहीं है, सरकार का एक ही विकल्प है, हमारा मांग को पूरी करे, अन्यथा सरकार अपना कुर्सी नहीं बचा पाएगी, उसका कुर्सी पर खतरा है।
12: किसी भी शर्त पर यहाँ से नहीं हटने वाले, जब तक सरकार घोषणा नहीं कर दे कि सीजीएल रद्द हो गया।
13: ये मेरे पोस्टर का मतलब ये था कि हम लोग स्लैब को कोई फिल्टर नहीं जो हमारा फ्यूचर वो स्किप कर दे।
2: रविवार को झारखंड सरकार के मंत्रियों की विशेष कमेटी और प्रदर्शन कर रहे छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीन दौर में करीब 5 घंटे तक मैराथन वार्ता चलती है, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती। और फिर छात्र 10 अगस्त को पहले से घोषित विधानसभा घेराव करने का फैसला लेते। छात्रों को सुबह 10 बजे से पहले पुरानी विधानसभा के पास जमा होने के लिए कहा जाता है, क्योंकि मार्च पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा तक का था। ऐसे में छात्र पोस्टरों और बैनरों के साथ पुरानी विधानसभा पहुँचने लगते।
14: हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहां से मार्च की शुरुआत होनी है। आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार सीजीएल रद्द करेगी?
15: क्यों रद्द करना पड़ेगा? हम लोग आंदोलनरत इसी कारण से है कि ये परीक्षा रद्द होगा। आगे से आने वाली सभी परीक्षाएं पारदर्शी रूप से ले जाएंगी, सीटें नहीं बिकेंगी, पेपर लीक नहीं होगा।
16: सरकार से हमारी मांग है जैसे सीजीएल को रद्द करना होगा, सीबीआई जांच करनी होगी।
14: और देखिए छात्र यहाँ सड़क पे बैठ गए हैं, छात्रों की तरफ से नारेबाजी हो रही है।
17: कितनों ब्रेक कटी, कितनों काटा लगा ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 26 वर्ष से हमारा हक मारा जा रहा है, इस बार हम लोग नहीं छोड़ेंगे सरकार।
18: सरकार जब तक हम लोग को लिखित नहीं देती है और जब तक सीबीआई सीआईडी जांच नहीं करवाती है, तब तक हम लोग रोड पे रहेंगे, सड़क पे रहेंगे।
0: छात्र सोमवार दिन भर विधानसभा के बाहर जमे रहे। शाम को भी छात्रों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी इस बात पर अड़े हैं कि जब तक उनकी मांगों को सुना नहीं जाएगा वो पीछे नहीं हटेंगे।
19: और पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा के लिए आंदोलनकारी छात्रों का मार्च शुरू हो जाता है। छात्र विधानसभा तक ना पहुंचे इसके लिए बैरिकेडिंग की जाती है और कटीले तारों की बाड़बंदी भी कर दी जाती है। पुलिस बैरिकेडिंग से प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन छात्र बैरिकेडिंग को लांग कर आगे बढ़ जाते हैं। आपको बता दें कि विधानसभा तक के रास्ते में 6 जगह बैरिकेडिंग की गई।
20: हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के वंशज हैं, झारखंड के लिए लड़ सकते हैं तो हम लोग भी लड़।
21: हमारे 3 मांगे हैं सर, तो तब तक यहाँ से नहीं हिलेगा जब तक उसने अपना जितना मांग रखा है पूरा ना हो जाए।
19: प्रदर्शन में शामिल एक छात्र गुलाब लेकर आते आज तक से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं ये फूल हमारे प्रिय सीएम हेमंत सोरेन के लिए लाया, जिनके कानों पर 16 दिन से जू नहीं रेंग रही। हम हर कांटे का जवाब फूल से देंगे।
22: तरीका सबसे बेहतर तरीका है, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का एक प्रतीक भी है कि हम इतने शांतिपूर्ण हैं कि हम कांटों का जवाब फूल से दे सकते हैं।
19: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्रनाथ महतो एम्बुलेंस से विधानसभा के लिए रवाना होते हैं। देवेंद्रनाथ महतो स्ट्रेचर पर बैठकर मार्च में शामिल होते हैं। ऐसे में महतो को छात्रों ने अपने कंधे पर उठा लिया और फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने तिरंगा लहराकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। आप देख सकते हैं कि देवेंद्रनाथ महतो स्ट्रेचर पर है और प्रदर्शनकारियों ने स्ट्रेचर को कंधे पर उठाया हुआ है। महतो के हाथ में हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन की तस्वीर भी है। प्रदर्शनकारी जैसे ही आखिरी लेयर की बैरिकेडिंग तक पहुंचे, पुलिस वाटर कैनन एक्शन शुरू कर देती है। ऐसे में छात्र पानी में जमकर डांस करने लगे और कहने लगे, और चलाओ और चलाओ।
23: ये जेन जी क्यों बहुत मारक प्रचार करती है? आपको ये तस्वीर याद है, बहुत मशहूर फिल्म का है, हेमंत सोरेन की तस्वीर लगाई, लिखा है बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अब आप इस तरह के व्यंग अगर लेकर के आएंगे, इस व्यंग का कोई मार है क्या? ये वो एक नाम अभय तिवारी, वो उनको एस्ट्रोनॉट में भी दिखा दिया है, अभय तिवारी को आईपीएस भी बना दिया है, अभय तिवारी को एसडीएम भी बना दिया गया है, इसरो में साइंटिस्ट भी बना दिया गया है, डॉक्टर भी बना दिया गया, नेता भी बना दिया, मुख्यमंत्री, झारखंड का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया।
24: वो जस्ट एक मोहरा है, असली विलन अभी भी पर्दे के पीछे है।
25: पीछे सर असली विलन।
26: मेरे दिल में सबसे ज्यादा अगर दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, तो मेरा भूख हड़ताल से ज्यादा दर्द हुआ उस कांटेदार तार का जाली से, एक आते आते टूट गया। ये 3 लेयर का ब्रेकडिंग था, ये 3 लेयर का ब्रेकडिंग आते आते ये छात्र लोग इससे हम लोग निकल जा रहे हैं।
19: प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा भवन के निकट पहुंच जाते हैं। अंतिम बैरिकेडिंग तोड़े जाने पर पुलिस प्रशासन की ओर से छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच भिड़ंत हो जाती है और इस दौरान पुलिस भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़ देती है।
27: प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
28: आंसू गैस, लाठी चार्ज, वाटर कैनन सब का प्रयोग किया जा रहा है हमारे आवाज को दबाने के लिए। ये सरकार डर गई है, कायर सरकार है। जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है।
19: पुलिसिया सख्ती और वाटर कैनन की बौछारों को देखते हुए छात्र रणनीति बदलते हैं और शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। प्रदर्शनकारी छात्र मुख्य मार्ग छोड़कर झारखंड उच्च न्यायालय के बगल से खेतों के रास्ते से विधानसभा की ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं।
3: उसी रास्ते पर देखिए, जो छात्र पार, मैंने कहा था ना, बैरिकेड पार कर लिया है, अब वो खेतों के रास्ते विधानसभा की ओर पहुंचने लगे हैं। जहां पर मैं आया आपको बिल्डिंग दिखाता हूं, ये विधानसभा का इलाका है और ये सारे खेतों के रास्ते, वो देखिए वो विधानसभा है और ये जितने छात्र हैं एक एक करके। अब इस इलाके में क्या है, दो बैरिकेड के बीच में जहां सुरक्षा व्यवस्था है, उन्होंने कहा छोड़िए आपको, पुलिस जो है वो बैरिकेड के पास रहेगी, ये खेतों के रास्ते निकल लिए। और देखिए रेला,
19: आखिरी बैरिकेडिंग के पास जब छात्र पहुंचते हैं तो पुलिस अपील करती है कि छात्र पीछे लौट जाएं, लेकिन छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं होते।
4: जो कार्रवाई थी वो खत्म हो चुकी है, लिहाजा पुलिस के तरफ से ऐलान किया जा रहा है, एसएसपी ने खुद अनाउंस किया है और अनाउंस किया जा रहा है कि अब जब आप विधानसभा मार्च आपका था, आप यहाँ पे अपने बातों को रखने के लिए आए थे, विधायक जो बैठते हैं, मंत्री जो बैठते हैं, जो डिसीजन मेकर हैं लोकतंत्र के मंदिर में जो बैठते हैं, उनसे जब आप बातें करने आए थे, तो जब सत्र खत्म हो गया आज का, तो क्यों नहीं आप वापस चले जा रहे हैं।
19: प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा के गेट पर पहुंच जाते हैं जहां भारी पुलिस बल तैनात रहता है, लेकिन छात्रों का प्रदर्शन जारी रहता है और वो अपनी मांगों पर अड़े रहते हैं। अलग अलग वेश में प्रदर्शनकारी नजर आते हैं। इस प्रदर्शन को देखिए, ये स्पाइडरमैन बन के आया है।
3: वाटर कैनन थे, टैंकर थे, सबका पानी खाली हो गया, बाकायदा छात्रों ने रेन डांस का मजा लिया। और अब इस सड़क से आगे ये जो बैरिकेडिंग, यही रास्ता नई विधानसभा है। सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर ही यहाँ पर विधानसभा का प्रमुख द्वार है और उसी के पहले देखिए स्पाइडरमैन भी दिख गए यहाँ पे। जंतर मंतर से बहुत सारी सिमिलैरिटी दिखाई पड़ती है, स्पाइडरमैन भी है, बैटमैन भी है, कुच्चू पुच्चू वाले पोस्टर भी है।
19: रांची में सीएम आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ाई जाती है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों से झारखंड सरकार की 3 दौर की बातचीत नाकाम हुई है। सरकार का दावा है कि 95 से 98% मांगे मान ली गई हैं, लेकिन जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और जेपीएससी भर्ती धांधली की सीबीआई जांच की मांग ना माने जाने तक प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं।
5: एक हाई लेवल डेलीगेशन, हाई लेवल कमेटी बनाकर, 4 मंत्रियों की एक कमेटी बनाकर संवाद का रास्ता खोला था। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि यदि यह आंदोलन सिर्फ छात्रों का होता तो आज प्रदर्शन की जरूरत नहीं थी। सरकार ने 95% मांगे बच्चों की मान ली थी।
19: इस प्रदर्शन के बीच झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव और जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते को ब्लैक लिस्टेड कंपनी TDPL को परीक्षा का ठेका देने के लिए CID ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन छात्रों का कहना है कि जब तक सोरेन सरकार उनकी एक एक मांग नहीं मान लेती, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। आज तक ब्यूरो।
0: और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर जंतर मंतर प्रदर्शन पर हुए लाठी चार्ज का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी ने सवाल किया कि लाठी चार्ज का आदेश किसने दिया था, इसका जिम्मेदार कौन है, वो सामने आए। गृहमंत्री अमित शाह सदन में आकर बयान दें, राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अराजकता फैला रहे हैं, गृहमंत्री हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं, राहुल गांधी नहीं चाहते कि संसद चले।
6: अमित शाह ने ऑर्डर दिया था या नहीं? बिना होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के ना दिल्ली पुलिस गोली चला सकती है, ना RAF गोली चला सकती है, राइट? तो हमारा सिर्फ एक सवाल है और उसका हम पहले जवाब मांग रहे हैं, आपने गोली चलवाई या नहीं चलवाई? अगर आपने चलवाई, यू आर कल्पेबल। अगर आपने नहीं चलवाई और किसी और ने चलवा दी, यू आर इनकॉम्पिटेंट। आइदर वे यू हैव टू गो।
7: जब गृह मंत्री जी ने कह दिया कि हम हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो फिर वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, राहुल गांधी चर्चा से मत भागना, हम तैयार हैं। सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तुम भागना मत। मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर में।
0: शरद पवार की अगुवाई वाली NCP SP के सभी 8 सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। सुप्रिया सुले की अगुवाई में हुई ये मुलाकात कांग्रेस और शिवसेना UBT को रास नहीं आई। विपक्ष कह रहा है कि बार बार शरद पवार गुट के नेता अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। इसका मतलब कुछ तो पक रहा होगा। हालांकि मुलाकात करने आए सांसद कह रहे हैं कि उन्होंने किसानों और अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर बात की है।

0: क्या शरद पवार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल होना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि परिसीमन बिल पर अटकलों के बीच सुप्रिया सुले की अगुवाई में एनसीपी शरद गुट के सभी 8 सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की है, जिससे एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है कि शायद शरद पवार का हृदय परिवर्तन होने वाला है। हालांकि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद शरद गुट के सांसद इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनका दल पाला बदलने वाला है।
1: एक तो पहले मैं ये बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो कयासबाजी जो चल रही है इसमें कोई भी तथ्य नहीं। हम 8 सांसद हैं एनसीपी एसपी के, हम विपक्ष में बैठते हैं और हमारे कई सारे मुद्दे हैं जो कई दिनों से प्रलंबित है। महाराष्ट्र के कुछ मुद्दे जैसे किसानों की ऋण माफी को लेकर मुद्दे, महाराष्ट्र के ड्रॉट के बारे में मुद्दे, प्याज के बारे में मुद्दे, पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेलवे के बारे में मुद्दे, ऐसे हर चुनाव क्षेत्र के जो मुद्दे इन समस्याओं को लेकर आज हमने पीएम सर से मुलाकात की और आई एम रियली थैंकफुल कि पीएम सर काफी वार्म थे। पीएम सर ने ये सब मुद्दे सुन लिए, समस्याएं सुन ली और उन्हें इस पर कोई ठोस कार्रवाई करेंगे ऐसा आश्वासन दिया।
2: दरअसल पहले शरद पवार साहब की मुलाकात होती है प्रधानमंत्री जी से और उसके बाद आप लोग सब लोग जाके मिलते हैं और इस मौसम में जब लगातार हंगामा हो हल्ला हो रहा है, सरकार को नंबर्स चाहिए, तो कुछ जिक्र हुआ डिलिमिटेशन का या कोई और एफसीआरए का और कुछ समर्थन मांगने देने की बात हुई?
1: जी नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। जो आज मुलाकात हुई ये मुलाकात सिर्फ हमारे 8 जो संसदीय क्षेत्र है इन क्षेत्रों की जो दिक्कतें हैं, महाराष्ट्र के किसानों के बारे में जो समस्या है इसके बारे में बात।
2: अच्छा, आज आपकी मुलाकात थी और आप भगवा कुर्ता पहने हुए हैं, तो ये चॉइस जो है इंटेंशनल थी कि एक्सीडेंटल थी और आगे क्या ये देखने को भी मिलेगा कि भगवा खेमे में आप लोग आ जाएंगे?
1: जी, मैंने कई बार इससे पहले, एक तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे मेरा भाषण भी आपने सुना, तो मैं ये मानने वाला हूँ कि भगवा मेरे तिरंगे का एक रंग है और इसीलिए मुझे लगता है कि किसी को मेरे भगवा रंग पहनने पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
2: तो वैसे आप लोग इधर है कि उधर है? वैसे इधर ही है ना, मतलब
1: मैंने हमेशा यही बात की,
2: यही बयान 10 दिन बाद भी चलेगा?
1: डेफिनेटली यही बयान हर बार चलेगा कि शिव शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा और महाराष्ट्र के हित में हम लोगों के साथ।
0: वैसे बताया जा रहा है कि शरद पवार गुट के सांसदों और प्रधानमंत्री के बीच करीब आधे घंटे की बैठक हुई। एनसीपी एसपी सांसद दावा कर रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने महाराष्ट्र में सूखे और सिंचाई से जुड़े मुद्दों पर चिंता जताई।
3: आज सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे उसमें किसानों के बारे में जो कर्ज माफी हो और कोई किसानों के अतिवृष्टि हो गई थी, बहुत से बारिश से वजह से हमारे किसानों का नुकसान हो गया था, वो कुछ विषय थे। और दूसरा हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, सब स्टेट के सब डिस्ट्रिक्ट में एक कैंसर केयर हॉस्पिटल होना चाहिए। और दूसरा पीएम रिलीफ फंडर रहता है उनके जो संख्या है वो बढ़ानी चाहिए। और तीसरा हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो किले बनाए 365 किले, उसमें से 12 किले यूनेस्को में लिया है, तो उसमें संख्या बढ़ानी चाहिए और जो जो किले उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देके वो किले अच्छे बनाने चाहिए।
0: इससे पहले भी एनसीपी शरद गुट ऐलान कर चुका है कि वो परिसीमन बिल के मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ है, लेकिन सियासत में जो होता है वो कहा नहीं जाता है और अक्सर जो कहा जाता है वो होता नहीं है। बार बार पीएम मोदी से शरद पवार या उनके सांसदों का मिलना विपक्ष को रास नहीं आ रहा है, इससे विपक्षी गठबंधन में खलबली मच गई है।
4: वारंवार अमित शाह आणि नरेंद्र मोदींच्या दरबारात हे का जाता है, कशामुळे जात आहेत? पवार साहेब ज्येष्ठ आहेत, ठीक आहे, पण इतर जे जात आहेत त्यांच्याकडे जाऊन नतमस्तक होताना आम्हाला दिसत आहे। याचा अर्थ काहीतरी आतून शिजलेलं असावं आणि त्यातून मला वाटतं की पुढच्या डिलिमिटेशनसाठी काही प्लॅनिंग असावी।
0: इस मुलाकात पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विपक्ष क्यों बेचैन, प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए किसी भी पार्टी के प्रतिनिधि पीएम से मिलते जुलते रहते हैं।
5: पंतप्रधान हे देशाचे असतात, ते कुठल्या पक्षाचे नसतात, त्यांना भेटायला जाणं यामध्ये काही भावगय आहे असं मला वाटत नाही। मी देखील मुख्यमंत्री आहे, अनेक विरोधी पक्षाचे लोक मला भेटत असतात, त्यांची कामं सांगत असतात, त्यामुळे मला असं वाटतं की कुठल्याही वेगळ्या दृष्टीने याच्याकडे पाहण्याचं कारण नाही आहे। ते त्या ठिकाणी गेले आहेत अतिशय किंवा जाणार असतील तर अतिशय चांगली गोष्ट.
0: इधर शिवसेना यूबीटी पूछ रही है कि परिसीमन बिल से क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी.
6: नहीं, बात एक ही है. देखिए, डिलिमिटेशन के बारे में जो कहा जाता है कि रिप्रेजेंटेशन हो, पहली बात तो यह है कि जब सांसद आप बढ़ाओगे लगभग 500 से लेके 850 तक लेके जाओगे तो उनका जो खर्चा होता है, उनकी तनख्वाह होती है, उनका डेली अलाउंस होता है, उनका घर होता है, फिर बंगला हो या फ्लैट हो, आने जाने का खर्चा होता है, उस पर तो हम सारे लोग ही तो खर्चा करने वाले टैक्स पेयर. और ये खर्चा करने के बाद क्या जो व्यवस्था है, जो परिस्थिति है, वो बदलने वाली है? उससे अच्छा ये सोचिए आप कि पावर्स को डिवॉल्व कैसे किया जाए, डिसेंट्रलाइज कैसे किए जाए. जो नगर निगम होते हैं उनको अगर आप ताकत दें तो कितना अच्छा हो सकता है. विधायक होते हैं उनको अगर आप ताकत दें अच्छा काम हो सकता है. जो अभी के सांसद है उनको फंड बढ़ाया जाए तो भी अच्छा काम हो सकता है. और एक तरफ आप देख रहे हो कि 850 एमपी की बात कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या वो इसमें से सॉल्व होने वाली है?
0: हालांकि सुप्रिया सुले ने प्रस्तावित एफसीआरए बिल के प्रति अपनी पार्टी के कड़े विरोध को दोहराया और मांग की कि इसे वापस लिया जाए या जेपीसी को भेजा जाए. एफसीआरए बिल पर फडणवीस ने कहा कि ये बिल किसी के खिलाफ नहीं है, इस पर विपक्ष ऐतराज क्यों जता रहा है?
5: देखिए, एफसीआरए के ऊपर बिल लाने का कारण यही है कि लगातार इस देश के अंदर एफसीआरए का उपयोग करके कुछ संस्थाएं पैसा ला रही है और उस पैसे का उपयोग देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है. जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए इस बिल में कोई अड़चन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है. एफसीआरई की प्रोविजन भी रहने वाली है, जो हिसाब देंगे उनके लिए उनका लाइसेंस भी रहने वाला है. मुझे विश्वास है कि अगर किसी को इसमें कुछ कहना होगा वो संसद में कह सकते हैं. भारत सरकार रिसेप्टिव है और ये किसी एक समुदाय का इसमें विषय ही नहीं है, क्योंकि केवल क्रिश्चियन संस्थाओं के लिए एफसीआरए नहीं है, सारी संस्थाओं के लिए एफसीआरए ये आवश्यक है. और सारी संस्थाएं किसी भी समाज की हो, जो संस्थाएं जिनको फॉरेन से डोनेशन मिलता है उनको एफसीआरए ये आवश्यक है.
0: फिलहाल इंडिया गठबंधन की नजर शरद पवार के अगले कदम पर है. उन्हें आशंका है कि पवार परिसीमन बिल का समर्थन करने के बहाने एनडीए में शामिल हो सकते हैं. लेकिन पवार इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे या एनडीए में जाएंगे, ये बात सिर्फ और सिर्फ शरद पवार ही जानते हैं. मुंबई से ऋत्विक भालेकर के साथ मौसमी सिंह और पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक.
7: राजस्थान में नई भर्तियां खूब निकल रही हैं, लेकिन पुरानी भर्तियों के लिए धरना प्रदर्शन का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा. राजस्थान सरकार ने खाने पीने के सामान की जांच के लिए पहली बार 2019 और फिर 2022 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती की थी. आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद सरकार ने 6 साल के बाद ज्वाइनिंग तो दे दी है, लेकिन 8 महीने हो चुके हैं, न सैलरी मिली है और न ही काम मिला. 6 साल के बाद ज्वाइनिंग पाए युवा एक बार फिर से धरना देने के लिए मजबूर हैं, जो इस बार स्वास्थ्य विभाग के अंदर ही धरने पर बैठ गए हैं.
8: खबरदार करके खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ता आज तक. खबर को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लगातार खबरदार करता है आज तक.
9: आपका बेटा या बेटी अगर भर्ती परीक्षा पास कर लेता है तो फिर आप मिठाई बांटते होंगे, लेकिन राजस्थान के हजारों ऐसे युवा हैं जो भर्ती परीक्षा पास करके भी बेरोजगार हैं. कहीं नियुक्ति पत्र लेकर भटक रहे हैं तो कहीं पोस्टिंग पाने के लिए धरना दे रहे हैं.
10: ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जो भर्ती है ना सर, भर्तियों के मामले में ये इस सरकार की सबसे बड़ी नाकामी.

0: लिया, लेकिन उसके बाद जैसे ही हमें पता लगता है कि ये इस भर्ती पे दुनिया भर की रिट लग रही है और स्टे आ जाता है, उसके बाद ना तो सर पढ़ाई होती है, बिल्कुल मेंटली टॉर्चर हो चुके हैं सर, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं।
1: आपकी टीवी स्क्रीन पर बाईं तरफ एक साल पहले की रिपोर्ट का वीडियो है, जब आजादी के बाद पहली बार 2019 और 2022 में निकली राजस्थान के खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती को पास करके भी नौकरी नहीं पा रहे युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए आज तक ने मुद्दा उठाया, जिसके बाद इन्हें नियुक्ति पत्र तो भजनलाल सरकार की राज में बंटा, लेकिन अब फिर से ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी धरना देने के लिए मजबूर कर दिए गए हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर में खुद के बेरोजगार सरकारी कर्मचारी नौकरी और तनख्वाह के लिए धरने पर बैठे। आप सोचेंगे कि एक सरकारी कर्मचारी कैसे बेरोजगार हो सकता है, तो समझिए कि राजस्थान सरकार के वो 225 स्वास्थ्य सुरक्षा अधिकारी हैं जिन्हें भर्ती निकलने के 7 साल बाद भी न तो काम दिया जा रहा है न ही सैलरी। 225 खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिन्हें रुला रुला कर नवम्बर दिसम्बर 2025 में ज्वाइन तो कराया गया, लेकिन 8 महीने में न तो इनको कोई काम दिया न ही तनख्वाह। ये रोज जिला चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर में जाकर साइन करते हैं और बैठे रहते हैं।
2: सर हमारी जो ज्वाइनिंग है वो दिसंबर में हो चुकी थी, अभी 8 महीने पूरे होने को आए हैं, तो हमें ना तो पोस्टिंग दी जा रही है, सारी हमारी जो प्रोसेस होनी चाहिए थी पोस्टिंग तक की वो पूरी हो चुकी है, पर आज दिन तक हमें कोई भी पोस्टिंग नहीं मिली है, ना ही हमें अभी तक सैलरी दी गई है। तो हम यही चाहते हैं कि आचार संहिता लगने से पहले हमें पोस्टिंग दे दी जाए, ताकि हमें आचार संहिता के टाइम में भी इस भर्ती को आगे तक धक्के नहीं मारने पड़े और हमें पोस्टिंग मिल जाए हमारी यथास्थिति पे।
1: संजय कुमार जैसे युवा आईआईटी दिल्ली से पीएचडी की है, अब भरतपुर जिला चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर में काम करते हैं, पहले की तनख्वाह भी गई और अब बेरोजगार होकर घूमने को लाचार है। कोई बैंक मैनेजर की नौकरी छोड़कर आया, कोई टीचर और कोई प्रिंसिपल की नौकरी छोड़कर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती में परीक्षा निकालकर नियुक्ति पाया, कोई एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद, लंदन से फूड सेफ्टी में पीजी डिप्लोमा करने के बाद 6 साल से धरने पर ही बैठ रहे हैं। सैलरी न मिलने से इनको परिवार चलाना मुश्किल हो चुका है।
3: हमारी बहुत बड़ी बड़ी ईएमआई पुराने जॉब की वजह से चल रही है और परिवार के
4: जॉब छोड़ के आए
3: जी सर, और अभी मेन प्रॉब्लम ईएमआई तो चल ही रही है, साथ में सर फैमिली के खर्चे भी हैं, क्योंकि बच्चों की फीस भी पे करनी पड़ती है, उसके अलावा परिवार का खर्चा भी चलाना पड़ता है सर, हमें कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है।
5: हम लोग यहाँ वापस जाते हैं, सुबह साइन करते हैं, शाम को वापस घर पर चले जाते हैं, ठीक है। अब इस पर डेपोटेशन वाले पर ये विभाग क्यों मेहरबान है इसका तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये डेपोटेशन के रुके रहने की वजह से हमारी भर्ती या हमारी जो पोस्टिंग है वो नहीं हो पा रही है।
6: गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में सर पिछले 11 साल से मैं वर्किंग हूँ, इससे पहले मैं वाइस प्रिंसिपल था, झुंझुनू में ही पोस्टेड था। अब समस्या ये आ रही है सर कि जो सैलरी वहाँ मिल रही थी नियमित सैलरी, वो भी अब यहाँ पिछले 8 महीने से नहीं मिल रही है। मैडम से काफी बार अनुरोध किया, 2-3 बार हम मिले व्यक्तिगत रूप से सीएल लेके, लेकिन आश्वासन के अलावा हमें कुछ मिला नहीं अभी तक।
1: दरअसल चयन होने के बाद भी जब इनको सरकार नौकरी नहीं दे रही थी तो ये लोग कोर्ट गए और कोर्ट में सरकार ने जवाब ये दे दिया कि विभाग में पहले जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पद था उस पर हमने डेपुटेशन पर दूसरे विभागों से रख लिया है, उनकी जगह इनको पद दे दिया जाएगा, मगर दूसरे विभाग से आए लोग जो डेपुटेशन पर लगे वो इस मलाईदार विभाग को छोड़कर अपने पुराने विभाग में जाना नहीं चाहते। अधिकारी कहते हैं कि उन्होंने फाइल मंत्री जी को भेज रखी, मंत्री जी के पास से फाइल आई तो फिर आगे काम हो पाएगा।
7: जब वो आया हमारे पास सर्टिफिकेट्स, वेरी माइनर मिस्टेक्स वर देयर इन द स्पेलिंग्स, तो हमने उसको रेक्टिफाई कराया थ्रू एफएसएसआई, बिकॉज वो गैजेट में जाता है तो स्पेलिंग में भी एरर नहीं होना है, तो भिजवाया तो 31 जुलाई को इनका नोटिफिकेशन जारी हो गया। अभी क्योंकि इनका सैलरी का है, वी आर वर्किंग ऑन द सैलरी पार्ट, वी हैव मेड देम एज अ ड्यूटी मान के इनको सैलरी देने वाला, और दूसरा इनका राजहेल्थ पोर्टल के थ्रू पोस्टिंग दिलाना है इन द प्लेस वेर दे कैन वर्क बेस्ड ऑन हमने जो एरिया आइडेंटिफाई किया है अंडर द एक्ट, तो फाइल अभी पेंडिंग है, तो हम भी उस पर थोड़ा एक्सपेरेट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके करें।
1: खाने पीने में मिलावट और नकली दूध और पनीर से लेकर नकली आटा और नकली धनिया पाउडर तक बेचे जाने की घटनाएं राजस्थान में लगातार सामने आ रही हैं, मगर वर्षों से विभाग में डेपुटेशन पर लगे अधिकारियों की लॉबी की वजह से मंत्री जी फाइल से भाग रहे हैं और लाचार होकर 225 खाद्य सुरक्षा अधिकारी बिना काम बिना सैलरी के धरना देने के लिए छोड़ दिए गए हैं।
8: ये राजस्थान का स्वास्थ्य भवन है और स्वास्थ्य भवन में ये नीचे बैठे हुए राजस्थान के खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं। आजादी के बाद पहली बार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की

0: भर्ती निकली थी, इन्हें ज्वाइनिंग तो दे दी गई बड़े लंबी लड़ाई के बाद, मगर कोई काम नहीं दिया गया, न तनख्वाह मिलती है और इन्हें दफ्तर के अंदर बैठना चाहिए था। ये गलियारे में बैठे हुए हैं अधिकारियों के दफ्तरों के बाहर अपने मांग को लेकर कि 2019 में भर्ती हुई थी और अब तक नौकरी नहीं मिल पाई, कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, कैसे घर चलता है इनका।
1: इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।

0: प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पर राहुल गांधी का बड़ा हमला, पूछा किसने दिया छात्रों के ऊपर पैलेट गन चलाने के आदेश, चढ़ावा चोरी को लेकर प्रधानमंत्री को घेरा नड्डा का पलटवार, माहौल खराब कर रहे हैं नेता विपक्ष। परीक्षा धांधली के खिलाफ रांची में छात्रों का धरना, विधानसभा मार्च के दौरान लाठीचार्ज, हेमंत सोरेन ने प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया, देवेंद्र महतो बोले अब नहीं होगी सरकार से बात। रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी ने आज झारखंड बंद बुलाया, सीएम आवास पर प्रदर्शन किया गया, जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन गिरफ्तार, ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक कुदरत का कहर, चमोली में बह गया पुल, बीजेपी सांसद बलूनी बोले राहत और बचाव पर सरकार की नजर, रायगढ़ में 9 लोगों की मौत, गुजरात असम में भी आसमानी आफत। और परमाणु हथियार के बहाने दबाव बनाने में जुटे ईरान का ट्रंप को तगड़ा जवाब, का हॉर्मुज तभी खुलेगा जब अमेरिका देगा हर्जाना और हटाएगा प्रतिबंध। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और अनियमितताओं के विरोध में छात्रों ने रांची में विधानसभा का घेराव किया। छात्र झारखंड विधानसभा के गेट के पास तक पहुंच गए थे। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने की मांग कर रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है।
1: अस्त्रो गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ये देखिए अस्त्रो गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
2: झारखंड में छात्रों का आक्रोश, विधानसभा तक विरोध।
3: ये देखिए बैरिकेड्स तोड़ दी है छात्रों ने, तोड़ेंगे जितना लेवल पे होगा, सिंहासन खाली करो, अब जनता आ रही है।
2: लाठीचार्ज, आंसू गैस, पानी की बौछार, रांची में आर पार।
1: ये देखिए अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
3: ऐसा पाकिस्तान से आए हैं, सरकार ने इनपुट हो गई है।
2: विधानसभा गेट तक पहुंचे छात्र, बैरिकेड टूटे, झुकेगी सरकार।
4: फिर से वाटर कैनन चलाना शुरू कर दिया है।
5: बच्चों का सीट बेच के और नौकरी उन लोग खा जा रहे हैं, तो अवसर की समानता कहाँ है?
2: पेपर लीक और परीक्षा में धांधली, छात्रों ने छेड़ी अगस्त क्रांति।
6: अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है, सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है।
2: आंदोलन से छात्रों ने दिखाई ताकत, सरकार मानेगी हरेक शर्त।
7: आपकी सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाहती है।
8: युवा को पलटी कर दी जाता है वायु, वायु को कोई रोक नहीं सकता।
2: 17 दिन से जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर रांची के जयपाल मुंडा स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन और अनशन कर रहे छात्रों का सब्र टूटा, तो आक्रोश से भरे छात्र सीधे विधानसभा के लिए कूच कर गए। उसके बाद जो हुआ तस्वीरें आपके सामने, छात्र आंदोलन की सांधी में बैरिकेड भी उखड़ गए और विधानसभा को घेरने के लिए की गई कटीले तारों की बाड़बंदी भी छात्रों ने उखाड़ फेंकी। प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, फिर भी छात्रों का सैलाब नहीं थमा तो वाटर कैनन यानी पानी की बौछारें बरसानी पड़ गई, तो आखिर में पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी डाले।
1: ये देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
2: अब छात्र अड़े हैं और सुरेंद्र सरकार के खिलाफ डटे हैं, अपनी शर्तों के लिए, अपनी मांगें मनवाने के लिए। आज हम आपको रांची आंदोलन में विधानसभा घेराव की पूरी टाइमलाइन दिखाएंगे, ये भी बताएंगे कि प्रदर्शनकारी छात्रों और सुरेंद्र सरकार के बीच बात कहां अटकी है, सरकार क्या कह रही है और छात्र किस बात पर अड़े हैं।
9: हम लोग डरने वाले नहीं है, सरकार का एक ही विकल्प है, हमारा मांग को पूरी करे, अन्यथा सरकार अपना कुर्सी नहीं बचा पाएगी, उसका कुर्सी पर खतरा है।
10: किसी भी शर्त पर यहाँ से नहीं हटने वाले, जब तक सरकार घोषणा नहीं कर दे कि सीजीएल रद्द हो गया।
11: ये मेरे पोस्टर का मतलब ये था कि हम लोग स्लैब को कोई फिल्टर नहीं जो हमारा फ्यूचर वो स्किप कर दे।
12: रविवार को झारखंड सरकार के मंत्रियों की विशेष कमेटी और प्रदर्शन कर रहे छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीन दौर में करीब 5 घंटे तक मैराथन वार्ता चलती, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती। और फिर छात्र 10 अगस्त को पहले से घोषित विधानसभा घेराव करने का फैसला लेते। छात्रों को सुबह 10 बजे से पहले पुरानी विधानसभा के पास जमा होने के लिए कहा जाता है, क्योंकि मार्च पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा तक का था। ऐसे में छात्र पोस्टरों और बैनरों के साथ पुरानी विधानसभा पहुँचने लगते।
13: हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहां से मार्च की शुरुआत होनी है। आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार सीजीएल रद्द करेगी?
14: क्यों रद्द करना पड़ेगा? हम लोग आंदोलनरत इसी कारण से है कि ये परीक्षा रद्द होगा। आगे से आने वाली सभी परीक्षाएं पारदर्शी रूप से ले जाएंगी, सीटें नहीं बिकेंगी, पेपर लीक नहीं होगा।
15: सरकार से हमारी मांग है जैसे सीजीएल को रद्द करना होगा, सीबीआई जांच करनी होगी।
13: और देखिए छात्र यहाँ सड़क पे बैठ गए हैं, छात्रों की तरफ से नारेबाजी हो रही है।
16: कितनो ब्रेक कटी, कितनो काटा लगा ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 26 वर्ष से हमारा हक मारा जा रहा है, इस बार हम लोग नहीं छोड़ेंगे सरकार।
17: सरकार जब तक हम लोग को लिखित नहीं देती है और जब तक सीबीआई सीआईडी जांच नहीं करवाती है, तब तक हम लोग रोड पे रहेंगे, सड़क पे रहेंगे।
0: छात्र सोमवार दिन भर विधानसभा के बाहर जमे रहे। शाम को भी छात्रों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी इस बात पर अड़े हैं कि जब तक उनकी मांगों को सुना नहीं जाएगा वो पीछे नहीं हटेंगे।
2: और पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा के लिए आंदोलनकारी छात्रों का मार्च शुरू हो जाता है। छात्र विधानसभा तक ना पहुंचे इसके लिए बैरिकेडिंग की जाती है और कटीले तारों की बाड़बंदी भी कर दी जाती है। पुलिस बैरिकेडिंग से प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन छात्र बैरिकेडिंग को लांग कर आगे बढ़ जाते हैं। आपको बता दें कि विधानसभा तक के रास्ते में 6 जगह बैरिकेडिंग की गई।
18: हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के वंशज हैं, झारखंड के लिए लड़ सकते हैं तो हम लोग भी लड़।
19: हमारे 3 मांगे हैं सर, तब तक यहाँ से नहीं हिलेगा जब तक उसने अपना जितना मांग रखा है पूरा ना हो जाए।
2: प्रदर्शन में शामिल एक छात्र गुलाब लेकर आता है। आज तक से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं ये फूल हमारे प्रिय सीएम हेमंत सोरेन के लिए लाया हूँ, जिनके कानों पर 16 दिन से जू नहीं रेंग रही। हम हर कांटे का जवाब फूल से देंगे।
20: तरीका सबसे बेहतर तरीका है, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का एक प्रतीक भी है कि हम इतने शांतिपूर्ण हैं कि हम कांटों का जवाब फूल से दे सकते हैं।
2: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्रनाथ महतो एम्बुलेंस से विधानसभा के लिए रवाना होते हैं। देवेंद्रनाथ महतो स्ट्रेचर पर बैठकर मार्च में शामिल होते हैं। ऐसे में महतो को छात्रों ने अपने कंधे पर उठा लिया और फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने तिरंगा लहराकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। आप देख सकते हैं कि देवेंद्रनाथ महतो स्ट्रेचर पर है और प्रदर्शनकारियों ने स्ट्रेचर को कंधे पर उठाया हुआ है। महतो के हाथ में हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन की तस्वीर भी है। प्रदर्शनकारी जैसे ही आखिरी लेयर की बैरिकेडिंग तक पहुंचे, पुलिस वाटर कैनन एक्शन शुरू कर देती है। ऐसे में छात्र पानी में जमकर डांस करने लगे और कहने लगे, और चलाओ और चलाओ।
21: ये जेन जी क्यों बहुत मारक प्रचार करती है? आपको ये तस्वीर याद है, बहुत मशहूर फिल्म का है, हेमंत सोरेन की तस्वीर लगाई, लिखा है बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अब आप इस तरह के व्यंग अगर लेकर के आएंगे, इस व्यंग का कोई मार है क्या? ये वो एक नाम अभय तिवारी, वो उनको एस्ट्रोनॉट में भी दिखा दिया है, अभय तिवारी को आईपीएस भी बना दिया है, अभय तिवारी को एसडीएम भी बना दिया गया है, इसरो में साइंटिस्ट भी बना दिया गया है, डॉक्टर भी बना दिया गया, नेता भी बना दिया, मुख्यमंत्री, झारखंड का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया।
22: वो जस्ट एक मोहरा है, असली विलन अभी भी पर्दे के पीछे है।
23: पीछे सर असली विलन।
24: मेरे दिल में सबसे ज्यादा अगर दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, तो मेरा भूख हड़ताल से ज्यादा दर्द हुआ उस कांटेदार तार का जाली से, एक आते आते टूट गया। ये 3 लेयर का ब्रेकडिंग था, ये 3 लेयर का ब्रेकडिंग आते आते ये छात्र लोग इससे हम लोग निकल जा रहे हैं।
2: प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा भवन के निकट पहुंच जाते हैं। अंतिम बैरिकेडिंग तोड़े जाने पर पुलिस प्रशासन की ओर से छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच भिड़ंत हो जाती है और इस दौरान पुलिस भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़ देती है।
21: प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
25: आंसू गैस, लाठी चार्ज, वाटर कैनन सब का प्रयोग किया जा रहा है हमारे आवाज को दबाने के लिए। ये सरकार डर गई है, कायर सरकार है। जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है।
2: पुलिसिया सख्ती और वाटर कैनन की बौछारों को देखते हुए छात्र रणनीति बदलते हैं और शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। प्रदर्शनकारी छात्र मुख्य मार्ग छोड़कर झारखंड उच्च न्यायालय के बगल से खेतों के रास्ते से विधानसभा की ओर तेजी से बढ़ने लगे।
3: उसी रास्ते पर देखिए जो छात्र पार, मैंने कहा था ना बैरिकेड पार कर लिया है, अब वो खेतों के रास्ते विधानसभा की ओर पहुंचने लगे हैं। जहां पर मैं आया आपको बिल्डिंग दिखाता हूं, ये विधानसभा का इलाका है और ये सारे खेतों के रास्ते, वो देखिए वो विधानसभा है और ये जितने छात्र हैं एक एक करके। अब इस इलाके में क्या है, दो बैरिकेड के बीच में जहां सुरक्षा व्यवस्था है, उन्होंने कहा छोड़िए आपको, पुलिस जो है वो बैरिकेड के पास रहेगी, ये खेतों के रास्ते निकल लिए। और देखिए रेला,
2: आखिरी बैरिकेडिंग के पास जब छात्र पहुंचते हैं तो पुलिस अपील करती है कि छात्र पीछे लौट जाएं, लेकिन छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं होते।
4: जो कार्रवाई थी वो खत्म हो चुकी है, लिहाजा पुलिस के तरफ से ऐलान किया जा रहा है, एसएसपी ने खुद अनाउंस किया है और अनाउंस किया जा रहा है कि अब जब आप विधानसभा मार्च आपका था, आप यहाँ पे अपने बातों को रखने के लिए आए थे, विधायक जो बैठते हैं, मंत्री जो बैठते हैं, जो डिसीजन मेकर हैं लोकतंत्र के मंदिर में जो बैठते हैं, उनसे जब आप बातें करने आए थे, तो जब सत्र खत्म हो गया आज का, तो क्यों नहीं आप वापस चले जा रहे हैं।
2: प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा के गेट पर पहुंच जाते हैं जहां भारी पुलिस बल तैनात रहता है, लेकिन छात्रों का प्रदर्शन जारी रहता है और वो अपनी मांगों पर अड़े रहते हैं। अलग अलग वेश में प्रदर्शनकारी नजर आते हैं। इस प्रदर्शन को देखिए, ये स्पाइडरमैन बन के आया है।
3: वाटर कैनन थे, टैंकर थे, सबका पानी खाली हो गया, बाकायदा छात्रों ने रेन डांस का मजा लिया। और अब इस सड़क से आगे ये जो बैरिकेडिंग, यही रास्ता नई विधानसभा है। सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर ही यहाँ पर विधानसभा का प्रमुख द्वार है और उसी के पहले देखिए स्पाइडरमैन भी दिख गए यहाँ पे। जंतर मंतर से बहुत सारी सिमिलैरिटी दिखाई पड़ती है, स्पाइडरमैन भी है, बैटमैन भी है, कुच्चू पुच्चू वाले पोस्टर भी है।
2: रांची में सीएम आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ाई जाती है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों से झारखंड सरकार की तीन दौर की बातचीत नाकाम हुई है। सरकार का दावा है कि 95 से 98% मांगे मान ली गई हैं, लेकिन जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और जेपीएससी भर्ती धांधली की सीबीआई जांच की मांग न माने जाने तक प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं।
5: एक हाई लेवल डेलीगेशन, हाई लेवल कमेटी बनाकर, चार मंत्रियों की एक कमेटी बनाकर संवाद का रास्ता खोला था। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा, यदि यह आंदोलन सिर्फ छात्रों का होता तो आज प्रदर्शन की जरूरत नहीं थी। सरकार ने 95% मांगे बच्चों की मान ली थी।
2: इस प्रदर्शन के बीच झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव और जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते को ब्लैक लिस्टेड कंपनी टीडीपीएल को परीक्षा का ठेका देने के लिए सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन छात्रों का कहना है कि जब तक सोरेन सरकार उनकी एक एक मांग नहीं मान लेती, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। आज तक विरोध।
0: और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर जंतर मंतर प्रदर्शन पर हुए लाठी चार्ज का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी ने सवाल किया कि लाठी चार्ज का आदेश किसने दिया था, इसका जिम्मेदार कौन है, वो सामने आए। गृहमंत्री अमित शाह सदन में आकर बयान दें, राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अराजकता फैला रहे हैं, गृहमंत्री हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं, राहुल गांधी नहीं चाहते संसद चले।
6: अमित शाह ने ऑर्डर दिया था या नहीं? बिना होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के ना दिल्ली पुलिस गोली चला सकती है, ना आरएएफ गोली चला सकती है, राइट? तो हमारा सिर्फ एक सवाल है और उसका हम पहले जवाब मांग रहे हैं, आपने गोली चलवाई या नहीं चलवाई? अगर आपने चलवाई, यू आर कल्पेबल। अगर आपने नहीं चलवाई और किसी और ने चलवा दी, यू आर इनकॉम्पिटेंट। Either way you have to go।
7: जब गृह मंत्री जी ने कह दिया कि हम हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो फिर वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, राहुल गांधी चर्चा से मत भागना, हम तैयार हैं। सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तुम भागना मत। मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर में।
0: शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी एसपी के सभी 8 सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। सुप्रिया सुले की अगुवाई में हुई यह मुलाकात कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी को रास नहीं आई। विपक्ष कह रहा है कि बार बार शरद पवार गुट के नेता अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो पक रहा होगा। हालांकि मुलाकात करने आए सांसद कह रहे हैं कि उन्होंने किसानों और अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर बात की है।

0: क्या शरद पवार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल होना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि परिसीमन बिल पर अटकलों के बीच सुप्रिया सुले की अगुवाई में एनसीपी शरद गुट के सभी 8 सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की है, जिससे एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है कि शायद शरद पवार का हृदय परिवर्तन होने वाला है। हालांकि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद शरद गुट के सांसद इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनका दल पाला बदलने वाला है।
1: एक तो पहले मैं ये बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो कयासबाजी जो चल रही है इसमें कोई भी तथ्य नहीं। हम 8 सांसद हैं एनसीपी एसपी के, हम विपक्ष में बैठे हैं और हमारे कई सारे मुद्दे हैं जो कई दिनों से प्रलंबित है। महाराष्ट्र के कुछ मुद्दे जैसे किसानों की ऋण माफी को लेकर मुद्दे, महाराष्ट्र के ड्रॉट के बारे में मुद्दे, प्याज के बारे में मुद्दे, पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेलवे के बारे में मुद्दे, ऐसे हर चुनाव क्षेत्र के जो मुद्दे इन समस्याओं को लेकर आज हमने पीएम सर से मुलाकात की और आई एम रियली थैंकफुल कि पीएम सर काफी वार्म थे। पीएम सर ने ये सब मुद्दे सुन लिए, समस्याएं सुन ली और उन्हें इस पर कोई ठोस कार्रवाई करेंगे ऐसा आश्वासन दिया।
2: दरअसल पहले शरद पवार साहब की मुलाकात होती है प्रधानमंत्री जी से और उसके बाद आप लोग सब लोग जाके मिलते हैं और इस मौसम में जब लगातार हंगामा हो हल्ला हो रहा है, सरकार को नंबर्स चाहिए, तो कुछ जिक्र हुआ डिलिमिटेशन का या कुछ और एफसीआरए का और कुछ समर्थन मांगने देने की बात हुई?
1: जी नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। जो आज मुलाकात हुई ये मुलाकात सिर्फ हमारे 8 जो संसदीय क्षेत्र है इन क्षेत्रों की जो दिक्कतें हैं, महाराष्ट्र के किसानों के बारे में जो समस्या है इसके बारे में बात।
2: अच्छा, आज आपकी मुलाकात थी और आप भगवा कुर्ता पहने हुए हैं, तो ये चॉइस जो है इंटेंशनल थी कि एक्सीडेंटल थी और आगे क्या ही? ये देखने को भी मिलेगा कि भगवा खेमे में आप लोग आ जाएंगे?
1: जी, मैंने कई बार इससे पहले, एक तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे मेरा भाषण भी आपने सुना, तो मैं ये मानने वाला हूँ कि भगवा मेरे तिरंगे का एक रंग है और इसीलिए मुझे लगता है कि किसी को मेरे भगवा रंग पहनने पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
2: तो वैसे आप लोग इधर है कि उधर है? वैसे इधर ही है ना, मतलब
1: मैंने हमेशा यही बात की।
2: यही बयान 10 दिन बाद भी चलेगा?
1: डेफिनेटली यही बयान हर बार चलेगा कि शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा और महाराष्ट्र के हित में हम लोगों के साथ।
0: वैसे बताया जा रहा है कि शरद पवार गुट के सांसदों और प्रधानमंत्री के बीच करीब आधे घंटे की बैठक हुई। एनसीपी एसपी सांसद दावा कर रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने महाराष्ट्र में सूखे और सिंचाई से जुड़े मुद्दों पर चिंता जताई।
3: आज सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे उसमें किसानों के बारे में जो कर्ज माफी हो और कोई किसानों के अतिवृष्टि हो गई थी, बहुत से बारिश से वजह से हमारे किसानों का नुकसान हो गया था, वो कुछ विषय थे। और दूसरा हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, सब स्टेट के सब डिस्ट्रिक्ट में एक कैंसर केयर हॉस्पिटल होना चाहिए। और दूसरा पीएम रिलीफ फंडर होता है उनके जो संख्या है वो बढ़ानी चाहिए। और तीसरा हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो किले बनाए 365 किले, उसमें से 12 किले यूनेस्को में लिया है, तो उसमें संख्या बढ़ानी चाहिए और जो जो किले उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देके वो किले अच्छे बनाने चाहिए।
0: इससे पहले भी एनसीपी शरद गुट ऐलान कर चुका है कि वो परिसीमन बिल के मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ है, लेकिन सियासत में जो होता है वो कहा नहीं जाता है और अक्सर जो कहा जाता है वो होता नहीं है। बार बार पीएम मोदी से शरद पवार या उनके सांसदों का मिलना विपक्ष को रास नहीं आ रहा है, इससे विपक्षी गठबंधन में खलबली मच गई है।
4: वारंवार अमित शाह आणि नरेंद्र मोदींच्या दरबारात हे का जाता है, कशामुळे जात आहेत? पवार साहेब ज्येष्ठ आहेत, ठीक आहे, पण इतर जे जात आहेत त्यांच्याकडे जाऊन नतमस्तक होताना आम्हाला दिसत आहे, याचा अर्थ काहीतरी आतून शिजलेलं असावं आणि त्यातून मला वाटतं की पुढच्या डिलिमिटेशनसाठी काही प्लॅनिंग असावी।
0: इस मुलाकात पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विपक्ष क्यों बेचैन है, प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए किसी भी पार्टी के प्रतिनिधि पीएम से मिलते जुलते रहते हैं।
5: पंतप्रधान हे देशाचे असतात, ते कुठल्या पक्षाचे नसतात, त्यांना भेटायला जाणं यामध्ये काही अवघड असं मला वाटत नाही। मी देखील मुख्यमंत्री आहे, अनेक विरोधी पक्षाचे लोक मला भेटत असतात, त्यांची कामं सांगत असतात, त्यामुळे मला असं वाटतं की कुठल्याही वेगळ्या दृष्टीने याच्याकडे पाहण्याचं कारण नाही आहे, ते त्या ठिकाणी गेले आहेत की अतिशय किंवा जाणार असतील तर अतिशय चांगली गोष्ट.
0: इधर शिवसेना यूबीटी पूछ रही है कि परिसीमन बिल से क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी.
6: नहीं, बात एक ही है. देखिए, डिलिमिटेशन के बारे में जो कहा जाता है कि रिप्रेजेंटेशन हो, पहली बात तो यह है कि जब सांसद आप बढ़ाओगे लगभग 500 से लेके 850 तक लेके जाओगे तो उनका जो खर्चा होता है, उनकी तनख्वाह होती है, उनका डेली अलाउंस होता है, उनका घर होता है, फिर बंगला हो या फ्लैट हो, आने जाने का खर्चा होता है, उस पर तो हम सारे लोग ही तो खर्चा करने वाले टैक्स पेयर. और ये खर्चा करने के बाद क्या जो व्यवस्था है, जो परिस्थिति है, वो बदलने वाली है? उससे अच्छा ये सोचिए आप कि पावर्स को डिवॉल्व कैसे किया जाए, डिसेंट्रलाइज कैसे किया जाए. जो नगर निगम होते हैं उनको अगर आप ताकत दें तो कितना अच्छा हो सकता है. विधायक होते हैं उनको अगर आप ताकत दें अच्छा काम हो सकता है. जो अभी के सांसद है उनको फंड बढ़ाया जाए तो भी अच्छा काम हो सकता है. और एक तरफ आप देख रहे हो कि 850 एमपी की बात कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या वो इसमें से सॉल्व होने वाली है?
0: हालांकि सुप्रिया सुले ने प्रस्तावित एफसीआरए बिल के प्रति अपनी पार्टी के कड़े विरोध को दोहराया और मांग की कि इसे वापस लिया जाए या जेपीसी को भेजा जाए. एफसीआरए बिल पर फडणवीस ने कहा कि ये बिल किसी के खिलाफ नहीं है, इस पर विपक्ष ऐतराज क्यों जता रहा है?
5: देखिए, एफसीआरए के ऊपर बिल लाने का कारण यही है कि लगातार इस देश के अंदर एफसीआरए का उपयोग करके कुछ संस्थाएं पैसा ला रही है और उस पैसे का उपयोग देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है. जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए इस बिल में कोई अड़चन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है. एफसीआरए की प्रोविजन भी रहने वाली है, जो हिसाब देंगे उनके लिए उनका लाइसेंस भी रहने वाला है. मुझे विश्वास है कि अगर किसी को इसमें कुछ कहना होगा वो संसद में कह सकते हैं. भारत सरकार रिसेप्टिव है और ये किसी एक समुदाय का इसमें विषय ही नहीं है, क्योंकि केवल क्रिश्चियन संस्थाओं के लिए एफसीआरए नहीं है, सारी संस्थाओं के लिए एफसीआरए ये आवश्यक है. और सारी संस्थाएं किसी भी समाज की हो, जो संस्थाएं जिनको फॉरेन से डोनेशन मिलता है उनको एफसीआरए ये आवश्यक है.
0: फिलहाल इंडिया गठबंधन की नजर शरद पवार के अगले कदम पर है. उन्हें आशंका है कि पवार परिसीमन बिल का समर्थन करने के बहाने एनडीए में शामिल हो सकते हैं, लेकिन पवार इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे या एनडीए में जाएंगे ये बात सिर्फ और सिर्फ शरद पवार ही जानते हैं. मुंबई से ऋत्विक भालेकर के साथ मौसमी सिंह और पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक.
7: राजस्थान में नई भर्तियां खूब निकल रही हैं, लेकिन पुरानी भर्तियों के लिए धरना प्रदर्शन का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा. राजस्थान सरकार ने खाने पीने के सामान की जांच के लिए पहली बार 2019 और फिर 2022 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती की थी. आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद सरकार ने 6 साल के बाद ज्वाइनिंग तो दे दी है, लेकिन 8 महीने हो चुके हैं, न सैलरी मिली है और न ही काम मिला. 6 साल के बाद ज्वाइनिंग पाए युवा एक बार फिर से धरना देने के लिए मजबूर हैं, जो इस बार स्वास्थ्य विभाग के अंदर ही धरने पर बैठ गए हैं.
8: खबरदार करके खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ता आज तक. खबर को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लगातार खबरदार करता है आज तक.
9: आपका बेटा या बेटी अगर भर्ती परीक्षा पास कर लेता है तो फिर आप मिठाई बांटते होंगे, लेकिन राजस्थान के हजारों ऐसे युवा हैं जो भर्ती परीक्षा पास करके भी बेरोजगार हैं. कहीं नियुक्ति पत्र लेकर भटक रहे हैं तो कहीं पोस्टिंग पाने के लिए धरना दे रहे हैं.
10: ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जो भर्ती है ना सर, भर्तियों के मामले में ये इस सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है.
11: इसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आया, उसमें हमारा रोल नंबर दिखा, उसके बाद में हम बिल्कुल फ्री हो गए कि एक बार मेहनत करके 2-2.5 साल हमने एक अच्छा परिणाम पा लिया. लेकिन उसके बाद जैसे ही हमें पता लगता है कि ये इस भर्ती पे दुनिया भर की रिट लग रही है और स्टे आ जाता है, उसके बाद ना तो सर पढ़ाई होती है, बिल्कुल मेंटली टॉर्चर हो चुके हैं सर, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं.
8: आपकी टीवी स्क्रीन पर बाईं तरफ 1 साल पहले की रिपोर्ट का वीडियो है, जब आजादी के बाद पहली बार 2019 और 2022 में निकली राजस्थान के खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती को पास करके भी नौकरी नहीं पा रहे युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए आज तक ने मुद्दा उठाया, जिसके बाद इन्हें नियुक्ति पत्र तो भजनलाल सरकार के राज में बटा, लेकिन अब फिर से ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी धरना देने के लिए मजबूर कर दिए गए हैं. राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर में खुद के बेरोजगार सरकारी कर्मचारी नौकरी और तनख्वाह के लिए धरने पर बैठे। आप सोचेंगे कि एक सरकारी कर्मचारी कैसे बेरोजगार हो सकता है, तो समझिए ये राजस्थान सरकार के वो 225 स्वास्थ्य सुरक्षा अधिकारी हैं जिन्हें भर्ती निकलने के 7 साल बाद भी न तो काम दिया जा रहा है न ही सेल में। 225 खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिन्हें रुला रुला कर नवंबर दिसंबर 2025 में ज्वाइन तो कराया गया लेकिन 8 महीने में न तो इनको कोई काम दिया न ही तनख्वाह। ये रोज जिला चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर में जाकर साइन करते हैं और बैठे रहते हैं।
12: सर हमारी जो ज्वाइनिंग है वो दिसंबर में हो चुकी थी, अभी 8 महीने पूरे होने को आए हैं तो हमें ना तो पोस्टिंग दी जा रही है, सारी हमारी जो प्रोसेस होनी चाहिए थी पोस्टिंग तक की वो पूरी हो चुकी है पर आज दिन तक हमें कोई भी पोस्टिंग नहीं मिली है ना ही हमें अभी तक सैलरी दी गई है। तो हम यही चाहते हैं कि आचार संहिता लगने से पहले हमें पोस्टिंग दे दी जाए ताकि हमें आचार संहिता के टाइम में भी इस भर्ती को आगे तक धक्के नहीं मारने पड़े और हमें पोस्टिंग मिल जाए हमारी यथास्थिति पे।
8: संजय कुमार जैसे युवा IIT दिल्ली से PhD की हैं, अब भरतपुर जिला चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर में काम करते हैं। पहले की तनख्वाह भी गई और अब बेरोजगार होकर घूमने को लाचार है। कोई बैंक मैनेजर की नौकरी छोड़कर आया, कोई टीचर और कोई प्रिंसिपल की नौकरी छोड़कर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती में परीक्षा निकाल कर नियुक्ति पाया, कोई MSc केमिस्ट्री करने के बाद, लंदन से फूड सेफ्टी में PG डिप्लोमा करने के बाद 6 साल से धरने पर ही बैठ रहे हैं। सैलरी न मिलने से इनको परिवार चलाना मुश्किल हो चुका है।
13: हमारी बहुत बड़ी बड़ी EMI पुराने जॉब की वजह से चल रही है और परिवार के
14: पुराने जॉब छोड़ के आए
13: जी सर, और अभी मेन प्रॉब्लम EMI तो चली रही है साथ में सर फैमिली के खर्चे भी हैं क्योंकि बच्चों की फीस भी पे करनी पड़ती है, उसके अलावा परिवार का खर्चा भी चलाना पड़ता है सर, हमें कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है।
15: हम लोग यहाँ वापस जाते हैं, सुबह साइन करते हैं, शाम को वापस घर पर चले जाते हैं, ठीक है। अब इस पर डेपोटेशन वाले पर ये विभाग क्यों मेहरबान है इसका तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये डेपोटेशन के रुके रहने की वजह से हमारी भर्ती या हमारी जो पोस्टिंग है वो नहीं हो पा रही है।
16: पहले भी हम गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में सर पिछले 11 साल से मैं वर्किंग हूँ, इससे पहले मैं वाइस प्रिंसिपल था, झुंझुनू में पोस्टेड था। अब समस्या ये आ रही है सर कि जो सैलरी वहाँ मिल रही थी नियमित सैलरी वो भी अब यहाँ पिछले 8 महीने से नहीं मिल रही है। मैडम से काफी बार अनुरोध किया, 2-3 बार हम मिले व्यक्तिगत रूप से CA लेके, लेकिन आश्वासन के अलावा हमें कुछ मिला नहीं अभी तक।
8: दरअसल चयन होने के बाद भी जब इनको सरकार नौकरी नहीं दे रही थी तो ये लोग कोर्ट गए और कोर्ट में सरकार ने जवाब ये दे दिया कि विभाग में पहले जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पद था उस पर हमने डेपुटेशन पर दूसरे विभागों से रख लिया है, उनकी जगह इनको पद दे दिया जाएगा। मगर दूसरे विभाग से आए लोग जो डेपुटेशन पर लगे वो इस मलाईदार विभाग को छोड़कर अपने पुराने विभाग में जाना नहीं चाहते। अधिकारी कहते हैं कि उन्होंने फाइल मंत्री जी को भेज रखी है, विभाग में जाना नहीं चाहते। अधिकारी कहते हैं कि उन्होंने फाइल मंत्री जी को भेज रखी है, मंत्री जी के पास से फाइल आई तो फिर आगे काम हो पाएगा।
17: जब वो आया हमारे पास सर्टिफिकेट्स, वेरियस माइनर मिस्टेक्स वर देयर इन द स्पेलिंग्स, तो हमने उसको रेक्टिफाई कराया थ्रू FSSAI बिकॉज़ अभी क्योंकि इनका सैलरी का है, वी आर वर्किंग ऑन द सैलरी पार्ट, वी हैव मेड देम एज अ ड्यूटी मान के इनको सैलरी देने वाला, और दूसरा इनका राजहेल्थ पोर्टल के थ्रू पोस्टिंग दिलाना है द प्लेस वेर दे कैन वर्क बेस्ड ऑन हमने जो एरिया आइडेंटिफाई किया है अंडर द एक्ट, तो फाइल अभी पेंडिंग है तो हम भी उस पर थोड़ा एक्सपेरेट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके करें।
8: खाने पीने में मिलावट और नकली दूध और पनीर से लेकर नकली आटा और नकली धनिया पाउडर तक बेचे जाने की घटनाएं राजस्थान में लगातार सामने आ रही हैं। मगर वर्षों से विभाग में डेपुटेशन पर लगे अधिकारियों की लॉबी की वजह से मंत्री जी फाइल से भाग रहे हैं और लाचार होकर 225 खाद्य सुरक्षा अधिकारी बिना काम बिना सैलरी के धरना देने के लिए छोड़ दिए गए हैं।
18: ये राजस्थान का स्वास्थ्य भवन है और स्वास्थ्य भवन में ये नीचे बैठे हुए राजस्थान के खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं। आजादी के बाद पहली बार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती निकली थी, इन्हें ज्वाइनिंग तो दे दी गई बड़े लंबी लड़ाई के बाद, मगर कोई काम नहीं दिया गया न तनख्वाह मिलती है और इन्हें दफ्तर के अंदर बैठना चाहिए था, ये गलियारे में बैठे हुए हैं अधिकारियों के दफ्तरों के बाहर अपने मांग को लेकर कि 2019 में भर्ती हुई थी और अब तक नौकरी नहीं मिल पाई, कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, कैसे घर चलता है इनका।
7: इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।

0: प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पर राहुल गांधी का बड़ा हमला, पूछा किसने दिया छात्रों के ऊपर पैलेट गन चलाने के आदेश, चढ़ावा चोरी को लेकर प्रधानमंत्री को घेरा नड्डा का पलटवार, माहौल खराब कर रहे नेता विपक्ष। परीक्षा धांधली के खिलाफ रांची में छात्रों का धरना, विधानसभा मार्च के दौरान लाठीचार्ज, हेमंत सोरेन ने प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया, देवेंद्र महतो बोले अब नहीं होगी सरकार से बात। रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी ने आज झारखंड बंद बुलाया, सीएम आवास पर प्रदर्शन किया गया, जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन गिरफ्तार, ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक कुदरत का कहर, चमोली में बह गया पुल, बीजेपी सांसद बलूनी बोले राहत और बचाव पर सरकार की नजर, रायगढ़ में 9 लोगों की मौत, गुजरात असम में भी आसमानी आफत। और परमाणु हथियार के बहाने दबाव बनाने में जुटे ईरान का ट्रंप को तगड़ा जवाब, का हॉर्मुज तभी खुलेगा जब अमेरिका देगा हर्जाना और हटाएगा प्रतिबंध। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और अनियमितताओं के विरोध में छात्रों ने रांची में विधानसभा का घेराव किया। छात्र झारखंड विधानसभा के गेट के पास तक पहुंच गए थे। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने की मांग कर रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है।
1: झारखंड में छात्रों का आक्रोश, विधानसभा तक विरोध।
2: ये देखिए बैरिकेड्स तोड़ दी है छात्रों ने, तोड़ेंगे जितना लेवल पे होगा, सिंहासन खाली करो, अब जनता आ रही है।
1: लाठीचार्ज, आंसू गैस, पानी की बौछार, रांची में आर पार।
3: ये देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
2: सरकार नियम खुश हो रही है।
1: विधानसभा गेट तक पहुंचे छात्र बैरिकेड टूटे, झुकेगी सरकार।
4: फिर से वाटर कैनन चलाना शुरू कर दिया है।
5: बच्चों का सीट बेच के नौकरी उन लोग खा जा रहे हैं, तो अवसर की समानता कहाँ है?
1: पेपर लीक और परीक्षा में धांधली, छात्रों ने छेड़ी अगस्त क्रांति।
6: अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है, सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है।
1: आंदोलन से छात्रों ने दिखाई ताकत, सरकार मानेगी हरेक शर्त।
7: आपकी सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाहती है।
8: युवा को पलटी कर दिया जाता है वायु को कोई रोक नहीं सकता।
1: 17 दिन से जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर रांची के जयपाल मुंडा स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन और अनशन कर रहे छात्रों का सब्र टूटा, तो आक्रोश से भरे छात्र सीधे विधानसभा के लिए कूच कर गए। उसके बाद जो हुआ तस्वीरें आपके सामने। छात्र आंदोलन की सांधी में बैरिकेड भी उखड़ गए और विधानसभा को घेरने के लिए की गई कटीले तारों की बाड़बंदी भी छात्रों ने उखाड़ फेंकी। प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। फिर भी छात्रों का सैलाब नहीं थमा तो वाटर कैनन यानी पानी की बौछारें बरसानी पड़ गई, तो आखिर में पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे।
3: ये देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
1: अब छात्र अड़े हैं और सोरेन सरकार के खिलाफ डटे हैं, अपनी शर्तों के लिए, अपनी मांगे मनवाने के लिए। आज हम आपको रांची आंदोलन में विधानसभा घेराव की पूरी टाइमलाइन दिखाएंगे। ये भी बताएंगे कि प्रदर्शनकारी छात्रों और सोरेन सरकार के बीच बात कहां अटकी है, सरकार क्या कह रही है और छात्र किस बात पर अड़े हैं।
9: हम लोग डरने वाले नहीं है, सरकार का एक ही विकल्प है, हमारा मांग को पूरी करे, अन्यथा सरकार अपना कुर्सी नहीं बचा पाएगी, उसका कुर्सी पर खतरा है।
10: किसी भी शर्त पर यहाँ से नहीं हटने वाले, जब तक सरकार घोषणा नहीं कर दे कि सीजीएल रद्द हो गया।
11: ये मेरे पोस्टर का मतलब ये था कि हम लोग स्नैप को कोई फिल्टर नहीं जो हमारा फ्यूचर वो स्किप कर दे।
1: रविवार को झारखंड सरकार के मंत्रियों की विशेष कमेटी और प्रदर्शन कर रहे छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीन दौर में करीब 5 घंटे तक मैराथन वार्ता चलती, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती। और फिर छात्र 10 अगस्त को पहले से घोषित विधानसभा घेराव करने का फैसला लेते। छात्रों को सुबह 10 बजे से पहले पुरानी विधानसभा के पास जमा होने के लिए कहा जाता है, क्योंकि मार्च पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा तक का था। ऐसे में छात्र पोस्टरों और बैनरों के साथ पुरानी विधानसभा पहुँचने लगते।
12: हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहां से मार्च की शुरुआत होनी है। आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार सीजीएल रद्द करेगी?
13: क्यों रद्द करना पड़ेगा, हम लोग आंदोलनरत इसी कारण से है कि ये परीक्षा रद्द होगा। आगे से आने वाली सभी परीक्षाएं पारदर्शी रूप से ले जाएंगी, सीटें नहीं बिकेंगी, पेपर लीक नहीं होगा।
14: सरकार से हमारी मांग है जैसे सीजीएल को रद्द करना होगा, सीबीआई जांच करनी होगी।
12: और देखिए छात्र यहाँ सड़क पे बैठ गए हैं, छात्रों की तरफ से नारेबाजी हो रही है।
15: कितनों ब्रेक कटी, कितनों काटा लगा ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 26 वर्ष से हमारा हक मारा जा रहा है, इस बार हम लोग नहीं छोड़ेंगे सरकार।
16: सरकार जब तक हम लोग को लिखित नहीं देती है और जब तक सीबीआई सीआईडी जांच नहीं करवाती है, तब तक हम लोग रोड पे रहेंगे, सड़क पे रहेंगे।
0: छात्र सोमवार दिन भर विधानसभा के बाहर जमे रहे। शाम को भी छात्रों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी इस बात पर अड़े हैं कि जब तक उनकी मांगों को सुना नहीं जाएगा वो पीछे नहीं हटेंगे।
17: और पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा के लिए आंदोलनकारी छात्रों का मार्च शुरू हो जाता है। छात्र विधानसभा तक ना पहुंचे इसके लिए बैरिकेडिंग की जाती है और कटीले तारों की बाड़बंदी भी कर दी जाती है। पुलिस बैरिकेडिंग से प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन छात्र बैरिकेडिंग को लांग कर आगे बढ़ जाते हैं। आपको बता दें कि विधानसभा तक के रास्ते में 6 जगह बैरिकेडिंग की गई।
18: हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के वंशज हैं, झारखंड के लिए लड़ सकते हैं तो हम लोग भी लड़।
19: हमारे 3 मांगे हैं सर, तब तक यहाँ से नहीं हिलेगा जब तक उसने अपना जितना मांग रखा है पूरा ना हो जाए।
17: प्रदर्शन में शामिल एक छात्र गुलाब लेकर आता। आज तक से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं ये फूल हमारे प्रिय सीएम हेमंत सोरेन के लिए लाया, जिनके कानों पर 16 दिन से जू नहीं रेंग रही। हम हर कांटे का जवाब फूल से देंगे।
20: तरीका सबसे बेहतर तरीका है, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का एक प्रतीक भी है कि हम इतने शांतिपूर्ण हैं कि हम कांटों का जवाब फूल से दे सकते हैं।
17: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्रनाथ महतो एम्बुलेंस से विधानसभा के लिए रवाना होते हैं। देवेंद्रनाथ महतो स्ट्रेचर पर बैठकर मार्च में शामिल होते हैं। ऐसे में महतो को छात्रों ने अपने कंधे पर उठा लिया और फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने तिरंगा लहराकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। आप देख सकते हैं कि देवेंद्रनाथ महतो स्ट्रेचर पर है और प्रदर्शनकारियों ने स्ट्रेचर को कंधे पर उठाया हुआ है। महतो के हाथ में हेमंत सोरेन के पिता शिव सोरेन की तस्वीर भी है। प्रदर्शनकारी जैसे ही आखिरी लेयर की बैरिकेडिंग तक पहुंचे, पुलिस वाटर कैनन एक्शन शुरू कर देती है। ऐसे में छात्र पानी में जमकर डांस करने लगे और कहने लगे, और चलाओ और चलाओ।
21: ये जेन जी क्यों बहुत मारक प्रचार करती है? आपको ये तस्वीर याद है, बहुत मशहूर फिल्म का है, हेमंत सोरेन की तस्वीर लगाई, लिखा है बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अब आप इस तरह के व्यंग अगर लेकर के आएंगे, इस व्यंग का कोई मार है क्या? ये वो एक नाम अभय तिवारी, वो उनको एस्ट्रोनॉट में भी दिखा दिया है, अभय तिवारी को आईपीएस भी बना दिया है, अभय तिवारी को एसडीएम भी बना दिया गया है, इसरो में साइंटिस्ट भी बना दिया गया है, डॉक्टर भी बना दिया गया, नेता भी बना दिया, मुख्यमंत्री, झारखंड का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया।
22: वो जस्ट एक मोहरा है, असली विलन अभी भी पर्दे के पीछे
23: है। पीछे सर असली विलन
24: कहते हैं। मेरे दिल में सबसे ज्यादा अगर दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, तो मेरा भूख हड़ताल से ज्यादा दर्द हुआ उस कांटेदार तार का जाली से, एक आते आते टूट गया। ये 3 लेयर का ब्रेकडिंग था, ये 3 लेयर का ब्रेकडिंग आते आते ये छात्र लोग इससे हम लोग निकल जा रहे हैं।
17: प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा भवन के निकट पहुंच जाते हैं। अंतिम बैरिकेडिंग तोड़े जाने पर पुलिस प्रशासन की ओर से छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच भिड़ंत हो जाती है और इस दौरान पुलिस भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़ देती है।
21: प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
9: आंसू गैस, लाठी चार्ज, वाटर कैनन सब का प्रयोग किया जा रहा है हमारे आवाज को दबाने के लिए। ये सरकार डर गई है, कायर सरकार है। जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है।
17: पुलिसिया सख्ती और वाटर कैनन की बौछारों को देखते हुए छात्र रणनीति बदलते हैं और शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। प्रदर्शनकारी छात्र मुख्य मार्ग छोड़कर झारखंड उच्च न्यायालय के बगल से खेतों के रास्ते से विधानसभा की ओर तेजी से बढ़ने लगे।
21: मैं उसी रास्ते पर देखिए जो छात्र पार मैंने कहा था ना बैरिकेड पार कर लिया है, अब वो खेतों के रास्ते विधानसभा की ओर पहुंचने लगे हैं। जहां पर मैं आया आपको बिल्डिंग दिखाता हूं, ये विधानसभा का इलाका है और ये सारे खेतों के रास्ते, वो देखिए वो विधानसभा है और ये जितने छात्र हैं एक एक करके। अब इस इलाके में क्या है, दो बैरिकेड के बीच में जहां सुरक्षा व्यवस्था है, उन्होंने कहा छोड़िए आपको, पुलिस जो है वो बैरिकेड के पास रहेगी, ये खेतों के रास्ते निकल लिए। और देखिए रीला,
17: आखिरी बैरिकेडिंग के पास जब छात्र पहुंचते हैं तो पुलिस अपील करती है कि छात्र पीछे लौट जाएं, लेकिन छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं होते।
2: जो कार्रवाई थी वो खत्म हो चुकी है, लिहाजा पुलिस के तरफ से ऐलान किया जा रहा है, एसएसपी ने खुद अनाउंस किया है और अनाउंस किया जा रहा है कि अब जब आप विधानसभा मार्च आपका था, आप यहाँ पे अपने बातों को रखने के लिए आए थे, विधायक जो बैठते हैं, मंत्री जो बैठते हैं, जो डिसीजन मेकर हैं लोकतंत्र के मंदिर में जो बैठते हैं, उनसे जब आप बातें करने आए थे, तो जब सत्र खत्म हो गया आज का, तो क्यों नहीं आप वापस चले जा रहे हैं।
17: प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा के गेट पर पहुंच जाते हैं जहां भारी पुलिस बल तैनात रहता है, लेकिन छात्रों का प्रदर्शन जारी रहता है और वो अपनी मांगों पर अड़े रहते हैं। अलग अलग वेश में प्रदर्शनकारी नजर आते हैं। इस प्रदर्शन को देखिए, ये स्पाइडरमैन बन के आया है।
21: वाटर कैनन थे, टैंकर थे, सबका पानी खाली हो गया, बाकायदा छात्रों ने रेन डांस का मजा लिया। और अब इस सड़क से आगे ये जो बैरिकेडिंग, यही रास्ता नई विधानसभा है। सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर ही यहाँ पर विधानसभा का प्रमुख द्वार है और उसी के पहले देखिए स्पाइडरमैन भी दिख गए यहाँ पे। जंतर मंतर से बहुत सारी सिमिलैरिटी दिखाई पड़ती है, स्पाइडरमैन भी है, बैटमैन भी है, कुच्चू पुच्चू वाले पोस्टर भी है।
17: रांची में सीएम आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ाई जाती है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों से झारखंड सरकार की तीन दौर की बातचीत नाकाम हुई है। सरकार का दावा है कि 95 से 98% मांगे मान ली गई हैं, लेकिन जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और जेपीएससी भर्ती धांधली की सीबीआई जांच की मांग ना माने जाने तक प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं।
4: एक हाई लेवल डेलीगेशन, हाई लेवल कमेटी बनाकर, चार मंत्रियों की एक कमेटी बनाकर संवाद का रास्ता खोला था। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि यदि यह आंदोलन सिर्फ छात्रों का होता तो आज प्रदर्शन की जरूरत नहीं थी। सरकार ने 95% मांगे बच्चों की मान ली थी।
17: इस प्रदर्शन के बीच झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव और जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते को ब्लैक लिस्टेड कंपनी टीडीपीएल को परीक्षा का ठेका देने के लिए सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन छात्रों का कहना है कि जब तक सोरेन सरकार उनकी एक एक मांग नहीं मान लेती, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। आज तक ब्यूरो।
0: और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर जंतर मंतर प्रदर्शन पर हुए लाठी चार्ज का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी ने सवाल किया कि लाठी चार्ज का आदेश किसने दिया था, इसका जिम्मेदार कौन है, वो सामने आए। गृहमंत्री अमित शाह सदन में आकर बयान दें, राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अराजकता फैला रहे हैं, गृहमंत्री हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं, राहुल गांधी नहीं चाहते कि संसद चले।
5: अमित शाह ने ऑर्डर दिया था या नहीं? बिना होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के ना दिल्ली पुलिस गोली चला सकती है, ना आरएएफ गोली चला सकती है, राइट? तो हमारा सिर्फ एक सवाल है और उसका हम पहले जवाब मांग रहे हैं, आपने गोली चलवाई या नहीं चलवाई? अगर आपने चलवाई, यू आर कल्पेबल। अगर आपने नहीं चलवाई और किसी और ने चलवा दी, यू आर इनकॉम्पिटेंट। Either way you have to go।
6: जब गृह मंत्री जी ने कह दिया कि अब हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो फिर वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, राहुल गांधी चर्चा से मत भागना, हम तैयार हैं। सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तुम भागना मत। मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर में।
0: शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी एसपी के सभी 8 सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। सुप्रिया सुले की अगुवाई में हुई यह मुलाकात कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी को रास नहीं आई। विपक्ष कह रहा है कि बार बार शरद पवार गुट के नेता अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। इसका मतलब कुछ तो पक रहा होगा। हालांकि मुलाकात करने आए सांसद कह रहे हैं कि उन्होंने किसानों और अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर बात की है।

0: क्या शरद पवार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल होना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि परिसीमन बिल पर अटकलों के बीच सुप्रिया सुले की अगुवाई में एनसीपी शरद गुट के सभी 8 सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की है, जिससे एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है कि शायद शरद पवार का हृदय परिवर्तन होने वाला है। हालांकि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद शरद गुट के सांसद इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनका दल पाला बदलने वाला है।
1: एक तो पहले मैं ये बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो कयासबाजी जो चल रही है इसमें कोई भी तथ्य नहीं। हम 8 सांसद हैं एनसीपी एसपी के, हम विपक्ष में बैठते हैं और हमारे कई सारे मुद्दे हैं जो कई दिनों से प्रलंबित है। महाराष्ट्र के कुछ मुद्दे जैसे किसानों की ऋण माफी को लेकर मुद्दे, महाराष्ट्र के ड्रॉट के बारे में मुद्दे, प्याज के बारे में मुद्दे, पुणे नासिक सेमीहाइस्पीड रेलवे के बारे में मुद्दे, ऐसे हर चुनाव क्षेत्र के जो मुद्दे इन समस्याओं को लेकर आज हमने पीएम सर से मुलाकात की और आई एम रियली थैंकफुल कि पीएम सर काफी वार्म थे, पीएम सर ने ये सब मुद्दे सुन लिए, समस्याएं सुन ली और उन्हें इस पर कोई ठोस कार्रवाई करेंगे ऐसा आश्वासन दिया।
2: दरअसल पहले शरद पवार साहब की मुलाकात होती है प्रधानमंत्री जी से और उसके बाद आप लोग सब लोग जाके मिलते हैं और इस मौसम में जब लगातार हंगामा हो हल्ला हो रहा है, सरकार को नंबर्स चाहिए, तो कुछ जिक्र हुआ डिलिमिटेशन का या कोई और एफसीआरए का और कुछ समर्थन मांगने देने की बात हुई?
1: जी नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। जो आज मुलाकात हुई ये मुलाकात सिर्फ हमारे 8 जो संसदीय क्षेत्र है इन क्षेत्रों की जो दिक्कतें हैं, महाराष्ट्र के किसानों के बारे में जो समस्या है इसके बारे में बात।
2: अच्छा, आज आपकी मुलाकात थी और आप भगवा कुर्ता पहने हुए हैं, तो ये चॉइस जो है इंटेंशनल थी कि एक्सीडेंटल थी और आगे क्या ये देखने को भी मिलेगा कि भगवा खेमे में आप लोग आ जाएंगे?
1: जी, मैंने कई बार इससे पहले, एक तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे मेरा भाषण भी आपने सुना, तो मैं ये मानने वाला हूँ कि भगवा मेरे तिरंगे का एक रंग है और इसीलिए मुझे लगता है कि किसी को मेरे भगवा रंग पहनने पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
2: तो वैसे आप लोग इधर है कि उधर है? वैसे इधर ही है ना, मतलब
1: मैंने हमेशा यही बात की,
2: यही बयान 10 दिन बाद भी चलेगा?
1: डेफिनेटली यही बयान हर बार चलेगा कि शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा और महाराष्ट्र के हित में हम लोगों के साथ।
0: वैसे बताया जा रहा है कि शरद पवार गुट के सांसदों और प्रधानमंत्री के बीच करीब आधे घंटे की बैठक हुई। एनसीपी एसपी सांसद दावा कर रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने महाराष्ट्र में सूखे और सिंचाई से जुड़े मुद्दों पर चिंता जताई।
3: आज सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे उसमें किसानों के बारे में जो कर्ज माफी हो और कोई किसानों के अतिवृष्टि हो गई थी, बहुत से बारिश से वजह से हमारे किसानों का नुकसान हो गया था, वो कुछ विषय थे। और दूसरा, हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, सब स्टेट के सब डिस्ट्रिक्ट में एक कैंसर केयर हॉस्पिटल होना चाहिए। और दूसरा, पीएम रिलीफ फंडर रहता है उनके जो संख्या है वो बढ़ानी चाहिए। और तीसरा, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो किले बनाए 365 किले, उसमें से 12 किले यूनेस्को में लिया है, तो उसमें संख्या बढ़ानी चाहिए और जो जो किले उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देके वो किले अच्छे बनाने चाहिए।
0: इससे पहले भी एनसीपी शरद गुट ऐलान कर चुका है कि वो परिसीमन बिल के मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ है, लेकिन सियासत में जो होता है वो कहा नहीं जाता है और अक्सर जो कहा जाता है वो होता नहीं है। बार बार पीएम मोदी से शरद पवार या उनके सांसदों का मिलना विपक्ष को रास नहीं आ रहा है, इससे विपक्षी गठबंधन में खलबली मच गई है।
4: वारंवार अमित शाह आणि नरेंद्र मोदींच्या दरबारात हे का जाता है, कशामुळे जात आहेत? पवार साहेब ज्येष्ठ आहेत, ठीक आहे, पण इतर जे जात आहेत त्यांच्याकडे जाऊन नतमस्तक होताना आम्हाला दिसत आहे, याचा अर्थ काहीतरी आतून शिजलेलं असावं आणि त्यातून मला वाटतं की पुढच्या डिलिमिटेशनसाठी काही प्लॅनिंग असावी।
0: इस मुलाकात पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विपक्ष क्यों बेचैन है, प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए किसी भी पार्टी के प्रतिनिधि पीएम से मिलते जुलते रहते हैं।
5: पंतप्रधान हे देशाचे असतात, ते कुठल्या पक्षाचे नसतात, त्यांना भेटायला जाणं यामध्ये काही अवघड असं मला वाटत नाही। मी देखील मुख्यमंत्री आहे, अनेक विरोधी पक्षाचे लोक मला भेटत असतात, त्यांची कामं सांगत असतात, त्यामुळे मला असं वाटतं की कुठल्याही वेगळ्या दृष्टीने याच्याकडे पाहण्याचं कारण नाही आहे, ते त्या ठिकाणी गेले आहेत ही अतिशय किंवा जाणार असतील तर अतिशय चांगली गोष्ट.
0: इधर शिवसेना यूबीटी पूछ रही है कि परिसीमन बिल से क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी.
6: नहीं, बात एक ही है. देखिए, डिलिमिटेशन के बारे में जो कहा जाता है कि रिप्रेजेंटेशन हो, पहली बात तो यह है कि जब सांसद आप बढ़ाओगे लगभग 500 से लेके 850 तक लेके जाओगे तो उनका जो खर्चा होता है, उनकी तनख्वाह होती है, उनका डेली अलाउंस होता है, उनका घर होता है, फिर बंगला हो या फ्लैट हो, आने जाने का खर्चा होता है, उस पर तो हम सारे लोग ही तो खर्चा करने वाले टैक्स पेयर. और ये खर्चा करने के बाद क्या जो व्यवस्था है, जो परिस्थिति है, वो बदलने वाली है? उससे अच्छा ये सोचिए आप कि पावर्स को डिवॉल्व कैसे किया जाए, डिसेंट्रलाइज कैसे किए जाए. जो नगर निगम होते हैं उनको अगर आप ताकत दें तो कितना अच्छा हो सकता है. विधायक होते हैं उनको अगर आप ताकत दें अच्छा काम हो सकता है. जो अभी के सांसद है उनको फंड बढ़ाया जाए तो भी अच्छा काम हो सकता है. और एक तरफ आप देख रहे हो कि 850 एमपी की बात कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या वो इसमें से सॉल्व होने वाली है?
0: हालांकि सुप्रिया सुले ने प्रस्तावित एफसीआरए बिल के प्रति अपनी पार्टी के कड़े विरोध को दोहराया और मांग की कि इसे वापस लिया जाए या जेपीसी को भेजा जाए. एफसीआरए बिल पर फडणवीस ने कहा कि ये बिल किसी के खिलाफ नहीं है, इस पर विपक्ष ऐतराज क्यों जता रहा है?
5: देखिए, एफसीआरए के ऊपर बिल लाने का कारण यही है कि लगातार इस देश के अंदर एफसीआरए का उपयोग करके कुछ संस्थाएं पैसा ला रही है और उस पैसे का उपयोग देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है. जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए इस बिल में कोई अड़चन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है. एफसीआरई की प्रोविजन भी रहने वाली है, जो हिसाब देंगे उनके लिए उनका लाइसेंस भी रहने वाला है. मुझे विश्वास है कि अगर किसी को इसमें कुछ कहना होगा वो संसद में कह सकते हैं. भारत सरकार रिसेप्टिव है और ये किसी एक समुदाय का इसमें विषय ही नहीं है, क्योंकि केवल क्रिश्चियन संस्थाओं के लिए एफसीआरए नहीं है, सारी संस्थाओं के लिए एफसीआरए ये आवश्यक है. और सारी संस्थाएं किसी भी समाज की हो, जो संस्थाएं जिनको फॉरेन से डोनेशन मिलता है उनको एफसीआरए ये आवश्यक है.
0: फिलहाल इंडिया गठबंधन की नजर शरद पवार के अगले कदम पर है. उन्हें आशंका है कि पवार परिसीमन बिल का समर्थन करने के बहाने एनडीए में शामिल हो सकते हैं, लेकिन पवार इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे या एनडीए में जाएंगे ये बात सिर्फ और सिर्फ शरद पवार ही जानते हैं. मुंबई से ऋत्विक भालेकर के साथ मौसमी सिंह और पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक.
7: राजस्थान में नई भर्तियां खूब निकल रही हैं, लेकिन पुरानी भर्तियों के लिए धरना प्रदर्शन का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा. राजस्थान सरकार ने खाने पीने के सामान की जांच के लिए पहली बार 2019 और फिर 2022 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती की थी. आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद सरकार ने 6 साल के बाद ज्वाइनिंग तो दे दी है, लेकिन 8 महीने हो चुके हैं, न सैलरी मिली है और न ही काम मिला. 6 साल के बाद ज्वाइनिंग पाए युवा एक बार फिर से धरना देने के लिए मजबूर हैं, जो इस बार स्वास्थ्य विभाग के अंदर ही धरने पर बैठ गए हैं.
8: खबरदार करके खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ता आज तक. खबर को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लगातार खबरदार करता है आज तक.
9: आपका बेटा या बेटी अगर भर्ती परीक्षा पास कर लेता है तो फिर आप मिठाई बांटते होंगे, लेकिन राजस्थान के हजारों ऐसे युवा हैं जो भर्ती परीक्षा पास करके भी बेरोजगार हैं.

0: रहे।
1: ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जो भर्ती है ना सर, भर्तियों के मामले में ये इस सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है।
2: इसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आया, उसमें हमारा रोल नंबर दिखा, उसके बाद में हम बिल्कुल फ्री हो गए कि एक बार मेहनत करके दो ढाई साल हमने एक अच्छा परिणाम पा लिया। लेकिन उसके बाद जैसे ही हमें पता लगता है कि ये इस भर्ती पे दुनिया भर की रिट लग रही है और स्टे आ जाता है, उसके बाद ना तो सर पढ़ाई होती है, बिल्कुल मेंटली टॉर्चर हो चुके हैं सर, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं।
3: आपकी टीवी स्क्रीन पर बाईं तरफ एक साल पहले की रिपोर्ट का वीडियो है, जब आजादी के बाद पहली बार 2019 और 2022 में निकली राजस्थान के खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती को पास करके भी नौकरी नहीं पा रहे युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए आज तक ने मुद्दा उठाया, जिसके बाद इन्हें नियुक्ति पत्र तो भजन लाल सरकार के राज में बटा, लेकिन अब फिर से ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी धरना देने के लिए मजबूर कर दिए गए हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर में खुद के बेरोजगार सरकारी कर्मचारी नौकरी और तनख्वाह के लिए धरने पर बैठे। आप सोचेंगे कि एक सरकारी कर्मचारी कैसे बेरोजगार हो सकता है, तो समझिए, ये राजस्थान सरकार के वो 225 स्वास्थ्य सुरक्षा अधिकारी हैं, जिन्हें भर्ती निकलने के 7 साल बाद भी न तो काम दिया जा रहा है न ही सैलरी। 225 खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिन्हें रुला रुला कर नवम्बर दिसम्बर 2025 में ज्वाइन तो कराया गया, लेकिन 8 महीने में न तो इनको कोई काम दिया न ही तनख्वाह। ये रोज जिला चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर में जाकर साइन करते हैं और बैठे रहते हैं।
4: सर, हमारी जो ज्वाइनिंग है वो दिसंबर में हो चुकी थी, अभी 8 महीने पूरे होने को आए हैं, तो हमें ना तो पोस्टिंग दी जा रही है, सारी हमारी जो प्रोसेस होनी चाहिए थी पोस्टिंग तक की वो पूरी हो चुकी है, पर आज दिन तक हमें कोई भी पोस्टिंग नहीं मिली है, ना ही हमें अभी तक सैलरी दी गई है। तो हम यही चाहते हैं कि आचार संहिता लगने से पहले हमें पोस्टिंग दे दी जाए, ताकि हमें आचार संहिता के टाइम में भी इस भर्ती को आगे तक धक्के नहीं मारने पड़े और हमें पोस्टिंग मिल जाए हमारी यथास्थिति पे।
3: संजय कुमार जैसे युवा आईआईटी दिल्ली से पीएचडी की है, अब भरतपुर जिला चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर में काम करते हैं, पहले की तनख्वाह भी गई और अब बेरोजगार होकर घूमने को लाचार है। कोई बैंक मैनेजर की नौकरी छोड़कर आया, कोई टीचर और कोई प्रिंसिपल की नौकरी छोड़कर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती में परीक्षा निकाल कर नियुक्ति पाए, कोई एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद, लंदन से फूड सेफ्टी में पीजी डिप्लोमा करने के बाद 6 साल से धरने पर ही बैठ रहे हैं। सैलरी न मिलने से इनको परिवार चलाना मुश्किल हो चुका है।
5: हमारी बहुत बड़ी बड़ी ईएमआई पुराने जॉब की वजह से चल रही है और परिवार के
6: पुराने जॉब छोड़ के आए हैं।
5: जी सर, और अभी मेन प्रॉब्लम ईएमआई तो चल ही रही है, साथ में सर फैमिली के खर्चे भी हैं, क्योंकि बच्चों की फीस भी पे करनी पड़ती है, उसके अलावा परिवार का खर्चा भी चलाना पड़ता है। सर हमें कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है।
7: हम लोग यहाँ वापस जाते हैं, सुबह साइन करते हैं, शाम को वापस घर पर चले जाते हैं, ठीक है। अब इस पर डेपोटेशन वाले पर ये विभाग क्यों मेहरबान है इसका तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये डेपोटेशन के रुके रहने की वजह से हमारी भर्ती या हमारी जो पोस्टिंग है वो नहीं हो पा रही है।
8: गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में सर पिछले 11 साल से मैं वर्किंग हूँ। इससे पहले मैं वाइस प्रिंसिपल था, झुंझुनू में ही पोस्टेड था। अब समस्या ये आ रही है सर कि जो सैलरी वहां मिल रही थी, नियमित सैलरी, वो भी अब यहाँ पिछले 8 महीने से नहीं मिल रही है। मैडम से काफी बार अनुरोध किया, 2-3 बार हम मिले व्यक्तिगत रूप से सीएल लेके, लेकिन आश्वासन के अलावा हमें कुछ मिला नहीं अभी तक।
3: दरअसल चयन होने के बाद भी जब इनको सरकार नौकरी नहीं दे रही थी तो ये लोग कोर्ट गए और कोर्ट में सरकार ने जवाब ये दे दिया कि विभाग में पहले जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पद था उस पर हमने डेपुटेशन पर दूसरे विभागों से रख लिया, उनकी जगह इनको पद दे दिया जाएगा। मगर दूसरे विभाग से आए लोग जो डेपुटेशन पर लगे वो इस मलाईदार विभाग को छोड़कर अपने पुराने विभाग में जाना नहीं चाहते। अधिकारी कहते हैं कि उन्होंने फाइल मंत्री जी को भेज रखी, मंत्री जी के पास से फाइल आई तो फिर आगे काम हो पाएगा।
9: जब वो आया हमारे पास सर्टिफिकेट्स, वेरी माइनर मिस्टेक्स वेर देयर इन द स्पेलिंग्स, तो हमने उसको रेक्टिफाई कराया थ्रू FSSAI, बिकॉज वो गैजेट में जाता है तो स्पेलिंग में भी एरर नहीं होना है, तो भिजवाया, तो 31 जुलाई को इनका नोटिफिकेशन जारी हो गया। अभी क्योंकि इनका सैलरी का है, वी आर वर्किंग ऑन द सैलरी पार्ट, वी हैव मेड दम एज अ ड्यूटी मान के इनको सैलरी देने वाला, और दूसरा इनका राजहेल्थ पोर्टल के थ्रू पोस्टिंग दिलाना है द प्लेस वेर दे कैन वर्क बेस्ड ऑन हमने जो एरिया आइडेंटिफाई किया है अंडर द एक्ट, तो फाइल अभी पेंडिंग है, तो हम भी उस पर थोड़ा एक्सपेरेट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके करें।
3: खाने पीने में मिलावट और नकली दूध और पनीर से लेकर नकली आटा और नकली धनिया पाउडर तक बेचे जाने की घटनाएं राजस्थान में लगातार सामने आ रही हैं। मगर वर्षों से विभाग में डेपुटेशन पर लगे अधिकारियों की लॉबी की वजह से मंत्री जी फाइल से भाग रहे हैं और लाचार होकर 225 खाद्य सुरक्षा अधिकारी बिना काम बिना सैलरी।

0: धरना देने के लिए छोड़ दिए गए।
1: ये राजस्थान का स्वास्थ्य भवन है और स्वास्थ्य भवन में ये नीचे बैठे हुए राजस्थान के खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं। आजादी के बाद पहली बार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती निकली थी। इन्हें ज्वाइनिंग तो दे दी गई बड़े लंबी लड़ाई के बाद, मगर कोई काम नहीं दिया गया, न तनख्वाह मिलती है और इन्हें दफ्तर के अंदर बैठना चाहिए था। ये गलियारे में बैठे हुए हैं अधिकारियों के दफ्तरों के बाहर अपने मांग को लेकर कि 2019 में भर्ती हुई थी और अब तक नौकरी नहीं मिल पाई, कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, कैसे घर चलता है इनका।
2: इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।

0: प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर राहुल गांधी का बड़ा हमला, पूछा किसने दिया छात्रों के ऊपर पैलेट गन चलाने के आदेश, चढ़ावा चोरी को लेकर प्रधानमंत्री को घेरा नड्डा का पलटवार, माहौल खराब कर रहे हैं नेता विपक्ष। परीक्षा धांधली के खिलाफ रांची में छात्रों का धरना, विधानसभा मार्च के दौरान लाठीचार्ज, हेमंत सोरेन ने प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया, देवेंद्र महतो बोले अब नहीं होगी सरकार से बात। रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी ने आज झारखंड बंद बुलाया, सीएम आवास पर प्रदर्शन किया गया, जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन गिरफ्तार, ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक कुदरत का कहर, चमोली में बह गया पुल, बीजेपी सांसद बलूनी बोले राहत और बचाव पर सरकार की नजर, रायगढ़ में 9 लोगों की मौत, गुजरात असम में भी आसमानी आफत। और परमाणु हथियार के बहाने दबाव बनाने में जुटे ईरान का ट्रंप को तगड़ा जवाब, का हॉर्मुज तभी खुलेगा जब अमेरिका देगा हर्जाना और हटाएगा प्रतिबंध। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और अनियमितताओं के विरोध में छात्रों ने रांची में विधानसभा का घेराव किया। छात्र झारखंड विधानसभा के गेट के पास तक पहुंच गए थे। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने की मांग कर रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है।
1: गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ये देखें अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
2: झारखंड में छात्रों का आक्रोश, विधानसभा तक विरोध।
3: ये देखिए बैरिकेड्स तोड़ दी है छात्रों ने, तोड़ेंगे जितना लेवल पे होगा, सिंहासन खाली करो, अब जनता आ रही है।
2: लाठीचार्ज, आंसू गैस, पानी की बौछार, रांची में आर पार।
1: देखिए अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
2: विधानसभा गेट तक पहुंचे छात्र, बैरिकेड टूटे, झुकेगी सरकार।
4: फिर से वाटर कैनन चलाना शुरू कर दिया है।
5: बच्चों का सीट बेच के और नौकरी उन लोग खा जा रहे हैं, तो अवसर की समानता कहाँ है?
2: पेपर लीक और परीक्षा में धांधली, छात्रों ने छेड़ी अगस्त क्रांति।
6: अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है, सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है।
2: आंदोलन से छात्रों ने दिखाई ताकत, सरकार मानेगी हर एक शर्त।
7: आपकी सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाहती है।
8: युवा को पलटी कर दिया जाता है वायु, वायु को कोई रोक नहीं सकता।
2: 17 दिन से जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर रांची के जयपाल मुंडा स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन और अनशन कर रहे छात्रों का सब्र टूटा तो आक्रोश से भरे छात्र सीधे विधानसभा के लिए कूच कर गए। उसके बाद जो हुआ तस्वीरें आपके सामने। छात्र आंदोलन की सांधी में बैरिकेड भी उखड़ गए और विधानसभा को घेरने के लिए की गई कटीले तारों की बाड़बंदी भी छात्रों ने उखाड़ फेंकी। प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। फिर भी छात्रों का सैलाब नहीं थमा तो वाटर कैनन यानी पानी की बौछारें बरसानी पड़ गई तो आखिर में पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे।
1: ये देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
2: अब छात्र अड़े हैं और सुरेंद्र सरकार के खिलाफ डटे हैं अपनी शर्तों के लिए, अपनी मांगे मनवाने के लिए। आज हम आपको रांची आंदोलन में विधानसभा घेराव की पूरी टाइमलाइन दिखाएंगे, ये भी बताएंगे कि प्रदर्शनकारी छात्रों और सुरेंद्र सरकार के बीच बात कहां अटकी है, सरकार क्या कह रही है और छात्र किस बात पर अड़े हैं।
9: हम लोग डरने वाले नहीं है, सरकार का एक ही विकल्प है, हमारा मांग को पूरी करे, अन्यथा सरकार अपना कुर्सी नहीं बचा पाएगी, उसका कुर्सी पर खतरा है।
10: किसी भी शर्त पर यहाँ से नहीं हटने वाले जब तक सरकार घोषणा नहीं कर दे कि सीजीएल रद्द हो गया।
11: ये मेरे पोस्टर का मतलब ये था कि हम लोग स्लैब को कोई फिल्टर नहीं जो हमारा फ्यूचर वो स्किप कर दे।
2: रविवार को झारखंड सरकार के मंत्रियों की विशेष कमेटी और प्रदर्शन कर रहे छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीन दौर में करीब 5 घंटे तक मैराथन वार्ता चलती लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती और फिर छात्र 10 अगस्त को पहले से घोषित विधानसभा घेराव करने का फैसला लेते। छात्रों को सुबह 10 बजे से पहले पुरानी विधानसभा के पास जमा होने के लिए कहा जाता है क्योंकि मार्च पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा तक का था। ऐसे में छात्र पोस्टरों और बैनरों के साथ पुरानी विधानसभा पहुँचने लगते।
12: हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहां से मार्च की शुरुआत होनी है। आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार सीजीएल रद्द करेगी?
13: क्यों रद्द करना पड़ेगा? हम लोग आंदोलनरत इसी कारण से है कि ये परीक्षा रद्द होगा। आगे से आने वाली सभी परीक्षाएं पारदर्शी रूप से ले जाएंगी, सीटें नहीं बिकेंगी, पेपर लीक नहीं होगा।
14: सरकार से हमारी मांग है जैसे सीजीएल को रद्द करना होगा, सीबीआई जांच करनी होगी।
12: और देखिए छात्र यहाँ सड़क पे बैठ गए हैं, छात्रों की तरफ से नारेबाजी हो रही है।
15: कितनों ब्रेक कटी, कितनों काटा लगा ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 26 वर्ष से हमारा हक मारा जा रहा है, इस बार हम लोग नहीं छोड़ेंगे सरकार।
16: सरकार जब तक हम लोग को लिखित नहीं देती है और जब तक सीबीआई सीआईडी जांच नहीं करवाती है, तब तक हम लोग रोड पे रहेंगे, सड़क पे रहेंगे।
0: छात्र सोमवार दिन भर विधानसभा के बाहर जमे रहे। शाम को भी छात्रों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी इस बात पर अड़े हैं कि जब तक उनकी मांगों को सुना नहीं जाएगा वो पीछे नहीं हटेंगे।
17: और पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा के लिए आंदोलनकारी छात्रों का मार्च शुरू हो जाता है। छात्र विधानसभा तक ना पहुंचे इसके लिए बैरिकेडिंग की जाती है और कटीले तारों की बाड़बंदी भी कर दी जाती है। पुलिस बैरिकेडिंग से प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन छात्र बैरिकेडिंग को लांग कर आगे बढ़ जाते हैं। आपको बता दें कि विधानसभा तक के रास्ते में 6 जगह बैरिकेडिंग की गई।
18: हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के वंशज हैं, झारखंड के लिए लड़ सकते हैं तो हम लोग भी लड़।
19: हमारे 3 मांगे हैं सर, तब तक यहाँ से नहीं हिलेगा जब तक उसने अपना जितना मांग रखा है पूरा ना हो जाए।
17: प्रदर्शन में शामिल एक छात्र गुलाब लेकर आते हैं। आज तक से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं ये फूल हमारे प्रिय सीएम हेमंत सोरेन के लिए लाया, जिनके कानों पर 16 दिन से जू नहीं रेंग रही। हम हर कांटे का जवाब फूल से देंगे।
20: तरीका सबसे बेहतर तरीका है, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का एक प्रतीक भी है कि हम इतने शांतिपूर्ण हैं कि हम कांटों का जवाब फूल से दे सकते हैं।
17: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्रनाथ महतो एम्बुलेंस से विधानसभा के लिए रवाना होते हैं। देवेंद्रनाथ महतो स्ट्रेचर पर बैठकर मार्च में शामिल होते हैं। ऐसे में महतो को छात्रों ने अपने कंधे पर उठा लिया और फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने तिरंगा लहराकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। आप देख सकते हैं कि देवेंद्रनाथ महतो स्ट्रेचर पर है और प्रदर्शनकारियों ने स्ट्रेचर को कंधे पर उठाया हुआ है। महतो के हाथ में हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन की तस्वीर भी है। प्रदर्शनकारी जैसे ही आखिरी लेयर की बैरिकेडिंग तक पहुंचे, पुलिस वाटर कैनन एक्शन शुरू कर देती है। ऐसे में छात्र पानी में जमकर डांस करने लगे और कहने लगे, और चलाओ और चलाओ।
21: ये जेन जी क्यों बहुत मारक प्रचार करती है? आपको ये तस्वीर याद है, बहुत मशहूर फिल्म का है, हेमंत सोरेन की तस्वीर लगाई, लिखा है बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अब आप इस तरह के व्यंग अगर लेकर के आएंगे, इस व्यंग का कोई मार है क्या? ये वो एक नाम अभय तिवारी, वो उनको एस्ट्रोनॉट में भी दिखा दिया है, अभय तिवारी को आईपीएस भी बना दिया है, अभय तिवारी को एसडीएम भी बना दिया गया है, इसरो में साइंटिस्ट भी बना दिया गया है, डॉक्टर भी बना दिया गया, नेता भी बना दिया, मुख्यमंत्री, झारखंड का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया।
22: वो जस्ट एक मोहरा है, असली विलन अभी भी पर्दे के पीछे है।
23: पीछे सर असली विलन।
24: मेरे दिल में सबसे ज्यादा अगर दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, तो मेरा भूख हड़ताल से ज्यादा दर्द हुआ उस कांटेदार तार का जाली से, एक आते आते टूट गया। ये 3 लेयर का ब्रेकडिंग था, ये 3 लेयर का ब्रेकडिंग आते आते ये छात्र लोग इससे हम लोग निकल जा रहे हैं।
17: प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा भवन के निकट पहुंच जाते हैं। अंतिम बैरिकेडिंग तोड़े जाने पर पुलिस प्रशासन की ओर से छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच भिड़ंत हो जाती है और इस दौरान पुलिस भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़ देती है।
21: प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
9: आंसू गैस, लाठी चार्ज, वाटर कैनन सब का प्रयोग किया जा रहा है हमारे आवाज को दबाने के लिए। ये सरकार डर गई है, कायर सरकार है। जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है।
17: पुलिसिया सख्ती और वाटर कैनन की बौछारों को देखते हुए छात्र रणनीति बदलते हैं और शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। प्रदर्शनकारी छात्र मुख्य मार्ग छोड़कर झारखंड उच्च न्यायालय के बगल से खेतों के रास्ते से विधानसभा की ओर तेजी से बढ़ने लगे।
3: मैं उसी रास्ते पर देखिए जो छात्र पार मैंने कहा था ना बैरिकेड पार कर लिया है, अब वो खेतों के रास्ते विधानसभा की ओर पहुंचने लगे हैं। जहां पर मैं आई आपको बिल्डिंग दिखाता हूं, ये विधानसभा का इलाका है और ये सारे खेतों के रास्ते, वो देखिए वो विधानसभा है और ये जितने छात्र हैं एक एक करके। अब इस इलाके में क्या है, दो बैरिकेड के बीच में जहां सुरक्षा व्यवस्था है, उन्होंने कहा छोड़िए आपको, पुलिस जो है वो बैरिकेड के पास रहेगी, ये खेतों के रास्ते निकल लिए। और देखिए रीला,
17: आखिरी बैरिकेडिंग के पास जब छात्र पहुंचते हैं तो पुलिस अपील करती है कि छात्र पीछे लौट जाएं, लेकिन छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं होते।
4: जो कार्रवाई थी वो खत्म हो चुकी है, लिहाजा पुलिस के तरफ से ऐलान किया जा रहा है, एसएसपी ने खुद अनाउंस किया है और अनाउंस किया जा रहा है कि आप जब आप विधानसभा मार्च आपका था, आप यहाँ पे

0: और ये जितने छात्र है एक एक करके। अब इस इलाके में क्या है, दो बैरिकेड के बीच में जहाँ सुरक्षा व्यवस्था है, उन्होंने कहा छोड़िए आपको, पुलिस जो है वो बैरिकेड के पास रहेगी, ये खेतों के रास्ते निकल लिए। और देखिए रीला,
1: आखिरी बैरिकेडिंग के पास जब छात्र पहुंचते हैं तो पुलिस अपील करती है कि छात्र पीछे लौट जाएं, लेकिन छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं होते।
2: जो कार्रवाई थी वो खत्म हो चुकी है, लिहाजा पुलिस के तरफ से ऐलान किया जा रहा है, एसएसपी ने खुद अनाउंस किया है और अनाउंस किया जा रहा है कि अब जब आप विधानसभा मार्च आपका था, आप यहाँ पे अपने बातों को रखने के लिए आए थे, विधायक जो बैठते हैं, मंत्री जो बैठते हैं, जो डिसीजन मेकर हैं लोकतंत्र के मंदिर में जो बैठते हैं, उनसे जब आप बातें करने आए थे, तो जब सत्र खत्म हो गया आज का,
3: कि एक कमेटी बनाकर संवाद का रास्ता खोला था। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि यदि यह आंदोलन सिर्फ छात्रों का होता तो आज प्रदर्शन की जरूरत नहीं थी। सरकार ने 95% मांगे बच्चों की मान ली थी।
1: इस प्रदर्शन के बीच झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव और जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते को ब्लैक लिस्टेड कंपनी टीडीपीएल को परीक्षा का ठेका देने के लिए सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन छात्रों का कहना है कि जब तक सोरेन सरकार उनकी एक एक मांग नहीं मान लेती, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। आज तक ब्यूरो।
4: और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर जंतर मंतर प्रदर्शन पर हुए लाठी चार्ज का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी ने सवाल किया कि लाठी चार्ज का आदेश किसने दिया था, इसका जिम्मेदार कौन है, वो सामने आए। गृहमंत्री अमित शाह सदन में आकर बयान दें, राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अराजकता फैला रहे हैं, गृहमंत्री हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं, राहुल गांधी नहीं चाहते कि संसद चले।
5: अमित शाह ने ऑर्डर दिया था या नहीं? बिना होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के ना दिल्ली पुलिस गोली चला सकती है, ना आरएएफ गोली चला सकती है, राइट? तो हमारा सिर्फ एक सवाल है और उसका हम पहले जवाब मांग रहे हैं, आपने गोली चलवाई या नहीं चलवाई? अगर आपने चलवाई, यू आर कल्पेबल। अगर आपने नहीं चलवाई और किसी और ने चलवा दी, यू आर इनकॉम्पिटेंट। Either way you have to go।
6: जब गृह मंत्री जी ने कह दिया कि हम हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो फिर वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, राहुल गांधी चर्चा से मत भागना, हम तैयार हैं। सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तुम भागना मत। मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर में।
4: शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी एसपी के सभी 8 सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। सुप्रिया सुले की अगुवाई में हुई यह मुलाकात कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी को रास नहीं आई। विपक्ष कह रहा है कि बार बार शरद पवार गुट के नेता अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो पक रहा होगा। हालांकि मुलाकात करने आए सांसद कह रहे हैं कि उन्होंने किसानों और अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर बात की है।

0: क्या शरद पवार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल होना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि परिसीमन बिल पर अटकलों के बीच सुप्रिया सुले की अगुवाई में एनसीपी शरद गुट के सभी 8 सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की है, जिससे एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है कि शायद शरद पवार का हृदय परिवर्तन होने वाला है। हालांकि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद शरद गुट के सांसद इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनका दल पाला बदलने वाला है।
1: एक तो पहले मैं ये बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो कयासबाजी जो चल रही है इसमें कोई भी तथ्य नहीं। हम 8 सांसद हैं एनसीपीएसपी के, हम विपक्ष में बैठे हैं और हमारे कई सारे मुद्दे हैं जो कई दिनों से प्रलंबित है। महाराष्ट्र के कुछ मुद्दे जैसे किसानों की ऋण माफी को लेकर मुद्दे, महाराष्ट्र के ड्रॉट के बारे में मुद्दे, प्याज के बारे में मुद्दे, पुणे नासिक सेमीहाइस्पीड रेलवे के बारे में मुद्दे, ऐसे हर चुनाव क्षेत्र के जो मुद्दे इन समस्याओं को लेकर आज हमने पीएम सर से मुलाकात की और आई एम रियली थैंकफुल कि पीएम सर काफी
2: दरअसल पहले शरद पवार साहब की मुलाकात होती है प्रधानमंत्री जी से और उसके बाद आप लोग सब लोग जाके मिलते हैं और इस मौसम में जब लगातार हंगामा हो हल्ला हो रहा है, सरकार को नंबर्स चाहिए, तो कुछ जिक्र हुआ डीलिमिटेशन का या कोई और एफसीआरए का और कुछ समर्थन मांगने देने की बात हुई?
1: जी नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई।

0: आज मुलाकात हुई। ये मुलाकात सिर्फ हमारे 8 जो संसदीय क्षेत्र है, इन क्षेत्रों की जो दिक्कतें हैं, महाराष्ट्र के किसानों के बारे में जो समस्या है, इसके बारे में बात।
1: अच्छा, आज आपकी मुलाकात थी और आप भगवा कुर्ता पहने हुए हैं, तो ये चॉइस जो है इंटेंशनल थी कि एक्सीडेंटल थी, और आगे क्या है? ये देखने को भी मिलेगा कि भगवा खेमे में आप लोग आ जाएंगे?
0: जी, मैंने कई बार इससे पहले, एक तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे मेरा भाषण भी आपने सुना, तो मैं ये मानने वाला हूँ कि भगवा मेरे तिरंगे का एक रंग है, और इसीलिए मुझे लगता है कि किसी को मेरे भगवा रंग पहनने पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
1: तो वैसे आप लोग इधर है कि उधर है? वैसे इधर ही है ना, मतलब
0: मैंने हमेशा यही बात की है।
1: यही बयान 10 दिन बाद भी चलेगा?
0: डेफिनेटली यही बयान हर बार चलेगा कि शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा और महाराष्ट्र के हित में लोगों के साथ।
2: वैसे बताया जा रहा है कि शरद पवार गुट के सांसदों और प्रधानमंत्री के बीच करीब आधे घंटे की बैठक हुई। एनसीपी एसपी सांसद दावा कर रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने महाराष्ट्र में सूखे और सिंचाई से जुड़े मुद्दों पर चिंता जताई।
3: आज सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे उसमें किसानों के बारे में जो कर्ज माफी हो और कोई किसानों के अतिवृष्टि हो गई थी, बहुत से बारिश से वजह से हमारे किसानों का नुकसान हो गया था, वो कुछ विषय थे। और दूसरा, हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, सब स्टेट के सब डिस्ट्रिक्ट में एक कैंसर केयर हॉस्पिटल होना चाहिए। और दूसरा, पीएम रिलीफ फंडर रहता है, उनके जो संख्या है वो बढ़ानी चाहिए। और तीसरा, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो किले बनाए 365 किले, उसमें से 12 किले यूनेस्को में लिया है, तो उसमें संख्या बढ़ानी चाहिए। और जो जो किले उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देके वो किले अच्छे बनाने चाहिए।
2: इससे पहले भी एनसीपी शरद गुट ऐलान कर चुका है कि वो परिसीमन बिल के मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ है, लेकिन सियासत में जो होता है वो कहा नहीं जाता है, और अक्सर जो कहा जाता है वो होता नहीं है। बार बार पीएम मोदी से शरद पवार या उनके सांसदों का मिलना विपक्ष को रास नहीं आ रहा है, इससे विपक्षी गठबंधन में खलबली मच गई है।
4: वारंवार अमित शाह आणि नरेंद्र मोदींच्या दरबारात हे का जात आहेत, कशामुळे जात आहेत? पवार साहेब ज्येष्ठ आहेत, ठीक आहे, पण इतर जे जात आहेत त्यांच्याकडे जाऊन नतमस्तक होताना आम्हाला दिसत आहे, याचा अर्थ काहीतरी आतून शिजलेला असावं। आणि त्यातून मला वाटतं की पुढच्या डिलिमिटेशनसाठी काही प्लॅनिंग असावी।
2: इस मुलाकात पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विपक्ष क्यों बेचैन, प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए किसी भी पार्टी के प्रतिनिधि पीएम से मिलते जुलते रहते हैं।
5: पंतप्रधान हे देशाचे असतात, ते कुठल्या पक्षाचे नसतात, त्यांना भेटायला जाणं यामध्ये काही अवघड असं मला वाटत नाही। मी देखील मुख्यमंत्री आहे, अनेक विरोधी पक्षाचे लोक मला भेटत असतात, त्यांची कामं सांगत असतात, त्यामुळे मला असं वाटतं की कुठल्याही वेगळ्या दृष्टीने याच्याकडे पाहण्याचं कारण नाही आहे। ते त्या ठिकाणी गेले आहेत, ती अतिशय किंवा जाणार असतील तर अतिशय चांगली गोष्ट।
2: इधर शिवसेना युबीटी पूछ रही है कि परिसीमन बिल से क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी?
6: नहीं, बात एक ही है। देखिए, डिलिमिटेशन के बारे में जो कहा जाता है कि रिप्रेजेंटेशन हो, पहली बात तो यह है कि जब सांसद आप बढ़ाओगे लगभग 500 से लेके 850 तक लेके जाओगे, तो उनका जो खर्चा होता है, उनकी तनख्वाह होती है, उनका डेली अलाउंस होता है, उनका घर होता है, फिर बंगला हो या फ्लैट हो, आने जाने का खर्चा होता है, उस पर तो हम सारे लोग ही तो खर्चा करने वाले टैक्स पेयर। और ये खर्चा करने के बाद क्या जो व्यवस्था है, जो परिस्थिति है, वो बदलने वाली है? उससे अच्छा ये सोचिए आप कि पावर्स को डिवॉल्व कैसे किया जाए, डिसेंट्रलाइज कैसे किए जाए। जो नगर निगम होते हैं उनको अगर आप ताकत दें तो कितना अच्छा हो सकता है, विधायक होते हैं उनको अगर आप ताकत दें अच्छा काम हो सकता है, जो अभी के सांसद है उनको फंड बढ़ाया जाए तो भी अच्छा काम हो सकता है। और एक तरफ आप देख रहे हो कि 850 एमपी की बात कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या वो इसमें से सॉल्व होने वाली है?
2: हालांकि सुप्रिया सुले ने प्रस्तावित एफसीआरए बिल के प्रति अपनी पार्टी के कड़े विरोध को दोहराया और मांग की कि इसे वापस लिया जाए या जेपीसी को भेजा जाए। एफसीआरए बिल पर फडणवीस ने कहा कि ये बिल किसी के खिलाफ नहीं है, इस पर विपक्ष ऐतराज क्यों जता रहा है?
5: देखिए, एफसीआरए के ऊपर बिल लाने का कारण यही है कि लगातार इस देश के अंदर FCRA का उपयोग करके कुछ संस्थाएं पैसा ला रही है और उस पैसे का उपयोग देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए इस बिल में कोई अड़चन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। FCRA की प्रोविजन भी रहने वाली है, जो हिसाब देंगे उनके लिए उनका लाइसेंस भी रहने वाला है। मुझे विश्वास है कि अगर किसी को इसमें कुछ कहना होगा वो संसद में कह सकते हैं। भारत सरकार रिसेप्टिव है और ये किसी एक समुदाय का इसमें विषय ही नहीं है, क्योंकि केवल क्रिश्चियन संस्थाओं के लिए FCRA नहीं है, सारी संस्थाओं के लिए FCRA ये आवश्यक है। और सारी संस्थाएं किसी भी समाज की हो, जो संस्थाएं जिनको फॉरेन से डोनेशन मिलता है उनको FCRA ये आवश्यक है।
2: फिलहाल इंडिया गठबंधन की नजर शरद पवार के अगले कदम पर है। उन्हें आशंका है कि पवार परिसीमन बिल का समर्थन करने के बहाने NDA में शामिल हो सकते हैं, लेकिन पवार इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे या NDA में जाएंगे ये बात सिर्फ और सिर्फ शरद पवार ही जानते हैं। मुंबई से ऋत्विक भालेकर के साथ मौसमी सिंह और पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।
7: राजस्थान में नई भर्तियां खूब निकल रही हैं, लेकिन पुरानी भर्तियों के लिए धरना प्रदर्शन का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा। राजस्थान सरकार ने खाने पीने के सामान की जांच के लिए पहली बार 2019 और फिर 2022 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती की थी। आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद सरकार ने 6 साल के बाद ज्वाइनिंग तो दे दी है, लेकिन 8 महीने हो चुके हैं, न सैलरी मिली है और न ही काम मिला। 6 साल के बाद ज्वाइनिंग पाए युवा एक बार फिर से धरना देने के लिए मजबूर हैं, जो इस बार स्वास्थ्य विभाग के अंदर ही धरने पर बैठ गए हैं।
8: खबरदार करके खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ता आज तक। खबर को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लगातार खबरदार करता है आज तक।
9: आपका बेटा या बेटी अगर भर्ती परीक्षा पास कर लेता है तो फिर आप मिठाई बांटते होंगे, लेकिन राजस्थान के हजारों ऐसे युवा हैं जो भर्ती परीक्षा पास करके भी बेरोजगार हैं। कहीं नियुक्ति पत्र लेकर भटक रहे हैं तो कहीं पोस्टिंग पाने के लिए धरना दे रहे हैं।
10: ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जो भर्ती है ना सर, भर्तियों के मामले में ये इस सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है।
11: इसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आया, उसमें हमारा रोल नंबर दिखा, उसके बाद में हम बिल्कुल फ्री हो गए कि एक बार मेहनत करके 2.5 साल हमने एक अच्छा परिणाम पा लिया। लेकिन उसके बाद जैसे ही हमें पता लगता है कि ये इस भर्ती पे दुनिया भर की रिट लग रही है और स्टे आ जाता है, उसके बाद ना तो सर पढ़ाई होती है, बिल्कुल मेंटली टॉर्चर हो चुके हैं सर, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं।
8: आपकी टीवी स्क्रीन पर बाईं तरफ 1 साल पहले की रिपोर्ट का वीडियो है, जब आजादी के बाद पहली बार 2019 और 2022 में निकली राजस्थान के खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती को पास करके भी नौकरी नहीं पा रहे युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए आज तक ने मुद्दा उठाया, जिसके बाद इन्हें नियुक्ति पत्र तो भजन लाल सरकार के राज में बटा, लेकिन अब फिर से ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी धरना देने के लिए मजबूर कर दिए गए हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर में खुद के बेरोजगार सरकारी कर्मचारी नौकरी और तनख्वाह के लिए धरने पर बैठे। आप सोचेंगे कि एक सरकारी कर्मचारी कैसे बेरोजगार हो सकता है, तो समझिए, ये राजस्थान सरकार के वो 225 स्वास्थ्य सुरक्षा अधिकारी हैं, जिन्हें भर्ती निकलने के 7 साल बाद भी न तो काम दिया जा रहा है न ही सैलरी। 225 खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिन्हें रुला रुला कर नवम्बर दिसम्बर 2025 में ज्वाइन तो कराया गया, लेकिन 8 महीने में न तो इनको कोई काम दिया न ही तनख्वाह। ये रोज जिला चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर में जाकर साइन करते हैं और बैठे रहते हैं।
12: सर, हमारी जो ज्वाइनिंग है वो दिसंबर में हो चुकी थी, अभी 8 महीने पूरे होने को आए हैं, तो हमें ना तो पोस्टिंग दी जा रही है, सारी हमारी जो प्रोसेस होनी चाहिए थी पोस्टिंग तक की वो पूरी हो चुकी है, पर आज दिन तक हमें कोई भी पोस्टिंग नहीं मिली है, ना ही हमें अभी तक सैलरी दी गई है। तो हम यही चाहते हैं कि आचार संहिता लगने से पहले हमें पोस्टिंग दे दी जाए, ताकि हमें आचार संहिता के टाइम में भी इस भर्ती को आगे तक धक्के नहीं मारने पड़े और हमें पोस्टिंग मिल जाए हमारी यथास्थिति पे।
8: संजय कुमार जैसे युवा IIT दिल्ली से PhD की है, अब भरतपुर जिला चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर में काम करते हैं। पहले की तनख्वाह भी गई और अब बेरोजगार होकर घूमने को लाचार है। कोई बैंक मैनेजर की नौकरी छोड़कर आया, कोई टीचर और कोई प्रिंसिपल की नौकरी छोड़कर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती में परीक्षा निकाल कर नियुक्ति पाए, कोई MSc केमिस्ट्री करने के बाद लंदन से फूड सेफ्टी में पीजी डिप्लोमा करने के बाद 6 साल से धरने पर ही बैठ रहे हैं। सैलरी न मिलने से इनको परिवार चलाना मुश्किल हो चुका है।
13: हमारी बहुत बड़ी बड़ी ईएमआई पुराने जॉब की वजह से चल रही है और परिवार के
14: पुराने जॉब छोड़ के आए
13: जी सर। और अभी मेन प्रॉब्लम ईएमआई तो चल ही रही है, साथ में सर फैमिली के खर्चे भी हैं क्योंकि बच्चों की फीस भी पे करनी पड़ती है, उसके अलावा परिवार का खर्चा भी चलाना पड़ता है। सर हमें कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है।
15: हम लोग यहाँ वापस जाते हैं, सुबह साइन करते हैं, शाम को वापस घर पर चले जाते हैं। ठीक है, अब इस पर डेपोटेशन वाले पर ये विभाग क्यों मेहरबान है इसका तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये डेपोटेशन के रुके रहने की वजह से हमारी भर्ती या हमारी जो पोस्टिंग है वो नहीं हो पा रही है।
16: भी हम गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में सर पिछले 11 साल से मैं वर्किंग हूँ। इससे पहले मैं वाइस प्रिंसिपल था, झुंझुनू में पोस्टेड था। अब समस्या ये आ रही है सर कि जो सैलरी वहां मिल रही थी नियमित सैलरी वो भी अब यहाँ पिछले 8 महीने से नहीं मिल रही है। मैडम से काफी बार अनुरोध किया, 2-3 बार हम मिले व्यक्तिगत रूप से सीएल लेके, लेकिन आश्वासन के अलावा हमें कुछ मिला नहीं अभी तक।
8: दरअसल चयन होने के बाद भी जब इनको सरकार नौकरी नहीं दे रही थी तो ये लोग कोर्ट गए और कोर्ट में सरकार ने जवाब ये दे दिया कि विभाग में पहले जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पद था उस पर हमने डेपुटेशन पर दूसरे विभागों से रख लिया है, उनकी जगह इनको पद दे दिया जाएगा। मगर दूसरे विभाग से आए लोग जो डेपुटेशन पर लगी वो इस मलाईदार विभाग को छोड़कर अपने पुराने विभाग में जाना नहीं चाहते। अधिकारी कहते हैं कि उन्होंने फाइल मंत्री जी को भेज रखी, मंत्री जी के पास से फाइल आई तो फिर आगे काम हो पाएगा।
17: जब वो आया हमारे पास सर्टिफिकेट्स वेरी माइनर मिस्टेक्स वेर देयर इन द स्पेलिंग्स, तो हमने उसको रेक्टिफाई कराया थ्रू FSSAI बिकॉज वो गैजेट में जाता है तो स्पेलिंग में भी एरर नहीं होना है, तो भिजवाया तो 31 जुलाई को इनका नोटिफिकेशन जारी हो गया। अभी क्योंकि इनका सैलरी का है, वी आर वर्किंग ऑन द सैलरी पार्ट, वी हैव मेड दम एज अ ड्यूटी मान के इनको सैलरी देने वाला, और दूसरा इनका राजहेल्थ पोर्टल के थ्रू पोस्टिंग दिलाना है द प्लेस वेर दे कैन वर्क बेस्ड ऑन हमने जो एरिया आइडेंटिफाई किया है अंडर द एक्ट, तो फाइल अभी पेंडिंग है तो हम भी उस पर थोड़ा एक्सपेरेट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके करें।
8: खाने पीने में मिलावट और नकली दूध और पनीर से लेकर नकली आटा और नकली धनिया पाउडर तक बेचे जाने की घटनाएं राजस्थान में लगातार सामने आ रही हैं। मगर वर्षों से विभाग में डेपुटेशन पर लगे अधिकारियों की लॉबी की वजह से मंत्री जी फाइल से भाग रहे हैं और लाचार होकर 225 खाद्य सुरक्षा अधिकारी बिना काम बिना सैलरी के धरना देने के लिए छोड़ दिए गए हैं।
18: ये राजस्थान का स्वास्थ्य भवन है और स्वास्थ्य भवन में ये नीचे बैठे हुए राजस्थान के खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं। आजादी के बाद पहली बार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती निकली थी, इन्हें ज्वाइनिंग तो दे दी गई बड़े लंबी लड़ाई के बाद, मगर कोई काम नहीं दिया गया, न तनख्वाह मिलती है और इन्हें दफ्तर के अंदर बैठना चाहिए था, ये गलियारे में बैठे हुए हैं अधिकारियों के दफ्तरों के बाहर। अपने मांग को लेकर कि 2019 में भर्ती हुई थी और अब तक नौकरी नहीं मिल पाई, कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, कैसे घर चलता है इनका।
7: इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।

0: प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पर राहुल गांधी का बड़ा हमला, पूछा किसने दिया छात्रों के ऊपर पैलेट गन चलाने के आदेश, चढ़ावा चोरी को लेकर प्रधानमंत्री को घेरा नड्डा का पलटवार, माहौल खराब कर रहे नेता विपक्ष। परीक्षा धांधली के खिलाफ रांची में छात्रों का धरना, विधानसभा मार्च के दौरान लाठीचार्ज, हेमंत सोरेन ने प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया, देवेंद्र महतो बोले अब नहीं होगी सरकार से बात। रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी ने आज झारखंड बंद बुलाया, सीएम आवास पर प्रदर्शन किया गया, जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन गिरफ्तार, ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक कुदरत का कहर, चमोली में बह गया पुल, बीजेपी सांसद बलूनी बोले राहत और बचाव पर सरकार की नजर, रायगढ़ में 9 लोगों की मौत, गुजरात असम में भी आसमानी आफत। और परमाणु हथियार के बहाने दबाव बनाने में जुटे ईरान का ट्रंप को तगड़ा जवाब, का हॉर्मुज तभी खुलेगा जब अमेरिका देगा हर्जाना और हटाएगा प्रतिबंध। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और अनियमितताओं के विरोध में छात्रों ने रांची में विधानसभा का घेराव किया। छात्र झारखंड विधानसभा के गेट के पास तक पहुंच गए थे। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने की मांग कर रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है।
1: झारखंड में छात्रों का आक्रोश, विधानसभा तक विरोध।
2: ये देखिए बैरिकेड्स तोड़ दी है छात्रों ने, तोड़ेंगे जितना लेवल पे होगा, सिंहासन खाली करो, अब जनता आ रही है।
1: लाठीचार्ज, आंसू गैस, पानी की बौछार, रांची में आर पार।
3: ये देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
2: सरकार नियम खुश हो रही है।
1: विधानसभा गेट तक पहुंचे छात्र बैरिकेड टूटे, झुकेगी सरकार।
4: फिर से वाटर कैनन चलाना शुरू कर दिया है।
5: बच्चों का सीट बेच के नौकरी उन लोग खा जा रहे हैं, तो अवसर की समानता कहाँ है?
1: पेपर लीक और परीक्षा में धांधली, छात्रों ने छेड़ी अगस्त क्रांति।
6: अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है, सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है।
1: आंदोलन से छात्रों ने दिखाई ताकत, सरकार मानेगी हरेक शर्त।
7: आपकी सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाहती है।
8: युवा को पलटी कर दिया जाता है, वायु वायु को कोई रोक नहीं सकता।
1: 17 दिन से जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर रांची के जयपाल मुंडा स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन और अनशन कर रहे छात्रों का सब्र टूटा, तो आक्रोश से भरे छात्र सीधे विधानसभा के लिए कूच कर गए। उसके बाद जो हुआ तस्वीरें आपके सामने। छात्र आंदोलन की सांधी में बैरिकेड भी फड़ गए और विधानसभा को घेरने के लिए की गई कटीले तारों की बाड़बंदी भी छात्रों ने उखाड़ फेंकी। प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। फिर भी छात्रों का सैलाब नहीं थमा, तो वाटर कैनन यानी पानी की बौछारें बरसानी पड़ गई, तो आखिर में पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे।
3: ये देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
1: अब छात्र अड़े हैं और सोरेन सरकार के खिलाफ डटे हैं, अपनी शर्तों के लिए, अपनी मांगे मनवाने के लिए। आज हम आपको रांची आंदोलन में विधानसभा घेराव की पूरी टाइमलाइन दिखाएंगे। ये भी बताएंगे कि प्रदर्शनकारी छात्रों और सोरेन सरकार के बीच बात कहां अटकी है, सरकार क्या कह रही है और छात्र किस बात पर अड़े हैं।
9: हम लोग डरने वाले नहीं है, सरकार का एक ही विकल्प है, हमारा मांग को पूरी करे, अन्यथा सरकार अपना कुर्सी नहीं बचा पाएगी, उसका कुर्सी पर खतरा है।
10: किसी भी शर्त पर यहाँ से नहीं हटने वाले, जब तक सरकार घोषणा नहीं कर दे कि सीजीएल रद्द हो गया।
11: ये मेरे पोस्टर का मतलब ये था कि हम लोग स्नैप को कोई फिल्टर नहीं जो हमारा फ्यूचर वो स्किप कर दे।
1: रविवार को झारखंड सरकार के मंत्रियों की विशेष कमेटी और प्रदर्शन कर रहे छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीन दौर में करीब 5 घंटे तक मैराथन वार्ता चलती, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती। और फिर छात्र 10 अगस्त को पहले से घोषित विधानसभा घेराव करने का फैसला लेते। छात्रों को सुबह 10 बजे से पहले पुरानी विधानसभा के पास जमा होने के लिए कहा जाता है, क्योंकि मार्च पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा तक का था। ऐसे में छात्र पोस्टरों और बैनरों के साथ पुरानी विधानसभा पहुँचने लगते।
12: हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहां से मार्च की शुरुआत होनी है। आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार सीजीएल रद्द करेगी?
13: क्यों रद्द करना पड़ेगा? हम लोग आंदोलनरत इसी कारण से है कि ये परीक्षा रद्द होगा। आगे से आने वाली सभी परीक्षाएं पारदर्शी रूप से ले जाएंगी, सीटें नहीं बिकेंगी, पेपर लीक नहीं होगा।
14: सरकार से हमारी मांग है जैसे सीजीएल को रद्द करना होगा, सीबीआई जांच करनी होगी।
12: और देखिए छात्र यहाँ सड़क पे बैठ गए हैं, छात्रों की तरफ से नारेबाजी हो रही है।
15: कितनों ब्रेक कटी, कितनों काटा लगा ले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 26 वर्ष से हमारा हक मारा जा रहा है, इस बार हम लोग नहीं छोड़ेंगे सरकार।
16: सरकार जब तक हम लोग को लिखित नहीं देती है और जब तक सीबीआई सीआईडी जांच नहीं करवाती है, तब तक हम लोग रोड पे रहेंगे, सड़क पे रहेंगे।
0: छात्र सोमवार दिन भर विधानसभा के बाहर जमे रहे। शाम को भी छात्रों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी इस बात पर अड़े हैं कि जब तक उनकी मांगों को सुना नहीं जाएगा वो पीछे नहीं हटेंगे।
17: और पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा के लिए आंदोलनकारी छात्रों का मार्च शुरू हो जाता है। छात्र विधानसभा तक ना पहुंचे इसके लिए बैरिकेडिंग की जाती है और कटीले तारों की बाड़बंदी भी कर दी जाती है। पुलिस बैरिकेडिंग से प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन छात्र बैरिकेडिंग को लांग कर आगे बढ़ जाते हैं। आपको बता दें कि विधानसभा तक के रास्ते में 6 जगह बैरिकेडिंग की गई।
18: हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के वंशज हैं, झारखंड के लिए लड़ सकते हैं तो हम लोग भी लड़।
19: हमारे 3 मांगे हैं सर, तब तक यहाँ से नहीं हिलेगा जब तक उसने अपना जितना मांग रखा है पूरा ना हो जाए।
17: प्रदर्शन में शामिल एक छात्र गुलाब लेकर आता। आज तक से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं ये फूल हमारे प्रिय सीएम हेमंत सोरेन के लिए लाया, जिनके कानों पर 16 दिन से जू नहीं रेंग रही। हम हर कांटे का जवाब फूल से देंगे।
20: तरीका सबसे बेहतर तरीका है, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का एक प्रतीक भी है कि हम इतने शांतिपूर्ण हैं कि हम कांटों का जवाब फूल से दे सकते हैं।
17: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्रनाथ महतो एम्बुलेंस से विधानसभा के लिए रवाना होते हैं। देवेंद्रनाथ महतो स्ट्रेचर पर बैठकर मार्च में शामिल होते हैं। ऐसे में महतो को छात्रों ने अपने कंधे पर उठा लिया और फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने तिरंगा लहराकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। आप देख सकते हैं कि देवेंद्रनाथ महतो स्ट्रेचर पर है और प्रदर्शनकारियों ने स्ट्रेचर को कंधे पर उठाया हुआ है। महतो के हाथ में हेमंत सोरेन के पिता शिव सोरेन की तस्वीर भी है। प्रदर्शनकारी जैसे ही आखिरी लेयर की बैरिकेडिंग तक पहुंचे, पुलिस वाटर कैनन एक्शन शुरू कर देती है। ऐसे में छात्र पानी में जमकर डांस करने लगे और कहने लगे, और चलाओ और चलाओ।
21: ये जेन जी क्यों बहुत मारक प्रचार करती है? आपको ये तस्वीर याद है, बहुत मशहूर फिल्म का है, हेमंत सोरेन की तस्वीर लगाई, लिखा है बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अब आप इस तरह के व्यंग अगर लेकर के आएंगे, इस व्यंग का कोई मार है क्या? ये वो एक नाम अभय तिवारी, वो उनको एस्ट्रोनॉट में भी दिखा दिया है, अभय तिवारी को आईपीएस भी बना दिया है, अभय तिवारी को एसडीएम भी बना दिया गया है, इसरो में साइंटिस्ट भी बना दिया गया है, डॉक्टर भी बना दिया गया, नेता भी बना दिया, मुख्यमंत्री झारखंड का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया।
22: वो जस्ट एक मोहरा है, असली विलन अभी भी पर्दे के पीछे
21: है। पीछे सर असली विलन
22: कहते मेरे दिल में सबसे ज्यादा अगर दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, तो मेरा भूख हड़ताल से ज्यादा दर्द हुआ उस कांटेदार तार का जाली से, एक आते आते टूट गया। ये 3 लेयर का ब्रेकडिंग था, ये 3 लेयर का ब्रेकडिंग आते आते ये छात्र लोग इससे हम लोग निकल जा रहे हैं।
17: प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा भवन के निकट पहुंच जाते हैं। अंतिम बैरिकेडिंग तोड़े जाने पर पुलिस प्रशासन की ओर से छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच भिड़ंत हो जाती है और इस दौरान पुलिस भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़ देती है।
21: प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
9: आंसू गैस, लाठी चार्ज, वाटर कैनन सब का प्रयोग किया जा रहा है हमारे आवाज को दबाने के लिए। ये सरकार डर गई है, कायर सरकार है। जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है।
17: पुलिसिया सख्ती और वाटर कैनन की बौछारों को देखते हुए छात्र रणनीति बदलते हैं और शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। प्रदर्शनकारी छात्र मुख्य मार्ग छोड़कर झारखंड उच्च न्यायालय के बगल से खेतों के रास्ते से विधानसभा की ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं।
21: मैं उसी रास्ते पर देखिए जो छात्र पार मैंने कहा था ना बैरिकेड पार कर लिया है, अब वो खेतों के रास्ते विधानसभा की ओर पहुंचने लगे हैं। जहां पर मैं आया आपको बिल्डिंग दिखाता हूं, ये विधानसभा का इलाका है और ये सारे खेतों के रास्ते, वो देखिए वो विधानसभा है और ये जितने छात्र हैं एक एक करके। अब इस इलाके में क्या है, दो बैरिकेड के बीच में जहां सुरक्षा व्यवस्था है, उन्होंने कहा छोड़िए आपको, पुलिस जो है वो बैरिकेड के पास रहेगी, ये खेतों के रास्ते निकल लिए। और देखिए रीला,
17: आखिरी बैरिकेडिंग के पास जब छात्र पहुंचते हैं तो पुलिस अपील करती है कि छात्र पीछे लौट जाएं, लेकिन छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं होते।
2: जो कार्रवाई थी वो खत्म हो चुकी है, लिहाजा पुलिस के तरफ से ऐलान किया जा रहा है, एसएसपी ने खुद अनाउंस किया है और अनाउंस किया जा रहा है कि आप जब आप विधानसभा मार्च आपका था, आप यहाँ पे अपने बातों को रखने के लिए आए थे, विधायक जो बैठते हैं, मंत्री जो बैठते हैं, जो डिसीजन मेकर हैं लोकतंत्र के मंदिर में जो बैठते हैं, उनसे जब आप बातें करने आए थे, तो जब सत्र खत्म हो गया आज का, तो क्यों नहीं आप वापस चले जा रहे हैं।
17: प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा के गेट पर पहुंच जाते हैं जहां भारी पुलिस बल तैनात रहता है, लेकिन छात्रों का प्रदर्शन जारी रहता है और वो अपनी मांगों पर अड़े रहते हैं। अलग अलग वेश में प्रदर्शनकारी नजर आते हैं। इस प्रदर्शन को देखिए, ये स्पाइडरमैन बन के आया है।
21: वाटर कैनन थे, टैंकर थे, सबका पानी खाली हो गया, बाकायदा छात्रों ने रेन डांस का मजा लिया। और अब इस सड़क से आगे ये जो बैरिकेडिंग, यही रास्ता नई विधानसभा है। सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर ही यहाँ पर विधानसभा का प्रमुख द्वार है और उसी के पहले देखिए स्पाइडरमैन भी दिख गए यहाँ पे। जंतर मंतर से बहुत सारी सिमिलैरिटी दिखाई पड़ती है, स्पाइडरमैन भी है, बैटमैन भी है, कुच्चू पुच्चू वाले पोस्टर भी है।
17: रांची में सीएम आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ाई जाती है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों से झारखंड सरकार की 3 दौर की बातचीत नाकाम हुई है। सरकार का दावा है कि 95 से 98% मांगे मान ली गई हैं, लेकिन जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और जेपीएससी भर्ती धांधली की सीबीआई जांच की मांग ना माने जाने तक प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं।
4: एक हाई लेवल डेलीगेशन, हाई लेवल कमेटी बनाकर, 4 मंत्रियों की एक कमेटी बनाकर संवाद का रास्ता खोला था। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि यदि यह आंदोलन सिर्फ छात्रों का होता तो आज प्रदर्शन की जरूरत नहीं थी। सरकार ने 95% मांगे बच्चों की मान ली थी।
17: इस प्रदर्शन के बीच झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव और जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते को ब्लैक लिस्टेड कंपनी TDPL को परीक्षा का ठेका देने के लिए CID ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन छात्रों का कहना है कि जब तक सोरेन सरकार उनकी एक एक मांग नहीं मान लेती, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। आज तक ब्यूरो।
0: और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर जंतर मंतर प्रदर्शन पर हुए लाठी चार्ज का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी ने सवाल किया कि लाठी चार्ज का आदेश किसने दिया था, इसका जिम्मेदार कौन है, वो सामने आए। गृहमंत्री अमित शाह सदन में आकर बयान दें, राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अराजकता फैला रहे हैं, गृहमंत्री हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं, राहुल गांधी नहीं चाहते कि संसद चले।
5: अमित शाह ने ऑर्डर दिया था या नहीं? बिना होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के ना दिल्ली पुलिस गोली चला सकती है, ना RAF गोली चला सकती है, राइट? तो हमारा सिर्फ एक सवाल है और उसका हम पहले जवाब मांग रहे हैं, आपने गोली चलवाई या नहीं चलवाई? अगर आपने चलवाई, यू आर कल्पेबल। अगर आपने नहीं चलवाई और किसी और ने चलवा दी, यू आर इनकॉम्पिटेंट। Either way you have to go।
23: जब गृह मंत्री जी ने कह दिया कि अब हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो फिर वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, राहुल गांधी चर्चा से मत भागना, हम तैयार हैं। सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तुम भागना मत। मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर में।
0: शरद पवार की अगुवाई वाली NCP-SP के सभी 8 सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। सुप्रिया सुले की अगुवाई में हुई यह मुलाकात कांग्रेस और शिवसेना UBT को रास नहीं आई। विपक्ष कह रहा है कि बार बार शरद पवार गुट के नेता अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। इसका मतलब कुछ तो पक रहा होगा। हालांकि मुलाकात करने आए सांसद कह रहे हैं कि उन्होंने किसानों और अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर बात की है।
17: क्या शरद पवार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल होना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि परिसीमन बिल पर अटकलों के बीच सुप्रिया सुले की अगुवाई में एनसीपी शरद गुट के सभी 8 सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की है, जिससे एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है कि शायद शरद पवार का हृदय परिवर्तन होने वाला है। हालांकि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद शरद गुट के सांसद इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनका दल पाला बदलने वाला है।
3: एक तो पहले मैं ये बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो कयासबाजी जो चल रही है इसमें कोई भी तथ्य नहीं। हम 8 सांसद हैं एनसीपी एसपी के, हम विपक्ष में बैठते हैं और हमारे कई सारे मुद्दे हैं जो कई दिनों से प्रलंबित है। महाराष्ट्र के कुछ मुद्दे जैसे किसानों की ऋण माफी को लेकर मुद्दे, महाराष्ट्र के ड्रॉट के बारे में मुद्दे, प्याज के बारे में मुद्दे, पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेलवे के बारे में मुद्दे, ऐसे हर चुनाव क्षेत्र के जो मुद्दे इन समस्याओं को लेकर आज हमने पीएम सर से मुलाकात की और आई एम रियली थैंकफुल कि पीएम सर काफी वार्म थे, पीएम सर ने ये सब मुद्दे सुन लिए, समस्याएं सुन ली और उन्हें इस पर कोई ठोस कार्रवाई करेंगे ऐसा आश्वासन दिया।
6: दरअसल पहले शरद पवार साहब की मुलाकात होती है प्रधानमंत्री जी से और उसके बाद आप लोग सब लोग जाके मिलते हैं और इस मौसम में जब लगातार हंगामा हो हल्ला हो रहा है, सरकार को नंबर्स चाहिए, तो कुछ जिक्र हुआ डिलिमिटेशन का या कुछ और एफसीआरए का और कुछ समर्थन मांगने देने की बात हुई?
3: जी नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। जो आज मुलाकात हुई ये मुलाकात सिर्फ हमारे 8 जो संसदीय क्षेत्र है इन क्षेत्रों की जो दिक्कतें हैं, महाराष्ट्र के किसानों के बारे में जो समस्या है इसके बारे में बात।
6: अच्छा, आज आपकी मुलाकात थी और आप भगवा कुर्ता पहने हुए हैं, तो ये चॉइस जो है इंटेंशनल थी कि एक्सीडेंटल थी और आगे क्या ये देखने को भी मिलेगा कि भगवा खेमे में आप लोग आ जाएंगे?
3: जी, मैंने कई बार इससे पहले, एक तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे मेरा भाषण भी आपने सुना, तो मैं ये मानने वाला हूँ कि भगवा मेरे तिरंगे का एक रंग है और इसीलिए मुझे लगता है कि किसी को मेरे भगवा रंग पहनने पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
6: तो वैसे आप लोग इधर है कि उधर है? वैसे इधर ही है ना, मतलब
3: मैंने हमेशा यही बात की
6: है। यही बयान 10 दिन बाद भी चलेगा?
3: डेफिनेटली यही बयान हर बार चलेगा कि शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा और महाराष्ट्र के हित में हम लोगों के साथ।
17: वैसे बताया जा रहा है कि शरद पवार गुट के सांसदों और प्रधानमंत्री के बीच करीब आधे घंटे की बैठक हुई। एनसीपी एसपी सांसद दावा कर रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने महाराष्ट्र में सूखे और सिंचाई से जुड़े मुद्दों पर चिंता जताई।
7: आज सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे उसमें किसानों के बारे में जो कर्ज माफी हो और कोई किसानों के अतिवृष्टि हो गई थी, बहुत से बारिश से वजह से हमारे किसानों का नुकसान हो गया था, वो कुछ विषय थे। और दूसरा हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, सब स्टेट के सब डिस्ट्रिक्ट में एक कैंसर केयर हॉस्पिटल होना चाहिए। और दूसरा पीएम रिलीफ फंडर रहता है उनके जो संख्या है वो बढ़ानी चाहिए। और तीसरा हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो किले बनाए 365 किले, उसमें से 12 किले यूनेस्को में लिया है, तो उसमें संख्या बढ़ानी चाहिए और जो जो किले उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देके वो किले अच्छे बनाने चाहिए।
17: इससे पहले भी एनसीपी शरद गुट ऐलान कर चुका है कि वो परिसीमन बिल के मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ है, लेकिन सियासत में जो होता है वो कहा नहीं जाता है और अक्सर जो कहा जाता है वो होता नहीं है। बार बार पीएम मोदी से शरद पवार या उनके सांसदों का मिलना विपक्ष को रास नहीं आ रहा है, इससे विपक्षी गठबंधन में खलबली मच गई है।
8: वारंवार अमित शाह आणि नरेंद्र मोदींच्या दरबारात हे का जाता है, कशामुळे जात आहेत? पवार साहेब ज्येष्ठ आहेत, ठीक आहे, पण इतर जे जात आहेत त्यांच्याकडे जाऊन नतमस्तक होताना आम्हाला दिसत आहे, याचा अर्थ काहीतरी आतून शिजलेलं असावं आणि त्यातून मला वाटतं की पुढच्या डिलिमिटेशनसाठी काही प्लॅनिंग असावी।
17: इस मुलाकात पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विपक्ष क्यों बेचैन है, प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए किसी भी पार्टी के प्रतिनिधि पीएम से मिलते जुलते रहते हैं।
24: पंतप्रधान हे देशाचे असतात, ते कुठल्या पक्षाचे नसतात, त्यांना भेटायला जाणं यामध्ये काही अवघड असं मला वाटत नाही. मी देखील मुख्यमंत्री आहे. अनेक विरोधी पक्षाचे लोक मला भेटत असतात, त्यांची कामं सांगत असतात, त्यामुळे मला असं वाटतं की कुठल्याही वेगळ्या दृष्टीने याच्याकडे पाहण्याचं कारण नाही आहे. ते त्या ठिकाणी गेले आहेत ही अतिशय किंवा जाणार असतील तर अतिशय चांगली गोष्ट.
17: इधर शिवसेना यूबीटी पूछ रही है कि परिसीमन बिल से क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी.
1: नहीं, बात एक ही है. देखिए, डिलिमिटेशन के बारे में जो कहा जाता है कि रिप्रेजेंटेशन हो, पहली बात तो यह है कि जब सांसद आप बढ़ाओगे लगभग 500 से लेके 850 तक लेके जाओगे तो उनका जो खर्चा होता है, उनकी तनख्वाह होती है, उनका डेली अलाउंस होता है, उनका घर होता है, फिर बंगला हो या फ्लैट हो, आने जाने का खर्चा होता है, उस पर तो हम सारे लोग ही तो खर्चा करने वाले टैक्स पेयर. और ये खर्चा करने के बाद क्या जो व्यवस्था है, जो परिस्थिति है, वो बदलने वाली है? उससे अच्छा ये सोचिए आप कि पावर्स को डिवॉल्व कैसे किया जाए, डिसेंट्रलाइज कैसे किया जाए. जो नगर निगम होते हैं उनको अगर आप ताकत दें तो कितना अच्छा हो सकता है. विधायक होते हैं उनको अगर आप ताकत दें अच्छा काम हो सकता है. जो अभी के सांसद है उनको फंड बढ़ाया जाए तो भी अच्छा काम हो सकता है. और एक तरफ आप देख रहे हो कि 850 एमपी की बात कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है क्या वो इसमें से सॉल्व होने वाली है?
17: हालांकि सुप्रिया सुले ने प्रस्तावित एफसीआरए बिल के प्रति अपनी पार्टी के कड़े विरोध को दोहराया और मांग की कि इसे वापस लिया जाए या जेपीसी को भेजा जाए. एफसीआरए बिल पर फडणवीस ने कहा कि ये बिल किसी के खिलाफ नहीं है, इस पर विपक्ष ऐतराज क्यों जता रहा है?
24: देखिए, एफसीआरए के ऊपर बिल लाने का कारण यही है कि लगातार इस देश के अंदर एफसीआरए का उपयोग करके कुछ संस्थाएं पैसा ला रही है और उस पैसे का उपयोग देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है. जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए इस बिल में कोई अड़चन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है. एफसीआरई की प्रोविजन भी रहने वाली है, जो हिसाब देंगे उनके लिए उनका लाइसेंस भी रहने वाला है. मुझे विश्वास है कि अगर किसी को इसमें कुछ कहना होगा वो संसद में कह सकते हैं. भारत सरकार रिसेप्टिव है और ये किसी एक समुदाय का इसमें विषय ही नहीं है, क्योंकि केवल क्रिश्चियन संस्थाओं के लिए एफसीआरए नहीं है, सारी संस्थाओं के लिए एफसीआरए ये आवश्यक है. और सारी संस्थाएं किसी भी समाज की हो, जो संस्थाएं जिनको फॉरेन से डोनेशन मिलता है उनको एफसीआरए ये आवश्यक है.
17: फिलहाल इंडिया गठबंधन की नजर शरद पवार के अगले कदम पर है. उन्हें आशंका है कि पवार परिसीमन बिल का समर्थन करने के बहाने एनडीए में शामिल हो सकते हैं, लेकिन पवार इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे या एनडीए में जाएंगे ये बात सिर्फ और सिर्फ शरद पवार ही जानते हैं. मुंबई से ऋत्विक भालेकर के साथ मौसमी सिंह और पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक.
0: राजस्थान में नई भर्तियां खूब निकल रही हैं, लेकिन पुरानी भर्तियों के लिए धरना प्रदर्शन का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा. राजस्थान सरकार ने खाने पीने के सामान की जांच के लिए पहली बार 2019 और फिर 2022 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती की थी. आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद सरकार ने 6 साल के बाद ज्वाइनिंग तो दे दी है, लेकिन 8 महीने हो चुके हैं, न सैलरी मिली है और न ही काम मिला. 6 साल के बाद ज्वाइनिंग पाए युवा एक बार फिर से धरना देने के लिए मजबूर हैं, जो इस बार स्वास्थ्य विभाग के अंदर ही धरने पर बैठ गए.

0: है आज तक।
1: आपका बेटा या बेटी अगर भर्ती परीक्षा पास कर लेता है तो फिर आप मिठाई बांटते होंगे, लेकिन राजस्थान के हजारों ऐसे युवा हैं जो भर्ती परीक्षा पास करके भी बेरोजगार हैं। कहीं नियुक्ति पत्र लेकर भटक रहे हैं तो कहीं पोस्टिंग पाने के लिए धरना दे रहे हैं।
2: ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जो भर्ती है ना सर, भर्तियों के मामले में ये इस सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है।
3: इसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आया, उसमें हमारा रोल नंबर दिखा, उसके बाद में हम बिल्कुल फ्री हो गए कि एक एक बार मेहनत करके दो ढाई साल हमने एक अच्छा परिणाम पा लिया। लेकिन उसके बाद जैसे ही हमें पता लगता है कि ये इस भर्ती पे दुनिया भर की रिट लग रही है और स्टे आ जाता है, उसके बाद ना तो सर पढ़ाई होती है, बिल्कुल मेंटली टॉर्चर हो चुके हैं सर, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं।
0: आपकी टीवी स्क्रीन पर बाईं तरफ एक साल पहले की रिपोर्ट का वीडियो है, जब आजादी के बाद पहली बार 2019 और 2022 में निकली राजस्थान के खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती को पास करके भी नौकरी नहीं पा रहे युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए आज तक ने मुद्दा उठाया, जिसके बाद इन्हें नियुक्ति पत्र तो भजनलाल सरकार के राज में बटा, लेकिन अब फिर से ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी धरना देने के लिए मजबूर कर दिए गए हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर में खुद के बेरोजगार सरकारी कर्मचारी नौकरी और तनख्वाह के लिए धरने पर बैठे। आप सोचेंगे कि एक सरकारी कर्मचारी कैसे बेरोजगार हो सकता है, तो समझिए, ये राजस्थान सरकार के वो 225 स्वास्थ्य सुरक्षा अधिकारी हैं जिन्हें भर्ती निकलने के 7 साल बाद भी न तो काम दिया जा रहा है न ही सैलरी। 225 खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिन्हें रुला रुला कर नवम्बर दिसम्बर 2025 में ज्वाइन तो कराया गया, लेकिन 8 महीने में न तो इनको कोई काम दिया न ही तनख्वाह। ये रोज जिला चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर में जाकर साइन करते हैं और बैठे रहते हैं।
4: सर हमारी जो ज्वाइनिंग है वो दिसंबर में हो चुकी थी, अभी 8 महीने पूरे होने को आए हैं, तो हमें ना तो पोस्टिंग दी जा रही है, सारी हमारी जो प्रोसेस होनी चाहिए थी पोस्टिंग तक की वो पूरी हो चुकी है, पर आज दिन तक हमें कोई भी पोस्टिंग नहीं मिली है, ना ही हमें अभी तक सैलरी दी गई है। तो हम यही चाहते हैं कि आचार संहिता लगने से पहले हमें पोस्टिंग दे दी जाए, ताकि हमें आचार संहिता के टाइम में भी इस भर्ती को आगे तक धक्के नहीं मारने पड़े और हमें पोस्टिंग मिल जाए हमारी यथास्थिति पे।
0: संजय कुमार जैसे युवा आईआईटी दिल्ली से पीएचडी की है, अब भरतपुर जिला चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर में काम करते हैं, पहले की तनख्वाह भी गई और अब बेरोजगार होकर घूमने को लाचार है। कोई बैंक मैनेजर की नौकरी छोड़कर आया, कोई टीचर और कोई प्रिंसिपल की नौकरी छोड़कर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती में परीक्षा निकाल कर नियुक्ति पाया, कोई एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद, लंदन से फूड सेफ्टी में पीजी डिप्लोमा करने के बाद 6 साल से धरने पर ही बैठ रहे हैं। सैलरी न मिलने से इनको परिवार चलाना मुश्किल हो चुका है।
5: हमारी बहुत बड़ी बड़ी ईएमआई पुराने जॉब की वजह से चल रही है और परिवार के
6: जॉब छोड़ के आए हैं।
5: जी सर, और अभी मेन प्रॉब्लम ईएमआई तो चल ही रही है, साथ में सर फैमिली के खर्चे भी हैं, क्योंकि बच्चों की फीस भी पे करनी पड़ती है, उसके अलावा परिवार का खर्चा भी चलाना पड़ता है। सर हमें कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है।
7: हम लोग यहाँ वापस जाते हैं, सुबह साइन करते हैं, शाम को वापस घर पर चले जाते हैं, ठीक है। अब इस पर डेपोटेशन वाले पर ये विभाग क्यों मेहरबान है इसका तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये डेपोटेशन के रुके रहने की वजह से हमारी भर्ती या हमारी जो पोस्टिंग है वो नहीं हो पा रही है।
8: गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में सर पिछले 11 साल से मैं वर्किंग हूँ। इससे पहले मैं वाइस प्रिंसिपल था, झुंझुनू में ही पोस्टेड था। अब समस्या ये आ रही है सर कि जो सैलरी वहाँ मिल रही थी नियमित सैलरी, वो भी अब यहाँ पिछले 8 महीने से नहीं मिल रही है। मैडम से काफी बार अनुरोध किया, 2-3 बार हम मिले व्यक्तिगत रूप से सीएल लेके, लेकिन आश्वासन के अलावा हमें कुछ मिला नहीं अभी तक।
0: दरअसल चयन होने के बाद भी जब इनको सरकार नौकरी नहीं दे रही थी तो ये लोग कोर्ट गए और कोर्ट में सरकार ने जवाब ये दे दिया कि विभाग में पहले जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पद था उस पर हमने डेपुटेशन पर दूसरे विभागों से रख लिया है, उनकी जगह इनको पद दे दिया जाएगा। मगर दूसरे विभाग से आए लोग जो डेपुटेशन पर लगी वो इस मलाईदार विभाग को छोड़कर अपने पुराने विभाग में जाना नहीं चाहते। अधिकारी कहते हैं कि उन्होंने फाइल मंत्री जी को भेज रखी, मंत्री जी के पास से फाइल आई तो फिर आगे काम हो पाएगा।
9: जब वो आया हमारे पास सर्टिफिकेट्स, वेरी माइनर मिस्टेक्स वर देयर इन द स्पेलिंग्स, तो हमने उसको रेक्टिफाई कराया थ्रू एफएसएसआई, बिकॉज वो गैजेट में जाता है तो स्पेलिंग में भी एरर नहीं होना है, तो भिजवाया, तो 31 जुलाई को इनका नोटिफिकेशन जारी हो गया। अभी क्योंकि इनका सैलरी का है, वी आर वर्किंग ऑन द सैलरी पार्ट, वी हैव मेड दम एज अ ड्यूटी मान के इनको सैलरी देने वाला, और दूसरा इनका राजहेल्थ पोर्टल के थ्रू पोस्टिंग दिलाना है द प्लेस वेर दे कैन वर्क बेस्ड ऑन हमने जो एरिया आइडेंटिफाई किया है अंडर द एक्ट, तो फाइल अभी पेंडिंग है, तो हम भी उस पर थोड़ा एक्सपेरेट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके करें।
0: खाने पीने

0: मिलावट और नकली दूध और पनीर से लेकर नकली आटा और नकली धनिया पाउडर तक बेचे जाने की घटनाएं राजस्थान में लगातार सामने आ रही हैं। मगर वर्षों से विभाग में डेपुटेशन पर लगे अधिकारियों की लॉबी की वजह से मंत्री जी फाइल से भाग रहे हैं और लाचार होकर 225 खाद्य सुरक्षा अधिकारी बिना काम बिना सैलरी के धरना देने के लिए छोड़ दिए गए हैं।
1: ये राजस्थान का स्वास्थ्य भवन है और स्वास्थ्य भवन में ये नीचे बैठे हुए राजस्थान के खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं। आजादी के बाद पहली बार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती निकली थी। इन्हें ज्वाइनिंग तो दे दी गई बड़े लंबी लड़ाई के बाद, मगर कोई काम नहीं दिया गया, न तनख्वाह मिलती है और इन्हें दफ्तर के अंदर बैठना चाहिए था। ये गलियारे में बैठे हुए हैं अधिकारियों के दफ्तरों के बाहर अपने मांग को लेकर कि 2019 में भर्ती हुई थी और अब तक नौकरी नहीं मिल पाई, कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, कैसे घर चलता है इनका।
2: इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।

0: प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पर राहुल गांधी का बड़ा हमला, पूछा किसने दिया छात्रों के ऊपर पैलेट गन चलाने के आदेश। चढ़ावा चोरी को लेकर प्रधानमंत्री को घेरा नड्डा का पलटवार, माहौल खराब कर रहे हैं नेता विपक्ष। परीक्षा धांधली के खिलाफ रांची में छात्रों का धरना, विधानसभा मार्च के दौरान लाठीचार्ज, हेमंत सोरेन ने प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। देवेंद्र महतो बोले अब नहीं होगी सरकार से बात। रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी ने आज झारखंड बंद बुलाया, सीएम आवास पर प्रदर्शन किया गया। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन गिरफ्तार, ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक कुदरत का कहर, चमोली में बह गया पुल, बीजेपी सांसद बलूनी बोले राहत और बचाव पर सरकार की नजर। रायगढ़ में 9 लोगों की मौत, गुजरात असम में भी आसमानी आफत। और परमाणु हथियार के बहाने दबाव बनाने में जुटे ईरान का ट्रंप को तगड़ा जवाब, का हॉर्मुज तभी खुलेगा जब अमेरिका देगा हर्जाना और हटाएगा प्रतिबंध। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और अनियमितताओं के विरोध में छात्रों ने रांची में विधानसभा का घेराव किया। छात्र झारखंड विधानसभा के गेट के पास तक पहुंच गए थे। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने की मांग कर रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है।
1: अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ये देखिए अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
2: झारखंड में छात्रों का आक्रोश, विधानसभा तक विरोध।
3: ये देखिए बैरिकेड्स तोड़ दी है छात्रों ने।
4: तोड़ेंगे जितना लेवल पे होगा, सिंहासन खाली करो, अब जनता आ रही है।
2: लाठीचार्ज, आंसू गैस, पानी की बौछार, रांची में आर पार।
1: ये देखिए अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
5: ऐसा कितना सरकार ने अंकुश लगाई है।
2: विधानसभा गेट तक पहुंचे छात्र, बैरिकेड टूटे, झुकेगी सरकार।
6: फिर से वाटर कैनन चलाना शुरू कर दिया है।
7: बच्चों का सीट बेच के नौकरी उन लोग खा जा रहे हैं, तो अवसर की समानता कहाँ है?
2: पेपर लीक और परीक्षा में धांधली, छात्रों ने छेड़ी अगस्त क्रांति।
8: अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है, सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है।
2: आंदोलन से छात्रों ने दिखाई ताकत, सरकार मानेगी हरेक शर्त।
9: आपकी सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाहती है।
10: युवा को पलटी कर देते जाता वायु, वायु को कोई रोक नहीं सकता।
2: 17 दिन से जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर रांची के जयपाल मुंडा स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन और अनशन कर रहे छात्रों का सब्र टूटा, तो आक्रोश से भरे छात्र सीधे विधानसभा के लिए कूच कर गए। उसके बाद जो हुआ तस्वीरें आपके सामने। छात्र आंदोलन की सांधी में बैरिकेड भी उखड़ गए और विधानसभा को घेरने के लिए की गई कटीले तारों की बाड़बंदी भी छात्रों ने उखाड़ फेंकी। प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। फिर भी छात्रों का सैलाब नहीं थमा, तो वाटर कैनन यानी पानी की बौछारें बरसानी पड़ गई, तो आखिर में पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे।
1: ये देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
2: अब छात्र अड़े हैं और सोरेन सरकार के खिलाफ डटे हैं, अपनी शर्तों के लिए, अपनी मांगे मनवाने के लिए। आज हम आपको रांची आंदोलन में विधानसभा घेराव की पूरी टाइमलाइन दिखाएंगे। ये भी बताएंगे कि प्रदर्शनकारी छात्रों और सोरेन सरकार के बीच बात कहां अटकी है, सरकार क्या कह रही है और छात्र किस बात पर अड़े हैं।
11: हम लोग डरने वाले नहीं है, सरकार का एक ही विकल्प है, हमारा मांग को पूरी करे, अन्यथा सरकार अपना कुर्सी नहीं बचा पाएगी, उसका कुर्सी पर खतरा है।
12: किसी भी शर्त पर यहाँ से नहीं हटने वाले जब तक सरकार घोषणा नहीं कर दे कि सीजीएल रद्द हो गया।
13: ये मेरे पोस्टर का मतलब ये था कि हम लोग स्लैब को कोई फिल्टर नहीं जो हमारा फ्यूचर वो स्किप कर दे।
2: रविवार को झारखंड सरकार के मंत्रियों की विशेष कमेटी और प्रदर्शन कर रहे छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीन दौर में करीब 5 घंटे तक मैराथन वार्ता चलती, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती। और फिर छात्र 10 अगस्त को पहले से घोषित विधानसभा घेराव करने का फैसला लेते। छात्रों को सुबह 10 बजे से पहले पुरानी विधानसभा के पास जमा होने के लिए कहा जाता है, क्योंकि मार्च पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा तक का था। ऐसे में छात्र पोस्टरों और बैनरों के साथ पुरानी विधानसभा पहुँचने लगते।
14: हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहां से मार्च की शुरुआत होनी है। आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार सीजीएल रद्द करेगी?
15: क्यों रद्द करना पड़ेगा, हम लोग आंदोलनरत इसी कारण से है कि ये परीक्षा रद्द होगा। आगे से आने वाली सभी परीक्षाएं पारदर्शी रूप से ले जाएंगी, सीटें नहीं बिकेंगी, पेपर लीक नहीं होगा।
16: सरकार से हमारी मांग है जैसे सीजीएल को रद्द करना होगा, सीबीआई जांच करनी होगी।
14: और देखिए छात्र यहाँ सड़क पे बैठ गए हैं, छात्रों की तरफ से नारेबाजी हो रही है।
17: कितनों ब्रेक कटी, कितनों काटा लगा ले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 26 वर्ष से हमारा हक मारा जा रहा है, इस बार हम लोग नहीं छोड़ेंगे सरकार।
18: सरकार जब तक हम लोग को लिखित नहीं देती है और जब तक सीबीआई सीआईडी जांच नहीं करवाती है, तब तक हम लोग रोड पे रहेंगे, सड़क पे रहेंगे।
0: छात्र सोमवार दिन भर विधानसभा के बाहर जमे रहे। शाम को भी छात्रों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी इस बात पर अड़े हैं कि जब तक उनकी मांगों को सुना नहीं जाएगा वो पीछे नहीं हटेंगे।
19: और पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा के लिए आंदोलनकारी छात्रों का मार्च शुरू हो जाता है। छात्र विधानसभा तक ना पहुंचे इसके लिए बैरिकेडिंग की जाती है और कटीले तारों की बाड़बंदी भी कर दी जाती है। पुलिस बैरिकेडिंग से प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन छात्र बैरिकेडिंग को लांघ कर आगे बढ़ जाते हैं। आपको बता दें कि विधानसभा तक के रास्ते में 6 जगह बैरिकेडिंग की गई।
20: हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के वंशज हैं, झारखंड के लिए लड़ सकते हैं तो हम लोग भी लड़।
21: हमारे 3 मांगे हैं सर, तब तक यहाँ से नहीं हिलेगा जब तक उसने अपना जितना मांग रखा है पूरा ना हो जाए।
19: प्रदर्शन में शामिल एक छात्र गुलाब लेकर आते हैं। आज तक से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं ये फूल हमारे प्रिय सीएम हेमंत सोरेन के लिए लाया हूँ, जिनके कानों पर 16 दिन से जू नहीं रेंग रही है। हम हर कांटे का जवाब फूल से देंगे।
22: तरीका सबसे बेहतर तरीका है, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का एक प्रतीक भी है कि हम इतने शांतिपूर्ण हैं कि हम कांटों का जवाब फूल से दे सकते हैं।
19: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्रनाथ महतो एम्बुलेंस से विधानसभा के लिए रवाना होते हैं। देवेंद्रनाथ महतो स्ट्रेचर पर बैठकर मार्च में शामिल होते हैं। ऐसे में महतो को छात्रों ने अपने कंधे पर उठा लिया और फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने तिरंगा लहराकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। आप देख सकते हैं कि देवेंद्रनाथ महतो स्ट्रेचर पर और प्रदर्शनकारियों ने स्ट्रेचर को कंधे पर उठाया हुआ है। महतो के हाथ में हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन की तस्वीर भी है। प्रदर्शनकारी जैसे ही आखिरी लेयर की बैरिकेडिंग तक पहुंचे, पुलिस वाटर कैनन एक्शन शुरू कर देती है। ऐसे में छात्र पानी में जमकर डांस करने लगे और कहने लगे, और चलाओ और चलाओ।
23: ये जेन जी क्यों बहुत मारक प्रचार करती है? आपको ये तस्वीर याद है, बहुत मशहूर फिल्म का है, हेमंत सोरेन की तस्वीर लगाई है, लिखा है बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अब आप इस तरह के व्यंग अगर लेकर के आएंगे, इस व्यंग का कोई मार है क्या? ये वो एक नाम अभय तिवारी, वो उनको एस्ट्रोनॉट में भी दिखा दिया है, अभय तिवारी को आईपीएस भी बना दिया है, अभय तिवारी को एसडीएम भी बना दिया गया है, इसरो में साइंटिस्ट भी बना दिया गया है, डॉक्टर भी बना दिया गया, नेता भी बना दिया, मुख्यमंत्री, झारखंड का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया।
24: वो जस्ट एक मोहरा है, असली विलन अभी भी पर्दे के पीछे है।
25: पीछे सर असली विलन।
26: मेरे दिल में सबसे ज्यादा अगर दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, तो मेरा भूख हड़ताल से ज्यादा दर्द हुआ उस कांटेदार तार का जाली से, एक आते आते टूट गया। ये 3 लेयर का ब्रेकेडिंग था, ये 3 लेयर का ब्रेकेडिंग आते आते ये छात्र लोग इससे हम लोग निकल जा रहे हैं।
19: प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा भवन के निकट पहुंच जाते हैं। अंतिम बैरिकेडिंग तोड़े जाने पर पुलिस प्रशासन की ओर से छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच भिड़ंत हो जाती है और इस दौरान पुलिस भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़ देती है।
23: प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
27: आंसू गैस, लाठी चार्ज, वाटर कैनन सब का प्रयोग किया जा रहा है हमारे आवाज को दबाने के लिए। ये सरकार डर गई है, कायर सरकार है। जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है।
19: पुलिसिया सख्ती और वाटर कैनन की बौछारों को देखते हुए छात्र रणनीति बदलते हैं और शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। प्रदर्शनकारी छात्र मुख्य मार्ग छोड़कर झारखंड उच्च न्यायालय के बगल से खेतों के रास्ते से विधानसभा की ओर तेजी से बढ़ने लगे।
23: मैं उसी रास्ते पर देखिए जो छात्र पार मैंने कहा था ना बैरिकेड पार कर लिया है, अब वो खेतों के रास्ते विधानसभा की ओर पहुंचने लगे हैं। जहां पर मैं आया आपको बिल्डिंग दिखाता हूं, ये विधानसभा का इलाका है और ये सारे खेतों के रास्ते, वो देखिए वो विधानसभा है और ये जितने छात्र हैं एक एक करके अब इस इलाके में क्या है, दो बैरिकेड के बीच में जहां सुरक्षा व्यवस्था है, उन्होंने कहा छोड़िए आपको, पुलिस जो है वो बैरिकेड के पास रहेगी, ये खेतों के रास्ते निकल लिए। और देखिए रेला,
19: आखिरी बैरिकेडिंग के पास जब छात्र पहुंचते हैं तो पुलिस अपील करती है कि छात्र पीछे लौट जाएं, लेकिन छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं होते।
3: जो कार्रवाई थी वो खत्म हो चुकी है, लिहाजा पुलिस के तरफ से ऐलान किया जा रहा है, एसएसपी ने खुद अनाउंस किया है और अनाउंस किया जा रहा है कि अब जब आप विधानसभा मार्च आपका था, आप यहाँ पे अपने बातों को रखने के लिए आए थे, विधायक जो बैठते हैं, मंत्री जो बैठते हैं, जो डिसीजन मेकर हैं लोकतंत्र के मंदिर में जो बैठते हैं, उनसे जब आप बातें करने आए थे, तो जब सत्र खत्म हो गया आज का, तो क्यों नहीं आप वापस चले जा रहे हैं।
19: प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा के गेट पर पहुंच जाते हैं जहां भारी पुलिस बल तैनात रहता है, लेकिन छात्रों का प्रदर्शन जारी रहता है और वो अपनी मांगों पर अड़े रहते हैं। अलग अलग वेश में प्रदर्शनकारी नजर आते हैं। इस प्रदर्शन को देखिए, ये स्पाइडरमैन बन के आए।
23: वाटर कैनन थे, टैंकर थे, सबका पानी खाली हो गया, बाकायदा छात्रों ने रेन डांस का मजा लिया। और अब इस सड़क से आगे ये जो बैरिकेडिंग, यही रास्ता नई विधानसभा है। सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर ही यहाँ पर विधानसभा का प्रमुख द्वार है और उसी के पहले देखिए स्पाइडरमैन भी दिख गए यहाँ पे। जंतर मंतर से बहुत सारी सिमिलैरिटी दिखाई पड़ती है, स्पाइडरमैन भी है, बैटमैन भी है, कुच्चू पुच्चू वाले पोस्टर भी है।
19: रांची में सीएम आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ाई जाती है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों से झारखंड सरकार की 3 दौर की बातचीत नाकाम हुई है। सरकार का दावा है कि 95 से 98% मांगे मान ली गई हैं, लेकिन जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और जेपीएससी भर्ती धांधली की सीबीआई जांच की मांग न माने जाने तक प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं।
4: एक हाई लेवल डेलीगेशन, हाई लेवल कमेटी बनाकर, 4 मंत्रियों की एक कमेटी बनाकर संवाद का रास्ता खोला था। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि यदि यह आंदोलन सिर्फ छात्रों का होता तो आज प्रदर्शन की जरूरत नहीं थी। सरकार ने 95% मांगे बच्चों की मान ली थी।
19: इस प्रदर्शन के बीच झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव और जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते को ब्लैक लिस्टेड कंपनी टीडीपीएल को परीक्षा का ठेका देने के लिए सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन छात्रों का कहना है कि जब तक सोरेन सरकार उनकी एक एक मांग नहीं मान लेती, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। आज तक ब्यूरो।
0: और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर जंतर मंतर प्रदर्शन पर हुए लाठी चार्ज का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी ने सवाल किया कि लाठी चार्ज का आदेश किसने दिया था, इसका जिम्मेदार कौन है, वो सामने आए। गृहमंत्री अमित शाह सदन में आकर बयान दें, राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अराजकता फैला रहे हैं, गृहमंत्री हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं, राहुल गांधी नहीं चाहते कि संसद चले।
5: अमित शाह ने ऑर्डर दिया था या नहीं? बिना होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के ना दिल्ली पुलिस गोली चला सकती है, ना आरएएफ गोली चला सकती है, राइट? तो हमारा सिर्फ एक सवाल है और उसका हम पहले जवाब मांग रहे हैं, आपने गोली चलवाई या नहीं चलवाई? अगर आपने चलवाई, यू आर कल्पेबल। अगर आपने नहीं चलवाई और किसी और ने चलवा दी, यू आर इनकॉम्पिटेंट। आइदर वे यू हैव टू गो।
6: जब गृह मंत्री जी ने कह दिया कि अब हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो फिर वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, राहुल गांधी चर्चा से मत भागना, हम तैयार हैं। सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तुम भागना मत। मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर में।
0: राजस्थान में नई भर्तियां खूब निकल रही हैं, लेकिन पुरानी भर्तियों के लिए धरना प्रदर्शन का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा। राजस्थान सरकार ने खाने पीने के सामान की जांच के लिए पहली बार 2019 और फिर 2022 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती की थी। आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद सरकार ने 6 साल के बाद ज्वाइनिंग तो दे दी है, लेकिन 8 महीने हो चुके हैं, न सैलरी मिली है और न ही काम मिला। 6 साल के बाद ज्वाइनिंग पाए युवा एक बार फिर से धरना देने के लिए मजबूर हैं, जो इस बार स्वास्थ्य विभाग के अंदर ही धरने पर बैठ गए हैं।
1: खबरदार करके खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ता आज तक। खबर को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लगातार खबरदार करता है आज तक।
7: आपका बेटा या बेटी अगर भर्ती परीक्षा पास कर लेता है तो फिर आप मिठाई बांटते होंगे, लेकिन राजस्थान के हजारों ऐसे युवा हैं जो भर्ती परीक्षा पास करके भी बेरोजगार हैं। कहीं नियुक्ति पत्र लेकर भटक रहे हैं तो कहीं पोस्टिंग पाने के लिए धरना दे रहे हैं।
8: ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जो भर्ती है ना सर, भर्तियों के मामले में ये इस सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है।
9: इसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आया, उसमें हमारा रोल नंबर दिखा, उसके बाद में हम बिल्कुल फ्री हो गए कि एक बार मेहनत करके 2-2.5 साल हमने एक अच्छा परिणाम पा लिया, लेकिन उसके बाद जैसे ही हमें पता लगता है कि ये इस भर्ती पे दुनिया भर की रिट लग रही है और स्टे आ जाता है, उसके बाद ना तो सर पढ़ाई होती है, बिल्कुल मेंटली टॉर्चर हो चुके हैं सर, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं।
1: आपकी टीवी स्क्रीन पर बाईं तरफ 1 साल पहले की रिपोर्ट का वीडियो है, जब आजादी के बाद पहली बार 2019 और 2022 में निकली राजस्थान के खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती को पास करके भी नौकरी नहीं पा रहे युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए आज तक ने मुद्दा उठाया, जिसके बाद इन्हें नियुक्ति पत्र तो भजनलाल सरकार के राज में बटा, लेकिन अब फिर से ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी धरना देने के लिए मजबूर कर दिए गए हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर में खुद के बेरोजगार सरकारी कर्मचारी नौकरी और तनख्वाह के लिए धरने पर बैठे हैं। आप सोचेंगे कि एक सरकारी कर्मचारी कैसे बेरोजगार हो सकता है, तो समझिए ये राजस्थान सरकार के वो 225 स्वास्थ्य सुरक्षा अधिकारी हैं, जिन्हें भर्ती निकलने के 7 साल बाद भी न तो काम दिया जा रहा है न ही सैलरी। 225 खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिन्हें रुला रुला कर नवम्बर दिसम्बर 2025 में ज्वाइन तो कराया गया, लेकिन 8 महीने में न तो इनको कोई काम दिया न ही तनख्वाह। ये रोज जिला चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर में जाकर साइन करते हैं और बैठे रहते हैं।
10: सर हमारी जो ज्वाइनिंग है वो दिसंबर में हो चुकी थी, अभी 8 महीने पूरे होने को आए हैं, तो हमें ना तो पोस्टिंग दी जा रही है, सारी हमारी जो प्रोसेस होनी चाहिए थी पोस्टिंग तक की वो पूरी हो चुकी है, पर आज दिन तक हमें कोई भी पोस्टिंग नहीं मिली है, ना ही हमें अभी तक सैलरी दी गई है। तो हम यही चाहते हैं कि आचार संहिता लगने से पहले हमें पोस्टिंग दे दी जाए, ताकि हमें आचार संहिता के टाइम में भी इस भर्ती को आगे तक धक्के नहीं मारने पड़े और हमें पोस्टिंग मिल जाए हमारी यथास्थिति पे।
1: संजय कुमार जैसे युवा IIT दिल्ली से PhD की हैं, अब भरतपुर जिला चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर में काम करते हैं। पहले की तनख्वाह भी गई और अब बेरोजगार होकर घूमने को लाचार है। कोई बैंक मैनेजर की नौकरी छोड़कर आया, कोई टीचर और कोई प्रिंसिपल की नौकरी छोड़कर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती में परीक्षा निकाल कर नियुक्ति पाए, कोई MSc केमिस्ट्री करने के बाद लंदन से फूड सेफ्टी में PG डिप्लोमा करने के बाद 6 साल से धरने पर ही बैठ रहे हैं। सैलरी ना मिलने से इनको परिवार चलाना मुश्किल हो चुका है।
11: हमारी बहुत बड़ी बड़ी EMI पुराने जॉब की वजह से चल रही है और परिवार के
12: पुराने जॉब छोड़ के आए
11: जी सर, और अभी मेन प्रॉब्लम EMI तो चली रही है, साथ में सर फैमिली के खर्चे भी हैं, क्योंकि बच्चों की फीस भी पे करनी पड़ती है, उसके अलावा परिवार का खर्चा भी चलाना पड़ता है सर, हमें कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है।
13: हम लोग यहाँ वापस जाते हैं, सुबह साइन करते हैं, शाम को वापस घर पर चले जाते हैं, ठीक है। अब इस पर डेपोटेशन वाले पर ये विभाग क्यों मेहरबान है इसका तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये डेपोटेशन के रुके रहने की वजह से हमारी भर्ती या हमारी जो पोस्टिंग है वो नहीं हो पा रही है।
28: पहले भी हम गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में सर पिछले 11 साल से मैं वर्किंग हूँ, इससे पहले मैं वाइस प्रिंसिपल था, झुंझुनू में पोस्टेड था। अब समस्या ये आ रही है सर कि जो सैलरी वहाँ मिल रही थी नियमित सैलरी, वो भी अब यहाँ पिछले 8 महीने से नहीं मिल रही है। मैडम से काफी बार अनुरोध किया, 2-3 बार हम मिले व्यक्तिगत रूप से CA लेके, लेकिन आश्वासन के अलावा हमें कुछ मिला नहीं अभी तक।
1: दरअसल चयन होने के बाद भी जब इनको सरकार नौकरी नहीं दे रही थी तो ये लोग कोर्ट गए और कोर्ट में सरकार ने जवाब ये दे दिया कि विभाग में पहले जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पद था उस पर हमने डेपुटेशन पर दूसरे विभागों से रख लिया है, उनकी जगह इनको पद दे दिया जाएगा, मगर दूसरे विभाग से आए लोग जो डेपुटेशन पर लगे वो इस मलाईदार विभाग को छोड़कर अपने पुराने विभाग में जाना नहीं चाहते। अधिकारी कहते हैं कि उन्होंने फाइल मंत्री जी को भेज रखी, मंत्री जी के पास से फाइल आई तो फिर आगे काम हो पाएगा।
2: जब वो आया हमारे पास सर्टिफिकेट्स, वेरी माइनर मिस्टेक्स वर देयर इन द स्पेलिंग्स, तो हमने उसको रेक्टिफाई कराया थ्रू एफएसएसआई, बिकॉज वो गैजेट में जाता है तो स्पेलिंग में भी एरर नहीं होना है, तो भिजवाया, तो 31 जुलाई को इनका नोटिफिकेशन जारी हो गया।
0: भर्तियों में होते भ्रष्टाचार से भारत को आजादी जरूरी है, मध्य प्रदेश की खबर अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, जहां ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सरकारी भर्ती व्यवस्था की पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है जहां केवल 66 लोगों को नौकरी दी जानी थी वहां पैसा ले लेकर 5 गुना भर्ती कर दी गई।
1: सरकारी नौकरी की लाइन, वो लाइन जिस पर लोकतंत्र की लकीरें खींचती हैं, वो लाइन जहां खड़े खड़े कुछ को नौकरी मिलने पर लड्डू घरों में बंटता है और बहुत से बेरोजगार नौकरी की लाइन में खड़े खड़े ओवर एज हो जाते हैं। लाइन में खड़े इसी लोकतंत्र के इन्हीं बेरोजगारों के नाम पर जब होता है सौदा तो आज तक करता है, खबरदार। खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर की, जहां 66 पदों की आउटसोर्स भर्ती की मंजूरी मिली, लेकिन आरोप है मार्च से अप्रैल के बीच 70,000 रुपए घूस लेकर 318 लोगों को भर्ती कर दिया गया। आज तक के पास मौजूद इस दस्तावेज को देखिए, ये वो जांच रिपोर्ट है जो बताती है कि बेरोजगारों के नौकरी पाने के अरमानों पर भ्रष्टाचारियों ने जेब भरकर धोखा दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार ने जिला अस्पताल, सिविल हॉस्पिटल, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सपोर्ट स्टाफ के लिए 66 पदों की आउटसोर्स भर्ती को मंजूरी दी थी। सरकार ने केवल 25% कर्मचारी रखने की स्वीकृति दी थी। मंदसौर में तत्कालीन CMHO ऑफिस ने बिना किसी सरकारी इजाजत के मार्च और अप्रैल के भीतर 318 लोगों को नौकरी पर रख लिया, जो मंजूर पदों से लगभग 5 गुना ज्यादा था। कई नियुक्तियां सीधे तौर पर केवल आउटसोर्सिंग एजेंसी के लेटर हेड पर जारी कर दी गई। एक्स्ट्रा रखे गए इन कर्मचारियों को सैलरी किस फंड से दी जाएगी, इसका कोई वित्तीय प्रावधान तय नहीं था। तत्कालीन CMHO गोविंद सिंह चौहान के भतीजे जयदीप पर आरोप है कि इस पूरे रैकेट में उसने बिचौलिए का काम किया। भर्ती के नाम पर प्रति उम्मीदवार 70,000 रुपए की डीलिंग की जाती थी। पूरा खेल अस्पताल परिसर में मौजूद CMHO के सरकारी बंगले से चलता रहा। पूरा फर्जीवाड़ा तब उजागर हुआ जब बिना रिकॉर्ड वाले कई कर्मचारियों की सैलरी फंस गई। सैलरी न मिलने पर कर्मचारियों ने शिकायत की, इसके बाद जांच शुरू हुई। उधर नौकरी के नाम पर कथित तौर पर पैसे देने का दावा करने वाले कई शिकायतकर्ता अब अपने पैसे वापस दिलाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं।
12: केस दिए होंगे दिलना, उसके बाद फिर दूसरा केस दिया मैंने CMHO के बंगले में, दूसरी बार पैसे दिए CMHO बंगले में, फिर तीसरी बार पैसे दिए मैंने जयदीप भैया को अस्पताल के अंदर ही, एक स्टोर रूम है गोली दवाई का डबल मंजिल, वहां जाकर मैंने पैसे दिए। कोई मांगीलाल
14: कितने पैसे आप?
12: मैंने 13 लोगों को पैसे दिए टोटल 70,000 रुपए से, आप जो लोग कितने होते हैं 9,10,000 लगभग राशि दी मैंने उनको, ठीक। फिर 4 लोगों को सैलरी इन्होंने नहीं दी, फिर बाहर निकाल दिया, 4-5 महीने काम करवा लिया, किसी को पैसे नहीं दिए। और बाकी 4-5 लड़के, 5-6 लड़के वो रहे थे, उनका आज तक नहीं लगाया ना जयदीप भैया ने मेरे को पेमेंट लौटाया, मैं कैसे थक गया हूं।
1: राज्य सरकार ने तत्कालीन CMHO डॉक्टर गोविंद सिंह चौहान को निलंबित कर दिया। 5 लोगों की जांच कमेटी बनी है जिसने कहा है कि आपराधिक मामला दर्ज हो।
15: शिकायत की थी उस जांच के आधार पे उनकी जांच की गई, जिसमें कुछ गड़बड़ियां पाई गई और इस जो जांच प्रतिवेदन था, हमारी जो जांच सदस्य टीम थी उनके द्वारा जांच प्रतिवेदन दिया गया और उस प्रतिवेदन के आधार पे CMHO मंदसौर निलंबित है।
16: बिल्कुल 9 लाख रुपए करीबन बताए हैं, लिखे हैं आवेदन में, और डॉक्टर जो गोविंद सिंह चौहान जी उनका उसमें नाम है और पैसे दिए गए हैं सर, और एक अन्य जयदीप नाम के व्यक्ति का भी नाम लिखा हुआ है, उनके माध्यम से पैसे लिए गए। अब ये तथ्यों में क्या साक्ष्य है, साक्ष्य के आधार पर उसका वैधानिक आगे कार्रवाई की गई।
1: हालांकि आज तक ने भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी से बात की तो डॉक्टर चौहान अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हैं।
17: और संबंधित एजेंसी को मेरे द्वारा कार्यादेश दिया गया था कि गवर्नमेंट के निर्देशानुसार जो सर्कुलर है उसके अनुसार जहां जहां जितनी संस्थाओं में कर्मचारी रखना है उनको आप देखें और वो कर्मचारी रख के हमें उपलब्ध कराएं संस्थाओं में, ये कंपनी के द्वारा लगाए गए हैं। नहीं, जो जयदीप का नाम आ रहा है वो न तो मेरा भतीजा है और न ही कोई रिश्तेदार है।
1: सवाल है कि जब आंखों के सामने ही नौकरी देने के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ दिखता है तो केवल निलंबन ही क्यों हुआ? क्या CMHO तक ये मामला है या फिर प्रशासन के और लोग शामिल हैं जिन्होंने नौकरी दिलाने के नाम पर ऐसा ठगा जो बेरोजगार जीवन भर भूल नहीं पाएंगे?
3: जिन हाथों पर बेरोजगारों को रोजगार देने की जिम्मेदारी थी, उन्हीं हाथों ने नौकरी के नाम पर बेरोजगारों से लाखों रुपए वसूल लिए। सिर्फ जरूरत से ज्यादा भर्तियां ही नहीं हुई बल्कि हर नियुक्ति की एक कीमत भी वसूली गई। सवाल अब सिर्फ एक अधिकारी पर नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम पर खड़े हो रहे हैं जिसने बेरोजगारों के सपने को कथित तौर पर रिश्वत की मंडी में बदल दिया। मंदसौर से अजय के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
0: इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।

आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर, हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर epaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।

गई है सावन की शिवरात्रि। सावन की शिवरात्रि पर क्या होगा पूजा विधान? सावन की शिवरात्रि पर मिलेंगे कौन कौन से वरदान? क्या है सावन की शिवरात्रि की महिमा? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पर राहुल गांधी का बड़ा हमला, पूछा किसने दिया छात्रों के ऊपर पैलेट गन चलाने के आदेश, चढ़ावा चोरी को लेकर प्रधानमंत्री को घेरा नड्डा का पलटवार, माहौल खराब कर रहे नेता विपक्ष। परीक्षा धांधली के खिलाफ रांची में छात्रों का धरना, विधानसभा मार्च के दौरान लाठीचार्ज, हेमंत सोरेन ने प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया, देवेंद्र महतो बोले अब नहीं होगी सरकार से बात। रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी ने आज झारखंड बंद बुलाया, सीएम आवास पर प्रदर्शन किया गया, जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन गिरफ्तार, ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक कुदरत का कहर, चमोली में बह गया पुल, बीजेपी सांसद बलूनी बोले राहत और बचाव पर सरकार की नजर, रायगढ़ में 9 लोगों की मौत, गुजरात असम में भी आसमानी आफत। और परमाणु हथियार के बहाने दबाव बनाने में जुटे ईरान का ट्रंप को तगड़ा जवाब, का हॉर्मुज तभी खुलेगा जब अमेरिका देगा हर्जाना और हटाएगा प्रतिबंध। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और अनियमितताओं के विरोध में छात्रों ने रांची में विधानसभा का घेराव किया। छात्र झारखंड विधानसभा के गेट के पास तक पहुंच गए थे। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने की मांग कर रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है।
1: झारखंड में छात्रों का आक्रोश, विधानसभा तक विरोध।
2: ये देखिए बैरिकेड्स तोड़ दी है छात्रों ने, तोड़ेंगे जितना लेवल पे होगा, सिंहासन खाली करो, अब जनता आ रही है।
1: लाठीचार्ज, आंसू गैस, पानी की बौछार, रांची में आर पार।
3: ये देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
2: सरकार नियम खुश हो रही है।
1: विधानसभा गेट तक पहुंचे छात्र, बैरिकेड टूटे, झुकेगी सरकार।
4: फिर से वाटर कैनन चलाना शुरू कर दिया है।
5: बच्चों का सीट बेच के नौकरी उन लोग खा जा रहे हैं, तो अवसर की समानता कहाँ है?
1: पेपर लीक और परीक्षा में धांधली, छात्रों ने छेड़ी अगस्त क्रांति।
6: अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है, सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है।
1: आंदोलन से छात्रों ने दिखाई ताकत, सरकार मानेगी हरेक शर्त।
7: आपकी सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाहती है।
8: युवा को पलटी कर दिया जाता है वायु को कोई रोक नहीं सकता।
1: 17 दिन से जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर रांची के जयपाल मुंडा स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन और अनशन कर रहे छात्रों का सब्र टूटा, तो आक्रोश से भरे छात्र सीधे विधानसभा के लिए कूच कर गए। उसके बाद जो हुआ तस्वीरें आपके सामने। छात्र आंदोलन की आंधी में बैरिकेड भी उखड़ गए और विधानसभा को घेरने के लिए की गई कटीले तारों की बाड़बंदी भी छात्रों ने उखाड़ फेंकी। प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। फिर भी छात्रों का सैलाब नहीं थमा तो वाटर कैनन यानी पानी की बौछारें बरसानी पड़ गई, तो आखिर में पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे।
3: ये देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
1: अब छात्र अड़े हैं और सोरेन सरकार के खिलाफ डटे हैं, अपनी शर्तों के लिए, अपनी मांगे मनवाने के लिए। आज हम आपको रांची आंदोलन में विधानसभा घेराव की पूरी टाइमलाइन दिखाएंगे। ये भी बताएंगे कि प्रदर्शनकारी छात्रों और सोरेन सरकार के बीच बात कहां अटकी है, सरकार क्या कह रही है और छात्र किस बात पर अड़े हैं।
9: हम लोग डरने वाले नहीं है, सरकार का एक ही विकल्प है, हमारा मांग को पूरी करे, अन्यथा सरकार अपना कुर्सी नहीं बचा पाएगी, उसका कुर्सी पर खतरा है।
10: किसी भी शर्त पर यहाँ से नहीं हटने वाले, जब तक सरकार घोषणा नहीं कर दे कि सीजीएल रद्द हो गया।
11: ये मेरे पोस्टर का मतलब ये था कि हम लोग स्लैब को कोई फिल्टर नहीं जो हमारा फ्यूचर वो स्किप कर दे।
1: रविवार को झारखंड सरकार के मंत्रियों की विशेष कमेटी और प्रदर्शन कर रहे छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीन दौर में करीब 5 घंटे तक मैराथन वार्ता चलती, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती। और फिर छात्र 10 अगस्त को पहले से घोषित विधानसभा घेराव करने का फैसला लेते। छात्रों को सुबह 10 बजे से पहले पुरानी विधानसभा के पास जमा होने के लिए कहा जाता है, क्योंकि मार्च पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा तक का था। ऐसे में छात्र पोस्टरों